बड़ा महत्व तो है यहाँ का, ऐसी पुण्यमयी भूमि, बगल में जहाँ मेड़ता, मेड़ता का वो किला, कल हमको मीराबाई के वंशज हमें मिलने आए, कल रात को उन्होंने चलते चलते हमें चित्र दिखाया जहां ठाकुर जी के बाल्यकाल में ही दर्शन हो गए थे मीरा को। क्या अद्भुत दर्शन है, कितना अद्भुत है हमारा राजस्थान। एक छोटी सी बालिका छत के ऊपर खड़ी है, माँ साथ में है, राजघराने की बेटी, छोटी सी बच्ची छत के ऊपर खड़ी। उसी समय एक बारात जा रही, दूल्हा को देख करके वो बच्ची माँ से कौतुक वश, उत्साह वश पूछती है, माँ माँ माँ ये कौन है? बेटी ये दूल्हा है, फलानी फलानी बिटिया का ब्याह हो रहा, उसका ये बर है। अच्छा माँ, तो माँ मेरा भी तो कोई बर होगा। हाँ तेरा भी बर है। माँ मेरा बर कहाँ है, मुझे मिलाओ ना। बेटी अभी नहीं, बाद में मिला दे। नहीं नहीं माँ, मुझको भी ऐसे ही दूल्हा चाहिए, ऐसे ही सजा वजा घोड़े पे बैठा हुआ, मेरा दूल्हा बताओ ना। बच्ची की जिद पर माँ क्या बोले, छोटी सी बच्ची अब क्या बताए, तो नीचे हाथ पकड़ करके ले गई और ठाकुर गोविंद को दिखा कर बोली, बिटिया यही तेरा दूल्हा है, यही तेरा बर है। जैसे ही उसको देखा, श्याम सुंदर चितवन सरोज कजरारी, अखियां घुंघराली, लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करूं कृष्णा बल जाओ लला के बोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर उस कृष्ण चंद्र वन चंद्र मुरली, मनोहर छलिया गिरधारी वनवारी, चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया गोविंद को देखा, जो रास रचाता नाच नचाता थिरकता है, जो काली नाग की तह पर काली नाग को, हमारे ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र जी मात्र एक वंशी की धुन की पग पर बैठ करके भगवान काली नाग के फनों पर फन फन फनाते हुए, फनों के ऊपर भगवान जो लीला करते, मुरली की अधरों में रख करके बांसुरी के करुण कंदन स्वर को निकालते, उस गोविंद की अधरामृत होंठों को देखकर, काली काली कजरारी अखियों को देखकर, वो छोटी सी बच्ची बालिका भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति इतनी आकर्षित हो जाती कि गोविंद को गोद में लेकर के कह देती, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा तो अब गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर बाद में वो गाती, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। बड़ी हो गई गोविंद के ही जीवन में, बड़ी हो गई, अब तो वो ठाकुर को ही लाड़ लड़ाती, यही मेरो दूल्हा है, ये चित्त में बैठ गया, यही मेरो दूल्हा है। पता है आपको ये मीरा बालकाल से इतनी बाबरी क्यों थी, ऐसा क्या हुआ? अरे ये कोई साधारण मीरा नहीं है, ना ना ना ना, राजस्थान मेड़ता नागौर अजमेर में रहने वाले सनातनियों सुनो, ये तुम्हारी मीरा कोई साधारण नहीं है, कृष्ण के समय की गोपी है, कृष्ण के समय की गोपी है, कृष्ण के समय की। द्वापर युग में जब भगवान श्री नंद नंदन यशोदाम नंदन देवी की नंदन बनकर के प्रकट हुए ब्रज में, तब एक घटना हुई, ध्यान से सुनना मीरा कौन है। भगवान प्रकट भए, एक दिन इंद्र की मति मारी गई, इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश की, 7 दिनों तक बारिश हुई। ठाकुर जी कहते हमने ये कथा सुनी है, ये गोपी उसी समय भगवान को मिली, नया नया ब्रज में एक ब्याह हुआ, नई नई शादी, महाराज जी शादी की जो नई नवेली दुल्हन ब्रज में आई, उससे उसकी सासू मां ने कहा, सुन यहां एक जादूगर रहता है। वो बिचारी नई नई थी, उसे तो पता नहीं था, मां कौन सा जादूगर? अरे बोली सुन तो, तू अपना घूंघट मत निकालना यहां, और सुन कुछ दिनों के अंदर यहां पर एक जादूगर है, छोटा सा बच्चा 8 साल का, नाम उसका कृष्ण कन्हैया है, तू अपना मुंह ना उसे दिखाना ना उसकी तरफ देखना। क्यों मां? है तो बच्चा पर पूरे ब्रज की स्त्रियों को बाने पागल बना रखो है, बड़ो बाबरो है, बड़ो पागल बना देता, ऐसो मंत्र फूंकता सब उसके पीछे ही डोलती है, तो सुन ले कान खोल के, वो आएगा जिद करेगा, तू ना तो घूंघट निकालेगी ना मुंह देगी, सुन आंखों में तो देख रही नहीं,
जादू भरी तेरी नजर जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियन पे गुजर गई, जादू भरी तेरी आंखें। तो बाकी आंखों में ना बड़ा जादू है, देखना नहीं सुन। तब तक ननंद आई, हाँ हाँ भाभी भाभी भाभी सुन, वो जो है ना नंद को छोरा यशोदा को छोरा, बा को यहाँ सब प्यार ते कनुआ कहवे कनुआ, काना कहते हैं काना, बड़ो जादूगर है भाभी, मेरी बात मान लेना प्लीज, तुम बा को मुंह ना देखना। अब बेचारी नहीं नहीं उसे क्या पता, पहली बार ब्याह भो के आई है, उसे लगा होगा खतरनाक आदमी है तो बच्चा पर डेंजर हो सकता, बिचारी चुप हो गई। दो दिन बाद ठाकुर जी आए, काकी काकी ओ काकी, हाँ लाला, मैंने सुनो तेरे घर पे नई नई बहू रानी आई है। हाँ सही सुनो काकी, बुरा ना मानो, नेक जो मुंह देख ले, जा तू ही जा। काकी ने धक्का दिया बहू को, आ गया कान में को, आ गया वही जादूगर, बाने घूंघट पकड़ लो। अब ठाकुर जी तो लीलाधर, अरे ओ भाभी पहली पहली बार तुम ब्रज में आई है, मुखड़ो तो दिखाए दे कैसी दिखबे, बाने घूंघट में ही सिर ला ना, अरे पागल है क्या, दिखा मुंह, नेक भाभी मुंह तो देख ले, गोरी है कारी है काली कलूटी है, नेक मुंह तो दिखा दे, बाने फिर सिर लाया ना, घूंघट जोर से पकड़ लिया, भगवान ने घूंघट पकड़ा और झटका मारना चाहा, बाने ठाकुर जी को कोई नहीं मार दी, गिर गए ठाकुर जी। भगवान तो सब जानते हैं, अंतर ध्यान है, अंतर्यामी है, मन की जानने वाले हैं। भगवान बोले अच्छा मेरो मुंह ना देखने तुझे, जा मैं भी वचन दे रहा हूं नंद को छोरा, आज के बाद ना तू को मुंह दिखाऊंगा ना तेरो देखूंगा, और चले गए भगवान। जब चले गए ठाकुर जी, जब चले गए उसको लगा छोटा सा बच्चा है, नाराज हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता। लेकिन तब तक गोवर्धन लीला हुई ब्रिज में, गिरिराज लीला, इंद्र ने पानी बरसाया तो ठाकुर जी के पास संपूर्ण ब्रजवासी पहुंचे, इंद्र की मति मारी गई, कोई उपाय करो। भगवान ने कहा गोवर्धन के पास चलो, गोवर्धन के पास आए, भगवान ने छोटी सी उंगली पर, कनिष्ठ उंगली पर पूरे गिरिराज को रख लिया, नाम पड़ गया गिरिराज धरण। दो तीन दिन के अंदर सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के जो नीचे छुपे हुए थे ना पानी से बचने के लिए, वो सब ठाकुर के दर्शन करने आए। कोई मक्खन खिला रहा, कोई हाथ दबा रहा, कोई ठाकुर को जी भर के देख रहा। जरा देर ठहरो श्याम, थोड़ा देख लेने दो, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जी भर के देख रहा कोई। अब वो गोपी भी आई जिससे भगवान नाराज थे, वो भी आई जिसको मुंह नहीं दिखाना था, वो आई तो उसने बड़ा सुन रखा कि नन्नो सो छोरे ने, छोटे से बालक ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा। उसने सोचा जरा एक बार तो चुपके से देख ले कि वो कौन है, और जहां एक बार नजर गई सोई बाबरी हो गई। अपनों घूंघट घूंघट फेंक कर ठाकुर जी के सामने ऐसी खिंची खड़ी हो गई मानो चुंबक खिंची हुई चली आई, जैसे लोहा खिंचा आता ना चुंबक की तरह, वैसी खिंची हुई गोपी गोविंद के सामने खड़ी हो गई। भगवान पहचान गए ये वही है जिसने अपनों मुंह नाए, मुंह को दिखाओ। भगवान ने टेढ़ो मुंह कर लो, वो उस तरफ भागी भागी गई, भगवान ने इस तरफ मुंह कर लो, भागी भागी। अब तो उसे ऐसी ललक लगी कि रही ना पाए, और वो जिस तरफ जाए भगवान वहीं से मुंह हटा ले। अंत तो गत्वा वो इधर भागे उधर भागे, दिन भर यही चला, रात को भगवान ने ऊपर ही मुंह कर लिया, ले देख ले ऊपर मुंह कर लिया। अब वो लगी रोने, आंखों से अश्रुधार बहने लगी, बार बार अपने मन ही मन में कोसने लगी सासू माँ को, और ठाकुर से कहने लगी मेरी भूल ना, मैं पहचान गई, तुम कोई साधारण लाला नहीं हो, जादूगर नहीं हो, ठाकुर हो, ठाकुर ब्रज के नेता हो, नेता हो, हम पर कृपा करो, हमारी भूल को क्षमा करो। भगवान बोले हम ना क्षमा करेंगे, हमने प्रण लिया तू को अपना मुंह ना दिखाएंगे, सुना दिखाएंगे।
पता है क्या बोले? बोले ना देखते तो ठीक था, अब एक बार देख लिया तो अब जी नहीं मान रहा। पहले ना देखते तो भला था, अब एक बार देख लिया अब दिल मानता ही नहीं है, जी मानता ही नहीं। अब परेशान मत करो, हमारी भूल को क्षमा करो। बेहोश हो जाए फिर उठे, फिर बेहोश होवे फिर उठे, फिर रोवे। घर वाले पागल तो सासू माँ को गाली बके, चंडालन है। हाँ, उंगली दिखा दिखा तेरे ही चक्कर में बा को मुखड़ो ना दिख रहो ठाकुर को, हमारे श्याम सुंदर को लगी।

हमारी तरफ देखेगी, हम दिखाई नहीं पड़ेंगे। सबको कृष्ण दिखाई पड़ रहे, उस गोपी को कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहे। वो रोने लगी, पागल हो गई, 3 दिन तक अखंड रोई। रोते रोते अंत में बोली, ठाकुर तुम कहो तो मैं प्राण त्याग दूं अपने, पर तुम्हारे बिना जी रखा लगता नहीं है, रहा नहीं जाता। भगवान ने कहा, गोपी इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम्हें मैं एक वरदान देता हूं, तुम्हें फिर से मुझे देखने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें मिलूंगा। वही गोपी कलयुग में मेरता में जन्म लेती है, मीरा बनकर प्रकट होती है। महारानी बनती है, वही गोपी मेरता में जन्म लेती, मीरा बनती है। तब तो मीरा के सभी पदों में एक बात है,

यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि तुलसीदास जी की जगह क्या हम अपना नाम बोल सकते हैं। वैसे तो ये तुलसीदास जी ने अपने लिए ही लिखा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले श्लोक में कहा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा हृदय। यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि तुलसीदास जी की जगह क्या हम अपना नाम बोल सकते हैं। वैसे तो ये तुलसीदास जी ने अपने लिए

यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि तुलसीदास जी की जगह क्या हम अपना नाम बोल सकते हैं। वैसे तो ये तुलसीदास जी ने अपने लिए ही लिखा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले श्लोक में कहा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ।

पागलो तुलसीदास सदा हरि। इसमें एक बात हम कहें, हनुमान चालीसा किसका है? हनुमान जी का। बोलो हाँ जी या ना जी। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारे हृदय में आप बास करो। तुलसीदास कीजे नाथ हृदय महा। नाथ कौन है? राम जी। पर राम जी को कह रहे हैं कि हृदय में बैठो, पर चालीसा आप हनुमान जी का लिख रहे। अब स्तुति तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी की है। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन ब्रह्मचंद ध्यान जो लावे। तो ये पूरी स्तुति हनुमान जी की है। पर आप कह रहे कीजे नाथ रघुनाथ के लिए, आप कह रहे कि आप हमारे हृदय में बैठो, और स्तुति आपने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की गाई। ये तो बड़ा विरोधाभासी बात है। तो बाबा तुलसी कहते ना ना ना ना, सीधा सीधा है, एक संत ने हमसे कहा, इस पर हमारा निजी मत है। तुलसीदास जी कहते हैं कीजे नाथ हृदय महा। पर स्तुति किसकी? हनुमान जी की। हनुमान जी की स्तुति क्यों कर रहे यदि राम जी को हृदय में बैठारना है? तुलसीदास जी बोले सुना जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धरी। हनुमान जी के ही तो हृदय में राम जी बैठे हैं। हनुमान जी बैठ जाएंगे तो राम जी भी बैठ जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा, एक ये कारण। दूसरा कारण, हनुमान जी की स्तुति है हनुमान चालीसा में, पर कह रहे कीजे नाथ राम जी आप हमारे हृदय में बैठो। कारण, राम द्वारे रखवारे। एक राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा है, इसलिए कह रहे आप हमारे हृदय में बास करो। राम जी को पाना है तो हनुमान जी को पाना पड़ेगा। किसको प्राप्त करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। और हनुमान जी को पाना है तो कैसे मिलेंगे बताओ? राम जी तो हनुमान जी के कारण मिल जाएंगे, पर हनुमान जी कैसे मिलेंगे? हमारे पास एक उपाय है, कहो तो बताएं। ए हा

जी किसके रक्षक हैं? संतों के। किसके? बोलो बोलो बोलो। तो हम लोग जाएं संत की चरण में, संत ले जाएंगे हनुमंत की शरण में, और हनुमंत ले जाएंगे भगवंत की शरण में। तो हमें लगता इससे ये चौपाई

0: के स्वप्न अशुभ होते हैं, सपने में मृत व्यक्ति को देखना क्या सूचना देता है, क्या सपने में आकर पूर्वज कोई मांग भी करते हैं, पूर्वजों और पितरों के स्वप्न का क्या है रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: एशियन गेम्स में भारत और अफगानिस्तान के बीच मेंस क्रिकेट का क्वार्टर फाइनल आज सुबह 10:30 बजे से मैच होगा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में उतरेगी टीम इंडिया। कोहली और गिल के शतक से भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया, पहला वनडे 8 विकेट से जीता। विराट ने सबसे तेज 15,000 वनडे रन बनाए। एशियन गेम्स में आज भी भारत से मेडल की आस, एथलेटिक्स में गोल्ड की उम्मीद, स्वदेश लौटी महिला पुरुष कबड्डी टीम और शूटर्स का शानदार स्वागत किया गया। लता मंगेशकर को अनोखी श्रद्धांजलि, 97वीं जयंती पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई भव्य कलाकृति, स्वर कोकिला को नमन किया। रशिया में विशाल कद्दूओं की रेस, मॉस्को में बैटल ऑफ द जॉइंट्स फेस्टिवल में अनोखी रेस आयोजित की गई, कद्दू की नाव बनाकर तालाब में उतरे प्रतिभागी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: एशियन गेम्स में भारत और अफगानिस्तान के बीच आज T20 का क्वार्टर फाइनल मैच जापान के निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा मैच। भारत अफगानिस्तान के बीच होगा दूसरा क्वार्टर फाइनल का मैच। भारत ने सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। आज का मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। श्रेयस अय्यर के हाथों में टीम इंडिया की कमान। संभावित प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी हैं। बुमराह अर्शदीप पर दारोमदार है। अफगानिस्तान की कमान दरवेश रसूली संभालने वाले हैं। अफगानिस्तान की टीम में नजीबुल्ला जदरान, करीम जन्नत, मोहम्मद इशाक जैसे अनुभवी प्लेयर्स हैं। दोनों टीमें नॉकआउट भिड़ंत के लिए तैयार हैं। आज का मुकाबला जीत सेमीफाइनल पर होगा टीम इंडिया की नजर, तो वहीं क्वार्टर फाइनल को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह। तिरुवनंतपुरम वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। विराट कोहली ने जड़ा 55वां शतक। सबसे तेज 15,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली ने 10 चौके और 9 छक्के की मदद से नाबाद 88 गेंदों में नाबाद 139 रन जड़े। कैप्टन शुभमन गिल ने भी खेली शतकीय पारी, बनाए 110 रन, चौके पर और एक छक्का भी जड़ा। रोहित शर्मा ने दी टीम को मजबूती, 35 गेंदों पर 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से बनाए 32 रन। भारत को एशियन गेम्स में पहला सिल्वर मेडल दिलाने वाली सोनम मस्कर का हुआ कोल्हापुर के एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। परिवार के साथ अन्य रिश्तेदार भी सोनम का स्वागत करने के लिए पहुंचे। भावुक नजर आई सोनम की मां। एशियन गेम्स 2026 में सोनम मस्कर ने भारत को दिलाया 10 मीटर एयर राइफल में पहला सिल्वर मेडल। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में भारत को ब्रॉन्ज दिलाने वाली प्राची के घर में मना जश्न। परिवार ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। परिवार ने प्राची से वीडियो कॉल पर बात की। प्राची पैरिस ओलंपिक में भी कर चुकी हैं देश का प्रतिनिधित्व। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद महिला और पुरुष कबड्डी टीम स्वदेश लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पदक वीरों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाजों का भी ग्रैंड वेलकम किया गया। शूटिंग टीम के खिलाड़ियों के चेहरों पर जीत की खुशी नजर आई। वर्ल्ड स्किल्स में भारत की बड़ी छलांग। शंघाई में भारत ने वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन 2026 में टॉप 10 में बनाई अपनी जगह। भारतीय दल ने 6 रजत पदक और 20 मेडलियन फॉर एक्सलेंस जीते। 70 देशों के बीच चमका तिरंगा। 1400 युवा अलग अलग कौशल क्षेत्रों के मुकाबले के लिए पहुंचे थे। भारतीय प्रतिभागियों ने 64 में से 63 स्किल कैटेगरी में हिस्सा लिया। ब्रेकरी स्किल में भारत की स्मृति नामबियार ने जीता सिल्वर मेडल। डेंटल प्रोस्थेटिक में मोहम्मद सलाम और इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में पार्थ वोहरा ने दिलाया सिल्वर। कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी बनी एशियन बॉक्सिंग कमेटी की निर्विरोध वाइस चेयरमैन। 4 साल का होगा कार्यकाल। दिल्ली में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर चलो भगत सिंह के साथ कार्यक्रम का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता शामिल हुई। भगत सिंह के जीवन विचार और उनके साथ देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों की कहानी को मिनी म्यूजियम में तस्वीरों के जरिए किया गया है पेश। म्यूजियम में अदालत का मॉडल भी किया गया है तैयार। राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भगत सिंह के संघर्ष विचार और देश के लिए उनके बलिदान से परिचित कराना है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास के परिचालन चरण की शुरुआत करने के लिए भारतीय वायुसेना तैयार। 12 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले इस बहुपक्षीय वायु अभ्यास का विषय है साझेदारी में शक्ति। इस अभ्यास में 7 मित्र देश हिस्सा ले रहे हैं। भाग लेने वाले विदेशी विमानों में F-35 लाइटनिंग 2, राफेल F-16, A-400 मीटर, MRTT, C-130, C-130J और KC-30A शामिल हैं। युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले दल भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर काम करने वाले हैं और साथ ही अलग अलग मिशंस में अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों और सहायक इकाइयों का इस्तेमाल होगा। तरंग शक्ति 2026 अभ्यास भारतीय वायुसेना को देता है अपनी परिचालन क्षमताओं, पेशेवर मानकों और संस्थागत मूल्यों को प्रदर्शित करने का अवसर। बायोपॉलीमर प्लांट की भीमकाय मशीन लेकर लखीमपुर जा रहा 308 पहियों वाला ट्रक सेफ निकासी के लिए यूपी के चंदौली में रोड हो रही है चौड़ी। 3 दिनों में महाबली ट्रक देखने वालों का लगा तांता, ट्रक के साथ विशेषज्ञों की टीम भी चल रही है। लखीमपुर खीरी जिले में भी कुंभी में बन रहे बलरामपुर चीनी मिल में इथेनॉल प्लांट में इस मशीन को किया जाएगा स्थापित, जो देश और एशिया का बड़ा प्रोजेक्ट है। राम भक्तों के लिए आई गुड न्यूज, अयोध्या में रामेश्वरम तक वनवास के दौरान जिन जिन जगहों से गुजरे थे प्रभु श्री राम, वहां अब लगेंगे श्री राम के स्तंभ। भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे पिक सैंड स्टोन के पत्थरों से किया जा रहा है स्तंभ का निर्माण। बुंदेलखंड में महुरानी जल विहार महोत्सव की धूम देखने को मिली, बुंदेली आस्था की 303 साल पुरानी है परंपरा। इस महोत्सव में भगवान श्री गूदर बादशाह को भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। गूदर बादशाह परंपरा की सबसे अहम कड़ी है श्री गूदर बादशाह सरकार की देव विमान यात्रा। गूदर बादशाह के विमान के पीछे करीब 100 देव विमान भी निकले, जो रात भर नगर की अलग अलग गलियों में घूमे और लोगों ने दर्शन पूजन किया। इस महोत्सव का सीधा संबंध श्री कृष्ण की लीलाओं से है, बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त इस महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेने जाते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट, निचले इलाकों में भी बढ़ी ठंड। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में यात्रा को हीना और डोबाट होल्डिंग पॉइंट पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र और स्मार्ट कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बर्फबारी के बीच उच्च हिमालय में ट्रैकर्स और पोर्टर्स को सुरक्षित लाने में जुटाए प्रशासन, जिला अधिकारी ने ली बैठक, सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। 52वें दिन बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने इतिहास रचा, 400 करोड़ के क्लब में हुई शामिल, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 401 करोड़ 20 लाख पहुंचा। रविवार को हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ का कारोबार किया, भारत में भी ग्रॉस कलेक्शन 362 करोड़ 70 लाख के पार पहुंचा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है, कल फिल्म ने 14 करोड़ की कमाई की, 3 दिन में दुनिया भर में 43 करोड़ कमाई। फिल्म द पैराडाइज ने कल 15 करोड़ 70 लाख का व्यापार किया, 4 दिन में भारत में नेट कलेक्शन 109 करोड़ और दुनिया भर में कमाई 138 करोड़ के पार पहुंची। मिर्जापुर द मूवी ने कल 1 करोड़ 55 लाख कमाए, 23 दिन में भारत में ग्रॉस कलेक्शन 268 करोड़ पहुंचा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 328 करोड़ के पार पहुंचा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक बड़े अद्भुत पुराण के बारे में बात करेंगे जिसका पाठ आम तौर पर किसी की मृत्यु हो जाने के दौरान किया जाता है। आज बात करेंगे गरुड़ पुराण की और इसके रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 सितंबर 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु के बारे में, यमलोक यात्रा के बारे में, नरक योनियों के बारे में और सदगति के बारे में अनेक रहस्य वाले और गूढ़ सवाल पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत की और उन्हें इन तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए। गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर इसी गरुड़ पुराण में संकलित किए गए हैं, गरुड़ पुराण में लिखे गए हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का नियम है। लोगों के घर में किसी का देहांत हो जाने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इस पुराण के उत्तर खंड में प्रकल्प का वर्णन है। प्रकल्प के बारे में बताया गया है। इसको सुनने से या पढ़ने से या चिंतन करने से सद्गति की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। गरुड़ पुराण पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो गरुड़ पुराण में नरक योनियों, प्राणियों, जीवन और मुक्ति के बारे में बताया गया है। तो गरुड़ पुराण में किस प्रकार के नरक और गतियों के बारे में बताया गया है और जो बताया गया है क्या वो सही है? देखिए, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले अलग अलग नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में जो नरक बताए गए हैं
कि तेल में तलना, शूल पर चलना, अग्नि में फेंकना, ये मन की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। ये प्रतीकात्मक हैं, ये वास्तविक नहीं हैं। आपके मन को अपने कर्मों के अनुसार कैसा फल भुगतना होगा इस बारे में गरुड़ पुराण एक इशारा करता है, लेकिन वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। हालांकि ये बात जरूर है कि आपके कर्मों के परिणाम वास्तविक जीवन में आपको वैसे भुगतने पड़ते हैं, मानसिक रूप से आपको उतनी पीड़ा या उतना कष्ट उठाना पड़ता है। और जो कष्ट उठाना पड़ता है आपके मन को अपने कर्मों के फल स्वरूप, वो परिणाम वास्तविक और मानसिक होते हैं। अब ये जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को मुक्ति की तरफ, सदगति की तरफ ले जाती हैं। तुलसी पत्र यानी तुलसी का पत्ता और कुश घास, इसका प्रयोग व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। संस्कारों को शुद्ध रखने से और भक्ति करने से व्यक्ति के दुष्कर्म के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच जाता है। जल का दान करना और दूध का दान करना भी व्यक्ति के कल्याण में सहायता करता है। अगर आप अपने गुरु की शरण में हैं, आपके गुरु की कृपा है आपके ऊपर, तो आपके दंड शून्य होंगे और आप सदगति की तरफ जाएंगे। यानी कर्म बंधन को काटने के लिए, दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। गरुड़ पुराण पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। सामान्यतः आपने घर में देखा होगा कि लोग रामायण पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण रोज नहीं पढ़ते या सामान्यतः नहीं पढ़ते। किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंडित जी आकर के घर के लोगों को गरुड़ पुराण पढ़ करके सुनाते हैं। तो क्या गरुड़ पुराण केवल किसी की मृत्यु के समय ही पढ़ना चाहिए? देखिए, गरुड़ पुराण का पाठ अगर आप उसके भाव को समझ करके करें तो सर्वोत्तम होगा। आत्मा और मन अलग अलग चीजें हैं। कष्ट, सुख या दुख आपके मन को होता है, आत्मा निष्प्रिय रहती है, आत्मा केवल उसको देखती है, आत्मा के ऊपर कोई छाया, कोई परछाई नहीं पड़ती। आप गरुड़ पुराण का पाठ कभी भी कर सकते हैं। वैसे अगर महीने में एक बार अमावस्या पर आप गरुड़ पुराण का पाठ अपने पूर्वजों के लिए करें तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। और अगर गरुड़ पुराण का भाव आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी वास्तविकता क्या है, तो आप डरेंगे नहीं, आपको भय नहीं लगेगा। अगर आप गरुड़ पुराण को गहराई से जानना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण के साथ
भगवत गीता का पाठ जरूर करिएगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना, वासांसि जीर्णा न्यथा विहाय नवानि जीर्णा तिनरो पराणी, यानी जिस तरह आत्मा अपनी शरीर बदलती है, जैसे व्यक्ति अपना शरीर बदलता है, यानी आत्मा पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। आत्मा को न जला सकते हैं, न काट सकते हैं, न सुखा सकते हैं। तो गरुड़ पुराण में कहा गया सजा दी जाती, सजा देते किसको है जब आत्मा के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। सजा मिलती है, सजा भोगता है आपका मन जो आत्मा के साथ जुड़ा होता है। देखिए, पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और खुद को ज्ञान देने के लिए, खुद मोह के जाल से बाहर निकलने के लिए आप गरुण पुराण का पाठ कर सकते हैं। अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए पितृपक्ष में अगर आप रोज या जब भी मौका मिले प्रातः काल अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके प्रार्थना करें, तो इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो पितृपक्ष में गरुण पुराण भी पढ़िए और अपने पूर्वजों के लिए गजेंद्र मोक्ष भी पढ़िए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को चमकाने के लिए एक लकी टिप। अपने घर में किसी भी तरीके से गमले में, जमीन में पीपल का पौधा मत लगाइए, लेकिन चूंकि पितृपक्ष का पवित्र समय चल रहा है तो आप चाहें तो सार्वजनिक स्थानों पर, पार्क में, सड़क के किनारे पीपल का पौधा लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 28 सितंबर 2026, दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करिएगा, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज। तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी

0: डूज, तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।
1: ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा गहरा लगाव होता है, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो शारीरिक रूप से हमें छोड़ के चले जाते हैं, यानी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है, हमारे दिल में उनकी स्मृतियां जरूर होती हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तो रात में उनके स्वप्न हमें आते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में हमारे पूर्वजों के जो स्वप्न हमें आते हैं, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान, क्या कुछ इसका अर्थ होता है, पंडित जी इसे डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले उनसे जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं और जिन स्त्रियों के सास ससुर जीवित हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष की वर्जनाएं, पितृपक्ष की सावधानियां और नियम लागू नहीं होते। कहने को आप कहते रहिए, लेकिन वास्तव में जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं तो माता पिता पितृपक्ष का पालन करेंगे, वो पुरुष तो करेगा नहीं। इसी तरह से जिन महिलाओं के सास ससुर जीवित हैं तो सास ससुर करेंगे उसका पालन, वो महिला नहीं करेगी। तो इसलिए उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम, सावधानियां और वर्जनाएं लागू नहीं होते।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 28 सितंबर 2026 यानी कि दिन सोमवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 28 सितंबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम को 7:13 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 10:16 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 10:16 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो चलिए कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं स्वप्नों की, यानी सपनों की। तो पंडित जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सपने होते क्या हैं? क्या ये महज एक क्या बोलेंगे कोइंसिडेंस है कि हमने कुछ सोचा और वो हमें दिख गया, या फिर इसका कुछ कनेक्शन है हमारे जीवन से, और खास तौर पे पितृपक्ष चल रहे हैं, पूर्वजों के सपने आना, क्या अर्थ है इसका, कैसे डिकोड करेंगे आप इसे?
0: जी देखिए, बाकायदा जैसे ज्योतिष शास्त्र है, लक्षण विज्ञान है, वैसे ही स्वप्न का एक पूरा विज्ञान है, एक पूरा साइंस है, सिगमंड फ्रायड से लेकर के, और तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है। और ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म में स्वप्नों की मान्यता है, हर धर्म में अलग अलग तरीके से स्वप्न की मान्यता बताई गई है। स्वप्न होते क्या हैं? सामान्यतः हम ऐसा समझते हैं कि नींद में, निद्रा की अवस्था में कोई विशेष प्रसंग दिखाई दे या कोई घटना दिखाई दे तो वो सपना है। लेकिन स्वप्न वास्तव में निद्रा में नहीं आते, निद्रा और जागृत अवस्था के बीच में आते हैं, जिसको तुरिया अवस्था कहते हैं। कच्ची नींद सुने हैं? कच्ची नींद पूरी तरह से जगे नहीं है, अर्ध निद्रा के बीच में है, मन थोड़ा कमजोर।

0: वाले पार्ट पे चला गया, वहां पर सपने आपको दिखाई देते हैं। बहुत गहरी नींद में सपने कभी नहीं आते। सपने आने के पीछे आपका खान पान, आपकी मानसिक स्थिति, आपके घर का माहौल, इन चीजों का बड़ा असर पड़ता है आपके मन के ऊपर, और मन बड़ा असर डालता है आपके सपनों के ऊपर। जैसा सरगम ने कहा कि बहुत बार जो सपने होते हैं वो आपके मन का प्रोजेक्शन होते हैं, जो आप विचार करते हैं, जो आप सोचते हैं, कई बार वो सपने में दिखाई देता है, ऐसा बहुत बार होता है। तो आपका खान पान, आपका माहौल, आपका मन, ये सपनों के बारे में बताता है। अब एक बड़ी अद्भुत बात ये है कि अलग अलग व्यक्तियों के सपने, अलग अलग समय के सपने, सबका असर अलग अलग होता है। जो सपना किसी वृद्ध व्यक्ति को आएगा, वही सपना नौजवान को आएगा, उसमें अंतर होगा। बच्चा क्या सपना देखता है, जो कहते हैं लोग ना कि भोर का सपना सत्य होता है, तो किस समय का सपना है, कौन देख रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, ये बहुत सारी चीजों को देख करके तब सपनों का अध्ययन किया जाता है। मेडिकल साइंस में बाकायदा स्लीप की स्टडी की जाती है कि आपकी नींद कितनी गहरी है, और जब नींद के साथ सपनों को एसोसिएट कर दिया जाता है तो आपके जीवन के बहुत सारे रहस्यों को जाना जा सकता है।
1: तो सपने क्या होते हैं, सपने कब आते हैं, इसके बारे में जो हमारी चर्चा है यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल।
0: मेष राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, यात्रा के योग बनते हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होती जाएंगी, नौकरी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती थी, वो कौन से लोग हैं जिन्हें स्वप्न ज्यादा आते हैं, क्या ये अमूमन वो लोग होते हैं जो कि ज्यादा सोचते हैं?
0: देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं रात भर सपने आते रहे, उलझुल सपने आते रहे, मैं गहरी नींद सो ही नहीं पाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे तो सपने आते ही नहीं है, मैं तो पलंग पे गिरता हूं, सुबह ही आंख खुलती है, बीच में कुछ पता नहीं चलता। तो आखिर सपने आते किसको हैं और ज्यादा सपने किसको आते हैं? देखिए, जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर होती है, जैसा सरगम ने कहा कि सोचते ज्यादा हैं, एक ही बात के पीछे दिमाग दौड़ाए रहते हैं, चिंता ज्यादा करते रहते हैं, ऐसे लोगों को सपने ज्यादा आते हैं। जो लोग रात में सोने के पहले बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या कभी भी ज्यादा खाना एक साथ खा जाते हैं तो पेट पर प्रेशर पड़ता है और आपकी जो आंतें हैं वो आपके ब्रेन के केमिकल जैसी हैं। तो जब पेट पे प्रेशर पड़ेगा तो आपके दिमाग पर असर पड़ेगा, सपने ज्यादा आएंगे। जिन लोगों का आहार और आचरण शुद्ध नहीं होता उन्हें अजीब सपने आते हैं। अब जिनको रोज पीने की आदत है ना, वो अजीब सपने देखेंगे, डरावने भी देखेंगे, खराब सपने भी देखेंगे, नींद में चिल्लाएंगे भी, परेशान भी होंगे। यानी जिनका आहार और आचरण ठीक नहीं होता उन्हें भी अजीब तरह के उल्टे सीधे सपने आते हैं। किसी तरह का अगर मन पे दबाव है, कोई प्रेशर है आपके ऊपर, आपके मन में किसी तरह की चिंता लगातार चल रही है तो आपको बहुत सपने आएंगे, क्योंकि मन जो है ना वो परेशान होगा तो आपको नींद अच्छी तरह नहीं लेने देगा, वो तमाम विचार आपके मन में इंजेक्ट करेगा और वो विचार सपने के रूप में आपको दिखाई देंगे।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: कर्क राशि, धन

0: दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि आराम के मूड में रहेंगे, धन की दशा उत्तम रहेगी, काम टालने से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि काम की अधिकता से इस समय परेशानी होगी, प्रियजनों से वाद विवाद हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न रीतिका ने हमें लिखा है और रीतिका हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। 7 मई 1982 का जन्म है। मध्यरात्रि में 1:35 सिवनी मध्य प्रदेश। रीतिका कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरे स्वास्थ्य में दिक्कतें चली आ रही हैं, मुझे चिंताएं बहुत होती हैं, तनाव बहुत होता है, तो मैं क्या करूं कि मेरा स्वास्थ्य और मेरा मन बेहतर हो जाए। रीतिका आपकी सेहत में मामला बिल्कुल भी जटिल नहीं है, बिल्कुल गंभीर नहीं है, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। मामला कोई गंभीर या खराब होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी जो मार्च 2027 तक का समय है ना, वो आपके मन को थोड़ा परेशान कर रहा है, थोड़ा आपके मन को परेशानियों में डाल रहा है। तो मार्च तक थोड़ी शांति रखिए, उसके बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह और रोज शाम अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में भी उनसे जानकारी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, काफी पसंद करते हैं और सोच रहे हैं कि पंडित जी से सवाल पूछना है कैसे पूछे, तो आपको बता दें कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसके साथ अपनी बर्थ डिटेल जरूर लिखते हैं। तो चलिए बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न अभिषेक जी ने हमें लिखा है और अभिषेक जी हमें लखनऊ से मेल लिख रहे हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर 1979। जन्म का समय 6:42, जन्म स्थान है अयोध्या। अभिषेक कह रहे हैं कि काफी समय से मैं एक फ्लैट लेने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जा रही है, तो मैं अपना फ्लैट अपना मकान कब तक ले पाऊंगा और इसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए।

0: अभिषेक, आपकी कुंडली के हिसाब से संपत्ति खरीदने में अभी थोड़ा वक्त है। अप्रैल 2027 के बाद कोशिश करिएगा, मई 2027 से दिसंबर 2027 के बीच में प्रयास करने पर आप अपना फ्लैट जरूर खरीद पाएंगे, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में बनती है। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में पैसे रुपए को लेकर दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप बेवजह चिंता मत करिए, कोई इतना बड़ा मुश्किल का मामला नहीं दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए अभिषेक जी, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा।
1: मृत लोगों या फिर पूर्वजों के जो सपने हैं वो क्यों आते हैं और क्या फल देते हैं, क्या ये शुभ संकेत है या शुभ, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं।
0: जिनका देहांत हो चुका है ऐसे लोगों के सपने, या जो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, पूर्वज हैं, दूर रहते हैं, ऐसे लोगों के सपने क्या बताते हैं? देखिए, आम तौर पर मृत लोगों के जो सपने हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके सपने कुछ ना कुछ संकेत जरूर देते हैं। ये आने वाली दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा भी करते हैं और कभी कभी आपको चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में दुर्घटना हो सकती है, सतर्क रहो। व्यक्ति जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है, और जब ज्यादा सोचेंगे तो ये मेंटल प्रोजेक्शन है। उस मृत व्यक्ति के, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके बहुत सपने आते हैं, लेकिन इस तरह के सपने इंट्यूटिव नहीं होते, इस तरह के सपने नॉलेजेबल, ज्ञानवान नहीं होते, ये मन का प्रोजेक्शन है, इसीलिए इस तरह के सपनों का कोई अर्थ नहीं होता, ये मन का एक खेल है, आपका मेंटल प्रोजेक्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त मृत व्यक्ति है, वो स्वप्न के माध्यम से अपनी किसी इच्छा के बारे में संकेत देता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे सपने में मेरी दादी आई थी, वो कुछ खाने को मांग रही थी। मेरे पिता का सपना दिखा, मेरे पिता कोई कपड़ा मांग रहे थे। दरअसल उनका जो मन है ना, वो अभी मुक्त नहीं हुआ है, अतृप्त है। तो जैसे मान लिया कि कोई आपसे स्वप्न में आपके अपने परिवार का मृत व्यक्ति भोजन मांग रहा है, तो आप किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करा के प्रार्थना कर लीजिए, या कोई वस्त्र मांग रहा है, किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र का दान दे के प्रार्थना कर लीजिए। जैसे आप उसकी अतृप्त इच्छा को पूरा करेंगे, संकेत को समझ करके काम करेंगे, ऐसे सपने का दिखना बंद हो जाएगा। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के सपने आपको आते ही है ना, तो उससे डरना नहीं चाहिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसका इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करिए। अगर उसका संकेत, उसका अर्थ आप समझ करके उस हिसाब से काम करें, तो मुझे लगता है काफी बेहतर होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल।
0: तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जीवन साथी को आपकी किस्मत से लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से इस समय मुक्ति मिलेगी। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी रखें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कहते हैं कि हर सपने का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो अगर पितरों या फिर पूर्वजों के सपने आ रहे हों, लगातार स्वप्न आ रहे हों, तो उसे किस तरीके से आप डिकोड कर सकते हैं, क्या उसके मायने हैं?
0: देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप किसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं ना, लगातार विचार कर रहे हैं, वो सपने में आपको दिखेगा और ये आपका मेंटल प्रोजेक्शन है, ये कोई इंट्यूटिव सपना नहीं है। इस तरह के सपने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अचानक सपने में कि कोई मरा हुआ व्यक्ति आपको दिख गया, कोई आपके बड़े बुजुर्ग पूर्वज जिनका देहांत हो गया था वो आपको दिख गए, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि उसका अर्थ क्या है। अगर सपने में कोई एक पूर्वज दिख रहा है, एक ही व्यक्ति दिखा जिसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है, तो निश्चित रूप से वो कुछ कहना चाहता है, आपको बताना, समझाना, बचाना चाहता है। उसका संदेश समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर बहुत सारे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि घर में किसी व्यक्ति की आयु के लिए संकट आ सकता है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है, देखा भी है, समझा भी है कि जिन लोगों का अंतिम समय आ जाता है तकरीबन उसके 6-8 महीने पहले, उनको अपने बहुत सारे पूर्वज एक साथ दिखने लगते हैं या दिख जाते हैं कई बार, तो वो उस व्यक्ति के जीवन का अंतिम समय का इंडिकेशन हो सकता है या परिवार में किसी के जीवन का अंतिम समय है, इस बात की सूचना हो सकती है। अगर सपने में आप अपने पूर्वज को कुछ दे रहे हैं, सपने में, वास्तव में नहीं, सपने में आपने देखा कि आपके दादाजी जिनका देहांत हो गया था वो आए हैं, आप उनको खाना खिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाला समय आपका बेहतर नहीं है। आने वाले समय में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। अगर सपने में आपका कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा है, तब तो आप समझिए बहुत ही बढ़िया समय आने वाला है। आने वाले समय में आप चमकेंगे, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आपका पूर्वज आपको स्वप्न में किस्मत दे रहा है आपकी, जो लेने के बाद आप चमक जाएंगे। अगर स्वप्न में किसी पूर्वज के साथ, किसी मृत व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना देख रहे हैं या देख रहे हैं कि आपके दादाजी का सपना आपको आया, बड़े बीमार हैं, स्वास्थ्य काफी खराब है, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर आने वाला संकट टल गया है। देखिए, पूर्वजों का सपना, बहुत सारे पूर्वज एक साथ दिखें, तब थोड़ी चिंता की बात है। और अगर उम्र ज्यादा है, 80 हो गई, 85 हो गई, 90 हो गई, और ऐसे सपने आ रहे हैं, तो वो हो सकता है आपके आयु का अंतिम समय हो। दूसरी बात यह है कि अगर सपने में आपके पूर्वज आपको कुछ दे रहे हैं या सपने में आपके पूर्वज आते हैं, शांति से खड़े रहते हैं, चले जाते हैं, तो दरअसल वो आपको आशीर्वाद देने आते हैं, आपके कष्ट को दूर करने के लिए आते हैं, तो उसको लेकर के आपको चिंता नहीं करनी चाहिए।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें इस समय, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा निजी प्रश्न भी ये है कि बहुत से लोग कहते हैं, खास तौर पे बड़े बुजुर्ग घर के कहते हैं कि जो पितृपक्ष होता है इस दौरान कभी भी नए कपड़े, शुभ कार्य ये नहीं करना चाहिए, ये से वर्जित है। लेकिन आजकल देखिए मॉल में इतनी भीड़ लगी रहती है, लोग नहीं मानते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्या खरीदना चाहिए हमको पितृपक्ष दौरान सामान?
0: जी देखिए, बहुत सारे लोग, माता पिता अपने बच्चों को मना करते हैं कि पितृपक्ष में नया कपड़ा मत खरीदो, नया जूता मत खरीदो, कोई नई चीज मत ले आओ। कितना रिलेवेंट है, कितना सही है ये। देखिए, आपको शुरुआत में बताया कि जिन बच्चों के, जिन लड़कों के, पुरुषों के माता पिता जीवित हैं, तो उनके माता पिता पितृपक्ष के नियम का पालन करेंगे। बच्चे के माता पिता जीवित हैं उसके ऊपर पितृपक्ष का नियम अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई लड़की है, बहू है, कोई स्त्री है जिसके सास ससुर जीवित हैं, तो सास ससुर नियमों का पालन करेंगे, लड़की या बहू के ऊपर इस तरह के नियम लागू नहीं होंगे। तो पितृपक्ष में नया सामान खरीदने की मनाही नहीं है, लेकिन जो लोग पितृपक्ष का पालन कर रहे हैं, जिनको रोज तर्पण करना है, जिनको रोज नियमों का पालन करना है, ऐसे लोगों को पितृपक्ष में नई चीजें खरीदने से बचना चाहिए।
1: तो चलिए, अब समय हो गया है आज के तीसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
0: जी, अगला प्रश्न हमें अमृता जी ने लिखा है और अमृता जी हमें मेल लिखती हैं हैदराबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 2000, जन्म का समय है रात में 10:35 और जन्म का स्थान है हैदराबाद। ये कह रही हैं कि मेरे घर वाले पिछले 2-3 सालों से मेरे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा? अमृता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इतनी जल्दी शादी नहीं होगी, 26 साल के लगभग आपकी उम्र हो रही है, लेकिन अभी शादी होने में 1.5 साल का समय है। 2027 के अंत में या 2028 के शुरुआती समय में आपका विवाह हो सकता है, ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। दूसरी बात देखो ये है कि आपको जल्दबाजी में वैसे भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपकी शादी समय पे हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें, और एक मोती बनवा के, लगभग 12-14 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहनाने से काफी लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जानते हैं कि आज का अगला यानी कि चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लेकर के भेज सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से ही जान लेते हैं आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अंतिम प्रश्न हमें विराट गुप्ता ने लिखा है, और विराट गुप्ता हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 2002, जन्म का समय सुबह के 10:10, जन्म स्थान है पटना बिहार। विराट कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्या मैं उच्च पद जीवन में पा सकता हूं? विराट, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखिए, 24 साल आपकी उम्र हुई है और 27-28 साल की उम्र में आपको सफलता, 27वें के आसपास ज्यादातर आपको सफलता मिलनी चाहिए। तो आप परिश्रम करते रहिए, आपको प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में एक ठीक ठाक नौकरी अवश्य मिल जाएगी। भटकाव से, दोस्ती यारी से, संगति से, गलत खान पान से, इनसे थोड़ा बचने का प्रयास करिएगा, नहीं तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका जन्मदिन, जिनका बर्थडे 28 सितंबर को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए पंडित जी से इसके बारे में जानकारी लेते हैं।

0: जन्मदिन 28 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन और संपत्ति की स्थिति ठीक बनी रहेगी। साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान आखिर क्या है।
0: देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पितृपक्ष का समय बड़ा अशुभ होता है, बड़ा खराब समय है, सावधान रहो। क्या ऐसा होता है? क्या पितृपक्ष का समय अशुभ समय है? देखिए, पितृपक्ष का समय पितरों की कृपा पाने का समय है। इस समय अगर आप साधना करें, उपासना करें, दान करें तो आप अपनी बहुत सारी समस्या दूर कर सकते हैं। हालांकि देखिए, चातुर्मास के बीच में पितृपक्ष आता है, इसलिए इसमें नए और मांगलिक कार्य आप नहीं कर सकते। फिर भी पितृपक्ष में पूजा, उपासना, साधना, दान करना बहुत ही अच्छा है। और अगर आप पितृपक्ष में सात्विकता, पवित्रता से रहें, दान पुण्य करें तो ये समय आपके लिए बड़ा शुभ और बड़े अनुकूल परिणाम देकर जाएगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं 28 सितंबर 2026 यानी कि दिन सोमवार का शुभ पहर यानी अच्छा पहर कौन सा है।
0: दिनांक 28 सितंबर 2026 दिन सोमवार शुभ पहर का समय है। शाम को 6 बजे से 7:30 तक इस समय में जितना संभव हो अधिक से अधिक शिव मंत्र का, नमः शिवाय का जप करिएगा। आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 28 सितंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए, अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी पूजा में कौन सी चीजों का प्रयोग जरूर करें। आज की गुडलक राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। इनको पूजा में फूलों का प्रयोग जरूर। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपनी पूजा में कौन सी चीजों का प्रयोग जरूर करें। आज की गुडलक राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। इनको पूजा में फूलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका और काले कपड़ों को अगले दिन बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। और अगर काले कपड़े पहनकर नदी में नहा रहे हैं तो नहाने के बाद कपड़ा वहीं घाट पर काला वाला छोड़ दीजिएगा और घर चले आइएगा। आप जल्दी से जल्दी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे।
1: पंडित जी, हमेशा की तरह हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अपडेट रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है.
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
2: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको

0: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ग्रेटर नोएडा में इन दिनों यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जारी है। यहां पर उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों, स्थानीय खान पान, हस्तशिल्प और आधुनिक उद्योगों को एक ही मंच पर पेश किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश की खास मिठाइयों और मसालों से लेकर सजावटी सामानों की शानदार झलक भी देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं इस ट्रेड शो में क्या क्या खास है। एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ, कहीं लड्डू हैं तो कहीं पेड़े, कहीं चंद्रकला का स्टॉल लगा है तो कहीं किसी ऐसी मिठाई का जिसको देखकर ही मुंह में पानी आ सकता है और खाने के लिए जी लल जा सकता है। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा में लगे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के जायके

0: और खान पान के अनूठे सामान यहाँ पेश किए गए हैं। खास बात ये है कि मेले में घूमते हुए इन चीजों के बारे में और भी बड़ी दिलचस्प बातें पता चल रही हैं। अब कानपुर के मशहूर ठग्गू के लड्डू के बारे में ही जान लीजिए।
1: ठग्गू के लड्डू जो नाम है ये मेरे बाबा ने रखा था। वो गांधी जी के भक्त थे और गांधी जी की सभाओं में जाया करते थे और उस टाइम गांधी जी का कहना था शक्कर सफ़ेद जहर है, बिना शक्कर के लड्डू बनता नहीं है। हम आपसे आपका पैसा भी ले रहे हैं और आपका स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं। अपने अंदर झांका ठग्गू नजर आया इसलिए ठग्गू के लड्डू लिखकर टांग दिया।
2: क्या बात है। और उसी टैगलाइन के
1: साइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठगने से है बचना तो दूर का रिश्ता रखना।
0: इस बार ट्रेड शो में थीम वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन रखी गई है, तो और भी कई लाजवाब मिठाइयों के दीदार यहाँ पर हो रहे हैं जिसका आपने शायद नाम भी ना सुना हो।
2: तो यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये स्टॉल है उन्नाव की एक लोकल मिठाई है, इसका नाम कुशली है। ये नाम भी शायद आपने पहली बार सुना हो। संदीप, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये बनती कैसे है कुशली।
3: ये
4: सर बनी किससे होती है?
3: शुद्ध खोया से होता है। इसमें ड्राई फ्रूट काजू बादाम डाला जाता है, पिस्ता डाला जाता है, उसके बाद ये उस ऊपर से चीनी की लेयर कोटिंग करके तब इसको लड्डू टाइप का बनाया जाता है, गोल गोल।
2: तो ऊपर जो ये आप वाइट वाइट देख रहे हैं ये चीनी की कोटिंग है, अंदर उसके मावा है, मावे में ड्राई फ्रूट्स हैं।
0: इसी तरह और भी कई शानदार मिठाइयां इस मेले में मौजूद हैं।
2: अब इस मटकी को देखिए आप, कितनी खूबसूरती से जो पुराना एक लाल कागज हुआ करता था उससे इसको पैक किया गया है रस्सी बांध के। अब आप बताइए इस मटकी में क्या है। इस मटकी में लड्डू है और ये लड्डू हैं हरदोई के, हरदोई संडीला के आसपास यूपी में इस तरह के लड्डू बहुत बनाए जाते हैं जो कि मटके में रख कर बेचे जाते हैं। कहानी इनकी क्या है, इस मटकी का साइज ठीक वही साइज है कि यह मटकी ट्रेन के किसी डब्बे में ट्रेन के बाहर से खिड़की के अंदर आसानी से पास हो जाए, मतलब अगर कोई खरीदे तो उस खिड़की से ही इस मटकी को अंदर भेजा जा सके, यही इसको मटकी में रखने का मकसद भी था और थोड़ा सा लड्डू में सौंधापन भी आ जाए।
0: लड्डुओं को मटकी में पैक करने की वजह तो आपने जान ली, अब ये भी जान लीजिए कि ये लड्डू आखिर बाकी ऐसे प्रोडक्ट से अलग कैसे हैं।
5: सर इसमें खासकर किसी भी चीज का कोई मिलावट नहीं होता है, प्योर बेसन के बूंदी का लड्डू बनता है, उसके ऊपर से हम लोग चीनी का बूरा लगाते हैं और मोस्टली चीज़ों का यूज़ होता है, बाकी कोई प्रिजर्वेटिव चीज़ों का यूज़ नहीं होता है इसमें। इलायची दाने का स्वाद के लिए इलायची दाने का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके बाद खिला दाना जिसको हम लोग चीनी का बूरा बोल के ऊपर से लगा के प्योर बेसन की बूंदी को एकदम मैश करके उसके बाद एक लड्डू बनता है। और सबसे खास बात यह है कि इसको मिट्टी की प्याली में हम लोग पैक करते हैं जिससे इसमें मिट्टी का जो सौंधापन है वो आए और इसमें ट्रेडिशनल पैकिंग है।
0: वहीं सुल्तानपुर के ये पेड़े भी अपने आप में बेहद खास हैं क्योंकि दावा किया जाता है कि इनमें मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं होता।
6: आजकल क्या है मीठे को लेकर अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग क्या है कि मीठे की तरफ आजकल तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं तो उनको लगता है कि शुगर या तो कम होना चाहिए या कुछ शुगर फ्री हो, कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हो, तो हम लोगों ने इसको शुगर फ्री भी बनाया है, पूरी तरह से ये खजूर से बना हुआ है। इसी तरह से हम लोग आंवला से भी बनाते हैं और उससे भी हम लोग ये करते हैं कि जैसे लोगों को हर्बल टेस्ट मिल सके और उसकी मिठास मिल सके, मिठास नेचुरल हो, इसलिए हम लोग कोई चीनी का प्रयोग नहीं करते, उसका ऑथेंटिक जो मीठापन होता है वो होता है।
0: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सिर्फ खाने पीने की ही नहीं यानी बेहतरीन जायके से मन को तृप्त करने वाली और पेट भरने वाली चीजें ही नहीं हैं, बल्कि इनके साथ साथ आपका दिल खुश कर देने वाली बेहतरीन कारीगरी का भी दीदार यहां पर हो रहा है। इस स्टॉल पर पेश किए गए ये सामान देखने में मार्बल के लगते हैं, लेकिन असल में ये लकड़ी से बनाए गए हैं।
7: YouTube से सीखा, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, मज़ा आया और आज उस मुकाम में पहुंच गया कि मुझे इंडिया में तो रिकॉग्निशन मिल रही है, वर्ल्ड में भी रिकॉग्निशन मिल रही है। जी आप ये देखिए, मैंने वर्ल्ड का बिगेस्ट ईवल आई जिसे नजर बट्टू कहते हैं वो बनाया है, आप इनको दिखा।
2: वर्ल्ड का बिगेस्ट है
7: ये, वर्ल्ड का बिगेस्ट ईवल आई है जी।
2: क्या साइज है इसका?
7: ये 32 इंचज का।

0: डाया है और ये जो लोग लेते हैं इसको, क्योंकि वो नजर बट्टू आके काला टिक्का लगाना, तो ये बिकता है और ये अच्छा भी लगता है। और आप मेरे बाहर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे वो अवार्ड मिले हुए वॉचेज हैं, इनको दिखाइए जी बाहर आके। ऊपर
1: अवार्ड मिली हुई वॉचेज हैं?
0: हाँ, ये जो तीनों वॉचेज हैं इसको अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से।
1: ट्रेड शो में यूँ तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अब लुप्त होने की कगार पे हैं, और इस मंच के जरिए उन्हें बनाए रखने की, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है।
2: ट्रेड शो में आगरा से आए विकास यादव स्टोन आर्ट का काम करते हैं। मशीन और एआई के दौर में हाथों से बारीकी से की गई कारीगरी का ये अनोखा नमूना पेश कर रहे हैं।
3: कारीगर अभी कम होते जा रहे हैं, उतना नहीं था पहले, कारीगर धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, लेकिन अब कुछ समय से प्रयास किया जा रहा है कि कारीगरों को प्रोत्साहन मिले और काम बढ़े, जिससे हम लोगों का काम बढ़ा है पहले से और चल रहा है आगे।
2: यहाँ पर डेकोरेशन और सजावटी सामान के कई स्टॉल्स लगे हैं। इसके जरिए यूपी में छोटे छोटे इलाकों में शुरू हुए स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और साथ ही साथ क्षेत्रीय कलाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
4: अभी हमें 3 साल हुए हैं स्टार्ट किए हुए, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में हम अभी 1.5 साल पहले इंक्यूबेट हुए हैं, और मोस्टली हमारा सारा लिपन आर्ट से ही स्टार्ट किया था, पर अब हम और भी काफ़ी सारे आर्ट्स बनाते हैं और सेल करते हैं। हमारा मोस्टली प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, दुबई जाता है, USA जाता है।
2: इस व्यापार मेले में हैंडीक्राफ्ट्स और खानपान के सामानों के साथ साथ और भी सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ऐसे में ये मेला कारोबार और ग्लोबल मार्केट के कनेक्शन का बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर भी सामने आया है।
1: लगभग 2400 से ज्यादा देश भर के, या फिर यूं कहें कि खासकर यूपी के एग्जीबिटर्स यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लेकर पहुंचे हैं। 85 ऐसे देश हैं जिनके जो बायर्स हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, 550 से ज्यादा उनकी संख्या है। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से हर बार इंटरनेशनल ट्रेड शो के जरिए यूपी के जो बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको एक नई दिशा, नई दशा मिलती है, इस बार भी कोशिश वही है कि जो नए छोटे व्यापारी हैं उनको कम से कम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर उनके प्रोडक्ट को बाहरी देशों तक पहुँचाया जाए, उनकी तरक्की का रास्ता तय किया जाए।
2: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कोने कोने के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने का ये शानदार मौका है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के रंग में रंगने वाली दिल्ली की। अलग अलग राज्यों की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, संगीत और व्यंजनों के सांस्कृतिक केंद्र दिल्ली हाट में बंगाल की संस्कृति का उत्सव जारी है। शारदीय नवरात्रि यानी कि दुर्गा पूजा से पहले दिल्ली हाट में बंगाल प्री पूजा एक्सपो चल रहा है, जहां पारंपरिक लाल सफेद साड़ियां, विशेष कलाकृतियां और मिट्टी से बनी आभूषण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां पश्चिम बंगाल के स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। 30 सितंबर तक दिल्ली हाट जाने पर आपको बंगाल से जुड़ा हर रंग देखने को मिलेगा।

हों या धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे अवसरों पर श्रृंगार और सजनी संवरने की परंपरा का गहरा महत्व है। श्रृंगार से त्योहारों की रौनक और उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्र के दौरान सुबह के अंजलि अनुष्ठान से लेकर रात में पंडाल घूमने तक हर समय के लिए अलग और खास लुक अपनाया जाता है। इसलिए दुर्गा पूजा से पहले ही दिल्ली पर बंगाल का पारंपरिक और सांस्कृतिक रंग चढ़ने लगा है। दिल्ली हाट में बंगाल प्री पूजा एक्सपो चल रहा है, जहां बंगाल की सांस्कृतिक रौनक और पारंपरिक कला देखने लायक है। वहां की हस्तकला अपनी अनूठी संस्कृति, सुंदरता और समृद्ध परंपरा के लिए मशहूर है। इन्हीं में से एक टेराकोटा ज्वेलरी है, जिन पर होने वाले रंग भी इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल है। पूजा में परंपरा को बरकरार

0: देखने के लिए बेहद खास रानीहार है। इस मिट्टी की ज्वेलरी में दुर्गा माँ की छवि दिखना भी विशिष्ट है।
1: यहाँ पर कुछ चीजें आपको इतनी खास मिलेंगी कि आप उन्हें लेने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत खास चीज दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये इयररिंग्स हैं महिलाओं की, और देखने में आपको सिंपल सी लग सकती है, लेकिन खास बात है इनकी। क्या खास बात है इनकी? खास बात ये है कि ये मिट्टी के बने हुए हैं, और ये उस मिट्टी से बनाए गए हैं जिस मिट्टी से बंगाल में दुर्गा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। अब आप सोचिए कि इसके मायने कितने अलग हो गए हैं, खासकर तब जब आप पूजा के लिए, दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए आप शॉपिंग करने आए हो।
0: दुर्गा पूजा में लाल और सफेद रंग की साड़ी पहनने की परंपरा है, जिसे बंगाल के लोग लाल पार साड़ी भी कहते हैं, जो बंगाली संस्कृति और परंपरा का सबसे खास और पवित्र प्रतीक मानी जाती है, जिसे मटका सिल्क, कोरा सिल्क, गरद या टसर सिल्क फैब्रिक में भी चुना जा सकता है।
1: दुर्गा पूजा में जो साड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं, उनमें वाइट और रेड कलर की जो साड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है, सबसे ज़्यादा वो डिमांड में भी होती है। तो जब आप दिल्ली हाट आएंगे तो आपको यहाँ पर इस रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन की बहुत सारी वैरायटीज मिलने वाली हैं।
0: आमतौर पर दिल्ली हाट में पुरुषों के लिए कुछ खास नहीं मिलता है, लेकिन इस एक्सपो में शादी ब्याह के पारंपरिक कपड़ों के अलावा नवरात्र समेत दूसरे त्योहारों के दौरान पुरुषों के पहनने के लिए ब्रोच भी है।
2: ब्रोच है जैसे पुरुष के लिए, वो बंगाली में जो पंजाबी और कुर्ता पंजाबी बोलते हैं, उसमें त्योहार के समय ये पहन सकते हैं आप लोग।
0: नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान माँ दुर्गा के भव्य श्रृंगार की परंपरा है। ऐसे में माँ के भक्त भी सज संवर कर उनकी आराधना करते हैं और अद्भुत जोश और उत्साह से नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
0: दिल्ली NCR में आज भी छाए बादल, मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना, तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी। उत्तरकाशी में फंसे पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, रविवार को निकाले गए 121 लोग, खराब मौसम से चार धाम यात्रा अभी भी बाधित। यूपी में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, वाराणसी में गंगा घाटों तक पानी पहुंचा, तो वहीं गोपालगंज में प्रशासन अलर्ट। सेना मना रही गनर दिवस, 28 सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की हुई थी स्थापना। आर्टिलरी रेजिमेंट के नाम आजादी से लेकर अब तक सैकड़ों सम्मान। ले में लद्दाख फेस्टिवल की रौनक देखने को मिली, पहली बार महिलाओं ने हॉर्स पोलो मैच में आजमाया हाथ, महिलाओं ने दिया नारी सशक्तिकरण का संदेश। एशियन गेम्स में आज भारत अफगानिस्तान की टक्कर, कुराश में पिंकी बलहारा ने पक्का किया मेडल, भारत के पास सब तक 37 मेडल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज की मॉर्निंग डोज लेकर।
11: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन पांच खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर,
0: तो चलिए शुभ समाचार की शुरुआत बदलते मौसम के साथ करेंगे। सितंबर खत्म होने को है और मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। पिछले 2-3 दिनों से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो फिलहाल जारी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है, ऐसे में पहाड़ सफेद चांदी से चमकने लगे हैं और इससे मौसम मस्ताना हो गया है। दिल्ली तक ठंड बढ़ गई है, तो मौसम का ये मिजाज आपको आगे बताएंगे।
11: साथ ही आपको लिए चलेंगे जोधपुर, जहां पर तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा एडिशन चल रहा है। इसमें दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं, तो इसमें और क्या है खास बताएंगे आज।
0: इधर महाराष्ट्र के अकोला में बप्पा की मूर्तियों का बैंक बनाया गया। दरअसल इस साल राज्य में कम बारिश के कारण नदियों और घाटों पर पर्याप्त पानी नहीं है, ऐसे में प्रशासन ने बड़ी गणेश प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित न करने की अपील की थी, और प्रशासन की इस अपील को गणेश भक्तों ने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उसे एक सकारात्मक पहल में बदल दिया। तो ये पहल कैसे हुई कारगर, इसकी बात भी आगे होगी।
11: उधर एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है, आज भी एथलेटिक्स से लेकर क्रिकेट तक कई मुकाबले हैं। कुछ ही देर में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान से होगा। सुबह 10 बजे से भारत अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट फैंस को दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी, तो मुकाबले में कैसी रहेगी भारत की तैयारी ये भी विस्तार से आगे बताएंगे।
0: इसके अलावा आपको मॉस्को भी लिए चलेंगे, जहां पर कद्दू सिर्फ सजाए नहीं गए बल्कि पानी में भी उतारे गए हैं, और वो भी ऐसे कद्दू जिनका वजन 500 किलो तक है। किसी ने कद्दू को नाव बनाया तो किसी ने मजेदार पोशाक पहनी, आखिर ऐसा वहां क्या हुआ, पूरी बात आगे करेंगे इसी बुलेटिन में। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
11: इस एशियन गेम्स 2026 का आज नौवां दिन है। भारतीय टीम से आज भी मेडल की

0: उम्मीदें बरकरार हैं। खेल के 8वें दिन भारतीय खिलाड़ी एक्शन में रहे। स्क्वाश और एथलेटिक्स में आज मेडल की बरसात हुई। बाकी खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी अपना जलवा दिखाया। भारत ने 8वें दिन 7 मेडल जीते।
1: जोधपुर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास का आज तीसरा दिन है और इस युद्धाभ्यास में कई विदेशी विमान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें F-35, लाइटनिंग 2, राफेल, F-16, A-400M, MRTT, C-130, C-130J और KC-30A शामिल हैं। और इस दौरान मित्र देशों के जवान अपने अनुभवों को भी आपस में साझा करने वाले हैं और इस युद्धाभ्यास में 7 मित्र देश हिस्सा ले रहे हैं।
0: बुंदेलखंड की परंपराओं में शामिल मऊरानीपुर के जल विहार महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को आस्था और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। इस पारंपरिक महोत्सव का नाता पौराणिक काल से है। लोक कथाओं में भगवान श्री गुदर बादशाह को भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक रूप में पूजा जाता है।
1: हिमाचल प्रदेश में मौसम ने भी करवट ली है। लाहौल स्पीति के काजा में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमपात से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं समय स्पीति के सब जबकि शाम के समय लाहौल और मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ के फहरे गिरे और पुलिस प्रशासन ने मौसम के हालात को देखकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफर की सलाह दी।
0: बालासोर जिले से बचाए गए ओरांगुटान के 5 बच्चों को लेकर ओडिशा सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। प्रदेश सरकार ने ओरांगुटान के बच्चों की देखभाल और निगरानी के लिए कमेटी भी बनाई है और इन बच्चों की देखभाल और इनके खेलने के लिए खास कमरे बनाए गए हैं और बच्चों को फिलहाल भुवनेश्वर स्थित नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में रखा गया है।
1: स्वर साम्रागी लता मंगेशकर की आज जयंती है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को आज देशभर में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनकी 97वीं जयंती पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भव्य कलाकृति बनाई। उन्होंने इसके जरिए स्वर कोकिला को नमन किया।
0: 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई डिवोशनल ड्रामा हनुमान अंश ने धमाल मचा दिया है। फिल्म घरेलू के साथ साथ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 401 करोड़ से ज्यादा हो चुका है।
1: एशियन गेम्स में भारत और अफगानिस्तान के बीच मेंस क्रिकेट का क्वार्टर फाइनल आज सुबह 10:30 से मैच है। अय्यर की अगुवाई में टीम इंडिया ये मैच खेलेगी।
0: रूस में एक अनोखी रेस का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने विशाल कद्दूओं की रेस के मॉस्को में बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल के दौरान इस अनोखी रेस का आयोजन किया गया। लोगों ने कद्दू की नाव बनाकर रेस में हिस्सा लिया।

0: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करते हैं बदलते बदलते मौसम के साथ। सितंबर खत्म होने को है और मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। पिछले 2-3 दिनों से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है जो फिलहाल जारी है।
1: खासतौर से हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में मौसम पहली बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चांदी सा चमकने लगा, तो वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के साथ ही उत्तरकाशी में भी बारिश और बर्फबारी से माहौल काफी सर्द हो गया है। दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अचानक मौसम ने हिमालय क्षेत्र में यू टर्न लिया, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन आपको पहले ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में खासकर लाहौल स्पीति की तस्वीर दिखाते हैं।
0: आपको बता दें, तस्वीरें आपके सामने हैं। लाहौल स्पीति, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और उत्तरकाशी में हो रही बर्फबारी की ये सर्द तस्वीरें, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदानी इलाकों में बदले बदले मौसम क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो ये 7 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं मौसम किस कदर बदला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जोरदार बर्फबारी हुई, तो वहीं काजापिन घाटी और शिंकुला दर्रे में भी बर्फबारी की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं।
1: ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौसम ने यू टर्न ले लिया है और बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी अब पहाड़ी इलाकों में पहुंच भी रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मौसम का तेवर बदला तो काजा, चीचम, पिन घाटी, लांगजा समेत आसपास ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह सुबह बर्फबारी हुई तो देखते ही देखते इसने आसपास के ऊंचे क्षेत्रों को भी अपने आगोश में ले लिया।

0: ने तापमान गिरा दिया। पूरी स्पीति घाटी का माहौल सर्द हो गया है। वहीं लाहौल घाटी में तो बर्फबारी कुछ दिन पहले से ही हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 29 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो तापमान और गिरेगा। इसलिए एहतियातन स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी अचानक मौसम बदला, जिसके बाद से ऊंचे क्षेत्रों में खूब बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में लगातार बारिश ने तापमान काफी गिरा दिया है। यहां गोमुख ट्रैक के चीड़वासा, भोजवासा और गोमुख क्षेत्र में बर्फबारी हुई है, तो वहीं भारत चीन सीमा से लगे निलांग जादुंग क्षेत्र में भी बर्फबारी की खबर है। यकीनन मौसम खराब है, इसलिए यहां भी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल स्थगित है। तो वहीं इसी राज्य के चमोली जिले में बना हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी दिनों बर्फबारी से गुलजार है। जिधर नजर डालिए वहां बर्फ का राज है। मानो प्रकृति ने इस पूरे इलाके का ही अपने हाथों से सफेद श्रृंगार किया हो, लेकिन इस बर्फीले मौसम पर आस्था भारी है। श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। चमोली जिले में दरअसल शुक्रवार देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसे में भारत चीन सीमा से लेकर बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। कई जगह पर तो एक फीट से ज्यादा बर्फ जमा है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश ने तापमान गिराया हुआ है। हालांकि मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए अस्थायी तौर पर चारधाम यात्रा रुकी हुई है। बावजूद इसके भगवान बद्री विशाल के आंगन में आस्था पार है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दौरान कई श्रद्धालु पितृतर्पण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में ठंडे मौसम की ये मुश्किलें आस्था के आड़े नहीं आ रही। दरअसल मौसम का ये चक्र पलटने का असल जिम्मेदार देश के मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस भारी बारिश की वजह से लो प्रेशर बेल्ट क्षेत्र बना, यानी जिस क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव कम होता है। इस लो प्रेशर बेल्ट ने ही अब पहाड़ी राज्यों और हिमालय क्षेत्रों का रुख किया हुआ है, जिससे उम्मीद है कि पहाड़ी राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का माहौल बना रहेगा। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बीच गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। गंगोत्री के नजदीकी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी होने से समूची गंगोत्री घाटी शीतलहर की चपेट में आ चुकी है।
2: तो वहीं गंगोत्री धाम की ऊंची चोटियों गोमुख और भारत और चीन की सीमा से सटे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री धाम के आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ सप्तऋषि कुंड, बंदरपुंच और गरुड़ गंगा क्षेत्र में भी बर्फबारी हुई है। इसी बीच उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को हिना और डोबाटा होल्डिंग प्वाइंट पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
1: साथ ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र और स्मार्ट कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है।
3: मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था वो बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे विभिन्न स्थानों पर बंद हुए हैं। हालांकि मार्ग खोलने की कवायद लगातार जारी है। वहीं अगर गंगोत्री धाम की बात करें तो गंगोत्री धाम से लगे हुए जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं पूरी तरह से बर्फ से सराबोर हो गए हैं, या कहा जाए कि मौसम की पहली बर्फबारी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो वहां भी जो है सप्तऋषि कुंड और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते निचले इलाकों में पूरी तरह से ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं बारिश के नजारे की किस तरह से यमुनोत्री धाम के जो अहम पड़ाव है बड़कोट में भी बारिश का कहर लगातार दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यात्रियों के जो वाहनों के जो चक्के हैं वो थमे हुए हैं। यात्री सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मौसम कब साफ होगा और कब उन्हें धामों की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी।
2: तो वहीं पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है, खासकर

0: ट्रैकिंग वाले इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें उत्तरकाशी की तो यहाँ पर 136 पर्वतारोही और ट्रैकर्स ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फंसे हुए हैं।
1: और इसी के साथ प्रशासन के मुताबिक सभी सुरक्षित भी हैं और संबंधित टीमें से संपर्क लगातार बनाए रखा जा रहा है। खराब मौसम के कारण इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नीचे लौटने वाले मार्ग पर आवाजाही फिलहाल बेहद ही चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी के चलते राहत और वापसी अभियानों में भी मौसम में बड़ी चुनौती बना हुआ है।
0: लेकिन राहत की खबर यह है कि इन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है, रेस्क्यू के लिए काम किया जा रहा है। जो लोग यहां पर, जो ट्रैकर्स सैलानी यहां पर फंस चुके हैं, उन्हें निकालने के लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है। मौसम लगातार बिगड़ रहा है, बारिश भी हो रही है और ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने के लिए भी अपील की जा रही है।
1: तो सभी लोग सुरक्षित हैं और संबंधित टीमें लगातार संपर्क उन लोगों से बनाए रखे हुए हैं। खराब मौसम है और इसी के कारण ये ऊंचाई वाले क्षेत्र ऐसे हैं कि नीचे लौटने वाले मार्ग पर आवाजाही काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
2: इंडिया हाइट्स से ट्रैकिंग करने के लिए दो दिन पहले हम लोग 22 लोग यहां से ऊपर गौमुख के लिए निकले, बट हम भोजपासा में रुके दो दिन के लिए और बहुत बर्फबारी की वजह से आज हम वापस आना पड़ा। सब सही सलामत है और गंगोत्री नेशनल पार्क के सारे कार्यकर्ता ने हर एक थोड़े थोड़े सेक्टर पे हमारा बहुत सहायता किया और उसी वजह से हमने बहुत बहुत सकुशल सब नीचा है।
1: देखिये, लेह में 3 दिन का लद्दाख महोत्सव 2026 शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया। इस महोत्सव में देश भर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, तो स्थानीय कलाकार अपनी कला से लद्दाख की कला और संस्कृति की झलक पेश कर रहे हैं।

0: लद्दाख अपने बर्फीली चोटियों, नीले पानी की झीलों और अद्भुत रेगिस्तानी वादियों के साथ धरती पर स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। नुब्रा घाटी के ठंडे रेगिस्तान में दो कुबड़ वाले ऊँटों की सवारी हो या खरदुम लापास की सड़कें दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है, जो बादलों के ऊपर होने का एहसास कराती है। शांति स्तूप और थिक्से जैसे प्राचीन बौद्ध मठ आध्यात्मिक शांति और खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। लद्दाख की संस्कृति और परंपरा के रंगों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हर साल लद्दाख फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 26 से 28 सितंबर तक 3 दिन के उत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें देश के अलग अलग कोने से आए कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि ये फेस्टिवल सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, जीवंत कला और बेमिसाल जज्बे का जश्न है।
1: महोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, जीवंत कला और आप सभी के बेमिसाल जज्बे का जश्न है। लद्दाख का मतलब सिर्फ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और नीचे झील नहीं है। लद्दाख इन बाउंड्रीज से कहीं अधिक आगे है। यह साहस, शांति, अध्यात्म और एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता प्रतीक। सिंधु नदी के पवित्र लहरों से लेकर इन बर्फीली चोटियों तक लद्दाख के कणकण में एक अनूठी ऊर्जा बहती है।
0: इस साल महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विस्तार दिया गया है। उद्घाटन समारोह में शिलोंग चेंबर कायर ग्रुप ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 14 सदस्य विशेष सांस्कृतिक दल को आमंत्रित किया गया है। ये दल सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत अगले 3 दिनों में अपनी प्रस्तुतियां देगा। इसके जरिए लद्दाख के लोगों और पर्यटकों को अंडमान निकोबार की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। महोत्सव में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के सहयोग से एक विशेष फ्यूजन कॉन्सर्ट भी आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के कलाकारों को मिलाकर 47 सदस्य दल तैयार किए गए हैं। कलाकार विभिन्न उत्तर भारतीय संस्कृति और संगीत परंपराओं का संगम पेश करेंगे। लद्दाख फेस्टिवल में लद्दाख के सभी जिलों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को जगह देने की कोशिश की गई है। साथ ही उभरते और नई पीढ़ी के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराया गया है। महोत्सव का उद्देश्य लद्दाख की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को सामने लाने के साथ देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विविधता से लोगों को परिचित कराना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब बात करते हैं पितृपक्ष की। सनातनी परंपरा में ये मान्यता है कि मनुष्यों की सांसों में जिनका अंश है, उसके संस्कारों में जिनकी छाप होती है और उसके जीवन की नींव में जिनका योगदान होता है, पितृपक्ष यानी श्राद्ध उन्हीं पूर्वजों को याद करने का अवसर होता है। और इसमें परिवारजन अपने पुरखों की मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण कराते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यता कहती है कि जब श्री राम 14 सालों के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ के लिए सबसे पहला पिंडदान प्रयागराज के संगम तट पर ही किया था। और तभी से पिंडदान परंपरा का से पहले प्रयागराज, फिर काशी और आखिर में गया जी में कराने की परंपरा शुरू हुई। तो चलिए आपको दिखाते हैं संगम नगरी के साथ काशी और गया जी में श्राद्ध के दौरान कैसे चहल पहल बनी हुई है।

0: सनातन परंपरा में 15 दिन का पितृपक्ष वो पावन समय है जब हम अपनी जड़ों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति आभार जताते हुए उस अदृश्य रिश्ते को नमन करते हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्माओं को जोड़कर रखता है। यही कारण है कि इन दिनों हर पावन नदी घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ खासकर मोक्ष भूमि पर तो पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान की प्राचीन परंपरा को निभा रही है। तर्पण और पिंडदान की तस्वीरें दर्शा रही हैं कि समय भले ही पीढ़ियों को आगे बढ़ा दे लेकिन अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता कभी पुरानी नहीं होती। काशी के पिशाच मोचन कुंड पर भी पितृपक्ष के दौरान खूब चहल पहल है।
1: पितरों का यही मानना है, हम लोगों का पूर्वज बताए हैं या गुरु पुरोहित बता रहे हैं कि अपने माता पिता का पितृदान करने से उनकी मुक्ति होती है, वैकुंठ धाम को प्रवेश कर जाते हैं, 84 लाख जोनी से भटकने से बच जाते हैं। यही मान्यता हम लोगों को बताया गया, इसी के आधार पर हम लोग ये सब पूजा पाठ करने आए हैं।
0: पितृपक्ष में जब हम श्रद्धा के साथ अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं रह जाता बल्कि पूर्वजों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने के साथ ही आभार और अपनी मूल से जुड़ने की एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है।
2: बहुत दूर देश का विदेश के भी लोग यहाँ आते हैं क्योंकि काशी बहुत लाखों की भीड़ होती है जी।
0: अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता को प्रयागराज के संगम तट पर इकट्ठा हुए ये लोग बड़े ही आस्था के साथ निभा रहे हैं।
3: यहाँ पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं या उनकी जो पुण्य आत्माएं हैं वो तृप्त हो जाए।
4: मतलब जिस तरीके से मृत्यु हुई है अकाल मृत्यु किसी तरीके से वो सभी जो है करें और उनके अच्छे नेक कामों के लिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके काम करके और उनका जीवन सफल बनाएं और उनका आशीर्वाद मिले जो भविष्य में भी हमको अगले जन्म में भी अगर मिले तो माता पिता ऐसे ही मिले।
0: प्रयागराज में पितृकर्म की ये परंपरा आज भी यहाँ का पंडित और महंत समाज जीवित रखे हुए है।
5: इस 15 दिवसीय पितृपक्ष में पितरों का आगमन होता है और वो आते हैं, देखते हैं हम सभी को कि हम सभी ने अपने दायित्वों को किस प्रकार निभाया है, उनके दिए हुए सम्मान, उनके दिया हुआ नाम आज हम सब लेकर जी रहे हैं। तो इस 15 दिन आप सभी अपने पितरों को याद करें।
0: जाहिर है इंसान का जीवन केवल उसके कर्मों की कहानी भर नहीं है बल्कि उन पीढ़ियों की विरासत भी है जो हमसे पहले इस धरती पर आई और पितृपक्ष सदियों से उसी विरासत को नमन करने का अवसर रहा है। तभी तो गया जी के देवघाट पर पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मौसमी अड़चन भी श्रद्धालुओं की आस्था के आड़े नहीं आई।
6: अब तो वो तो करना ही होगा, बारिश हो क्या आंधी हो कि तूफान हो तो करना ही होगा, माँ बाबू जी के लिए तो उतना करेंगे।
7: बारिश में भी पिंडदान कर रहा है,
8: महा आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है जैसे वो साथ है हमारे।
7: बारिश
8: तो आनंद ही दे रहा है,
9: बहुत अच्छा है ये तो, और देवताओं की आशीर्वाद है जो अमृत तुल्य हमारे ऊपर बरस रहा है।
0: धौलपुर का मचकुंड सरोवर भी पितृपक्ष की उपयोगिता उसके पारंपरिक और आध्यात्मिक महत्व को इन दिनों दर्शा रहा है। परंपरा और अध्यात्म से जुड़ी श्राद्ध की ये तमाम तस्वीरें कुछ ऐसे ही कभी प्रयागराज, कभी काशी तो कभी धौलपुर और गया जैसी पावन भूमि को परंपराओं के जल से सींचती आ रही हैं। राजस्थान के धौलपुर से उमेश मिश्रा, गया से पंकज कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: चलिए बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए विजेताओं का कैसे हुआ स्वागत।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।

0: एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, कल यानी कि 8वें दिन भारत ने 7 मेडल्स जीते और अब भारत के कुल 37 मेडल्स हो गए हैं। इनमें 4 गोल्ड, 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। आपको बता दें, इसी के साथ भारत मेडल टैली में 12वें स्थान पर पहुंच चुका है और कल मेन्स हाई जम्प में सर्वेश कुशारे ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। उन्होंने 2.25 मीटर की बेस्ट जम्प की थी। तो वहीं आपको बता दें, एनसी सोजन ने महिला लॉन्ग जम्प में 6.53 मीटर की जम्प लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया और तेजस्विन शंकर ने डिकैथलॉन में 7,934 अंकों के साथ ब्रॉन्ज पर कब्जा कर लिया। तो वहीं पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल ट्रेज में पर्सनल बेस्ट के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। स्क्वाश की बात करें तो यहां पर भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। अभय सिंह ने और अनाहत सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल किया। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में 23.2 सेकेंड के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।
1: तो आज शूटिंग में मनु भाकर, बॉक्सिंग में लवलीना और एथलेटिक्स में अविनाश साबले पर फैंस की निगाहें रहेंगी। वहीं जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की गैर मौजूदगी में कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट यशवीर सिंह और रोहित यादव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो भारत के इन युवा सितारों को श्रीलंका के रुमेश थरंगा और पाकिस्तान के अरशद नदीम से कड़ी चुनौती भी मिल सकती है। भारत को कबड्डी में डबल गोल्ड जिताकर लौटे चैंपियंस का दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने दिल खोलकर स्वागत भी किया। उसकी तस्वीरें सामने आई, खिलाड़ी बेहद ही उत्साहित दिखे और इनका मानना है कि सफलता का ये सफर लंबा चलेगा और फैंस को जश्न मनाने के मौके मिलते रहेंगे।
2: ये खिले चेहरे ये खुशी साफ बयां कर रही है कि ये युवा सितारे एशियन गेम्स में कामयाबी की सुनहरी चमक बिखेर कर घर लौटे हैं। फाइनल में ईरान को 40-34 से चित कर गोल्ड पर कब्जा कर लौटी पुरुष टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने दिल खोल कर स्वागत किया। इस दौरान इन चैंपियंस का जोश भी आसमान छू रहा था।
3: प्राउड क्यों, बात कुछ हो ही नहीं सकती यार। लगना तो ऐसा है कि अभी फील ही नहीं हो रहा कि हम उधर जीत के आए, लेकिन फील तो इधर हो रहा है जो हमारा वेलकम हो रहा है, इंडिया वालों को वेलकम हो रहा है गोल्ड मेडल के साथ।
4: भारत का नोवा गोल्ड है,
3: भाई कहना तो यही चाहूंगा कि कुछ बयान नहीं कर सकता, खुशी अपने देशवासियों को देख के, अपने देश में पैर रख के जो हो रहा है।
2: कबड्डी में एशियन गेम्स में भारत को डबल गोल्ड हासिल हुआ है। भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने ही एशियन गेम्स में भारत का नाम रोशन किया है। एशियन गेम्स में शुरू से ही पुरुष टीम का दमखम रहा है। अब तक हुए 10 एशियन गेम्स में पुरुष टीम ने 9 खिताब अपने नाम किए हैं। इस बार कबड्डी के मैदान पर महिला टीम ने भी गोल्ड जीत कर ऐलान कर दिया है कि कोई नहीं है टक्कर में, हर तमगा है टीम इंडिया की मुट्ठी में।
5: अच्छा लग रहा है, हमारा गोल्ड आया है, मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है, हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी टीम में बॉयज का भी गर्ल्स का भी गोल्ड आया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहना चाहूंगी आगे भी गोल्ड लेके आएंगे बस।
6: हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि सबकी ब्लेसिंग हमारे साथ रही है और हमने पूरी मेहनत करी थी इस चीज के लिए और हम आखिरकार ये मुकाम हासिल कर पाए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जहाँ से शुरू हुई है चीजें वो चीज अचीव होती है, तो कबड्डी यहीं से शुरू हुई है, तो हमें पूरा विश्वास था कि लड़के भी जीतेंगे और लड़कियां भी अच्छा करेगी और गोल्ड लेके आएगी।
2: कबड्डी प्लेयर्स के साथ ही शूटिंग में जलवा दिखाकर लौटे भारतीय एथलेटिक्स का फैंस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों की थाप और फूल मालाओं से स्वागत किया। ये जोश, ये उत्साह बता रहा है कि जश्न का सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है और फैंस को अभी सेलिब्रेशन के कई मौके मिलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: भारत ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 8 विकेट से हरा दिया है। 3 वनडे मैच की सीरीज में अब भारत को 1-0 से बढ़त हासिल हुई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस शानदार जीत के हीरो रहे विराट कोहली, शुभमन गिल और कुलदीप यादव।
0: आपको बता दें, इस तिकड़ी के शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने जीत के साथ सीरीज का आगाज किया है। देखिए वेस्टइंडीज

0: वही हुआ जिसकी हर क्रिकेट फैन को उम्मीद थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ त्रिवेंद्रम में टीम इंडिया ने जीत के साथ सीरीज का शंखनाद किया है। सोने पर सुहागा ये कि फैंस को इस मैच में विंटेज विराट कोहली का जलवा देखने को मिला। विराट ने महज 88 गेंदों पर 139 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 10 चौके और 9 छक्के लगाए। ये विराट का वनडे में 55वां शतक था। इस रिकॉर्ड तोड़ पारी के साथ ही विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। महज 303 पारियों में 15,000 रन का अंबार खड़ा कर विराट ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 377 पारियों में ये कीर्तिमान हासिल किया था। विराट का कहना है कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड उनके लिए मायने नहीं रखता, टीम का लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना है और हर कदम उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जाहिर है त्रिवेंद्रम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में फैंस को जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए। जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंदों में ये लक्ष्य भेद कर मुकाबला अपने नाम किया। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 8 विकेट से मिली इस जीत में कप्तान शुभमन गिल की भी अहम भूमिका रही। गिल ने 108 गेंदों पर 110 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन इस पाटा विकेट पर गेंदबाजी के मोर्चे पर दम दिखाया फिरकीबाज कुलदीप यादव ने। कुलदीप ने 10 ओवर में 40 रन खर्च कर 4 विकेट झटके और एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस शानदार प्रदर्शन के बाद आम दर्शक ही नहीं, सियासत की दुनिया के सूरमा भी कुलदीप यादव की फिरकी के कायल हो गए।
1: I think that Kuldeep bowled very well. I think he's the man of the match for me because there's nothing in the wicket for the bowlers. You could see that the West Indies tried, they could get another flat wicket. There wasn't much seam movement for the pacemen, there was not much turn. So Kuldeep's command of line and flight and so on made all the difference. And he was able to hold back the progress of the West Indies batsmen after they'd got off to a fantastic start. Their start was so strong that they were on course for a score in the high 300s, maybe even 400.
0: West Indies ke khilaf is run chase mein chase master Virat Kohli पूरी इनिंग्स में छाए रहे। उन्होंने 42वीं गेंद की तीसरी और फिर चौथी गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर बड़ी आसानी से ये जीत दिला दी। इसके अलावा कुलदीप यादव की फिरकी ने भी विरोधी बल्लेबाजों को खूब नचाया और कप्तान शुभमन गिल भी रंग में दिखे। यकीनन ये वनडे फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा एडिशन चल रहा है। इसमें दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमान अपनी ताकत को प्रदर्शित कर रहे हैं। 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। और खास बात यह है कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भी हिस्सा ले रहे हैं।

0: 8 देश, 80 आधुनिक एयरक्राफ्ट और 1500 जवान, ये है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की ताकत, जिसका प्रदर्शन इन दिनों जोधपुर के आसमान में शुरू हो चुका है। इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा 7 मित्र देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान अलग अलग देशों के ये लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरकर रणनीतिक तालमेल और हवाई युद्ध की बारीकियों को आपस में साझा कर रहे हैं, ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जैगवार जैसे लड़ाकू विमानों को उतारा गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हवा में ही ईंधन भरने वाले एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि इस साल के तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना का 5वीं जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट F-35 आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो पहली बार इस मेगा एयर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। यही वजह है कि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी जोधपुर पहुंचे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना की भागीदारी को लेकर खुशी जाहिर की है। ये एक्सरसाइज 12 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान एक साथ गरजते लड़ाकू विमान केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन भर नहीं है, बल्कि दुनिया भर की प्रमुख वायुसेनाओं के साथ भारत के मजबूत होते रक्षा संबंधों की एक बुलंद तस्वीर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती है और इस मौके पर पूरे उड़ीसा की पुरी में खास स्टैंड सैंड आर्ट तैयार किया गया है। आपको बता दें, इससे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ पर कलाकारों ने सैंड आर्ट एनिमेशन में लता मंगेशकर की तस्वीर की रेत पर इसे उकेरा है। संगीत की दुनिया में उनके योगदान को याद करते हुए ये अनोखी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। फिल्म हनुमान अंश की कमाई ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म हनुमान अंश ने दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने रिलीज के 52वें दिन ये मुकाम हासिल किया है और खास बात यह है कि शुरुआती दौर में धीमी रफ्तार के बाद भी फिल्म की कमाई में लगातार तेजी देखने को मिली है और अब भी फिल्म सिनेमाघरों में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। देश की राजधानी दिल्ली में शहीद आजम भगत सिंह पर एक मिनी म्यूजियम बनाया गया है, जहां पर भगत सिंह के जीवन, विचारों और उनके साथ देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों की कहानी को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है। और साथ ही म्यूजियम की दीवारों पर भगत सिंह के विचार और इनकलाब जिंदाबाद जैसे उनके क्रांतिकारी नारों को लिखा भी गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भगत सिंह के संघर्ष, विचारों और देश के लिए उनके बलिदान से परिचित कराना है।

0: शहीद आजम भगत सिंह एक ऐसा नाम जिनकी आज भी आवाज और विचार आज के हमारे युवाओं में जोश भरते हैं, और उनके दिए गए बलिदान, उनके जो विचार थे, उनका जो त्याग था, उसको याद करते हुए आज दिल्ली में जो है एक ऐसा ही मिनी म्यूजियम जो है वो खोला गया है। उनके बलिदानों को, देश के लिए जो उन्होंने दिए, उसको याद करते हुए दिल्ली में आज आयोजित हुआ है चलो भगत सिंह के साथ। और इस कार्यक्रम के दौरान जो है उनकी विरासत को एक अलग ही अंदाज में लोगों के सामने, आज के युवाओं के सामने जो है वो लाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो ये आप मिनी म्यूजियम देख रहे हैं, आपको जगह जगह दीवारों में जो है भगत सिंह के कहे शब्द जो है वो नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे म्यूजियम को जो है वो तैयार किया गया है। उनके जो जीवन है, उनके जो विचार है, और उनके साथ देश के लिए जो कुर्बानी देने वाले शहीद है, उनकी कहानी भी आपको जो है इन तस्वीरों में जो है वो नजर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हर एक जो उनके साथ के जो शहीद थे, जो उनके थे, उनके जो साथी थे, उनकी जो तस्वीरें हैं, और कब उनको जो है उनकी जो कुर्बानी है, वो एक एक चीज़ जो है आपको इन तस्वीरों में जो है वो नज़र आने वाली है। तस्वीरें आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये वो अदालत है जहाँ पर जो है उस समय जो है भगत सिंह और उनके साथियों के जो मुकदमे हैं वो यहाँ पर जो है सुने जाते थे, सारी चीज़ें यहाँ होती थी, तो उसको भी दर्शाया जो है यहाँ पर गया है। इस पूरे म्यूजियम की बात करें तो भगत सिंह के साथ जो है यहाँ पर राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाएँ भी जो है वो स्थापित की गई है, और जो इन तीनों की क्रांतिकारियां जो है उनके जो बलिदान थे, वो जो देश के प्रति था, वो सब चीजें जो है उनके योगदान की जो है याद दिलाता है।
1: मॉस्को में कद्दू सिर्फ सजाए नहीं गए बल्कि पानी में उतारे गए, वो भी ऐसे कद्दू जिनका वजन 500 किलो तक का है। किसी ने कद्दू को नाव बनाया, किसी ने पहनी मजेदार पोशाक, तो फिर शुरू हुई तालाब में जॉइंट पंपकिन रेस, और रूस में पहली बार हुए इस अनोखे इवेंट में क्या कुछ खास हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए।
2: मॉस्को में सितंबर की ठंडी हवा, तालाब का शांत पानी, और इस खूबसूरत माहौल में यहाँ चल रहा है बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल। दिलचस्प ये कि ये नावें लकड़ी या फाइबर की नहीं, सैकड़ों किलो वजनी विशाल कद्दू से बनी हैं। बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल में विशाल कद्दूओं को अंदर से खोखला किया गया, फिर उन्हें सजाकर बनाई गई है ये खूबसूरत नाव। कद्दू जितना बड़ा, चुनौती भी उतनी ही बड़ी, कहीं चेतावनी का बोर्ड तो कहीं पूरी तैयारी के साथ रेस में उतरने का जोश। किसी के लिए ये सालों की मेहनत का नतीजा है, तो किसी के लिए बस एक ऐसा मौका जिसमें मस्ती भी है और मुकाबला भी। 400 से 500 किलो तक के कद्दू जब पानी में उतरे तो तालाब देखते ही देखते बन गया पंपकिन रेस ट्रैक, और फिर शुरू हुई अनोखी सवारी। कद्दू के अंदर बैठे प्रतियोगी पैडल के सहारे आगे बढ़ते रहे, किसी ने चुना डरावना लुक, तो किसी ने बच्चों के पसंदीदा किरदारों की पोशाक। किनारे खड़े दर्शकों के लिए भी ये किसी तमाशे से कम नहीं था, पानी पर तैरते विशाल कद्दू और उनके अंदर बैठे रंग बिरंगे किरदार। ये सिर्फ रेस नहीं, विशाल कद्दू उगाने वालों के लिए अपनी मेहनत को नए अंदाज में पेश करने का मौका भी है। तालाब में उतरते ही इन कद्दूओं ने पूरे फेस्टिवल का रंग ही बदल दिया, और अब बारी थी इसे मुमकिन बनाने वाले आयोजक की कहानी सुनने की। रूस के 75 इलाकों से आए बागवान 200 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सब्जियां, लेकिन महफिल लूट गए ये जायंट कद्दू, जो कद्दू खेतों में उगते हैं। मॉस्को के तालाब में वही नाव बनकर तैरते नजर आए, किसी ने इन्हें सजाया, किसी ने इन्हें बैठकर रेस लगाई, और किसी ने अपनी बचपन की पोशाक पहनकर इस पल को और खास बना दिया। कहने को ये कद्दू हैं, लेकिन मॉस्को में इनका अंदाज बिल्कुल अलग था, जहां कद्दू सिर्फ सब्जी नहीं रहा बल्कि नाव भी बना और रेस का अहम किरदार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए बात कर लेते हैं इंस्टा स्टोरी की, आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए कीकू शारदा की फनी इंस्टा स्टोरी।
3: डिप्रेशन
4: के कमाया जिस शान से, उसी शान से उड़ाया नहीं,
3: नोटों में हमने कभी रबड़ नहीं बांधी।
4: तो है भैया रबड़ कहीं नहीं बांधी यार,
3: अब एक नोट में कहाँ रबड़ बांधी।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
5: देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: क्या गरुण पुराण का पाठ सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता? क्या गरुण पुराण पढ़ने से मन में डर पैदा होता है? गरुण पुराण की जो बातें हैं वो कितनी सच हैं? क्या है गरुण पुराण का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
16: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
5: दिल्ली NCR में आज भी छाए बादल, मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना, तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी। उधर काशी में फंसे पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, रविवार को निकाले गए 121 लोग, खराब मौसम से चार धाम यात्रा अभी भी बाधित। यूपी में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, वाराणसी में गंगा घाटों तक पानी, गोपालगंज में प्रशासन अलर्ट।
17: सुंदर भी स्मार्ट भी एटम वर्क BLDC फैंस।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम एक बड़े अद्भुत पुराण के बारे में बात करेंगे जिसका पाठ आम तौर पर किसी की मृत्यु हो जाने के दौरान किया जाता है। आज बात करेंगे गरुड़ पुराण की और इसके रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 सितंबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शाम को 7:13 तक, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र प्रातः 10:16 तक, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:16 तक, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 28 सितंबर 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण के बारे में। गरुड़ पुराण है क्या और इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु के बारे में, यमलोक यात्रा के बारे में, नरक योनियों के बारे में और सदगति के बारे में अनेक रहस्य वाले और गूढ़ सवाल पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत की और उन्हें इन तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए। गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर इसी गरुड़ पुराण में संकलित किए गए हैं, गरुड़ पुराण में लिखे गए हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का नियम है, लोगों के घर में किसी का देहांत हो जाने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इस पुराण के उत्तरखंड में प्रकल्प का वर्णन है, प्रकल्प के बारे में बताया गया है। इसको सुनने से या पढ़ने से या चिंतन करने से सदगति की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। गरुण पुराण पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, यात्रा के योग बनते हैं इस समय, शिक्षा में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होती जाएंगी, नौकरी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो गरुण पुराण में नरक, योनियों, प्राणियों, जीवन और मुक्ति के बारे में बताया गया है। तो गरुण पुराण में किस प्रकार के नरक और गतियों के बारे में बताया गया है और जो बताया गया है क्या वो सही है? देखिए, गरुण पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले अलग अलग नरकों के बारे में बताया गया है। गरुण पुराण में जो नरक बताए गए हैं कि तेल में तलना, शूल पर चलना, अग्नि में फेंकना, ये मन की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। ये प्रतीकात्मक हैं, ये वास्तविक नहीं हैं। आपके मन को अपने कर्मों के अनुसार कैसा फल भुगतना होगा इस बारे में गरुण पुराण एक इशारा करता है, लेकिन वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। हालांकि ये बात जरूर है कि आपके कर्मों के परिणाम वास्तविक जीवन में आपको वैसे भुगतने पड़ते हैं, मानसिक रूप से आपको उतनी पीड़ा या उतना कष्ट उठाना पड़ता है। और जो कष्ट उठाना पड़ता है आपके मन को अपने कर्मों के फल स्वरूप, वो परिणाम वास्तविक और मानसिक होते हैं। अब ये जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को मुक्ति की तरफ, सदगति की तरफ ले जाती हैं। तुलसी पत्र यानी तुलसी का पत्ता और कुश घास, इसका प्रयोग व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। संस्कारों को शुद्ध रखने से और भक्ति करने से व्यक्ति के दुष्कर्म के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच जाता है। जल का दान करना और दूध का दान करना भी व्यक्ति के कल्याण में सहायता करता है। अगर आप अपने गुरु की शरण में हैं, आपके गुरु की कृपा है आपके ऊपर, तो आपके दंड शून्य होंगे और आप सदगति की तरफ जाएंगे। यानी कर्म बंधन को काटने के लिए, दुष्परिणामों से बचने के लिए आपको भक्ति के मार्ग पर चलना होगा। गरुड़ पुराण पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि आराम के मूड में रहेंगे, धन की दशा उत्तम रहेगी, काम टालने से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि काम की अधिकता से परेशानी होगी, प्रिय जनों से वाद विवाद हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि नौकरी में परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, आपके ग्रहों से आपके जीवन साथी को लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा।

Uga. वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी रखें, शिव जी को जल अर्पित करने से दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सामान्यतः आपने घर में देखा होगा कि लोग रामायण पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, लेकिन गरुण पुराण रोज नहीं पढ़ते या सामान्यतः नहीं पढ़ते। किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंडित जी आकर के घर के लोगों को गरुण पुराण पढ़ करके सुनाते हैं। तो क्या गरुण पुराण केवल किसी की मृत्यु के समय ही पढ़ना चाहिए? देखिए, गरुण पुराण का पाठ अगर आप उसके भाव को समझ करके करें तो सर्वोत्तम होगा। आत्मा और मन अलग अलग चीजें हैं। कष्ट, सुख या दुख आपके मन को होता है, आत्मा निष्प्रिय रहती है, आत्मा केवल उसको देखती है, आत्मा के ऊपर कोई छाया, कोई परछाई नहीं पड़ती। आप गरुण पुराण का पाठ कभी भी कर सकते हैं। वैसे अगर महीने में एक बार अमावस्या पर आप गरुण पुराण का पाठ अपने पूर्वजों के लिए करें तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। और अगर गरुण पुराण का भाव आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी वास्तविकता क्या है, तो आप डरेंगे नहीं, आपको भय नहीं लगेगा। अगर आप गरुण पुराण को गहराई से जानना चाहते हैं तो गरुण पुराण के साथ भगवत गीता का पाठ जरूर करिएगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना, वासांसि जीर्णा न्यथा विहाय नवानि जीर्णा तिनरो पराणी, यानी जिस तरह आत्मा अपने शरीर बदलती है, जैसे व्यक्ति अपना शरीर बदलता है, यानी आत्मा पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। आत्मा को न जला सकते हैं, न काट सकते हैं, न सुखा सकते हैं। तो गरुण पुराण में कहा गया सजा दी जाती, सजा देते किसको है जब आत्मा के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। सजा मिलती है, सजा भोगता है आपका मन जो आत्मा के साथ जुड़ा होता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, काम लेकिन बढ़ा रहेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और खुद को ज्ञान देने के लिए
खुद मोह के जाल से बाहर

0: निकलने के लिए आप गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं। अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए पितृ पक्ष में अगर आप रोज या जब भी मौका मिले प्रातः काल अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके प्रार्थना करें तो इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो पितृ पक्ष में गरुण पुराण भी पढ़िए और अपने पूर्वजों के लिए गजेंद्र मोक्ष भी पढ़िए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को चमकाने के लिए एक लकी टिप। अपने घर में किसी भी तरीके से गमले में जमीन में पीपल का पौधा मत लगाइए, लेकिन चूंकि पितृ पक्ष का पवित्र समय चल रहा है तो आप चाहें तो सार्वजनिक स्थानों पर पार्क में सड़क के किनारे पीपल का पौधा लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 28 सितंबर 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को जल अर्पित करिएगा, इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का, दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: क्या ये सच है आपने मेरी मायरा को थप्पड़ मारा? How dare you?
3: आप दोबारा उसे अपनी बेटी मत कहना।
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
10: है यहाँ का, ऐसी पुण्यमयी भूमि, बगल में जहाँ मेड़ता मेड़ता का वो किला, कल हमको महाराज मीराबाई के वंशज हमें मिलने आए कल रात को, उन्होंने चलते चलते हमें चित्र दिखाया जहाँ ठाकुर जी के बाल्यकाल में ही दर्शन हो गए थे मीरा को, क्या अद्भुत दर्शन है, कितना अद्भुत है हमारा राजस्थान। एक छोटी सी बालिका छत के ऊपर खड़ी है, माँ साथ में है, राजघराने की बेटी छोटी सी बच्ची छत के ऊपर खड़ी, उसी समय एक बारात जा रही, दूल्हा को देख करके वो बच्ची माँ से कौतुक वश उत्साह वश पूछती है, माँ माँ माँ ये कौन है? बेटी ये दूल्हा है, फलानी फलानी बिटिया का ब्याह हो रहा, उसका ये बर है। अच्छा माँ, तो माँ मेरा भी तो कोई बर होगा। हाँ तेरा भी बर है। माँ मेरा बर कहाँ है, मुझे मिलाओ ना। बेटी अभी नहीं, बाद में मिला दे। नहीं नहीं माँ, मुझको भी ऐसे ही दूल्हा चाहिए, ऐसे ही सजा वजा घोड़े पे बैठा हुआ, मेरा दूल्हा बताओ ना। बच्ची की जिद पर माँ क्या बोले, छोटी सी बच्ची अब क्या बताए, तो नीचे हाथ पकड़ करके ले गई और ठाकुर गोविंद को दिखा कर बोली, बिटिया यही तेरा दूल्हा है, यही तेरा बर है। जैसे ही उसको देखा, श्याम सुंदर चितवन सरोज कजरारी, अखियां घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निवछावर प्राण करूं कृष्णा बल जाऊं लला के बोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर उस कृष्ण चंद्र वन चंद्र मुरली मनोहर छलिया गिरधारी वनवारी, चित चोर माखन चोर कृष्ण कन्हैया गोविंद को देखा, जो रास रचाता नाच नचाता थिरकता है, जो काली नाग की तह पर काली नाग को हमारे ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र जी मात्र एक वंशी की धुन की पग पर बैठ करके भगवान काली नाग के फनों पर फन फन फनाते हुए, फनों के ऊपर भगवान जो लीला करते, मुरली की अधरों में रख करके बांसुरी के करुण कंदन स्वर को निकालते, उस गोविंद की अधरामृत होंठों को देखकर, काली काली कजरारी अखियों को देखकर वो छोटी सी बच्ची बालिका भगवान श्री कृष्ण चंद्र के प्रति इतनी आकर्षित हो जाती कि गोविंद को गोद में लेकर के कह देती, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा तो अब गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर बाद में वो गाती, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। बड़ी हो गई गोविंद के ही जीवन में, बड़ी हो गई, अब तो वो ठाकुर को ही लाल लड़ाती, यही मेरो दूल्हा है, ये चित्त में बैठ गया, यही मेरो दूल्हा है। पता है आपको ये मीरा बालकाल से इतनी बाबरी क्यों थी, ऐसा क्या हुआ? अरे ये कोई साधारण मीरा नहीं है, ना ना ना ना, राजस्थान मेड़ता नागौर अजमेर में रहने वाले सनातनियों सुनो, ये तुम्हारी मीरा कोई साधारण नहीं है, कृष्ण के समय की गोपी है, कृष्ण के समय की गोपी है, कृष्ण के समय की। द्वापर युग में जब भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन देवी की नंदन बनकर के प्रकट हुए ब्रज में, तब एक घटना हुई, ध्यान से सुनना मीरा कौन है। भगवान प्रकट भए, एक दिन इंद्र की मति मारी गई, इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश की, 7 दिनों तक बारिश हुई। ठाकुर जी कहते हमने ये कथा सुनी है, ये गोपी उसी समय भगवान को मिली, नया नया ब्रज में एक ब्याह हुआ, नई नई शादी, महाराज जी शादी की जो नई नवेली दुल्हन ब्रज में आई, उससे उसकी सासू मां ने कहा, सुन यहां एक जादूगर रहता है। वो बिचारी नई नई थी, उसे तो पता नहीं था, मां कौन सा जादूगर? अरे बोली सुन तो, तू अपना घूंघट मत निकालना यहां, और सुन कुछ दिनों के अंदर यहां पर एक जादूगर है, छोटा सा बच्चा 8 साल का, नाम उसका कृष्ण कन्हैया है, तू अपना मुंह ना उसे दिखाना ना उसकी तरफ देखना। क्यों मां? है तो बच्चा पर पूरे ब्रज की स्त्रियों को बाने पागल बना रखो है, बड़ो बाबरो है, बड़ो पागल बना देता, ऐसो मंत्र फूंकता सब उसके पीछे ही डोलती हैं। तो सुन ले कान खोल के, वो आएगा जिद करेगा, तू ना तो घूंघट निकालेगी ना मुंह देगी, सुन आंखों में तो देख रही नहीं, जादू भरी तेरी नजर जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतियन पे गुजर गई, जादू भरी तेरी आंखें। तो बाकी आंखों में ना बड़ा जादू है, देखना नहीं सुन। तब तक ननंद आई, हाँ हाँ भाभी भाभी भाभी सुन, वो जो है ना नंद को छोरा यशोदा को छोरा, बाँ को यहाँ सब प्यार ते कनुआ कहवे कनुआ, काना कहते हैं काना, बड़ो जादूगर है भाभी, मेरी बात मान लेना प्लीज, तुम बाँ को मुंह ना देखना। अब बिचारी नहीं नहीं, उसे क्या पता, पहली बार ब्याह भव के आई है, उसे लगा होगा खतरनाक आदमी है तो बच्चा, पर डेंजर हो सकता। बिचारी चुप हो गई। दो दिन बाद ठाकुर जी आए, काकी काकी ओ काकी। हाँ लाला, मैंने सुनो तेरे घर पे नई नई बहू रानी आई है। हाँ सही सुनो काकी, बुरा ना मानो, नेक्स मुंह देख ले, जा तू ही जा। काकी ने धक्का दिया बहू को, आ गया कान में को, आ गया वही जादूगर, बाने घूंघट पकड़ लो। अब ठाकुर जी तो लीलाधर, अरे ओ भाभी पहली पहली बार तुम ब्रज में आई है, मुखड़ो तो दिखाए दे, कैसी दिखबे, बाने घूंघट में ही सिरे ला ना। अरे पागल है क्या, दिखा मुंह, नेक भाभी मुंह तो देख ले, गोरी है कारी है काली कलूटी है, नेक मुंह तो दिखा दे। बाने फिर सिरे लायो ना, घूंघट जोर से पकड़ लिया, भगवान ने घूंघट पकड़ा और झटका मारना चाहा, बाने ठाकुर जी को कोई नहीं मार दी, गिर गए ठाकुर जी। भगवान तो सब जानते हैं, अंतर ध्यान है, अंतर्यामी है, मन की जानने वाले हैं। भगवान बोले अच्छा मेरो मुंह ना देखने तुझे, जा मैं भी वचन दे रो नंद को छोरा, आज के बाद ना तू को मुंह दिखाऊंगा ना तेरो देखूंगा, और चले गए भगवान। जब चले गए ठाकुर जी, जब चले गए, उसको लगा छोटा सा बच्चा है, नाराज हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता। लेकिन तब तक गोवर्धन लीला हुई ब्रज में, गिरिराज लीला, इंद्र ने पानी बरसाया तो ठाकुर जी के पास संपूर्ण ब्रजवासी पहुंचे, इंद्र की मति मारी गई, कोई उपाय करो। भगवान ने कहा गोवर्धन के पास चलो, गोवर्धन के पास आए, भगवान ने छोटी सी उंगली पर, कनिष्ठ उंगली पर पूरे गिरिराज को रख लिया, नाम पड़ गया गिरिराज धरण। दो तीन दिन के अंदर सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के जो नीचे छुपे हुए थे ना पानी से बचने के लिए, वो सब ठाकुर के दर्शन करने आए। कोई मक्खन खिला रहा, कोई हाथ दबा रहा, कोई ठाकुर को जी भर के देख रहा। जरा देर ठहरो श्याम, थोड़ा देख लेने दो, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जी भर के देख रहा कोई। अब वो गोपी भी आई जिससे भगवान नाराज थे, वो भी आई जिसको मुंह नहीं दिखाना था, वो आई तो उसने बड़ा सुन रखा कि नन्नो सो छोरे ने, छोटे से बालक ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा। उसने सोचा जरा एक बार तो चुपके से देख ले कि वो कौन है, और जहां एक बार नजर गई सोई बाबरी हो गई। अपनो घूंघट घूंघट फेंक कर ठाकुर जी के सामने ऐसी खिंची खड़ी हो गई मानो चुंबक खिंची हुई चली आई, जैसे लोहा खिंचा आता ना चुंबक की तरह, वैसी खिंची हुई गोपी गोविंद के सामने खड़ी हो गई। भगवान पहचान गए, ये वही है जिसने अपनो मुंह ना है, मुंह को दिखाओ। तो भगवान ने टेढ़ो मुंह कर लो, वो उस तरफ भागी भागी गई, भगवान ने इस तरफ मुंह कर लो भागी भागी। अब तो उसे ऐसी ललक लगी कि रही ना पाए, और वो जिस तरफ जाए भगवान वहीं से मुंह हटा ले। अंत तो गत्वा वो इधर भागे उधर भागे, दिन भर यही चला, रात को भगवान ने ऊपर ही मुंह कर लिया, ले देख ले ऊपर मुंह कर लिया। अब वो लगी रोने, आंखों से अश्रुधार बहने लगी, बार बार अपने मन ही मन में कोसने लगी सासू माँ को, और ठाकुर से कहने लगी मेरी भूल ना, मैं पहचान गई, तुम कोई साधारण लाला नहीं हो, जादूगर नहीं हो, ठाकुर हो, ठाकुर ब्रज के नेता हो, नेता हो, हम पर कृपा करो, हमारी भूल को क्षमा करो। भगवान बोले हम ना क्षमा करेंगे, हमने प्रण लिया तू को अपना मुंह ना दिखाएंगे, सुना दिखाएंगे। पता है क्या बोले? बोले ना देखते तो ठीक था, अब एक बार देख लिया तो अब जी नहीं मान रहा। पहले ना देखते तो भला था, अब एक बार देख लिया अब दिल मानता ही नहीं है, जी मानता ही नहीं। अब परेशान मत करो, हमारी भूल को क्षमा करो। बेहोश हो जाए फिर उठे, फिर बेहोश होवे फिर उठे, फिर रोवे। घर वाले पागल तो सासू माँ को गाली बके, चंडालन है। हाँ, उंगली दिखा दिखा तेरे ही चक्कर में बाप को मुखड़ो ना दिख रहो। ठाकुर को, हमारे श्याम सुंदर को लगी रोने। भगवान ने कहा गोपी इस जन्म में तो हम तुझे अब अपना मुख नहीं दिखाएंगे, हम श्राप देते हैं तू हमारी तरफ देखेगी हम दिखाई नहीं पड़ेंगे। सबको कृष्ण दिखाई पड़ रहे, उस गोपी को कृष्ण नहीं दिखाई पड़ रहे। वो रोने लगी, पागल हो गई। 3 दिन तक अखंड रोई, रोते रोते अंत में बोली ठाकुर तुम कहो तो मैं प्राण त्याग दूं अपने, पर तुम्हारे बिना जी रखा लगता नहीं है, रहा नहीं जाता। भगवान ने कहा गोपी इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम्हें मैं एक वरदान देता हूं, तुम्हें फिर से मुझे देखने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें मिलूंगा। वही गोपी कलयुग में मेरता में जन्म लेती है, मीरा बनकर प्रकट होती है। महारानी बनती है, वही गोपी मेरता में जन्म लेती मीरा बनती है। तब तो मीरा के सभी पदों में एक बात है,

यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि तुलसीदास जी की जगह क्या हम अपना नाम बोल सकते हैं? वैसे तो ये तुलसीदास जी ने अपने लिए ही लिखा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले श्लोक में कहा, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती, ये मेरे सुख के लिए, पर यदि आप चाहो तो अपना नाम बोल सकते हो, कोई बुराई नहीं, पर तुलसीदास जी ने लिखा है तो उनका ही बोलो, क्योंकि हमारी तुम्हारी रचना है ही नहीं। फिर भी आपके मन में कोई भाव अच्छा जग रहा हो तो अपना नाम बोलो, उसमें कोई दोष नहीं। भगवान भाषा नहीं देखता, भगवान भाव देखकर प्रकट होता है। यदि भगवान भाषा सुनकर प्रसन्न होता तो गूंगा को परमात्मा कृपा ना करता, तो परमात्मा भाव देखते हैं, भाषा नहीं देखते। चाहे तमिल में प्रार्थना करो या उर्दू में प्रार्थना करो। अब रसखान तो मुसलमान था, उस पर भी कृपा की भगवान ने, तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, भगवान ये भी नहीं देखते कि किस जाति के हो। यदि जाति देखकर भगवान कृपा करते होते तो सबरी पर कृपा ना करते, बिल्ली पर, निषाद राज गुही पर कृपा ना करते। भगवान अमीर गरीब भी नहीं देखता, यदि भगवान अमीरों पर कृपा करते होते तो सुदामा पर कृपा नहीं करते। भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम कहां रहते हो, यदि ऐसा देखते तो फिर विभीषण पर कृपा ना करते, वो तो लंका में रहता था। तो भगवान को इससे भी मतलब नहीं कहां रहते। भगवान पढ़े लिखे लोगों पर भर भी कृपा नहीं करता, यदि केवल पढ़े लिखे लोगों पर भगवान कृपा करते होते तो गज यानी हाथी जिसकी कथा भागवत में आती वो तो किसी स्कूल में नहीं गया, उस पर भी भगवान ने कृपा की। भगवान ये नहीं देखता तुम कौन हो, भगवान रूपवान भर पर कृपा नहीं करते, केवल सुंदर लोगों पर भगवान कृपा करते होते तो कुब्जा तो तीन जगह से टेढ़ी थी, उस पर भगवान कृपा नहीं करते। तो भगवान केवल इन लोगों को देख करके कृपा नहीं करते, भगवान तो दिल देख करके कृपा करते। इसलिए तो बिंदु जी ने, गोस्वामी बिंदु जी ने लिखा, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का तो कृपामय स्वभाव है, उनका काम है कृपा करना। जैसे बारिश होती है तो बारिश कभी नहीं देखती कि ये गरीब की झोपड़ी है या अमीर का छत है, वो तो बरसती है चाहे गरीब की झोपड़ी पर गिरे या अमीर की छत पर गिरे। ऐसे ही परमात्मा है, वो तो कृपा बरसाता है चाहे कोई भाव से आए या कुभाव से आए, वो तो कृपा बरसाता है, भगवान का ये स्वभाव है। इसलिए मेरे पागलो, इस बात को हमें ध्यान रखना, अब तक जो तुमने अवगुण किए सो किए, अब तक तुम जैसा जीवन जिए सो जिए, आज से एक प्रण लेना है, हे बाबा हम तुम्हारे हो जाएं, तुम हमारे हो जाओ। और तुलसीदास जी की तरह कहो, तुलसीदास

मेरे पागलो तुलसीदास सदा हरि। इसमें एक बात हम कहें, हनुमान चालीसा किसका है? हनुमान जी का। बोलो हाँ जी या ना जी। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारे हृदय में आप वास करो। तुलसीदास कीजे नाथ हृदय महा। नाथ कौन है? राम जी। पर राम जी को कह रहे हैं कि हृदय में बैठो, पर चालीसा आप हनुमान जी का लिख रहे। अब स्तुति तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी की है। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो ये पूरी स्तुति हनुमान जी की है। और आप कह रहे कीजे नाथ रघुनाथ के लिए, आप कह रहे कि आप हमारे हृदय में बैठो, और स्तुति आपने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की गाई। ये तो बड़ा विरोधाभासी बात है। तो बाबा तुलसी कहते ना ना ना ना, सीधा सीधा है, एक संत ने हमसे कहा, इस पर हमारा निजी मत है। तुलसीदास जी कहते हैं कीजे नाथ हृदय महा, पर स्तुति किसकी? हनुमान जी की। हनुमान जी की स्तुति क्यों कर रहे यदि राम जी को हृदय में बैठारना है? तुलसीदास जी बोले सुना जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धरी। हनुमान जी के ही तो हृदय में राम जी बैठे हैं। हनुमान जी बैठ जाएंगे तो राम जी भी बैठ जाएंगे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
5: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
7: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
4: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
8: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
9: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार, इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
4: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
10: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
4: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
11: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
4: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
12: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
13: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
12: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
4: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
10: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
4: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
4: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
14: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
8: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
15: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
16: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
4: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
17: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
4: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
18: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
4: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
19: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
6: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
4: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
20: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
21: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में, घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरे तरीके से राहत है।
0: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
4: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
5: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है। और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
4: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
6: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
7: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
4: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
10: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
4: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का, दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
22: क्या ये सच है आपने मेरी मायरा को थप्पड़ मारा? How dare you?
23: आप दोबारा उसे अपनी बेटी मत कहना।
24: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
25: और दुर्भाग्य कहता है
24: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
26: अविश्वास में विश्वास बसता है,
24: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
24: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
27: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय मेंस क्रिकेट टीम, बारिश के चलते अफगानिस्तान से मैच रद्द, बेहतर रैंकिंग के आधार पर मिली एंट्री। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा, आठवें चरण की गिनती में भंडार से निकले 29 करोड़ से ज्यादा रुपए, ऑनलाइन दान और सोने चांदी के आभूषणों का भी होगा हिसाब। झांसी में 878 परिवारों ने किया सामूहिक तर्पण, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया, पितृपक्ष में धार्मिक अनुष्ठान। उत्तरकाशी में फंसे पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, रविवार को निकाला गए 121 लोग, खराब मौसम से चारधाम यात्रा अभी भी बाधित। यूपी में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, वाराणसी में गंगा घाटों तक पानी पहुंचा, गोपालगंज में प्रशासन अलर्ट।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले एशियन गेम्स से आई शानदार खबर आपको बता दें। जापान में चल रहे एशियन गेम्स से भारत के लिए गुड न्यूज है। कोराश में पिंकी बलहारा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें विमेन 78 किलोग्राम वर्ग में ये मेडल मिला है और भारत के खाते में अब टोटल 38 मेडल्स आ गए हैं, जिनमें से 4 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। एक और महिला ने भारत का नाम रोशन किया है। एशियन गेम्स जो कि जापान में चल रहा है, वहां से ये गुड न्यूज भारत के लिए आई है। कोराश में पिंकी बलहारा ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। विमेन्स 78 किलोग्राम वर्ग में ये मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। अब भारत के खाते में 38 मेडल्स आ चुके हैं। और चलिए अब वक्त हो चला है जीएनटी एक्सप्रेस का।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: भारतीय सेना आज मना रही है 200वां गनर्स दिवस। वीर शहीदों के साथ शौर्य के दिनों को किया जा रहा है याद। गनर्स दिवस पर सेना ने एक बेहद शानदार और जोश से भरा वीडियो जारी किया। पारंपरिक से लेकर आधुनिक तोपों की सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। कठिन हालात में भी आर्टिलरी की जबरदस्त क्षमता को प्रदर्शित किया। गनर्स के पराक्रम को भी दिखाया। आज के दिन ही 1827 में गठित हुई थी 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी और इसी की याद में मनाया जाता है गनर्स दिवस। आज देश मना रहा है शहीद भगत सिंह की जयंती। पीएम मोदी ने वीडियो जारी करते हुए उनको नमन किया। सांवलिया जी मंदिर में टूटा दान का रिकॉर्ड। गिनती जारी है। 8 चरण तक भंडार से निकले 29 करोड़ से ज्यादा रुपए। 8वें चरण में 51,68,630 रुपए की गिनती हुई। भंडार की गिनती के अभी भी कई चरण बाकी हैं। सांवलिया जी मंदिर में छोटे नोट और सिक्के भी गिने जाने बाकी हैं। ऑनलाइन दान का भी हिसाब होगा। सांवलिया सेठ के दरबार में भक्त नकदी के साथ साथ सोने चांदी के भी दान करते हैं। मंदिर में जमा आभूषणों के वजन और गणना बाकी है। अमावस्या से एक दिन पहले खोला गया था सांवलिया जी मंदिर का दान पात्र। झलझुलनी मेले के चलते 4 दिन बाद दोबारा शुरू हुई दान राशि की गिनती। 2 दिन की बारिश थमते ही बर्फ की सफेद चादर में ढका केदारनाथ धाम। नजर आ रहा है बेहद भव्य नजारा। बर्फ पर पड़ती धूप और बादलों के बीच झांकती चोटियां मुंह रही हैं मन। श्रद्धालु उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। ताजा बर्फबारी के साथ केदारनाथ में बढ़ा ठंड का असर। गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ धाम की यात्रा पर मौसम ने लगाया ब्रेक। चिरबासा में पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील। चारधाम की यात्रा रुकने के बाद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। होटल्स में यात्रियों ने नाच गाकर और केक काटकर बताया समय। बारिश के बीच होटल कारोबारियों ने यात्रियों की सुरक्षा का रखा पूरा ध्यान। होटल में ही की गई खाने पीने की विशेष व्यवस्था। स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षित और खुश नजर आए श्रद्धालु। होटल कारोबारियों के व्यवहार की जमकर सराहना की। झांसी में लावारिस आत्माओं और 878 परिवारों के पूर्वजों के लिए हुआ अनुष्ठान। पहुज नदी तट पर कराया गया सामूहिक पिंड पूजन। पवित्र पिंडों को गया जी में विधि विधान से अर्पित करने के लिए किया गया रवाना। लोगों ने प्रतिनिधिमंडल को माला पहनाकर रवाना किया। उत्तरकाशी में बर्फबारी के चलते ऊंचाई से इलाकों में फंसे 136 पर्वतारोही और ट्रैकर्स, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। गोमुख तपोवन में फंसे 121 पर्वतारोहियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार बर्फबारी के बीच चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रशासन ने सभी पर्वतारोहियों के सुरक्षित होने की कही बात, टीमों से लगातार बना हुआ है संपर्क। हेलीकॉप्टर से हवाई रेकी के बाद एयर रेस्क्यू किया गया। मौसम साफ होने पर बचाव अभियान किया जाएगा तेज। मौसम बिगड़ने और हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें तैनात। यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ। हालात से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर, नाव के संचालन पर लगाई गई रोक। बाराबंकी में सरयू नदी फिर उफान पर, 3 तहसीलों के दर्जनों गांवों में भरा पानी। यूपी के महोबा जिले में 48 घंटे हुई बारिश के बाद जलभराव, दुरई नदी के उफान से दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। गोंडा में तूफान और बारिश से देवीपाटन मंडल के 4 जिलों में छाया अंधेरा, राहत बचाव का कार्य जारी। बिहार में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में बाढ़ का बढ़ा अलर्ट। गोपालगंज के निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी, हाई अलर्ट पर प्रशासन। बारिश की चेतावनी के बीच अलर्ट पर राहत और बचाव की टीमें, माइकिंग के जरिए लोगों से की जा रही है सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। नेपाल में भारी बारिश का भी पड़ रहा है असर, गंडक बराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। गंडक नदी के उफान को देखते हुए तटबंधों के अति संवेदनशील बिंदुओं पर निगरानी तेज, सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से बढ़ाई गई चौकसी। थाईलैंड में भारी बारिश से बैंकॉक समेत कई इलाकों में आई बाढ़, कई जगहों पर 1 मीटर से ज्यादा पानी भरने से हजारों लोग फंसे। बैंकॉक में बाढ़ के कारण सड़कों पर भरा पानी, प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए थाईलैंड ने 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए, राहत और बचाव का काम जारी। कैम्बोडिया सीमा से लगे सा केओ प्रांत में भी आया बाढ़ की चपेट में, आया लोगों को ट्रकों से किया जा रहा है रेस्क्यू। थाईलैंड मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी, स्थानीय प्रशासन की टीमें अलर्ट। लेह में 3 दिवसीय लद्दाख महोत्सव जारी, समृद्ध संस्कृति और साहसिक खेलों का दिखा संगम। बावनवे दिन बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने रचा इतिहास, 400 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 401 करोड़ 20 लाख के पार पहुंचा। रविवार को हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ का कारोबार किया। भारत में भी ग्रॉस कलेक्शन 362 करोड़ 70 लाख के पार। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कलेक्शन, कल फिल्म ने 14 करोड़ की कमाई की, 3 दिन में दुनिया भर में 43 करोड़ कमाए। फिल्म द पैराडाइज ने कल 15 करोड़ 70 लाख का कारोबार किया। 4 दिनों में भारत में नेट कलेक्शन 109 करोड़ और दुनिया भर में कमाई 138 करोड़ के पार पहुंची। मिर्जापुर द मूवी ने कल 1,65,00,000 कमाए, 23 दिनों में भारत में ग्रॉस 268 करोड़ पहुंचा आंकड़ा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 328 करोड़ के पार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का, दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: क्या ये सच है आपने मेरी मायरा को थप्पड़ मारा? हाउ डे यू।
4: आप दोबारा उसे अपनी बेटी मत कहना।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।

एक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है,

0: उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो, चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जर्नल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का, दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: क्या ये सच है आपने मेरी मायरा को थप्पड़ मारा? हाउ डेयर यू। आप दोबारा उसे अपनी बेटी मत कहना।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में भारत के लिए आज शुभ दिन। ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल, पिंकी को कोराश में ब्रॉन्ज। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा, आठवें चरण की गिनती में भंडार से निकले 29 करोड़ से ज्यादा रुपए, ऑनलाइन दान और सोने चांदी के आभूषणों का भी होगा हिसाब। झांसी में 878 परिवारों ने किया सामूहिक तर्पण, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया पिंडदान, पितृपक्ष में धार्मिक अनुष्ठान। उत्तरकाशी में फंसे पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, रविवार को निकाले गए 121 लोग, खराब मौसम में चारधाम यात्रा अभी भी बाधित। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, वाराणसी में गंगा घाटों तक पानी, गोपालगंज में प्रशासन अलर्ट।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। बॉक्स ऑफिस पर बड़ी बड़ी मेगा बजट फिल्में औंधे मुंह गिर रही हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा चमत्कार हुआ है जिसने ट्रेड एनालिस्ट से लेकर बॉलीवुड के दिग्गजों तक को हैरान कर दिया है। फिल्मी पर्दे पर हनुमान अंश ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म हनुमान अंश ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई दर्ज की है। थिएटर्स में दर्शकों की भीड़ और लगातार बढ़ते कलेक्शन ने फिल्म को चर्चा में ला दिया है। निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की फिल्म हनुमान अंश की सफलता ये साबित करती है कि दर्शक अब स्टार पावर से ज्यादा मजबूत कहानी और अपनी संस्कृति से जुड़ी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। फिल्म हनुमान अंश की कमाई ने फिल्म को सुर्खियों में ला दिया है और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सफर अभी जारी है और इस नई रिपोर्ट के साथ नजरें इसके आगे आने वाले कलेक्शन के आंकड़े पर टिकी हुई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
1: बाबा नीम करौली के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश अभी भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। बड़े पर्दे पर इस फिल्म की करिश्माई कमाई जारी है। रिलीज के बाद से ही सिनेमाघरों में हनुमान अंश देखने के लिए दर्शकों की अच्छी मौजूदगी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अब ये फिल्म शानदार आमदनी वाली फिल्मों में शुमार हो चुकी है। अब तक के इसके धुआंधार कलेक्शन ने ट्रेड और फिल्मी गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है। सिर्फ 52 दिनों में फिल्म का कलेक्शन 400 करोड़ के पार पहुंच गया। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने 52वें दिन भी 9 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई की। इस फिल्म के 4,387 शो चल रहे हैं। इस फिल्म ने अभी तक देश भर में 307 करोड़ से ज्यादा आमदनी हासिल की है, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 401 करोड़ के पार हो चुका है। इसी के साथ ये फिल्म भारत की चुनिंदा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो चुकी है। फिल्म हनुमान अंश महज 2 करोड़ की लागत से बनी थी। रिलीज के बाद 2 महीने से भी कम समय में ये 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। ये आंकड़ा दंग करने वाला है। हनुमान अंश फिल्म 7 अगस्त को बिना किसी खास प्रमोशन के रिलीज हुई थी। सिनेमा घरों में 368 शोज के साथ इसकी ओपनिंग हुई थी। इस फिल्म ने पहले दिन जहां केवल 10 लाख रुपए की कमाई की, वहीं 8वें दिन कलेक्शन केवल 4 लाख रुपए रहा। लेकिन इसके बाद फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और 17वें दिन इसकी कमाई 2 करोड़ के पार पहुंच गई। फिल्म की कमाई का बढ़ता ग्राफ लगातार चर्चा में है। 17वें दिन के आंकड़े के बाद फिल्म का कलेक्शन नीचे गिरने के बजाय तेजी से ऊपर उठा और ये फिल्म अब कमाई के मामले में चुनिंदा बड़ी फिल्मों की फेहरिस्त में शामिल हो चुकी है। भारत में बड़े पर्दे पर आने के एक महीने बाद ये फिल्म 11 सितंबर को विदेशों में भी रिलीज हुई और 7 समुन्दर पार भी इसे खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म ने अगस्त के अंत में अपनी रिलीज के 25वें दिन के आसपास 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था, जबकि रिलीज के चौथे हफ्ते में ये 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। फिल्म ने अपनी रिलीज के 36वें दिन यानी 11 सितंबर 2026 को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया। वहीं रिलीज के 41वें दिन यानी 16 सितंबर 2026 को इसने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली। हनुमान अंश ने ये साबित कर दिया कि भले ही प्रमोशन जोरदार न हो, लेकिन कंटेंट के दम पर भी फिल्में कमाल दिखा सकती हैं। वहीं अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में फिल्म का कलेक्शन किस मुकाम तक पहुंचता है। क्या मौजूदा रफ्तार बरकरार रहती है? क्या ये फिल्म तेजी से 500 करोड़ का नया आंकड़ा छू सकती है? इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। आने वाले दिनों में इस फिल्म के प्रति दर्शकों के प्यार से इसकी रफ्तार दिखेगी और तब पता चलेगा कि हनुमान अंश का तूफान और कहां तक जाने वाला है, क्योंकि थिएटर्स के बाद अब इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बरसों बाद एक धार्मिक फिल्म कमाई के मामले में शानदार मुकाम पर पहुंची है और नया इतिहास रच रही है। फिल्म को कैसे मिली ये कामयाबी, या ये महज संयोग है या फिर बाबा नीम करौली का करिश्मा है? फिल्म के निर्देशक, इसके निर्माता और बाल कलाकार से हमारी सहयोगी संजय शर्मा ने खास बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या है इसकी सफलता की कहानी। आप भी देखिए।
2: आमतौर से फिल्में जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं, वैसे वैसे वो नीचे की ओर चलती हैं। लेकिन हनुमान अंश ऐसी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। जिम अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले वो हनुमाना। तो हम फिल्म की निर्माता भी हमारे साथ हैं, अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो इन त्रिदेव से हम बात कर रहे हैं इसमें। ये फिल्म कई लोग पूछ चुके होंगे कि शुरू में उम्मीद थी क्या, लेकिन अब शुरू में अगर फिल्म चलती तो उसको लोग अलग ढंग से लेते, लेकिन इसने जब देर से रफ्तार पकड़ी है तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने पत्थर में पहाड़ पर पांव जमाया और सीधा उड़ चले।
3: हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा तो है ही। मतलब आप अगर देखिए तो कोई लॉजिकल तो है नहीं कि सेकंड वीक में उठी है और फिर जब उठी है तो फिर अब जहां जा रही है वहां जा रही है, उसकी अपनी जर्नी है। आप हनुमान जी कह रहे हैं, मैं महाराज जी कह रही हूँ, सेम है। हम सभी उनके अंश हैं। आई थिंक विशाल और मैं जब बैठते थे तो हम लोग को क्लियरली मालूम था कि डिवोटीज के लिए हमने पिक्चर बनाई है। 50 मिलियन डिवोटीज है महाराज जी के इंडिया में। उसमें हमें लगता था कि एक नंबर जो होनी होता है कि लोग बात कब करना शुरू करते हैं जब कुछ लोग साथ में मिलते हैं। तो हम चाहते थे कि डिवोटीज एटलीस्ट 50,000 लोग देख पाए, क्योंकि जो भी पिक्चर उससे पहले देख रहा था उनको पसंद आ रही थी। तो हमें थिएटर के एक्सपीरियंस के बारे में पता था कि वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस है, पर वो नंबर नहीं हम हिट कर पा रहे थे। 2 हफ्ते तक 35,000 लोगों ने ही देखी थी। तो जब तक लेकिन जब वो उठा तो उसके बाद तो आई थिंक हमारे हाथ में सिर्फ आई थिंक श्रोता का प्यार है, सिर्फ तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है,
4: आपके हाथ से भी निकल गया।
3: हाँ बिल्कुल, बता, हमारे तो हाथ में है ही।
5: एक फिनोमेनन था जो हम नोटिस कर रहे थे कि पहले वीक में जितने लोग फिल्म देखने गए थे पर थिएटर वर्सेस नेक्स्ट जो वीक था, विच इज सेकंड वीक, वीकेस्ट वीक, जिसमें बोलते हैं कि 46 लाख का कलेक्शन था, लेकिन 46 लाख का कलेक्शन 27 थिएटर में था, जबकि 86 लाख का कलेक्शन 350 थिएटर में था, 350 शोज में था। तो जो रेशियो है वो 500% बढ़ गया था, मतलब इन टर्म्स ऑफ कितना फिल हो रहे थे हमारे थिएटर। तो उसका साइन तो दिखाई दे गया था हमको, लेकिन वही होता कि थिएटर जो बिजनेस है, सिनेमा जो बिजनेस है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि डिपेंड करता है अगली फिल्म कौन सी आ रही है, उस वक्त जनता का मूड कैसा है, बहुत सारी चीजें, क्या दुनिया में वॉर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं अगला शो कौन सा है, तो मैं चाहूंगा विहान इसके बारे में बताएं। विहान बताएं।
6: हाँ, तो पहले 2 हफ्ते में तो फिल्म थोड़ी टफ गई थी, पर जो जनता ने पब्लिश किया है तो और लोगों को इंटरेस्ट आ गया हनुमान अंश देखने के लिए। तो जनता के प्यार से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, नीम करौली बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी फिल्म इतनी हिट हो गई है। और मेन तो छोटे बच्चों ने भी शुरू कर दिया देखने के लिए, उनके पेरेंट्स, वो छोटे बच्चे वो भी उनके पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि चलो हम मूवी देखते, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैं थोड़ा नर्वस था कि लोगों को मेरा रोल कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे तो नीम करौली बाबा जी के बारे में पहले पता नहीं था, पर जैसे मुझे पता चला वैसे वैसे मैंने रोल किया। पर बहुत लोगों को मेरा रोल अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए मुझे।
5: बहुत लोगों को नहीं सबको बहुत अच्छा लगा।
3: विहान हैज सर्टन कामनेस अबाउट हिम, उसके अंदर बहुत स्थिरता है, एंड फॉर अ चाइल्ड राइट, एंड वो हमेशा ऑब्जर्व कर रहा था। उसका सीन नहीं भी होता तो वो बैठा रहता था हमेशा सेट पे और सबको नोटिस कर रहा था। ही हैज एबिलिटी टू, बिकॉज स्पॉन्ज की तरह लगता है वो, और बहुत ही शांत स्पॉन्ज है। मतलब हमारे सेट में बहुत कुछ हो रहा था पर उस सेट में ये हमेशा शांत दिखता था, सो ही लुक लाइक अ आइलैंड कंपेयर टू ऑल ऑफ अस। तो वो एक उसमें इक्वालिटी है।
7: फिर करने के पहले तुम्हें बाबा नीम करौली जी के बारे में कितना पता था, और स्पिरिचुअलिटी क्या पहले से की या फिल्म करते करते?
6: तो रोल करने से पहले तो मुझे पता नहीं था कि नीम करौली बाबा जी कौन है, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में बहुत कम लोगों को पता है नीम करौली बाबा जी के बारे में। पर जैसे ही मुझे रोल मिला तो फिर मैंने रिसर्च की, विशाल सर ने भी मुझे समझाया कि वो 12 साल की उम्र में उनकी, मतलब जो छोटे थे तब उनकी माँ गुजर गई, और वो जब वो 12 साल के थे तब वो घर से भाग गए और उनका ये एक ही सपना था, यस, और उनका एक ही सपना था राम जी के पास पहुंचना। तो विशाल सर ने मुझे सब समझा, इसलिए मुझे इजी गया रोल करने को। और जैसे जैसे शूटिंग होती चली गई, सिर्फ मैं मेरे रोल पे नहीं ध्यान देता था, जैसे शूटिंग होती थी तो फिर मुझे स्टोरी भी पता चली कि ये चमत्कार किए बाबा ने, जैसे वो ट्रेन वाला इंसिडेंट, तो मुझे भी थोड़ा एक्साइटेड लगा उनकी स्टोरी। और मेरा भी मतलब यही है मानना कि हनुमान अंश 2 भी आना चाहिए, पर मुझे टेंशन भी है कि अगर मेरा रोल है कि नहीं उस फिल्म में, तो ये
7: उसमें फ्लैशबैक लगाएंगे।
6: यस हाँ,
7: तुम्हारा रोल है। ये बताओ हनुमान चालीसा तुम्हें पूरी याद थी पहले या रोज के पाठ से 22 दिन के पाठ से तुम्हारे को?
6: नहीं मुझे याद नहीं थी, जो मेरा पहला और पहला दिन था शूटिंग का, तो वो जो हनुमान चालीसा वाला सीन है वही था। तो फिर सर ने बताया मुझे जो मतलब जो पार्ट है, तो फिर मैंने वो लर्न किया। पर अभी मैं हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और अभी मैं लर्न कर रहा हूँ हनुमान चालीसा।
7: मतलब ये बदलाव आया?
6: यस,
7: जैन जी में ये बदलाव आया। बिहान तो उसका एक, जब मटकी में बहुत सारे चावल बकरे हैं तो उसका एक नमूना है, इसमें जैन जी में बदलाव आया। और मुझे लगता है कि ये फिल्म से आगे बढ़ के बहुत कुछ है
8: जी,
7: क्योंकि लोग थिएटर में फिल्म चलने के दौरान, फिल्म से पहले हनुमान चालीसा का कोई कल्चर नहीं था, इस फिल्म ने पूरे कल्चर को एक मोड़ दिया।
8: मुझे लगता है एक तो पार्ट ये कि हम जो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो शब्दों में उसका बयान उसको नहीं किया सकता, तो जब फिल्म बनाते वक्त जो मैं जिन भावनाओं से लिख रहा था शायद वो भावनाएं ट्रांसपायर हो गई और लोगों ने उन भावनाओं को पता नहीं कैसे पकड़ा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली इतना लोग भावनात्मक रूप से कैसे जुड़े इसके साथ में और उन्होंने कितना ये हनुमान चालीसा पढ़ना, जूते उतारना। आपको बताऊं पहले 2 वीक में लोग जूते नहीं उतारते थे, या हमारी जितनी स्क्रीन हुई यही इस यहां पर भी, अब ये हो रहा है कि अब कीर्तन भी वो थिएटर वाले करने दे रहे हैं, अब जो है वो हनुमान चालीसाएं भी लोग पढ़ रहे हैं, जूते उतार रहे हैं, ऑल्टर बन रहा है, तो ये सब हमारे सोच के समझ से बाहर है, परे है। कहीं ना कहीं एक हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पे एक स्पिरिचुअल प्लेन भी है जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप सुन सकते हो, आप उसको सिर्फ समझ सकते हो। अगर आपके अंदर वो आप उसको समझ सकते हो, यदि आपके अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू, आपके अंदर अगर वो दृष्टिकोण है तो ही आप उसको देख सकते हो।
7: फिल्म जब बन रही थी और फिल्म बनने का सपने कैसे कैसे आते, नॉर्मल सपने आते थे या कुछ उसमें भी यही चिंता टेंशन रहती थी फिल्म को लेकर?
8: चिंताएं ही रहती थी, तो सपने तो बहुत दूर की बात है, फिल्म को है? बहुत थक जाते थे। नहीं, सपने का मतलब उनका कहने का मतलब है ये जो हो गया आज उसके सपने आते थे।
7: क्यों? कहीं कोई डायरेक्शन आ रहा हो, कहीं कुछ आ रहा हो, ऐसा कुछ?
8: हाँ, वो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या होता है ना, वही कह रहा हूँ, दृष्टिकोण है। यदि आप उस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, स्पिरिचुअलिटी दृष्टिकोण है, यदि आप देखना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे साइंस दिखने शुरू होते हैं। स्वाभिनव का रिप्लेस होना उसके साथ में, चंदन के आनंद को भोसले बनाना, मिश्रा जो है उनको बनाना, क्या नाम है, नासिर अली बनाना राजीव मिश्रा को, और वो जो सुखी राम जो रोल प्ले कर रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे रोल चेंज हुए। पर वो मैं बहुत ही इंस्टेंट, जैसे बोलते हैं ना, इंट्यूशन बेस्ड कई बार होती बात, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक लग रहा होता है कि ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसे करने पे बहुत सारे रोल्स चेंज किए हमने। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारी फिल्म में जो अंग्रेज बैठे हैं वो तीनों अंग्रेज जो जिन्होंने रोल किया है वो रशियंस हैं, और बाकी अंग्रेज क्या है वो नम्रता बताएंगे।
9: मैं बताऊंगी, हलवाई और अल्बिनोज है, लोकल हलवाई और अल्बिनोज है, दैट लिव यू शुड सर्कल, दैट इज सो फनी।
7: महाराज जी ने अपने जीवन में हनुमान जी के मूर्तियां स्थापित करने का सुंदर कांड के पाप पे बहुत सुंदर कांड आपके इस फिल्म में कितना रोल पड़ा?
8: सुंदर कांड की वो कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाई, ये लाइन हमने सुंदर कांड की फिल्म के एंड करने के समय इसका प्रयोग किया है। और ये सुंदर कांड भी बहुत सारे महामंत्रों से भरा हुआ एक, जिसे बोलते हैं कि वो पोर्शन रामचरित मानस जी मानस का। और इसके अलावा हनुमान चालीसा का हमने बहुत आयत उसमें मात्रा में प्रयोग किया है, जब महान जी से बात करता है तो हनुमान चालीसा के रेफरेंसेस देता है कि तुमरे भजन राम जी को पावे, है ना। हनुमान चालीसा, वो हनुमान चालीसा का अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता से जब वो पानी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो 30 चौपाइयां पढ़ चुका है पानी के अंदर, इसलिए वो 31वीं से पढ़ते पढ़ते बाहर निकलता है।
5: ऐसे हमने उसको एस्टेब्लिश किया कि बच्चे ढूंढ रहे हैं। तो हनुमान चालीसा फिल्म के एंड में लास्ट जो फाइनल सिक्वेंस है वो पूरा हनुमान चालीसा के अराउंड ही है। हनुमान चालीसा कैसे पढ़े जानी चाहिए, क्यों पढ़े जानी चाहिए, और हनुमान चालीसा को शुद्ध रूप से ऐसे पढ़ते हैं वो तो खैर मैं बताने वाला कोई नहीं हूं, पर पूरी हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, अंदर से पढ़ना, आत्मसात करनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को हमने तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जिसे बोलते हैं ना कि उनका जो अनोखा हम सभी को एक जो उपहार वो देके गए हैं पूरी पूरी पूरी मानव जाति को, तो हमने उसका हमने प्रयोग कर लिया। इसके लिए हम बहुत जिसे बोलते हैं वी आर वेरी लकी।
2: कब तक वो दूसरा पार्ट आएगा?
5: दूसरा पार्ट वो फिर इनकी कृपा से ही बना है, वो उनकी कृपा से ही दूसरा पार्ट ही बनेगा। वैसे ही आपको हो सकता है कि नम्रता जी ज्यादा बेटर आंसर देंगे।
9: सो आई कीप रेफरिंग टू दिस कि जब भाव ठीक होगा, जब महाराज जी की मर्जी होगी। एंड हमारे पास एक स्लाइड, आई रिमेम्बर दैट स्लाइड जिसमें टिली जी की स्लाइड है ऑरेंज कलर की, जिसमें आई वाज जस्ट फाइंडिंग इट द अदर डे, उस पर लिखा है डायरेक्टेड बाय महाराज जी, एग्जीक्यूटिव बाय विशाल चतुर्वेदी। जिस दिन वो होगा उस दिन हो जाएगा मेरे ख्याल से।
5: हाँ, उसमें था कि डायरेक्टेड बाय हनुमान जी एज सॉरी नहीं डायरेक्टेड बाय विशाल चतुर्वेदी, अच्छा हनुमान जी एक जगह कहीं किसी और जगह मैंने किसी प्लेट पे लिखा था कि डायरेक्टेड बाय हनुमान जी, नहीं डायरेक्टेड बाय विशाल चतुर्वेदी एज डायरेक्टेड बाय हनुमान जी।
7: मैंने एक रील देखी जिसमें विदेशी एक तारे पे
5: गा रहे हैं जी,
7: मैंने रे भरोसे, वो अपने भाव से गा
5: मैंने तेरे ही भरोसे, अच्छा था, ब्यूटीफुल इट वॉज गुड। या धन्यवाद।
10: इन सारे लोगों से बातचीत करके सुंदरकांड की यही चौपाई जहन में आती है, जिस विनम्रता से इन सारे लोगों ने सफलता को आत्मसात किया है और महाराज जी का नाम किया, हनुमान जी का नाम किया है, कि उसमें यही समझ में आता है कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा।
0: बाबा नीम करौली के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश सफलता के झंडे काट रही है और फिल्म के मुख्य अभिनेता शोभिनय सत्या ने के साथ खास बातचीत में बताया है कि फिल्म के लिए काफी पहले से बाबा ने उनके जीवन पर क्या कुछ बदलाव किए तब तो उन्हें खुद भी पता नहीं चला था और अब इसका पता चलता है तो वो रोमांचित हो उठते हैं। देखिए शोभिनय सत्या के साथ हमारी खास बातचीत और सुनिए फिल्म की कहानी खुद हीरो की जुबानी। जानिए कैसे शोभिनय सत्या बने हनुमान अंश के हीरो, बाबा का किरदार करने से जुड़े कितने चमत्कार शोभिनव को महसूस हुए, सुनिए।
10: इस फिल्म के साथ बहुत सारे संजोग जुड़े हुए हैं, तो उन संजोग में से सबसे ज्यादा मतलब आपको बिल्कुल हमेशा ना भूलने वाला ऐसा कौन सा संजोग, कौन कौन सी घटना है?
11: देखिए क्या होता है कि लीला चमत्कार अलग होता है और आप बोल रहे हैं संजोग, तो मैं तो संजोग जैसा कुछ बिलीव नहीं करता हूं। इस फिल्म में जो कुछ भी हुआ मेरे लिए तो वो सब कुछ एक लीला है, एक चमत्कार है। लेकिन फिर भी अगर संजोग की बात करें तो वो ये है कि मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी और डेथ के बाद में मैंने अपने सारे बाल हटा दिए थे, एक शिखा रखी हुई थी और दाढ़ी पूरी हट गई थी और मूछें रखी हुई थी, तो उस वक्त पे जो मेरा लुक था वो कहीं ना कहीं सर को, हमारे डायरेक्टर सर को, प्रोड्यूसर्स को, सारे लोगों को, कहीं ना कहीं टीम के भी लोगों को लगता था कि मैं बाबा जी जैसा दिखता हूं, उनके यंग एज जैसा दिखता हूं। तो ये संजोग था कि उस तरीके का लुक था, अगर मेरे दाढ़ी बड़ी होती, बाल बड़े होते तो शायद किसी के माइंड में वो इमेज नहीं आती, तो ये एक तरीके का संजोग था जो एक चमत्कार बन गया मेरे लिए जी।
10: जैन जी को लेकर आप लोग कितने निश्चिंत थे कि जैन जी इस फिल्म को लेकर इतना फैसिनेट होगा?
11: देखिए जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो मतलब वो बहुत छोटे बच्चे भी जैसे हैं और उनका जो सोचने का तरीका है वो हर किसी वर्ग के बारे में सोच सकते हैं, तो और उनका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा है, वो खुद भी एक सिंगर है, उन्होंने गाना भी गाया हुआ है, तो उन्होंने इतना अच्छा अट्रैक्शन मूवी में डाला हुआ है, उन्होंने 11 सॉन्ग्स डाले हुए हैं गाने में, फिल्म में गाने डाले हुए हैं और वो जो भी है वो ऐसा है कि वो जेंजीज को पसंद ही आने वाला था, ऐसा उनका भी मानना था और हमने भी जब सुना तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक था और होपफुली वो सारे जेंजीज को समझ में भी आ रहा है। और दूसरी बात ये कि स्टोरी लाइन भी ऐसी है, क्योंकि बाबा की कहानी जो है ना वो बहुत ही मिरेकुलस भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, तो बाबा की कहानी है, उनका जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, तो जब उनकी कहानी हम पर्दे पे देख रहे हैं तो क्या जेंजी, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी को वो पसंद ही आने वाली थी। और लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम किसी संत के बारे में कुछ दिखा रहे होते हैं, तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होता है, प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं। तो उनकी कृपा रही कि इतना अच्छा प्रोडक्ट निखर के आया कि वो सिर्फ जेंजीज ही नहीं, हर वर्ग को पसंद आ रहा है।
10: जो नई पीढ़ी के बच्चों की मानसिकता है उसको अध्यात्म की ओर ले जा रही है, भजन क्लबिंग की ओर ले जा रही है। भजन क्लबिंग में प्रधानमंत्री खुद भी आए और पूरी टीम का मनोबल भी बढ़ाया और जेन जी के साथ वो दिखे भी भजन क्लबिंग में, जिसमें हनुमान अंश की टीम ने वहां पर संगीत प्रस्तुत किया था।
11: जी जी, मैंने वो देखा और उसकी तो जितनी भी तारीफ, मतलब वो तो हर जो चीज वो करते हैं देश के लिए और देश की जनता के लिए। अब देश की जनता में बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं और जेंजीज भी आते हैं, जेन अल्फा भी आते हैं, तो हर तरीके के जनरेशन के लोग आते हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो इतने, उनको तो मैं सिद्ध पुरुष बोलता हूँ, सिद्ध संत बोलता हूँ, कि उनके पास में एक सिद्धि है कि वो हर वर्ग के लोगों को, हर किसी को मोह सकते हैं। और इस समय वो काम कर रहे हैं जेंजीज पे और उनके साथ में वो बच्चों की तरह नाच रहे, मतलब बेसिकली वो एक झूम रहे थे अपने हाथ में वो कुछ ऐसा गोल सा लेके, करताल मंजीरा, हाँ, तो वो ऐसा करके ऐसे झूम रहे थे। तो वो कितना, वो बच्चे जैसे वो बिल्कुल हो गए थे। तो वो इतनी प्यारी इमेज, मैं तो मतलब क्या ही, मैं तो ऐसे धन्य हो जाता हूँ कि मैं उनके टाइम पे मैं उनको देख पाया और ऐसे टाइम पे हमने जन्म लिया कि उनको हम देख पा रहे हैं। हम तो बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं।
10: फिल्म से पहले और फिल्म के बाद जीवन में, शैली में क्या बदलाव महसूस कर?
11: फिल्म के बाद में
10: पहले कैसा था?
11: पहले तो मैं
10: इतने स्पिरिचुअल थे या
11: हमेशा से, क्योंकि अगर मेरा जो स्पिरिचुअलिटी को लेके जो सोचना है या जो मतलब मैं करता था अपनी रियल लाइफ में, या फिर वो सात्विक भोजन करना हो, सात्विक जिंदगी जीना हो, भाषा का जो प्रयोग है वो भी बहुत सात्विक था मेरा हमेशा से। और मैं मतलब ऑफिस में भी हंसता खेलता रहता था और खुश ही रहता था हमेशा। और ये सारी चीजें टिक मार्क थे जिस वजह से डायरेक्टर सर ने मेरे बारे में सोचा, वरना शायद वो भी ना सोचते। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा जी ने और हनुमान जी ने ऐसी लीला रची थी कि उन्होंने सालों से मुझे प्रिपेयर करके भेजा था। उस वक्त पे लगता था कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इतना सात्विक और ये सब ऐसा जीवन क्यों व्यतीत कर रहा हूं। तो अब जाके उसका आंसर मिला है कि ये तो सालों की तैयारी थी और इस फिल्म में काम करना था तो हनुमान जी ने और बाबा जी ने ये लीला रची हुई थी। जी,
10: फिल्म के बाद कैसा?
11: बाद तो ऐसा हुआ कि अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि बाबा ने एक ऐसा मौका दिया है मुझे और इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और मैं उसको लेकर बहुत सजग भी रहता हूं और मुझे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी है आगे भी जीवन में। और इसके लिए मैंने बोला भी हुआ है कि आने वाले जीवन में मैं मर्यादित करेक्टर करूंगा। और अब मैं और ज्यादा मतलब, हाँ, ये बदलाव आ गया है कि अब ना बाबा को, मतलब जैसे बाबा ना दूसरों के बारे में, उनका पूरा जीवन, एक संत का जो जीवन होता है वो खुद के लिए तो होता ही नहीं है, वो समाज के लिए, लोगों के लिए, जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए, इन सब के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं उनसे वो चीजें सीख के एक फील आता है, जब भी मैं लोगों से मिलता हूं और कहीं भी किसी भी जगह पे जाता हूं तो कहीं ना कहीं एक फील आता है कि कुछ करेंगे समाज के लिए, लोगों के लिए, और जिम्मेदारी से काम करेंगे और उनके लिए कुछ करेंगे। जी,
10: शोभिनो सत्य ने अपने दिल की बात कही, अब इनके दिल की बात थोड़ा हम भी बता दें, क्योंकि लीगल और सुप्रीम कोर्ट कवर करते करते हम भी एडवोकेसी थोड़ी तो कर ही लगे हैं। इन्होंने जो कहा नहीं वो चेरी ऑन द केक टॉप यही है कि जन्म हमार सफल भा आजू, प्रभु के कृपा भयो सब काजू। यानी प्रभु की कृपा से सारा काम हो गया और जन्म सफल हो गया। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा।
0: और इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का, दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
2: क्या ये सच है आपने मेरी मायरा को थप्पड़ मारा? हाउ डे यू,
3: आप दोबारा उसे अपनी बेटी मत कहना।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है।
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: एशियन गेम्स में भारत के लिए आज गुड न्यूज, ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर, पिंकी को कुराश में ब्रॉन्ज।

0: से शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा, 8वें चरण की गिनती में भंडारे से निकले 29 करोड़ से ज्यादा रुपए, ऑनलाइन दान और सोने चांदी के आभूषणों का होगा हिसाब। झांसी में 878 परिवारों ने किया सामूहिक तर्पण, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान, पितृपक्ष में धार्मिक अनुष्ठान। यूपी में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, वाराणसी में गंगा घाटों तक पानी पहुंचा, गोपालगंज में प्रशासन अलर्ट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
0: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: एशियन गेम्स 2026 का आज भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा बरकरार, कई मेडल्स की उम्मीद। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 39 पदक जीते हैं, भारत फिलहाल अंक तालिका में 12वें नंबर पर बरकरार है। कुराश में भारतीय टीम ने जीता पदक, विमेन्स 78 किलोग्राम वर्ग के पिंकी बलिहार को मिला रजत। विमेन्स 25 मीटर पिस्टल में भारत के नाम एक और पदक आया है, ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत का बॉक्सिंग में चौथा मेडल पक्का, लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। सांवलिया जी मंदिर में टूटा दान का रिकॉर्ड, गिनती जारी, 8 चरण तक भंडार से निकले 29 करोड़ से ज्यादा रुपए, 8वें चरण में 51,68,630 रुपए की हुई गिनती, भंडार की गिनती के अभी कई चरण बाकी। सांवलिया जी मंदिर में छोटे नोट और सिक्के भी गिने जाने बाकी, ऑनलाइन दान का भी होगा हिसाब। सांवलिया सेठ के दरबार में भक्त नगदी के साथ सोने चांदी का भी करते हैं दान, मंदिर में जमा आभूषणों के वजन और गणना बाकी। अमावस्या से एक दिन पहले खोला गया था सांवलिया जी मंदिर का दान पात्र, झलझुलनी मेले के चलते 4 दिन बाद भी दोबारा शुरू हुई थी दान राशि की गिनती।
2: भारतीय सेना आज मना रही गनर्स दिवस, वीर शहीदों के साथ शौर्य के दिनों को याद किया जा रहा। गनर्स दिवस पर सेना ने एक बेहद शानदार और जोश से भरा वीडियो जारी किया है, पारंपरिक से लेकर आधुनिक तोपों की सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन इसमें किया। कठिन हालात में आर्टिलरी के जबरदस्त क्षमता को प्रदर्शित किया गया, गनर्स के पराक्रम को यहां पर दिखाया गया। आज के दिन ही 1827 में गठित हुई थी 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी, इसी की याद में मनाया जाता है गनर्स दिवस। आज देश मना रहा है शहीद भगत सिंह की जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो जारी करके उनको नमन किया।
0: लेह में 3 दिवसीय लद्दाख महोत्सव जारी हुआ, समृद्ध संस्कृति और साहसिक खेलों का दिखा संगम। लद्दाख महोत्सव में पहली बार महिला पोलो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, प्रतिभागियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बनिहाल में खेला गया इंडियन आर्मी क्रिकेट लीग का फाइनल मुकाबला, कुलगाम की टीम को मात देकर विजेता बनी अनंतनाग की टीम। करनाल में 75वें ऑल इंडिया रेसलिंग क्लस्टर का हुआ आयोजन, देशभर से विभाग के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। कानपुर देहात में किसानों को मिल रहा सॉइल हेल्थ कार्ड का फायदा, लागत घटी और फसलों में सुधार।
2: 52 दिन बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने रचा इतिहास। 400 करोड़ की क्लब में हुई शामिल। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 401 करोड़ 20 लाख तक पहुंचा। रविवार को हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ का कारोबार किया। भारत में ग्रॉस कलेक्शन 362 करोड़ 70 लाख के पार। सिद्धार्थ मल्होत्रा तमन्ना भाटिया की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई। कल फिल्म ने 14 करोड़ की कमाई की। 3 दिन में दुनिया भर में 43 करोड़ कमाए। फिल्म द पैराडाइज ने कल 15 करोड़ 70 लाख का कारोबार किया। 4 दिन में भारत में नेट कलेक्शन 109 करोड़ और दुनिया भर में कमाई 138 करोड़ के पार पहुंचे। मिर्जापुर द मूवी ने कल 1 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए। 23 दिन में भारत में ग्रॉस 268 करोड़ पहुंचा कारोबार। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 328 करोड़ के पार हुआ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। सेना मना रही है गनर दिवस। 28 सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की हुई थी स्थापना। मां भारती वीर सपूतों को किया जा रहा है नमन। एशियन गेम्स में भारत के लिए आज शुभ दिन। ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल में जीता है सिल्वर। पिंकी को कुराश में मिला ब्रॉन्ज। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा। आठवें चरण की गिनती में भंडार के निकले 29 करोड़ से ज्यादा रुपए। लता मंगेशकर जी को दी गई अनोखी श्रद्धांजलि। 57वीं जयंती पर सैंड आर्टिस्ट दर्शन पटनायक ने बनाई भव्य कलाकृति। स्वर कोकिला को नमन किया। यूपी में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। वाराणसी में गंगा घाटों तक पानी। गोपालगंज में प्रशासन अलर्ट।

0: और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प की, जिसमें एक और भारतीय सेना अपने आप को लगातार अत्याधुनिक बना रही है तो स्वदेशी हथियारों से लैस भी करती जा रही है। दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ युद्धाभ्यास कर अपनी सैनिक क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त भी भारतीय वायुसेना जोधपुर एयरबेस पर पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। जोधपुर में तरंग शक्ति एडिशन चल रहा है, इसका दूसरा एडिशन जारी है, जिसमें भारत के साथ दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमान अपना ताकत और जौहर दिखा रहे हैं।
1: जोधपुर एयरबेस पर चल रहे इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के 3,000 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार अमेरिका के पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 हिस्सा ले रहे हैं। भारत की सरजमीं पर हुए किसी भी युद्धाभ्यास में यह पहली बार है जब अमेरिका का F-35 फाइटर जेट शामिल हुआ है।
0: और देखिए, जोधपुर एयरबेस पर 26 सितंबर से शुरू हुआ इस साल का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 12 अक्टूबर तक चलेगा और भारत समेत सभी 8 देशों की वायुसेना अपना हवाई शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। इसके अलावा 32 अन्य देश इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुए हैं।

0: 8 देश, 80 आधुनिक एयरक्राफ्ट और 1500 जवान, ये है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की ताकत, जिसका प्रदर्शन इन दिनों जोधपुर के आसमान में शुरू हो चुका है। इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा 7 मित्र देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान अलग अलग देशों के ये लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरकर रणनीतिक तालमेल और हवाई युद्ध की बारीकियों को आपस में साझा कर रहे हैं, ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जैगवार जैसे लड़ाकू विमानों को उतारा गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हवा में ही ईंधन भरने वाले एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि इस साल के तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना का 5वीं जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट F-35 आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो पहली बार इस मेगा एयर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। यही वजह है कि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी जोधपुर पहुंचे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना की भागीदारी को लेकर खुशी जाहिर की है। ये एक्सरसाइज 12 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान एक साथ गरजते लड़ाकू विमान केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन भर नहीं है, बल्कि दुनिया भर की प्रमुख वायुसेनाओं के साथ भारत के मजबूत होते रक्षा संबंधों की एक बुलंद तस्वीर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी और पहला संस्करण दो चरणों में सूलर और जोधपुर में आयोजित किया गया, और इसमें फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे।
2: और देखिए, इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया की EA-18G ग्राउलर, ग्रीस और यूएई के F-16 और अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब 2026 में तरंग शक्ति के इस दूसरे संस्करण को सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा है, जिसमें पहली बार अमेरिकी एयरफोर्स की 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 भारत की सरजमीन पर हो रहे युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है।
1: भारतीय वायुसेना इस युद्धाभ्यास में अपने प्रमुख लड़ाकू विमानों के साथ उतरी। तेजस, सुखोई 30 MKI राफेल, मिराज 2000 और साथ ही जैगवार और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास में हिस्सा भी लिए।
2: और देखिए, अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट पहली बार भारत में हो रहे किसी भी युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स के 2KC-135 हवा में ईंधन भर देने वाले विमान भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन यहां पर करेंगे।
1: वहीं फ्रांस वायुसेना की ओर से 7 राफेल लड़ाकू विमान, 3 A400 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान और 2 हवा में ईंधन भरने वाले विमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे।
2: और देखिए, इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात

0: 400M एटलस सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान इस अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। तो बांग्लादेश वायुसेना के एक C-130J ट्रांसपोर्ट विमान और श्रीलंका के वन किंग एयर 350 निगरानी विमान भी इस युद्ध अभ्यास में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: और देखिए, भारतीय वायुसेना आज अपना गनर्स डे भी मना रही है। भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट का 200वां गनर्स डे यानी तोपखाना दिवस है। हर साल 28 सितंबर को भारतीय सेना इसे बड़े ही गर्व और सैन्य सम्मान के साथ मनाती है।
0: तोपखाना रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण और दूसरी सबसे बड़ी शाखा है। दरअसल किसी भी युद्ध में इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना के आगे बढ़ने से पहले दुश्मन के बंकर्स और ठिकानों को तबाह करने का काम तोपखाना ही करता है। तोपखाना के सैनिकों को गनर कहा जाता है।
1: और देखिए, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारत के वायुसेना के तमाम दिग्गज विमानों ने अपना दमखम दिखाया। हवा में तैरते हुए इन विमानों को आप देख सकते हैं और ये संदेश साफ तौर पर दुश्मनों को देते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्ण तरह से तैयार हैं।

चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एशियन गेम्स में भारत के मिशन गोल्ड की।

0: एशियन गेम्स में आज भारत की बेहतरीन शुरुआत हुई है। आज भारत ने दो मेडल अपने नाम किए। विमेन्स 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल किया।
1: देखिए गुड न्यूज आपको दिखा रहे हैं, विमेन्स 75 किलोग्राम वर्ग कुराश में पिंकी बलहारा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथ ही इसके साथ भारत के अब तक मेडल टैली जो है वो 39 तक पहुंच चुकी है, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं, 18 ब्रॉन्ज हैं। इसी के साथ भारत मेडल टैली में 12वें नंबर पर बना हुआ है। देखिए एशियन गेम्स में भारत का प्रदर्शन लगातार जारी है। इंडियन एथलीट्स का ये दमदार प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह जैसे ही हुई इंडिया के लिए एक और गुड न्यूज आई। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में ईशा सिंह को रजत पदक मिला है। इसके साथ ही भारत के मेडल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारत है मेडल टैली में 12वें नंबर पर।
0: तो सभी के लिए गुड न्यूज, कुराश में पिंकी को खिताब मिला, वहीं भारत के खाते में अब तक कुल 39 मेडल हासिल हो चुके हैं। यानी 39 मेडल की जीत के साथ भारत आ गया है। इसमें 4 गोल्ड, 17 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज भारत को मिल चुके हैं।
1: और देखिए एशियन गेम्स की बात हो रही है तो एशियन गेम्स 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी खुशी आई है। मिशन गोल्ड के लिए कदमताल कर रही टीम इंडिया सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। आज भारत का सामना क्वार्टर फाइनल में होगा अफगानिस्तान के साथ, लेकिन बारिश और खराब मौसम के चलते और मैदान भी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से टॉस तो नहीं हो सका। यानी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम बिना एक भी गेंद फेंके बेहतर रैंकिंग और सीडिंग के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंच गई, जहां उसका सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम के साथ होगा। इससे पहले पाकिस्तान और हांगकांग के बीच में खेला जाने वाला क्वार्टर फाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा था। पाकिस्तान बेहतर रैंकिंग की वजह से सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला बांग्लादेश और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच के विजेता के साथ होगा।
0: अगर सेमीफाइनल मैच भी बारिश की वजह से रद्द होता है तो भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये दोनों टीमें आईसीसी T20 रैंकिंग में दूसरे टीमों से काफी बेहतर है। अगर ऐसा होता है तो फिर फैंस को मेडल मैच में भारत बनाम पाकिस्तान ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिल सकता है। फाइनल मैच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अगर बारिश की वजह से फाइनल मैच भी धुल जाती है तो

0: तो भारत अपने शीर्ष रैंकिंग के आधार पर स्वर्ण पदक जीत सकता है।
1: वो देखिए, भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने के प्रबल दावेदार भी है। पिछले एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की महिला टीम पहले ही गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है।
0: देखिए, भारत को कबड्डी में डबल गोल्ड जिताकर लौटे चैंपियंस का दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस दौरान खिलाड़ी भी बेहद उत्साहित दिखे और इनका मानना है कि सफलता का ये सफर लंबा चलेगा और फैंस को जश्न मनाने के मौके मिलते रहेंगे।
2: ये खिले चेहरे ये खुशी साफ बयां कर रही है कि ये युवा सितारे एशियन गेम्स में कामयाबी की सुनहरी चमक बिखेर कर घर लौटे हैं। फाइनल में ईरान को 40-34 से चित कर गोल्ड पर कब्जा कर लौटी पुरुष टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने दिल खोल कर स्वागत किया। इस दौरान इन चैंपियंस का जोश भी आसमान छू रहा था।
3: प्राउड की बात कुछ हो ही नहीं सकती यार। लगना तो ऐसा है कि अभी फील ही नहीं हो रहा कि हम उधर जीत के आए, लेकिन फील तो इधर हो रहा है जो हमारा वेलकम हो रहा है, इंडिया वालों को वेलकम हो रहा है गोल्ड मेडल के साथ। भाई कहना तो यही चाहूंगा कि कुछ बयान नहीं कर सकता खुशी अपने देशवासियों को देख के, अपने देश में पैर रख के जो हो रहा है।
2: कबड्डी में एशियन गेम्स में भारत को डबल गोल्ड हासिल हुआ है। भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने ही एशियन गेम्स में भारत का नाम रोशन किया है। एशियन गेम्स में शुरू से ही पुरुष टीम का दमखम रहा है। अब तक हुए 10 एशियन गेम्स में पुरुष टीम ने 9 खिताब अपने नाम किए हैं। इस बार कबड्डी के मैदान पर महिला टीम ने भी गोल्ड जीत कर ऐलान कर दिया है कि कोई नहीं है टक्कर में, हर तमगा है टीम इंडिया की मुट्ठी में।
4: अच्छा लग रहा है, हमारा गोल्ड आया है, मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है, हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी टीम में बॉयज का भी गर्ल्स का भी गोल्ड आया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहना चाहूंगी आगे भी गोल्ड लेके आएंगे। बस
5: हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि सबकी ब्लेसिंग हमारे साथ रही है और हमने पूरी मेहनत करी थी इस चीज के लिए और हम आखिरकार ये मुकाम हासिल कर पाए हैं तो बहुत खुशी हो रही है। बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जहाँ से शुरू हुई है चीजें वो चीज अचीव होती है, तो कबड्डी यहीं से शुरू हुई है तो हमें पूरा विश्वास था कि लड़के भी जीतेंगे और लड़कियां भी अच्छा करेगी और गोल्ड लेके आएगी।
2: कबड्डी प्लेयर्स के साथ ही शूटिंग में जलवा दिखाकर लौटे भारतीय एथलेटिक्स का फैंस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों की थाप और फूल मालाओं से स्वागत किया। ये जोश ये उत्साह बता रहा है कि जश्न का सिलसिला अभी लंबा चलने वाला है और फैंस को अभी सेलिब्रेशन के कई मौके मिलने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात भारतीय वनडे टीम की करते हैं। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 8 विकेट से हरा दिया। 3 वनडे मैचों की सीरीज है, अब भारत को 1-0 से बढ़त हासिल हो गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस शानदार जीत के हीरो रहे विराट कोहली, शुभमन गिल और कुलदीप यादव। इस तिकड़ी के शानदार प्रदर्शन के दम पर ही टीम इंडिया ने सीरीज के साथ जीत का आगाज भी किया है। देखिए वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की विराट जीत की एक्शन पैक्ड स्टोरी क्या है।

0: वही हुआ जिसकी हर क्रिकेट फैन को उम्मीद थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ त्रिवेंद्रम में टीम इंडिया ने जीत के साथ सीरीज का शंखनाद किया है। सोने पर सुहागा ये कि फैंस को इस मैच में विंटेज विराट कोहली का जलवा देखने को मिला। विराट ने महज 88 गेंदों पर 139 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 10 चौके और 9 छक्के लगाए। ये विराट का वनडे में 55वां शतक था। इस रिकॉर्ड तोड़ पारी के साथ ही विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। महज 303 पारियों में 15,000 रन का अंबार खड़ा कर विराट ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 377 पारियों में ये कीर्तिमान हासिल किया था। विराट का कहना है कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड उनके लिए मायने नहीं रखता, टीम का लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना है और हर कदम उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जाहिर है त्रिवेंद्रम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में फैंस को जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए। जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंदों में ये लक्ष्य भेद कर मुकाबला अपने नाम किया। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 विकेट से मिली इस जीत में कप्तान शुभमन गिल की भी अहम भूमिका रही। गिल ने 108 गेंदों पर 110 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन इस पाटा विकेट पर गेंदबाजी के मोर्चे पर दम दिखाया फिरकीबाज कुलदीप यादव ने। कुलदीप ने 10 ओवर में 40 रन खर्च कर 4 विकेट झटके और एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस शानदार प्रदर्शन के बाद आम दर्शक ही नहीं, सियासत की दुनिया के सूरमा भी कुलदीप यादव की फिरकी के कायल हो गए।
1: I think that Kuldeep bowled very well. I think he's the man of the match for me because there's nothing in the wicket for the bowlers. You could see that the West Indies tried, they could get another flat wicket. There wasn't much seam movement for the pacemen, there was not much turn. So Kuldeep's command of line and flight and so on made all the difference. And he was able to hold back the progress of the West Indies batsmen after they'd got off to a fantastic start. Their start was so strong that they were on course for a score in the high 300s, maybe even 400.
0: West Indies ke khilaf is run chase mein chase master Virat Kohli puri innings mein chhaye rahe. Unhone 42vi gend ki teesri aur phir chauthi gend par lagatar do chhakke jadkar badi aasani se ye jeet dila di. Iske alawa Kuldeep Yadav ki firki ne bhi virodhi ballebazon ko khoob nachaya aur kaptan Shubman Gill bhi rang mein dikhe. Yakeenan ye one day format mein भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भारतीय टीम की इस विराट जीत के हीरो रहे किंग कोहली। विराट जब बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे तो उन्होंने शुरुआत में ही छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए और इस दौरान विराट अलग ही रंग में नजर आए। मैच के बाद विराट कोहली ने भी साफ कर दिया कि अब उन्हें 1-2 गियर ऊपर खेलना ही है।

0: वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन मशीन विराट कोहली का बल्ला एक बार फिर ऐसा गरजा कि मैदान पर चौके छक्कों की बरसात आ गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब जब विराट कोहली क्रीज पर उतरते हैं तो विरोधी गेंदबाजों के पास सिर्फ बेबसी बचती है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की क्लास लेते हुए विराट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें रन मशीन क्यों कहा जाता है। इस बार सिर्फ विराट का फॉर्म ही नहीं बल्कि उनका अंदाज भी पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में विराट ने साफ कर दिया कि वो अब अपनी बल्लेबाजी को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। विराट कोहली ने कहा है कि मेरे लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मैं अपनी बल्लेबाजी में एक दो गियर ऊपर जाऊं। जब करियर के इस पड़ाव पर आपको खुद का एक नया वर्जन तलाशना होता है तो ये रोमांचक होता है। इससे आप जिस भी टीम के लिए खेलते हैं उसे फायदा होता है। मेरे लिए खुले दिमाग से खेलना काफी मददगार रहा है। जाहिर है कि कोहली का टारगेट विश्व कप 2027 है, जिसे ध्यान में रखते हुए आने वाले मुकाबलों में खुद को लगातार चुनौती देना चाहते हैं। इसके लिए इरादे उन्होंने जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि फिटनेस बनाए रखने के साथ साथ वो मैच के आखिरी 15 ओवर में भी लगातार बाउंड्री से बाउंड्री तक दौड़ने, इनर रिंग में फील्डिंग करने और अपनी पूरी ऊर्जा दिखाने पर ध्यान देना चाहते हैं। खुले दिमाग से खेलने के लिए शरीर का फिट रहना जरूरी है। जब आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं तो मैदान पर अपने खेल की बेहतर कल्पना कर पाते हैं और उसी के मुताबिक शॉट्स को अंजाम दे सकते हैं। विराट का ये बयान साधारण नहीं है। गियर ऊपर करने का सीधा मतलब है कि अब विराट सिर्फ पारी संभालेंगे नहीं बल्कि पहली ही गेंद से आक्रामक रुख अपनाते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाएंगे। यानी आने वाले मैचों में हमें विराट का और भी ज्यादा आक्रामक और बेखौफ अवतार देखने को मिल सकता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही सीरीज में विराट का ये नया वर्जन पहले ही नजर आ चुका है। विरोधी टीम चाहे कितनी भी रणनीति बना ले, लेकिन विराट 2.0 का तोड़ ढूंढना फिलहाल वेस्टइंडीज ही नहीं दुनिया की किसी भी टीम के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देश की राजधानी दिल्ली में शहीद आजम भगत सिंह पर एक मिनी म्यूजियम बनाया गया है, जहां भगत सिंह के जीवन विचारों, उनके साथ देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों की कहानी को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है। साथ ही म्यूजियम की दीवारों पर भगत सिंह के विचार और इंकलाब जिंदाबाद जैसे उनके क्रांतिकारी नारों को लिखा गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भगत सिंह के संघर्ष, उनके विचारों और देश के लिए उनके बलिदान से परिचित करवाना है।

0: शहीद आजम भगत सिंह, एक ऐसा नाम जिनकी आज भी आवाज और विचार आज के हमारे युवाओं में जोश भरते हैं, और उनके दिए गए बलिदान, उनके जो विचार थे, उनका जो त्याग था, उसको याद करते हुए आज दिल्ली में जो है एक ऐसा ही मिनी म्यूजियम जो है वो खोला गया है। उनके बलिदानों को, देश के लिए जो उन्होंने दिए, उसको याद करते हुए दिल्ली में आज आयोजित हुआ है चलो भगत सिंह के साथ। और इस कार्यक्रम के दौरान जो है उनकी विरासत को एक अलग ही अंदाज में लोगों के सामने, आज के युवाओं के सामने जो है वो लाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो ये आप मिनी म्यूजियम देख रहे हैं, आपको जगह जगह दीवारों में जो है भगत सिंह के कहे शब्द जो है वो नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे म्यूजियम को जो है वो तैयार किया गया है। उनके जो जीवन है, उनके जो विचार है, और उनके साथ देश के लिए जो कुर्बानी देने वाले शहीद है, उनकी कहानी भी आपको जो है इन तस्वीरों में जो है वो नजर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हर एक जो उनके साथ के जो शहीद थे, जो उनके थे, उनके जो साथी थे, उनकी जो तस्वीरें हैं, और कब उनको जो है उनकी जो कुर्बानी है, वो एक एक चीज जो है आपको इन तस्वीरों में जो है वो नजर आने वाली है। तस्वीरें आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये वो अदालत है जहाँ पर जो है उस समय जो है भगत सिंह और उनके साथियों के जो मुकदमे हैं वो यहाँ पर जो है सुने जाते थे। सारी चीज़ें यहाँ होती थी, तो उसको भी दर्शाया जो है यहाँ पर गया है। इस पूरे म्यूजियम की बात करें तो भगत सिंह के साथ जो है यहाँ पर राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाएं भी जो है वो स्थापित की गई है, और जो इन तीनों की क्रांतिकारियाँ जो है उनके जो बलिदान थे, वो जो देश के प्रति था, वो सब चीज़ें जो है उनके योगदान की जो है याद दिलाता है।
1: मॉस्को में कद्दू सिर्फ सजाए नहीं गए बल्कि पानी में उतारे गए, वो भी ऐसे कद्दू जिनका वजन 500 किलो तक है। किसी ने कद्दू को नाव बनाया, किसी ने पहनी मजेदार पोशाक, और फिर शुरू हुई तालाब में जाइंट पंपकिन रेस। रूस में पहली बार हुए इस अनोखे इवेंट में क्या और खास हुआ है, देखिए।

0: मॉस्को में सितंबर की ठंडी हवा, तालाब का शांत पानी और इस खूबसूरत माहौल में यहाँ चल रहा है बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल। दिलचस्प ये कि ये नावें लकड़ी या फाइबर की नहीं, सैकड़ों किलो वजनी विशाल कद्दू से बनी हैं। बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल में विशाल कद्दूओं को अंदर से खोखला किया गया, फिर उन्हें सजाकर बनाई गई है ये खूबसूरत नाव। कद्दू जितना बड़ा, चुनौती भी उतनी ही बड़ी। कहीं चेतावनी का बोर्ड तो कहीं पूरी तैयारी के साथ रेस में उतरने का जोश। किसी के लिए ये सालों की मेहनत का नतीजा है तो किसी के लिए बस एक ऐसा मौका जिसमें मस्ती भी है और मुकाबला भी। 400 से 500 किलो तक के कद्दू जब पानी में उतरे तो तालाब देखते ही देखते बन गया पंपकिन रेस ट्रैक और फिर शुरू हुई अनोखी सवारी। कद्दू के अंदर बैठे प्रतियोगी पैडल के सहारे आगे बढ़ते रहे। किसी ने चुना डरावना लुक तो किसी ने बच्चों के पसंदीदा किरदारों की पोशाक। किनारे खड़े दर्शकों के लिए भी ये किसी तमाशे से कम नहीं था, पानी पर तैरते विशाल कद्दू और उनके अंदर बैठे रंग बिरंगे किरदार। ये सिर्फ रेस नहीं, विशाल कद्दू उगाने वालों के लिए अपनी मेहनत को नए अंदाज में पेश करने का मौका भी है। तालाब में उतरते ही इन कद्दूओं ने पूरे फेस्टिवल का रंग ही बदल दिया और अब बारी थी इसे मुमकिन बनाने वाले आयोजक की कहानी सुनने की। रूस के 75 इलाकों से आए बागवान 200 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सब्जियां, लेकिन महफिल लूट गए ये जायंट कद्दू जो कद्दू खेतों में उगते हैं। मॉस्को के तालाब में वही नाव बनकर तैरते नजर आए। किसी ने इन्हें सजाया, किसी ने इन्हें बैठकर रेस लगाई और किसी ने अपनी बचपन की पोशाक पहनकर इस पल को और खास बना दिया। कहने को ये कद्दू हैं, लेकिन मॉस्को में इनका अंदाज बिल्कुल अलग था, जहां कद्दू सिर्फ सब्जी नहीं रहा बल्कि नाव भी बना और रेस का अहम किरदार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मौसम बर्फबारी का।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: क्या ये सच है आपने मेरी मायरा को थप्पड़ मारा? हाउ डे यू।
5: आप दोबारा उसे अपनी बेटी मत कहना।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में भारत के लिए आज शुभ दिन। ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर, पिंकी को कुराश में मिला ब्रॉन्ज।
3: मौसम साफ होते ही फिर से शुरू हुई चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन।
2: चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा, आठवें चरण की गिनती में भंडारे से निकले 29 करोड़ से ज्यादा रुपए, ऑनलाइन दान और सोने चांदी के आभूषणों का भी होगा हिसाब।
3: झांसी में 878 परिवारों ने किया सामूहिक तर्पण, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान, पितृपक्ष में धार्मिक अनुष्ठान।
2: यूपी में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, वाराणसी में गंगा घाटों तक पानी, गोपालगंज में प्रशासन अलर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का लंच टाइम में। अब बात कर लेते हैं बदलते मौसम की। सितंबर खत्म होने को है और मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ जो कि फिलहाल जारी है। खासतौर से हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चांदी सा चमकने लगा है।
1: तो देखिए, वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के साथ उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी में माहौल काफी सर्द हो गया। दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अचानक मौसम ने हिमालय क्षेत्रों में यू टर्न लिया है। ये सब तो आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में खासकर लाहौल स्पीति, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और उत्तरकाशी में हो रही बर्फबारी की सर्द तस्वीर दिखाते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदानी इलाकों में बदले मौसम क्यों हैं।

0: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मौसम का तेवर बदला तो काजा, चीचम, पेनघाटी, लांगजा समेत आसपास ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह सुबह बर्फबारी हुई तो देखते ही देखते इसने आसपास के ऊंचे क्षेत्रों को भी अपने आगोश में ले लिया। मानसून के जाते जाते इस पहली बर्फबारी ने तापमान गिरा दिया। पूरी स्पीति घाटी का माहौल सर्द हो गया है, तो वहीं लाहौल घाटी में तो बर्फबारी कुछ दिन पहले से ही हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 29 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो तापमान और गिरेगा, इसलिए एहतियातन स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी अचानक मौसम बदला, जिसके बाद से ऊंचे क्षेत्रों में खूब बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में लगातार बारिश ने तापमान काफी गिरा दिया है। यहां गोमुख ट्रैक के चीड़वासा, भोजवासा और गोमुख क्षेत्र में बर्फबारी हुई है, तो वहीं भारत चीन सीमा से लगे निलांग जादुंग क्षेत्र में भी बर्फबारी की खबर है। यकीनन मौसम खराब है, इसलिए यहां भी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल स्थगित है। तो वहीं इसी राज्य के चमोली जिले में बना हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी दिनों बर्फबारी से गुलजार है। जिधर नजर डालिए वहां बर्फ का राज है, मानो प्रकृति ने इस पूरे इलाके का ही अपने हाथों से सफेद श्रृंगार किया हो, लेकिन इस बर्फीले मौसम पर आस्था भारी है, श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। चमोली जिले में दरअसल शुक्रवार देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, ऐसे में भारत चीन सीमा से लेकर बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। कई जगह पर तो 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमा है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश ने तापमान गिराया हुआ है। हालांकि मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए अस्थायी तौर पर चार धाम यात्रा रुकी हुई है, बावजूद इसके भगवान बद्री विशाल के आंगन में आस्था पार है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दौरान कई श्रद्धालु पितृतर्पण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पहुंचे हुए हैं, ऐसे में ठंडे मौसम की ये मुश्किलें आस्था के आड़े नहीं आ रही। दरअसल मौसम का ये चक्र पलटने का असल जिम्मेदार देश के मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस भारी बारिश की वजह से लो प्रेशर बेल्ट क्षेत्र बना, यानी जिस क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव कम होता है, इस लो प्रेशर बेल्ट ने ही अब पहाड़ी राज्यों और हिमालय क्षेत्रों का रुख किया हुआ है, जिससे उम्मीद है कि पहाड़ी राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का माहौल बना रहेगा। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बीच गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। गंगोत्री के नजदीकी उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी होने की वजह से समूची गंगोत्री घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। गंगोत्री धाम की ऊंची चोटियां गोमुख और भारत चीन सीमा से सटे उच्च हिमालय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री धाम के आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ सप्तऋषि कुंड, बंदरपुंज और गरुड़ गंगा क्षेत्र में भी बर्फबारी हुई। इस बीच उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को हीना और डोबाटा होल्डिंग पॉइंट पर रोकने के निर्देश दिए गए, साथ ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र और स्मार्ट कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है।
2: मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था वो बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे विभिन्न स्थानों पर बंद हुए हैं, हालांकि मार्ग खोलने की कवायद लगातार जारी है। वहीं अगर गंगोत्री धाम की बात करें तो गंगोत्री धाम से लगे हुए जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं पूरी तरह से बर्फ से सराबोर हो गए हैं, या कहा जाए कि मौसम की पहली बर्फबारी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में शुरू हो चुकी है। यमुनोत्री धाम की अगर बात करें तो वहां भी जो है सप्तऋषि कुंड और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते निचले इलाकों में पूरी तरह से ठंड लगातार बढ़ती चली जा रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखाएं बारिश के नजारे की किस तरह से यमुनोत्री धाम के जो अहम पड़ाव है बड़कोट में भी बारिश का कहर लगातार दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यात्रियों के जो वाहनों के जो चक्के हैं वो थमे हुए हैं, यात्री सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मौसम कब साफ होगा और कब उन्हें धामों की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी।
1: देखिए, पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ। खासकर ट्रैकिंग वाले इलाके में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में कई पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स के फंसे होने की खबर है। प्रशासन के मुताबिक सभी सुरक्षित हैं और संबंधित टीमों से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। खराब मौसम के चलते इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नीचे लौटने वाले मार्गों पर आवाजाही फिलहाल बेहद चुनौतीपूर्ण बनी है। लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते राहत और वापसी अभियानों में मौसम बड़ी चुनौती बना है, लेकिन राहत की खबर है कि इन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन पूरी कोशिश में लगा है।
3: हाइक्स से ट्रैकिंग करने के लिए दो दिन पहले हम लोग 22 लोग यहां से ऊपर गौमुख के लिए निकले, बट हम भोजपासा में रुके दो दिन के लिए और बहुत बर्फबारी की वजह से आज हम वापस आना पड़ा। सब सही सलामत है और गंगोत्री नेशनल पार्क के सारे कार्यकर्ता ने हर एक थोड़े थोड़े सेक्टर पे हमारा बहुत सहायता किया और उसी वजह से हमने बहुत बहुत सकुशल सब नीचा है।
1: चलिए लेह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तीन दिन का लद्दाख महोत्सव 2026 शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया। इस महोत्सव में देशभर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। स्थानीय कलाकार अपनी कला से लद्दाख की कला और संस्कृति की झलक पेश कर रहे हैं।

0: लद्दाख अपने बर्फीली चोटियों, नीले पानी की झीलों और अद्भुत रेगिस्तानी वादियों के साथ धरती पर स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। नुब्रा घाटी के ठंडे रेगिस्तान में दो कुबड़ वाले ऊँटों की सवारी हो या खरदुम लापास की सड़कें दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है, जो बादलों के ऊपर होने का एहसास कराती है। शांति स्तूप और थिक्से जैसे प्राचीन बौद्ध मठ आध्यात्मिक शांति और खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। लद्दाख की संस्कृति और परंपरा के रंगों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हर साल लद्दाख फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 26 से 28 सितंबर तक 3 दिन के उत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें देश के अलग अलग कोने से आए कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि ये फेस्टिवल सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, जीवंत कला और बेमिसाल जज्बे का जश्न है।
1: महोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, जीवंत कला और आप सभी के बेमिसाल जज्बे का जश्न है। लद्दाख मतलब सिर्फ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और नीचे झील नहीं है। लद्दाख इन वंडर्स से कहीं अधिक आगे है। यह साहस, शांति, अध्यात्म और एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता प्रतीक है। सिंधु नदी के पवित्र लहरों से लेकर इन बर्फीली चोटियों तक लद्दाख के कणकण में एक अनूठी ऊर्जा बहती है।
0: इस साल महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विस्तार दिया गया है। उद्घाटन समारोह में शिलोंग चेंबर कायर ग्रुप ने अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 14 सदस्य विशेष सांस्कृतिक दल को आमंत्रित किया गया है। ये दल सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत अगले 3 दिनों में अपनी प्रस्तुतियां देगा। इसके जरिए लद्दाख के लोगों और पर्यटकों को अंडमान निकोबार की सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। महोत्सव में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के सहयोग से एक विशेष फ्यूजन कॉन्सर्ट भी आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों के कलाकारों को मिलाकर 47 सदस्य दल तैयार किए गए हैं। कलाकार विभिन्न उत्तर भारतीय संस्कृति और संगीत परंपराओं का संगम पेश करेंगे। लद्दाख फेस्टिवल में लद्दाख के सभी जिलों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को जगह देने की कोशिश की गई है। साथ ही उभरते और नई पीढ़ी के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराया गया है। महोत्सव का उद्देश्य लद्दाख की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को सामने लाने के साथ देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विविधता से लोगों को परिचित कराना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कुन न्यूज़ टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनटी।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: क्या ये सच है आपने मेरी मायरा को थप्पड़ मारा? How dare you?
6: आप दोबारा उसे अपनी बेटी मत कहना।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव, मुझ में ही है।
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के अकोला, जहां इस साल कम बारिश के कारण नदियों और घाट पर पर्याप्त पानी नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने बड़ी गणेश प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित ना करने की अपील की थी, और प्रशासन की इस अपील को गणेश भक्तों ने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उसे एक सकारात्मक पहल में बदल दिया है।
2: और देखिए, इस पहल में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अकोला के विश्वकर्मा मैकेनिकल वर्कर्स के संचालक राजेश सोनालीकर ने।
3: दस दिनों तक चला गणेशोत्सव खत्म हो चुका है, लेकिन अकोला में इस बार बारिश की कमी से गणेश विसर्जन पर इसका साफ असर देखने को मिला है। नदियों में पर्याप्त पानी न होने के कारण प्रशासन ने गणेश मंडलों और भक्तों से प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित करने की बजाय सुरक्षित स्थान पर रखने की अपील की। प्रशासन की इस अपील को लोगों ने न सिर्फ गंभीरता से लिया बल्कि उस पर अमल भी किया। इसी अपील के बाद करीब 20 से 25 बड़े गणेश मंडलों ने अपनी प्रतिमाओं को विसर्जित न करने का फैसला लिया।
4: मेरे पीछे जो बप्पा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं दिख रही है, ये यहाँ पर इस वक्त जो है गणपति बप्पा की बैंक, मूर्तियों की बैंक बनाई है। ये बैंक इसीलिए है कि बहुत से बड़े बड़े पंडालों ने और घरेलू गणपति बप्पा जो स्थापित किए थे उन्हें विसर्जित ही नहीं किया गया, क्योंकि पर्यावरण को देखते हुए और साथ ही जो नदी और तालाब में पानी की कमी थी तो बप्पा को यहाँ पर ला कर रख दिया है। हम फिलहाल अकोला के राजू सोनालीकर इनके खेत में हैं, जहाँ पर एक गोडाउन में देखिए आप कि बप्पा की 15 फीट 20 फीट की जो प्रतिमाएं, लगभग 15 से 16 प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर ला के रखी है, और साथ ही जो एक डेढ़ फीट से लेकर तो 3-4 फीट तक की जो बड़ी छोटी प्रतिमाएं हैं उन्हें लोगों ने खुद होकर यहां पर लाया है।
3: अकोला में रहने वाले राजेश सोनालीकर ने इस पहल में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने अपने खेत और गोदाम की जगह गणेश भक्तों के लिए उपलब्ध कराई। इसके बाद कई गणेश मंडल और घरों में मूर्ति स्थापित करने वाले भक्त आगे आए और उन्होंने भी अपनी प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित करने की बजाय सोनालीकर के खेत में बने गोदाम में लाकर सुरक्षित रख दिया।
5: ये मूर्तियों को अगले साल तक के संभाल के रखना, जिन मंडलों ने लाके दिए उनका बहुत बहुत आभार, और उन्हें अपनी मूर्ति खुद की पुनः स्थापित करने की होगी तो उन्हें लेके जाना मानपूर्वक, और नहीं लेके नहीं वो स्थापित करना है तो दूसरे मंडल की मूर्ति आप लेके जाना, मतलब मंडलों ने आपस में मूर्ति एक्सचेंज कर लेना, और मतलब एक तो पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा, आर्थिक भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप ये मूर्ति रख रहे हो दूसरी मूर्ति ले जा रहे हो इस तरह से, और अब छोटी मूर्तियों भी इतनी आ चुकी है कि सोच रहा हूँ कि ये भी मूर्ति अगले साल के लिए गणेश भक्तों के लिए पैकिंग करके रख दूँ।
3: इस पहल को सिर्फ पर्यावरण संरक्षण से नहीं बल्कि आस्था और जिम्मेदारी के खूबसूरत मेल के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। ऐसे में समय की नजाकत को समझते हुए बप्पा की प्रतिमा को नदी में विसर्जित न करने का फैसला भी उनकी श्रद्धा का ही एक रूप है।
6: भैया, आज के तारीख में पानी की शॉर्टेज है, बारिश आई नहीं है, तो इसके वजह से धरन भरे नहीं है, तो हमने ये सोचा है कि ये साल विसर्जित न करते हुए अगले साल यही मूर्ति बिठाई जाए और पानी को प्रदूषित होते से बचाए।
4: काका, समय की मांग है आज
7: तो गणपति जी के लिए विसर्जन के लिए पानी नहीं है, अपने यहाँ पे बरसात भी बहुत कम हुई है, तो वो हिसाब से सब जन को आह्वान है कि मूर्ति पानी में नहीं करते हुए, विसर्जित नहीं करते हुए
4: अगले साल के लिए
7: यहाँ पे लाके रखिए।
3: अकोला में हुई ये पहल अब एक मिसाल बनने की उम्मीद जगा रही है। भक्तों की इच्छा है कि अकोला का ये प्रयोग सिर्फ अकोला तक सीमित न रहे बल्कि महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी इसे अपनाया जाए, ताकि नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
2: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत के लिए आज शुभ दिन। ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर मेडल, पिंकी को कोराश में ब्रॉन्ज। मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा, 8वें चरण की गिनती में भंडार से निकले 29 करोड़ से ज्यादा रुपए। ऑनलाइन दान और सोने चांदी के आभूषणों का भी होगा हिसाब। झांसी में 878 परिवारों ने किया सामूहिक तर्पण, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया पिंडदान, पितृपक्ष में धार्मिक अनुष्ठान। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी। मदुरई में सीएम विजय ने शुरू की नई योजना, केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजातों को लाभ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 का आज भी भारतीय खिलाड़ियों को का जलवा, कई मेडल्स की उम्मीद। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 39 पदक जीते, भारत फिलहाल अंक तालिका में 12वें नंबर पर। कोराश में भी भारतीय टीम ने जीता पदक, विमेंस 78 किलोग्राम वर्ग में पिंकी बलिहार को मिला कांस्य पदक। विमेंस 25 मीटर पिस्टल में भी भारत के नाम एक पदक, ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। भारत का बॉक्सिंग में चौथा मेडल पक्का, लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। मंदिर परिसर से लेकर ब्रह्म कपाल तक श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक 18 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे बद्रीनाथ। चारधाम श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, होटल्स में यात्रियों में नाच गाकर और केक काटकर बिताया समय। बारिश के बीच होटल कारोबारियों ने यात्रियों की सुरक्षा का रखा पूरा ध्यान, होटल में ही की गई खाने पीने की विशेष व्यवस्था। स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षित और खुश नजर आए श्रद्धालु, होटल कारोबारियों के व्यवहार की जमकर सराहना की। दो दिन की बारिश थमते ही बर्फ की सफेद चादर में ढका केदारनाथ धाम नजर आ रहा है बेहद भव्य नजारा। बर्फ पर पड़ती धूप और बादलों के बीच झांकती चोटियां, मोह रही हैं मन, श्रद्धालु उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। ताजा बर्फबारी के साथ केदारनाथ में बढ़ा ठंड का असर, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ धाम की यात्रा पर मौसम ने लगाया ब्रेक, चिरबासा में पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। सांवलिया जी मंदिर में टूटा दान का रिकॉर्ड, गिनती जारी, 8 चरण तक भंडार से निकले 29 करोड़ से ज्यादा रुपए। आठवें चरण में 51,78,630 रुपए की हुई गिनती, भंडार की गिनती के अभी कई चरण बाकी। सांवलिया जी मंदिर में छोटे नोट और सिक्के भी गिने जाने बाकी, ऑनलाइन दान का भी होगा हिस्सा। सांवलिया सेठ के दरबार में भक्त नकदी के साथ सोने चांदी का भी दान करते हैं, मंदिर में जमा आभूषणों की वजन और गणना बाकी। अमावस्या से एक दिन पहले खोला गया था सांवलिया जी मंदिर का दान पात्र, झलझुलनी मेले के चलते चार दिन बाद दोबारा शुरू हुई दान राशि की गिनती। भारतीय सेना आज मना रही है 200वां गनर्स दिवस, वीर शहीदों के साथ शौर्य के दिनों को किया जा रहा है याद। गनर्स दिवस पर सेना ने एक बेहद शानदार और जोश से भरा वीडियो जारी किया, पारंपरिक से लेकर आधुनिक तोपों की सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। कठिन हालात में भी आर्टिलरी की जबरदस्त क्षमता को किया गया प्रदर्शित, गनर्स के पराक्रम को भी दिखाया। आज के दिन ही 1827 में गठित हुई थी 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी और इसी की याद में मनाया जाता है गनर्स दिवस। आज देश मना रहा है शहीद भगत सिंह की जयंती, पीएम मोदी ने वीडियो जारी करते हुए नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट किया जाएगा मंडी शैली का रणसिंगा, एम्स का लोगो भी अंकित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 से 8 अक्टूबर तक करेंगे हिमाचल प्रदेश का दौरा, थाची निवासी ने तैयार किया है रणसिंगा। पूरी जगन्नाथ मंदिर में सुबह भव्य आरती का किया गया आयोजन, भक्तों ने किए दर्शन पूजन। कोटा के युवक ने मुश्किल घड़ी में मदद के लिए बनाया मेरा साथी ऐप, ऐप से आसपास मौजूद मदद पहुंचाना होगा आसान। पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को खास तरीके से बधाई दी, रेत पर बनाई कलाकृति। डोडा में पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटे कारोबारी और लोग, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। फरीदाबाद में नशा मुक्त हरियाणा अभियान में मैराथन का आयोजन, सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी। जुनाई का अमृतपुर गांव बना बैट किंगडम, 20 बीघा जमीन पर बसाया जंगल, हजारों चमगादड़ों के लिए बना सुरक्षित ठिकाना। तुतुकुड़ी में बढ़ा नमक का उत्पादन, सूखे मौसम से मिला फायदा। कन्याकुमारी से करगिल पहुंचा भारतीय वायुसेना का साइकिल अभियान, युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी, सीएम विजय ने किया योजना का शुभारंभ। सरकारी अस्पताल में पहुंचकर माताओं से मिले सीएम विजय, बच्चों को भी दुलारा। विजयवाड़ा में 72 फीट ऊंची मिट्टी की गणेश प्रतिमा को इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जित किया गया, फायर टेंडर से किया गया पानी का छिड़काव। झांसी में लावारिस आत्माओं और 878 परिवारों के पूर्वजों के लिए हुआ अनुष्ठान, पहुंच नदी तट पर कराया सामूहिक पिंड पूजन। पवित्र पिंडों को गया जी में विधि विधान से अर्पित करने के लिए किया गया रवाना, लोगों ने प्रतिनिधि मंडल को माला पहनाकर रवाना किया। यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, हालात से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। वाराणसी में बढ़ा गंगा का जलस्तर, नावों के संचालन पर लगाई गई रोक। बाराबंकी में सरयू नदी फिर उफान पर, तीन तहसीलों के दर्जनों गांवों में भरा पानी। यूपी के महोबा जिले में 48 घंटे हुई बारिश के बाद जलभराव हुआ। दुनई नदी के उफान से दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। गोंडा में तूफान और बारिश से देवीपाटन मंडल के चारों जिलों में छाया अंधेरा, राहत बचाव का काम जारी। बिहार में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट। गोपालगंज के निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी, हाई अलर्ट पर प्रशासन। बारिश की चेतावनी के बीच अलर्ट पर राहत और बचाव टीमें, माइकिंग के जरिए लोगों से की जा रही है सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। नेपाल में भारी बारिश का भी पड़ रहा है असर, गंडक बराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। गंडक नदी के उफान को देखते हुए तटबंधों के अति संवेदनशील बिंदुओं पर निगरानी तेज, सीमावर्ती उत्तर प्रदेश में बढ़ाई गई चौकसी। थाईलैंड में भारी बारिश से बैंकॉक समेत कई इलाकों में आई बाढ़, कई जगहों पर 1 मीटर से ज्यादा पानी भरने से हजारों लोग फंसे। बैंकॉक में बाढ़ के कारण सड़कों पर भरा पानी, प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में जुटा। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए थाईलैंड ने 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए, राहत और बचाव का काम जारी। कैम्बोडिया सीमा से लगे साकेओ प्रांत में भी आया बाढ़, तो वहीं लोगों को ट्रकों से रेस्क्यू किया जा रहा है। थाईलैंड में मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी, स्थानीय प्रशासन की टीमें अलर्ट। लेह में 3 दिवसीय लद्दाख महोत्सव जारी, समृद्ध संस्कृति और साहसिक खेलों का दिखा संगम। लद्दाख महोत्सव में पहली बार महिला पोलो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। बनिहाल में खेला गया इंडियन आर्मी क्रिकेट लीग का फाइनल मैच, कुलगाम की टीम को मात देकर विजेता बनी अनंतनाग की टीम।

0: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म द वन की बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई। कल फिल्म ने 14 करोड़ की कमाई की, 3 दिन में दुनिया भर में 43 करोड़ कमाई। फिल्म द पैराडाइज ने कल 15 करोड़ 70 लाख का कारोबार किया। 4 दिन में भारत ने नेट कलेक्शन 109 करोड़ के पार, तो वहीं दुनिया भर में कमाई 138 करोड़ के पार पहुंची। मिर्जापुर द मूवी ने कल 1 करोड़ 55 लाख कमाए। 23 दिन में भारत में ग्रॉस कलेक्शन 268 करोड़ पहुंचा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 328 करोड़ के पार। रशिया में विशाल कद्दू की रेस, मॉस्को में बैटल ऑफ द जाइंट्स फेस्टिवल में अनोखी रेस आयोजित की गई। कद्दू की नाव बनाकर तालाब में उतरे लोग। प्रतियोगियों ने 400 से 500 किलो के कद्दूओं को खोखला कर बनाई नाव। कॉस्ट्यूम बनाकर प्रतिभागियों ने तालाब में दौड़ाई पंपकिन बोट। रशिया में पहली बार पंपकिन बोट रेस का आयोजन किया गया। विशाल कद्दूओं को पानी में तैरता हुआ देखने के लिए जुटे दर्शक। अनोखे आयोजन ने खींचा सभी का ध्यान। पांच सौ किलो तक का था एक कद्दू का वजन, उन्हें सावधानी से खोखला करके पानी में तैरने लायक बनाया गया। इन विशाल कद्दू ने आम नाव की जगह ली। हार्वेस्ट फेस्टिवल में पंपकिन बोट का हुआ आयोजन। 75 रूसी क्षेत्रों में पहुंची सब्जियां, 200 से ज्यादा प्रकार की सब्जियों की प्रदर्शनी। विशाल कद्दू रहा आकर्षण। चिली में लाल बालों वालों की दौड़। सैंटियागो में 3 किलोमीटर लंबी अनोखी रेडहेड्स रेस आयोजित की गई। करीब 800 लोगों ने कोलोरो रन में हिस्सा लिया। रेस में लाल बाल होना एंट्री पास बना, फिटनेस नहीं, सिर्फ लाल बाल होना जरूरी था। दौड़ में प्राकृतिक लाल बालों वाले सैकड़ों लोग शामिल हुए। ड्राई या विक से बाल लाल करने वालों को भी इजाजत भी थी। कुछ लोगों ने ड्राई और विक से बदला अपना लुक। सभी ने मिलकर खास अनुभव का आनंद लिया। लाल रंग की वजह से पूरा इवेंट खास नजर आया। कई प्रतिभागियों ने पहली बार खुद को रेड हेड लुक में देखा। लाल विग और रंगीन बालों के साथ रेस में हिस्सा लिया। पत्रकार पेड्रो केनेलिस ने शुरू की थी कोलोरो रन मुहिम। चिली में लाल बाल वालों को कोलोरो कहा जाता है, इसलिए कोलोरो रखा गया नाम। टीम यूरोप ने टीम वर्ल्ड को 13-5 से हराकर जीता लेवर कप खिताब। लंदन के ओट्रू एरिना में यूरोप ने रिकॉर्ड 6th ट्रॉफी अपने नाम की। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने खिताबी जीत पर लगाई मुहर। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जर्मन खिलाड़ी लर्नर टीएन को सीधे सेंटों में शिकस्त दी। इस जीत के साथ यूरोप 13 पॉइंट तक पहुंचा। टीम यूरोप का 6th लेवर कप खिताब। फ्लेवियो कोबोली जैकब मेंसिक की जोड़ी चमकी। टेलर फ्रिट्ज और एलेक्स डी मिनोर को 7-5, 6-3 से हराया। अगला लेवर कप 2027 में अमेरिका में खेला जाएगा। कनाडा की लेला फर्नांडिस बनी सिंगापुर ओपन चैंपियन। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की तालिया गिब्सन को 7-5, 6-0 से हराकर जीता खिताब। सिंगापुर में जीत के साथ फर्नांडिस ने जीता करियर का 6th WTA खिताब। फर्नांडिस ने टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में बनाई थी जगह।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ड्रामा रिश्तों का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
3: क्या ये सच है आपने मेरी मायरा को थप्पड़ मारा? How dare you?
4: आप दोबारा उसे अपनी बेटी मत कहना।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको आंध्र प्रदेश से आई शानदार तस्वीरों को दीदार करवाते हैं। विजयवाड़ा में 72 फीट ऊंची मिट्टी की गणेश प्रतिमा का इको फ्रेंडली विसर्जन किया गया। जलाशय में विसर्जन की बजाय फायर टेंडर से प्रतिमा पर पानी का छिड़काव किया गया, जिससे मिट्टी की प्रतिमा वहीं प्राकृतिक रूप से घुल गई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: एशियन गेम्स में भारत के लिए आज शुभ दिन। ईशा सिंह ने वेमेन्स 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर, पिंकी को कुराश में ब्रॉन्ज। मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा, 8वीं चरण की गिनती में भंडार से निकले 29 करोड़ से ज्यादा रुपए, ऑनलाइन दान और सोने चांदी के आभूषणों का भी होगा हिसाब। झांसी में 878 परिवारों ने किया सामूहिक तर्पण, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया पिंडदान, पितृपक्ष में धार्मिक अनुष्ठान। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी, मदुरई में सीएम विजय ने शुरू की नई योजना, केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात को मिलेगा लाभ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबर।
8: दोस्तों मैं हूँ रिंकी, आप सबकी प्यारी रिंकी भाभी। सीरियल्स के ड्रामे से लेकर रियलिटी शोज और वेब सीरीज की सारी हलचल तक, यहाँ मिलेगी आपको मनोरंजन की हर न्यूज। लेकिन सबसे पहले देखिए आज की हेडलाइंस।
9: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगी गणपति बाप्पा की विदाई। त्योहार के रंग में पड़ेगा ट्विस्ट का भंग।
10: ये सच है, आपने मेरी मायरा को थप्पड़ मारा? How dare you?
9: सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा पर भड़केगा सूरज। बिगड़ेगी ईशा की तबीयत। शुरू होगी अपराजिता और रक्षित की खट्टी मीठी नोक झोंक, साथ ही करीब आएंगे दो दिल।

0: पर राध्या पर लगेंगे इल्जाम।
1: आज तुम्हारी बेहुदा हरकत और लापरवाही की वजह से अंतरा और उसके होने वाले बच्चे को जान का नुकसान हो सकता था।
2: और राध्या, आज मैंने तुम्हारे सामने रजनी आंटी को बोला था कि मैंने जूस पी लिया, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे झूठ बोलूंगी?
0: शुरू होगा अंतरा और दादी का ड्रामा।
1: पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है ये लड़की। मुझे तो पक्का यकीन है कि किसी की लापरवाही की वजह से आज स्टोर रूम में इसने अंतरा की आवाज नहीं सुनी।
0: वृंदा होगी परेशान। फिर होगी वृंदा और संजय की लुका छिपी। और मन सुंदर के नकुल यानी कि अंकुर संग करेंगे डे आउट, जानेंगे उनके बारे में कई बातें सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियों में।

0: सीरियल पति ब्रह्मचारी में एक तरफ देखने को मिली सूरज और ईशा की लड़ाई, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला बीमार ईशा के लिए सूरज का प्यार। तो चलिए देखते हैं ईशा सूरज की खट्टी मीठी जिंदगी।
1: कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इसमें, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है इसमें।
2: फूटा सूरज का गुस्सा,

0: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में मैयाद सूरज का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि वो ईशा से नाराज जो हो गए हैं। मैं ईशा ने बिना पूछकर एक तो सूरज के अकाउंट से 2 लाख रुपए ले लिए, वो भी कीर्ति और ऋषि का रूम बनवाने के लिए, जिस बात से सूरज बिल्कुल भी रजामंद नहीं है। तभी तो देखिए कैसे भाई बीच सड़क पर वो ईशा को डांट फटकार लगा रहा है।
1: ईशा जी, सच सच बताइए, क्या आपने उन दोनों गधों के लिए घर में नया कमरा बनाने का फैसला कर लिया है?
2: मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे करा ले बदले ये दिलों के।
1: इसलिए आपने मेरे अकाउंट में से 2 लाख रुपए निकाले है ना?
2: इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले कोई पीछे।
1: परीक्षा जी, आपने ना तो अकेले में मुझसे सलाह की ना सबके सामने। वो सब छोड़िए, जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दीजिए। बोलिए ईशा जी,

0: आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई शाहजहां? क्या आपने जो किया वो सही है? ईशा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक पत्नी का अपने पति से ये बात छुपाना सही है?
1: क्या एक पति का अपनी पत्नी पर सबके सामने चिल्लाना, उसकी नीयत, उसके इरादों पे सवाल खड़ा करना सही है?
2: तुम दोनों आपस में मत लड़ो। सुरेश, ईशा का कोई कसूर नहीं है। मैंने इससे कहा था कि प्रीति और ऋषि के लिए एक अलग कमरा बनना चाहिए।
0: चलिए मान लिया ताइमा कि आपने कहा था, पर एडवांस देने से पहले एक बार ईशा जी का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो मुझसे पूछे, मुझसे डिस्कस कर ले? हा? पूछने की तो आदत कभी इनकी थी ही नहीं। मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा इन्होंने। नहीं नहीं ईशा जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं आपकी नजर में। देर सवेर आपकी बात मान ही जाता हूं मैं हमेशा। बिना मुझे बताए ताइमा की शादी कर दी। क्या हुआ? मान गया। फिर आपने कहा कि ये दोनों हमारे घर में रहेंगे। मान गया। अब आपको लग रहा है कि इन दोनों के लिए हमारे घर में नया कमरा बनाएंगे और वो भी सूरज मान जाए, है ना?
2: सूरज, वो 2 लाख रुपए मैं भरने को तैयार हूं।
0: बात पैसों की है ही नहीं। अगर आपको कुछ देना ही है ना, तो अपने इन दो नमूनों को थोड़े से संस्कार दे दीजिए।
3: ऐसे में इन सब बहसबाजियों के बीच देखिए कैसे ऋषि भी सूरज से सवाल कर रहा है।
4: ओ हेलो पापा, तो उलझने की बजाय मुझसे बात करो ना। हम भी घर के मेंबर हैं, अगर एक कमरा मांग लिया एक्स्ट्रा तो क्या प्रॉब्लम हो गई? और इसमें ये संस्कार वगैरह कहाँ से आ गए बीच में?
0: मोनिका भाभी बिल्कुल सही कह रही, इस घर में इन दोनों के लिए कोई कमरा नहीं बनेगा।
1: अरे आप कम से कम बड़ों की इज्जत करना तो सीखे। अगर आपकी ताइमा कह रही है कि कमरा बनेगा तो प्रॉब्लम क्या है?
2: प्रॉब्लम देखो भाई, ये प्रॉब्लम खुद पूछे कि प्रॉब्लम क्या है। अरे सच्चा बड़ी प्रॉब्लम तो तुम दोनों, जिस दिन से इस घर में आओ झगड़ों के सिवा कुछ हो ही नहीं रहा इस घर में।
4: आप दोनों को 2 अलग-अलग कमरे चाहिए और हम 2 भाई-बहनों को 1 कमरा चाहिए, उसमें भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। अरे ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? जब हम मांग रहे हैं कमरा तो 1 कमरा नहीं मिल सकता क्या?
1: हम भी सर के मेंबर हैं, ऐसे कैसे आप बात कर?
0: बस बस।
3: ऐसे में देखिए गुस्से में कैसे सूरज वहाँ से निकल गया।
1: ये पति का अपनी पत्नी को चैलेंज है, ये गुंडे का आईपीएस ऑफिसर को?
0: आपको जो समझना है आप समझ लीजिए सर, लेकिन इस घर में नया कमरा नहीं बनेगा।
3: लेकिन उसी के बाद बिगड़ गई ईशा की तबीयत। भाई जब सूरज सुबह उठा, देखिए कैसे ईशा को सोते हुए देख वो हैरान रह गया, क्योंकि इतने लेट तक तो ईशा सोती नहीं है। और जैसे उसने ईशा को देखा, भाई उसे समझ आ गया कि ईशा की तबीयत बेहद खराब है। भाई उसे तो 102 डिग्री बुखार है। ये देखकर सूरज काफी घबरा गया और देखिए कैसे पहले उसने थर्मामीटर से बुखार चेक किया और फिर दवाई भी लेकर आया।

0: क्या हुआ? दवा किसके लिए लेके जा रहे हैं?
1: ईशा जी के लिए। 102 बुखार है।
0: क्या?
2: नो नो नो छोटे, उनकी बीमारी भी ना हमें काम आएगी।
3: तो ईशा सूरज से नाराज है, इसलिए उसने उसके हाथों से दवाई नहीं खाई और बीच में ताई माँ को आना पड़ा। और ताई माँ के कहने पर ईशा मान गई और उसने दवाई भी खा ली।

0: वो मौसम बदलता रहता है ना, मुझे रात भर ए सी ऑन करके नहीं रखना चाहिए था।
1: मैं डॉक्टर को बुलाता।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी पत्नी का ख्याल रख सकता।
2: भाई ये पति ब्रह्मचारी तो अपनी बीवी की सेवा में जुट गया और देखिए कैसे वो ईशा का ध्यान रख रहा है। लेकिन नाराज ईशा बिल्कुल भी सूरज को अपने आसपास नहीं देखना चाहती है, तभी तो वो सारा काम अपने आप से करना चाहती है। लेकिन भाई ईशा को इतनी कमजोरी है कि जैसे ही वो बेड से उठकर नीचे उतरने लगी, देखिए कैसे उसे चक्कर आ गए। भाई वो गिरने ही वाली होती है कि सूरज उसे थाम लेता है। और यहाँ पर सूरज की बहना भी ईशा के लिए काढ़ा लेकर आई है ताकि ईशा की तबीयत ठीक हो सके। और फिर देखिए कैसे पर ये दोनों भाई बहन ने मिलकर ईशा को जबरन पकड़ लिया और फिर उन्हें पिलाया ये काढ़ा।

0: ऐसे में अब कैसे खत्म होगी मियां बीवी की ये नाराजगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल मन अति सुंदर में अंतरा राध्या के खिलाफ षड्यंत्र रचने में जुटी है, जिसके चलते दादी राध्या पर भड़क रही हैं और घर में राध्या को लेकर एक बार फिर हंगामा मच गया है। ऐसे में प्रथम क्या कदम उठाता है, चलिए देखते हैं।
2: आज तुम्हारी बेहुदा हरकत और लापरवाही की वजह से अंतरा और उसके होने वाले बच्चे को जान का नुकसान हो सकता था।
0: राध्या पर फिर लगे इल्जाम।
3: और राध्या, आज मैंने तुम्हारे सामने रजनी आंटी को बोला था कि मैंने जूस पी लिया, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे झूठ बोलूंगी?
0: शुरू हुआ अंतरा और दादी का ड्रामा।
2: पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है ये लड़की। मुझे तो पक्का यकीन है कि किसी की लापरवाही की वजह से आज स्टोर रूम में इसने अंतरा की आवाज नहीं सुनी और उसे स्टोर में बंद कर दिया।
0: घर में मचा नया बवाल। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में फिर एक बार हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। असल में गलती से राध्या ने अंतरा को स्टोर रूम में बंद कर दिया था। इसी बात को लेकर घर में बवाल शुरू हो गया है, जहां पर सभी लोग राध्या पर इल्जाम लगा रहे हैं। अंतरा और दादी तो राध्या को गलत ठहराने पर लगी हुई है और राध्या अपनी सफाई दे रही है, लेकिन कोई भी राध्या की बात सुनने को तैयार ही नहीं।
2: अरे कम से कम अंदर झांक कर देख तो लिया होता कि अंदर कोई है भी या नहीं। काम बिगाड़ू हो ये अच्छे से जान, लेकिन ऐसे किसी इंसान को अंदर बंद करके दो दो जानों के साथ खेलोगे ये हमें हद हो गई राध्या।
0: अंतरा ने तो राध्या पर झूठी केयर करने का इल्जाम ही लगा दिया। ऐसे में राध्या बेचारी करे तो क्या करे। असल में राध्या ने अंतरा को कई चीजें करते हुए देखा है, जैसे कि दवाई फेंकते हुए, पपीता काटते हुए और जूस फेंकते हुए। ऐसे में घर वालों के सामने आज राध्या ने सवालों के घेरे में कर लिया अंतरा को। लेकिन अंतरा वो तो बहुत चालाक है, हर सवाल का जवाब अंतरा के पास मौजूद है।
4: और अगर ये दवाई एक्सपायर हो गई थी तो आप उसे नहीं बोली क्यों?
3: दवाइयाँ ली होती और इस पत्ते की फोटो खींचकर दवाई वाले को देनी होती है। जब तुमने मुझे जूस फेंकते हुए देखा था तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बोला? पर तुमने जो मुझे जूस दिया था ना वो मैंने उसी वक्त पी लिया था। जो मैंने फेंका था वो इलेक्ट्रोलाइट ऑरेंज फ्लेवर का, उसमें कीड़ा गिर गया था इसलिए मैंने उसे फेंक दिया था। और राध्या, आज मैंने तुम्हारे सामने रजनी आंटी को बोला था कि मैंने जूस पी लिया, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे झूठ बोलूंगी?
0: भाई हर चीज का जवाब अंतरा पहले से ही लेकर बैठी हुई है और घर वालों के सामने फिर एक बार अंतरा ने राध्या को गलत साबित कर ही दिया।
4: जब हम किचन में आए थे तो आपने पपीता छुपा दिया था और आपने घर से सेब काट रही, लेकिन सेब को बहुत जगह पहले ही काट के रखा हुआ था।
2: अंतरा, क्या तुम्हें पता नहीं है प्रेगनेंसी में पपीता खाना कितना हानिकारक होता है? तुम्हें तो ये बात डॉक्टर ने भी बताई थी कि नहीं? बात भी
0: में देखिए फिर एक बार दादी का गुस्सा राध्या पर फूटा और सब चीजों का इल्जाम राध्या पर ही आ गया।
2: होते होते बस गए। आज अंतरा के साथ स्टोरों में कुछ भी हो सकता था। भारी भरकम सामान गिर जाता उसके ऊपर, गर्मी और गुटर के कारण उसका दर्द हो जाता। लेकिन नहीं, तुमने राध्या को सुनाने की बजाय अंतरा को ही रुला दिया। हद हो गई।
0: और अंतरा वो तो ड्रामेबाज है ही, उसने फिर एक बार ड्रामा शुरू कर दिया जिस वजह से दादी अंतरा की केयर करने लगी और बेचारी राध्या सब कुछ देखकर भी खुद को सही साबित नहीं कर पाई।
2: पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है ये लड़की। मुझे तो पक्का यकीन है कि किसी की लापरवाही की वजह से आज तो रूम में इसने अंतरा की आवाज नहीं सुनी और उसे स्टोर में बंद कर दिया। मैं जोर जोर से दरवाजा पीछा था ना, तो हो सकता है कि पेट के ऊपर थोड़ा सा जोर पड़ा हो। चल आराम कर।
0: भाई राध्या हार नहीं मानेगी, वो अंतरा का पर्दाफाश कर ही रहेगी, लेकिन अब वो कब और कैसे होगा ये देखना होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब आपको दिखाते हैं मॉडल और रियलिटी शो अलायंस फेम सेबी सूरी का फोटोशूट। कैमरे के सामने उनका ग्लैमरस अंदाज देखते ही बन रहा है। चलिए देखते हैं सेबी के इस फोटोशूट के नजारे।
5: इशारे तेरे कंगने दे, तरीके दिल मंगने दे, मेरा भी दिल चोरी की।
6: यह है सेबी सूरी जिन्हें आपने देखा रियलिटी शो अलायंस में। चंडीगढ़ की लड़की आज अपना अनोखा मेकओवर करा रही है। पंजाबी फिल्मों से अपना करियर शुरू करने वाली सेबी अब मुंबई में जल्द ही नए प्रोजेक्ट में दिखने वाली है और अपना एक नया लुक लेकर आज वो करा रही है खास मेकअप, खास स्टाइलिंग और एक खास फोटोशूट, जहां पर सिल्वर चमचमाती हुई ड्रेस में मिनिमम मेकअप के साथ वो अपने बेस्ट एंगल्स दिखा रही।

ग्वालियर के मेकअप आर्टिस्ट उसामा ने उनका मेकअप किया है और उनकी पूरी टीम ने खास स्टाइलिंग के साथ पेश किया सैबी का एक अनोखा अंदाज जो अब तक से पहले उनकी फिल्मों और रियलिटी शो में नहीं दिखा।

0: is more, I like subtle look, and this is more of my style, whatever I like. And Usama ne bahut acha makeup kiya, I love his work. Jaise mujhe patan tha, I was very confused ki zyada makeup na ho jaye yaar, like subtle makeup. And I think ki unhone according to dress, he has done his great job.
1: So look, lips bhi aap dekh sakte ekdam se light diye hain, and eye pe bhi bilkul smudge kajal diya hai, eye shadow ka koi kuch bhi nahi kiya maine, eyebrow clean kiye hain and bilkul natural look diya. Hair bhi jaise ki blow dryer hote hai us type se curls kiye hain. Jewelry mein neck piece hi pehna hai, earring nahi pehna hai, kyunki modern pe jana tha to kuch skip bhi karna padta hai. Then मांगटीका सभी के ऊपर काफी अच्छा लग रहा था, तो मांगटीका लगाया हम लोगों ने. देन आप देख ही सकते हैं हमारा जो आउटफिट है बेज कलर का है, इस पे बहुत ग्लिटरी इफेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया है.
2: दो हजार 2026 में सभी सूरी को रियलिटी शो अलायंस से एक नई पहचान मिली. अब जल्द ही पंजाबी फिल्मों से हटकर ये हिंदी फिल्मों में

यस अलायंस से काफी प्यार मिला, काफी लोगों के मैसेजेस आए, उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, तो उससे बहुत खुशी हुई मुझे। एंड इसके बाद मुझे फिल्म्स में देखेंगे बहुत जल्द। मैं मेरी फिल्म तो रिलीज होने वाली है और एक मैं शूटिंग करने वाली हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरी ऑडियंस जैसे अलायंस ने मुझे प्यार दिया तो वैसे ही मुझे फिल्म्स में प्यार दिया।

0: ट्विस्ट और टर्न से भरी होती है टीवी सीरियल्स की दुनिया, जहां हर मोड़ पर एक नया ड्रामा दर्शकों को हैरान करता है। किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना काफी मजेदार होगा। तो चलिए चलते हैं सीरियल्स की इस दिलचस्प दुनिया में।
1: मम्मी, हमारे कैफे के नए पार्टनर यही है।
2: इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड।
3: मम्मी, पार्टनरशिप और एक्सपेंशन सब यही देख रहे हैं। ये इस काम में एकदम बेस्ट है, बेस्ट।
4: अरे वाह,
5: अनुपमा में पई हो गई है। अनुपमा के परिवार में आरवी की एंट्री, जहां वो राही प्रेम के साथ साथ माही के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और ये बात जानकर अनुपमा के दिल में कुछ बातें खटक रही हैं, जो चीज उसके चेहरे पर दिख तो रही है पर अभी फिलहाल जबान पर आई नहीं है।
2: अब तो आपको अपने कैफे के लिए मेरा ऑफर मानना ही पड़ेगा। मेरे साथ डील करने में आपका फायदा ही फायदा है।
6: लव यू जिंदगी कैफे बाय अनु की रसोई मेरे लिए डील नहीं है, ये तो वो सपना है जो मैंने और दिग्विजय सर ने अलग अलग देखा जरूर था, लेकिन साकार एक साथ मिलके किया। इस कैफे के साथ हम दोनों की यादें जुड़ी है, जज्बात जुड़े हैं, हमारे अपनों के लिए प्यार जुड़ा है, हमारे अपनों का प्यार जुड़ा है। ये कैफे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं है, सिर्फ फायदा नहीं है, ये कैफे तो फर्ज और फ्रेंडशिप की मिसाल है। और इस वक्त मुझे और दिग्विजय सर को किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं।
2: श्योर मैम, मैं तो बस बिजनेस की बात कर रहा था, नथिंग पर्सनल।
6: ये कैफे हम दोनों के लिए बिजनेस नहीं है, इट इज पर्सनल।
5: सब कंफ्यूजन के बीच हो रही है बप्पा की विदाई भी, और देखिए कैसे प्रेम, अंश, अनुपमा और उनके पूरे परिवार ने मिलकर नम आंखों से बप्पा को विदा तो कर दिया है, लेकिन अब होने वाला है नए परेशानी का आगाज, जो लेकर आएंगे बदले की आग में आरवी।

0: ऐसे में आरवी ने अनुपमा को बर्बाद करने का तो ठान लिया है, लेकिन दिग्विजय के आने से क्या कुछ कहानी में बदलाव आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा।
1: हम आपका लोन अप्रूव कर रहे हैं।
2: सच?
1: आपके लोन पे अंश गारंटर बनकर साइन करेंगे।
2: तेरी अनुमा तुझसे ये वादा करती है कि मैं दिन रात खून पसीना आंसू सब कुछ एक कर दूंगी, हजार गुना ज्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन उस लोन का एक एक पैसा चुका दूंगी टाइम से पहले।
1: जिस कैफे के भरोसे अपने सपनों का महल बनाना चाहती है वो कैफे मैं उससे छीन लूंगा। मिस अनुपमा जोशी के हाथ कुछ नहीं आएगा, ना उनकी खुशियाँ और ना घर का सपना। घर का सपना
3: महादेव एंड सन्स।
0: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में भाई मोगरा कोई मौका नहीं छोड़ रही है अपने ससुराल वालों को परेशान करने का। तभी तो अपने ही पति को ड्रंक कर देखिए कैसे उसने सारी असलियत उगलवा ली। तो वहीं दूसरी ओर मोंटी की मम्मी भी महादेव के परिवार से जुड़ी सारी बातें जानना चाहती है।
4: सपना राजवंश एक सरकारी अफसर है, वो अपने बेटे को खोजना बंद नहीं करेगी बल्कि खोज दिन प्रतिदिन बढ़ाती रहेगी।
5: मैडम ये धीरज महादेव अपनी एक्ट में दिख रहा है।
6: रिजॉर्ट से बाहर जाते हुए जितने भी रोज हैं, मुझे सबकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए।
7: बताइए पापा क्यों परेशान है?
8: रजनी ने वॉन्टी का मर्डर कर दिया।
0: असल में आशीष और मोगरा अपने घर आए थे क्योंकि उन्हें ये बात पता चली है कि इनके घर पर संकट मंडरा रहा है। तो पुलिस क्यों घर पहुंची ये जाने आशीष अपनी बीवी के साथ महादेव के घर पहुंचा, लेकिन महादेव तो उससे बात तक नहीं करना चाहते। वहीं यहां तक तो विद्या ने भी आशीष को डांट फटकार लगाकर यहां से जाने का कह दिया।
9: प्लीज एक मिनट, हम लोग आप लोगों का हालचाल पूछने के लिए आए। पता लगा घर में पुलिस आई थी, सब ठीक है ना?
4: हालचाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब बिल्कुल ठीक हैं, कुशल मंगल हैं। अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना पूरी दुनिया से मांग लेंगे, लेकिन तुम दोनों के पास नहीं आएंगे।
10: मुलाकात करते हैं सीरियल मन सुंदर में निहाल के छोटे भाई नकुल का किरदार निभाने वाले एक्टर अंकुर भारद्वाज से, जिनके साथ हमारी टीम ने किया एक घर वाला डे आउट और जाना कि कैसे रहता है घर में अंकुर का रूटीन।

0: नकुल का नच सुंदर,
1: तुम्हें होना हो मंजूर,
0: नकुल का घर सुंदर,
1: चोरी है मेरा क्या
0: नकुल की कसरत सुंदर, क्योंकि इनका मन है सुंदर।

0: ये है दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में निहाल के छोटे भाई नकुल का किरदार निभाने वाले अंकुर भरद्वाज, जिनके घर आज सास बहू और बेटियां पहुंच गई हैं करने मुलाकात। असल में आज अंकुर को शूटिंग से छुट्टी मिल गई है। ऐसे में अंकुर अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये वो बता रहे हैं सास बहू और बेटियां के कैमरे के सामने। अपने आप को फिट रखने के लिए कसरत करते हैं, अपनी प्यारी बिल्लियों संग खेलते हैं, डांस करते हैं, मस्त रहते हैं और अपने खुश मिजाज अंदाज से सभी का दिल जीत लेते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत अंकुर भरद्वाज संग डे आउट की।
1: सास बहू बेटिया के आज के खास मेहमान है अंकुर, और अंकुर मन सुंदर में नजर आ रहे हैं फिलहाल, और नकुल बन के कैसा लग रहा है? बीच से एंट्री हुई है अगर कहेंगे तो, इतने सालों का ऑडियंस के साथ का सफर रहा है मन सुंदर का, तो कैसा कुछ रह रहा है अब?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, और एक नई जनरेशन है, थर्ड लीप है, और उसके साथ मैं निहाल का छोटा भाई नकुल। और कहूँ तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक चुलबुला टाइप का है, जो अपने घर का लाडला है, सबको मतलब हंसाता रहता है, बस डरता है तो दादाजी और पापा से, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बाकी तो बहुत चिल रहता है।
1: तो अंकुर कितना चिल है? अंकुर जब शूट नहीं करता है तो क्या करता है, कैसे अपना दिन बिताता है, क्या क्या करता है?
2: नकुल क्या है कि सारे काम बिगाड़ता है, थोड़ा आलसी टाइप का है, तो अंकुर भी थोड़ा सा वैसा ही है। मैं मतलब घर पे रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे एक्टिव नहीं हूँ, और आराम करता रहता हूँ, बाकी वर्कआउट कर लेता हूँ, रनिंग करता हूँ, एंड बस यही सब है। मतलब बहुत सिमिलरिटी है नकुल और अंकुर में।
1: लेकिन आज क्या करने वाले? आज सास बहू बेटियां साथ में है आपके, तो आज की जो दिनचर्या होने वाली है कुछ एडवेंचरस होगी?
2: हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो मैं कोशिश करूँगा हो, और अभी चलते हैं रनिंग पे, देन उसके बाद कराता हूँ मैं आपको अपना होम टूर।
0: अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए अंकुर रोज करते हैं कसरत, लेकिन शूटिंग के चलते हर बार उन्हें जिम जाने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्होंने अपने घर को ही जिम बना रखा है। इतना ही नहीं, अपने आप को वार्म अप करने के लिए लगाते हैं अपनी बिल्डिंग के चक्कर, ताकि इनकी बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाए।

0: सो अभी हम आ चुके हैं अपने घर पे और मैं करता हूँ अपने थोड़े से डंबल के साथ अपनी एक्सरसाइज जो मैंने अपने इक्विपमेंट्स रख रखे हैं, ताकि कभी मैं जिम ना जा पाऊँ तो घर पे ही अपनी एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है। शूट से आना उसके बाद वर्कआउट करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट ये मैनेज करना हमको आना चाहिए, बिकॉज वी आर एक्टर्स और अगर हम खुद की बॉडी पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वही है कि स्क्रीन पे अच्छे नहीं दिखेंगे। तो स्क्रीन पे दिखने के लिए हमें वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है डेली। और उसके अलावा अगर मैं नहीं जा पाता तो वही मैंने अपने इक्विपमेंट्स हैं जो मैंने अपने घर पे रख रखे हैं, तो मैं उनके साथ करता हूँ
1: लेग एक्सरसाइज के लिए। यूं तो ये जिम में जाते हैं, लेकिन अपर बॉडी की एक्सरसाइज के लिए इन्होंने अपने घर में ही जुगाड़ कर रखा है और पूरी कोशिश करते हैं अपनी पूरी बॉडी को फिट रखने की।

0: तो अभी भी है, मैंने अपना प्रोटीन शेक, इसके बाद मैं लेने जा रहा हूँ शार, उसके बाद फ्रेश होके आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।
1: अंकुर की एक्सरसाइज हो चुकी है, अब बारी है सास बहू और बेटियां को अपना घर घुमाने की। ऐसे में अंकुर फ्रेशन अप होकर आ गए हैं अपने घर की सैर कराने के लिए, जिसे उन्होंने बड़े ही करीने से सजाया है। वैसे बता दे कि अंकुर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, काम के चलते ये मुंबई में अकेले रह रहे हैं। इनकी बैचलर लाइफ है और ये नाम सुनते ही सबके मन में यही आता होगा कि इनका घर बिखरा रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न होने के साथ साथ घरेलू भी है।
0: सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अब मैं कराता हूँ आपको अपना होम टूर, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्लेमर है कि बैचलर का रूम थोड़ा सा देखने में लगता है, तो आप देखिएगा फिर बताइएगा कैसा है। तो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मेरा लॉबी, ड्राइंग रूम। ये मेरा मंदिर, यहाँ पे मैं सुबह सुबह डेली पूजा करके जाता हूँ। तो अभी थोड़ी सी हम दोबारा पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं फ्रेश होके आया हूँ, तो भगवान को थोड़ा सा उनकी आराधना करना ज़रूरी होता है।

0: इसमें हमारे खाटू श्याम जी हैं और जगन्नाथ जी हैं, क्योंकि मैं पहले उड़ीसा का एक शो कर रहा था, उससे मैं लेके आया हूँ जगन्नाथ जी को। वहाँ के बहुत प्रसिद्ध उनका मंदिर है, और हमारे गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, और एक छोटी सी शिवलिंग रखी हुई है।
1: घरेलू होने के साथ साथ ये बहुत संस्कारी भी है। काम पर जाने से पहले ये हर दिन भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और तो और, संस्कारी होने के साथ साथ वो पढ़ाकू भी हैं। उन्होंने अपने घर में ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं।
0: और ये मेरी कुछ किताबें हैं जो मैं कभी कभी बोर होता हूँ तो पढ़ लेता हूँ।
2: दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा।
0: तो अभी फिलहाल मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ वो है इंडियन मेथड इन एक्टिंग, और इसे ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपको जितनी किताबें आप पढ़ो उतना ही कम होता है, और स्पेशली आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए बुक से, क्योंकि बट ऑब्वियस बात है कि जिसने लिखी है वो बड़े राइटर ही होंगे, तो कुछ ना कुछ किताबों से सीख के ही जाते हैं। भले ही आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े एक्टर बन जाओ, लेकिन सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि कोई भी अगर आपको किताब मिले तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है।

0: अब किताब हाथ में आई है तो एक दो पन्ने पढ़ना तो जरूरी ही है। ऐसे में अंकुर ने थोड़ी देर के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाया और फिर इन्हें याद आया कि सास बहू और बेटियां आज इनकी मेहमान हैं। बस फिर क्या, ये सास बहू और बेटियां को अपना कमरा दिखाने के लिए लेकर गए।
1: तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना रूम, जो कि थोड़ा सा हो सकता है मैसी, तो देखते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने मेरा लॉबी देखा और उसके बाद शुरू होता है मेरा किचन, और ये मेरे कैट्स के लिए, उनका भी किचन सामने है। ये मेरे रूममेट्स का रूम है, जो शायद अभी बिजी होंगे अपने कमरे में, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और चलते हैं। तो ये है मेरा रूम और यहाँ पे है छोटी सी बालकनी, जो मेरा फेवरेट स्पॉट है। जब भी मैं अभी अकेला होता हूँ तो यहीं पे बैठ के कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जो मैं बुक्स पढ़ रहा था वो भी मैं बालकनी में ही पढ़ता हूँ अपनी, और ये छोटे मोटे टैडी वगैरह डेकोरेशन के लिए, बाकी तो कुछ ऐसा खास है नहीं। और बाकी कुछ मैंने तस्वीरें लगा रखी हैं, बी यू डू यू फॉर यू बाय यू।
0: तो देखा आपने, ड्राइंग रूम के साथ साथ इनका कमरा भी बिल्कुल भी मैसी नहीं है, क्योंकि इनके कमरे में इनके अलावा इनकी दो प्यारी बिल्लियां भी रहती हैं, और वो बिल्लियां भी इतनी समझदार कि घर को साफ रखती हैं।
1: सो वैसे तो मैं घर पे अकेला रहता हूँ, लेकिन मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मिलवाता हूँ आपसे। एक ये बदमाश कायरो, ये अभी 2-3 महीने का छोटा सा है, मैं लाया था इसे। पहले मेरा पास था ये रियो, तो ये बेचारा खेल नहीं पाता था। कहाँ चला गया ये रहा। तो जब भी शूट पे चला जाता था तो ये बेचारा अकेला रह जाता था, तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक भाई लाया जाए। तो फिर मैं कायरो को लाया। ये बहुत सीधा है, इसके मुंह से अगर म्याओं सुन लो तो ये समझो कि आपने एलियंस देख लिए। कभी नहीं करता, बहुत सीधा। और उसका ही उतना शैतान ये है कायरो, ये पूरे दिन शैतानी करता रहता है। एक मिनट के लिए देखो, अभी भी चैन से नहीं बैठा। और बाकी ये सारे मेरे जैकेट के कलेक्शन है। सो ये मेरी फेवरेट जैकेट, क्योंकि मुझे ब्लैक बहुत पसंद है।
0: भाई मुंबई में यही दो बिल्लियां अंकुर का परिवार है, और छुट्टी वाले दिन ये ज्यादा से ज्यादा समय इन्हीं के साथ बिताते हैं, और इन्हीं के चलते ये अपने परिवार को याद तो करते हैं लेकिन दुखी नहीं होते। खैर, इन सब से खेलने के बाद बारी आती है थोड़े से एंजॉयमेंट की। वैसे बता दे कि अंकुर को डांस करना बहुत पसंद है।

0: ऐसे में ना सिर्फ उन्होंने अपने डांस का जलवा दिखाया बल्कि ये भी बताया कि उन्हें एक्टिंग का बचपन से ही शौक था और उस शौक को पूरा करने के लिए यानी एक कलाकार बनने के लिए उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर से अपने करियर की शुरुआत की है।
1: सो गाइस, आपने नकुल को तो देखा ही है मनसुंदर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने बारे में, अंकुर के बारे में, कि कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे मैं टीवी शोज में आया, कैसे मैं अपने इस इंडस्ट्री में मैंने पहला कदम रखा। तो जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे स्कूल का नाम था शांति निकेतन वर्ल्ड स्कूल। तो उसमें पहले मुझे स्टेज फोबिया बहुत था, मेरे को स्टेज पर जाने में डर लगता था। जब भी असेंबली होती थी तो थॉट वगैरह बोले जाते थे तो उसमें मैं हमेशा डरता था। देन 9th क्लास में पहला मैंने शो किया था जिसमें मैं कृष्ण बना था और अपने एनुअल डे पर, और मैंने वो म्यूजिकल प्ले किया था। देन उससे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज मिला कि मैं बन सकता हूँ एक्टर। देन मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन था तो मैंने उनकी मूवीज़ देखी, जितना भी मैंने थोड़ा बहुत जितना भी मुझे एक्टिंग आता है मैंने सब उनके बदौलत ही सीखा है। देन 9th क्लास में मैंने जब पहला प्ले किया था वहाँ पे स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था कि मैंने बहुत अच्छा म्यूजिकल प्ले किया है। देन उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। देन मैंने रिसर्च किया कि कैसे करते हैं, क्योंकि मैं अलीगढ़ से हूँ तो उतना ज़्यादा कुछ ऐसे क्रेज़ है नहीं वहाँ पे। देन फिर मैं दिल्ली आया, मैंने थिएटर किया। फिर 2022 में मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद ये मुंबई की भीड़, जब पता चला कि हर दूसरे घर में एक एक्टर है तो फिर थोड़ा सा मैं सहम गया कि क्या होगा कैसे होगा, बट वही था, एक जुनून सवार था कि बनना है तो बनना है। देन उसके बाद मेरा वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुआ। मैंने ऑडिशंस दिए, बहुत सारे रिजेक्शंस पहले मुझे आए। आराम नगर में मैं चाहता था, रिजेक्ट होके आता था, थोड़ा सा दिल भी टूटता था कि क्या होगा कैसे नहीं होगा। देन उसके बाद एक प्रोडक्शन हाउस था जिसका नाम है लेजेंड स्टूडियो, जिसके ओनर हैं संदीप सिंह। मैंने उनके यहाँ पर एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया, एज अ क्रिएटिव टीम में कैसे काम किया जाता है और ऑफ कैमरा कैसे काम होता है, कितनी रिसर्च होती है मूवीज़ के लिए। देन उसके बाद एक जब पंकज त्रिपाठी सर की अटल मूवी आई थी उसमें मैंने छोटा सा एक एडी का पार्ट निभाया है एज अ क्लैब असिस्टेंट एडी। तो वहाँ से बहुत सारी मैंने चीज़ें सीखी कि कैसे वर्कआउट करती हैं चीज़ें, कैसे नहीं होती, एक रिसर्च होता है, आर्ट्स निकाले जाते हैं, ये सब मैंने सीखा। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये सीखना बहुत ज़रूरी था। मेन स्क्रीन पे आने से पहले आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। देन फिर मैंने वहाँ से छोड़ा, अपने ऑडिशंस देने स्टार्ट किए। तो मेरे को पहला जो मेरा शो था वो था स्वराज, जिसमें मैं एक्चुअल स्क्रीन मेरा प्रेजेंस था। उसके बाद फिर मैंने ऐसे शोज़ करता गया, फिर मेरे को एक बड़ा शो मिला कहानी पहले प्यार की, जिसमें कि आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, विवोर का मैंने कैरेक्टर

0: वो भी बंद हुआ, तो अब आप मेरे को देख रहे हो नकुल के कैरेक्टर में, मंसूतर में। तो ये थी मेरी जर्नी, ऐसे मैंने स्टार्ट किया। टाइम लगा लेकिन अच्छा भी लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, कैसे लोगों से बात की जाती है, कितना हम्बल रहा जाता है। जितना आप हम्बल रहोगे इस इंडस्ट्री में उतना ही आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल आपके अंदर एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि आप जितने भी बड़े हो जाओ, बस हम्बल रहो और सबके साथ अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करते रहो। आपको लोग पसंद करेंगे क्योंकि आप लोग, एक शो बंद होता है तो आप, अगर आपका अच्छा बिहेवियर होता है तो आपको लोग आपके काम से ज़्यादा आपके नाम से मतलब याद रखते हैं कि हाँ यार एक अंकुर आया था वो बहुत अच्छा करता था। कोई याद नहीं रखता कि नकुल का कैरेक्टर था वो, सब आपको याद रखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं अगर आप सबके साथ रिस्पेक्टफुली बातें करते हो। तो बस यही है एक जर्नी, बाकी आगे भी मैं मेहनत करता रहूँगा और बस भगवान की दुआ रहेगी तो एक दिन बड़ी स्क्रीन पर आऊँगा।
1: भाई अंकुर की बात करने से ही पता चल रहा है कि अंकुर कितने सीधे साधे और कितने शांत मन के हैं। उम्मीद करते हैं कि लीप के बाद मनसुंदर में नकुल का किरदार भी निहाल की तरह और उभर कर आए, क्योंकि जल्द ही नकुल की जिंदगी में कोई लड़की आने वाली है। खैर ये तो सीरियल की कहानी है, फिलहाल तो हम अंकुर से लेते हैं विदा।
0: थैंक यू सो मच गाइज, आई होप मैं आप सबको एंटरटेन कर पाया हूँ अपने डेली रूटीन के जरिए। और मैं चाहता हूँ कि आपने जैसे मेरे सारे बाकी कैरेक्टर्स को प्यार दिया है, नकुल को भी बहुत प्यार दें और शो देखिए मनसुंदर दंगल पर रात को 8 बजे, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें, बहुत सारे कमेंट्स करते रहें। आप सबके कमेंट्स आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, बहुत सारे रिप्लाईज आते हैं, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।
1: क्योंकि डे आउट हो गया है पूरा। उम्मीद करते हैं कि अंकुर के बारे में जानकर आप सभी दर्शकों को बहुत मजा आया होगा। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।

0: करते हैं मनोरंजन की उस रंगीन दुनिया का, जहां से हम खास आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ रॉकिंग और कुछ शॉकिंग खबरें। ये चटपटी और मसालादार खबरें यकीनन आपके चेहरे पर भी ले आएंगी एक हल्की सी मुस्कान। तो चलिए बिना देर के देखते हैं आज की रॉकिंग न्यूज।
1: गुल्लू, आप किन्हीं दो सदस्यों को लाइफ ग्रांट करेंगे?
2: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं बिग बॉस की, जहां पर गुल्लू को मिली है खास पावर। अब देखना होगा वो किसे बचाएंगे।
1: गुल्लू, आप किन्हीं दो सदस्यों को लाइफ ग्रांट करेंगे जो इस शो में अपनी एक एक लाइफ खो बैठे हैं?
3: कनिका उदिति, स्काउट आसिफ, यंग रिति।
4: सो बिग बॉस दोस्त मेरे काफी, लेकिन रिश्ते भी ऐसे बनते हैं कि लोग बाद में फील करते हैं वो कुछ रिग्रेट ना हो कि मैंने जो दोस्ती निभाई है अभी तक निभाई है। चाहूंगा उसको उसकी वो लाइफ वापस मिले।
1: घर वालों, कैप्टन गुल्लू ने अपना फैसला सुना दिया है, वो है
5: आर्यवर्धन। एक बुरी खबर है, आपके खिलाफ अभी FIR फाइल हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा।
6: FIR किसने की है?
5: मिसेस मीरा वर्धन।
2: देख लीजिए सीरियल तुम से तुम तक का ये नया ट्विस्ट, जहां पर शुरू हो गया है जेल में अनु और आर्या का रोमांस।
7: मैंने आप कुछ खाई?
6: मैं जानता हूँ तुमने भी कुछ नहीं खाया। खाओ। हेलो, प्लीज रो मत।
7: मैं क्या करूँ सर, मैं आप खुद से नहीं देख सकती।
6: यही तो जिंदगी की आजमाइश, जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है वही वक्त है जब हम हिम्मत से अपनी जगह पर खड़े रहें।

साहिली सालुंके और राकेश बापट की बन गई है जोड़ी। ये दोनों साथ साथ नजर आने वाले हैं स्टार प्रभा के आने वाले शो तुझा कड़े तुला मांगने।

वह सीरियल क्यूँकी पापा कहते हैं जो सोनी सब पर आ गया है। इसमें राज अनाटकर के अपोजिट फीमेल लीड के तौर पर नजर आएंगी प्रेम रीला फेम एक्ट्रेस सांची तिवारी।

0: दो सीढ़ी चढ़ना है, एक सीढ़ी तो मैं
1: चढ़नी
0: हूं। अभी रुक जाओ।
2: हिना खान का हुआ मासी मोमेंट, जहां वो रुबीना के बच्चों संग टाइम स्पेंड करने पहुंची। देख लीजिए ये फन वीडियो।
0: हाय मेरा जिंगमो, मासी का एंड्रू
3: पकड़। हाउ इज द फूड?
4: ऑसम, अमेजिंग, गुड ऑन स्टमक।

क्लास बेस्ट डांसर सीजन 5 को मिल गए हैं उनके विनर, जो कि हैं रायपुर के रितेश बाल, जो घर ट्रॉफी ले गए हैं कोरियोग्राफर प्रतीक उदेकर के साथ। देख लीजिए ये तस्वीरें।

0: जल्द आने वाला है चुंबक पार्ट टू, जो कि 1 अक्टूबर को रिलीज होगा। तो हो जाइए तैयार पार्ट टू के लिए। नजर डाल लीजिए तो जूलियट जड्डी के नए ट्विस्ट पर, जहां पर फतेह के कॉन्सर्ट में हुआ हादसा, जिसकी वजह से क्या फिर से पास आएंगे हीरो नवाब।
1: फतेह के कॉन्सर्ट में हुआ हादसा।
2: रूठी है शब्ते रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा।
1: क्या बनेगा हीरो नवाब के पास आने की वजह? दिव्य अमृत आज भी है कहीं।
0: स्टार प्लस पर आने वाला है नया सीरियल अप्सरा, देख लीजिए इसकी खास झलक।
1: कौन करेगा अमृत की रक्षा? अप्सरा जल्द

इंडियन गेम शो के सेट के बाहर नजर आए कई सितारे जो पहुंचे शूटिंग करने। ऐसे में साथ साथ नजर आए गुरमीत, ईशा। इसके अलावा नजर आए उर्फी जावेद।

0: ईशा सिंह। वरुण यादव। अर्चना गौतम। फैसल शेख और कई और सितारे।
1: रूलर्स, कौन आपको लगता है अल्टीमेट रूलर बनने की रेस से बाहर होना चाहिए?
2: Let's go, मजा आ गया।
0: राइज एंड फॉल सीजन 2 के सेट से आ रही है खबर, जहां पर सिवेत और शहजाद के बीच हुआ झगड़ा।
1: रूलर्स, कौन आपको लगता है अल्टीमेट रूलर बनने की रेस से बाहर होना चाहिए?
2: Let's go, मजा आ गया।
3: श्वेत करण की हर बात को ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है। प्लीज कैन यू कीप क्वाइट।
4: चाटना बताता हूँ किसे कहते हैं।
5: समर्थन चाहिए थोड़ा सा कि भाई जब मैं स्वरा के सामने जाऊंगा ना तो मुझे सपोर्ट करना।
3: ने विषय के लिए मांगा सपोर्ट, तुमने दिया नहीं, भाग गए तुम।
6: स्वरा ने तुझे बोला था ना सेवा के, तू सेवक ही है।
3: मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ।
6: तू खैर भी नहीं सकता बाबू।
7: स्वरा आग लगा दी।
2: लड़ो यार, लड़ो मरो।
3: श्वेत की रीढ़ की हड्डी देखो कि वही स्वरा भास्कर के साथ बैठा है और मुझे लेक्चर दे रहा है। जो शिवेट टैटू बनाकर घूम रहा है वो शिवेट स्वरा भास्कर के साथ अब कुछ बंधन कर रहा है।
8: डोंट हिट हिम,
3: डोंट, इफ यू टच मी।
0: ऐसे में सिवेत ने शहजाद पर हाथ उठाया है, जिस वजह से वो गेम से आउट हो गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है।

0: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हो रही है बाप्पा की विदाई, जिसके चलते पूरी पौददार फैमिली भक्ति भाव से गणपति आरती में जुटी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसी बीच अरमान से बहस करने के लिए पहुंचता है कबीर। अब कहानी क्या नया मोड़ लेती है, चलिए देखते हैं।
1: पापा के विसर्जन पर निकला पौददार परिवार, अभीरा, अरमान और मायरा की भक्ति।

0: थप्पड़ मारा। How dare you? दोबारा उसे अपनी बेटी मत कहना।
1: त्योहार के शगुन में होगा ड्रामे का अपशगुन। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में पोदार परिवार निकल पड़ा है गणपति बप्पा के नारे लगाते हुए बप्पा के विसर्जन के लिए। ऐसे में एकजुट हुआ है पूरा परिवार, साथ है मायरा, अरमान और अभीरा। असल में इस बार बप्पा का विसर्जन मायरा कर रही है क्योंकि अरमान के हाथ में चोट जो लगी है। भाई त्योहार की खुशी तो है लेकिन अरमान, अभीरा और मायरा के चेहरे पर टेंशन साफ जाहिर है। भाई पूरा परिवार ढोल नगाड़ों और नम आंखों के साथ बप्पा को विदा कर रहा है। मायरा, अभीरा, अरमान और सभी लोग कर रहे हैं गणपति बप्पा की आखिरी आरती।

0: त्योहार में ट्विस्ट का तड़का तो तब लगता है जब आ जाता है कबीर, और ऐसे में फिर एक बार भड़क जाता है अरमान, लेकिन मायरा तो सीधा कबीर के पास चली जाती है। लेकिन आज तो कबीर अरमान से मिलने आया है। देखिए कैसे वो मायरा पर हाथ उठाने की वजह से अरमान पर भड़क रहा है। ऐसे में बीच बचाव के लिए मायरा आती है और उल्टा कबीर को ही सुनाने लगती है। भाई चाहे जो भी हो जाए, अरमान अभीरा मायरा के पेरेंट्स हैं और वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती।
1: तुमने मायरा को कहीं देखा?
2: नहीं तो
1: फिर से उस कबीर के पास तो नहीं चली गई?
3: क्या ये सच है आपने मेरी मायरा को थप्पड़ मारा? हाउ डेयर यू।
4: अब दोबारा उसे अपनी बेटी मत कहना।
5: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये मेरे पापा हैं।
4: मैं तुम्हारे साथ हूँ मायरा, हम इन लोगों से साथ मिलकर लड़ेंगे।
5: ये लोग नहीं, माय पेरेंट्स हैं, और मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं लड़ना।
0: ऐसे में देखिए कैसे मायरा कबीर को खरी खोटी सुना रही है। ये देखकर अरमान अभीरा खुश भी हुए।
3: हम मिस्टर पीडी के टॉर्चर के खिलाफ आवाज उठा सकते।
5: टॉर्चर? कबीर ये मेरे पापा हैं।
3: कैसे क्यों लड़ाई कर रही हूँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ।
5: अगर तुम सच में मेरे साथ होते तो माय पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते।
3: मैं फालतू में बहुत
5: तुम फालतू में मेरे और मेरे पापा के मैटर के बीच में अपनी जान लड़ा। पापा ने तुमसे जाने को कहा, अब तक खड़े क्यों? जाओ, तुम्हें इस वक्त अपनी जान के साथ प्लीज जाओ।
0: खैर इससे ये तो पता चला कि कहीं ना कहीं मायरा को पता है कि सही और गलत क्या है। ऐसे में आज उसने कबीर का नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स का साथ दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें विद्या की तो वो टेंशन में है, क्योंकि अरमान और अभीरा ने फैसला लिया है कि वो मायरा को सात समंदर दूर भेजने वाले हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो कबीर से भी दूर हो जाए। लेकिन ये बात विद्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही।
6: पर वो अच्छे के लिए जा रही है ना, वो पढ़ने के लिए जा रही है जेठानी सर।
7: तुम्हें भी पता है मनीषा कि अरमान और अभीरा जबरदस्ती उसे दूर भेज रहे हैं
6: उसकी भलाई के लिए जेठानी सर। और माँ बाप जो फैसला लेंगे हमें तो मानना ही पड़ेगा ना।
7: क्यों मानना पड़ेगा? हम माय उन्हें कुछ नहीं लगते क्या?
6: लगते हैं, पर
7: मुझे मालूम नहीं है कि अरमान को क्या हो गया है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता है जब वो अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ पर नाइट स्टे के लिए जाती थी ना, तो आधी रात को उसे घर वापस ले आता था। अब उससे चार साल दूर कैसे रहेगा वो?
6: तो जेठानी सर ये सब बातें आप उसके सामने मत बोलिएगा, वो वैसे ही हिम्मत रखने की बहुत कोशिश कर रहा है।
7: हिम्मत रखने की कोशिश कर, अगर हिम्मत रखता तो आज ये नौबत नहीं आती मनीषा। मायू अगर 30 सेकंड भी लेट हो जाती है ना मैसेज का रिप्लाई करने में, तो ये पॉपकॉर्न पापा बन जाता है। इसे सब्र से, आराम से, शांति से उसकी बात सुननी चाहिए थी ना, तो आज हमारी मायू ऐसे बगावत नहीं करती।
6: हाँ, पर अपने हिसाब से तो वो ठीक ही कर रहा ना जेठानी साहब।
7: हाँ हो जाती है, हमसे भी गलतियां हुई है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने बच्चे को सात समुंदर पार भेज दो। अगर बच्चा कोई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उसे कोई दूर थोड़ी ना भेज देते हैं, या फिर उसे ऐसी जगह थोड़ी ना भेज देते हैं जहां उसे नजर रखने वाला कोई ना हो। देख लिया तू देखना मनीषा, मायरू न्यूजीलैंड जाएगी ना तो हम सबको फोन भी नहीं करेगी, और अगर उसे कोई लड़का मिल जाएगा ना तो हमें बताएगी भी नहीं। और अपने फैसले पे देखना, अरमान भी बहुत पछताने वाला है मनीषा।
0: ऐसे में अब अरमान और अभीरा मायरा और कबीर को लेकर क्या फैसले लेते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इसी वजह से रिश्तों में दरार जरूर पड़ेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
8: सीरियल तुम देना साथ मेरा में एक तरफ जहां अपराजिता और रक्षित के बीच मियां बीवी वाली नोक झोंक देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिले इनके रोमांटिक पल। तो चलिए देखते हैं कि शादी के बाद कैसी चल रही है अपराजिता की मैरिड लाइफ।
0: बड़ी अपराजिता और रक्षित की नजदीकियां। शुरू हुई मियां बीवी की नोक झोंक।

स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनफा तुम देना साथ मेरा में आज देखिए कैसे रक्षित अपराजिता के पीछे पड़ा है कि वो अपना सामान पैक कर मायके चली जाए, लेकिन अपराजिता मायके जाने को तैयार नहीं और इसी बात को लेकर दोनों में खट्टी मीठी नोकझोंक शुरू हो गई है। असल में रक्षित अपराजिता को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो मायके चली जाए, लेकिन अपराजिता वो तो अब रक्षित की ये बात मानने को तैयार ही नहीं।

बहन की नोक झोंक चल ही रही होती है कि दोनों की आशिकी शुरू हो जाती है। जी हाँ, देखिए कैसे दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आ जाते हैं, लेकिन बहाना बनाकर रक्षित वहाँ से 9-11 हो जाते हैं।

0: Κόντσο ρε, από τι εικόνα του μάρα.
1: Από τι εικόνα του μάρα.
2: Όχι, παιδί. Αυτό που είπε παιδί και πάτη σου μη γίνει. Ο άπκη σάτ, ο κέλη με βακ πιτάνα τσάτη. Κοίτα να τσάνα με candlelight dinner का प्लान बनाया था ना
1: आज के लिए अपनी कैंडल को बुझा दो
2: क्यों
1: क्योंकि चार दिन बाद हम फिर से कैंडल जलाएंगे और करेंगे ना कैंडललाइट डिनर इत्मीनान से क्योंकि आज काम बहुत
2: काम वाम कुछ नहीं मुझे पता है कि विवान और मोहित भैया सब हैंडल कर रहे आप सिर्फ अपनी बीवी को हैप्पी कीजिए आपके लिए वो सबसे जरूरी काम होना चाहिए
1: मुझसे बात कर रही है मुझे ही सुनाई देगा ना और तुम कान इस तरफ नहीं उस तरफ ले जाओ मौमजी आ गया मैं
2: अरे लेकिन
3: भाई दोनों नोक झोंक जरूर करते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को समझते भी है तभी तो देखिए कैसे फिर एक बार शुरू हो गया है रक्षित और अपराजिता का ये रोमांस
4: चलूं मैं जहां जाए
1: कपड़े क्यों वापस रख दिए
2: कुछ पति ग्रीन फ्लैग होते जो अपनी पत्नी का दर्द समझते हैं कुछ पति ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो अपनी पत्नी को बराबर का दर्जा देते हैं और फिर हैं मेरे पति रक्षित अपराजिता भारद्वाज जो सिर्फ अपनी अपनी बीवी को खुद से ऊपर नहीं रखते बल्कि उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बदलने को तैयार है आपको नहीं लगता ये आप रक्षित अपराजिता भारद्वाज होने की ड्यूटी को ज्यादा सीरियसली ले रहे मतलब अगर लड़की खुद अपने मुंह से कह रही है कि वो तैयार है तो आप मानने के लिए क्यों नहीं तैयार
1: किस लिए तैयार
2: इसलिए मुझे पता है कि आप सुबह से छुपन छुपाई पकड़न पकड़ाई क्यों खेल रहे हैं
1: मैं बस तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ थोड़ी स्पेस देना चाहता हूँ और कुछ नहीं वो पम्मी आंटी से तुम मिली थी और मुझे लगता
2: और है क्या मैं मिलने गई थी उन्होंने मेरे दर्द को समझा मुझे समझाया अब मैं ठीक हूँ अब मुझे वक्त नहीं आप जी मैं हमारे प्यार के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और आपने ये वचन दिलाया था ना कि हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे कोई बात होती है कोई दिक्कत होती है मैं खुद आपको बताती
1: पक्का
2: मैं जानती हूँ ये सब जो आप कर रहे थे मेरी खुशी के लिए कर रहे थे मेरी खुशी तो आप है ना और मैंने जब कहा था कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ मैं सच कह रही थी मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही थी आप मेरे सेफ स्पेस हैं वो जगह जहां मुझे किसी बात से डर नहीं लगता खुद से नहीं दुनिया से नहीं किसी चीज से नहीं मुझे लगता है कि अगर आप हैं ना तो सब ठीक कर देंगे मेरा अतीत डरावना था और मैं नहीं चाहती थी कि इसकी परछाई मेरे आज पे पड़े इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी लेकिन आपकी रोशनी ने उस परछाई को खत्म कर दिया मैं तैयार हूँ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए और क्योंकि आप मेरी बात नहीं मान रहे इसलिए आपको बताने के लिए समझाने के लिए यकीन दिलाने के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया
1: इसे सरप्राइज
2: सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहे चलिए
1: एक सेकंड देखो तुम्हें सच में ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है तुम टाइम ले लो मतलब एक महीने एक साल एक जन्म
2: इतना वक्त नहीं है मेरे पास इंतजार करने के लिए चलिए
3: इसी के साथ अपने घर वालों से छुपते छुपाते रक्षित और अपराजिता पहुंच गए हैं इस होटल में जहां शुरू होगा असली ड्रामा क्योंकि यहां आने वाली है पुलिस और फंसने वाले हैं रक्षित और अपराजिता इसी के साथ अपराजिता के सामने एक और नई मुश्किल भी आने वाली है
5: बेटे को थोड़ा कंट्रोल में रखो अरविंद कल रात ना जाने किस लड़की के साथ पुलिस स्टेशन से भागा है
6: कोई छोड़ी भी औरत है किसी और खानदान की बहू रह चुकी है
0: मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। जब तक उसका शुद्धिकरण न हो जाए उसे अपने परिवार में अपना कैसे सकती हूँ मैं
6: ये शुद्धिकरण की पूजा नहीं करूँ। ये पूजा नहीं, मेरा अपमान। मैं अशुद्ध नहीं हूँ, अपवित्र नहीं, अपराजिता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी, न धक्के अनुसी ख्यालों के आगे, न आपके घटिया सवालों।
3: अब देखना होगा कैसे अपराजिता इन सब का सामना डट कर करेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: सीरियल तू ही रे दिल में गणपति के आगे दिखा वृंदा का दर्द, क्योंकि वृंदा बाप्पा से अपना दुख बांट रही है और संजू को देख छिप जाती है। संजय का सच जानने के बाद वृंदा चाहकर भी संजय से मिल नहीं सकती। ऐसे में कहानी में क्या नया मोड़ आता है, चलिए देखते हैं।
3: गणपति बाप्पा से प्रार्थना करती वृंदा। बढ़ रहा है वृंदा और संजय की माँ का बॉन्ड। फिर एक बार संजय से छिपती वृंदा। टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में घर में गणपति बाप्पा बिराजे हैं। ऐसे में देखिए कैसे वृंदा बाप्पा के सामने प्रार्थना कर रही है, बहा रही है आंसू। मेरे रिश्ते बिखरे हुए हैं। वृंदा के सामने संजय भी आ गया है, लेकिन जाकर भी वो संजय से मिल नहीं पा रही है। ऐसे में अपना दर्द वो बांट रही है विघ्नहर्ता के साथ। तभी वहाँ पर पहुँचती है संजय की माँ, जिनकी तबीयत बिगड़ सी गई है। ऐसे में फिर एक बार उनकी मदद करने को तैयार है वृंदा।
8: छोड़ गया रूठ के, गया रूठ के, वो गया रूठ के। सुनो को रास्ता मगर
3: ऐसे में देखिए कैसे जीतू संजय की मम्मी को कमरे में ले जाता है। तभी वहां पर पहुंच जाते हैं संजय, और फिर एक बार संजय को देखकर वृंदा छिप जाती है, और छिपकर वो बहा रही है आंसू। वह अब तक तो संजय इस बात से अनजान है कि वृंदा इसी घर में है, और वृंदा भी संजय के सामने नहीं आ रही, जिस बात का फायदा जीतू पूरी तरह से उठा रहा है। तो भाई इस कहानी में अब कौन कौन से मोड़ आएंगे, क्या पापा संजय और वृंदा को मिलाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
7: आपके दिन को खास बनाने और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम हाजिर हैं कुछ बेहद रॉकिंग और शॉकिंग खबरों के साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया के अलग अलग रंग, और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।

इंडिया के टॉप 1% के सेट के बाहर नजर आए आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, जो पहुंचे हैं अपनी आने वाली फिल्म उड़ता तीर के प्रमोशंस के लिए।

जल्द आने वाला है द रॉयल सीजन 2। ऐसे में खबरों की माने तो इसमें बतौर फीमेल लीड नजर आ सकती हैं मिस इंडिया 2022 फेम सिनी शेट्टी। इस शो में इनके अलावा नजर आएंगे ईशान खट्टर और गुरफतेह, जो की होगी ये लव ट्राइंगल स्टोरी।

0: और टर्न्स से भरी होती है टीवी सीरियल्स की दुनिया, जहां हर मोड़ पर एक नया ड्रामा दर्शकों को हैरान करता है। किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना काफी मजेदार होगा। तो चलिए चलते हैं सीरियल्स की इस दिलचस्प दुनिया में।
1: ये फितूर तेरा।
2: क्या बोल रहे हो जीत, किसने लगाई आग?
3: ये माचिस की तिल्ली, आग लगाओ पच्चड़ पुट्टे रे।
4: स्टार प्लस के सीरियल ये फितूर तेरा में भाई सौम्या के बड़े पापा ने आज तो सभी हदें पार कर दी, और देखिए कैसे सभी घर वालों के सामने सभी शर्म लाज को छोड़कर ऐसी ऐसी बातें कह दी कि भाई सौम्या और सौम्या का पूरा परिवार दंग रह गया।
5: जो बात मैं तुझसे कह रहा हूँ सौम्या, उस बात को ठीक तरह से समझ ले। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न तू और न ही तेरा बाप। और ये जो मामला है ना, इसे यहीं पर रफा दफा कर देते हैं। और ऐसे भी छोटे हमारा छोटा सा परिवार है, जैसे पहले राजी खुशी जिया करते थे, आगे जाकर जी लेंगे। वैसे तुम्हारी आवाज जो है ना सौम्या, अब मुझे मेरे कानों में चुभती है। हर रोज वही बात, पापा पापा मैं, पापा पापा वो, पापा पापा कभी। अरे पापा पापा सुनकर मेरे कान पक गए, एक सेंटेंस पूरा नहीं बोल पाती तुम। और तुम चली हो इंसाफ मांगने, मुझे सजा दिलाओगी, मुझे। सच तो ये है कि तुम ना एक नंबर के डरपोक हो, टप्पू हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हें सहारा नहीं देगा ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अरे तुम्हारी किस्मत है कि वो जो लड़का है तुमसे शादी करना चाहता है, अच्छे घर का लड़का है, चुपचाप उससे शादी करो और जाओ अपने ससुराल। अरे इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। जब चिड़िया के पर काट देते हैं, उड़ने की कोशिश करती है लेकिन फिर गिरती है, फिर उड़ती है, गिरती है, और अंत में उसे ये समझ में आता है कि उसे अपना घरौंदा जो है जमीन पर बनाना है, और तुम वही परकटी चिड़िया हो।
4: ऐसे में इतनी अपमानजनक बातें सुनकर सौम्या का हौसला बंद गया, और देखिए कैसे उसने हिम्मत बांधकर अपने बड़े पापा के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी, जिसके चलते घर पहुंची पुलिस और उन्हें गिरफ्तार कर ले गई।
2: चाइल्ड मोलेस्टेशन की। बचपन में सम्मान्य रूप माधुर ने मेरे साथ जो अपराध किया, उसकी सॉरी पापा, सॉरी माँ, आप दोनों से बिना पूछे ही मैंने ये कदम उठाया। इनके पाप का घड़ा भर गया था तो मैंने आज उसे फूंक दिया।
4: ऐसे में जीत भी सौम्या का पूरा पूरा साथ दे रहा है, और उसने तो एक और फरमान जारी कर दिया है।
2: इसे मुझे तभी छुटकारा मिलेगा जब इस पे सच का सूरज चमकेगा।
6: अभी जाओ रिदान के परिवार वालों को जाके सच बता दो।
7: अरे क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, पूरी फैमिली को सुनो के पास कह रहे हैं, बता रहे हो पागल हो क्या?
8: कह रही थी ना कि तुम्हारे पापा तुमसे कटे कटे रहते हैं, तो क्या ये सच बताने के बाद वो और नाराज नहीं होंगे?
3: जूनियर तुमने अगर ये सच कहा तो तुम्हारे बाप के दिमाग से ये जो झूठ का बोझ है वो भी तो उड़न छू हो जाएगा ना। तो फिर क्या सोचा?
9: शायद यही है प्यार।
2: ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई।
8: देखता हूँ बाद में।
2: अरे देखो, कितने टाइम के बाद मिले हो तुम। आई नो तुम बिजी हो, पर थोड़ा टेंशन तो दो ना।
4: कलर्स टीवी के सीरियल शायद यही प्यार है में भाई आज प्रीति ने गगन के साथ बेहद ही स्पेशल डेट प्लान की थी, जहाँ उसे लग रहा था कि भाई कुछ समय में उनके शादी की डेट फाइनलाइज हो जाएगी, लेकिन गगन का बर्ताव देखकर प्रीति का मूड अपसेट हो गया।
8: प्लीज मेरा ना इम्पोर्टेंट काम चल रहा है।
2: एक गिफ्ट और भी है, ये तो पक्का तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सी कितना अच्छा लग रहा है तुम पे।
0: आज के लिए खत्म होता है सास बहू और बेटियां का सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और इसी तरह जारी रहेगा मनोरंजन का सिलसिला। तब तक के लिए नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे

0: जो बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के
1: भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: शन पर लगेगी लगाम, वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्जेस भी डबल। एशियन गेम्स में भारत के लिए आज ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर, पिंक की बुल्हारा को कुराश में ब्रॉन्ज। मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, अब तक कुल 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बद्री विशाल के दर्शन। तमिलनाडु में बच्चे के जन्म पर मिलेगी सोने की अंगूठी, मदुरई में सीएम विजय ने शुरू की योजना, केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात को लाभ। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को होगा मुकाबला।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
1: उत्तरकाशी में खराब मौसम और बर्फबारी के बीच में फंसे कई पर्वतारोही, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। उत्तरकाशी के कालिंदी पास में करीब 5 से 7 फीट हुई बर्फबारी, किस पर्वतारोहियों की बचाई गई जान। उत्तरकाशी रेस्क्यू मिशन को लेकर हेलीकॉप्टर भी तैनात, मौसम सुधरने के साथ तेज होगा अभियान। प्रशासन ने सभी पर्वतारोहियों के सुरक्षित होने की कही बात, टीमों से लगातार बना हुआ है संपर्क। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की पूरे हालात पर नजर, प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के निर्देश। मौसम साफ होते ही फिर से शुरू हुई चारधाम की यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। मंदिर परिसर से लेकर ब्रह्म कपाल तक श्रद्धालुओं की भीड़ लगी, अब तक 18 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे बद्रीनाथ। चारधाम श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, होटल में यात्रियों ने नाच गाकर और केक काटकर बिताया अपना वक्त। बारिश के बीच में होटल कारोबारियों ने यात्रियों की सुरक्षा का रखा पूरा ख्याल, होटल में ही की गई खाने पीने की व्यवस्था। स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षित और खुश नजर आए श्रद्धालु, होटल कारोबारियों के व्यवहार की जमकर सराहना की गई। 2 दिन की बारिश थमते ही बर्फ की सफेद चादर में ढका केदारनाथ धाम नजर आ रहा बेहद भव्य नजारा। बर्फ पर पड़ती धूप और बादलों के बीच में झांकती चोटियां मोह रही सबका मन, श्रद्धालु उठा रहे मौसम का मजा। ताजा बर्फबारी के साथ केदारनाथ में बढ़ा ठंड का असर, गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम की यात्रा पर मौसम ने लगाया ब्रेक, चिरबासा में पहाड़ी से लगातार गिर रहे बोल्डर। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू अभियान, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई। सांवलिया सीट मंदिर में टूटा दान का रिकॉर्ड, गिनती जारी, 8 चरण तक भंडार से निकले 29 करोड़ से ज्यादा पैसे। 8वें चरण में 51,68,630 रुपए की हुई गिनती, भंडार की गिनती के अभी कई चरण बाकी हैं। सांवलिया जी मंदिर में छोटे नोट और सिक्के भी गिने जाने बाकी हैं, ऑनलाइन दान का भी होगा हिसाब। सांवलिया सेठ के दरबार में भक्त नकदी के साथ सोना चांदी का भी दान करते हैं, मंदिर में जमा आभूषणों की

0: वजन और गणना बाकी है। अमावस्या से एक दिन पहले खोला गया था सांवलिया जी का मंदिर का दान पात्र। झलझुलनी मेले के चलते चार दिन बाद दोबारा शुरू हुई दान राशि की गिनती। एशियन गेम्स 2026 का आज भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम, कई मेडल्स की उम्मीद। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 39 पदक जीते हैं। भारत फिलहाल अंक तालिका में 12वें नंबर पर। कुराश में भारतीय टीम ने जीता पदक। विमेन्स 78 किलोग्राम वर्ग के पिंकी बलिहार को मिला कांस्य पदक। विमेन्स 25 मीटर पिस्टल में भी भारत के नाम एक और पदक। ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत का बॉक्सिंग में चौथा मेडल पक्का। लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह। नागोवा में बारिश के चलते भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला क्वार्टर फाइनल मैच रद्द हुआ। टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी। 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी रोक। वर्क फ्रॉम होम के साथ पार्किंग चार्जेस भी डबल। तिरुमला मंदिर पहुंची अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी। विधि विधान के साथ की भगवान वेंकटेश्वर की पूजा। तिरुमला मंदिर में अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी को फैंस ने घेरा, साथ में खिंचवाई तस्वीरें। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच। 3 अक्टूबर को होगा मुकाबला। भारतीय सेना आज मना रही 200वां गनर्स दिवस। वीर शहीदों के साथ शौर्य के दिनों को याद किया जा रहा। गनर्स दिवस पर सेना ने एक बेहद शानदार जोश से भरा हुआ वीडियो जारी किया। पारंपरिक से लेकर आधुनिक तोपों की सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। कठिन हालात में भी आर्टिलरी की जबरदस्त क्षमता को प्रदर्शित किया गया। गनर्स के पराक्रम को दिखाया गया। आज के दिन ही 1827 में गठित हुई थी 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी। इसी की याद में मनाया जाता है गनर्स दिवस।
1: अमर शहीद भगत सिंह।
0: आज देश मना रहा है शहीद भगत सिंह की जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो जारी करते हुए किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट किया जाएगा मंडी शैली का रणसिंगा। एम्स का लोगो भी अंकित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 से 8 अक्टूबर तक करेंगी हिमाचल प्रदेश का दौरा। थाची निवासी ने तैयार किया रणसिंगा। पूरे जगन्नाथ मंदिर में सुबह भव्य आरती का आयोजन किया गया। भक्तों ने किए दर्शन। कोटा के युवक ने मुश्किल घड़ी में मदद के लिए बनाया मेरा साथी ऐप। ऐप से आसपास मौजूद मदद तक पहुंचना होगा आसान। पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को खास तरीके से दी बधाई। रेत पर बनाई कलाकृति। डोडा में पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटे कारोबारी और लोग। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। फरीदाबाद में नशा मुक्त हरियाणा अभियान में मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी। जोनाई का अमृतपुर गांव बना बैट किंगडम। 20 बीघा जमीन पर बसाया जंगल। हजारों चमगादड़ों के लिए बना सुरक्षित। थूथुकुड़ी में बढ़ा नमक का उत्पादन। सूखे मौसम से मिला फायदा। कन्याकुमारी से कारगिल पहुंचा भारतीय वायुसेना का साइकिल अभियान। युद्ध नायकों को दी गई श्रद्धांजलि।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी

दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रविगिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं, दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं, इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज, जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं, जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है।

0: इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र। ये गंधपुरा पत्र में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजन करी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अभ्रक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी। 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। एशियन गेम्स में भारत के लिए आज शुभ दिन। ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर। पिंकी को कुराश में ब्रॉन्ज। मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम की यात्रा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी। मदुरई में सीएम विजय ने शुरू की योजना। केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात को लाभ। कोलकाता पहुंचे इंडियन फुटबॉल टीम। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच। 3 अक्टूबर को मुकाबला।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। पितरों की कृपा पाने का अवसर है पितृपक्ष। आज बात करेंगे पितृदोष की। क्या है पितृदोष का सच? पितृपक्ष चल रहे हैं, लोग अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। दरअसल पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण बोध से तृप्त होते हैं पितृगण। कहते हैं इन दिनों में दिया गया जल सीधा पितरों तक पहुंचता है, तो इन दिनों में पितरों के आशीर्वाद से जीवन की कई बाधा अपने आप ही दूर हो जाती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे पितृदोष से जुड़ा हर एक सच और जानेंगे कि इससे आपके जीवन पर आखिरकार क्या प्रभाव पड़ता है।

0: जब शुभ कार्यों में होने लगता है व्यवधान, और चारों तरफ से जीवन में होने लगे नुकसान, शारीरिक और मानसिक बाधा भी करने लगे परेशान, और किसी भी समस्या का ना मिलता हो हल, तो ये पितृ दोष के हो सकते हैं निशान। जब जीवन में नकारात्मकता और असफलता मचाए घमासान, तब ज्योतिष के बताए महा उपाय बनेंगे आपकी समस्या का समाधान। ज्योतिष के जानकार जीवन में मची हुई इन हलचलों का कारण पितृ दोष को मानते हैं। उनका कोई एक कारण नहीं माना गया है।
1: जन्म कुंडली अनुसार इस विषय में जानकारी मिलती है। पूर्वज जो अतृप्त रूप में है, तृप्ति नहीं हुई है उनकी, मोक्ष नहीं हुआ उनका, उद्धार नहीं हुआ उनका, और वो हमारे जीवन में आकर के अनेक बाधा पहुंचा रहे हैं, तो इसे ही पितृ दोष कहा जाता है।
0: जिन पूर्वजों का उद्धार नहीं है, उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, और अगर हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो ये पितृ दोष के लक्षण हैं। पितृपक्ष के 15 दिनों में हम अपने ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, सेवा और आदर भाव से सत्कार और आवभगत करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में जो भी कष्ट और व्याधियां होती हैं, उनका शमन पितरों की कृपा से हो जाती है, और जो भी संकट पितृ दोष के कारण होते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं।
1: जीवन में क्या घटित समस्याएं चल रही है, वो रुकावट ऐसे दिख रहे हैं, ऐसा जब प्रतीत होता है, और व्यावहारिक कुछ बाधाएं, वास्तविक कुछ चीजों के बीच में कुछ बाधाएं ऐसी चल रही हो, शारीरिक अगर बाधाएं चल रही हो, तो आप जब इसकी जांच कराते हैं आध्यात्मिक रूप से, तब पता चलता है कि ये पितृदोष।
0: जीवन में समस्याएं और रुकावट आ रही हो और ऐसा दिखाई देता है, वास्तविक या शारीरिक बाधाएं हो, तो जब आप उनकी जांच करवाते हैं, तो पता चलता है कि पितृदोष होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध की महिमा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पितृपक्ष के शुरू होते ही लाखों की तादाद में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ताकि घर में खुशहाली बनी रहे और हर दोषों से मुक्ति मिले। क्या होता है पितृदोष? पितृदोष का सच क्या है? पितृदोष का प्रभाव क्या है? आज हम आपको पितृदोष का हर एक पहलू समझाएंगे, क्योंकि पितरों की कृपा और पितरों का आशीर्वाद मिल जाए, तो कुंडली के दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। विशेषकर अगर आपकी कुंडली में पितृदोष का प्रभाव है, तो पितृपक्ष के दिनों में कुछ उपायों से इसका असर खत्म किया जा सकता है।
1: पितृदोष इसके का आप देख लें तो कहीं ना कहीं अपने ग्रह प्रभाव में सूर्य राहु केतु ये पितृदोष के प्रधान ग्रह हैं। विभिन्न स्थानों में जब बैठते हैं अलग अलग प्रभाव देते हैं, और इसी प्रभाव में ज्योतिष परंपरा के आधार पर पितृदोष के लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में।
0: पितृदोष के लिए सबसे ज्यादा सूर्य और राहु केतु जिम्मेदार होते हैं। ये कुंडली में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रभाव देते हैं, और इन्हें देखकर ही ज्योतिष में पितृदोष के लक्षण बताए जाते हैं। चलिए ज्योतिष के नजरिए से समझते हैं कि पितृदोष आखिर क्या होता है, और इसके होने से जीवन में कैसी बाधाएं आती हैं। जीवन की उन्नति में तमाम चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं। कुछ दोष जाने पहचाने होते हैं और कुछ अज्ञात। इन्हें अज्ञात दोषों में से एक दोष है पितृदोष। आमतौर पर ये योग राहु से बनता है। राहु की विशेष स्थितियां ही इस योग का कारण होती हैं। तो देखा आपने कितना जरूरी है पितरों की विशेष कृपा को पाना, और शायद वो समय होता है जब आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब विवाह का योग न बन पा रहा हो, या फिर आपकी सेहत खराब चल रही हो, परिवार की वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, या फिर रिश्तों में कड़वाहट चल रही हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कारण पितृदोष ही होता है।
1: कुछ विधिवत परंपराओं में देखा गया है कि संतान बाधा, धन की बाधा, ग्रह कलेश, मानसिक स्थिति का बार बार जीवन में हमें असफलता मिलते रहना, ये सभी चीज़ें जो है पितृदोष का प्रभाव माना जाता है। अलग अलग इसके लक्षण हैं पितृदोष।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इन परेशानियों से सामना होने पर आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई दोष है जिसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो समझिए क्या होते हैं उससे होने वाले नुकसान। व्यक्ति को मानसिक परेशानी हमेशा लगी रहती है, पारिवारिक संतुलन नहीं बैठ पाता है, पैसा कमाने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो पाती है, स्वयं निर्णय लेने में बहुत परेशानी होती है, परीक्षा और साक्षात्कार में भी असफलता मिलती है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्राद्ध मुक्ति का मार्ग है, और माना यह भी जाता है कि पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। पितृपक्ष चल रहा है, लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं, क्योंकि पितृदोष अज्ञात माना गया है। तो समझिए क्यों होता है पितृदोष। पूर्व जन्म में अगर माता पिता की अवहेलना की गई हो, अपने दायित्वों का ठीक तरीके से पालन न किया गया हो, अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग किया गया हो, इसका असर जीवन पर दिखने लगता है। व्यक्ति को जीवन में हर कदम पर असफलता मिलती है। मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवार जनों को खुशियों का वरदान देते हैं, इसलिए पितृपक्ष में कौवा, श्वान, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है, इसलिए श्राद्ध करना आवश्यक कर्म है। आगे हम आपको बताएंगे कि वो कौन से अप्रिय योग हैं जिनके होने पर होता है पितृदोष, और जिसके निवारण के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, पितरों के आशीर्वाद से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। हम आपको पितृपक्ष में पितृदोष से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। पितृ संतुष्ट हैं या शांत, या आप पितृदोष से पीड़ित हैं, इन सभी बातों का पता ग्रहों की स्थिति से मालूम होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में है पितृदोष का प्रभाव तो कैसे कर सकते हैं पितृदोष को दूर।

0: वो दिव्य तिथि जब धरती पर आते हैं पूर्वज। वंशजों की हर समस्या को दूर करते हैं पितृगण। मान्यता है कि पितरों की कृपा से दूर होता है पितृदोष। धन धान्य से भर जाएगा आपका कोष। पितृपक्ष में पितरों का सत्कार है पुण्यकारी। श्राद्ध कर्म से मिटेगी पितृदोष रूपी ये बीमारी। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि इन 15 दिनों में पितर अपने बंधु जनों की प्रगति देखने और उन पर अपनी कृपा लुटाने के लिए यमलोक से मृत्युलोक की यात्रा करते हैं और यह क्रम हर साल की महालय पक्ष में दोहराया जाता है। माना जाता है कि जो भी पितृपक्ष के दिनों में पितरों का श्राद्ध तर्पण आदर भाव से करता है उसके जीवन की सारी पीड़ाएं हमारे पूर्वज दूर कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं पितृपक्ष में विशेष कृपा और जीवन से दूर करना चाहते हैं पितृदोष तो आपको पूरे मनयोग से श्राद्ध और तर्पण करना होगा। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान शांत चित्त से अपने पितरों का तर्पण करने से उनका श्राद्ध कर्म करने से पितृ को तो मुक्ति मिलती ही है, तर्पण करने वाले के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन परिवार में बार बार किसी न किसी की प्रगति में रुकावट आ रही हो तो इसका कारण भी विशेषज्ञ पितृदोष को ही बताते हैं।
1: हमें पता है कि कोई हमारे पूर्वज अकाल मृत्यु मर गए और उनका सही से काम नहीं हुआ तो वो भी पितृदोष के आधार हमें लक्षण बताते हैं। तो असर यही जान ले कि परिवार में, वंश में, संतति में, संपत्ति में इसका प्रगति नहीं हो पा रहा है तो आप समझ ले कि ये पितृदोष है। तो इसको पितृदोष से आप जोड़ करके देख सकते हैं कि जब हमें ये सब असर पड़ रहा है हमारे जीवन में तो ये पितृदोष है।
0: माना जाता है कि इन तिथियों में पिंडदान के जरिए पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए उनके परिजन करते हैं प्रार्थना। पिंडदान करके न केवल पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है बल्कि संतुष्ट पितर देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। तो चलिए आपको ज्योतिष के नजरिए से समझाते हैं कि कुंडली में कौन सी योग होने पर पितृदोष होता है, जानिए। कुंडली में राहु के दूषित होने पर, राहु का संबंध धर्म भाव से होने पर, राहु का संयोग सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ हो, कुंडली में गुरु चंडाल योग हो, कुंडली में केंद्र स्थान रिक्त हो, ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पितृ धरती पर मौजूद रहते हैं और नियमानुसार उचित तरीके से कराए गए श्राद्ध से तृप्त होकर सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि पितृपक्ष में पितरों को निमित्त किया गया विधिवत संस्कार पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है।
1: श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति गया तीर्थ में आकर के इस महाड़े पक्ष में या अन्य पक्ष में भी वो गया जी आ सकते हैं। यहाँ आकर के पितरों के प्रति सर्वप्रथम त्रिपिंडी श्राद्ध करके फिर गया श्राद्ध, तर्पण, दान धर्म इत्यादि, गौ सेवा सत्कार, ब्राह्मण की सेवा सत्कार इत्यादि करेंगे तो पितृदोष से छुटकारा मिल सकता है।
0: मान्यता है कि अगर कुंडली में प्रबल पितृदोष हो तो पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण मात्र से ही हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष निवारण के लिए पितृपक्ष में अलग अलग तरह का उपाय किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे दूर करें पितृदोष। अमावस्या के दिन किसी निर्धन को भोजन कराएं, खीर जरूर खिलाएं, पीपल का वृक्ष लगवाएं और उसके देखभाल करें, श्रीमद् भगवत गीता का नित्य प्रातः पाठ करें, घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जलाएं। पूर्वज चाहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें हमेशा याद रखें, इसलिए हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब उनके वंश की संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी आपके जीवन पर आ जाता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान कुछ उपायों से हो सकता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार। आगे जानिए वो महा उपाय जो पितृपक्ष में आपके जीवन में ला सकते हैं सुख समृद्धि।
2: माना जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिन पूर्वज धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं, इसीलिए इन दिनों में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। पितृ दोष को दूर करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं ये तो आपने जान लिया। इन दिनों में अगर कुछ महा उपाय कर लिए जाए तो आपके घर की नकारात्मकता भी दूर हो सकती है, ये भी आपको बताते हैं।

0: पितृपक्ष में खुल जाएंगे मुक्ति मोक्ष के द्वार। श्रद्धा से श्राद्ध करने की महिमा है अपार। पितरों की कृपा से दूर होंगे समस्त विकार, खुशियों से भर जाएगा घर संसार। पितृपक्ष में करें घर की शुद्धि, पितरों की कृपा से आएगी समृद्धि। माना जाता है कि पितृपक्ष में पूरे निष्ठा के साथ किया गया श्राद्ध पितरों की महाकृपा दिलाता है, लेकिन संपूर्ण पितृपक्ष में किन दो वस्तुओं का प्रयोग सबसे अधिक होता है वो भी जान लीजिए।
1: ये तिल जो है वो पवित्र द्रव्य के रूप में पितरों को उससे तृप्ति हो जाती है, तिल का महत्व है। कुश जो है श्राद्धादि अनेक पूजन कार्यक्रम में भी, श्राद्धों में भी, पिंडदान में भी कुश का जो है प्रयोग किया जाता है पवित्रीकरण के लिए, पवित्र का धारण करना। ये शास्त्रीय पद्धति है, एक विचार है जिसमें तिल और कुश ये दोनों को प्रधान रखा गया है श्राद्ध कर्म पिंड प्रदान में।
0: कर्म कांड के विशेषज्ञ बताते हैं कि पितरों की कृपा अगर मिल जाए तो जीवन सुखमय बन जाता है। पितृपक्ष में एक उपाय से आप भी सुखी और संपन्न होंगे ही, साथ में आपके पितरों को भी मिल जाएगी अपार संतुष्टि। कैसे, देखिए। शनिवार के दिन अन्न या वस्त्र का दान करना विशेष शुभ होता है। ये दान आपको शनि और अन्न ग्रहों की पीड़ा से बचाता है। पितृपक्ष में शनिवार के दान का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं का पालन करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलने की मान्यता है।
1: पितृपक्ष में घर की शुद्धि, सर्वप्रथम गोमय से लीप करके घर की शुद्धि करना, सभी जगह गोमूत्र का प्रक्षालन करना, गंगा जल से पूरे घर में शुद्धिकरण करते हुए घर में कोई अभक्ष्य पदार्थ नहीं बनना, लहसुन प्याज नहीं खाना, शुद्ध से मानसिक से भी, शारीरिक से भी और ग्रह शुद्धि को आप करके रहेंगे। नित्य सुबह शाम दीपक जलाना और पितरों का ध्यान करना, नित्य देवताओं की पूजा करना पितृपक्ष में, तब आप अपने घर की शुद्धि कर सके।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर पितृदोष के कारण घर का माहौल नकारात्मक रहता हो और नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर और जीवन में भी समस्याएं घर कर गई हैं, तो कीजिए ये उपाय। घर में नमक मिले हुए पानी का पोछा लगाएं, घर के सभी कोनों की सफाई पर विशेष ध्यान दें, शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो पितृपक्ष में ये उपाय कीजिए और अपना जीवन संवार लीजिए, क्योंकि पितरों से जुड़ी समस्याएं जब दूर होंगी तो जीवन में खुशियां बरसेंगी। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल चुकी।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
9: चलिए, अब आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा एडिशन चल रहा है। इसमें दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं।

0: 8 देश, 80 आधुनिक एयरक्राफ्ट और 1500 जवान, ये है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की ताकत, जिसका प्रदर्शन इन दिनों जोधपुर के आसमान में शुरू हो चुका है। इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा 7 मित्र देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान अलग अलग देशों के ये लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरकर रणनीतिक तालमेल और हवाई युद्ध की बारीकियों को आपस में साझा कर रहे हैं, ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जैगवार जैसे लड़ाकू विमानों को उतारा गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हवा में ही ईंधन भरने वाले एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि इस साल के तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना का 5वीं जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट F-35 आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो पहली बार इस मेगा एयर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। यही वजह है कि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी जोधपुर पहुंचे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना की भागीदारी को लेकर खुशी जाहिर की है। ये एक्सरसाइज 12 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान एक साथ गरजते लड़ाकू विमान केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन भर नहीं है, बल्कि दुनिया भर की प्रमुख वायुसेनाओं के साथ भारत के मजबूत होते रक्षा संबंधों की एक बुलंद तस्वीर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मॉस्को की मजेदार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मॉस्को में कद्दू सिर्फ सजाए नहीं गए बल्कि पानी में उतारे गए, वो भी ऐसे कद्दू जिनका वजन 500 किलो तक है। किसी ने कद्दू को नाव बनाया, किसी ने पहनी मजेदार सी पोशाक और फिर शुरू हो गई तालाब में जायंट पंपकिन रेस। रूस में पहली बार हुए इस अनोखे इवेंट में क्या कुछ खास हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
2: मॉस्को में सितंबर की ठंडी हवा, तालाब का शांत पानी और इस खूबसूरत माहौल में यहां चल रहा है बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल। दिलचस्प ये कि ये नावें लकड़ी या फाइबर की नहीं, सैकड़ों किलो वजनी विशाल कद्दू से बनी हैं। बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल में विशाल कद्दूओं को अंदर से खोखला किया गया, फिर उन्हें सजाकर बनाई गई है ये खूबसूरत नाव। कद्दू जितना बड़ा, चुनौती भी उतनी ही बड़ी। कहीं चेतावनी का बोर्ड तो कहीं पूरी तैयारी के साथ रेस में उतरने का जोश। किसी के लिए ये सालों की मेहनत का नतीजा है तो किसी के लिए बस एक ऐसा मौका जिसमें मस्ती भी है और मुकाबला भी। 400 से 500 किलो तक के कद्दू जब पानी में उतरे तो तालाब देखते ही देखते बन गया पंपकिन रेस ट्रैक और फिर शुरू हुई अनोखी सवारी। कद्दू के अंदर बैठे प्रतियोगी पैडल के सहारे आगे बढ़ते रहे। किसी ने चुना डरावना लुक तो किसी ने बच्चों के पसंदीदा किरदारों की पोशाक। किनारे खड़े दर्शकों के लिए भी ये किसी तमाशे से कम नहीं था, पानी पर तैरते विशाल कद्दू और उनके अंदर बैठे रंग बिरंगे किरदार। ये सिर्फ रेस नहीं, विशाल कद्दू उगाने वालों के लिए अपनी मेहनत को नए अंदाज में पेश करने का मौका भी है। तालाब में उतरते ही इन कद्दूओं ने पूरे फेस्टिवल का रंग ही बदल दिया और अब बारी थी इसे मुमकिन बनाने वाले आयोजक की कहानी सुनने की। रूस के 75 इलाकों से आए बागवान 200 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सब्जियां, लेकिन महफिल लूट गए ये जायंट कद्दू जो कद्दू खेतों में उगते हैं। मॉस्को के तालाब में वही नाव बनकर तैरते नजर आए। किसी ने इन्हें सजाया, किसी ने इन्हें बैठकर रेस लगाई और किसी ने अपनी बचपन की पोशाक पहनकर इस पल को और खास बना दिया। कहने को ये कद्दू हैं, लेकिन मॉस्को में इनका अंदाज बिल्कुल अलग था, जहां कद्दू सिर्फ सब्जी नहीं रहा बल्कि नाव भी बना और रेस का अहम किरदार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
12: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
4: दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगा लगाम, वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, ईशा सिंह ने वेमेन 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर, पिंकी को कुराश में ब्रॉन्ज। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी, मदुरई में सीएम विजय ने शुरू की योजना, केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात को मिलेगा ये लाभ। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका और मेरे साथ स्टूडियो में आज सुशील जी एनवायरमेंटलिस्ट हैं। चर्चा होगी गया मॉनसून गर्म, क्या ठंड का करें वेलकम, इसको लेकर आज हम आगे बातचीत करेंगे। दरअसल दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कई हिस्से ऐसे जहां पर मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है, और इनफैक्ट ये जो गया वीकेंड है इस दौरान तो लोगों ने सर्दी का एहसास भी किया है। तो मौसम फिलहाल कैसा है, रात को कैसा रहेगा, कल कैसा रहेगा, इसको लेकर आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि हर पल मौसम बदलता जा रहा है। बहुत सारे बदलाव मौसम में देखने को मिल रहे हैं, पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बिल्कुल ऐसा ही हाल है। असर मौसम देखने को मिल रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बर्फबारी है, यानी कि मौसम ने अंगड़ाई ली है और बिन बुलाए ठंड भी आ गई है। कहीं बर्फ बरस रही है, कहीं बारिश वगैरह बरस रहे हैं, फिर से वादियों में बर्फ का पहरा है और मौसमी में सुनहरा है। मौसम ने अचानक से क्यों बदले हैं तेवर, इसको लेकर आज हम अगले घंटे तमाम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। तो मौसम ठंडा ठंडा कूल कूल है, और इस वक्त जो मौसम का हाल है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुभाष शर्मा मौजूद हैं। आज अगर हम पूरे देश के भारत पूरे भारत की बात करें तो कहाँ कहाँ मौसम कैसा है, एक बार वो बात कर लेते हैं। बारिश हो रही है कहीं, कहीं बर्फबारी हो रही है, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर बादल बरस रहे हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, खासतौर पर दिल्ली के साथ एनसीआर की, तो यहां पर ठंड ने दस्तक दे दी ऐसा कहा जा रहा है, और ये ठंड कितने दिन तक, इसको लेकर बात करेंगे आगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही क्या बारिश लौटी है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भी बर्फबारी हो रही है, लिहाजा उत्तर भारत के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मैदानों में सुबह शाम ठंडक का एहसास हो रहा है, और दिल्ली में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सितंबर के महीने में तापमान सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम है, और बादलों के कारण धूप की तपिश भी कम महसूस हो रही है। उत्तराखंड में अगर बात की जाए केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब की, तो वहां पर बर्फबारी हुई है, लेकिन मौसम क्योंकि आज साफ है इसलिए आज वापस से वहां पर यात्रा की शुरुआत की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हो रही है। इधर जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, तमाम ऐसी जगह जहां पर पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, तो ऐसे में पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी है। ऊंचाई वाले जितने इलाके हैं पारा वहां पर गिर चुका है, ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास करा दिया है। तो कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि अक्टूबर आने से पहले सितंबर में सर्दी की एंट्री हो चुकी है। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत की बात करें तो अचानक से ठंड बढ़ गई है। उत्तर भारत में बदले मौसम की वजह से इसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। दिल्ली और एनसीआर की बात करें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में फिलहाल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, लिहाजा अब अचानक से न्यूनतम तापमान भी गिर कर 20 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है। तो ऐसा अमूमन सितंबर में होता नहीं है। तो तीन तस्वीरें देखिए, पहाड़ों पर कहीं बर्फबारी कहीं बारिश, मैदानी इलाकों पर इसका सीधा असर, दिल्ली एनसीआर में भी गया वीकेंड बेहद सुहावना रहा, ठंड का एहसास किया है लोगों ने, कहीं बारिश हुई है, कहीं ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना हुआ है।
1: देश के अलग अलग राज्यों में एक बार फिर से मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। काफी समय से लोगों को गर्मी परेशान कर रही थी, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हुई, उसके बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई। ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो शुरुआती दिल्ली एनसीआर से हम करेंगे कि दिल्ली में मौसम में इतना बदलाव एकदम से क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी मानसून वाली स्थिति भी नहीं है और ना ही अभी ठंड की एंट्री हुई।
2: देखिए, जहां तक दिल्ली की बात है तो एक जो है डीप डिप्रेशन जिसने के जो हमारे ईस्ट कोस्ट से क्रॉस किया था, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट मूव करके उत्तर प्रदेश में आकर के आज सुबह के समय जो है वो एक लेसमार्क हो गया, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से लेसमार्क हो गया है, जिसकी वजह से जो पूरा ये जो बेल्ट है इसमें काफी अच्छी वर्षा देखने को मिली। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि अति भारी वर्षा भी रिपोर्ट की गई थी, साथ साथ उत्तराखंड में काफी अच्छी वर्षा हुई। इसके साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है था वो भी, उसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हुई, और इसकी वजह से भी जो तापमान है उसमें में काफी गिरावट देखने को मिली। तो अभी दिल्ली की बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है नीचे चल रहे हैं।
1: आने वाले दिनों में भी ऐसे ही रहेगा मौसम?
2: देखिए आने वाले दिनों में मौसम ऐसा रहने की संभावना कम है क्योंकि इसके बाद जो भी आज जनरली क्लाउडी स्काई कंडीशन बनी हुई है इसमें इंप्रूवमेंट होगा। कल जो है पार्टली क्लाउडी स्काई कंडीशन और उसके बाद में आसमान के जो है साफ होने की संभावना है जिसकी वजह से जो अधिकतम तापमान है जो आज करीब 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है ये करीब करीब अपने नॉर्मल स्थिति में 3 से 4 दिन के बाद जो कि 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचने की संभावना है।
1: पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो वहां बर्फबारी एक बार शुरू हो गई है तो वो भी इस डीप डिप्रेशन का असर?
2: देखिए वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे बताया वो था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी अच्छी एक्टिविटी हुई है, साथ साथ में जो ये डिप्रेशन था जो कि आ गया कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में कमजोर हुआ फिर लो प्रेशर एरिया में और आज सुबह जो है लेसमार्क हो गया, इसका भी असर देखने को मिला जिसकी वजह से उत्तराखंड में और आसपास के जो पहाड़ी राज्य है वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिली। आज भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो करीब 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का जो है अलर्ट जारी किया गया है, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है।
0: तो चलिए हम आगे बढ़े उससे पहले जरा आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से पूरे उत्तर भारत में असर देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह की तस्वीरें। उत्तर भारत में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, मौसम बदला है, दिल्ली तक इसका एहसास हो रहा है, दिल्ली में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, साथ ही साथ पहाड़ों में कहीं बर्फबारी हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मैदानी इलाकों में। खासतौर पर सुबह और शाम की बात की जाए तो ठंड का एहसास हो रहा है, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का है। वहीं सितंबर महीने में तापमान सामान्य से अगर कंपेयर किया जाए तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। बादलों के कारण धूप की गर्मी का भी कम एहसास हो रहा है और इस बार अगर हम बारिश की बात करें क्योंकि अलनीनो का साल है, सुपर अलनीनो का साल है जिसकी चर्चा लगातार हो भी रही थी, तो पूरे देश में 15% कम बारिश हुई है। और अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 9% कम बारिश वहां दर्ज की गई है, मध्य भारत में 5% कम बारिश दर्ज की गई है। तो ये तमाम इलाके हैं लेकिन इस बीच इस वक्त अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर भारत में मौसम सुहावना है। उत्तराखंड की तस्वीरें दिखाते हैं, बद्रीनाथ में मौसम सुहावना हो गया है, 2 दिन की बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद मौसम में फिलहाल राहत मिलते ही चारधाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ऊंची चोटियों की बात की जाए तो बर्फबारी और ठंडी हवाओं का दौर वहां जारी है लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और यात्रा का उत्साह बरकरार है।
3: मौसम की राहत मिलने के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा सुचारू हो चुकी है और बद्रीनाथ धाम में लगातार तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ है तो सड़कों पर भी लगातार गाड़ियों की जो कतार है वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को बद्रीनाथ धाम और कोई वापस लौट रहा है तो कोई बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात है अब तक 18,05,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को अब तक पहुंच चुके हैं जो अब तक का एक नया आंकड़ा है। हालांकि वर्ष 2023 का 1840 का आंकड़ा भी अब जल्द ही टूटने वाला है क्योंकि अभी 2 महीने से भी अधिक का समय बद्रीनाथ के कपाट बंद होने में शेष है। ऐसे में जहां प्रशासन ने अब चारधाम यात्रा खोल दी है, बद्रीनाथ धाम में मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है, यात्रा बढ़ चुकी है, पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है पितृपक्ष के दौरान बढ़ती ही है। ऐसे में आने वाले दिनों में और अधिक यहां पे यात्री देखने को मिल सकते हैं। सड़कों पे एक बार फिर से रौनक लौट आई है, बद्रीनाथ धाम में उत्साह दिखाई दे रहा है तो नए आंकड़ों के साथ अब यात्रा आगे बढ़ रही है। कमल एन सिलोड़ी, चमोली, GNT।
0: तो वापस से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 2 दिन के लिए मौसम के मिजाज को देखते हुए यात्रा को फिलहाल रोका गया था लेकिन अभी फिलहाल मौसम सुहावना है, धूप खिल गई है जैसे कमल हमारे सहयोगी बता ही रहे थे, वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे थे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर गुफरान बेग इस वक्त सफर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा वेदर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, सुभाष शर्मा जी फॉर्मर IAS ऑफिसर और एनवायरमेंटलिस्ट भी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है, डॉक्टर सुशील द्विवेदी हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत गुरुदत्त जी आप ही से करूंगी। एक जो चर्चा 2 दिन से चल रही है स्पेशली अगर दिल्ली NCR के लोगों की बात की जाए, पहली बात तो चलिए गुड न्यूज ये है कि लोगों के AC बंद हो गए हैं, अब AC बंद हुए हैं तो गीजर ऑन हो गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सर्दी बहुत जल्दी आ गई है। क्या वाकई सर्दी जल्दी आई या फिर ये कुछ दिनों की राहत है?
4: देखिए ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है, ये तो सर्दी की शुरुआत नहीं बल्कि बारिश और सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण हुआ है जो ये अस्थायी ठंडक है और अगले कुछ दिनों में ये जो मौसम है समान हो जाएगा। इस बार आपने देखा होगा कि सितंबर में जो कम दबाव का क्षेत्र अंत में बना अभी बहुत जोरदार, वो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम बनते हैं साउथ में जो रेल होती है, तो ये जो सिस्टम आया और राजस्थान में प्रेरी चक्रवात बन गया, तो वहां से जो मानसून की विदाई शुरू हुई तो उसने रोक के कन्वर्ट हमेशा मतलब दिल्ली साइड ही इसका रुख कर दिया, नहीं तो नॉर्मली ये राजस्थान को जाता और वहां वर्षा करता। तो भाग्यशाली है दिल्ली के लोग की जो एंटी साइसर बन गया राजस्थान के ऊपर और वो हवाओं को इसने उत्तर भारत की ओर कर दिया और वहां बर्फबारी हो रही है क्योंकि पश्चिम विक्षोभ भी इस बार है वहां पर और लगातार नमी के कारण ऐसा है। लेकिन एक दो दिन बाद मौसम साफ हो जाएगा, 30 तारीख से उत्तर भारत में सूखी ठंडी हवाएं आएंगी हल्की हल्की, लेकिन अगर आप कहें कि गर्म कपड़े निकाल लें गर्म पानी से नहाने की, तो वो स्थिति आपकी नहीं होने वाली क्योंकि सुपर एलिनो का साल है और ये अक्टूबर नवंबर में धीरे धीरे ठंडक बढ़ती है खासकर उत्तर भारत में जो कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी को होती है। तो जिस टाइप से एलिनो का प्रभाव बढ़ रहा है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आगे बहुत ज्यादा ठंड का असर पड़ेगा, लेकिन चूंकि भारत की हमारी विविधता है यहाँ के पहाड़ियों में अलग अलग जो सिस्टम है, तो हो सकता है कि WD का असर और समुद्र की जो चीजें हैं उस पर निर्भर के तापमान में और बर्फबारी होगी थोड़ा बहुत, तो इससे तापमान को मदद मिलेगी। लेकिन अल्लीनों के कारण से हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ठंड होगी या नवंबर दिसंबर में जैसा है कि मावठा गिरने की संभावना भी नहीं होगी। दो चीजें बताई मैंने कि सितंबर के अंत में ये खासकर ये जो सिस्टम इतना मजबूत नहीं बनता कि उसने आधे भारत को अच्छी वर्षा दे दी, तो ये एलिनो का प्रभाव है। और जो WD की बात कर रहे हैं जो उत्तर भारत में ऊपर दिख रहा है ये भी एलिनो का प्रभाव है क्योंकि चेंज हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। इस बार मानसून में ऐसा हुआ आपने देखा कि अभी तक पूरे भारत में -12% रेन हुई है और खासकर साउथ में रेन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो ये असमान वितरण जो वर्षा का एलिनो के कारण ही सब कुछ है। जो गतिविधियां इस टाइम से मौसम की हुई कि जून में रेन नहीं हुई कम हुई, तो ये सिस्टम डिस्टर्ब है और आगे भी हमको ये डिस्टर्ब करेगा, हमको ये मार्च तक झेलना है एलिनो का प्रभाव।
0: ठीक है, चलिए डॉक्टर गुफरान अब चलिए आपके पास आऊंगी, मौसम वाली गुड न्यूज कब तक रहेगी ये तो हमने जान लिया, लेकिन ऐसी अच्छी खबरों का इंतजार ना लोगों को बहुत ज्यादा रहेगा स्पेशली आने वाले दिनों में, तो कितना असर सर इसका आने वाले दिनों में देखते हैं?
5: देखिए हमारे इस मौसम में दो विलेन है, एक तो है कि क्लाइमेट चेंज और दूसरा है ये सुपर एलिनो जो लेके आया है। अब लॉन्ग टर्म का इफेक्ट हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं इतने सालों से, इतने टाइम से, मतलब पिछले एक आधे महीने से कि सुपर एलिनो की वजह से हमारा जो है इस बार पश्चिम विक्षोभ बहुत कम हो जाएंगे, सर्दी जितनी पड़ना चाहिए थी उतनी पड़ेगी नहीं, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि क्लाइमेट चेंज से जो भी चीजें हम लोग अनुमान लगाते हैं या कुछ होती है उसमें अनिश्चितता लाती है, तो ये दोनों चीजें अनिश्चितता की स्थिति लाती हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि जो हुआ यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है एक लो प्रेशर एरिया बना, उससे बहुत तेजी के साथ में बारिश हो गई। सेप्टेम्बर में मेरे ख्याल से पिछले 25 साल में पहला या दूसरा एक ऐसा टाइम था कल रात को उत्तरी भारत के अंदर जो सबसे ठंडा दिन था, वरना के ना तो पश्चिमी विक्षोभ ऑलमोस्ट

0: है, लेकिन क्लाइमेट चेंज बीच में जो अनिश्चितता का एक जो फैक्टर होता है उसने अपना रंग दिखाया है। तो ये एक नई सी चीज है, लेकिन इससे ज्यादा देर तक खुश होने की शायद संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये अभी बस सिर्फ एक जाते जाते एक मानसून अपनी दस्तक क्लाइमेट चेंज के चलते कुछ एक अलग सी अनहोनी सी करके जा रहा है। लेकिन जहां तक सवाल है, ये हार्डली मेरे ख्याल से 2-3 दिन का सवाल है, उसके बाद में जो मौसम दस्तक लेगा तो उसमें ऐसा लगेगा कि मानसून रिट्रीट हो रहा है, पश्चिम विक्षोभ एकदम से कम आ गए हैं और सर्दी मेरे ख्याल से काफी डिले होगी। ये एक लॉन्ग टर्म का अनुमान
1: ठीक
0: है, लेकिन
1: ठीक
0: सडनली जो बना।
1: बिल्कुल लॉन्ग टर्म में सर्दी आपने कहा कि डिले होगी। चलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे। आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में भी इस वक्त डॉक्टर सुभाष शर्मा मौजूद हैं। सर, बर्फबारी, बारिश, अनिश्चितता का तो माहौल है ही। ये तो हम देख रहे हैं, अलनीनो की वजह से बारिश कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा कम हो रही है, ये हमने तस्वीरें देखी। लेकिन इसका असर और कहाँ कहाँ, किन किन क्षेत्रों में हो सकता है
2: इसका
1: आने
2: असर
1: वाले समय की अगर बात की
2: जी
1: जाए?
2: जी जी कई क्षेत्रों में हो सकता है। देखिए, इस बार तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है जहाँ पहले सूखा पड़ता था, जैसे कि महोबा, हमीरपुर और इधर आपका सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बहराइच, बलरामपुर, इस सब में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। तो दोनों चीज़ें हुई हैं, तीव्रता हुई है, बारिश की तीव्रता बढ़ी है और ड्यूरेशन लगातार 4 दिन लगातार बारिश हुई और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ी है। यूपी में जो औसतन 7 डिग्री सेल्सियस बारिश होती थी, अब वो 6-6 mm बारिश हुई है, तो ये कई गुना बढ़ गई बारिश हमारी। और दूसरी ओर ये देखें तो महाराष्ट्र, जो कि हमारा कम बारिश वाला इलाका है, उसमें 265 तहसीलें हैं, वहाँ तालुका कहते हैं, 265 तालुका हैं 358 में से, जहाँ की सूखा पड़ा हुआ है। सूखा पड़ा है यानी कि 75% से कम बारिश हुई है। तो दोनों विरोधाभासी स्थितियाँ हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह में, दिल्ली में ये सब काफ़ी बारिश हो रही है, उत्तराखंड में, और उधर महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है, और उसका खास करके विदर्भ है, मराठवाड़ा है, उत्तर महाराष्ट्र है, इन सब में इतनी ज़्यादा सूखा की स्थिति पैदा हो गई है कि किसान हतवा मचाए हुए हैं। तो इसका असर तो निश्चित रूप से जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन, इसका असर हो रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं तीव्रता बढ़ रही है, कहीं ड्यूरेशन बढ़ रहा है। तो ये तो पूरे देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा है और ये जो अनिश्चितता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि अभी जो दिल्ली और NCR में काफ़ी गर्मी थी, उमस थी, उससे राहत मिली लोगों को। अभी 18 साल का रिकॉर्ड टूटा है यहाँ दिल्ली NCR में, जो 2008 में 20.8 डिग्री न्यूनतम तापमान था सितंबर में, इस बार वो 21 डिग्री है। तो ये 18 साल का रिकॉर्ड सितंबर का टूटा हुआ इस बार है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से ऊपर हुआ है। तो अंतर तो काफ़ी हुआ है, ये आपका दिल्ली NCR हो या उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तरी इलाका हो या उत्तराखंड का इलाका हो, वहाँ तो बारिश काफ़ी हो रही है। और ये अनिश्चितता अभी क्लियर नहीं हो पाएगा कहाँ कहाँ होगा। जैसे उन्होंने कहा कि लो प्रेशर वेस्ट बंगाल में है और पश्चिमी विक्षोभ भी है, तो
1: जी
2: कई चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो वो अनिश्चितता और बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल, और ऊपर से हम सुपर अलनीनो के साथ
2: सुपर
1: में भी
2: एलिनो
1: हैं।
2: जी
1: बिल्कुल, एक बार गुरुदत्त जी आपके पास आऊंगी। 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान सितंबर महीने में रिकॉर्ड किया है, और जैसे अभी डॉक्टर शर्मा बता भी रहे थे कि ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। 2008 में इस तरह की स्थिति बनी थी। सर, ये जो तापमान में गिरावट है, ये कितने दिन तक रह सकती है? हालांकि अभी डॉक्टर गुफरान ये भी बता रहे थे कि सर्दियां डिले होंगी। अगर सर्दियां डिले होंगी तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि क्या वापस से टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है?
3: देखिए, 30 तारीख से दिल्ली, जो उत्तर भारत, दिल्ली में एकदम बादल हट जाएंगे, छट जाएंगे पूरे, तो तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी चालू हो जाएगी। ये चूंकि यहाँ पे वर्षा की स्थिति थी, ऊपर से WDT थी, ठंडी हवाएं आ रही थी और यहाँ से नमी जा रही थी, तो दिल्ली का जो एरिया है आप देखिए सघन है, खासकर वृक्षारोपण भी काफी मात्रा में है, तो जो नमी जमा हो जाती है और दिन में हीट बढ़ने के कारण से कन्वर्ट

0: वो तापमान में गिरावट आई और ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, करीब ये 30 तारीख से तापमान में बढ़ोतरी चालू हो जाएगी और पूरा 1 अक्टूबर से एकदम साफ हो जाएगा मानसून उत्तर भारत में धीरे धीरे। सिर्फ उत्तरांचल जो है ऊपर उत्तराखंड है वहां पे बादल बने रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मानसून की पूरी तरह से विदाई उत्तर भारत में हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक छुटपुट कुछ ना कुछ वर्षा, छोटे छोटे सिस्टम, कई बार लोकल स्तर पर नमी रहती है और तापमान बढ़ता है तो शाम को उसमें शहरों में रेन हो जाती है, तो ये स्थिति अभी 15 अक्टूबर तक मिलने वाली है। लेकिन बहुत तेजी से मानसून की विदाई 1-2 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी और साफ हो जाएगा, लेकिन तापमान में गिरावट अब आने की कोई फिलहाल संभावना नहीं है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है उत्तर भारत वहाँ उत्तराखंड वगैरह ऊपर जा रही, तो उसका थोड़ा सा हवाओं का असर है। लेकिन जब ये राजस्थान से नॉर्थ वेस्ट से जब हवाएं आती हैं सूखी, तो उस समय तापमान में उतनी गिरावट नहीं कर पाती, खासकर अक्टूबर में। लेकिन धीरे धीरे ठंड का प्रचलन बढ़ेगा, अक्टूबर के एंड से तापमान में गिरावट आएगी और जनवरी फरवरी तक मिलेगी। लेकिन अलीनो की अनिश्चितता ऐसी है कि हम कुछ भी भविष्यवाणी कर दें कि नहीं इस साल ऐसा होगा, बहुत कठिन है, क्योंकि मिला जुला असर रहेगा, पूरा वातावरण एकदम वो है जिसको हम अपने शब्दों में बयान करना कि कहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ वर्षा हो जाएगी। अब ये जो सिस्टम जो आया देखिए, इसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं कि दिल्ली साइड यहाँ पे रेन देगा, लेकिन ये रेन मिली हुई है, तो अलीनों के लिए इंतजार करना होगा और थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा कि पानी का कम दुरुपयोग करें, जितना पानी है बिजली का कम दुरुपयोग करें, बचाए बिजली को, कि कैसे होगा आगे का, फसलें कैसी होंगी।
1: उस पर डॉक्टर शर्मा से चर्चा करूंगी, क्योंकि किसानों पर कितना ज्यादा इसका असर, अनप्रेडिक्टेबल मौसम है इसलिए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुफरान आपके पास आऊंगी, अब सवाल थोड़ा बदल देते हैं। अब ये इस तरीके से आपने कहा कि सर्दियां जो हैं वो डिले होंगी, सर तापमान 1 तारीख से बिल्कुल वैसा हो जाएगा, क्या अक्टूबर का मिजाज अक्टूबर की तरह रहेगा? क्योंकि सितंबर में तो हमने देखा सितंबर ऐसी नहीं रहती है अमूमन, सितंबर में इतनी ठंड का एहसास कभी नहीं हुआ। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 2008 में ऐसा हुआ था, उसके बाद अब हुआ है, क्या अक्टूबर का जो मिजाज है मौसम का वो वैसा रहेगा? अगर वैसा रहता है, क्योंकि अभी आज ही दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये नोटिस आया है कि 1 नवंबर से पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर उन्होंने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, तैयारियां की जा रही हैं, और हमारा आप सभी जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर किस तरीके से गैस चैम्बर बन जाता है दिवाली के आसपास, अक्टूबर एंड में या नवंबर में।
2: देखिए, जहां तक दो चीजें हैं जो कि मतलब एकदम थोड़ी सी विरोधाभास ली हुई है, लेकिन दोनों में कौन सी ज्यादा शक्ति पकड़ेगी उसके हिसाब से आने वाले वायु प्रदूषण का अक्टूबर के अंदर मिजाज रहेगा। पहली चीज तो यह है कि लंबे समय के अनुमान के, ये तो एक छोटा सा एक फ्लक्चुएशन था जो कि अभी आप देख रही हैं, लेकिन जैसे बताया शर्मा जी ने पहले कि अक्टूबर में जाके नॉर्मल एकदम से बादल छट जाएंगे, सूरज आना शुरू हो जाएगा और मौसम पूरी तरह से जो संभावना है वो है थोड़ा गर्म रहेगा और सर्दी का इतना एहसास कम से कम 15-20 अक्टूबर तक तो नहीं हो रहा है। लेकिन जो दूसरी विरोधाभास ली हुई चीज है वो ये है कि मानसून जो रिट्रीट होता है, अगर वो लेट रिट्रीट होता है जबकि आप ऑलरेडी सर्दी के अंदर चले गए हैं, तो जब रिट्रीट के बाद में वो जो विंड स्पीड रहती है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने की वजह से बीनीथ विंड स्पीड वो बहुत कम कर देता है। अगर विंड स्पीड मानसून लेट रिट्रीट हुआ, ठंडे के समय थोड़ी सी टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ और अगर विंड स्पीड यानी कि हवा की गति धीमी हो गई तो जो डिस्पर्सन है वो कम हो जाएगा। और जैसा अभी मैंने अभी रिसेंटली पंजाब अमृतसर के उस तरफ मैंने दौरा किया और उससे मालूम पड़ा है कि धान की फसल तो लोगों ने बहुत बोई है और कई जगह जो है ना धान की फसल बल्कि वो रिट्रीट भी करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, यानी कि हार्वेस्टिंग भी करना शुरू किया है। तो अगर हार्वेस्टिंग शुरू हो गई और वो मानसून विड्रॉल जो कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होने के वजह से हल्की हवाएं हो गई, तो फिर प्रदूषण एकदम से पलटी मारेगा और मेरे ख्याल से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा 15 अक्टूबर के आसपास।
1: इसी को देखते हुए शायद तैयारियां अभी से की जा रही है। डॉक्टर सुभाष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये सारी चीजें जब हम हैं ही इस वक्त सुपर अलनीनो के साल में, तो अनप्रेडिक्टेबल इतनी ज्यादा चीजें हैं कि इसका असर सीधा सीधा खेती किसानी पर पड़ ही रहा है।
3: देखिए, वास्तव में जो इस बार मानसून देर से आया तो खास करके यूपी बिहार में लोगों ने धान देर से लगाया और अभी जैसा इन्होंने बताया कि पंजाब में हार्वेस्टिंग शुरू हुई है, लेकिन यूपी बिहार में अभी धान फूट रहे हैं, अभी वो पके नहीं हैं, और अभी जो लगातार 3-4 दिन बारिश हुई उसकी वजह से धान के पौधे गिर गए हैं। अब धान पौधे गिर गए तो उसका मतलब है कि नुकसान, उसका मतलब है कि उपज कम होगी और उसमें कुछ सूख जाएंगे। तो ये जो अनिश्चित मौसम होता है उससे निश्चित रूप से किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और ये दुर्भाग्य है कि हम लोग इस पर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी खरीफ की फसलें होती हैं धान खास करके, हम वर्षा आधारित हैं, हमारी करीब 50-55% वर्षा पर आधारित खेती होती है, तो जाहिर है कि उसकी वजह से हमको जब ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान होता है, कम बारिश होती है तो भी नुकसान होता है।
1: इसका इसका सर अगर आप असर बता पाए कहाँ कहाँ पर हो रहा है, अगर हम खेती किसानी की बात करें तो?
3: हमें बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बिहार में अभी धान फूट रहा है, अभी वो हार्वेस्टिंग नहीं है, जैसे कि डॉक्टर बेग ने बताया कि पंजाब में हार्वेस्टिंग शुरू हुई है, लेकिन चूंकि देर से बुआई हुई और वो फसल धान की इस इलाके में वास्तव में अक्टूबर में कटती है और नवंबर में जा करके वो रबी की फसल बोई जाती है, तो अभी जब फसल कटी ही नहीं है, खेत में है, और खेत में जब पानी हो जाता, पानी ज़्यादा भर जाता है तो उसको सड़ने गलने का चांस बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से किसान का नुकसान हो रहा है। और ये पता भी नहीं अभी, हालांकि आज धूप निकली है उत्तर प्रदेश में, उधर बिहार में आज अच्छी धूप निकली है, लेकिन अब फिर कब बारिश हो जाएगी कुछ कह नहीं सकते।
1: पहाड़ों पर भी आज थोड़ा मौसम ठीक है, इसलिए वापस यात्रा की शुरुआत की।
3: और उत्तर प्रदेश में तो हालत है कि वो लगातार बारिश होने से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 81 लोग मर गए और करीब 2000 घर जो है वो नष्ट हो गए। ये सरकारी आंकड़े हैं और वास्तविक आंकड़े निश्चित रूप से ज्यादा होंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से ज्यादा जल्दी रिपोर्टिंग हो नहीं पाती है। तो दुर्भाग्य है कि जो कच्चे मकान वो गिर रहे हैं और लोग उसमें मर भी रहे हैं, कि रात में सो रहे हैं और मकान गिर गया उसी में दब के मर भी गए, तो नुकसान तो हर तरफ से, पेड़ गिर जा रहे हैं, रास्ता बंद हो जा रहा है, जाम हो जा रहा है। लखनऊ में तो यह हालत हो गई कि सड़कों में पानी इतना भरा हुआ था कि लोगों ने उसको, जो अपने घर में थे वहीं पड़े रहे, जो रास्ते में थे वहीं कई घंटे तक पड़े रहे।
1: और सितंबर में ऐसी स्थिति अमूमन देखी नहीं जाती
3: जी, कभी भी। और वो सरकार ने वहां पर स्कूल बंद कर दिया लखनऊ में, तो ये हालत थोड़ा ज्यादा ही, सो कहते हैं कि अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। और लेकिन
1: आपने यहाँ पर जिक्र महाराष्ट्र का भी किया था
3: जी,
1: और इस बार अभी देखिए शुक्रवार को ही गणपति विसर्जन भी था, और वहां पर महाराष्ट्र में खास तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने बैठक की जिसमें वो तमाम इलाके जहां बारिश कम थी, जो जहां पर सूखा है विदर्भ का वो पूरा इलाका, वहां पर लोगों को ये भी कहा गया कि आप इस बार विसर्जन नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश ही नहीं हुई है, वहां पर इतने जलाशय भरे ही नहीं हुए हैं।
3: ये देखिए कि 365 तालुका में से 358 तालुका में से 265 तालुका में सूखा पड़ा हुआ है, यानी वहां 75% से कम बारिश हुई है, और इसकी वजह से लोग, किसान खास करके, बहुत ही परेशान हैं, और
1: जी
3: जो खेती किसानी है उनकी सब नष्ट हो गई है। आपने तो विसर्जन की बात कही, लेकिन मुख्य तो जीविका है, भोजन की समस्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए डॉक्टर शर्मा यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इसका उपाय क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये इसी को लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गया मानसून गर्म और ठंड का वेलकम। क्या वाकई ठंड का वेलकम है या फिर ये फौरी राहत है, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर गुरुदत्त, आपके पास आना चाहूंगी। हम ब्रेक पर जाने से पहले खास तौर पर महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, उत्तर भारत के तमाम इलाकों का जिक्र हमने कर लिया। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में वहां के लिए क्या प्रेडिक्शन है?
1: देखिए, ये मानसून की वापसी शुरू हो गई है। राजस्थान का पश्चिमी इलाका आप देख रहे हैं पूरी तरह, खासकर हरियाणा, गुजरात, ये सब तो मुंबई में भी मानसून निकल जाएगा, क्योंकि अक्टूबर जो है संक्रमण काल का महीना कहलाते हैं, अक्टूबर और मार्च, तो इस समय मिला जुला मौसम होता है। लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो या राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान का इलाका हो, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र हो, यहाँ पे बहुत अच्छी वर्षा की स्थिति नहीं है। और मध्य प्रदेश में मैं तो बताऊँ 12 जिले करीब है जो कि सामान्य से कम वर्षा है। किसानों से हमारी जो बात हो रही है, वहाँ लोग पानी लगा रहे हैं, मिल की स्टेज पर है जो इनकी धान है, जहाँ पे जिनका जो लेट धान बोई गई है बहुत लेट होना है। इसी प्रकार रबी की फसल की भी स्थिति आना है। तो महाराष्ट्र में भी कुछ जिले बहुत अच्छे हैं वर्षा के, और जिन जिलों में वर्षा नहीं हुई है, जलाशयों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और अभी आने वाले दिनों में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि क्योंकि अब जो मानसून अक्टूबर के बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून साउथ में आएगा, खासकर तमिलनाडु वगैरह, अब जो वर्षा का कार्य साउथ में होने वाला है, इस पूरे बाकी इंडिया के शेष भाग में बहुत स्थिति बहुत अच्छी मानसून की नहीं होगी, और जो डब्ल्यू डी वगैरह है ये कम हो जाएंगे, तो धन भी जो है इनकम कम हो जाएगी।
0: डॉक्टर गुफरान, आपके पास आना चाहूंगी। अब स्थितियां ऐसी हैं, यानी हमें पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा सुपर अलिनो के लिए। सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, क्योंकि असर तो देखिए हर जगह पर हो ही रहा और आने वाले समय में होगा। अभी हमें 2027 तक इसके लिए तैयार भी रहना होगा।
2: देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो मौसमी आपदाएं आ रही हैं, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि वो तो फिर आप लॉन्ग टर्म आप डिकेडल और चेंज करिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करिए, क्लाइमेट चेंज कम होगा, उसके बाद में बाकी चीजें अपने लाइन पे आ जाएंगी, वो अलग चीज है कहानी। लेकिन वो तो हम अपने की बचाव करने के लिए बस यही है कि अडॉप्शन एक चीजें होती हैं जिसको कि हम कर सकते हैं, और जो भी कुछ हमारे बस में है उसको हम उसके अंदर कार्यवाही कर सकते हैं। जहां तक एयर क्वालिटी का सवाल है, उसमें तो ये है कि हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अभी जैसा अभी मैंने बताया कि मैं असर के माध्यम से कहीं पर गया हुआ था अमृतसर, वहां पे देखा, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पराली जो है सुबह 10 से लेकर 12 बजे के बीच में जलती थी, वो शिफ्ट हो गई है 4-5 बजे के आसपास, 4 बजे से 7 बजे के बीच में चलती है, जबकि सैटेलाइट उसके ऊपर से नहीं आता है। तो हमारा जो काउंट आने वाला है वो तो कमी आने वाला है। लेकिन मैंने किसानों से भी बात करी, उनका बिल्कुल एकदम जायज है जो बताते हैं कि भाई हमारी तो रोटी रोजी और हमारी पूरी जीवनी का सवाल है अगर हमने ये काम नहीं किया, अनलेस हमारे पास में कोई एक बड़ा सॉल्यूशन है। ऊपर के फोर्डर का तो सॉल्यूशन आ गया, बीच का भी आ गया, लेकिन जो नीचे रह जाता है जिसको हम छूछ बोलते हैं, जो कि जमीन के अंदर रहता है, उसको जलाने के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा है, ये किसान लोगों ने उसमें बताया। तो ये चीज तो खत्म नहीं होने वाली है। तो अब उसके अंदर यही है कि हमारे जो प्रदूषण के स्रोत हैं, यानी कि जो हमारे लोकल स्रोत हैं, उनके अंदर जितना हो सके उसके अंदर कमी करें, यानी कि जब तक आपको जरूरी ना हो, जब तक आप अपना वाहन बाहर ना निकालें, अगर पेट्रोल और डीजल वाला हो तो उसके अंदर जितना भी कम से कम हो उसको बाहर ना लें। थोड़ा सा हमारे जो सरकार का दायित्व ये बनता है कि जो आधे से ज्यादा प्रदूषण ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है, वो होता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, सिग्नल मैनेजमेंट है, वो नहीं होता है। हमारे सड़कों में जितना अनुमान है उससे ज्यादा, यानी कि उससे डबल जो है वेहिकुलर पॉपुलेशन हो गई है, वो ध्यान रखें। और बाकी जो ओपन बर्निंग आजकल चल रही है, जो कि अभी ये जो सोया चाप, पहले तो नॉन वेज की चाप हुआ करती थी, अभी वेजिटेरियन की चापें होने लगी हैं, उससे बहुत ज्यादा जो ओपन ढाबे हैं स्पेशली दिल्ली के अंदर के उस एरिया में देखे गए हैं कि ओपन वो अपना चारकोल जलाते हैं सर्दियों में, शाम को 4-5 बजे के आसपास शुरू होता है, तो उसी टाइम स्टेग्नेशन की कंडीशंस होती है, पोल्यूशन बिल्डअप होता है, रात भर रहता है, सुबह के अंदर कंटिन्यू रहता है, टेम्परेचर घटता है और वो एक्युमुलेट होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमें अपने को एक अलग से एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ेगी इन सब के अंदर। अनुमान लगा जो हमारा है, तो हमारे हाथ में जो चीज है उसके अंदर हम अपना जितना सहयोग कर सकें करें, और नेचुरल जो आपदाएं हैं वो तो अभी एडॉप्शन ही उसका एक सहारा लगता है और लंबा समय का उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचें।
0: बिल्कुल, उसको लेकर भी प्लानिंग सरकार की तरफ से होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल दिल्ली की ही बात कर लेते हैं, उसमें जैसा सर आपने जिक्र किया है उसमें अभी जो जिसको लेकर विचार हो रहा है कि 1 नवंबर से ऑड इवन पर भी विचार किया जा रहा है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम भी शुरू किया जाएगा जरूरत के हिसाब से, जो स्थिति वैसे बनेगी। डॉक्टर शर्मा आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए दो चीजें हैं, पहली बात तो है कि किसान इसलिए भी परेशान है, फसल सही तरीके से हो नहीं रही है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल मौसम है, खुद ही किसान इस बात को लेकर परेशान है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम स्पेशली दिल्ली एनसीआर की बात करें, डॉक्टर गुफरान की बात से आगे मैं चाहूंगी, सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? तो हर साल ऐसा ही होता है, अब सरकार ने नई गाइडलाइंस और 2 दिन में जारी हुई जाएंगी।
3: मैं माइक्रो लेवल पर यानी बृहत स्तर पर थोड़ा बात करना चाहता हूं, डॉक्टर बेग ने माइक्रो लेवल पर बात की है। देखिए हमारे यहाँ जो पश्चिमी घाट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेंसिटिव इको जोन रहा है और माधव गाडगिल ने 2011 में रिपोर्ट दी थी कि 1,29,000 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र है और उसमें 3 भागों में उन्होंने बांटा था और सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था इको सेंसिटिव जोन 1 और वो 60,000 वर्ग किलोमीटर उन्होंने माना था। लेकिन जो पश्चिमी घाट है ये 6 राज्यों में है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु। तो इन 6 राज्यों के सरकारों ने कहा कि नहीं इतनी क्षेत्र में हम लोग अगर इको सेंसिटिव कर देंगे तो बहुत नुकसान होगा हमारी बस्तियों को, हमारे खेतों को, ये सब हमारा क्षेत्र कम हो जाएगा। तो बाद में कस्तूरी रंगन कमेटी ने उसको घटा के 56,000 समथिंग कर दिया और उसमें से जो मानव बस्ती का इलाका था और खेती का इलाका था उसको हटा दिया। अब और उसको घटाया जा रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि महाराष्ट्र जो वही पश्चिमी घाट का इलाका है वहाँ आप देखेंगे कितनी ज़्यादा वहाँ सूखे की समस्या हो गई है और पेड़ों की कटाई खूब हो रही है, माइनिंग खूब हो रही है और माइनिंग होने से आप जानते हैं इको सेंसिटिव जोन में बहुत सारी हमारी वनस्पतियाँ हैं नहीं उगती हैं, बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं, तो इसका नतीजा निगेटिव हो रहा है। दूसरी तरफ हमारा जो दिल्ली एनसीआर में समस्या होती है वो पराली जलाने से होती है, जो धान के डंठल हैं उसको जलाते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मैं पंजाब गया था तो वहाँ के किसानों ने कहा कि हम लोग नहीं जलाते हैं, हरियाणा वाले जलाते हैं। हरियाणा में गया तो वहाँ कहे कि नहीं हम लोग तो नहीं जलाते हैं, पंजाब वाले जलाते हैं, लेकिन दोनों जलाते हैं। अब उसका असर आता है दिल्ली पर, सबसे ज़्यादा पड़ता है और ये निश्चित रूप से नवंबर का महीना गैस समर बनता है क्योंकि अक्टूबर में फसल कटती है धान की और उसके बाद उसके डंठल को उसी में खेत में छोड़ देते हैं, फिर जला देते हैं, सोचते हैं कि इसमें लेबर लगेगा। सरकार इसमें कुछ कार्रवाई कर रही है,
0: नहीं बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है पिछले कुछ दिनों के बाद,
3: पंजाब हरियाणा
0: और इसमें एक चीज एड ऑन कर देती हूं, अभी डॉक्टर गुफरान ने बड़ी अच्छी बात ये भी बताई थी कि वहां अभी से क्योंकि हार्वेस्टिंग शुरू हो गई तो हम लोग प्रिपेयर हो जाए इससे कि 15 अक्टूबर से स्थिति वैसी बन सकती है।
3: जी तो सरकार ने इसमें कुछ मदद की है लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने की समस्या है।
0: सर इन योजनाओं की ग्राउंड रियलिटी क्या, अगर आप हमें बताएं?
3: ग्राउंड रियलिटी है कि थोड़ा तो है कंट्रोल लेकिन अधिकतम वायलेशन ही है। आप समझिए कि 3/4 मेहन पालन नहीं हो रहा, 1/4 मेहन पालन हो रहा है। तो कुछ कुछ इलाके में जहां जाकर के सरकारी कर्मचारी वहां देखते हैं, कुछ फाइन करते हैं, ये सब थोड़ा सा होता है लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने का काम है और जब तक चेतना लोगों में नहीं होगी और लोगों को ये डर नहीं होगा कि बहुत हैवी फाइन होगी तब तक नहीं रुकने वाली।
0: दूसरी बात उसका विकल्प सर ये भी तो है ना कि किसान खुद ही कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन मांगते हैं।
3: हाँ, वो जो पराली है उसको प्रोसेसिंग कर करके खाद बन सकती है, बहुत सारे उससे कागज बन सकता है, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं प्रोसेसिंग से। अब वही है कि वो चाहते हैं खेत से हमको नहीं ले जाना पड़े, अब वहीं पर उसको जला देते हैं।
0: ठीक है, एक सेकंड मैं एक बार इस पर डॉक्टर गुफरान आपके पास आना चाहूंगी। सर ये जो तमाम सरकारी योजनाएं जिनकी चर्चा होती है स्टेट लेवल अपने लेवल पे कर रहा है, सरकारें अपने अपने स्तर पर कर रही, राज्य सरकारें, लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से अलग से पॉलिसीज लेकर आती, क्या इसका ग्राउंड पे कुछ असर देखने को मिलता है? क्योंकि हर साल दिल्ली की स्थिति वैसी रहती है।
2: देखिए मैं आपको बहुत सही सी बताऊं, और जो मेरे अंदर जो इन्फॉर्मेशन की कमी थी अभी के जो मैंने अमृतसर और बाकी के इलाकों में जो दौरा किया, किसानों से बातचीत सी, उससे मालूम पड़ा है। जब आप पराली की बात करते हैं तो इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है, यानी कि एक तो पहला वाला हिस्सा निकल गया जिसके अंदर इसकी आपकी धान काटने के बाद में जो ऊपर सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उसके बाद में एक होता है मिड स्टम और एक होता है लास्ट का बिल्कुल एकदम, जिसको जड़ बोलते हैं, जिसमें कि जो कि आधी जमीन में रहती है और आधी थोड़ी सी बाहर रहती है। जहां तक सरकारें बहुत काम कर रही हैं, सारी चीजें बहुत योजनाएं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं और किसान भी बहुत जागरूक है, उसको मालूम है कि हमारे साथ में, लेकिन उसके पास में विंडो सिर्फ 40 दिन की है और उसके अंदर भी ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो मतलब जून के बिना पहले हफ्ते आप सोइंग नहीं कर सकते और शाम को 8 बजे के बाद में आप काट नहीं सकते। तो ये सब चीजें बहुत पुरानी चली आ रही हैं, उसके अंदर वाली बात है। ग्राउंड रियलिटी तो ये वाली सिचुएशन है कि ऊपर के जो जो मैंने बताया टॉप और मिड का जो स्टम है, उसका सॉल्यूशन धीरे धीरे आ गया और करीब करीब मैं देख रहा हूं कि 70 से 80% के आसपास उसका सॉल्यूशन हमने आ गया, और यही कारण है कि थोड़ी सी जलना थोड़ा कम हुआ है, इंटेंसिटी कम हुई है। लेकिन जो आखिरी का जो पड़ता है, जो स्टबल बढ़ता है बचता है जो जमीन में रहता है आधा, उसका अभी तक किसानों के पास में कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता है। बीच में आईसीएआर जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बनाया था जिससे कि उसमें डाल के और उसमें डालेंगे तो वो अपने आप में एकदम से गल के वहीं हो जाता है, लेकिन किसानों से बात करने से मालूम पड़ा कि उनको ये बहुत कम्बरसम लगा है, करो पानी गर्म करो उसके बाद में वो करो, और इतना बड़ा विशालकाय जमीन है जिसके अंदर की हाथ से उसको छिड़कना एक बहुत बड़ा झंझटी काम होता है। तो या तो ड्रोन के साथ में उसकी वर्षा करो या कुछ करो, तो यानी कि वो प्रैक्टिकल उनको समझ में नहीं आया वाली चीज। तो जहां पे हम थे वहां का वहीं रहा, तो जो आखिरी चीज है वो तो किसान जला रहे हैं और जलाएंगे, क्योंकि उनका जैसे मैंने बताया उनका अपना पूरा अस्तित्व, उनका जो रोटी रोजी उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बात बहुत सामने आई कि अगर कुछ साकार सॉल्यूशन अगर आता है तो वो किसान बहुत रिसेप्टिव है उसके लिए और वो करने को तैयार है। तो ये जो आखिरी छूच यानी कि
0: जी
2: स्टबल जो रहा, उसका सॉल्यूशन का अभी कोई
0: समाधान निकलना
2: सामने
0: बाकी है। बिल्कुल
2: समाधान
0: डॉक्टर शर्मा,
2: नहीं
0: इस पे
2: आया।
0: कुछ कहना चाहेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इन्होंने
3: नहीं
0: कही
3: नहीं
0: है।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर बेग, सही कह रहे हैं।
0: हाँ
3: लेकिन ये जो कह रहे हैं कि बीच का हिस्सा वो किसान उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कहीं कहीं वो भी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि जब जलता है ज़्यादा बड़ा हिस्सा वही होता है, बीच वाला जो हिस्सा होता है, जड़ का तो छोटा हिस्सा होता है, और जब दोनों जलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वायुमंडल में हमारा जाता है धुआं और उसके जो कण होते हैं, और वो आकर के हमारी हवा में दिल्ली में एनसीआर में सब जगह आता है, और वहाँ पंजाब में भी जाता है, हरियाणा में भी जाता है, वेस्टर्न यूपी में सब जगह जाता है, क्योंकि वायुमंडल तो ऐसी चीज़ है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, वो सब जगह जाएगा ही, और उसका नुकसान जो है हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और सांस की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, हार्ट की बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। सब डॉक्टर चाहे एम्स के हों चाहे और प्राइवेट कॉलेजों को, मेडिकल कॉलेज के हों, सब बताते हैं कि इसकी वजह से हमारे बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं।
0: पोल्यूशन क्योंकि और ज्यादा
3: जी
0: बढ़ गया ना,
3: जी
0: इसीलिए, और इसीलिए यहाँ पर अब चर्चा हो रही है कि फिलहाल अभी से ही योजनाएं बनाई जाए ताकि दिल्ली एनसीआर को पोल्यूशन मुक्त किया जा सके आने वाले दिनों में। एक बार डॉक्टर गुरुदत्त, अब आपके पास आना चाहूंगी। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें सर, पहला सवाल तो सीधा ये, क्या विंटर सीजन डिले होगा और इस बार सर्दियां कैसी रह सकती हैं?
1: देखिए, एक मोटी बात यह है कि 15 अक्टूबर के बाद खासकर बिल्ड जो स्पीड हो, अभी तो क्योंकि सिस्टम में नमी है, WDB है अभी, तो इस कारण से हवाएं चलती है तो ये पोल्यूशन नहीं हो पाता, लेकिन जब 15 अक्टूबर के बाद काम बिल्ड होगी, उसकी रफ्तार 1 या 2 किलोमीटर होगी, तो ये इसका असर चाहे मकान बन रहे हो, बिल्डिंग बन रही हो, एयर पोल्यूशन या पराली जल रही, तो इस कारण से आगे तकलीफ होती है। तो बिल्ड की रफ्तार खासकर नवंबर में ये धीमी हो जाती है, इस कारण से भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इस साल अगर अलीनो का साल है तो जैसा WMO की गाइडलाइन, उनका कहना है कि तापमान इस समय सामान्य से ज्यादा होगा और ये करीब फरवरी तक असर रहेगा, बहुत ज्यादा तापमान में गिरावट की संभावना इस वर्ष हमको दिखाई नहीं दे रही है इस पर WMO की गाइडलाइन, क्योंकि 2.5 सुपर टेम्परेचर हो गया प्रशांत महासागर का, तो अलीनो अपना इफेक्ट दिखाएगा और धीरे धीरे अगर ये खासकर नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ के करीब फरवरी और मार्च तक जाएगा तो प्रोडक्शन के हिसाब से तो तापमान बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, सामान्य से ऊपर रहेगा। रेल की भी संभावना बहुत कम होगी, छोटपुट अगर WD आ गए पहाड़ में बर्फबारी हो गई तो वो जो रेल मिलेगी तापमान गिरावट रहेगा, बाकी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा अगर WD का प्रभाव होगा तो तापमान गिरावट नहीं आएगी, गर्म रहेगा।
0: मुझे याद है डॉक्टर गुरुदत्त, पिछले साल दिसंबर जनवरी तक WD नहीं आया था और हम ही लोगों ने बैठ के चर्चा की थी कि ये पिछला साल ऐसा रहा था जहां पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं था और वो आया था आपका फरवरी में जाके जब हम चर्चा कर रहे थे।
1: जी जी,
2: और फरवरी में हुआ था।
0: हाँ जी डॉक्टर बेग,
2: हाँ ये जब हुआ था जबकि एल नीनो का इतना असर था नहीं, एल नीनो तो बहुत उसके बाद आया है। अभी एल नीनो जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से पूरी तरह से कनेक्टेड है, यानी कि उसको दबाता है, वो सप्रेस करता है,
0: यानी इसका सीधा। हाँ जी डॉक्टर गुरुदत्त,
1: लीनो क्या होता है कि अगर स्ट्रांग आया लीनो, सॉरी WD अगर स्ट्रांग आएंगे तो पूरे उत्तर भारत में बर्फबारी भी होगी, वर्षा भी होगी और ये सेंट्रल इंडिया तक पहुंच जाती है। और पिछले साल ये देखे जाएंगे जितने भी लीनो ज्यादा WD ज्यादा तो आए लेकिन वो बहुत ऊपर थे, बहुत वीक थे, इसलिए बराबर WD वर्षा नहीं कर पाए। और चूंकि अभी एलिनो का साल है तो WD स्ट्रांग आने की संभावना है बहुत कम है, कमजोर WD आएंगे जिससे बहुत ज्यादा हमको फायदा होने की संभावना है नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए जिसके पास जितना जल है चाहे जलाशय में हो, घर में हो, बोर में हो, उसको और सुरक्षा जरूर रखे कि आगे हम किसी तरह से 6-8 महीने हम किसी तरह से निकाल लें।
0: ठीक है, सुपर एलिनो का समय निकाल लिया जाए। तमाम खास मेहमान आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल फौरी राहत इसको कहा जा सकता है लेकिन 15 अक्टूबर के बाद जैसे हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि वापस से तापमान एक बार फिर से इंक्रीज होगा और इस बार क्योंकि सुपर एल नीनो में हम लोग रह रहे हैं असर इसका आने वाले सीजन यानी कि सर्दियों पर भी पड़ेगा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देख रहे गुड न्यूज टुडे।
4: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: बात पितृपक्ष की करते हैं। सनातनी परंपरा में मान्यता यह है कि मनुष्य की सांसों में जिनका अंश है, उसके संस्कारों में जिनकी छाप होती है और उसके जीवन की नींव में जिनका योगदान होता है, पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध उन्हीं पूर्वजों की याद में करने का अवसर है। इनमें परिवारजन अपने पुरखों की मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता कहती है कि जब राम 14 वर्ष के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ के लिए सबसे पहला पिंडदान प्रयागराज के संगम तट पर किया था, और तभी से पिंडदान परंपरा का पहले प्रयागराज और फिर काशी और आखिर में गया जी में कराने की परंपरा है।

0: सनातन परंपरा में 15 दिन का पितृपक्ष वो पावन समय है जब हम अपनी जड़ों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति आभार जताते हुए उस अदृश्य रिश्ते को नमन करते हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्माओं को जोड़कर रखता है। यही कारण है कि इन दिनों हर पावन नदी घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, खासकर मोक्ष भूमि पर तो पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान की प्राचीन परंपरा को निभा रही है। तर्पण और पिंडदान की तस्वीरें दर्शा रही हैं कि समय भले ही पीढ़ियों को आगे बढ़ा दे, लेकिन अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता कभी पुरानी नहीं होती। काशी के पिशाच मोचन कुंड पर भी पितृपक्ष के दौरान खूब चहल पहल है।
1: पितरों का यही मानना है, हम लोगों का पूर्वज बताए हैं या गुरु पुरोहित बता रहे हैं कि अपने माता पिता का पितृदान करने से उनकी मुक्ति होती है, वैकुंठ धाम को प्रवेश कर जाते हैं, 84 लाख जोनी से भटकने से बच जाते हैं। यही मान्यता हम लोगों को बताया गया, इसी के आधार पर हम लोग ये सब पूजा पाठ करने आए हैं।
0: पितृपक्ष में जब हम श्रद्धा के साथ अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं रह जाता, बल्कि पूर्वजों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने के साथ ही आभार और अपनी मूल से जुड़ने की एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है।
2: बहुत दूर देश के विदेश के भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि काशी बहुत लाखों की भीड़ होती है जी।
0: अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता को प्रयागराज के संगम तट पर इकट्ठा हुए ये लोग बड़े ही आस्था के साथ निभा रहे हैं।
3: यहाँ पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं या उनकी जो पुण्य आत्माएं हैं वो तृप्त हो जाए।
4: मतलब जिस तरीके से मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु, किसी तरीके से वो सभी जो है करें और उनके अच्छे नेक कामों के लिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके काम करके और उनका जीवन सफल बनाएं और उनका आशीर्वाद मिले, जो भविष्य में भी हमको अगले जन्म में भी अगर मिले तो माता पिता ऐसे ही मिले।
0: प्रयागराज में पितृकर्म की ये परंपरा आज भी यहाँ का पंडित और महंत समाज जीवित रखे हुए है।
5: इस 15 दिवसीय पितृपक्ष में पितरों का आगमन होता है और वो आते हैं, देखते हैं हम सभी को कि हम सभी ने अपने दायित्वों को किस प्रकार निभाया है, उनके दिए हुए सम्मान, उनके दिया हुआ नाम आज हम सब लेकर जी रहे हैं। तो इस 15 दिन आप सभी अपने पितरों को याद करें।
0: जाहिर है इंसान का जीवन केवल उसके कर्मों की कहानी भर नहीं है, बल्कि उन पीढ़ियों की विरासत भी है जो हमसे पहले इस धरती पर आई, और पितृपक्ष सदियों से उसी विरासत को नमन करने का अवसर रहा है। तभी तो गया जी के देवघाट पर पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मौसमी अड़चन भी श्रद्धालुओं की आस्था के आड़े नहीं आई।
6: अब तो वो तो करना ही होगा, बारिश हो क्या आंधी हो की तूफान हो तो करना ही होगा, माँ बाबू जी के लिए तो उतना करेंगे।
7: बारिश में भी पिंडदान कर रहा है,
8: महा आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, लग रहा है जैसे वो साथ है हमारे।
7: बारिश
8: तो आनंद ही दे रहा है,
9: बहुत अच्छा है ये तो, और देवताओं की आशीर्वाद है जो अमृत तुल्य हमारे ऊपर बरस रहा है।
0: धौलपुर का मचकुंड सरोवर भी पितृपक्ष की उपयोगिता, उसके पारंपरिक और आध्यात्मिक महत्व को इन दिनों दर्शा रहा है। परंपरा और अध्यात्म से जुड़ी श्राद्ध की ये तमाम तस्वीरें कुछ ऐसे ही कभी प्रयागराज, कभी काशी, तो कभी धौलपुर और गया जैसी पावन भूमि को परंपराओं के जल से सींचती आ रही हैं। राजस्थान के धौलपुर से उमेश मिश्रा, गया से पंकज कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: देखिए सुहावने वीकेंड के बाद अब अच्छे मौसम के साथ इस हफ्ते की शुरुआत भी हुई है, मतलब आज नो मंडे ब्लूज।
3: सैटरडे से ही चल रहा है कि मंडे ब्लूज होंगे ही, है ना। कितना अच्छा मौसम था, कैसा रहा एक्सपीरियंस?
4: सैटरडे से ही चल रहा है कि मंडे को ऑफिस नहीं जाना है, लेकिन आना
3: हमें पता था कि मंडे को नीले नीले बादल रहेंगे आसमान में, तो नीचे कोई ब्लूज नहीं होगा, ऊपर ब्लू ऊपर चलेगा।
2: मौसम की बात आज करेंगे, जो आजकल खुद में एक पहेली बना हुआ है, मैदानों पर जमकर बारिश हो रही है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, तो क्यों बदला है मौसम का मिजाज, आगे बात करेंगे।
3: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए आज आपको हम छत्तीसगढ़ भी लिए चलेंगे, जहां पर लगातार बारिश के बाद कई गांव पानी में डूब गए हैं। मदद के लिए वहां सेना पहुंची है, तो कैसे गांव से वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने लोगों को एयरलिफ्ट किया है, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।
2: नमस्कार, मैं आशा गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात विसर्जन के उस विधान की भी करेंगे जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। अकोला और विशाखापट्टनम में बप्पा कुई को फ्रेंडली तरीके से विदाई दी गई, इसकी तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे।
5: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आज आपको ओडिशा भी लिए चलेंगे, जहां झुंड से भटके हाथियों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, तो क्यों हो रही है सेंटर की चर्चा ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम, वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर, विद्या रामराज और पिंकी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी, मदुरई में सीएम विजय ने शुरू की योजना, केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात को मिलेगा लाभ। पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: चलिए सबसे पहले चाय पर चर्चा में बात मौसम की ही, जैसा कि शुरुआत ही हमने इस बात से की थी, मौसम लगातार बदल रहा है, मैदान में मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है, कहीं आसमान पर बादलों का डेरा है तो कहीं अचानक धूप निकल रही है, कहीं हल्की रिमझिम बारिश हो रही है तो कहीं बारिश के तेज दौर देखने को मिल रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में आज सुबह कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है, तो दोपहर में मौसम का तेवर बदला हुआ था। वैसे आपको बता दें आज जो हल्की सी धूप निकली ना, अच्छा लगा या नहीं लगा?
2: हाँ, क्योंकि उसमें ठंडक थी, उसमें वो गर्मी नहीं थी,
7: ह्यूमिडिटी नहीं थी, प्लेजेंट था।
4: सुबह सुबह वो बारिश हुई थी, बहुत दिनों बाद मुझे देखने को मिली थी कि बारिश में मैं तो निकल गई थी बाहर, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, तो लग रहा था कि नॉर्मल वाली बारिश नहीं है, ये ठंड लाने वाली बारिश है।
2: एसी चले क्या अभी?
4: नहीं,
7: मैंने नहीं चलाया। सैटरडे को फुल डे घर में विंडोज खोल दी थी और पूरा ठंडा माहौल था। देखिए ऐसे माहौल था जो हम पहाड़ों का जिक्र करते हैं, पहाड़ों वाला मौसम सीधा मैदानों में दिखाई दे रहा है।
3: ऐसा तो नहीं कि आप पहाड़ से होके आई तो ये सब ले
2: आई? नहीं, शगुफ्ता इसका क्रेडिट पिछले हफ्ते से लेने की कोशिश कर रही थी, फाइनली आपको दे दिया जाता है
3: 2 दिन।
2: देखिए सितंबर का महीना, वैसे सितंबर में ऐसा मौसम किसी ने एंजॉय किया नहीं था, इससे पहले साल 2008 में इस तरह की का मौसम हुआ था, तो इतने सालों बाद सितंबर थोड़ा सा या कहें कि इस तरह का ठंडक का एहसास हो रहा है सितंबर में। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, कई जगह ऐसी जहां पर बर्फबारी हुई है, कई जगह ऐसी जहां पर बारिश हुई है, यानी सितंबर ने ना सर्दियों वाला एहसास करा दिया है, लेकिन मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उनका सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये फौरी राहत है, टेम्प्रेरी राहत है, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद वापस से मौसम का मिजाज बदलेगा, टेम्परेचर एक बार फिर से इंक्रीज होगा।

0: सितंबर के आखिरी हफ्ते में कुदरत का मिजाज बार बार बदल रहा है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक मौसम की आंखमिचौली का खेल यूं ही जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी और बादलों के डेरे ने सितंबर में ही नवंबर जैसी गुलाबी ठंड का एहसास करा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर थमते ही आज खिली चटक धूप ने चेहरे चमका दिए। चलिए बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की कर लेते हैं, जहां पर सुबह सुबह मौसम ने ऐसी करवट ली है कि सितंबर की उमस गायब हो गई।
1: सितंबर का महीना है और ऐसे में मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। आमतौर पर सितंबर के आखिर में जो है दिल्ली एनसीआर में गर्मी जो है लोगों को परेशान करती है, लेकिन इस बार मौसम में बदलाव देखने को मिला है। लगातार जो है दो तीन दिनों से मौसम में अचानक से एक ठंडकपन का जो है महसूस जो है वो की जा रही है, ठंडक का एहसास हो रहा है और साथ ही साथ लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो बारिश देखी जा रही है।
0: दिल्ली के शहादरा, आनंद विहार, आईपी एक्सटेंशन, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद के वैशाली, कौशाम्बी और नोएडा के आसमान पर काले बादलों का डेरा रहा। हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को समय से पहले हल्की ठंड का एहसास होने लगा है।
2: जहाँ तक दिल्ली की बात है तो एक जो है डीप डिप्रेशन जिसने के जो हमारे ईस्ट कोस्ट से क्रॉस किया था, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट मूव करके उत्तर प्रदेश में आकर के आज सुबह के समय जो है वो एक लेसमार्क हो गया, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से लेसमार्क हो गया है, जिसकी वजह से जो पूरा ये जो बेल्ट है इसमें काफी अच्छी वर्षा देखने को मिली। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि अति भारी वर्षा भी रिपोर्ट की गई थी, साथ साथ उत्तराखंड में काफी अच्छी वर्षा हुई। इसके साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है था वो भी उसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हुई और इसकी वजह से भी जो तापमान है में काफी गिरावट देखने को मिली। तो अभी दिल्ली की बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है नीचे चल रहे हैं।
0: मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून दिल्ली से पहले ही विदा हो चुका है। आने वाले दिनों में मौसम और साफ होता जाएगा। दिल्ली में धूप खिलने के साथ तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान भी है। मंगलवार से आसमान के साफ रहने और तापमान धीरे धीरे बढ़ने का अनुमान है।
1: तो एक डीप डिप्रेशन था जो बंगाल की खाड़ी में जो है वो लगातार बना हुआ था और वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, उसी की वजह से जो मौसम में बदलाव था वो देखने को मिला। हालांकि आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश जो है वो देखी जा रही है अलग अलग इलाकों में, लेकिन कल से मौसम वापस से जो है वो साफ रहने वाला है। बारिश की किसी तरीके से उम्मीद नहीं रहेगी, तापमान में भी जो है बढ़ोतरी जो है वो देखी जाएगी। और अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहां पर आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इस वक्त एक्टिव है, जिसकी वजह से वहां पर जो है बर्फबारी और बारिश दोनों ही देखी जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम मैदानी राज्यों की बात करें तो वहां पर भी जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन कल के बाद मौसम एक बार फिर से साफ रहने का अनुमान है।
0: मैदानों से निकलकर पहाड़ों का रुख करते हैं तो यहां भी मौसम की लुका छुपी जारी है। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी और निचले हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद आज तड़के मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया। बादलों को चीर कर निकली खिलखिलाती धूप ने पहाड़ियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। मौसम विभाग के अलर्ट के चलते एहतियातन 26 सितंबर की दोपहर से 27 सितंबर तक चार धाम यात्रा को स्थगित रखा गया, लेकिन आज जैसे ही चमोली और आसपास के इलाकों में धूप खिली यात्रा को दोबारा से शुरू कर दिया गया। बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही चटक धूप के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रांगण, मुख्य बाजार और ब्रह्म कपाल क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी चहल पहल देखी जा सकती है।
3: मौसम की राहत मिलने के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा सुचारू हो चुकी है और बद्रीनाथ धाम में लगातार तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ है तो सड़कों पर भी लगातार गाड़ियों की जो कतार है वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को बद्रीनाथ धाम, और कोई वापस लौट रहा है तो कोई बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात है अब तक 18,05,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को अब तक पहुंच चुके हैं, जो अब तक का एक नया आंकड़ा है।
0: आज भले ही पहाड़ों पर चटक धूप खिली हो लेकिन उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं का दौर जारी है। हालांकि इस बीच श्रद्धालुओं की आस्था और यात्रा का उत्साह बरकरार है। दिल्ली से मनीषा लड्डा और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: वैसे ऐसा ही मौसम अगर बना रहे लगातार तो क्या हर्ज है ना। ऐसा ही
0: ज्यादा ठंड नहीं, नहीं, नहीं है, गलतियां भी तो हमारी हैं जो हमने स्थितियां ऐसी बना दी हैं।
4: नहीं मेरा मतलब है कि ये वाला प्लेजर
0: क्योंकि शगुफ्ता पता है क्या है, देखो इस तरह का मौसम है हम सब लोग को पसंद है लेकिन हम कितना उसको वैल्यू करते हैं। लोग अभी भी बहुत से लोग एसी चला के बैठे होंगे, देयर इज नो नीड ऑफ एसी, देयर इज
4: नो नीड ऑफ एसी। लोगों को लगता है कि वो ब्लैंकेट बड़ा ले लेंगे लेकिन एसी जरूर चलाना है, एनवायरमेंट को जरूर,
1: किस पे किस पे एसी चलाना है, शिमला वाला फील लेना
4: है। मैं पाव भाजी की तरफ किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे। अब देखिए ये तस्वीरें तो चलती रहेंगी लेकिन पिछले दो तीन दिनों से ना पहाड़ी इलाकों में जमकर बारिश और बर्फबारी हुई। खासतौर से हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी से पूरा इलाका चांदी जैसा चमकने लगा। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के साथ उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी का दौर दिखा।
5: बिल्कुल देखिए, लेकिन सवाल ये है कि अचानक मौसम ने हिमालयी क्षेत्रों में यू टर्न क्यों लिया है, तो चलिए आपको इसकी भी वजह बताते हैं, साथ ही आपको दिखाते हैं ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में खासकर लाहौल स्पीति, बद्रीनाथ, हेमकुट साहिब और उत्तरकाशी में हुई बर्फबारी की सर तस्वीरें।
6: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मौसम का तेवर बदला तो काजा, चीचम, पिन घाटी, लांगजा समेत आसपास ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह सुबह बर्फबारी हुई तो देखते ही देखते इसने आसपास के ऊंचे क्षेत्रों को भी अपने आगोश में ले लिया। मानसून के जाते जाते इस पहली बर्फबारी ने तापमान गिरा दिया, पूरी स्पीति घाटी का माहौल सर्द हो गया है। वहीं लाहौल घाटी में तो बर्फबारी कुछ दिन पहले से ही हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 29 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो तापमान और गिरेगा, इसलिए एहतियातन स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी अचानक मौसम बदला जिसके बाद से ऊंचे क्षेत्रों में खूब बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में लगातार बारिश ने तापमान काफी गिरा दिया है। यहां गोमुख ट्रैक के चीड़वासा, भोजवासा और गोमुख क्षेत्र में बर्फबारी हुई है तो वहीं भारत चीन सीमा से लगे निलांग जादुंग क्षेत्र में भी बर्फबारी की खबर है। यकीनन मौसम खराब है इसलिए यहां भी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल स्थगित है। तो वहीं इसी राज्य के चमोली जिले में बना हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है। जिधर नजर डालिए वहां बर्फ का राज है, मानो प्रकृति ने इस पूरे इलाके का ही अपने हाथों से सफेद श्रृंगार किया हो, लेकिन इस बर्फीले मौसम पर आस्था भारी है, श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। चमोली जिले में दरअसल शुक्रवार देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, ऐसे में भारत चीन सीमा से लेकर बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। कई जगह पर तो एक फीट से ज्यादा बर्फ जमा है तो वहीं निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश ने तापमान गिराया हुआ है। हालांकि मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए अस्थायी तौर पर चारधाम यात्रा रुकी हुई है, बावजूद इसके भगवान बद्री विशाल के आंगन में आस्था पार है क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दौरान कई श्रद्धालु पितृतर्पण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में ठंडे मौसम की ये मुश्किलें आस्था के आड़े नहीं आ रही। दरअसल मौसम का ये चक्र पलटने का असल जिम्मेदार देश के मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस भारी बारिश की वजह से लो प्रेशर बेल्ट क्षेत्र बना, यानी जिस क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव कम होता है, इस लो प्रेशर बेल्ट ने ही अब पहाड़ी राज्यों और हिमालय क्षेत्रों का रुख किया हुआ है, जिससे उम्मीद है कि पहाड़ी राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का माहौल बना रहेगा। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम ने ऐसी करवट ली है कि कहीं रास्ते में मलबा आ गया है तो कहीं बर्फ ने जिंदगी की राह रोक दी है। लेकिन कुदरत की चुनौती के बीच रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभालते हुए मिशन जिंदगी की शुरुआत कर दी है।
1: जी हां, देखिए केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चिरबासा में लैंडस्लाइड के बाद फंसे करीब 1500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कालिंदी ट्रैक और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में फंसे ट्रैकर्स को बचाने के लिए हेलीकॉप्टरों से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीमों तक को मैदान में उतारा गया। बर्फ, मलबे, बारिश और दुर्गम पहाड़ियों के बीच में कैसे चला ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए।

0: उत्तराखंड में कुदरत का कहर और चारधाम यात्रियों पर मंडराते खतरे के बीच राहत की बड़ी खबर आई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चिरबासा के पास लैंडस्लाइड की वजह से फंसे करीब 1,500 तीर्थ यात्रियों को एक जोखिम भरे ऑपरेशन में सुरक्षित निकाल लिया गया। बाबा केदार के दर्शन की आस में निकले श्रद्धालुओं की राह में अचानक कुदरत ने बड़ा रोड़ा अटका दिया। सोनप्रयाग से करीब 3 किलोमीटर आगे चिरबासा हेलीपैड के पास पहाड़ी दरकने से भारी मलबा रास्ते पर आ गिरा। सोनप्रयाग पुलिस से सूचना मिलते ही SDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए SDRF, NDRF और DDRF की टीमों ने मिलकर संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। बेहद संकरे और खतरनाक हो चुके रास्ते से बचाव टीमों ने एक एक तीर्थ यात्री को सावधानी पूर्वक निकाला और सभी 1500 लोगों को सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचा दिया।
1: अच्छा कार्य कर रही है जो इतने सारे रेस्क्यू व्यक्तियों को बचा रही है। और एक नहीं, यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, करीब मैंने अभी 300-400 लोगों को निकालते हुए देखा है।
0: उत्तराखंड के कालिंदी ट्रैक पर फंसे 100 से ज्यादा ट्रैकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सुबह से ही 8 हेलीकॉप्टरों को बचाव अभियान में लगा दिया गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कर्नल ओडन से 29 ट्रैकर्स को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है।
2: ज्ञात हुआ कि कुछ ट्रैकर्स उत्तरकाशी जनपद में और कुछ लोग बागेश्वर में फंसे हुए हैं, उनको पहले सुरक्षित पहुंचाया गया, स्थान पर रोका गया। इसके बाद फिर उनको आज सुबह से 8 हेलीकॉप्टर लगाए गए उत्तरकाशी जनपद के लिए। 8 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जो ऑडन कॉल था वहां से 29 लोग थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। काफ़ी कठिन रास्ता है, काफ़ी दुर्गम है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है, बर्फ़ वहाँ पड़ी हुई है, बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे सामने हैं। उसको देखते हुए हम लोग रेस्क्यू का काम जारी रखे हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि रेस्क्यू हम जल्दी जल्दी पूरा करें, लोगों को सुरक्षित वापस लाएं।
0: इस अभियान में मदद के लिए सहस्त्र धारा से SDRF की एक एक्सपर्ट हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से हर्षल पहुंची और कई ट्रैकर्स को सुरक्षित बचाकर हर्षल में सेना के हेलीपैड पर लाया गया। उधर उत्तरकाशी के उच्च हिमालय क्षेत्रों में अचानक बदले मौसम, मूसलाधार बारिश और भारी बर्फबारी के बीच 136 ट्रैकर्स के फंसने से हड़कंप मच गया। 5 से 7 फीट तक जमी बर्फ और ठंड में जमा

0: होने के साथ रास्ते बर्फ से ढक गए। हालात की जानकारी मिलते ही प्रशासन एक्टिव हुआ और ट्रैकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू हुआ।
1: ट्रैकिंग करने के लिए दो दिन पहले हम लोग 22 लोग यहाँ से ऊपर गौमुख के लिए निकले, पर हम भोजपासा में रुके दो दिन के लिए और बहुत बर्फबारी की वजह से आज हमें वापस आना पड़ा। सब सही सलामत है और गंगोत्री नेशनल पार्क के सारे कार्यकर्ता ने हर एक थोड़े थोड़े सेक्टर पे हमारा बहुत सहायता किया और उसी वजह से हमने बहुत बहुत सकुशल सब नीचा है बहुत एंजॉय किया। डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा मौसम खराब हो गया है बट फिर भी हमने बड़ी बड़ी मजे लेके हम लोग नीचे आए, हम सब सुरक्षित है और
2: थैंक यू सो मच
1: और थैंक यू सो मच
3: थैंक यू
1: थैंक यू।
0: खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ियों को देखते हुए सबसे पहले हेलीकॉप्टरों के जरिए हवाई रेकी की गई। मकसद इसका फंसे हुए ट्रैकर्स की सटीक लोकेशन, मौसम का मिजाज और सुरक्षित लैंडिंग पॉइंट्स का आकलन करना था। इसके बाद SDRF, NDRF, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, गंगोत्री नेशनल पार्क की संयुक्त टीमों ने पूरी ताकत लगा दी। खुद जिलाधिकारी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। शासन के सख्त निर्देशों के तहत हर हेलीकॉप्टर में सैटेलाइट फोन लगाए गए ताकि कट चुके नेटवर्क के बीच संचार व्यवस्था बनी रहे। बर्फीले तूफानों के बीच में रेस्क्यू टीमों ने एक एक कर सैलानियों और उनके सपोर्ट स्टाफ को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। सिर्फ निकालने तक ही अभियान सीमित नहीं रहा। बेस कैंप पर उतरते ही सभी ट्रैकर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। जिन्हें जरूरत थी उन्हें तुरंत प्राथमिक इलाज और गर्म कपड़े मुहैया करवाए गए।
4: सबसे पहले मैं उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करके हेली की सुविधा हमें दी है और खासकर जो जिला अधिकारी है प्रसन्नारे जी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मिनट टू मिनट सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है और तत्काल रेस्क्यू किया गया, सभी लोग कुशल आ गए।
5: आर्मी से लेके आपके SDRF एंड अदर यूनिट्स इन्वॉल्व थे। बहुत सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी थी, एरिया भी बहुत ट्रिकी है, काफ़ी स्नोफॉल वहाँ गिर चुकी थी, सो इट्स नॉट ईजी रेस्क्यू। सो बहुत ही प्रोफेशनली किया गया सर। यहाँ पे पहुँचने पे रेस्क्यू करके के बाद यहाँ पे मेडिकल सपोर्ट, बेसिक मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप भी हुआ, चाय कॉफ़ी पानी वो भी था। तो ऑल इन ऑल इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड सारे जो लोग हैं यूनिट्स में उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
0: कुदरत के इस बर्फीले इम्तिहान में प्रशासनिक मुस्तैदी और रेस्क्यू टीमों की जांबाजी की जीत हुई। हालांकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम के रुख को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल आगे की ट्रैकिंग गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और देहरादून से सागर शर्मा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर राहत शिविरों में उन्हें ठहराया गया है। जिले में कुल 42 राहत शिविर बनाए गए हैं और इस बीच जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी के उत्तरी किनारे स्थित डोंगाघाट गांव से करीब 10 से 12 लोगों के बाढ़ में फंसे होने की सूचना मिली और इसके बाद भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल एयर कमांड की टीम के साथ हेलीकॉप्टर से इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया।
7: और देखिए, सर्च ऑपरेशन के दौरान सभी लोग एक कच्चे मकान की छत पर फंसे मिले। तेज बहाव के चलते मकान के कभी भी ढहने का खतरा था। समय कम था लिहाजा वायुसेना ने बेहद जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गरुड़ कमांडो को हेलीकॉप्टर से कच्ची छत पर उतारा गया जिसने वहां फंसे लोगों को सुरक्षित करने में मदद की। इसके बाद सभी लोगों को एक एक कर विंच के जरिए हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया।
8: और चलिए अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से हैरतअंगेज रेस्क्यू की एक और तस्वीर। जिले में भारी बारिश और इंद्रावती नदी में बाढ़ के कारण फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इसी अभियान के तहत इस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया।
7: देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक मकान चारों तरफ पानी में घिर चुका है, दूर दूर तक पानी है। ऐसे में वायुसेना का हेलीकॉप्टर आता है और मकान की छत पर फंसे शख्स का सुरक्षित रेस्क्यू करता है। बस्तर में बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर राहत शिविरों में ठहराया गया। जिले में कुल 42 राहत शिविर संचालित किए गए हैं। राहत शिविरों में करीब 5,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को आश्रय भी दिया गया। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखते हुए राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए हैं।

0: और देखिए मौसम की इस अजब गजब और माहौल के बीच में एक हैरान करने वाली तस्वीर बिहार के समस्तीपुर से आई है, जहां तेज हवा और बारिश के बीच में पानी की सतह से आसमान की तरफ उठता एक घूमता हुआ बवंडर दिखाई दिया। कुछ ही देर में इस अनोखे नजारे ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लोगों ने तुरंत अपने मोबाइल निकाले, इस तस्वीर को कैमरा में कैप्चर किया। लोगों के जहन में सवाल था कि आखिर ये हुआ कैसे है,
1: और तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे पानी खुद आसमान की ओर खिंचता चला जा रहा हो, लेकिन असल में कहानी थोड़ी अलग है, जिसे हम जल बवंडर यानी वाटर स्पाउट के तौर पर देख रहे हैं। उसमें पानी का कोई भी विशाल हिस्सा आसमान की तरफ नहीं उठता। दरअसल ये तेजी से घूमती हुई हवा का एक संकरा घेरा होता है, और इस घूमती हवा के आसपास पानी की बेहद महीन बूंदे, फुहारे और छींटे जमा होने लगते हैं, और यही मिलकर हमें दूर से एक लंबी घूमती हुई आकृति के तौर पर दिखाई देते हैं। यानी नीचे पानी की सतह, बीच में घूमती हवा और ऊपर बादलों के बीच बना ये पूरा सिस्टम मिलकर ऐसा नजारा पैदा करते हैं, मानो पानी सीधे आसमान से जुड़ गया हो।
2: और बिल्कुल देखिए, बारिश और बाढ़ से थाईलैंड भी जूझ रहा है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी लोगों ने जिंदा दिली को जिंदा रखा है। ये तस्वीरें बैंकॉक की हैं, जहां लोगों ने मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल लिया है। शॉपिंग मॉल के सामने पानी से लबालब भरे प्लाजा को लोगों ने अस्थायी तैरते बाजार में बदल दिया। पानी के बीच दुकानदार मछली, सब्जियां और रोजमर्रा का सामान बेचते हुए नजर आए। कहीं सामान फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर रखा था तो कहीं फोम के डिब्बों को ही दुकान बना लिया।
3: बिल्कुल, आपको बता दें कि खरीदार भी पानी में उतरकर जरूरत का सामान खरीदते दिखाई दिए। कुछ लोग पैदल पानी में आगे बढ़े तो कुछ छोटी नाव या तैरने वाले साधनों के सहारे इन अस्थाई दुकानों तक पहुंचे। बैंकॉक में बाढ़ का संकट लगातार बना हुआ है। थाईलैंड सरकार के मुताबिक 16 सितंबर से अब तक देश के 41 प्रांत बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश के बाद राजधानी की कई प्रमुख सड़कें पानी में डूब गई, लेकिन एक तरफ बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं तो दूसरी तरफ बैंकॉक के लोगों ने पानी के बीच भी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने का नया तरीका खोज लिया।
0: और चलिए अब खेलों की दुनिया से आई हुई गुड न्यूज आपको देते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। तिरुवनंतपुरम में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। भारत के सामने वेस्टइंडीज ने जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य को रखा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 74 रन की साझेदारी के साथ अच्छी शुरुआत की। इसके बाद गिल और विराट कोहली के बीच में 151 रन की साझेदारी हुई। भारत ने 41.4 ओवर्स में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाए और मैच फाइनली अपने नाम कर लिया।
2: और उधर देखिए, एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो सकता है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल तभी होगा जब दोनों टीमें अपने अपने सेमीफाइनल मैच जीतेंगी।
3: और जापान में जारी एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान ने बिना एक भी गेंद खेले सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को बेहतर आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह मिली है। इसके कुछ घंटे बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला भी लगातार बारिश के कारण नहीं हो सका। मैच बिना टॉस के रद्द हुआ और भारत अपनी बेहतर रैंकिंग के कारण अंतिम चार में पहुंच गया। सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगी। यानी कि फाइनल में भारत पाकिस्तान का मुकाबला देखने के लिए दोनों टीमों को सेमीफाइनल जीतना होगा।
4: जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स से भारतीय क्रिकेट टीम को आज से अपने सफर की शुरुआत करनी थी। अफगानिस्तान के सामने भारतीय क्रिकेट टीम को अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से यह मुकाबला रद्द कर दिया गया। शुरुआत में टॉस डिले हुआ, उसके बाद एम्पायर्स ने आके मैदान का जायजा लिया, मुआयना किया, लेकिन एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी और नतीजा ये हुआ कि मैच अब रद्द हो चुका है। और इसी के साथ भारत अब सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत इस वजह से सेमीफाइनल पहुंचा क्योंकि भारत की जो रैंकिंग है वो अफगानिस्तान से बेहतर है आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक, और इसी के साथ अफगानिस्तान का एशियन गेम्स में सफर समाप्त। लेकिन भारतीय टीम अब सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी, जहां उसका सामना या तो नेपाल या फिर श्रीलंका से हो सकता है। भारतीय टीम पिछले बार की डिफेंडिंग चैंपियन है और इस बार भी टीम की पूरी कोशिश होगी कि सेमीफाइनल मुकाबले में अपने अपोनेंट को हराकर फाइनल में जगह पक्की की जाए और एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम किया जाए।
1: तो भारत ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में 8 विकेट से हरा दिया है। 3 वनडे मैचों की सीरीज में अब भारत को 1-0 से बढ़त हासिल हो गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस शानदार जीत के हीरो रहे विराट कोहली, शुभमन गिल और कुलदीप यादव।
2: बिल्कुल देखिए, इस तिकड़ी के शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने जीत के साथ साथ सीरीज का आगाज भी कर दिया है। देखिए वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की विराट जीत की एक्शन पैक्ड स्टोरी।

0: वही हुआ जिसकी हर क्रिकेट फैन को उम्मीद थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ त्रिवेंद्रम में टीम इंडिया ने जीत के साथ सीरीज का शंखनाद किया है। सोने पर सुहागा ये कि फैंस को इस मैच में विंटेज विराट कोहली का जलवा देखने को मिला। विराट ने महज 88 गेंदों पर 139 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 10 चौके और 9 छक्के लगाए। ये विराट का वनडे में 55वां शतक था। इस रिकॉर्ड तोड़ पारी के साथ ही विराट कोहली वनडे में सबसे तेज 15,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। महज 303 पारियों में 15,000 रन का अंबार खड़ा कर विराट ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। सचिन ने 377 पारियों में ये कीर्तिमान हासिल किया था। विराट का कहना है कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड उनके लिए मायने नहीं रखता, टीम का लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना है और हर कदम उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जाहिर है त्रिवेंद्रम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में फैंस को जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए। जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंदों में ये लक्ष्य भेद कर मुकाबला अपने नाम किया। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 विकेट से मिली इस जीत में कप्तान शुभमन गिल की भी अहम भूमिका रही। गिल ने 108 गेंदों पर 110 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन इस पाटा विकेट पर गेंदबाजी के मोर्चे पर दम दिखाया फिरकीबाज कुलदीप यादव ने। कुलदीप ने 10 ओवर में 40 रन खर्च कर 4 विकेट झटके और एक बार फिर साबित किया कि क्यों उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस शानदार प्रदर्शन के बाद आम दर्शक ही नहीं, सियासत की दुनिया के सूरमा भी कुलदीप यादव की फिरकी के कायल हो गए।
1: I think that Kuldeep bowled very well. I think he's the man of the match for me because there's nothing in the wicket for the bowlers. You could see that the West Indies tried, they could get nothing. It's a flat wicket. There wasn't much seam movement for the pacemen. There was not much turn. So Kuldeep's command of line and flight and so on made all the difference. And he was able to hold back the progress of the West Indies batsmen after they'd got off to a fantastic start. Their start was so strong that they were on course for a score in the high 300s, maybe even 400.
0: West Indies ke khilaf is run chase mein chase master Virat Kohli puri innings mein chhaye rahe. Unhone 42vi gend ki teesri aur phir chauthi gend par lagatar 2 chakke jadkar badi aasani se ye jeet dila di. Iske alawa Kuldeep Yadav ki firki ne bhi virodhi ballebazon ko khoob nachaya aur kaptan Shubman Gill bhi rang mein dikhe. Yakeenan ye one day format mein भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसके साथ चाय पर चर्चा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कहां बप्पा को लोगों ने इको फ्रेंडली तरीके से किया विदा, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम, वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, ईशा सिंह ने विमेंस 25 मीटर पिस्टल में जीता सिल्वर, विथ्या रामराज और पिंकी ने जीता ब्रॉन्ज। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी, मदुरई में सीएम विजय ने शुरू की योजना, केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात को मिलेगा फायदा। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला। और चलिए गणपति बप्पा को देखिए, धूमधाम से विदाई तो दे दी गई है, लेकिन इस बार अकोला में विदाई का अंदाज कुछ अलग दिखा। कम बारिश के चलते नदियों और घाटों पर पर्याप्त पानी नहीं रहा, ऐसे में प्रशासन ने बड़ी गणेश प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित नहीं करने की अपील की। इसी अपील को गणेश भक्तों ने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उसे एक सकारात्मक पहल में बदल दिया। अकोला में करीब 20 से 25 बड़े गणेश पंडालों और बड़ी संख्या में घरेलू गणपति स्थापित करने वाले भक्तों ने अपनी प्रतिमाओं को नदी या तालाब में विसर्जित करने के बजाय सुरक्षित रखने का फैसला किया, यानी इस बार बप्पा को जल में विसर्जित करने के बजाय अगले साल तक सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया है। इस तरह यहां बप्पा की मूर्तियों का बैंक बन गया है।
1: वहीं दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है, जहां पर मिट्टी से बने 72 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। आयोजकों ने प्रतिमा को किसी जलाशय में विसर्जित करने के बजाय पर्यावरण के अनुकूल तरीका अपनाया। दमकल की गाड़ियों ने मिट्टी की प्रतिमा पर पानी का छिड़काव किया, जिससे वो प्राकृतिक रूप से घुल गई।
6: और चलिए अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के अकोला, जहां इस साल कम बारिश के कारण नदियों और घाटों पर पर्याप्त पानी नहीं है, ऐसे में प्रशासन ने बड़ी गणेश प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित न करने की अपील की थी, और प्रशासन के इस अपील को गणेश भक्तों ने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि उसे एक सकारात्मक पहल में बदल दिया।
8: बिल्कुल, देखिए इस पहल में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अकोला के विश्वकर्मा मैकेनिकल वर्क्स के संचालक राजेश सोनालिकर ने। राजेश ने गणेश भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसा रास्ता निकाला जिससे बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन भी हो सके और नदी तालाबों को भी नुकसान न पहुंचे।
9: 10 दिनों तक चला गणेशोत्सव खत्म हो चुका है, लेकिन अकोला में इस बार बारिश की कमी से गणेश विसर्जन पर इसका साफ असर देखने को मिला है। नदियों में पर्याप्त पानी न होने के कारण प्रशासन ने गणेश मंडलों और भक्तों से प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित करने की बजाय सुरक्षित स्थान पर रखने की अपील की। प्रशासन की इस अपील को लोगों ने न सिर्फ गंभीरता से लिया बल्कि उस पर अमल भी किया। इसी अपील के बाद करीब 20 से 25 बड़े गणेश मंडलों ने अपनी प्रतिमाओं को विसर्जित न करने का फैसला लिया।
10: मेरे पीछे जो बप्पा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं दिख रही है, ये यहाँ पर इस वक्त जो है गणपति बप्पा की बैंक, मूर्तियों की बैंक बनाई है। ये बैंक इसलिए है कि बहुत से बड़े बड़े पंडालों ने और घरेलू गणपति बप्पा जो स्थापित किए थे उन्हें विसर्जित ही नहीं किया गया, क्योंकि पर्यावरण को देखते हुए और साथ ही जो नदी और तालाब में पानी की कमी थी तो बप्पा को यहाँ पर ला कर रख दिया। हम फिलहाल अकोला के राजू सोनालीकर इनके खेत में हैं, जहाँ पर एक गोडाउन में देखिए आप कि बप्पा की 15 फीट 20 फीट की जो प्रतिमाएं, लगभग 15 से 16 प्रतिमाएं जो है वो यहाँ पर लाके रखी है। और साथ ही जो एक डेढ़ फीट से लेकर तो 3-4 फीट तक की जो बड़ी छोटी प्रतिमाएं हैं उन्हें लोगों ने खुद होकर यहाँ पर लाया है।
9: अकोला में रहने वाले राजेश सोनालीकर ने इस पहल में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने अपने खेत और गोदाम की जगह गणेश भक्तों के लिए उपलब्ध कराई। इसके बाद कई गणेश मंडल और घरों में मूर्ति स्थापित करने वाले भक्त आगे आए और उन्होंने भी अपनी प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित करने की बजाय सोनालीकर के खेत में बने गोदाम में लाकर सुरक्षित रख दिया।
11: ये मूर्तियों को अगले साल तक के संभाल के रखना, जिन मंडलों ने लाके दिए उनका बहुत बहुत आभार, और उन्हें अपनी मूर्ति खुद की पुनः स्थापित करने की होगी तो उन्हें लेके जाना मानपूर्वक, और नहीं लेके नहीं वो स्थापित करना है तो दूसरे मंडल की मूर्ति आप लेके जाना, मतलब मंडलों ने आपस में मूर्ति एक्सचेंज कर लेना, और मतलब एक तो पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा, आर्थिक भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप ये मूर्ति रख रहे हो दूसरी मूर्ति ले जा रहे हो इस तरह से। और अब छोटी मूर्तियों भी इतनी आ चुकी है कि सोच रहा हूँ कि ये भी मूर्ति अगले साल के लिए गणेश भक्तों के लिए पैकिंग करके रख दूँ।
9: इस पहल को सिर्फ पर्यावरण संरक्षण से नहीं बल्कि आस्था और जिम्मेदारी के खूबसूरत मेल के तौर पर भी देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। ऐसे में समय की नजाकत को समझते हुए बप्पा की प्रतिमा को नदी में विसर्जित न करने का फैसला भी उनकी श्रद्धा का ही एक रूप है।
12: भैया आज के तारीख में पानी की शॉर्टेज है, बारिश आई नहीं है, तो इसके वजह से धरन भरे नहीं है, तो हमने ये सोचा है कि ये साल विसर्जित न करते हुए अगले साल यही मूर्ति बिठाई जाए और पानी को प्रदूषित होते से बचाए।
10: काका समय की मांग है आज
13: तो गणपति जी के लिए विसर्जन के लिए पानी नहीं है, अपने यहाँ पे बरसात भी बहुत कम हुई है, तो वो हिसाब से सब जन को आह्वान है कि मूर्ति पानी में नहीं करते हुए विसर्जित नहीं करते हुए अगले साल के लिए यहाँ पे लाके रखिए।
9: अकोला में हुई ये पहल अब एक मिसाल बनने की उम्मीद जगा रही है। भक्तों की इच्छा है कि अकोला का ये प्रयोग सिर्फ अकोला तक सीमित न रहे बल्कि महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी इसे अपनाया जाए ताकि नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: जंगली जानवरों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव अक्सर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। ऐसे में ओडिशा के एक खास ट्रेनिंग सेंटर में हाथियों को प्रशिक्षित करके ऐसे टकराव को कम करने की कोशिश की जा रही है।
8: बिल्कुल, देखिए आपको दिखाने जा रहे हैं ओडिशा के चंदका में मौजूद इस सेंटर की कहानी, जहां तैयार किए जा रहे हाथी वाइल्ड लाइफ और इंसान के बीच अहम कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
14: जंगल में खेल कूद करते इन हाथियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसानों के साथी हैं। और लोगों के बीच रहने के लिए इन्होंने काफी प्रैक्टिस की है। हकीकत यही है कि इन हाथियों को इंसानों का साथी बनने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीरें ओडिशा के चंदका वाइल्ड लाइफ डिवीजन में कुमार खूंटी के इलाके की हैं। घने जंगल का ये इलाका महज एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, जहां पर आप तरह तरह के जंगली जीव जंतुओं का दीदार कर सकते हैं और कुदरत की खूबसूरती को निहार सकते हैं। बल्कि ये जगह इस मायने में खास है कि यहाँ पर हाथियों का स्पेशल कुमकी ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ हाथियों की देखभाल की जाती है और उन्हें वन विभाग की ओर से विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है।
15: मेनली द रेस्क्यू सेंटर, दो एलिफेंट हुए आर डिस्कार्डेड बाय दिस हॉर्ड और इंजर्ड एट समवेयर, दे आर रेस्क्यूड एंड दे आर ट्रीटेड एंड ट्रेंड। This type of training is, no doubt it is a training center.
14: चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करीब 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इस जंगली इलाके में फिलहाल 46 जंगली हाथी मौजूद हैं, जबकि 9 भटके हुए हाथियों को यहां पर बने खास ट्रेनिंग सेंटर में लाकर रखा गया है, जिन्हें जंगल में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा हो। यहाँ पर इन हाथियों के रहने के लिए इंतजाम है और खान पान का खास ख्याल रखा जाता है। हाथियों की सेहत, आराम, नहाने, खेलकूद का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। साथ ही हाथियों को यहाँ पर हर दिन 2 से 3 घंटे प्रशिक्षित भी किया जाता है। इन हाथियों की मौजूदगी इन इलाकों के लिए काफी खास है, जहाँ इंसानों और जंगली हाथियों के बीच टकराव का खतरा बना रहता है।
15: To achieve this man elephant, to minimize the man and animal conflict, so we are imparted training to the elephants. In future, they will help.
14: कुमकी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित हाथी और उनके साथ काम करने के लिए टीम जंगली हाथियों को नियंत्रित तरीके से आबादी से दूर करने में मदद करती है। यहाँ पर तैयार हो रहे हाथी जंगल और आबादी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश में वन विभाग के अहम साथी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, सड़क पर दौड़ते ट्रक तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन चंदौली में पिछले 3 दिनों से सड़क किनारे खड़ा ट्रक लोगों के लिए अजूबा बन गया। बेल्जियम से चला ये महाबली ट्रक उड़ीसा होते हुए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जा रहा है। इस पर लदी है बायोपॉलीमर प्लांट की एक बेहद भारी भरकम मशीन, लेकिन चंदौली पहुंचते ही इसके पहिए थम गए। वजह थी आगे का रास्ता। मशीन के आकार और वजन के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ नहीं था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के पास रिंग रोड के नजदीक जब ये महाबली ट्रक रुका तो धीरे धीरे ये लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बन गया।
8: बिल्कुल, देखिए, देखते ही देखते ट्रक के आसपास ऐसा नजारा हो गया जैसे सड़क किनारे कोई छोटा सा मेला लगा हो। 3 दिन तक चंदौली में रुकने के बाद आखिरकार इस महाबली ट्रक के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ। मशीन को सुरक्षित तरीके से आगे ले जाने के लिए रास्ता तैयार किया गया और फिर शुरू हुई इस विशाल काय ट्रक की अगली मंजिल की ओर यात्रा। अब यह महाबली ट्रक चंदौली से आगे निकल चुका है और जानकारी के मुताबिक बनारस की सीमा तक भी पहुंच चुका है।
6: देश की राजधानी दिल्ली में शहीद आजम भगत सिंह पर एक मिनी म्यूजियम बनाया गया है, जहां भगत सिंह के जीवन, विचारों और उनके साथ देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों की कहानी को तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है।
16: बिल्कुल, आपको बता दें कि म्यूजियम की दीवारों पर भगत सिंह के विचार और इनकलाब जिंदाबाद जैसे उनके क्रांतिकारी नारों को लिखा गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भगत सिंह के संघर्ष, विचारों और देश के लिए उनके बलिदान से परिचित कराना है।

0: शहीद आजम भगत सिंह एक ऐसा नाम जिनकी आज भी आवाज और विचार आज के हमारे युवाओं में जोश भरते हैं, और उनके दिए गए बलिदान, उनके जो विचार थे, उनका जो त्याग था, उसको याद करते हुए आज दिल्ली में जो है एक ऐसा ही मिनी म्यूजियम जो है वो खोला गया है। उनके बलिदानों को, देश के लिए जो उन्होंने दिए, उसको याद करते हुए दिल्ली में आज आयोजित हुआ है चलो भगत सिंह के साथ। और इस कार्यक्रम के दौरान जो है उनकी विरासत को एक अलग ही अंदाज में लोगों के सामने, आज के युवाओं के सामने जो है वो लाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो ये आप मिनी म्यूजियम देख रहे हैं, आपको जगह जगह दीवारों में जो है भगत सिंह के कहे शब्द जो है वो नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे म्यूजियम को जो है वो तैयार किया गया है। उनके जो जीवन है, उनके जो विचार है, और उनके साथ देश के लिए जो कुर्बानी देने वाले शहीद है, उनकी कहानी भी आपको जो है इन तस्वीरों में जो है वो नजर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हर एक जो उनके साथ के जो शहीद थे, जो उनके थे, उनके जो साथी थे, उनकी जो तस्वीरें हैं, और कब उनको जो है उनकी जो कुर्बानी है, वो एक एक चीज़ जो है आपको इन तस्वीरों में जो है वो नज़र आने वाली है। तस्वीरें आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये वो अदालत है जहाँ पर जो है उस समय जो है भगत सिंह और उनके साथियों के जो मुकदमे हैं वो यहाँ पर जो है सुने जाते थे, सारी चीज़ें यहाँ होती थी, तो उसको भी दर्शाया जो है यहाँ पर गया है। इस पूरे म्यूजियम की बात करें तो भगत सिंह के साथ जो है यहाँ पर राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाएँ भी जो है वो स्थापित की गई है, और जो इन तीनों की क्रांतिकारियां जो है उनके जो बलिदान थे, वो जो देश के प्रति था, वो सब चीजें जो है उनके योगदान की जो है याद दिलाता है।
1: और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस हाल में है ओडिशा के जंगलों से रेस्क्यू करवाए गए ओरंगुटान।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: जंगलों से रेस्क्यू किए गए नन्हे और उंगटान और नंदन कानन जू में किस तरीके से वो महफूज है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ इन मासूम बच्चों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। हर 2 घंटे में इन्हें इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला दिया जाता है और जैसे जैसे इनकी सेहत सुधर रही है डाइट में भी नए नए स्वाद शामिल किए जा रहे हैं। सेब और केले का जूस, उबले हुए आलू, स्टीम की हुई गाजर और बीन्स, यानी कि इन नन्हे मेहमानों के लिए खाने का पूरा इंतजाम है और इसका असर भी साफ दिख रहा है। इनका वजन तेजी से बढ़ रहा है। एक नर औरंगटान बच्चे का वजन 4.9 किलो से बढ़कर 6 किलो से ज्यादा हो गया है।
1: अब इन बच्चों के चेहरे पर डर कम और मस्ती ज्यादा नजर आने लगी है। वे आपस में खेल रहे हैं और धीरे धीरे अपने नए माहौल में घुलने मिलने लगे हैं। इन नन्हे औरंगटान की सिर्फ शारीरिक सेहत ही नहीं बल्कि उनकी मानसिक सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कमरे को ऐसा बनाया गया है जहां ये बच्चे खेल सकें और खुद को अकेला महसूस ना करें। सॉफ्ट टॉयज, झूले, छोटी छोटी सीढ़ियां और रस्सियां लगाई गई हैं ताकि ये उछल कूद कर सकें, खेल सकें और अपनी स्वाभाविक गतिविधियां कर सकें।
7: तो चलिए आ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: मॉस्को में शनिवार को कुछ लोग पंपकिन लेकर तालाब में उतर गए, लेकिन ये कोई आम कद्दू नहीं है, इसका वजन 400 से 500 किलो तक था।
2: देखिए, बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल में लोगों ने इस विशाल पंपकिन को खोखला कर नाव का रूप दिया और फिर शुरू हो गई अनोखी रेस।
3: मॉस्को में सितंबर की ठंडी हवा, तालाब का शांत पानी और इस खूबसूरत माहौल में यहाँ चल रहा है बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल। दिलचस्प ये कि ये नावें लकड़ी या फाइबर की नहीं, सैकड़ों किलो वजनी विशाल कद्दू से बनी हैं। बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल में विशाल कद्दूओं को अंदर से खोखला किया गया, फिर उन्हें सजाकर बनाई गई है ये खूबसूरत नाव। कद्दू जितना बड़ा, चुनौती भी उतनी ही बड़ी, कहीं चेतावनी का बोर्ड तो कहीं पूरी तैयारी के साथ रेस में उतरने का जोश। किसी के लिए ये सालों की मेहनत का नतीजा है तो किसी के लिए बस एक ऐसा मौका जिसमें मस्ती भी है और मुकाबला भी। 400 से 500 किलो तक के कद्दू जब पानी में उतरे तो तालाब देखते ही देखते बन गया पंपकिन रेस ट्रैक और फिर शुरू हुई अनोखी सवारी। कद्दू के अंदर बैठे प्रतियोगी पैडल के सहारे आगे बढ़ते रहे, किसी ने चुना डरावना लुक तो किसी ने बच्चों के पसंदीदा किरदारों की पोशाक। किनारे खड़े दर्शकों के लिए भी ये किसी तमाशे से कम नहीं था, पानी पर तैरते विशाल कद्दू और उनके अंदर बैठे रंग बिरंगे किरदार। ये सिर्फ रेस नहीं, विशाल कद्दू उगाने वालों के लिए अपनी मेहनत को नए अंदाज में पेश करने का मौका भी है। तालाब में उतरते ही इन कद्दूओं ने पूरे फेस्टिवल का रंग ही बदल दिया और अब बारी थी इसे मुमकिन बनाने वाले आयोजक की कहानी सुनने की। रूस के 75 इलाकों से आए बागवान 200 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सब्जियां, लेकिन महफिल लूट गए ये जायंट कद्दू, जो कद्दू खेतों में उगते हैं। मॉस्को के तालाब में वही नाव बनकर तैरते नजर आए, किसी ने इन्हें सजाया, किसी ने इन्हें बैठकर रेस लगाई और किसी ने अपनी बचपन की पोशाक पहनकर इस पल को और खास बना दिया। कहने को ये कद्दू हैं, लेकिन मॉस्को में इनका अंदाज बिल्कुल अलग था, जहां कद्दू सिर्फ सब्जी नहीं रहा बल्कि नाव भी बना और रेस का अहम किरदार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे चाय पर गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
2: दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। शूटिंग में ईशा सिंह और 1500 मीटर में गुलवीर सिंह ने जीता सिल्वर। विथ्या रामराज, पिंकी और पारुल ने जीता ब्रॉन्ज। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी। मदुरई में सीएम विजय ने शुरू की योजना, केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात को मिलेगा फायदा। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश फिल्म ने ऐसा कमाल किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं। फिल्म हनुमान अंश ने कामयाबी का एक नया शिखर छू लिया है। 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने 400 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। जरा सोचिए, बजट 2 करोड़ रुपए से भी कम, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं, रिलीज से पहले कोई खास बज नहीं और शुरुआत में महज कुछ चुनिंदा शोज, लेकिन दर्शकों ने फिल्म देखी, पसंद की और फिर शुरू हुआ असली खेल, वर्ड ऑफ माउथ का। देश के एक संत के जीवन से जुड़ी ये कहानी दर्शकों को इस कदर पसंद आई कि हनुमान अंश हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बनाती चली गई और अब ये फिल्म 500 करोड़ के माइलस्टोन की ओर निकल चुकी है।

0: उस वक्त जो मेरा लुक था वो कहीं ना कहीं सर को, हमारे डायरेक्टर सर को, प्रोड्यूसर को, सारे लोगों को, कहीं ना कहीं टीम के भी लोगों को लगता था कि मैं बाबा जी जैसा दिखता हूँ, उनके यंग एज जैसा दिखता हूँ। तो ये संजोग था कि उस तरीके का लुक था। अगर मेरे दाढ़ी बड़ी होती, बाल बड़े होते तो शायद किसी के माइंड में वो इमेज नहीं आती। तो ये एक तरीके का संजोग था जो एक चमत्कार बन गया मेरे लिए।
1: ये कहानी है उस संजोग की, उसी आस्था की, उसी चमत्कार की। एक ऐसा चमत्कार जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर हुआ, ऐसा चमत्कार जिसका हिसाब लगाते लगाते पंडितों के कैलकुलेटर भी हार मानने लगे हैं। और कोई कैसे न माने हार जब चमत्कार ऐसा हो। जब 2 करोड़ के बजट में तैयार हुई एक फिल्म कमाई के मामले में 400 करोड़ के बम्पर आंकड़े को पार कर जाए। सिर्फ 52 दिनों में फिल्म हनुमान अंश का कलेक्शन 400 करोड़ के पार पहुंच गया। बता दें कि हनुमान अंश ने अभी तक देश भर में 307 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड ग्राफ कलेक्शन 401 करोड़ के पार हो चुका है। जरा सोचिए, एक गुमनाम फिल्म, न जिसके बारे में किसी को मालूम था, न जिसके हीरो को कोई जानता था, और तो और डायरेक्टर भी अनजाने। फिल्म का न तो भव्य प्रमोशन हुआ और न ही इसके फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर की कोई खबर थी। फिल्म चुपचाप रिलीज हुई और चुपचाप ही शायद पर्दे से उतर भी जाती। लेकिन इस कहानी का अंत नहीं था। 2 हफ्तों तक फिल्म की टिकट खिड़की खाली जैसी ही रही। लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्तों बाद अचानक प्लॉट ट्विस्ट आया।
2: लेकिन एक फिनोमेनन था जो हम नोटिस कर रहे थे कि पहले वीक में जितने लोग फिल्म देखने गए थे पर थिएटर वर्सेस नेक्स्ट जो वीक था, विच इज सेकंड वीक, विच इज वीकेस्ट वीक, जिसमें बोलते हैं कि 46 लाख का कलेक्शन था, लेकिन 46 लाख का कलेक्शन 27 थिएटर में था, जबकि 86 लाख का कलेक्शन 350 थिएटर में था, 350 शोज में था। तो जो रेशियो है वो 500% बढ़ गया था, मतलब इन टर्म्स ऑफ कितना फिल हो रहे थे हमारे थिएटर। तो उसका साइन तो दिखाई दे गया था हमको, लेकिन वही होता कि थिएटर जो बिजनेस है, सिनेमा जो बिजनेस है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि डिपेंड करता है अगली फिल्म कौन सी आ रही है, उस वक्त जनता का मूड कैसा है।
1: सिनेमा घरों में दर्शकों की नई सुनामी का नतीजा आज सबके सामने है। हनुमान अंश फिल्म की शानदार कामयाबी ने मेकर्स के चेहरों पर बड़ी मुस्कान ला दी है।
3: हम लोग के लिए भी मिरेकली है, बट इतना जरूर था कि विश्वास बहुत था इस फिल्म पे, और ये पूरी फिल्म बनी ही सिर्फ उसी विश्वास पे, उसी श्रद्धा पे और उसी भाव से। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसमें जुड़ते चले गए थे वो सारे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे बाबा से, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे अध्यात्म से और हनुमान जी से।
1: हनुमान अंश 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। 2026 की टॉप ग्राफ फिल्मों में लगभग 1852 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ धुरंधर द रिवेंज पहले नंबर पर है। वहीं 464 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 का दूसरा नंबर है, और 401 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ हनुमान अंश इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हनुमान अंश की कमाई अब भी जारी है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव, सकारात्मक मौखिक प्रचार और इसकी कहानी को बताया जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिससे भारत के आम दर्शकों ने रिलेट किया, एक ऐसी कहानी जिसमें एक देसी भारतीय के सामने वो किरदार था जिसे वो असल जिंदगी में भी लार्जर देन लाइफ नायक की तरह ही देखता है। उसी नायक की कहानी को इस फिल्म में सादगी से दिखाया गया है।
4: मुझे याद नहीं थी जो मेरा पहला दिन था शूटिंग का, तो वो जो हनुमान 40 वाला सीन है वही था। तो फिर सर ने बताया मुझे जो मतलब जो पार्ट है, तो फिर मैंने वो लर्न किया। पर अभी मैं हर रोज हनुमान 40 पढ़ता हूँ और अभी मैं लर्न कर रहा हूँ हनुमान 40।
1: अब ये कृपा बाबा नीम करौली की है या भक्तों की आस्था, लेकिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने सिनेमा घरों में कदम भले ही धीमे से रखा, लेकिन अब ये अपनी रफ्तार से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को रौंदती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम बार बार लगातार बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 400 करोड़ की कमाई के सफर में हनुमान अंश ने कई और रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। गुजरा वीकेंड हनुमान अंश के लिए रिलीज के बाद का 8वां वीकेंड था। 27 सितंबर रविवार यानी कल का दिन फिल्म की रिलीज का 52वां दिन था और हनुमान अंश ने 52वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया। अब रिलीज के 52वें दिन फिल्म ने रिकॉर्ड 9 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। लेकिन एक रिकॉर्ड हनुमान अंश ने ऐसा भी बना दिया जो अभूतपूर्व है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी मूल निवेश पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं।
5: जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती, पार्वती।
6: आस्था की डोर जब इतने विश्वास के साथ थमाई जाती है तो उम्र और ओहदे के पार जाकर वो दिलों को बांधती है, जोड़ती है। हनुमान अंश ने इसी विश्वास को सिनेमा के पर्दे पर पूरी भव्यता के साथ साकार किया है। शायद यही वजह है कि लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। खासतौर पर फिल्म के गाने पिछले कई हफ्तों से हर उम्र के लोगों के दिलों में उतरे हैं, जुबां पर चढ़े हैं।
0: जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो मतलब वो बहुत छोटे बच्चे भी जैसे हैं और उनका जो सोचने का तरीका है वो हर किसी वर्ग के बारे में सोच सकते हैं। तो और उनका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा है, वो खुद भी एक सिंगर हैं, उन्होंने गाना भी गाया हुआ है। तो उन्होंने इतना अच्छा अट्रैक्शन मूवी में डाला हुआ है, उन्होंने 11 सॉन्ग्स डाले हुए हैं गाने में, फिल्म में गाने डाले हुए हैं। और वो जो भी है वो ऐसा है कि वो जेंजीज को पसंद ही आने वाला था, ऐसा उनका भी मानना था और हमने भी जब सुना तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक था।
6: इस जादू का ही नतीजा है कि हनुमान अंश बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मुनाफे के प्रतिशत के लिहाज से ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बात जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की आती है तो सिर्फ कुल कमाई मायने नहीं रखती बल्कि ये देखा जाता है कि फिल्म ने अपनी मूल लागत के मुकाबले कितना गुना मुनाफा कमाया है। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला सीधा है, फिल्म के शुद्ध लाभ का कुल निवेश से भाग देकर 100 से गुणा करने पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है। चलिए अब इसी फॉर्मूला से हनुमान अंश का अब तक का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। हनुमान अंश का कुल बजट यानी निवेश है 2 करोड़ रुपए और अब तक कुल कमाई है लगभग 401 करोड़ रुपए। शुद्ध लाभ निकालने के लिए कुल कमाई से कुल निवेश को घटाया जाता है। इस आधार पर हनुमान अंश का शुद्ध लाभ हुआ लगभग 399 करोड़ रुपए। अब ROI का फॉर्मूला लगाते हुए 399 को 2 से भाग करके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उस हिसाब से हनुमान अंश का अब तक का ROI प्रतिशत हुआ 19,960 यानी लगभग 200 गुना का रिटर्न, 200 गुना का विशुद्ध मुनाफा। ये अद्भुत है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि ROI के आधार पर हनुमान अंश बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मीलों पीछे छोड़ चुकी है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा ROI देने वाली फिल्मों की लिस्ट में 19,960 प्रतिशत के मुनाफे के साथ हनुमान अंश अब पहले नंबर पर है। तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार। लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार और हनुमान अंश के ROI में कई गुना का अंतर है और हनुमान अंश की कमाई अभी जारी है। इसी तरह सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इन फिल्मों की लिस्ट में 2007 में रिलीज हुई भेजा फ्राई तीसरे नंबर पर है। तो वहीं आमिर खान की दंगल भले ही हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन टॉप प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में वो चौथे नंबर पर है। इसी तरह 2022 में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि इतने छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा कमाल करके दिखाया है।
0: बाबा की कहानी जो है ना वो बहुत ही मिरेकुलस भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो बाबा की कहानी है, उनका जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। तो जब उनकी कहानी हम पर्दे पे देख रहे हैं तो क्या जेंजी, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी को वो पसंद ही आने वाली थी। और लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम किसी संत के बारे में कुछ दिखा रहे होते हैं तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होता है, प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं। तो उनकी कृपा रही कि इतना अच्छा प्रोडक्ट निखर के आया कि वो सिर्फ जेंजीज ही नहीं हर वर्ग को पसंद आ रहा है।
6: हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर जिस तरह छोटे बजट का खेल दिखाया है उसके बाद इसकी तुलना 51 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ से हो रही है। 1975 में कम बजट में बनी जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया था कि उस दौर की ब्लॉकबस्टर शोले को भी कड़ी टक्कर मिली थी। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ ने अपनी लागत के मुकाबले करीब 1650% तक का मुनाफा कमाया था और अब 51 साल बाद कम बजट की हनुमान अंश ने भी कुछ ऐसा ही करिश्मा करके दिखा दिया है।
3: मैं समझती कि जो विश्वास विशाल का था कि एक छोटे बजट की फिल्म बनाएंगे रागनी जी, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू दैट इस तरीके की जो फिल्में हैं उनके बहुत नीश ऑडियंस होते हैं, तो वो हम लोग के पैसे को ऐसा नहीं समझ रहे थे कि हम रिस्क करें। और विशाल ने हम लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से इसकी रिकवरी हो सकती है। आई विल जस्ट गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस फिल्म एंड he was the one who was telling us that listen, I mean we can yahan se itna aa sakta hai, yahan se itna aa sakta hai, language mein itna aa sakta hai. So hum log ko aisa lagta tha ki bahut kuch hoga to kya hoga, thoda bahut nuksan bhi agar hoga to koi farak nahi padta, kyunki I think jo bhav aur shraddha se ye film start kari gayi hai aur jis dhang se hum log ek ek karke jaise lag raha tha ki baba pick and choose kar rahe the hum logon ko aur mila rahe the hum logon ko, to hum logon ko pata nahi kyun chinta nahi hui kabhi.
6: किसे मालूम था कि ये फिल्म हर उम्मीद से आगे निकल जाएगी और अभी तो फिल्म की कमाई जारी है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में फिल्म का कलेक्शन किस मुकाम पर पहुंचता है। क्या कमाई की मौजूदा धुआंधार रफ्तार इस फिल्म को 500 करोड़ के पार ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: बरसों के बाद एक धार्मिक फिल्म कमाई के मामले में शानदार मुकाम पर पहुंची और नया इतिहास रच रही है। फिल्म को कैसे मिली है ये कामयाबी, क्या ये महज संयोग है या फिर बाबा नीम करौली का करिश्मा है? फिल्म के निर्देशक, इसके निर्माता और बाल कलाकार से हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी ने खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है इसकी सफलता की कहानी। आप भी देखिए।
8: आमतौर से फिल्में जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे वो नीचे की ओर चलती हैं, लेकिन हनुमान अंश ऐसी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। जिम अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले वो हनुमाना। तो हम फिल्म की निर्माता भी हमारे साथ हैं, अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो इन त्रिदेव से हम बात कर रहे हैं इसमें। ये फिल्म कई लोग पूछ चुके होंगे कि शुरू में उम्मीद थी क्या, लेकिन अब शुरू में अगर फिल्म चलती तो उसको लोग अलग ढंग से लेते, लेकिन इसने जब देर से रफ्तार पकड़ी है तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने पत्थर में पहाड़ पर पांव जमाया और सीधा उड़ चले।
9: हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा तो है ही, मतलब आप अगर देखिए तो कोई लॉजिकल तो है नहीं कि सेकंड वीक में उठी है और फिर जब उठी है तो फिर अब जहां जा रही है वहां जा रही है, उसकी अपनी जर्नी है। आप हनुमान जी कह रहे हैं, मैं महाराज जी कह रही हूँ, सेम है, हम सभी उनके अंश हैं। आई थिंक विशाल और मैं जब बैठते थे तो हम लोग को क्लियरली मालूम था कि डिवोटीज के हमने पिक्चर बनाई है। 50 मिलियन डिवोटीज है महाराज जी के इंडिया में, उसमें हमें लगता था कि एक नंबर जो होनी होता कि लोग बात कब करना शुरू करते हैं जब कुछ लोग साथ में मिलते हैं, तो हम चाहते थे कि डिवोटीज एटलीस्ट 50,000 लोग देख पाए, क्योंकि जो भी पिक्चर उससे पहले देख रहा था उनको पसंद आ रही थी, तो हमें थिएटर के एक्सपीरियंस के बारे में पता था कि वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस है, पर वो नंबर नहीं हम हिट कर पा रहे थे। 2 हफ्ते तक 35,000 लोगों ने ही देखी थी, तो जब तक लेकिन जब वो उठा तो उसके बाद तो आई थिंक हमारे हाथ में सिर्फ आई थिंक श्रोता का प्यार है, सिर्फ तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है,
8: आपके हाथ से भी निकल गया।
9: हाँ बिल्कुल, बता हमारे तो हाथ में है ही।
4: हाँ, तो पहले 2 हफ्ते में तो फिल्म थोड़ी टफ गई थी, पर जो जनता ने पब्लिश किया है तो और लोगों को इंटरेस्ट आ गया हनुमान अंश देखने के लिए। तो जनता के प्यार से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, नीम करौली बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी फिल्म इतनी हिट हो गई है। और मेन तो छोटे बच्चों ने भी शुरू कर दिया देखने के लिए, उनके वो छोटे बच्चे वो भी उनके पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि चलो हम मूवी देखते, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैं थोड़ा नर्वस था कि लोगों को मेरा रोल कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे तो नीम करोली बाबू जी के बारे में पहले पता नहीं था, पर जैसे मुझे पता चला वैसे वैसे मैंने रोल किया। पर बहुत लोगों को मेरा रोल अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए मुझे।
2: बहुत लोगों को नहीं सबको बहुत अच्छा लगा।
9: विहान हैज सर्टन कामनेस अबाउट हिम, उसमें अंदर बहुत स्थिरता है एंड फॉर अ चाइल्ड राइट, एंड वो हमेशा ऑब्जर्व कर रहा था, उसका सीन नहीं भी होता था वो बैठा रहता था हमेशा सेट पे और सबको नोटिस कर रहा था। ही हैज एबिलिटी टू, मेरे को स्पॉन्ज की तरह लगता है वो, और बहुत ही शांत स्पॉन्ज है मतलब हमारे सेट पे बहुत कुछ हो रहा था पर उस सेट में ये हमेशा शांत दिखता था, सो ही लुक लाइक अ आइलैंड कंपेयर टू ऑल ऑफ अस, तो वो एक उसमें इक्वालिटी है।
10: फिर करने के पहले तुम्हें बाबा नीम करोली जी के बारे में कितना पता था और स्पिरिचुअलिटी क्या पहले से की या फिल्म करते करते?
4: तो रोल करने से पहले तो मुझे पता नहीं था कि नीम करोली बाबा जी कौन है, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में बहुत कम लोगों को पता है नीम करोली बाबा जी के बारे में। पर जैसे

0: और जैसे जैसे शूटिंग होती चली गई, सिर्फ मैं मेरे रोल पे नहीं ध्यान देता था, जैसे शूटिंग होती थी तो फिर मुझे स्टोरी भी पता चली कि ये चमत्कार किए बाबा ने, जैसे वो ट्रेन वाला इंसिडेंट, तो मुझे भी थोड़ा एक्साइटेड लगा उनकी स्टोरी। और मेरा भी मतलब यही है मानना कि हनुमान अंश 2 भी आना चाहिए, पर मुझे टेंशन भी है कि अगर मेरा रोल है कि नहीं उस फिल्म में, तो ये टेंशन
1: उसमें फ्लैशबैक लगाएंगे
2: यस हाँ
1: दमादार रोल है। मुझे लगता है कि ये फिल्म फिल्म से आगे बढ़ के बहुत कुछ है, क्योंकि लोग
3: हाँ
1: थिएटर में फिल्म चलने के दौरान फिल्म से पहले हनुमान चालीसा का कोई कल्चर नहीं था, इस फिल्म ने पूरे कल्चर को एक मोड़ दिया।
3: मुझे लगता है एक तो पार्ट ये कि हम जो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो शब्दों में उसका बयान उसको नहीं किया सकता। तो जब फिल्म बनाते वक्त जो मैं जिन भावनाओं से लिख रहा था, शायद वो भावनाएं ट्रांसपायर हो गई और लोगों ने उन भावनाओं को पता नहीं कैसे पकड़ा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि इतना लोग भावनात्मक रूप से कैसे जुड़े इसके साथ में, और उन्होंने कितना ये हनुमान चालीसा पढ़ना, जूते उतारना। आपको बताऊं पहले 2 वीक में लोग जूते नहीं उतारते थे, या हमारी जितनी स्क्रीन हुई यही इस यहां पे भी। अब ये हो रहा है कि अब कीर्तन भी वो थिएटर वाले करने दे रहे हैं, अब जो है वो हनुमान चालीसाएं भी लोग पढ़ रहे हैं, जूते उतार रहे हैं, ऑल्टर बन रहा है। तो ये सब हमारे सोच के समझ से बाहर है, परे है। कहीं ना कहीं एक हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पे एक स्पिरिचुअल प्लेन भी है, जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप सुन सकते हो, आप उसको सिर्फ समझ सकते हो। अगर आपके अंदर वो आप उसको समझ सकते हो, यदि आपके अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू, आपके अंदर अगर वो दृष्टिकोण है तो ही आप उसको देख सकते हो।
1: हनुमान जी के मूर्तियां स्थापित करने का सुंदर कांड के पाप पे बहुत
3: जी,
1: सुंदर कांड आपके इस फिल्म में कितना रोल पड़ा?
3: सुंदर कांड की वो कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुई था तुम पाई, ये लाइन हमने सुंदरकांड की फिल्म के एंड करने के समय इसका प्रयोग किया है। और ये सुंदरकांड भी बहुत सारे महामंत्रों से भरा हुआ एक, जिसे बोलते हैं कि वो पोर्शन है रामचरितमानस का। और इसके अलावा हनुमान चालीसा का हमने बहुत आयत उसमें मात्रा में प्रयोग किया है, जब वो अपने जब महान जी से बात करता है तो हनुमान चालीसा के रेफरेंस देता है कि तुम मेरे भजन राम जी को पावे, है ना। हनुमान चालीसा, वो हनुमान चालीसा का अष्ट सिद्धि नवनीति दाता से जब वो पानी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो 30 चौपाइयां पढ़ चुका है पानी के अंदर, इसलिए वो 31वीं से पढ़ते पढ़ते बाहर निकलता है, ऐसे हमने उसको एस्टेब्लिश किया कि बच्चे ढूंढ रहे हैं। तो हनुमान चालीसा फिल्म के एंड में लास्ट जो फाइनल सिक्वेंस है वो पूरा हनुमान चालीसा के अराउंड ही है। हनुमान चालीसा कैसे पढ़ी जानी चाहिए, क्यों पढ़ी जानी चाहिए।
1: मैंने एक रील देखी जिसमें विदेशी एक तारे पे गा रहे हैं रे भरोसे, वो अपने भाव से गा,
3: मैंने तेरे ही भरोसे। अच्छा था, ब्यूटीफुल, इट वाज गुड, या धन्यवाद।
1: इन सारे लोगों से बातचीत करके सुंदरकांड की यही चौपाई जहन में आती है, जिस विनम्रता से इन सारे लोगों ने सफलता को आत्मसात किया है और महाराज जी का नाम किया, हनुमान जी का नाम किया है, कि उसमें यही समझ में आता है कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा।
4: और देखिए, अगर आपसे भी गलती से फिल्म देखने में आप मिस हो गए हैं, लेकिन थिएटर्स में अभी भी जा सकते हैं क्योंकि ये फिल्म आप सबका इंतजार कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छी खबरें लगातार जा रही है, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मैथिली ठाकुर के सुरक्षित बिहार बयान पर हंगामा। जमुई कांड पर मैथिली ठाकुर ने दिखाई संवेदनहीनता। कर्नाटक में नदी में विसर्जन के लिए तोड़फोड़। बच्चे की मासूमियत ने जीत लिया दिन। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9:00।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम, वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, शूटिंग में ईशा सिंह और 1500 मीटर में गुरमीत सिंह ने जीता सिल्वर, विद्या रामराज, पिंकी और पारुल ने जीता ब्रॉन्ज। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी, मदुरई में मुख्यमंत्री विजय ने शुरू की योजना, केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात को मिलेगा लाभ। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: एशियन गेम्स में उत्तर प्रदेश की बेटी का कमाल, महिलाओं की 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज। भारतीय धावक गुरवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 1500 मीटर रेस में जीता सिल्वर। दाविका विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ में इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेमेंस 25 मीटर पिस्टल में ये भारत के नाम एक पदक, ईशा सिंह ने सिल्वर जीता। भारत के बॉक्सिंग में चौथा मेडल पक्का, लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल्स में जगह बनाई। नेपाल में हिमलुंग हिमालय बेस कैंप में हिमस्खलन, 14 लापता मजदूरों की तलाश जारी। ये मजदूर विदेशी पर्वतारोहियों के लिए टेंट लगा रहे थे जो हिमस्खलन के समय वहां मौजूद नहीं थे। भारी बर्फ के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से लापता मजदूरों की तलाश जारी। फुटबॉल में बचावकर्मी गहरी बर्फ में खुदाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर ओर लापता पर्वतारोहियों और मजदूरों की तलाश की जा रही है। नेपाल अभियान संचालक का संघ के महासचिव और पर्यटन विभाग के महानिदेशक ने भी कहा है कि लापता लोगों को तलाशने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उत्तरकाशी में खराब मौसम और बर्फबारी के बीच फंसे कई पर्वतारोही युद्ध स्तर पर चला जा रहा है रेस्क्यू अभियान। उत्तरकाशी के कालिंदीप के पास में करीब 5 से 7 फीट हुई बर्फबारी। उत्तरकाशी रेस्क्यू मिशन को लेकर हेलीकॉप्टर भी तैनात, मौसम सुधरने के साथ तेज होगा अभियान। प्रशासन ने सभी पर्वतारोहियों को सुरक्षित होने की कही बात, टीमों से लगातार बना हुआ संपर्क। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के पूरे हालात पर नजर, प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को जरूरत सामान उपलब्ध कराने के निर्देश। मौसम साफ होती फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। मंदिर परिसर से लेकर ब्रह्म कपाल तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़। चारधाम श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, होटल्स में यात्रियों ने नाच गाकर और केक काटकर बताया समय। बारिश के बीच होटल कारोबारियों ने यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा। स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षित और खुश नजर आए श्रद्धालु, होटल कारोबारियों के व्यवहार की जमकर तारीफ की। 2 दिन की बारिश थमते ही बर्फ की सफेद चादर में ढक गया केदारनाथ धाम, नजर आ रहा है भव्य नजारा। बर्फ पड़ती धूप और बादलों के बीच झांकती चोटियां मोह रही हैं सभी का मन, श्रद्धालु उठा रहे हैं लुत्फ। ताजा बर्फबारी के साथ केदारनाथ में बढ़ा ठंड का असर, गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ धाम की यात्रा पर मौसम ने लगाया ब्रेक, चिरबासा में पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर। केदारनाथ धाम यात्रियों के लिए प्रशासन ने चला रेस्क्यू अभियान, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील। सांवरिया जी मंदिर में टूटा दान का रिकॉर्ड, गिनती जारी, 8 चरण तक भंडार से निकले 29 करोड़ से ज्यादा रुपए। 8वें चरण में 51,68,630 रुपए की गिनती हुई, भंडार की गिनती अभी कई चरण बाकी हैं। इसमें सांवलिया मंदिर में छोटे नोट और सिक्के भी गिने जा रहे हैं, ऑनलाइन दान का भी हिसाब। सांवलिया सेठ के दरबार में भक्त नगदी के साथ साथ सोने चांदी का भी दान करते हैं, मंदिर में जब आभूषणों की वजन और गणना बाकी है। अमावस्या से एक दिन पहले खोला गया था सांवलिया जी मंदिर का दान पात्र, झलझुलनी मेले के चलते 4 दिन बाद दोबारा गिनती शुरू हुई। प्रयागराज में ई पिंडदान का क्रेज बढ़ा, वीडियो कॉल से हो रहा है ई पिंडदान। पितृपक्ष के दौरान प्रयागराज में दूर दराज से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, मंत्रों की गूंज के बीच श्रद्धालु अपने पितरों को कर रहे हैं याद, उनसे परिवार सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांग रहे हैं। झांसी में लावारिस आत्माओं और 878 परिवारों के पूर्वजों के लिए अनुष्ठान हुआ। पवित्र पिंडों को किया जी में विधि विधान से अर्पित करने के लिए रवाना। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार तक यूं ही खुशगवार रहेगा मौसम, इसके बाद बढ़ेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी से उठे डीप प्रेशर के चलते अचानक आया है मौसम में बदलाव, अभी कुछ दिन और देखने को मिलेगा सुहाना मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में हुई बर्फबारी के कारण भी मैदानों में ठंडा हुआ मौसम। देश के कुछ हिस्सों में अभी भी मानसून सक्रिय है, जिसके चलते कई राज्यों में भी बारिश का दौर। राजस्थान की दिल्ली एनसीआर से मौसम की हो चुकी है विदाई, कुछ दिनों में मौसम में फिर से देखने को मिलेगा बदलाव। भारतीय तटरक्षक दल बने देवदूत, 23 लोगों की बचाई जान। समुद्र में संकट में फंसे बेलीज के झंडे वाले एमटी सीगल 9 टैंकर को किया स्थिर। मुख्य इंजन में खराबी और टैंक में पानी भरने के कारण खतरनाक तरीके से झुक गया था जहाज। दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिना वैध पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। बिना वैलिड पीयूसी की गाड़ी चलाने पर 10,000 तक का जुर्माना। अयोध्या में दीपोत्सव पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने लॉन्च किया 2 रात और 3 दिन के विशिष्ट टूर पैकेज। दिल्ली के एक युवक ने उठाया मुनाक नहर की सफाई का बीड़ा, साथ में जुटे करीब 1600 से ज्यादा वॉलंटियर्स। युवाओं की टीम ने अब तक नहर से साफ किया करीब 50 टन कचरा, 2500 से ज्यादा मूर्तियां भी नहर में पाई गई। 2 दिन के कोलकाता दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कोलकाता में लिया मशहूर झालमुड़ी का स्वाद। सुकमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, हालात का जायजा लिया, लोगों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। बेंगलुरु में हाथी के हमले के पीड़ित परिवार को वन विभाग की ओर से 20 लाख मुआवजे का ऐलान। भारतीय सेना आज मना रही है 200वां गनर्स दिवस। गनर्स दिवस पर सेना ने एक बहुत शानदार और जोश से भरा वीडियो भी शेयर किया, पारंपरिक से लेकर आधुनिक तोपों के सटीक मारक क्षमता का प्रदर्शन। कठिन हालात में भी आर्टिलरी के जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन। आज के दिन ही 1827 में गठित हुई थी 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी। आज देश मना रहा शहीद भगत सिंह की जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करते हुए नमन किया। नागोया में बारिश के चलते भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला क्वार्टर फाइनल मैच रद्द, टीम इंडिया सेमीफाइनल्स में पहुंची। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारियां, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी पूरी तरीके से रोक। तिरुमाला मंदिर पहुंची अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी, विधि विधान के साथ भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना। तिरुमाला मंदिर में अभिनेत्री मीनाक्षी चौधरी को फैंस ने घेरा, साथ में खिंचाई तस्वीर। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट किया जाएगा बंडी शैली का रणसिंगा, एम्स का लोगो भी अंकित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 से 8 अक्टूबर तक करेंगे हिमाचल प्रदेश का दौरा। पूरी जगन्नाथ मंदिर में सुबह भव्य आरती का आयोजन किया गया, भक्तों ने किया दर्शन पूजा। कोटा के युवक ने मुश्किल घड़ी में मदद करने के लिए बनाया मेरा साथी ऐप। पूरे में सैंड आर्टिस्ट ने एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को खास तरीके से बधाई दी, रेत पर उकेरी आकृति। डोडा में पर्यटन को बढ़ावा देने में जुड़े कारोबारी और लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। फरीदाबाद में नशा मुक्त हरियाणा अभियान में मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री सैनी ने दिखाई हरी झंडी। जुनाई का अमृतपुर गांव बना बैट किंगडम। तुकड़ी में बढ़ा नमक का उत्पादन, सूखे मौसम से मिलेगा फायदा। कन्याकुमारी से करगिल पहुंचा भारतीय वायुसेना का साइकिल अभियान, युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगा सोने की अंगूठी। मुख्यमंत्री विजय ने योजना का शुभारंभ किया। सरकारी अस्पताल में पहुंचकर माताओं से मुख्यमंत्री विजय की मुलाकात, बच्चों को भी तलाश। विजयवाड़ा में 72 फीट ऊंची मिट्टी गणेश प्रतिमा को इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन किया गया। झांसी में लावारिस आत्माओं और 878 परिवारों के पूर्वजों के लिए अनुष्ठान किया गया। पवित्र पिंडों को गया जी में विधि विधान के साथ अर्पित करने के लिए रवाना किया गया। हवाई का किलाव ज्वालामुखी सक्रिय हो गया, बहने के लिए गर्म लावा की धाराएं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों का कहना है कि ज्वालामुखी में 23 दिसंबर 2024 से रुक रुक कर विस्फोट हो रहे हैं। किलाऊआ पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और रूप से सक्रिय स्थलों में से एक माना जाता है। डाकारा गोरी क्रॉसिंग प्रतियोगिता के तहत चिलचिलाती धूप में अटलांटिक महासागर में उतरे 900 से ज्यादा तैराक। हर साल होता है इस प्रतियोगिता का आयोजन, लाइसेंस प्राप्त तैराक ही प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। रूस में विशाल कद्दू की रेस, मॉस्को में बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल में अनोखी रेस का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता ने 400-500 किलो के कद्दू को खोखला करके बनाया गया नाव का शेप। रूस में पहली बार पंपकिन बोट रेस का हुआ आयोजन। 500 किलो तक था कद्दू का वजन, उन्हें सावधानी से खोखला किया गया। हार्वेस्ट फेस्टिवल में पंपकिन बोट का आयोजन किया गया। 75 रूसी क्षेत्रों में पहुंची सब्जियां। चिली में लाल बालों वालों की दौड़, सैंटियागो में 3 किलोमीटर लंबी अनोखी रेड हैट्स रेस का आयोजन। रेस में लाल बाल होना बना एंट्री पास। आया विग से बाल लाल करने वालों की भी इजाजत थी, कुछ लोगों ने डाई और विग से बदल दिया अपना लुक। लाल रंग की वजह से पूरा इवेंट खास तरीके से नजर आ रहा था। पत्रकार पेड्रो कैनेल्सिस ने शुरू किया था कोलोरो रन मुहिम। चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को हराकर जीता बिली जीन किंग का खिताब। चेक रिपब्लिक टीम का ये 12वां खिताब। कैरोलिना मुचोवा ने फाइनल में पहले सिंगल्स मैच में जीता दर्ज। विंबलडन चैंपियन लिंडा ने दूसरा सिंगल्स मैच अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया की ये रियानन इफलैंड ने जीता क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड सीरीज का खिताब। पुरुषों ने ब्रिटेन के एडन हैसलॉब बने चैंपियन। मैक्सिको में तूफान पोलो का खतरा, कैटेगरी 3 के तूफान पोलो के चलते मैक्सिको में बढ़ा अलर्ट। स्थानीय लोग तूफान के असर से बचने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। कैबो सैन लुकास में समुद्र तटों पर जाने से मनाही। 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तूफानी हवाएं। अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्री तूफान नॉर्थ ईस्टर ने दस्तक दी। न्यू जर्सी में सड़कों पर बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। न्यू जर्सी के कई इलाकों में पूरी तरीके से जलमग्न। बर्केन काउंटी से केप में काउंटी तक बाढ़ का खतरा।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
5: मैथिली ठाकुर के सुरक्षित बिहार बयान पर हंगामा। जमुई कांड पर मैथिली ठाकुर ने दिखाई संवेदनहीनता। कर्नाटक में नदी में विसर्जन के लिए तोड़फोड़। बच्चे की मासूमियत ने जीत लिया दिन। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: सड़क पर दौड़ते ट्रक तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन चंदौली में पिछले 3 दिनों से सड़क किनारे खड़ा ट्रक लोगों के लिए अजूबा बन चुका है। बेल्जियम से चला ये महाबली ट्रक उड़ीसा होते हुए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जा रहा है और इस पर लदी है बायो पॉलीमर प्लांट की एक बहुत भारी भरकम मशीन। लेकिन चंदौली पहुंचते ही इसके पहिए थम गए, वजह थी आगे का रास्ता। मशीन के आकार और वजन के हिसाब से अगर देखें तो आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ नहीं था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के पास रिंग रोड के नजदीक जब ये महाबली ट्रक रुका तो धीरे धीरे लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बन गया और लोग धीमे धीमे जुटने लगे। देखते ही देखते ट्रक के आसपास ऐसा नजारा देखने को मिला जैसे सड़क किनारे कोई छोटा सा मेला लग गया हो। 3 दिन तक चंदौली में रुकने के बाद आखिरकार इस महाबली ट्रक के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो चला और मशीन को सुरक्षित तरीके से आगे ले जाने के लिए रास्ता तैयार किया गया और फिर शुरू हुई इस विशालकाय ट्रक की अगली मंजिल की ओर यात्रा। अब यह महाबली ट्रक चंदौली से आगे निकल चुका है और जानकारी के मुताबिक बनारस की सीमा तक भी पहुंच चुका है।
2: पानी के जहाज से बेल्जियम से चलकर उड़ीसा पहुंचा बायोपॉलीमर प्लांट का हिस्सा सड़क मार्ग से लखीमपुर खीरी के लिए जा रहा है। फिलहाल यह बड़ा ट्रक और उस पर रखी हुई यह मशीन चंदौली पहुंची है। चंदौली में पिछले 2 दिनों से यह मशीन पहुंची है। रास्ता बनाया जा रहा है आगे जाने के लिए। लखीमपुर के कुंभी में बलरामपुर शुगर मिल की एक सिस्टर कंपनी है जहां पर चीनी मिल में इसको स्थापित किया जाना है। इससे जो है वो बायोप्लास्टिक का निर्माण किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यह विशाल ट्रक और उस पर रखी विशाल मशीन जहां भी पहुंच रही है वहां देखने वालों की हुजूम उमड़ रही है। आप देख सकते हैं तमाम ये युवा हैं, बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में मोबाइल फोन है, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
3: नीलम देवी।
2: आप क्या देख रही हैं यहाँ पर? क्या देख रही
3: हैं? ये वायरल ट्रक देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है देखने में और वो काफी भीड़ लगी है, भीड़ देख और मजा आ रहा है।
2: कहाँ की रहने वाली हैं?
3: मैं यहीं की हूँ।
2: हाँ सर, आपको पता चला तो आप आ गई देखने के लिए। इतना बड़ा ट्रक और इतनी बस बड़ी मशीन आपने देखा था पहले कभी?
3: अभी नहीं, कभी नहीं देखे थे ना सुने थे, आज पहली बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं।
2: आप देखिए ये तमाम लोग हैं जो सेल्फी ले रहे हैं इस बड़े सी मशीन के साथ। हम आपको पीछे की तरफ भी दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर रास्ता बन रहा है। अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मशीन यहां पर रुकी हुई है। और चंदौली की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश कर चुकी थी मशीन 2 दिन पहले, लेकिन रास्ता बनाना पड़ रहा है। रास्ते थोड़ा सा कठिन है इसके लिए, किस तरह से पार होगा तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। हम आपको दिखाते हैं, ये भीड़ देखिए, भीड़ का आलम यह है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी तमाम जो है खास करके बच्चों में इन सब चीजों को लेकर के काफी उत्साह है, उत्साह दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे, देखिए सामने ये ट्रक खड़ा है और उसके ठीक सामने जेसीबी मशीन से इसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यह ट्रक फिलहाल चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के पास रिंग रोड पर रुका हुआ है और रास्ता बनाया जा रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जेसीबी मशीन लगा करके तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं और रास्ता बनाया जा रहा है ताकि ये ट्रक जो है सकुशल आगे के लिए रवाना किया जा सके। उदय गुप्ता।
1: रूस की राजधानी मॉस्को में कुछ लोग पंपकिन लेकर तालाब में उतर गए हैं। जी हाँ, लेकिन ये कोई आम कद्दू नहीं थे, इनका वजन 400 से 500 किलो तक था। बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल में लोगों ने इन विशाल पंपकिन को खोखला करके नाव का पहले रूप दिया और फिर शुरू हुई अनोखी रेस।
4: मॉस्को में सितंबर की ठंडी हवा, तालाब का शांत पानी और इस खूबसूरत माहौल में यहां चल रहा है बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल। दिलचस्प ये कि ये नावें लकड़ी या फाइबर की नहीं, सैकड़ों किलो वजनी विशाल कद्दू से बनी हैं। बैटल ऑफ द जायंट्स फेस्टिवल में विशाल कद्दूओं को अंदर से खोखला किया गया, फिर उन्हें सजाकर बनाई गई है ये खूबसूरत नाव। कद्दू जितना बड़ा चुनौती भी उतनी ही बड़ी, कहीं चेतावनी का बोर्ड तो कहीं पूरी तैयारी के साथ रेस में उतरने का जोश। किसी के लिए ये सालों की मेहनत का नतीजा है तो किसी के लिए बस एक ऐसा मौका जिसमें मस्ती भी है और मुकाबला भी। 400 से 500 किलो तक के कद्दू जब पानी में उतरे तो तालाब देखते ही देखते बन गया पंपकिन रेस ट्रैक और फिर शुरू हुई अनोखी सवारी। कद्दू के अंदर बैठे प्रतियोगी पैडल के सहारे आगे बढ़ते रहे। किसी ने चुना डरावना लुक तो किसी ने बच्चों के पसंदीदा किरदारों की पोशाक। किनारे खड़े दर्शकों के लिए भी ये किसी तमाशे से कम नहीं था। पानी पर तैरते विशाल कद्दू और उनके अंदर बैठे रंग बिरंगे किरदार। ये सिर्फ रेस नहीं, विशाल कद्दू उगाने वालों के लिए अपनी मेहनत को नए अंदाज में पेश करने का मौका भी है। तालाब में उतरते ही इन कद्दूओं ने पूरे फेस्टिवल का रंग ही बदल दिया और अब बारी थी इसे मुमकिन बनाने वाले आयोजक की कहानी सुनने की। रूस के 75 इलाकों से आए बागवान 200 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सब्जियां, लेकिन महफिल लूट गए ये जायंट कद्दू जो कद्दू खेतों में उगते हैं। मॉस्को के तालाब में वही नाव बनकर तैरते नजर आए। किसी ने इन्हें सजाया, किसी ने इन्हें बैठकर रेस लगाई और किसी ने अपनी बचपन की पोशाक पहनकर इस पल को और खास बना दिया। कहने को ये कद्दू हैं, लेकिन मॉस्को में इनका अंदाज बिल्कुल अलग था, जहां कद्दू सिर्फ सब्जी नहीं रहा बल्कि नाव भी बना और रेस का अहम किरदार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मैथिली ठाकुर के सुरक्षित बिहार बयान पर हंगामा, जमुई कांड पर मैथिली ठाकुर ने दिखाई संवेदनहीनता, कर्नाटक में नदी में विसर्जन के लिए तोड़फोड़, बच्चे की मासूमियत ने जीत लिया दिल, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
11: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
12: दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम, वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, शूटिंग में ईशा सिंह और 1500 मीटर में गुलवीर सिंह ने जीता सिल्वर, विथ्या रामराज, पिंकी और पारुल ने जीता ब्रॉन्ज। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोनी की अंगूठी, मदुरई में सीएम विजय ने शुरू की योजना, केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात को मिलेगा लाभ। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
12: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। पितरों के आशीर्वाद पाने के शुभ दिन चल रहे हैं। झांसी से पितृ सेवा की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसने श्रद्धा के साथ साथ इंसानियत का भी संदेश दिया। यहां उन अज्ञात अनाथ और लावारिस दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया गया। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, पूर्वजों के आत्मा की शांति मोक्ष के लिए पिंडदान। पितृपक्ष में आमतौर पर लोग अपने माता पिता, दादा दादी और परिवार के अन्य दिवंगत पूर्वजों को याद करते हुए उनकी शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं, लेकिन झांसी में उन दिवंगत आत्माओं को भी याद किया गया जिनका इस दुनिया में शायद कोई अपना नहीं बचा है।
13: पक्ष वो समय जब हर कोई अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करता है, कोई माता पिता के लिए तर्पण करता है तो कोई दादा दादी और परिवार के दूसरे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करता है। इस समय में किए गए दान से दोगुना फल मिलता है। पितृपक्ष में जब हर परिवार अपने पूर्वजों को याद कर रहा है तब झांसी में पितृ सेवा की एक अनूठी पहल देखने को मिली। यहां पहुंच नदी के तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सामूहिक पिंड पूजन किया गया। यहां सिर्फ अपने परिवार के दिवंगत पूर्वजों के लिए ही पिंड अर्पित नहीं किए गए बल्कि उन आत्माओं को भी श्राद्ध से याद किया गया जिनका इस दुनिया में शायद कोई अपना नहीं बचा।
14: देखिए, जिनका संसार में कोई नहीं है, अज्ञात अनाथ लावारिस या जिनका कोई और नहीं है संसार में, उनका आज हमने झांसी के सिपरी बाजार पहुंच नदी पर पिंड पूजन का काम किया और कल हम लोग 8:30 बजे चंबल एक्सप्रेस से उनका पिंडों को लेकर, पवित्र पिंडों को लेकर तीर्थराज ग्याजी में पिंडदान करने के लिए जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि उसके साथ साथ वो परिवारों का भी पिंड लेकर मैं जा रहा हूं जो किसी कारण पर तीर्थराज ग्याजी नहीं जा सकते। एक बुजुर्ग माताजी हैं, मान लीजिए 80 वर्ष की, उनका संसार में कोई नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ले लो, किसी की शारीरिक समस्या, कोई बीमार है, कोई आर्थिक समस्या, गरीब लोग भी ऐसे हैं जो नहीं जा सकते, किसी की आस्था बहुत है लेकिन असमर्थ है जाने में ग्याजी।
13: झांसी में दिवंगत आत्माओं के लिए भी पिंड पूजन किया गया जो ये संदेश देता है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, इंसानियत का रिश्ता भी किसी को याद करने और सम्मान देने के लिए काफी है। जाहिर है इंसान का जीवन केवल उसके कर्मों की कहानी भर नहीं है, बल्कि उन पीढ़ियों की विरासत भी है जो हमसे पहले इस धरती पर आई, और पितृपक्ष सदियों से उसी विरासत को नमन करने का मौका है। तभी तो गया जी के देवघाट पर पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मौसमी चुनौतियों के बीच पूजा पाठ जारी है और बारिश को देवताओं और पितरों का साथ माना जा रहा है। गया जी के अलावा तर्पण और पिंडदान की पूजा ज्यादातर पवित्र नदियों और शहरों में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं कि काशी के पिशाच मोदन कुंड की, जहां पितृ पक्ष के दौरान खूब चहल पहल है, बड़ी संख्या में लोग पिंडदान के लिए पहुंच रहे हैं। पितृ पक्ष में जब हम श्रद्धा के साथ अपने पितरों का समर्पण करते हैं तो ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं रह जाता, बल्कि पूर्वजों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने के साथ ही आभार और अपने मूल से जुड़ने की एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है।
15: मतलब जिस तरीके से मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु, किसी तरीके से वो सभी जो है करें, और उनके अच्छे नेक कामों के लिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके काम करके उनका जीवन सफल बनाएं और उनका आशीर्वाद मिले, जो भविष्य में भी हमको अगले जन्म में भी अगर मिले तो माता पिता ऐसे ही मिले।
13: प्रयागराज में पितृपक्ष के दौरान पितृ पूजन और तर्पण की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है। यहाँ पंडित और महत समाज की ओर से विधि विधान के साथ पितरों का स्मरण और पूजन किया जाता है।
16: इस 15 दिवसीय पितृपक्ष में पितरों का आगमन होता है और वो आते हैं, देखते हैं हम सभी को कि हम सभी ने अपने दायित्वों को किस प्रकार निभाया है, उनके दिए हुए सम्मान, उनके दिया हुआ नाम आज हम सब लेकर जी रहे हैं। तो इस 15 दिन आप सभी अपने पितरों को याद करें।
13: संगम की पावन धरती पर होने वाला ये पितृ पूजन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने की परंपरा से भी जुड़ा है। इस परंपरा के तहत उन पितरों को भी स्मरण किया जाता है जिनके परिवार के लोग किसी वजह से पहुंच नहीं पाते, और सामूहिक रूप से उनके निर्मित तर्पण और पिंड पूजन किया जाता है। गयाजी से पंकज कुमार, झांसी से अजय झा, वाराणसी से रोशन जायसवाल, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बर्फ से ढकी चोटियां और खूबसूरत वादियों से घिरा लद्दाख इन दिनों फेस्टिवल के रंग में रंगा हुआ है। लद्दाख की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक खेल और साहस के लिए कलाकारों को एक मंच मिला है। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है संस्कृति और परंपरा के रंगों से सजा लद्दाख महोत्सव। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख में इन दिनों 3 दिवसीय लद्दाख फेस्टिवल चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकार और पर्यटक हिस्सा ले रहे हैं। ये वो मौका है जब सैलानियों को लद्दाख की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। इस साल लेह में पहली बार महिला हॉर्स पोलो का मुकाबला भी आयोजित किया गया है।

0: लेह की सड़कें इन दिनों संस्कृति के रंगों से रंगी हुई है। कहीं पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं, कहीं लोक संगीत के धुन पर्यटकों का मन मोह रही है। लद्दाख महोत्सव में सिर्फ संगीत और नृत्य ही नहीं, घुड़सवारों की कला से लेकर तीरंदाजी, पोलो टीमों के रोमांच से लेकर स्थानीय कारीगरों की कला तक लद्दाख की विविधता के कई रंग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग सामुदायिक समूह अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और यहाँ पहली बार महिला हॉर्स पोलो का मुकाबला आयोजित किया गया। लद्दाख की पारंपरिक खेल विरासत के बीच महिलाओं की भागीदारी ने इस आयोजन को एक नई पहचान दी है।
1: शनिवार से लद्दाख में शुरू हुए 3 दिन के लद्दाख फेस्टिवल के दौरान महिलाओं ने पोलो खेला। पोलो यूं तो सदियों से हर दुनिया के देश में खेला जाता है, लेकिन हिमालयाई राज्यों और देशों में पोलो अलग तौर तरीकों से रिवायती तौर खेला जाता है, लेकिन इस पर मर्दों का वर्चस्व था। लेकिन पहली बार लद्दाख में लद्दाख फेस्टिवल के दौरान महिलाओं ने भी पोलो में हाथ आजमाए। देश भर की घुड़सवार महिलाओं ने पोलो खेलकर महिला शक्तिकरण का सबूत दिया।
0: मैदान में घोड़ों पर सवार महिला खिलाड़ियों का आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है। हाथों में पोलो स्टिक, नजरें गेंद पर और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए घोड़ों की तेज रफ्तार पर्यटकों का रोमांच बढ़ा रही है। हॉर्स पोलो ऐसा खेल है जिसमें घुड़सवारी के कौशल के साथ साथ संतुलन, एकाग्रता और तेजी से फैसला लेने की क्षमता भी जरूरी होती है। और जब ये खेल लद्दाख की धरती पर महिला खिलाड़ियों ने प्रदर्शनी मुकाबले के लिए पेश किया तो इसने दर्शकों के लिए खास अनुभव तैयार कर दिया। दरअसल लद्दाख की संस्कृति और परंपरा के रंगों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हर साल लद्दाख फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल 26 से 28 सितंबर तक 3 दिन के उत्सव का आयोजन चल रहा है। इसमें देश के अलग अलग कोने से आए कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर LG विनय कुमार सक्सेना ने कहा, ये फेस्टिवल सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, जीवन कला और बेमिसाल जज्बे का जश्न है।
2: लद्दाख महोत्सव सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, जीवंत कला और आप सभी के बेमिसाल जज्बे का जश्न है। लद्दाख मतलब सिर्फ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और नीचे झील नहीं है। लद्दाख इन वंडर्स से कहीं अधिक आगे है। यह साहस, शांति, अध्यात्म और एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता प्रतीक है। सिंधु नदी के पवित्र लहरों से लेकर इन बर्फीली चोटियों तक लद्दाख के कणकण में एक अनूठी ऊर्जा बहती है।
0: लद्दाख की परंपराओं में यहाँ के खान पान, पहनावे, संगीत और खेलों की खास जगह है। ऐसा आयोजन स्थानीय विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने और देश दुनिया के लोगों को लद्दाख की सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराने का मौका देते हैं। साथ ही ऐसे फेस्टिवल स्थानीय कलाकारों, खिलाड़ियों और समुदायों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देते हैं और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने का एक बड़ा जरिया बनते हैं। श्रीनगर से अशरफ पानी, गुड न्यूज टुडे।
3: राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा एडिशन चल रहा है। इसमें दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें अमेरिका का F-35 विमान भी हिस्सा ले रहा है। ऐसे में आज की जो हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिकी F-35 का आकर्षण। जी हाँ, आपको बता दें कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार अमेरिका के 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट F-35 भी हिस्सा ले रहा है। इस युद्धाभ्यास में दुनिया की बड़ी शक्तियां भी शामिल हैं।

0: 8 देश, 80 आधुनिक एयरक्राफ्ट और 1500 जवान, ये है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की ताकत, जिसका प्रदर्शन इन दिनों जोधपुर के आसमान में शुरू हो चुका है। इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा 7 मित्र देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रहे हैं।
1: ऐसे तरंग शक्ति में तकरीबन 40 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 8 एक्टिव देश हैं और 32 ऑब्जर्वर देश हैं, जिसमें दुनिया के आधुनिकतम जहाज मोस्ट मॉडर्न एयरफोर्स हिस्सा ले रही है। आपस में मिलकर किस तरह से लड़ाई लड़नी है, किस प्रकार से मिलकर हम भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को समझना, स्टेल्थ, ईडब्ल्यू, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, इसको सभी एंगल्स को देखते हुए ये एक्सरसाइज हो रही है। जो
0: इस युद्धाभ्यास के दौरान अलग अलग देशों के ये लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरकर रणनीतिक तालमेल और हवाई युद्ध की बारीकियों को आपस में साझा कर रहे हैं, ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जैगवार जैसे लड़ाकू विमानों को उतारा गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हवा में ही ईंधन भरने वाले एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी शामिल किए गए हैं।
1: इससे न केवल हमारी देश की जो प्रोडक्ट है, देश की जो जहाज, जो हेलीकॉप्टर, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी जो ताकत है उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ने पर किस प्रकार से मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, एयरफोर्स की बारीकियां, लड़ने का तरीका, डॉग पॉइंट, किल चेन, सब चीजों के ऊपर रिहर्सल किया जाएगा।
0: खास बात यह है कि इस साल के तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना का 5वीं जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट F-35 आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो पहली बार इस मेगा एयर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। यही वजह है कि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी जोधपुर पहुंचे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना की भागीदारी को लेकर खुशी जाहिर की है।
1: F-35 एक बहुत ही आधुनिक स्टेल्थ जहाज है, मल्टी रोल जहाज है, जिसके द्वारा किस प्रकार से हम कम्युनिकेट करेंगे, डाटा शेयर करेंगे, किस प्रकार से लॉजिस्टिक्स होंगे, किस प्रकार से हम मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं, ये सब के द्वारा भारत की एयरफोर्स को काफी सीखने का मौका मिलेगा और उनको भारत के एक्सरसाइज सिंगरूर में जो अनुभव है, किस प्रकार से पाकिस्तान को हमने खत्म कर दिया, उनकी एयर बेसिस को खत्म कर दिया, ज्वाइंट ऑपरेशन किस प्रकार से किया, वो सीखने का मौका।
0: ये एक्सरसाइज 12 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान एक साथ गरजते लड़ाकू विमान केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन भर नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर की प्रमुख वायु सेनाओं के साथ भारत के मजबूत होते रक्षा संबंधों की एक बुलंद तस्वीर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण चल रहा है। इस बार ट्रेड शो में 2400 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस बार की थीम बेहद खास है। इस बार ट्रेंड शो की थीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन, यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ इस बार ट्रेंड शो में यूपी का खान पान भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक जिला एक व्यंजन का जादू। जी हाँ, इस ट्रेड शो में यूपी के अलग अलग जिलों के खान पान की खास चीजें प्रदर्शित की जा रही है, जिसमें एक है उन्नाव की कुशली। तो आइए आपको दिखाते हैं ट्रेड शो में कुशली का जादू।
3: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का हमेशा से मकसद रहा है कि जो भी छोटे छोटे व्यापारी हैं उन्हें बड़ा मंच दिया जाए, उस बड़े मंच पर देश विदेश के लोगों से मिले और अपने कारोबार को देश विदेश तक पहुंचाएं। लेकिन इस बार आपको इस ट्रेड शो में कई नई चीज़ें मिलेंगी। इस बार वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये स्टॉल है उन्नाव की एक लोकल मिठाई है, इसका नाम कुशली है। ये नाम भी शायद आपने पहली बार सुना हो और यही ब्यूटी है इस ट्रेड शो की कि जो नाम भी कभी बहुत दूर तक ना गया हो उस नाम को विदेश तक लेके जाना है, देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना है। ये मिठाई आप देख रहे हैं, इस मिठाई को भी अमूमन जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो नहीं जानते हैं, बहुत शायद ये कहीं मिलती हो। नाम भी इसका बड़ा अनोखा है, कुशली। और संदीप जी हैं जो कि उन्नाव के रहने वाले हैं, उन्नाव की ही, आप सोचिए कि यूपी का इतना छोटा सा जिला है उन्नाव, लखनऊ से सटा हुआ है, लखनऊ कानपुर के बीच में, वहाँ से ये अपनी इस लोकल मिठाई को लेके आए हैं। उन्नाव से दिल्ली तक का सफ़र, उस मिठाई को यहाँ तक लाए जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं।
4: अरे इसकी बात ही अलग है, बता रहे हैं, मतलब जब से हमने इसको खाना स्टार्ट किया तब से लग रहा है कि यहाँ कोई चीज़ है जो कि मतलब एक अलग ही है इसमें। और ये अपने उन्नाव जिले के बक्सर में बिल्कुल प्रसिद्ध है मिठाई, चंद्रिका माता में है ये, मतलब इसकी सेल वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा है कि जिसका कोई सीमा नहीं है।
3: चंद्रिका माता का एक मंदिर है और चंद्रिका माता के मंदिर का मुख्य प्रसाद ही यही है, वहाँ पर ये हाथों हाथ बिकता है, कहते हैं कि यही माता को सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है। आप भीड़ देखिए यहाँ पर, क्यों इतनी भीड़ है, क्योंकि जिस तरह की ये मिठाई दिख रही है ऐसा कुछ यहाँ मिलता नहीं है, इन सब के लिए ये बहुत नया है।
2: सहारनपुर में हुनर और हौसले ने दो युवतियों को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। कभी घरों में शौक के तौर पर इस्तेमाल होने वाला क्रोशिया और रिबन अब इनके लिए कमाई का जरिया बन गया है। आयुषी धीमान ने प्राइवेट नौकरी छोड़कर महज 250 रुपए से क्रोशिया का काम, अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। वहीं खुशी धीमान ने घर में पड़े रिबन से डिजाइन तैयार करने की शुरुआत की और धीरे धीरे इसे बिजनेस का रूप दे दिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है दो बेटियों के हुनर हौसले से आत्मनिर्भरता की कहानी। जी हाँ, आपको बता दें कि सहारनपुर की दोनों बेटियां घर से ही अलग अलग तरीके से हैंडमेड प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। आयुषी ने बीकॉम, एमकॉम और बीएड की पढ़ाई की है, लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू करने का फैसला किया। करीब एक महीने पहले उन्होंने अपनी कॉलेज फ्रेंड के लिए क्रोशिया से सनफ्लावर की रिंग बनाई थी। ये छोटा सा गिफ्ट उनकी दोस्त को इतना पसंद आया कि इसके बाद आयुषी के पास की रिंग और दूसरे प्रोडक्ट के ऑर्डर आने लगे। आज वो क्रोशिया से की रिंग, पाउच, फोन चार्म, फूलों के बुके, जैकेट, स्वेटर और स्टफ टॉयज तक तैयार कर रही हैं। जबकि खुशी ने सोशल मीडिया पर रिबन से बने प्रोडक्ट का वीडियो देखा और घर में रखे रिबन से खुद बनाने की कोशिश की। जब पहली बार प्रोडक्ट तैयार हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर भी हुनर है जिसे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने रिबन बुके, की रिंग और कस्टमाइज्ड गिफ्ट हैम्पर बनाना शुरू कर दिया।
5: बनाने का मैं किचन्स बनाती हूँ, मैंने जैकेट्स भी बनाई हैं, स्वेटर्स बनाए हैं मैंने, मैं स्टफ टॉयज होते हैं जो बनीज होते हैं, रैबिट्स होते हैं, ये भी बनाए मैंने, और फ्लावर्स बनाती हूँ मैं, बुकेज जो क्रोशे के फ्लावर्स होते हैं उनके बुकेज भी मैं बनाती हूँ। और जितने भी अभी तक मैंने ऑर्डर बनाए हैं तो सब सक्सेसफुल रहे हैं, कस्टमर एकदम खुश होके गया है। पहले मेरे घर में रिबन्स पड़े हुए थे तो मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी, तो उस वजह से उसकी मैंने इंस्पिरेशन ली उससे, फिर मैंने उसको बना के देखा तो उससे बन गया। अब फिर मैंने कुछ टाइम से सोचा कि अब जब ये मुझसे बन चुका है, मेरे अंदर थोड़ा बहुत जो भी टैलेंट है मैं उसको दुनिया को दिखा सकती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने वो स्टार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद मैं जैसे पेटियाँ, वो चिप्स वगैरह की जो पेटियाँ होती हैं, मैं उनको काट काट के बॉक्सेस बनाती हूँ, जिसमें मैं अपने जो भी अगर कोई मुझसे कस्टमाइज कराता है हैम्पर, तो मैं उसमें जो भी है जैसे इयररिंग्स वगैरह ये हो गए, मैं उसका एक हैम्पर बनाती हूँ, आपने भी देखा जो गिफ्ट हैम्पर जिसको बोलते हैं, मैं वो भी बना देती हूँ।
2: अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं, कई लोगों के लिए ये आत्मविश्वास से जुड़ा सवाल भी है। कई युवा पढ़ाई और हुनर में अच्छे होते हैं लेकिन अंग्रेजी बोलने में झिझक या फिर अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने में परेशानी उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। इसी जरूरत को समझते हुए मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड उपजीत सिंह ओबराय लोगों को स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है रिटायरमेंट के बाद स्कूली बच्चों को दे रहे अंग्रेजी का ज्ञान। जी हाँ, आपको बता दें अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग ले रहे

0: अंग्रेजी बोलने में झिझक, आत्मविश्वास की कमी और अपनी बात दूसरों के सामने रखने में परेशानी, ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो कई बार काबिल लोगों के लिए भी आगे बढ़ने में रुकावट बन जाती हैं। लेकिन नोएडा का एक व्यक्ति सरकारी स्कूल के बच्चों की अंग्रेजी बोलने की झिझक तोड़ने में जुटा है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं, कई लोगों के लिए यह आत्मविश्वास से जुड़ा सवाल भी है। कई युवा पढ़ाई और हुनर में अच्छे होते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलने में झिझक या अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने में परेशानी उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। ऐसे बच्चों की झिझक को खत्म करने में जुटे हैं उपजीव सिंह ओबेरॉय। रिटायरमेंट के बाद उपजीव सरकारी स्कूल के बच्चों, खास करके लड़कियों को अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं।
1: उपजीव सिंह ओबेरॉय जी हैं, जो कि मर्चेंट नेवी से रिटायर हैं, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो सरकारी स्कूल के बच्चों के पास जाएंगे और उन्हें स्किल ट्रेनिंग देंगे। पिछले लगभग 5 साल से वो लगातार इसी काम को कर रहे हैं। अभी भी हम गाजियाबाद के एक सरकारी स्कूल में हैं और यहाँ पर आप देखिए, जो तमाम बच्चे हैं उनके हाथ में इंग्लिश की एक शीट है और उस शीट के जरिए भी उन्हें पढ़ाया जा रहा है और कैसे बातचीत करें ये भी उनको सिखाया जा रहा है।
0: उपजीव स्कूली बच्चों को न केवल अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि वो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करने में भी मदद करते हैं। वो बच्चों को अंग्रेजी में बात करना सिखाते हैं और कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े पहलुओं पर भी काम करते हैं।
2: बस इंग्लिश इज अ ट्रेडिंग लैंग्वेज, इसके बिना काम नहीं होता। तो इंग्लिश और हिंदी के बीच में हम ब्रिज करते हैं इनको, तो हम इनको इंग्लिश सिखा दें, ये कन्वर्सेशन अपनी इंग्लिश में शुरू कर दें, और ये कॉरिडोर की जो लैंग्वेज होती है इनको इंग्लिश में हम कराने की कोशिश करें।
0: कई बार लोगों के पास हुनर होता है, लेकिन उसे दूसरों के सामने सही तरीके से रखने का आत्मविश्वास नहीं होता। उपजीव सिंह ओबेरॉय की ये पहल इसी गैप को भरने की कोशिश है, जहाँ लोगों को सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ खुद को एक्सप्रेस करना सिखाया जा रहा है। इसके लिए बच्चों को कई छोटे छोटे टिप्स दिए जाते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में कम्युनिकेशन स्किल्स की अहमियत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मुफ्त में स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग उन लोगों के लिए एक मौका है जो सीखना चाहते हैं, लेकिन महंगी कोचिंग और ट्रेनिंग का खर्च नहीं उठा सकते। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल भी मानती हैं कि इससे बच्चों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है।
3: हाँ, पहले की तुलना में अब के बच्चों को देखने में बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है। जैसे कि पब्लिक स्कूल के बच्चों में एक कॉन्फिडेंस होता है, और यहाँ के बच्चे अपने गवर्नमेंट स्कूल के, उनको लगता है कि पब्लिक स्कूल के बच्चों के सामने हम कैसे बात करें, तो वो सब अब उनका जो हेजिटेशन है वो खत्म हो गया है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना बात रख पाते हैं।
0: कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और अगर सीखने का मौका मुफ्त में मिले तो ये मौका किसी के झिझक को आत्मविश्वास में बदल सकता है। उपजीव सिंह ओबेरॉय की पहल इसी बदलाव की एक कोशिश है। मनीष चौरसिया, गाजियाबाद, गुड न्यूज टुडे।
4: सितंबर खत्म होने को है और मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। पिछले 2-3 दिनों से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो फिलहाल जारी है, और पहाड़ों पर बदले मौसम से मैदानी इलाकों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में गुलाबी ठंड की दस्तक। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चांदी सा चमकने लगा है। तो वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब के साथ ही उत्तरकाशी में भी बारिश और बर्फबारी से माहौल सर्द हो गया है।
5: हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मौसम का तेवर बदला तो काजा, चीचम, पिन घाटी, लांगजा समेत आसपास ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह सुबह बर्फबारी हुई, तो देखते ही देखते इसने आसपास के ऊंचे क्षेत्रों को भी अपने आगोश में ले लिया। मॉनसून के जाते जाते इस पहली बर्फबारी ने तापमान गिरा दिया। पूरी स्पीति घाटी का माहौल सर्द हो गया है, तो वहीं लाहौल घाटी में तो बर्फबारी कुछ दिन पहले से ही हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 29 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो तापमान और गिरेगा, इसलिए एहतियातन स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी अचानक मौसम बदला, जिसके बाद से ऊंचे क्षेत्रों में खूब बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में लगातार बारिश ने तापमान काफी गिरा दिया है। यहां गोमुख ट्रैक के चीड़वासा, भोजवासा और

0: गोमो क्षेत्र में बर्फबारी हुई है, तो वहीं भारत चीन सीमा से लगे निलांग जादुंग क्षेत्र में भी बर्फबारी की खबर है। यकीनन मौसम खराब है, इसलिए यहां भी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा फिलहाल स्थगित है। तो वहीं इसी राज्य के चमोली जिले में बना हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी दिनों बर्फबारी से गुलजार है। जिधर नजर डालिए वहां बर्फ का राज है, मानो प्रकृति ने इस पूरे इलाके का ही अपने हाथों से सफेद श्रृंगार किया हो। लेकिन इस बर्फीले मौसम पर आस्था भारी है, श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। चमोली जिले में दरअसल शुक्रवार देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, ऐसे में भारत चीन सीमा से लेकर बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। कई जगह पर तो एक फीट से ज्यादा बर्फ जमा है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश ने तापमान गिराया हुआ है। हालांकि मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए अस्थायी तौर पर चारधाम यात्रा रुकी हुई है, बावजूद इसके भगवान बद्री विशाल के आंगन में आस्था पार है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दौरान कई श्रद्धालु पितृतर्पण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसे में ठंडे मौसम की ये मुश्किलें आस्था के आड़े नहीं आ रही। दरअसल मौसम का ये चक्र पलटने का असल जिम्मेदार देश के मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस भारी बारिश की वजह से लो प्रेशर बेल्ट क्षेत्र बना, यानी जिस क्षेत्र में वायुमंडलीय दबाव कम होता है, इस लो प्रेशर बेल्ट ने ही अब पहाड़ी राज्यों और हिमालय क्षेत्रों का रुख किया हुआ है, जिससे उम्मीद है कि पहाड़ी राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का माहौल बना रहेगा। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: सोने का भाव हुआ कम, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट का राज, पूर्वजों का कर्ज चुकाने का मौका, दिल्ली में बंगाल की संस्कृति की झांकी, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
1: फ्लिपकार्ट ने अपनी आने वाली बिग बिलियन डे सेल के प्रमोशन के लिए नया कैंपेन लॉन्च किया है। इसके लिए कंपनी ने बेंगलुरु के मैजेस्टिक मेट्रो स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ओओएच इनोवेशन पेश किया है। पारंपरिक स्ट्रैटिक बिलबोर्ड या डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल करने के बजाय यहां पर प्रमोशनल टीम ने प्लेटफॉर्म के सामने वाली दीवार को एक चलती हुई फ्लिपकार्ट ब्रांडेड ट्रेन में बदल दिया है, जिससे ऐसा आभास होता है कि सचमुच कोई मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर आ रही है। इस कैंपेन ने स्टेशन पर मेट्रो के इंतजार को यात्रियों के लिए एक यादगार और चौंकाने वाला अनुभव में बदल दिया है। इसे अंजाम देने के लिए प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी, मोशन और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे विज्ञापन का अनुभव लगभग असली जैसा लग रहा है। ये इनोवेशन स्टेशन के बाहर ही लोगों का ध्यान तेजी से खींच रहा है। इस एक्टिवेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं और ये बीबीडी ट्रेन वायरल हो रही
2: है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम, वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, शूटिंग में ईशा सिंह और 1500 मीटर में गुलवीर सिंह ने जीता सिल्वर, विथे रामराज, पिंकी और पारुल ने जीता ब्रॉन्ज। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे परखे, बिना जांचे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि जमुई कांड पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने असंवेदनशील बयान देते हुए कहा कि वो खुद एक लड़की हैं और बिहार में बहुत सुरक्षित हैं। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में विसर्जन के दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। इस खबर की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
1: क्या सत्ता मिलते ही नेता संवेदनहीन हो जाते हैं? क्या जनता से जुड़े मुद्दे उनके लिए मायने नहीं रखते? ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है, और दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने जमुई की घटना पर बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। बिहार के जमुई में 19 सितंबर को एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, और इस केस में मुख्य आरोपी नंदन यादव सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस पर लगातार सियासत हो रही है, और इसी बीच मैथिली ठाकुर का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि मैथिली ठाकुर ने बयान दिया है कि वो खुद एक लड़की हैं और बिहार में बहुत सुरक्षित हैं। इस बयान पर मैथिली ठाकुर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। इसीलिए इसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी हो गया था। क्या सच में मैथिली ने ऐसा बयान दिया है? देखिए रिपोर्ट।
2: हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, और मैं खुद लड़की हूँ, और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज।
3: बिहार के जमुई कांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी नंदन के पैर में गोली लग गई थी। इस घटना पर बिहार समेत पूरे देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इन सब के बीच जमुई मामले पर बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। इस बयान को लेकर मैथिली ठाकुर की जमकर आलोचना हो रही है।
2: खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं।
3: पहले ये सुनिए, आखिर इस बयान में मैथिली ठाकुर आखिर क्या कह रही हैं, जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग उन पर निशाना साध रहे हैं।
2: हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, और मैं खुद लड़की हूँ, और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज।
3: दरअसल वायरल हो रही इस वीडियो में मैथिली ठाकुर कह रही हैं कि हम खुद बिहार से आए हैं, मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, मैं खुद लड़की हूँ, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबके बीच खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ।
2: हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, और मैं खुद लड़की हूँ, और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज।
3: कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड के बाद ये बयान दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। एक फेसबुक पेज से वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया कि बिहार के मारपीट की घटना पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बयान मचा बवाल। घटना को लेकर दिए गए बयान पर अब सवाल उठ रहे हैं। विधायक मैथिली ठाकुर की टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
1: तो आपने सुना मैथिली ठाकुर ने क्या कहा। दरअसल मैथिली दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। मैथिली ट्रोल होने लगी, पूरी पार्टी को लोग घेरने लगे। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि बीजेपी का महिला सुरक्षा का दावा एक दिखावा है, उनके लिए महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक है। ये बातें अलग हैं कि अलग तरह से फैल रही थी, इसीलिए हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। पूरा सच समझने के लिए हमने मैथिली ठाकुर के वायरल हो रहे बयान को बार बार सुना। ध्यान देने पर ऐसा लग रहा था कि यह बयान आधा अधूरा है, जैसे इसमें मैथिली ने जो पिछली लाइन कही है वो है हम खुद बिहार से आए हैं। अब सोचिए कि मैथिली बिहार में ऐसा क्यों कहेंगी कि हम खुद बिहार से आए हैं। इससे हमें शक हुआ कि हो सकता है कि मैथिली ठाकुर ने बिहार के बाहर किसी कार्यक्रम में ये बात कही हो। हो सकता है कि वो जनरल लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ही ये बात कह रही हूं। शक की एक और बड़ी वजह थी, जमुई कांड पर मैथिली ठाकुर का ऐसा कोई बयान किसी ऑथेंटिक सोर्स पर नहीं दिखा। यह बयान सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहा था। अब हम सोच में पड़ गए कि अगर वाकई मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड को लेकर ऐसा कोई बयान दिया होता तो फिर ये चर्चा में होती बात, और फिर सभी विपक्षी पार्टियां इस बयान को लेकर मैथिली ठाकुर और बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। इसलिए हमारा पहला सवाल यही था कि अगर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड को लेकर यह बयान दिया है तो फिर यह खबर मुख्य धारा की मीडिया में क्यों नहीं आई। फैक्ट चेक टीम ने मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, जहां हमें 22 सितंबर का एक पोस्ट भी मिला जिसमें वो जमुई कांड की निंदा करते हुए तुरंत एक्शन के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का धन्यवाद कर रही है। ऐसे में मैथिली ठाकुर तुरंत इस तरह का बयान देकर अपनी किरकिरी क्यों करवाएंगी। इसलिए हमारे सामने दूसरा सवाल यही था कि क्या मैथिली ठाकुर के पुराने बयान को इस केस से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
2: और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और मैं खुद लड़की हूँ।
3: इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग एक खास नैरेटिव फैलाने लगे। ऐसे लोग जो झूठ सच का फर्क किए बगैर राय बनाने में देर नहीं करते, वो इस खबर पर कूद पड़े। कहने लगे कांग्रेस का दलित प्रेम एक दिखावा है। ऐसे में सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन एक न्यूज एजेंसी के यूट्यूब चैनल पे मिला। यहाँ इसे 22 अप्रैल 2026 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि यह वीडियो पुराना है और जमुई मामले से संबंधित नहीं हो सकता। इस दौरान इस वीडियो को हमने पूरा सुना। ये साफ हुआ कि मैथिली ठाकुर ने ममता बैनर्जी के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। पहले आप ये सुनिए आखिर उस वक्त मैथिली ठाकुर ने क्या कहा था।
2: दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा, हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं, और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था कि चुनाव के दौरान जब हम देख रहे थे कि अपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पथरावबाजी कर रहे हैं, वसूलीबाजी कर रहे हैं, दलालबाजी कर रहे हैं, तो शायद मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ तो मैं अब सोना भी पहन के घूमती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ।
3: दरअसल मैथिली ठाकुर ने यह बयान बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। बता दें मैथिली ने जमुई की घटना को बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि दिल को झकझोर देने वाली घटना है। साथ ही उन्होंने इस मामले में एक्शन के लिए प्रशासन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद कहा है।
2: और मैं खुद लड़की हूं।
3: साफ है जमुई में हुई छेड़छाड़ की घटना पर बयान देने के नाम पर वायरल हो रहा मैथिली ठाकुर का ये वीडियो पुराना है। अप्रैल 2026 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया था। इसी दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया था जिसे गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
1: और अब हम एक और वायरल वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई है, लेकिन लोग नहीं माने और नदी के किनारे लगी जालियों को तोड़कर गणपति विसर्जन करने लगे। इस वीडियो के सच
4: नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए दिल्ली समेत कुछ राज्यों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगी हुई है। इससे जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कई लोगों को जलाशय के किनारे लगी जालियों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई, लेकिन लोगों ने जालियां तोड़ दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कर्नाटक सरकार ने नदी में विसर्जन प्रतिबंधित किया था, जाली लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की थी। लोगों ने इकट्ठा होकर कहा, हम तो नदी में ही विसर्जित करेंगे, प्रदूषण फैलता है तो फैलने दो, अब बताओ सरकार क्या करे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
1: दावा किया जा रहा है कि विरोध की ये तस्वीरें कर्नाटक में नदी में विसर्जन पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर हैं। अब वीडियो में कुछ लोग नदी किनारे लगी जाली को हटाते हुए दिख रहे हैं। इस घटना पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर विसर्जन से प्रदूषण फैलता है तो फिर प्रदूषण रोकने के उपाय किए जाए, न कि विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। इस वीडियो को तरह तरह के धार्मिक कमेंट्स के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है, इसीलिए हमने इसकी जांच शुरू की। वीडियो में यह तो दिख रहा है कि लोग पुल पर लगी जाली को तोड़कर वहां से हटा रहे हैं। आसपास सुरक्षा बल के जवान भी हैं और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद ही असहाय से दिख रहे हैं। फिर हमने ये पता करने की कोशिश की कि नदी में विसर्जन रोकने के लिए क्या कर्नाटक में किसी नदी पर ऐसी जाली लगाई गई है। हमने तमाम खबरें वेबसाइट ढूंढ ली, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी खबर हमें नहीं मिली। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इस पर भाषा एक्सपर्ट से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि वीडियो में मौजूद लोग तेलुगु बोल रहे हैं, कन्नड़ नहीं। अब ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो कर्नाटक है तो फिर यहां पर तेलुगु में लोग बातें क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हमारा दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को कर्नाटक का बताकर सोशल मीडिया पर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। इस वीडियो में एक और गौर करने वाली बात थी कि ये पूरा प्रदर्शन गणपति विसर्जन को लेकर था, पर वीडियो में कहीं भी एक भी गणपति की मूर्ति नहीं दिखी, यानी यहां कोई विसर्जन करने नहीं आया। इसीलिए हमारा तीसरा सवाल यह था कि अगर हंगामा नदी में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ है तो फिर विसर्जन के लिए लाए गए लोग कहां हैं।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 21 सितंबर को अपलोड किए गए एक न्यूज वीडियो में वायरल क्लिप में मौजूद जाली तोड़ने वाले एक हिस्से को साफ साफ देखा जा सकता है। खबर के मुताबिक ये मामला हैदराबाद के टैंक बंड एरिया का है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें 21 सितंबर को छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल घटना से संबंधित तस्वीर भी देखने को मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश विसर्जन पर रोक के खिलाफ टैंक बंड में हो रहा विरोध प्रदर्शन तब तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस ने भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। समिति ने विसर्जन पर रोक वाले बैनर पर एतराज जताया। सर्च के दौरान ही हमें 21 सितंबर को छपी एक और रिपोर्ट मिली। इसके जरिए ये जानकारी सामने आई कि जलाशयों में पीओपी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए हुसैन नगर के किनारों पर अस्थायी बैरिकेड लगाए गए थे। हालांकि टैंक बंड पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने अस्थायी बैरिकेड हटा दिए थे। और मंडप आयोजकों से मूर्तियों को हमेशा की तरह विसर्जन के लिए झील पर लाने को कहा था। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो तेलंगाना का है, जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जलाशयों में पीओपी मूर्तियों का विसर्जन रोकने के लिए जालियां लगाई गई थी। लेकिन हैदराबाद में टैंक बंड पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने जालियों को तोड़ दिया। इस वीडियो का कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: सोने का भाव हुआ कम, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट का राज, पूर्वजों का कर्ज चुकाने का मौका, दिल्ली में बंगाल की संस्कृति की झांकी, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
9: बच्चे मासूम होते हैं, बेफिक्र बेपरवाह, उन्हें बस प्यार करना आता है। देखिए इस छोटी बच्ची को, कैसे बछड़े को रोटी खिलाकर खुश है। बछड़ा भी उससे रोटी झपट नहीं रहा, बल्कि सावधानी से रोटी ले रहा है ताकि बच्ची डरे नहीं और उसे नन्हे हाथों से आहार मिलता रहे। रोटी लेते हुए जब बछड़े की जीभ बच्ची के हाथों को छू जाती है तो बच्ची की खिलखिलाहट देखने लायक है। दो मासूमों का ये अनकहा जुड़ाव देख कर लोग मुस्कुरा रहे हैं। एक बच्चे को जब पिता ने गिफ्ट दिया तो उसने पैकेट खोलने के बजाय पहले उन्हें गले लगा लिया। मासूम बेटे का यह अंदाज बताता है कि उसके लिए गिफ्ट से कहीं ज्यादा कीमती पिता का प्यार, मेहनत और साथ है। बच्चे के लिए गिफ्ट सिर्फ कागज में लिपटी कोई चीज नहीं थी, उसके पीछे पिता की मेहनत थी, उनका प्यार था और वे तमाम छोटी बड़ी कुर्बानियां थी जो अक्सर बच्चे देख तो लेते हैं लेकिन शब्दों में कह नहीं पाते। पिता के लिए शायद यह एक सामान्य सा तोहफा रहा हो लेकिन बच्चे ने उसके पीछे छिपी भावनाओं को समझ लिया था। इस बच्चे का अपने पिता को गले लगाना भी यही बात याद दिलाता है। उसने शायद बिना कुछ कहे अपने पापा को बता दिया कि वह उनकी मेहनत को समझता है और उनके प्यार की कद्र करता है। अदाएं ऐसी कि नजर न हटे, आत्मविश्वास ऐसा कि दुनिया जीत ले जाए। आपने रैंप पर वॉक करती सुंदरियों को खूब देखा होगा मगर जो बात इनमें है किसी और में कहां। अंदाज देखिए जरा, क्या बलखा के चली हैं और विक्ट्री का साइन भी आंखों में आंखें डालकर दिखा रही है, मानो कह रही हो है कोई मुझसा तो सामने आए। बच्ची का अंदाज और उसका आत्मविश्वास लोगों का दिल छू रहा है।

0: संगीत से कुछ ज्यादा ही लगाव है इन्हें। माइक हाथ में आते ही सुर लगने लगे हैं। क्या गा रही हैं? मालूम नहीं, पर जिस अंदाज में गा रही हैं, वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। मानो आज तो स्टेज पर आग ही लगा देंगी। बच्चे जिस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस की नकल कर रही है, वो देखना दिलचस्प है। लोग उसकी क्यूटनेस पर दिल हार रहे हैं। कमाल है, इनको देखकर आपके मुंह से यही निकलने वाला है। इनकी फिटनेस, कॉन्फिडेंस और तालमेल सब गजब का है। सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये कोई स्टंट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये तो इनके खेलकूद का हिस्सा है। इनको देखना दिलचस्प है। इन बच्चों के इस वीडियो पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं।
1: और फोन तो करते ही रहना। हाँ?
2: नहीं, फोन भी कर दूंगा।
1: मेरे पोटर, तेरे बिना दिल नहीं लगता ना।
0: यूं तो इस दुनिया में कई रिश्ते मिलते हैं, लेकिन दादा पोते का रिश्ता अपने आप में बेहद अनोखा और प्यारा होता है। कहा जाता है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, और यह बात इस रिश्ते पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जनरेशन गैप के बावजूद दोनों के बीच का अपना एक अलग ही मैजिक होता है। पोते ने अपने दादाजी को बताया कि वह किसी काम से उनसे दूर जा रहे हैं, तो बुजुर्ग दादाजी का दिल भर आया। पोते के जाने की बात सुनकर दादा धनराज जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने प्यार से अपने पोते के गाल सहलाए और भावुक होते हुए कहा,
1: कोई देर मत लगाना, आजकल का सीजन अच्छा नहीं है।
2: ठीक है,
0: तेरे बिना दिल नहीं लगेगा, लेकिन फोन पर बात कर लेगा तो तसल्ली रहेगी। दादाजी ने बड़े ही अपने पन के साथ पोते को अपना ख्याल रखने और समय पर दवाइयाँ खाने की सलाह दी।
1: बात कर लेगा तो भी हो जाएगा, दवा कोई देर मत लगाना, आजकल का सीजन अच्छा नहीं।
0: साथ ही यह भी कहा कि अगर जाने का सोच लिया है तो फिर ज्यादा देर मत लगाओ। दादाजी की यह मासूमियत और बेइंतहा प्यार देखने वालों का दिल पिघला रहा है। खचाखच भरी मेट्रो में सीट न मिलने पर एक बुजुर्ग अंकल ने ऐसा देसी जुगाड़ लगाया कि आसपास के लोग देखते रह गए। उन्होंने अपने बैग से फोल्डिंग स्टूल निकाला और मेट्रो के फर्श पर रखकर आराम से बैठ गए। इसके बाद हेडफोन लगाकर बड़े सुकून से सफर का आनंद लेने लगे। उनका अंदाज देखकर ऐसा लगा जैसे भीड़भाड़ वाली मेट्रो में सीट न मिलने की चिंता उन्होंने काफी पहले ही खत्म कर ली हो। वीडियो में उनका आत्मविश्वास और बेफिक्री लोगों का ध्यान खींच रही है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। सोने का भाव कम हुआ, सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट का राज जानिए। पूर्वजों का कर्ज चुकाने का मौका, पितरों का आशीर्वाद पाने का संयोग। और मां के आगमन की आहट, भक्ति में डूबने वाले हैं भक्त। दिल्ली में देखिए बंगाल की संस्कृति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
2: सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, शूटिंग में ईशा सिंह और 1500 मीटर में बुलवीर सिंह ने जीता सिल्वर। वैद्या रामराज, पिंकी और पारुल ने जीता ब्रॉन्ज। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी। मदुरई में सीएम विजय ने शुरू की योजना, केवल सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात को मिलेगा लाभ। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को होगा मुकाबला।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात सोने और चांदी की करेंगे। पहले उतार चढ़ाव का दौर और अब बड़ी गिरावट। नए हफ्ते के पहले दिन सोने का भाव 1.5 लाख से नीचे जा पहुंचा है और इसकी कीमत में 4,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। भाव वैसे चांदी का भी गिरा है, तो आखिर इस गिरावट के पीछे वजह क्या है और क्या गिरावट का ये दौर अभी जारी रहेगा या फिर सोना एक बार फिर से अपनी तेज चमक बिखेरेगा। इन सबको लेकर जानकारों का क्या मानना है, जानिए इस रिपोर्ट में।

0: सोना भारतीयों के लिए धातु ही नहीं बल्कि भरोसे, परंपरा और समृद्धि का प्रतीक है। शादी ब्याह हो या त्योहार, सब में सोने की चमक खूब दिखती है। सोने को निवेश के सुरक्षित विकल्पों में गिना जाता है। भारत में सोना खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि शुभता से भी जुड़ा हुआ है। धनतेरस हो या पर अक्षय तृतीया हो या शादी का कोई मौका, सोना खरीदने की परंपरा हमेशा रही है। अब त्योहारी सीजन से पहले सोने की कीमतों में आई गिरावट खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सोमवार यानी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में सोने का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 4000 रुपए से ज्यादा गिरा है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन की आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,48,910 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 1,36,501 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर की बात की जाए तो दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,52,830 रुपए था, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,40,100 रुपए थी। बुलियन मार्केट में आज सोने का दाम 4,140 रुपए सस्ता हो गया। इसके अलावा सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यही नहीं, घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत में करीब 2% की गिरावट आई है। सवाल यह है कि आखिर सोने का भाव गिर क्यों रहा है। जानकारों के मुताबिक इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बढ़ता तनाव है।
1: जैसे जैसे वॉर की टेंशन एस्केलेशन बढ़ रही है, इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है विच इज़ फेडरल बैंक, वो ब्याज दर बढ़ाता है। वो ब्याज दर इसलिए बढ़ाता है कि बिकॉज उसको इन्फ्लेशन कम करना होता है। तो जब वो ब्याज दर बढ़ाता है तो उस वजह से क्या होता है, जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स या जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं गोल्ड को, गोल्ड से कंपैरिजन में। तो लोग क्या करते हैं, लोग गोल्ड से पैसा निकाल के उसके अंदर लगाते हैं। दैट इज़ द प्राइम रीजन व्हाई गोल्ड फॉल्स व्हेन वॉर गोज अप। जनरली वॉर से गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाना चाहिए, बट जब वॉर होती है, जैसे मिडिल ईस्ट की वॉर है, बहुत टेंशन हो रही है ऑल अराउंड वर्ल्ड, यूरोप और रशिया के बीच में।
0: पिछले साल सोने में 1989 के बाद सबसे तेजी देखी गई थी और अब तक इसमें 75% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हाल के महीनों में सोने के दाम काफी बढ़े हैं, लेकिन इस साल जुलाई और अगस्त में 11% की बढ़त के बाद इस महीने अब तक सोने में 6% की गिरावट आ चुकी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के डेटा के मुताबिक 25 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सितंबर महीने में सोने की खुदरा बिक्री में पिछले साल यानी कि 2025 की तुलना में 8-10% की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों की माने तो अमेरिका बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल दोनों में गिरावट की वजह से सोने पर दबाव बना हुआ है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये स्थिति अभी बनी रहेगी या फिर इसमें जल्दी ही सुधार की गुंजाइश आएगी। आम लोगों के लिहाज से देखा जाए तो दाम में गिरावट राहत है, लेकिन निवेशकों को इसको लेकर क्या ध्यान देना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है।
1: यही रीज़न है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये जो भी US मार्केट जो कंट्रोल है या जो लंदन बुलियन एक्सचेंज है उसकी वजह से दाम में तेज़ी और वो आती है। बट हाँ, जब जब मार्केट इकोनॉमी के अंदर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तब या तो दाम नीचे जाएंगे डिपेंडिंग कि किस टाइप की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, या दाम ऊपर जाएंगे। तो इसकी वजह से है, जब हमें जैसे वॉर अगर अभी थम जाएगी तो फिर वापस सोने के दाम ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी।
2: तो लोगों को ले ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि लगातार दाम घट रहे हैं, आगे भी शायद घटते हुए नजर आए, जिनसे उनका जो वेडिंग सीजन है, जो फेस्टिव सीजन है, वो अच्छे से मना सके बिना सेकंड थॉट के।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छे से मना पाए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड में निवेश हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है, और मेरा ये मानना है कि हर प्राइस हर लेवल रीजनेबल रहता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर उसको आप उसको इनकैश कर सकते हो या फ्यूचर के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये वो मार्केट है जब सोना खरीदना चाहिए।
0: सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 1 किलो चांदी के दाम 9,000 रुपए से ज्यादा गिरे हैं। बीते सप्ताह भी सोने चांदी के दाम में तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, जो कि इस हफ्ते की शुरुआत में भी जारी है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करेंगे पितृपक्ष की, जो पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने का एक बड़ा अवसर है। मान्यताओं के मुताबिक तर्पण और पिंडदान से पूर्वजों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। ये 15 दिन का विशेष अवसर है। देश भर में इसके लिए 3 तीर्थ बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आखिर क्यों इन जगहों पर बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, इसके पीछे मान्यता क्या है, इन सब के बारे में जानिए।

0: चुकाने का प्रयास जारी है। जिंदगी में सफलता और सुख समृद्धि पाने के लिए अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का जतन कर रहे हैं। पितृपक्ष की पवित्र अवधि में पितरों यानी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। लोग श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को याद करते हुए तर्पण और पिंड दान कर रहे हैं। यूपी में प्रयागराज हो या वाराणसी या फिर बिहार का गया जी, तीनों ही जगह लोगों की भीड़ नजर आ रही है, जो पूरे विधि विधान के साथ अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां इन दिनों लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और फिर संगम की रेती पर तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। इसके जरिए वो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं।
1: जो पुण्य आत्माएं हैं वो तृप्त हो जाएं, और जो यहाँ का जो महत्व सुना है उस महत्व के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए।
2: मैं आया हूँ पिंडदान के लिए, आगे मुझे गया भी जाना है, और हम ये सोचते हैं कि यहाँ से सुरत प्रयागराज जी के महाराज के अनुरोध करके आगे का प्रस्थान करेंगे।
3: काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। साथ ही अब एक नई व्यवस्था पिछले 2-3 वर्षों से लागू हो गई है कि जो लोग आ नहीं पाते हैं, जिनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है, अपने पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पितरों को मोक्ष मिले, मगर उनके पास समस्या है, आने में दिक्कत है, कोई व्यवस्थाएं में दिक्कत है, तो इसकी जो है पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन व्यवस्था भी जो है प्रारंभ हो गई है। जो लोग नहीं आते तो हम लोग ऑनलाइन जो भी पिंडदान कराते हैं।
0: अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच ही रहे हैं, और जो नहीं आ पा रहे उनके लिए यहां ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था भी जारी है। दरअसल प्रयागराज को पितृमुक्ति का पहला और मुख्य द्वार माना जाता है। गया जाने से पहले यही सबसे पहला पिंडदान करने का विधान है। पौराणिक और धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अपने पिता राजा दशरथ का सबसे पहला पिंडदान त्रिवेणी संगम तट पर ही किया था। मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान और तर्पण करने से पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है।
4: जैसा कि पितृपक्ष की मान्यता है, श्री विष्णु श्री हरि नारायण के मुख प्रयागराज निवास करता है, और विष्णु का नाभि काशी कहलाता है, और विष्णु का चरण गया जी, और इसी प्रकार लोग सर्वप्रथम प्रयागराज आते हैं, तत्पश्चात काशी जाते हैं, और तत्पश्चात गया जी में। यह पितृपक्ष का विशेष अवसर जिसमें पितृ स्वयं धरती पर अपने बच्चों को आशीर्वाद, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से इस 15 दिवसीय पितृपक्ष में पितरों का आगमन होता है।
0: पितृपक्ष में पिंडदान और श्राद्ध के लिए प्रमुख स्थलों में दूसरा स्थान बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी का माना जाता है। इसके चलते यहाँ भी पितृपक्ष में बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और कर्मकांडों में लीन दिख रहे हैं। यहाँ के पिशाच मोचन कुंड को लेकर मान्यता है कि यहाँ विधि विधान से श्राद्ध करने पर आत्मा प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में प्रवेश करती है, और उसके बाद गया जी का पिंडदान पूर्ण फलदायी होता है।
5: श्राद्ध करने का मतलब अपने पितरों को हम भोजन दे रहे हैं और उनको पिंड दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनको आवाहन कर रहे हैं कि आज 15 दिन हमारे परिवार में आप रहिए और हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में धन पुत्र लक्ष्मी की कमी न हो, बारी फुरवारी हमारा सब भरा रहे।
0: गया जी को पिंडदान और श्राद्ध का सबसे उच्च और अंतिम केंद्र माना जाता है। यहाँ फल्गु नदी के तट पर और विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के प्रारंभ होने के बाद से ही यहाँ आस्थावानों की भीड़ पहुँच रही है और अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं।
6: हम अपने सास ससुर का पिंडदान करने आए हैं।
7: क्या महत्व है यहाँ?
6: यहाँ का महत्व है कि यहाँ पिंडदान करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है, वो परम धाम को प्रस्थान करते हैं।
8: यह मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
0: गया जी में पिंडदान के महत्व को लेकर यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुँचते हैं। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और उन्हें सीधे मोक्ष ही मिलता है। गया जी में पिंडदान के लिए पहुंचने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहां तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं।
9: यहां पे कुल 5 QRT और लगभग 40 बल DIU टेक्निकल टीम सब लगी पड़ी है कि लोगों को किसी तरीके से किसी भी प्रकार का चोरी या चेन स्नैचिंग या किसी तरीके की घटना या ना हो। इसके अलावा भी 6000 बल पितृपक्ष के मेला में भीड़ संधारण विधि व्यवस्था इसके लिए हर जगह अलग अलग जगह पे मुस्तैद है। पुलिस की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है, लोगों को जितना बढ़िया हम लोग सेवा दे सके उसके लिए। हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हमारा कंट्रोल रूम भी यहीं पे है। कुल 554 कैमरा हम लोग लगाए हैं और इस बार एक बेटर चीज़ ये है कि हम लोग AI सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं जिसकी मदद से भी कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है।
0: गयाजी में 26 सितंबर से लोग पूरे विधि विधान के साथ अपने पूर्वजों का पिंडदान करते नजर आ रहे हैं। पिंडदान को लेकर यूपी के झांसी में एक अच्छी पहल की गई। यहां पहुंच नदी के तट पर अज्ञात अनाथ और उन आत्माओं के लिए भी सामूहिक तर्पण पिंड पूजन किया जाता है जिनका दुनिया में कोई नहीं बचा है।
10: महासमिति झांसी रानी फाउंडेशन के तत्वाधान में जिनका कोई नहीं उनके लिए हम लोग यहाँ तर्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये कार्य हम लोग प्रति वर्ष करते हैं। कई वर्षों से निरंतर ये कार्य चला आ रहा है लेकिन आज इस कार्य का ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया।
11: तीर्थराज गयाजी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अज्ञात अनाथ लावारिस लोगों के लिए उनकी आत्मा को मोक्ष की गति प्राप्त हो उसके लिए हम सब लोग इन पवित्र पिंडों को लेकर तीर्थराज गयाजी प्रस्थान कर रहे हैं।
0: सामूहिक तर्पण और पिंड पूजन के बाद समाज सेवी जितेंद्र तिवारी की अगुवाई में झांसी रेलवे स्टेशन से 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चंबल एक्सप्रेस ट्रेन से पिंडों को लेकर गयाजी के लिए रवाना हुआ। ये प्रतिनिधि मंडल गयाजी पहुंचकर 878 परिवारों के पूर्वजों के लिए वहां पूरे विधि विधान से पिंडदान करेगा। शास्त्रों के अनुसार पितरों को देवताओं से भी उच्च कोटि का स्थान दिया है और पितरों की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। लोग अपने घर के पास की नदियों और सरोवरों में स्नान कर भी पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में बड़ी संख्या में लोग मुचकुंद घाट पर स्नान करते हुए मंत्रोच्चारों के बीच पितरों को तर्पण अर्पित करते दिखे। तीर्थराज मुचकुंद घाटों पर आचार्य मंत्रोच्चार के साथ अन्न तिल चावल जौ सबसे तर्पण करा रहे और लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद कर परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल, गयाजी से पंकज कुमार, झांसी से अजय झा और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ रिपोर्ट न्यूज टुडे।
12: और अब बात करेंगे बंगाल की संस्कृति की जो दिल्ली के चितरंजन पार्क में भी दिखती है। सीआर पार्क जिसे दिल्ली का मिनी बंगाल कहा जाता है, शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ थीम आधारित कई दुर्गा पूजा पंडाल सजाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में लगने वाला मशहूर पंडाल भी शामिल है। वहां हर साल शारदीय नवरात्र से करीब 4 महीने पहले कार्यशाला भी लगती है जिसमें पुआल, मिट्टी और रंगों का इस्तेमाल करके भव्य दुर्गा मूर्तियां तैयार की जाती हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में इस कार्यशाला में कुछ ही मूर्तियां आकार लिया करती थी लेकिन अब यहां पर हर साल करीब 800 मूर्तियां तैयार की जाती हैं। सीआर पार्क के अलावा दिल्ली NCR में 300 से अधिक पूजा समितियां भी है जहां पर इन मूर्तियों को भेजा जाता है। शारदीय नवरात्र आरंभ होने में अभी भी 15 दिन का वक्त बचा है। मां के आगमन की आहट के बीच आदिशक्ति की भक्ति में भक्त डूबने वाले हैं।

0: दिल्ली में बंगाल की संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत की पहचान चितरंजन पार्क है, जो माँ दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहा है। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्र माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 विशेष स्वरूपों को पूजने का पवित्र त्योहार है। हर साल शारदीय नवरात्र के दौरान चितरंजन पार्क यानी कि सीआर पार्क कोलकाता का प्रतिबिंब बन जाता है। शारदीय नवरात्र के करीब एक महीने पहले से पंडालों में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ माँ दुर्गा के आह्वान की तैयारी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में पहली बार यहाँ बसे बंगाली परिवारों ने शारदीय नवरात्र से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत की नींव रखी थी। तब से यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करने की परंपरा को संजोने और समृद्ध करने का संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी लिया जा रहा है। यहाँ माँ दुर्गा की अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को बनाने का काम पूरा साल चलता रहता है, लेकिन शारदीय नवरात्र के लिए माँ की मूर्तियों को तैयार करना अपने आप में विशेष अनुष्ठान की तरह होता है। चितरंजन पार्क में 3 दुर्गा पूजा समितियों की तरफ से 3 बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा बेहद भव्य और सबसे मशहूर है। कालीबाड़ी मंदिर में विराजमान होने वाली माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति, रंग बिरंगी सजावट और 9 दिनों तक शाम को होने वाले सांस्कृतिक उत्सव हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
1: तो भाई देखिए, कोलकाता के साथ साथ दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार हो रही है दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि माँ आने वाली हैं। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह होती है सीआर पार्क, जहाँ हर साल मैं आपको लेकर आती हूँ, और ये बिल्कुल सीआर पार्क का वही कालीबाड़ी मंदिर है। जरा तस्वीरें देख लीजिए, तैयारियां भी हो रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बहुत जोर शोर से यहाँ तैयारियां हो रही हैं। ये वही पंडाल है जहाँ पर हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है कालीबाड़ी मंदिर का। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हुई है, यानी पंडाल अभी तैयार हो रहा है। पंडाल का थीम क्या है बहुत ही सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है वो रहता है मूर्तियों का। तो इस बार किस तरह की मूर्ति होगी, थीम क्या होगा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में एक्साइटमेंट होती है। क्योंकि भाई जो लोग बंगाल से बाहर रहते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें, तो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही सीआर पार्क का एरिया होता है। तो आज मैं आपको सीधा वर्कशॉप लिए चलती हूँ, जहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम लगातार चल रहा है, और आपको मिलवाऊंगी उन कलाकारों से, उन कारीगरों से, जो हर साल इन मूर्तियों को आकार देते।

0: पूजा से पहले दुर्गा प्रतिमा के निर्माण से जुड़ी कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहां कुशल कारीगर बांस, पुआल और मिट्टी से देवी की भव्य मूर्तियां तैयार करते हैं। 1970 के दशक से कालीबाड़ी मंदिर के सहयोग से चली आ रही इस विशेष कार्यशाला में हर साल सैकड़ों प्रतिमाओं को आकार दिया जाता है, जो दिल्ली NCR की 300 से अधिक पूजा समितियों को भेजी जाती है।
1: तो देखिए, मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये वो वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जहां पर मूर्तियां बनाई जाती हैं, मूर्तियों को आकार दिया जाता है। वैसे तो यहां पर जो काम है वो पूरा साल चलता रहता है, लेकिन जो आखिरी का समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनमें कलर भरना है, फाइनल टच देना है। और ये वो कार्यशाला है जहां से मूर्तियां दिल्ली NCR और साथ ही साथ अगल बगल के जितने राज्य हैं वहां पर मूर्तियां यहां से भेजी जाती हैं और यहीं पर आकार इनको दिया जाता है और यहां से फिर ये मूर्तियां राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, जहां जहां भी जरूरत होती है वहां इनको भेजा जाता है। सबसे बड़ी और खास बात यह है, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में स्पेशली और पूरे बंगाल में जहां जहां मूर्तियां बनाई जाती हैं वहां पर मिट्टी कुमारतुली से लाई जाती है और यहां पर भी इन मूर्तियों को आकार देने से पहले उस पवित्र मिट्टी को इनमें शामिल किया जाता है।
0: मूर्तिकार गोविंद अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो पारंपरिक रूप से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाने के काम में खुद को समर्पित कर चुके हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा उनके हुनर और विरासत को भी दर्शाती है।
1: तो गोविंद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माँ की जो मूर्ति है उसके चेहरे को आकार दिया जा रहा है और साथ ही साथ मैं इनका परिचय कराऊं, ये तीसरी पीढ़ी है जो लगातार माँ की मूर्तियों को और दुर्गा पूजा की तमाम मूर्तियों को बनाते आए हैं। गोविंद जी
2: नमस्कार जी।
1: नमस्ते। कहाँ तक पहुँचा है काम?
2: काम अभी बस पेंटिंग का इंतजार कर रहा है, कल से नहीं तो परसों से पेंटिंग चालू हो जाएगा हमारा और कुछ एक दो मूर्ति में मिट्टी का काम बाकी है, वो भी अभी काम चल रहा है तो उसी का भी तैयारी हो रहा है। इधर पेंटिंग का भी थोड़ा फिनिशिंग करके, मिट्टी का फिनिशिंग करके तो कल परसों से ही पेंटिंग चालू।
0: इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है और इसका समापन 20 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे के दिन होगा। कोलकाता का कुमारटोली पवित्र दुर्गा प्रतिमाएं बनाने के लिए मशहूर है। उनमें वहां बहने वाली गंगा नदी की मिट्टी को मूर्तियों के लिए सबसे अच्छा और शुभ माना जाता है। सियार पार्क के कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद कार्यशाला में भी परंपरा और शुद्धता बनाए रखने के लिए मिट्टी वहीं से आती है।
1: अच्छा, मिट्टी आप वहां से लेकर आते हैं?
2: वहां से मिट्टी ले आते हैं और कुछ मिट्टी यूपी का उस साइड से आता है, खेत का भी मिट्टी होता है, थोड़ा मिला के आता है। इतना सारे मिट्टी तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो जो फेस वगैरह होता है जो हमारा जो कलकत्ता मिट्टी स्पेशल
1: जो आप बना ही रहे हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये कलकत्ता का मिट्टी ले आते हैं और बाकी यूपी का, पंजाब का जो खेत होता है ना, खेत का मिट्टी भी आता है।
1: ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर रहता है कि माँ का और जो तमाम मूर्तियों का जो फेस है वो जो बंगाल से मिट्टी आती है वो उसी से बना है।
2: फिनिशिंग अच्छा होता है, चिकनवर अच्छा होता है, उसमें कंकड़ कम होता है, फिनिशिंग अच्छा है, काम करने में अच्छा वो होता है। और दूसरी जगह मिट्टी थोड़ा कंकड़ होता है, रेत होता है, वो दूसरा काम पे आता है।
0: सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दौरान माता की पूजा अर्चना से देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे में शारदीय नवरात्र की विशेष तैयारियां होती हैं। प्रतिमाओं के आकार लेने के दौरान हर तरफ माँ के जयकारे गूंजने लगते हैं। दिल्ली से नवजोत संधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बखुद लगती हैं। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना, हमारी

0: जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे धोखे की। प्रेम में, विवाह में, दोस्ती में कब धोखा मिलता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं? बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है, आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं। उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का साथ पकड़ते हैं, तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए 4 ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं। मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में, कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती फिलहाल दिखाई दे रही हैं। काम की बाधाएं समाप्त होंगी, व्यर्थ की चिंता ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सबसे ज्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं, वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है। शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। सातवें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं, या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोंकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में, देखिए, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा, इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हो तो हीरा धारण ना करें। देखिए, प्रेम और विवाह के अलावा जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है आज के समय में, वो दोस्ती है। आपने दोस्त पर भरोसा करके उसकी सहायता की, आपको सहायता की जरूरत है, आपके दोस्त ने फोन बंद कर दिया, मुंह फेर लिया। तो दोस्ती में धोखा बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को मिलता है। कारण क्या है? चंद्रमा या शुक्र अगर कुंडली में खराब हैं आपके, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपकी दोस्ती ही गलत लोगों से होगी, जो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। शुक्र खराब होगा तो अपोजिट जेंडर के साथ आपकी मित्रता होगी, पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, और वो मौका पड़ने पे धोखा देंगे। तो चंद्र या शुक्र खराब हो तो धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में। अगर किसी का बुध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में, वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं। तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। सूर्य का एक रत्न आता है, उसे कहते हैं गार्नेट। एक गार्नेट का लॉकेट बनवा लें और इसको तांबे या सोने के लॉकेट में बनवा कर अपने गले में पेंडेंट की तरह धारण करें। इससे भी आप धोखा खाने से बचेंगे, धोखा मिलने के पहले आप सतर्क हो जाएंगे। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधा समाप्त होगी, जल्दबाजी में काम ना करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बराबर उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा ज्यादा, कभी पैसा कम, कभी बिल्कुल नहीं, तो एक स्टील का छल्ला बनवा लीजिए। स्टील का छल्ला दाहिने हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है और अशुभ बृहस्पति की दशा चल रही है तो क्या करें? बृहस्पति की अशुभ दशा में अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। और बृहस्पति की अगर अशुभ दशा चल रही है तो पीला रंग और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करें। बृहस्पति की कितनी भी अशुभता है, अगर आप निरंतर शिव जी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: राजधानी दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही रफ्तार। कल गृह मंत्री अमित शाह जनता को समर्पित करेंगे। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी। 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदला मौसम का मिजाज। ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा पारा। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। शूटिंग में ईशा सिंह और 1500 मीटर में गुलवीर सिंह ने जीता सिल्वर। विद्या, रामराज, पिंकी और पारुल ने जीता ब्रोंज। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच। 3 अक्टूबर को मुकाबला। और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा बिहार के समस्तीपुर में दिखे विशाल जल बवंडर की भी है।
7: एक हैरान करने वाली तस्वीर बिहार के समस्तीपुर से आई है, जहां तेज हवा और बारिश के बीच पानी की सतह से आसमान की तरफ उठता हुआ एक घूमता हुआ बवंडर दिखाई दिया। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे पानी खुद आसमान की ओर खींचता चला जा रहा हो। नजारा देखकर लोगों के जहन में सवाल यही कि आखिर ये हुआ कैसे। असल में कहानी थोड़ी अलग है। जिसे हम जल बवंडर यानी वाटर स्पाउट के तौर पर देख रहे हैं, उसमें पानी का कोई विशाल हिस्सा आसमान की तरफ नहीं उठता। दरअसल ये तेजी से घूमती हुई हवा का एक संकरा घेरा होता है। इस घूमती हवा के आसपास पानी की बेहद महीन बूंदे, फुहार और छींटे जमा होने लगते हैं, और यही मिलकर हमें दूर से एक लंबी घूमती हुई आकृति के तौर पर दिखाई देते हैं। यानी नीचे पानी की सतह, बीच में घूमती हवा और ऊपर बादलों के बीच बना ये पूरा सिस्टम मिलकर ऐसा नजारा पैदा करते हैं मानो पानी सीधे आसमान से जुड़ गया हो। सफर के बीच अचानक गाड़ी खराब हो जाए, टायर पंचर हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए या किसी अनजान जगह पर वाहन बंद पड़ जाए, तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि आसपास मदद कहां से मिलेगी। इसी तरह घर में अचानक बिजली, पानी, एसी, फ्रिज या आरओ की समस्या खड़ी हो जाए तो सही कारीगर का नंबर तलाशना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता। लेकिन कोटा के लोगों के लिए ये एक बड़ी समस्या नहीं रह गई है, क्योंकि यहां एक मेरा साथी ऐप है जो ऐसी संकट की घड़ी में आपकी मदद करेगा। इसे तैयार किया है कोटा के आर्यन सिंह और उनकी टीम ने। इस ऐप पर आपको स्थानीय प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, पेंटर, वेल्डर और पंचर ठीक करने वालों से लेकर आरओ, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर ठीक करने वालों तक की जानकारी और नंबर मिल जाएंगे। ड्राइवर और सफाई कर्मी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आर्यन की माने तो इस ऐप को बनाने का मकसद लोगों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ हुनरमंद लोगों को रोजगार मुहैया कराना भी है। यानी जहां जरूरत वहां मदद और जहां हुनर वहां काम। सड़क पर दौड़ते ट्रक तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन चंदौली में पिछले 3 दिनों से सड़क किनारे खड़ा ये ट्रक लोगों के लिए अजूबा बना हुआ है। बेल्जियम से चला ये महाबली ट्रक उड़ीसा होते हुए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जा रहा है। इस पर लदी है बायो पॉलीमर प्लांट की एक बेहद भारी भरकम मशीन, लेकिन चंदौली पहुंचते ही इसके पहिए थम गए। वजह थी आगे का रास्ता। मशीन के आकार और वजन के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ नहीं था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के पास रिंग रोड के नजदीक जब ये महाबली ट्रक रुका तो धीरे धीरे ट्रक के आसपास ऐसा नजारा हो गया जैसे सड़क किनारे कोई छोटा सा मेला लग गया हो। तीन दिन तक चंदौली में रुकने के बाद आखिरकार इस महाबली ट्रक के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ। मशीन को सुरक्षित तरीके से आगे ले जाने के लिए रास्ता तैयार किया गया और फिर शुरू हुई इस विशालकाय ट्रक की अगली मंजिल की ओर यात्रा। अब ये महाबली ट्रक चंदौली से आगे निकल चुका है और वाराणसी पहुँच चुका है। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मना रहा है। उनकी जयंती के मौके पर राजधानी दिल्ली में एक मिनी म्यूजियम की शुरुआत की गई है। इस म्यूजियम में भगत सिंह के जीवन, उनके विचारों और कहानियों को तस्वीरों के जरिए प्रदर्शित किया गया है। यहां भगत सिंह के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नारे भी लिखे गए हैं। यहां उनके साथ साथ महान क्रांतिकारी सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी और युवाओं को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और उनके आदर्शों से परिचित करवाना और उनमें देशभक्ति की भावना जगाना है। लेह में इस साल का तीन दिवसीय लद्दाख महोत्सव शुरू हो चुका है और वहां से आई ये ऐतिहासिक तस्वीर देखी। यहां पहली बार महिलाएं हॉर्स पोलो मैच में हिस्सा लेती दिखी। असल में लद्दाख के पारंपरिक खेलों में अब तक पुरुषों का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार महोत्सव के दौरान देश भर की महिला घुड़सवारों ने पोलो मैच में पहली बार हिस्सा लिया। ये मैच लेह के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड और शागरान मैदान में आयोजित किया गया।
8: और अब बात करते हैं देश में मौसम में हो रहे बदलाव की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से 80 से ज्यादा लोग फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। वहीं उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान भारी बर्फबारी में फंसे लोगों को बचाव कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाया, जबकि पिछले 2-3 दिनों में पहाड़ी इलाकों में जमकर बारिश और बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी से पूरा इलाका चांदी सा चमकने लगा, तो वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और उत्तरकाशी में भी बारिश और बर्फबारी हुई।

0: इन दिनों मौसम का अजब गजब रंग देखने को मिल रहा है। मौसम की मनमानी से आई बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं बारिश तो कहीं बाढ़ से लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। चक्रवाती तूफान अर्नब के बाद लगातार 5 दिनों तक हुई भारी बारिश ने पूरे बस्तर के हालात बिगाड़ दिए हैं, लिहाजा बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर राहत शिविरों में ठहराया गया है। इस बीच जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी के उत्तरी किनारे स्थित डोंगा घाट गाँव से करीब 80 लोगों के बाढ़ में फंसे होने की सूचना मिली। इसके बाद भारतीय वायुसेना की टीम ने हेलीकॉप्टर से इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये लोग एक कच्चे मकान की छत पर फंसे मिले। तेज बहाव के चलते मकान के ढहने का भी खतरा था, लिहाजा वायुसेना ने बेहद जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और वहां फंसे लोगों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उधर उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अचानक बदले मौसम, मूसलाधार बारिश और भारी बर्फबारी के बीच 136 ट्रैकर्स के फंसे होने की खबर मिली। 5 से 7 फीट तक जमी बर्फ और ठंड में जमा देने वाले तापमान के बीच जब जिंदगी की उम्मीदें बर्फीले रास्तों पर धुंधलाने लगी, तब जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने बेहद चुनौतीपूर्ण अभियान शुरू किया। सबसे मुश्किल हालात कालिंदी पास और ऑर्डिनेंस स्कूल जैसे बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में थे, जहां मौसम खराब होने के साथ रास्ते भी बर्फ से ढक गए। लेकिन युद्ध स्तर पर चले इस मिशन जिंदगी में हेलीकॉप्टरों, सैटेलाइट संचार और जमीनी टीमों की मुस्तैदी से सभी ट्रैकर्स का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।
1: मेरा नाम हरिता है, मैं इंडिया हाइक्स से ट्रैकिंग करने के लिए 2 दिन पहले हम लोग 22 लोग यहां से ऊपर गोमुख के लिए निकले, पर हम भोजबासा में रुके 2 दिन के लिए और बहुत बर्फबारी की वजह से आज हम वापस आना पड़ा। सब सही सलामत है और गंगोत्री नेशनल पार्क के सारे कार्यकर्ता ने हर एक थोड़े थोड़े सेक्टर पे हमारा बहुत सहायता किया और उसी वजह से हमने बहुत बहुत सकुशल सब नीचा है, बहुत एंजॉय किया। डरने की भी बात नहीं है, थोड़ा सा मौसम खराब हो गया बट फिर भी हमने बड़ी मजे लेके हम लोग नीचे आए, हम सब सुरक्षित हैं और
2: थैंक यू सो मच
1: और थैंक यू।
3: सबसे पहले मैं उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करके हेली की सुविधा हमें दी है, और खासकर जो जिला अधिकारी हैं प्रसन्न जी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मिनट टू मिनट सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है और तत्काल रेस्क्यू किया गया, सभी लोग कुशल आ गए। मैं एक बार फिर से जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद आभार करता हूँ।
0: खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ियों को देखते हुए सबसे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रैकर्स की सटीक लोकेशन, मौसम का मिजाज और सुरक्षित लैंडिंग पॉइंट्स का आकलन किया। इसके बाद SDRF, NDRF, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग और गंगोत्री नेशनल पार्क की संयुक्त टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। बर्फीले तूफानों के बीच रेस्क्यू टीमों ने एक एकड़ सैलानियों और उनके सपोर्ट स्टाफ को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। बेस कैंप पर उतरते ही सभी ट्रैकर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग, प्राथमिक इलाज और गर्म कपड़े मुहैया कराए गए।
4: हम लोग ऑर्डन कॉल बेस कैंप से हेलीकॉप्टर रेस्क्यू हुआ है हमारा, पूरा आपकी जो स्टेट मशीनरी है जिसने आर्मी से लेके आपके SDRF एंड अदर यूनिट्स इन्वॉल्व थे। बहुत सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी थी, एरिया भी बहुत ट्रिकी है, काफ़ी स्नोफॉल वहाँ गिर चुकी थी, सो इट्स नॉट ईजी रेस्क्यू। सो बहुत ही प्रोफेशनली किया गया सर। यहाँ पे पहुँचने पे रेस्क्यू करके के बाद यहाँ पे मेडिकल सपोर्ट, बेसिक मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप भी हुआ, चाय कॉफ़ी पानी वो भी था। तो ऑल इन ऑल इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड सारे जो लोग हैं यूनिट्स में उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट दैट हैज़ गॉन इन टू हेल्प अस।
5: पूरे उत्तराखंड गवर्नमेंट, SDRF, इंडियन आर्मी और एविएशन कंपनी, उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सब ने मिलकर काम किया है, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। यही परफेक्ट एग्जांपल है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे साथ में आए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और जो मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, जो जितने भी डिपार्टमेंट्स आए हैं उन सब के लिए मैं बहुत बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट, यू हैव बीन ग्रेट, आप लोगों ने कितनी स्विफ्टली ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है और पूरा सेटअप किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वही उत्तराखंड में चार धाम यात्रियों पर मंडराते खतरे के बीच राहत की बड़ी खबर आई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चिरबासा के पास लैंडस्लाइड की वजह से फंसे करीब 1,500 तीर्थयात्रियों को एक जोखिम भरे ऑपरेशन में सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि उत्तरकाशी में दिनभर हुई बारिश के कारण यात्रा भले ही थम गई थी, लेकिन तीर्थयात्रियों की आस्था और उत्साह पर मौसम का असर नहीं पड़ा। यात्रियों ने होटल में ही नाच गाकर और केक काटकर आनंद लिया। चमोली जिले में दरअसल शुक्रवार देर रात से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे में भारत चीन सीमा से लेकर बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। कई जगहों पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमा है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश ने तापमान गिरा दिया है। हालांकि आज मौसम के साफ होते ही फिर से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू कर दी गई है।
6: मौसम की राहत मिलने के बाद एक बार फिर से चार धाम यात्रा सुचारू हो चुकी है और बद्रीनाथ धाम में लगातार तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो सड़कों पर भी लगातार गाड़ियों की जो कतार है वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को बद्रीनाथ धाम, और कोई वापस लौट रहा है तो कोई बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात है, अब तक 18,05,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को अब तक पहुंच चुके हैं, जो अब तक का एक नया आंकड़ा है। हालांकि वर्ष 2023 का 18,40 का आंकड़ा भी अब जल्द ही टूटने वाला है, क्योंकि अभी 2 महीने से भी अधिक का समय बद्रीनाथ के कपाट बंद होने में शेष है। ऐसे में जहां प्रशासन ने अब चारधाम यात्रा खोल दी है, बद्रीनाथ धाम में मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है, यात्रा बढ़ चुकी है, पितृपक्ष चल रहा है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है पितृपक्ष के दौरान बढ़ती ही है। ऐसे में आने वाले दिनों में और अधिक यहां पर यात्री देखने को मिल सकते हैं।
0: वहीं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी इन दिनों बर्फबारी से गुलजार है। मानो प्रकृति ने इस पूरे इलाके का अपने हाथों से सफेद श्रृंगार किया हो, लेकिन इस बर्फीले मौसम पर आस्था भारी है। श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। हालांकि मौसम के बिगड़ते मिजाज को देखते हुए अस्थायी तौर पर केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा रुकी हुई है, जबकि हिमालय के लाहौल स्पीति जिले में मौसम का तेवर बदला तो काजा, चिचम, पिन घाटी, लांगजा समेत आसपास ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी शुरू हुई। मानसून के जाते जाते इस पहली बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और पूरी स्पीति घाटी का माहौल सर्द हो गया है, तो वहीं लाहौल घाटी में बर्फबारी कुछ दिन पहले से ही हो रही है। और देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह सुबह मौसम ने ऐसी करवट ली कि सितंबर की उमस गायब हो गई। हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को समय से पहले हल्की ठंड का एहसास होने लगा।
7: सितंबर का महीना है और ऐसे में मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। आमतौर पर सितंबर के आखिर में जो है दिल्ली एनसीआर में गर्मी जो है लोगों को परेशान करती है, लेकिन इस बार मौसम में बदलाव देखने को मिला है। लगातार जो है 2-3 दिनों से मौसम में अचानक से एक ठंडकपन का जो है महसूस जो है वो की जा रही है, ठंडक का एहसास हो रहा है, और साथ ही साथ लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो बारिश देखी जा रही है। हालांकि अगर हम पूरे देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो इस समय जो है मौसम में बदलाव हर जगह जो है वो देखने को मिला है।
0: दरअसल मौसम का ये चक्र पलटने का असल जिम्मेदार देश के मैदानी इलाकों में हुई भारी बारिश है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज दोबारा बदलेगा और तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी होगी।
8: देखिए, आने वाले दिनों में मौसम ऐसा रहने की संभावना कम है, क्योंकि इसके बाद जो भी आज जनरली क्लाउडी स्काई कंडीशंस बनी हुई हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। कल जो है पार्टली क्लाउडी स्काई कंडीशंस, और उसके बाद में आसमान के जो है साफ होने की संभावना है, जिसकी वजह से जो अधिकतम तापमान है जो आज करीब 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ये करीब करीब अपने नॉर्मल स्थिति में 3-4 दिन के बाद जो कि 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचने की संभावना है।
0: आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में मानसून की विदाई के साथ मौसम साफ होने और तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में अभी भी बारिश जारी रह सकती है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नैन सिलोड़ी और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ दिल्ली से बने शलड्डा, गुड न्यूज टुडे।
9: तमिलनाडु में सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को मिलेगी सोने की रिंग। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: तमिलनाडु में अब सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन्म लेने वाले बच्चों को 1 ग्राम सोने की अंगूठी सौगात में मिलेगी। सीएम विजय ने मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में आज इसकी औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने यहां बच्चों को अंगूठी पहनाई और आशीर्वाद दिया। सरकार ने इस योजना को थाई मामन थंगा मोथिरम यानी मामा की सोने की अंगूठी योजना नाम दिया है। इसका लाभ 22 जून 2026 या उसके बाद सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन्मे बच्चों को मिलेगा। पहले चरण के तहत 1,28,000 अंगूठियां खरीदी गई हैं। इस योजना के जरिए सरकार का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं में भरोसा बढ़ाना है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिहाज से दिल्ली सरकार ने एहतियातन कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने 1 नवंबर से अगले साल 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। 1 नवंबर से दिल्ली में सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 28 फरवरी तक दफ्तरों के समय में बदलाव का भी फैसला किया है। एमसीटी के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे, जबकि जीएनसीटीडी के तहत आने वाले दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर को इस महीने 29,06,31,230 रुपए का दान मिला है, जबकि अभी छोटे नोटों और सिक्कों और सोने चांदी का वजन करना बाकी है। अभी ऑनलाइन दान राशि की भी गिनती नहीं हुई है। परंपरा के मुताबिक अमावस्या के 1 दिन पहले मंदिर का दान पत्र खोला गया था, जिसके बाद जल झूलनी का मेला होने के कारण गिनती 4 दिन बाद फिर शुरू की गई। लता मंगेशकर की जयंती पर ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उन्हें अपने अंदाज में याद किया। उन्होंने अपनी कला के जरिए लता जी की तस्वीर उकेर कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लता मंगेशकर की जयंती पर पीएम मोदी ने भी उन्हें याद किया। उन्होंने लिखा, भारतीय संगीत जगत में लता मंगेशकर का अप्रतिम योगदान युग युगांतर तक स्मरणीय रहेगा।
9: और अब बात पितृपक्ष की। पितरों के आशीर्वाद पाने के शुभ दिन चल रहे हैं, जो पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने का एक बड़ा अवसर होता है। मान्यता के अनुसार तर्पण और पिंडदान से पूर्वजों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करने का ये 15 दिनों का पावन अवसर है। लिहाजा देश भर में इसके लिए 3 तीर्थ गया जी, प्रयागराज और वाराणसी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी से एक चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई, जिसने श्रद्धा के साथ साथ इंसानियत का भी संदेश दिया। यहाँ अज्ञात, अनाथ और लावारिस दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया गया।

0: माताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा और स्वाहा को हमारा नित्य प्रणाम हो। वे हम पर प्रसन्न हो। पितृपक्ष के दौरान हर कोई अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करता है। पितृपक्ष की पवित्र अवधि में पितरों यानी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोग अनुष्ठान कर रहे हैं और श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को याद करते हुए तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। बिहार का गया जी हो या उत्तर प्रदेश में प्रयागराज या काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी हो, पितृपक्ष के शुरू होते ही यहाँ लोगों की भीड़ नजर आ रही है जो पूरे विधि विधान के साथ अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इन दिनों सनातन परंपरा के अनुसार पूर्वजों का पिंडदान और तर्पण करने का खास महत्व है। बिहार के गया जी को पिंडदान और श्राद्ध का सबसे उच्च और अंतिम केंद्र माना जाता है और यहाँ विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी का तट और अक्षवट में पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के प्रारंभ होने के बाद से ही यहाँ आस्थावानों की भीड़ पहुँच रही है और अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं।
1: किसका पिंडदान करने आए हैं?
2: हम अपने सास ससुर का पिंडदान करने आए हैं।
1: क्या महत्व है यहाँ?
2: यहाँ का महत्व है कि यहाँ पिंडदान करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है, वो परम धाम को प्रस्थान करते हैं।
3: मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
4: पिताजी का, दादा का, परदादा का और दादी का, परदादी का।
0: गया जी में पिंडदान के महत्व को लेकर यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुँचते हैं। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। स्वयं भगवान राम और पांडवों ने भी अपने पितरों के उद्धार के लिए गया में ही पिंडदान किया था और कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं गयासुर को अपने चरण चिन्हों से पवित्र किए थे। गया जी में पिंडदान के लिए पहुँचने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं।
5: यहाँ पे कुल 5 QRT और लगभग 40 बल, DIU टेक्निकल टीम सब लगी पड़ी है कि लोगों को किसी तरीके से किसी भी प्रकार

0: यहीं पे है, कुल 554 कैमरा हम लोग लगाए हैं। और इस बार एक बेटर चीज ये है कि हम लोग AI सिस्टम का यूज कर रहे हैं।
1: गया जी में 26 सितंबर से लोग पूरे विधि विधान के साथ अपने पूर्वजों का पिंडदान करते नजर आ रहे हैं। श्रद्धा और कृतज्ञता की ऐसी ही तस्वीरें प्रयागराज के संगम तट पर देखने को मिल रही हैं, जहां लोग अपने पुरखों के मोक्ष के लिए पिंडदान करने पहुंचे हैं। पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं।
2: यहाँ पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग आए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं या उनकी जो पुण्य आत्माएं हैं वो तृप्त हो जाएं, और जो यहाँ का जो महत्व सुना है उस महत्व के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए।
3: जिस तरीके से मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु, किसी तरीके से वो सभी जो है करें, और उनके अच्छे नेक कामों के लिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके काम करके और उनका जीवन सफल बनाएं और उनका आशीर्वाद मिले, जो भविष्य में भी हमको अगले जन्म में भी अगर मिले तो माता पिता ऐसे ही।
4: काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। साथ ही अब एक नई व्यवस्था पिछले 2-3 वर्षों से लागू हो गई है कि जो लोग आ नहीं पाते हैं, जिनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है, अपने पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पितरों को मोक्ष मिले, मगर उनके पास समस्या है, आने में दिक्कत है, कोई व्यवस्थाएं में दिक्कत है, तो इसकी जो है पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन व्यवस्था भी जो है प्रारंभ हो गई है। जो लोग नहीं आते तो हम लोग ऑनलाइन जो भी पिंडदान कराते हैं।
1: अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच ही रहे हैं, और जो नहीं आ पा रहे उनके लिए यहां ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था भी है। दरअसल प्रयागराज को पितृ मुक्ति का पहला और मुख्य द्वार माना जाता है, लिहाजा गया जी जाने से पहले यही सबसे पहला पिंडदान करने का विधान है। पौराणिक और धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अपने पिता राजा दशरथ का सबसे पहला पिंडदान त्रिवेणी संगम तट पर ही किया था। मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान और तर्पण करने से पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है।
5: जैसा कि पितृपक्ष की मान्यता है, श्री विष्णु श्री हरि नारायण के मुख प्रयागराज निवास करता है, और विष्णु का नाभि काशी कहलाता है, और विष्णु का चरण गया जी, और इसी प्रकार लोग सर्वप्रथम प्रयागराज आते हैं, तत्पश्चात काशी जाते हैं, और तत्पश्चात गया जी में। या पितृपक्ष का विशेष अवसर जिसमें पितृ स्वयं धरती पर अपने बच्चों को आशीर्वाद, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से इस 15 दिवसीय पितृपक्ष में पितरों का आगमन होता है।
1: पितृपक्ष में पिंडदान और श्राद्ध के लिए प्रमुख स्थलों में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी को भी माना जाता है। इसके चलते यहाँ भी पितृपक्ष में बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें हैं काशी के पिशाच मोचन कुंड की, जहाँ पितृपक्ष के दौरान खूब चहल पहल है और बड़ी संख्या में लोग पिंडदान के लिए पहुँचे हुए हैं। वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड को लेकर मान्यता है कि यहाँ विधि विधान से श्राद्ध करने पर आत्मा प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में प्रवेश करती है, और उसके बाद गया जी का पिंडदान पूर्ण फलदायी होता है।
6: श्राद्ध करने का मतलब अपने पितरों को हम भोजन दे रहे हैं और उनको पिंड दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनको आवाहन कर रहे हैं कि आज 15 दिन हमारे परिवार में आप रहिए और हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में धन पुत्र लक्ष्मी की कमी न हो, बारी फुरवारी हमारा सब भरा।
1: राजस्थान के धौलपुर जिले में बड़ी संख्या में लोग मुचकुंद घाट पर स्नान करते हुए मंत्रोच्चारों के बीच पितरों को तर्पण अर्पित करते दिखे। तीर्थराज मुचकुंद घाटों पर आचार्य मंत्रोच्चारण के साथ चावल, जौ और तिल से तर्पण करा रहे, और लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद कर परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। पिंडदान को लेकर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अच्छी पहल की गई। यहां पहुंच नदी के तट पर अज्ञात अनाथ और उन आत्माओं के लिए भी सामूहिक तर्पण पिंड पूजन किया गया जिनका दुनिया में कोई नहीं है। पिंडों की इस कतार में कुछ पिंड अपने पूर्वजों के लिए हैं, तो कुछ उन अनजान लोगों के लिए जिनके नाम तक शायद किसी को मालूम नहीं।
7: जिनका कोई नहीं है उनके लिए भी ये करा गया है, उनके लिए भी तपन के रखा गया है। और हम सब लोग अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि हम सिर्फ अपने ही माता पिता के विषय में सोचते हैं, लेकिन यहाँ आने के पश्चात ऐसे हजारों माता पिताओं का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हो रहा है।
8: यहाँ से जो है तीर्थराज ग्याजी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अज्ञात अनाथ लावारिस लोगों के लिए।

0: की आत्मा को मोक्ष की गति प्राप्त हो, उसके लिए हम सब लोग इन पवित्र पिंडों को लेकर तीर्थराज जी प्रस्थान कर रहे हैं।
1: सामूहिक तर्पण और पिंड पूजन के बाद समाज सेवी जितेंद्र तिवारी की अगुवाई में झांसी रेलवे स्टेशन से 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चंबल एक्सप्रेस ट्रेन से पिंडों को लेकर गया जी के लिए रवाना हुआ। ये प्रतिनिधिमंडल गया जी पहुंचकर 878 परिवारों के पूर्वजों के लिए वहां पूरे विधि विधान से पिंडदान करेगा। शास्त्रों के अनुसार पितरों का स्थान देवताओं से भी बड़ा है, लिहाजा पितरों की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। यही वजह है कि लोग नदियों और सरोवरों में स्नान कर पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं, ताकि उनकी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति हो सके। राजस्थान के धौलपुर से महेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश के झांसी से अजय झा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ बिहार के गया जिसे पंकज कुमार, गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
1: हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सोमवार 28 सितंबर को सेंसेक्स 1124 अंक लुढ़ककर 72772 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 360 अंक फिसला, ये गिरकर लगभग 6 महीने के निचले स्तर 22780 पर आ गया। आज सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट रही। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 2600 रुपए फिसली। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,50,000 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 5,000 रुपए की गिरावट आई। अब 1 किलो चांदी के दाम 2,32,000 रुपए हो गए। डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। सोमवार 28 सितंबर को इसमें 28 पैसे की गिरावट आई। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 96.03 हो गई।
2: सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द विवान ने ओपनिंग वीकेंड पर की शानदार कमाई। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड पर।
1: मुंबई में रामायण की प्रमोशनल इवेंट में सितारों का भक्ति वाला अंदाज देखने को मिला। इवेंट से पहले रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। फिल्म में रणबीर भगवान राम, साई सीता माता और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे। खास बात यह रही कि मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट भी इवेंट में पहुंचे। पब्लिक की मांग पर रणबीर ने उनसे जय श्री राम बोलने को कहा और मिस्टर बीस्ट ने पूरे उत्साह के साथ जय श्री राम का उद्घोष किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द विवान ने ओपनिंग वीकेंड पर शानदार कमाई की है। फिल्म ने शुक्रवार को 8.12 करोड़, शनिवार को 11.41 करोड़ और रविवार को 15.10 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। यानी पहले वीकेंड में फिल्म की कुल कमाई 34.63 करोड़ रुपए पहुंच गई है। बिहार समेत मास सर्किट में फिल्म का प्रदर्शन मजबूत रहा। वहीं शहरी इलाकों और मल्टीप्लेक्स में भी शनिवार रविवार को अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिले। अब सोमवार से गुरुवार तक फिल्म की पकड़ अहम होगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को दृश्यम द कंक्लूजन रिलीज होने वाली है। एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी ने सोमवार को तिरुमाला मंदिर पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। सुबह सुबह उन्होंने सुप्रभातम सेवा में हिस्सा लिया और मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद जैसे ही मीनाक्षी मंदिर से बाहर निकली, उन्हें देखकर फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उनके साथ सेल्फी लेने और तस्वीरें क्लिक कराने के लिए उत्साहित नजर आए। मीनाक्षी ने कहा कि परिवार के साथ मंदिर आकर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद पाकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उनकी अगली फिल्म वृषाकर्मा में वो नागा चैतन्य के साथ नजर आएंगे, जो 4 दिसम्बर को रिलीज होगी।
2: न्यूज पथ में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: राजधानी दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही रफ्तार। कल गृह मंत्री अमित शाह जनता को समर्पित करेंगे बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी। 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदला मौसम का मिजाज। ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा पारा। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम, 18 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। शूटिंग में ईशा सिंह और 1500 मीटर में गुलवीर सिंह ने जीता सिल्वर, विद्या रामराज, पिंकी और पारुल ने जीता ब्रॉन्ज। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
4: नन्ही नन्ही बच्चियाँ, प्यारी सी मुस्कान और गणपति बप्पा के मूषक वाहन पर शानदार नृत्य प्रस्तुति। सुंदर वेशभूषा में सजी इन बच्चियों ने अपने हर स्टेप से लोगों का दिल जीत लिया। तालियों की गूंज के बीच बच्चियों का एक एक डांस मूव देखने लायक रहा। चेहरे के भाव हूँ या डांस के स्टेप, हर अंदाज में बच्चियों ने गजब का तालमेल दिखाया। सोशल मीडिया पर भी लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: एक तरफ छोटे छोटे बच्चे और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड, दोनों के बीच शुरू हुआ टग ऑफ वॉर का मुकाबला। बच्चे भी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींच रहे थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा दांव चला कि पूरा खेल ही पलट गया। गार्ड ने बच्चों की तरफ कैंडी फेंक दी, कैंडी देखते ही बच्चों ने रस्सी छोड़ दी और कैंडी उठाने दौड़ पड़े। बस फिर क्या था, गार्ड ने मुकाबला जीत लिया। कपड़े धोने के लिए आपने वॉशिंग मशीन तो खूब देखी होगी, लेकिन ये जुगाड़ शायद पहली बार देखा होगा। वीडियो में बीच में आटा है, उस पर पटरी रखी है, एक तरफ पत्नी बैठी है और दूसरा तरफ पति पटरी को घुमा रहा है। पटरी के घूमते ही कपड़े धोने का काम भी होता नजर आ रहा है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा दिमाग आया कहां से। हुनर, खूबसूरती और संस्कृति का ऐसा संगम कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। मराठा लुक में तैयार इस महिला का अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में महिला ने ऐसा हुनर दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया। गोल सर्कल को बड़े ही अनोखे अंदाज में चारों तरफ गोल गोल घुमाने का उनका तरीका बेहद दिलचस्प है। खूबसूरती के साथ हुनर का ये मेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बारिश हो रही है, सड़कें भीग रही हैं, लेकिन इस महिला के डांस का जोश जरा भी कम नहीं हुआ। बारिश की बूंदों के बीच महिला ने ऐसा डांस किया कि देखने वाले भी घरों से बाहर निकल आए। गाने की धुन बजती रही और महिला के कदम उसी ताल पर थिरकते रहे। हर स्टेप में जबरदस्त एनर्जी नजर आई। बारिश में महिला का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी फेस्टिव सीजन में उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रही एक बड़ी पहल की। मिठाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिठाइयों की बिक्री को लेकर एक ऐसा नियम बनाया है जिससे कि लोगों को खराब और बासी मिठाइयों से छुटकारा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मिठाई दुकानों पर बिक्री के लिए रखी जाने वाली मिठाइयों के साथ यूज बाय डेट या फिर बेस्ट बिफोर लिखना अनिवार्य कर दिया है। स्वीट शॉप में काउंटर ट्रे और डिब्बों पर मिठाई बनाने की तारीख के साथ साथ उसकी यूज बाय डेट यानी कि मिठाई के उपभोग की अंतिम तारीख दर्ज करना जरूरी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में स्वीट शॉप को लेकर बना ये नया नियम 15 अक्टूबर 2026 से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। त्योहारों के दौरान बाजारों में बासी, घटिया और मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। खराब मिठाई खाने से ग्राहकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और पेट की बीमारियां या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इस समस्या पर पूरी तरह शिकंजा कसने और उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित चीजें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है। अगर मिठाई पहले से पैक की गई है या ग्राहक को पैक करके दी जा रही है तो डिब्बे पर बनाने की तारीख और खराब होने की आखिरी तारीख का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। नियम लागू होने के बाद फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें दुकानों का औचक निरीक्षण करेंगी। इस दौरान नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अलग अलग मिठाइयों के खराब होने की समय सीमा अलग होती है। दूध और खोया या मावा से बनी मिठाइयां जैसे पेड़ा, बर्फी, कलाकंद और रसमलाई 1 से 2 दिन के भीतर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त होती है। घी और ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयां जैसे कि बेसन लड्डू, काजू कतली और सोन पापड़ी 7 से 15 दिनों तक सुरक्षित मानी जाती है। वहीं जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन जैसी मिठाइयां 2 से 3 दिनों तक उपयोग की जा सकती है। जाहिर है मिठाइयों पर यूज बाय डेट जैसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने से ग्राहकों को काफी सहूलियत मिलेगी और वे उसका इस्तेमाल समय पर करेंगे। मिठाइयों से जुड़े इस नियम को लेकर हमने वाराणसी में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: मान लीजिए ठीक भी है और नहीं भी ठीक है, क्योंकि इसमें जो खोया हुआ रहता है वो तो 1 ही 2 दिन तक चलता है। मिठाइयाँ जो छीने की रहती हैं और ये तो 1 ही 2 दिन में ख़राब हो जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सरकार क्वेश्चन टैग लगा रही है, ये मार्क टैग लगा रही है, क्या ये ज़रूरी है कि ये फिर से तो उसी मिठाई पे लोग लगा सकते हैं?
3: मतलब आपका है कि ये संशय हो सकता है कि क्या पता वो दुकानदार ही उसमें कुछ उलट फेर कर सकता है?
4: बहुत अच्छा निर्णय है और ये होना चाहिए है कि उसकी एक्सपायरी कब तक है, ये बिल्कुल
5: मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि कोविड हुआ था उसके बाद बहुत सारे तमाम पैरामीटर्स हुए और उस पर हमेशा हाइजीन लीक की है। आपने राजश्री का केस अभी हाल ही में सुना ही होगा, उन्होंने भी यही हाइजीन का इशू था क्योंकि मिठाई का कोई रिपोर्ट नहीं कब का। पर मैं गोविंद स्वीट्स को तो बहुत मैं प्रचलित बहुत जान रहा हूँ, अब इनकी कचौड़ी सब्जी है वो है, इन्होंने बहुत ही हमेशा से हाइजीन मेंटेन किया है ऐसा नहीं, और ये बहुत ही अच्छा FSSAI प्रोटोकॉल ली है और ये बहुत ज़रूरी भी। आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज़ में ये सब ऑलरेडी लागू हो चुके हैं और वाराणसी जैसे छोटे शहरों में जहाँ पे सिर्फ यहाँ पे भी, और इस चीज़ का चलन यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे भी उस चीज़ का अच्छे से उपयोग होना चाहिए और सारी चीज़ों का प्रॉपर शेल्फ लाइफ देखे हर चीज़ पर लिखा होना चाहिए।
3: मतलब कस्टमर को इससे फायदा मिलेगा?
5: ये बिल्कुल फायदा मिलेगा क्योंकि कस्टमर को पता चले कि वो पे कर रहे हैं, वो सेफ है कि नहीं है,
3: तब तक इसका इस्तेमाल
5: क्या। जी बिल्कुल, और सारी चीज़ें उनको पता होगी अच्छे वे में।
6: दुकान तो हमारी काफ़ी पुरानी है और रही बात जो आप कह रहे हैं कि मतलब सब चीज़ों पर टैग लगा होना चाहिए, भाई भी इसी में हमारे भी प्रोडक्ट जो है ये बॉक्स वगैरह है ना, ये तो सारे जो रहते लिखे रहते हैं कि कौन सा मतलब प्रोडक्ट कितने टाइम के लिए मतलब अवेलेबल है या फिर उसमें क्या रहता है। यहाँ ये आप देखें, इस पर लिखा हुआ पूरा प्रॉपर, खोआ मिठाई बुंदेल 3 days to 5 days, ड्राई फ्रूट्स मिठाई 7 days to 15 days, देसी घी मिठाई 3 days to 7 days, एंड बंगाली स्वीट्स 24 hours to 48 hours, नमकीन 10 days and 15 days, ये पूरा प्रॉपर लिखा रहता है। अगर कस्टमर चाहे तो आप इस पर देख सकता है वो कि हमारी जो मिठाई लेके जा रहे हैं वो किस तरीके का, वो सेफ है या फिर नहीं भी है प्रॉपर। बाकी जो सारी मिठाइयाँ जो सेम डे की होती हैं, फॉर एग्जांपल ये सब जो लगी हुई हैं ये सब सेम डे की,
3: सेम डे में खपत हो जाती है
6: जितना, हाँ वो सेम डे के लिए होती है। और हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ मतलब बचा तो हम उसको नेक्स्ट डे यूज़ करें या फिर टुमारो यूज़ करें, ऐसा कुछ
3: का मौका ही नहीं,
6: कुछ मौका नहीं। आप शाम को आएंगे हमारे पूरा फ्री मिलेगा काउंटर, बाकी सब बाकी कस्टमर का बिलीवनेस ये है कि वो कैसा मतलब बिहेव करता है हमारे साथ।
7: नहीं, ये बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे खाने में एक्सपायरी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, छिपकलियाँ मिल जाती हैं जिसे टैग से पता चलेगा ना कि हमें रिफ्रेश करना है, कब उपयोग करना है, तो ज़रूरी है। टैग तो बहुत बहुत पहले से नियम गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन
3: उसको कड़ाई से पालन इसका करा रहा है।
7: हाँ, अब कड़ाई से पालन हो और सब लोग फॉलो करें तो ज़्यादा सही है। मुझे लग रहा है फूड से लेकर के बीमारियाँ सबसे ज़्यादा लोगों में हो रही हैं, सबसे ज़्यादा खाने पीने से ही लोग समस्या ग्रसित हैं,
3: पेट संबंधित बीमारियाँ बहुत,
7: तो वो चीज़ें इसमें ही सबसे जुड़े, और हर कोई अब डिपेंड हो गया है बाहर के खाने पर, बाहर का खाना हर कोई चाह रहा है करना, घर के खाने में लोग विश्वास कम कर रहे हैं जितना बाहर का खा रहे हैं, तो इसलिए बाहर की भी चीज़ें स्वच्छ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए।
3: वाराणसी के इस हुकुलगंज इलाके में जो एक फेमस स्वीट शॉप है वहाँ हम लोगों ने लोगों से बात की और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जो ये निर्णय लिया गया है, ये फैसला लिया गया है, उसको बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, इसकी सराहना कर रहे हैं। साथ ही दुकानदार भी इस मुहिम में आगे बढ़कर कंधे से कंधे कंधा मिलाकर इसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे।
1: राजस्थान के जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा एडिशन चल रहा है। इसमें दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 8 देशों की वायुसेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल के तरंग शक्ति अभ्यास में पहली बार अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 हिस्सा ले रहे हैं।

0: आठ देश, 80 आधुनिक एयरक्राफ्ट और 1500 जवान, ये है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की ताकत, जिसका प्रदर्शन इन दिनों जोधपुर के आसमान में शुरू हो चुका है। इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा 7 मित्र देश अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा ले रहे हैं।
1: ऐसे तरंग शक्ति में तकरीबन 40 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 8 एक्टिव देश हैं और 32 ऑब्जर्वर देश हैं, जिसमें दुनिया के आधुनिकतम जहाज मोस्ट मॉडर्न एयरफोर्स हिस्सा ले रही है। आपस में मिलकर किस तरह से लड़ाई लड़नी है, किस प्रकार से मिलकर हम भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को समझना, स्टेल्थ, ईडब्ल्यू, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, इसको सभी एंगल्स को देखते हुए ये एक्सरसाइज हो रही है। जो
0: इस युद्धाभ्यास के दौरान अलग अलग देशों के ये लड़ाकू विमान एक साथ उड़ान भरकर रणनीतिक तालमेल और हवाई युद्ध की बारीकियों को आपस में साझा कर रहे हैं, ताकि जंग के मैदान में किसी भी हालात से निपटा जा सके। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना की तरफ से सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस और जैगवार जैसे लड़ाकू विमानों को उतारा गया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और हवा में ही ईंधन भरने वाले एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी शामिल किए गए हैं।
1: इससे न केवल हमारी देश की जो प्रोडक्ट है, देश की जो जहाज, जो हेलीकॉप्टर है, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी जो ताकत है उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़े पर किस प्रकार से मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी ड्रोन सिस्टम, ड्रोन सिस्टम, एयरफोर्स की बारीकियां, लड़ने का तरीका, डॉक पॉइंट, किल चेन, सब चीजों के ऊपर रिहर्सल किया जाएगा।
0: खास बात यह है कि इस साल के तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना का 5वीं जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट F-35 आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो पहली बार इस मेगा एयर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। यही वजह है कि भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी जोधपुर पहुंचे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर युद्धाभ्यास में अमेरिकी वायुसेना की भागीदारी को लेकर खुशी जाहिर की है।
1: F-35 एक बहुत ही आधुनिक स्टेल्थ जहाज है, मल्टी रोल जहाज है, जिसके द्वारा किस प्रकार से हम कम्युनिकेट करेंगे, डाटा शेयर करेंगे, किस प्रकार से लॉजिस्टिक्स होंगे, किस प्रकार से हम मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं, ये सब के द्वारा भारत की एयरफोर्स को काफी सीखने का मौका मिलेगा और उनको भारत के एक्सरसाइज सिंदूर में अनुभव है, किस प्रकार से पाकिस्तान को हमने खत्म कर दिया, उनकी एयर बेस को खत्म कर दिया, ज्वाइंट ऑपरेशन किस प्रकार से किया, वो सीखने का मौका।
0: ये एक्सरसाइज 12 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान एक साथ गरजते लड़ाकू विमान केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन भर नहीं है, बल्कि दुनिया भर की प्रमुख वायुसेनाओं के साथ भारत के मजबूत होते रक्षा संबंधों की एक बुलंद तस्वीर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: रूस में हुआ अनोखे पंपकिन बोट रेस का आयोजन, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: रूस में विशाल कदुओं ने नाव का रूप लिया और फिर पानी में शुरू हुई अनोखी रेस। मॉस्को में आयोजित बैटल ऑफ द जॉइंट्स फेस्टिवल में पहली बार पंपकिन बोट रेस ने सबका ध्यान खींचा। 400 से 500 किलो तक के विशाल कद्दुओं को सावधानी से खोखला कर नाव बनाया गया। कॉस्ट्यूम पहनकर प्रतिभागी इन कद्दू की नावों पर सवार हुए और तालाब में रेस लगाई। हार्वेस्ट फेस्टिवल में 75 रूसी क्षेत्रों से सब्जियां पहुंची। 200 से ज्यादा किस्मों के बीच विशाल कद्दू आकर्षण का केंद्र रहा। चिली में लाल बालों वाले लोगों की अनोखी दौड़ ने खूब सुर्खियां बटोरी। राजधानी सेंटियागो में करीब 800 लोगों ने 3 किलोमीटर लंबी कोलोरो रन में हिस्सा लिया। इस रेस की खास बात थी कि इसमें एंट्री के लिए फिटनेस नहीं बल्कि लाल बाल होना जरूरी था। प्राकृतिक लाल बालों वाले प्रतिभागियों के साथ डाई और विग से रेडहेड लुक अपनाने वाले लोग भी दौड़ में शामिल हुए। पूरे इवेंट में लाल रंग का अलग ही नजारा देखने को मिला। चिली में लाल बालों वालों को कोलोरो कहा जाता है, इसी से रेस का नाम रखा गया। मैक्सिको से अमेरिका तक तूफान का असर देखने को मिल रहा है। मैक्सिको में कैटेगरी 3 के तूफान पोलो के खतरे को देखते हुए समुद्र तट और कई रेस्तरां बंद कर दिए गए। कैबो सैन लुकास में लोगों के समुद्र तटों पर जाने पर रोक लगाई गई। तूफान की हवा 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंची और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। वहीं अमेरिका के पूर्वी तट पर नॉर्थ ईस्टर ने मुश्किलें बढ़ा दी। न्यू जर्सी के कई इलाके जलमग्न हैं और करीब 1,00,000 घरों में बिजली गुल होने की खबर है।
2: जंगली जानवरों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव अक्सर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। ऐसे में ओडिशा का एक खास ट्रेनिंग सेंटर हाथियों को प्रशिक्षित करके ऐसे टकराव को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं हम ओडिशा के चमका में मौजूद इस सेंटर की कहानी, जहां पर तैयार किए जा रहे हाथी वाइल्ड लाइफ और इंसान के बीच अहम कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
3: जंगल में खेल कूद करते इन हाथियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसानों के साथ ही हैं। और लोगों के बीच रहने के लिए इन्होंने काफी प्रैक्टिस की है। हकीकत यही है कि इन हाथियों को इंसानों का साथी बनने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीरें ओडिशा के चंदका वाइल्ड लाइफ डिवीजन में कुमार खूंटी के इलाके की हैं। घने जंगल का ये इलाका महज एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, जहां पर आप तरह तरह के जंगली जीव जंतुओं का दीदार कर सकते हैं और कुदरत की खूबसूरती को निहार सकते हैं, बल्कि ये जगह इस मायने में खास है कि यहां पर हाथियों का स्पेशल कुमकी ट्रेनिंग सेंटर है। यहां हाथियों की देखभाल की जाती है और उन्हें वन विभाग की ओर से विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है।
4: Mainly the rescue center. Two elephants who were discarded by this horde or injured at somewhere, they are rescued and they are treated and trained. This type of training is no doubt it is a training center.
3: चंदका वाइल्डलाइफ सेंचुरी करीब 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इस जंगली इलाके में फिलहाल 46 जंगली हाथी मौजूद हैं, जबकि 9 भटके हुए हाथियों को यहां पर बने खास ट्रेनिंग सेंटर में लाकर रखा गया है, जिन्हें जंगल में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा हो। यहां पर इन हाथियों के रहने के लिए इंतजाम है और खान पान का खास ख्याल रखा जाता है। हाथियों की सेहत, आराम, नहाने, खेलकूद का पूरा ख्याल यहां पर रखा जाता है। साथ ही हाथियों को यहां पर हर दिन 2 से 3 घंटे प्रशिक्षित भी किया जाता है। हाथियों की मौजूदगी इन इलाकों के लिए काफी खास है, जहां इंसानों और जंगली हाथियों के बीच टकराव का खतरा बना रहता है।
4: दिस इज द आवर एम टू अचीव दिस मैन एलिफेंट टू मिनिमाइज द मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। सो वी आर ट्रेनिंग, वी आर इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग टू द एलिफेंट्स, इन फ्यूचर दे विल हेल्प।
3: ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित हाथी और उनके साथ काम करने के लिए टीम जंगली हाथियों को नियंत्रित तरीके से आबादी से दूर करने में मदद करती है। यहां पर तैयार हो रहे हाथी जंगल और आबादी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश में वन विभाग के अहम साथी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी
2: खबरें। कभी रफ्तार से दौड़ती है तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच।
1: एशियन गेम्स के 9वें दिन भारत को 8 मेडल मिले। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर।
2: भारत को एशियन गेम्स के 9वें दिन 8 मेडल मिले। यशवीर सिंह ने जेवलिन थ्रो में 85.72 मीटर के पर्सनल बेस्ट के साथ सिल्वर और रोहित यादव ने 84.35 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज जीता। इससे पहले शिवशंकर मुरली ने लॉन्ग जंप में सिल्वर अपने नाम किया तो गुलवीर सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में सिल्वर जीता। जापान के आईची नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में आज भारत की ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर हासिल किया तो वहीं पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज जीता। विद्या रामराज ने 400 मीटर हर्डल्स में ब्रॉन्ज और पिंकी बलहारा ने कुराश के 78 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज जीता। इन मेडल के साथ भारत के खाते में अब 45 मेडल हो गए हैं। एशियन गेम्स में मेंस हॉकी टीम का शानदार और अजीय अभियान जारी है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने अपने ग्रुप चरण के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को 10-0 से करारी शिकस्त देकर पूल ए में टॉप पर पहुंच गया है। पूरे ग्रुप स्टेज में भारत का प्रदर्शन बेहद दबदबे वाला रहा, जहां टीम ने अपने 5 मैचों में जीत दर्ज की और 15 अंक लेकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत का सेमीफाइनल में 1 अक्टूबर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के खिलाफ फीफा फ्रेंडली मैच खेलने के लिए भारतीय फुटबॉल टीम कोलकाता पहुंच गई है। इस मैच को लेकर कोलकाता में जबरदस्त उत्साह है। भारतीय फुटबॉल इतिहास में ये पहला मौका है जब सीनियर पुरुष टीम 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। ये महामुकाबला 3 अक्टूबर को कोलकाता के मशहूर साल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। ब्राजील के बाद भारत 6 अक्टूबर को इसी मैदान पर उरुग्वे के खिलाफ एक और फ्रेंडली मैच खेलेगा।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या आपको बार बार जीवन में धोखा मिलता है? प्रेम, विवाह, रिश्ते, दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: राजधानी दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही है रफ्तार। कल गृह मंत्री अमित शाह जनता को समर्पित करेंगे 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में बदल गया मौसम का मिजाज, ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा पारा। एशियन गेम्स के 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी, शूटिंग में ईशा सिंह और 1500 मीटर में गुलवीर सिंह ने जीता सिल्वर, विथ्या रामराज, पिंकी और पारुल ने जीता ब्रॉन्ज। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
3: नमस्कार, गुड न्यूज स्टूडियो देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं सितंबर में सर्दी के एहसास की, अचानक हवा बदल गई, बारिश हुई और तमाम मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड ने दस्तक दे दी हो। वहीं कई इलाकों में इतनी बारिश का जल स्तर बढ़ चुका है और सैलाब आ गया है। तो वहीं पर देखिए पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है और इसका ठंडी हवाओं का असर दिल्ली तक महसूस हो रहा है हमको। सितंबर के महीने में मौसम की ऐसी मनमर्जी क्यों है, इस पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे, समझाएंगे कि बंगाल की खाड़ी में आए डीप डिप्रेशन और पश्चिमी विक्षोभ का असर क्या होगा और क्या ये सचमुच इस साल ठंड वक्त से पहले दस्तक देने जा रही है या फिर सर्दियों के आने में देर होगी, ये भी एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ बाढ़ की चुनौती का सामना कर रहे बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सैलाब में फंसे लोगों से, जिनकी हिफाजत करने के लिए न सिर्फ एनडीआरएफ ने पूरी ताकत लगा रखी है बल्कि जहां जरूरी है वहां इंडियन एयरफोर्स के कमांडोज भी मोर्चा संभाल रहे हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी का डीप डिप्रेशन और दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ, दोनों का असर यह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ है। मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, बस्तर का एक बड़ा इलाका जलमग्न हो चुका है, तो दूसरी ओर पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से चुनौतियां तमाम खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन मुश्किल में फंसे लोगों तक मदद पहुंच रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन से उन्हें बचाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए।

दरिया के बीच आधा डूब चुका है ये मकान। ऐसे हालात में भला कहां से मदद और कैसी आस? आसमान से देवदूत ही आते तो यहां से लोगों को निकाला जा सकता था और हुआ भी वैसा ही।

0: इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। ठीक इस मकान के ऊपर जाकर नीचे रस्सी फेंकी गई और पूरे धैर्य के साथ एक एक करके सैलाब में फंसे लोगों को ऊपर खींच लिया गया। हैरत अंगेज तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जहां भारी बारिश की वजह से इंद्रावती नदी में बाढ़ आ गई। पानी इतना बढ़ गया कि दूरदराज के इलाकों में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा। रस्सी के सहारे गोल गोल घूमते मगर सही सलामत सभी हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। बस्तर में रेस्क्यू की एकलौती तस्वीर नहीं है। इंद्रावती का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में सैलाब जैसे हालात हैं। और इस वक्त प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की है। वैसे तो 42 राहत शिविर बनाए गए हैं, पर जो पानी के बीच में है उनको निकालने में एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जगदलपुर के पास डोंगाघाट गांव में करीब दर्जन भर लोगों के सैलाब में फंसे होने की खबर मिली। कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए एयरफोर्स को सूचना दी गई और सेंट्रल एयर कमांड की टीम ने हेलीकॉप्टर से इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सभी लोग एक कच्चे मकान की छत पर नजर आए। इसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। एक बच्चा तो गोद में था। और उधर तेज बहाव के चलते मकान के कभी भी ढहने का खतरा बना हुआ था। समय कम था, लिहाजा वायुसेना ने बेहद जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। MI-17V5 हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए गरुड़ कमांडोज घर की छत पर उतरे और सभी लोगों को एक एक करके हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। बस्तर के राहत शिविरों में करीब 5,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को रखा गया है। प्रशासन सभी तक मदद पहुंचाने और सभी को सुरक्षित रखने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। मौसम का ये मिजाज, बारिश बेहिसाब, इसकी वजह से जहां मैदान में संकट की तस्वीरें हैं, वहीं पहाड़ों पर भी बारिश और बर्फबारी ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। लेकिन ऐसे खतरों के बीच पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उत्तरकाशी में ऊंचे पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश और भारी बर्फबारी के बीच 136 ट्रैकर्स की जान मुश्किल में फंस गई। 5-7 फीट तक जमी बर्फ और ठंड में जमा देने वाला तापमान, ऐसे में लोगों को वहां से निकालना आसान नहीं था। लेकिन जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन शुरू किया। युद्ध स्तर पर चल रहे इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर सैटेलाइट संचार का इस्तेमाल हुआ। सबसे मुश्किल हालात कालिंदी पास और ऑर्डिनेंस कोल जैसे बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में थे, जहां मौसम खराब होने के साथ साथ रास्ते भी बर्फ से ढके हुए थे। हालात की जानकारी मिलते ही प्रशासन एक्टिव हुआ और ट्रैकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।
1: ट्रैकिंग करने के लिए 2 दिन पहले हम लोग 22 लोग यहां से ऊपर गौमुख के लिए निकले, पर हम भोजपासा में रुके 2 दिन के लिए और बहुत बर्फबारी की वजह से आज हम वापस आना पड़ा। सब सही सलामत है और गंगोत्री नेशनल पार्क के सारे कार्यकर्ता ने हर एक थोड़े थोड़े सेक्टर पे हमारा बहुत सहायता किया और उसी वजह से हमने बहुत बहुत सकुशल सब नीचे आए, बहुत एंजॉय किया।
0: सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स के जरिए हवाई रेकी की गई। फंसे हुए लोगों की सटीक लोकेशन, मौसम का मिजाज और सुरक्षित लैंडिंग पॉइंट्स का आकलन किया गया। इसके बाद SDRF, NDRF, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग और गंगोत्री नेशनल पार्क की संयुक्त टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। खुद जिलाधिकारी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। शासन के सख्त निर्देशों के तहत हर हेलीकॉप्टर में सैटेलाइट फोन लगाए गए, ताकि कट चुके नेटवर्क के बीच संचार व्यवस्था बनी रहे। बर्फीले तूफानों के बीच रेस्क्यू टीमों ने एक एक करके सैलानियों और उनके सपोर्ट स्टाफ को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया। सिर्फ निकालने तक ही अभियान सीमित नहीं रहा। बेस कैंप पर उतरते ही सभी ट्रैकर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और जिन्हें जरूरत थी उन्हें तुरंत प्राथमिक इलाज और गर्म कपड़े मुहैया करवाए गए।
2: सबसे पहले मैं उत्तराखंड सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, तुरंत कार्रवाई करके हेली की सुविधा हमें दी है और खासकर जो जिला अधिकारी हैं प्रसन्ना रेड्डी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मिनट टू मिनट सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है और तत्काल रेस्क्यू किया गया, सभी लोग कुशल आ गए।
0: قدرت کے اس برفیلے امتحان میں پرشاسنک مستعدی اور ریسکیو ٹیموں کی جاں بازی کی جیت ہوئی۔ اسی طرح اتراکھنڈ کے کالندی ٹریک پر پھنسے 100 سے زیادہ ٹریکرز کو بھی ریسکیو آپریشن کے ذریعے سرکشت نکالا گیا۔
3: ज्ञात हुआ कि कुछ ट्रैकर्स उत्तरकाशी जनपद में और कुछ लोग बागेश्वर में फंसे हुए हैं, उनको पहले सुरक्षित पहुंचाया गया, स्थान पर रोका गया। इसके बाद फिर उनको आज सुबह से 8 हेलीकॉप्टर लगाए गए। उत्तरकाशी जनपद के लिए 8 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जो ऑर्डन कॉल था वहाँ से 29 लोग थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है।
0: अभियान में मदद के लिए सहस्त्रधारा से SGRF की एक एक्सपर्ट हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से हर्षिल पहुंची और कई ट्रैकर्स को सुरक्षित बचाकर हर्षिल में सेना के हेलीपैड पर लाया गया। ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाला गया, पर इसके साथ ही उत्तराखंड में इस वक्त फोकस चारधाम यात्रा पर भी है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर चरबासा के पास लैंडस्लाइड की वजह से फंसे 1500 तीर्थयात्रियों को एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित निकाल लिया गया। बाबा केदार के दर्शन की आस में निकले श्रद्धालुओं की राह में अचानक एक बड़ी चुनौती तब आई जब सोनप्रयाग से करीब 3 किलोमीटर आगे चरबासा हेलीपैड के पास पहाड़ी दरकने की वजह से मलबा रास्ते पर आ गया। सोनप्रयाग पुलिस से सूचना मिलते ही SGRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हालात देखते हुए SGRF, NDRF और DDRF की टीमों ने मिलकर संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। बेहद संकड़े और खतरनाक हो चुके रास्ते से बचाव टीमों ने एक एक तीर्थयात्री को सावधानी पूर्वक निकाल लिया और सभी 1500 लोगों को सुरक्षित गौरीकुंड पहुंचा दिया गया। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: تو دیکھیں، اب سوال یہ ہے کہ جاتے ہوئے ستمبر میں موسم کا یہ مزاج کیوں ہے؟ عام طور پر یہ وقت مانسون کے جانے کا ہے، لیکن اس وقت زبردست بارش لوگوں کو حیران کر رہی ہے۔ اصل میں اس کی وجہ ہے بنگال کی کھاڑی میں بنا ایک کم دباؤ کا کھیتر جو 22 ستمبر کو ڈیپ ڈپریشن میں بدل گیا اور جسے بول چال میں ہم کہتے ہیں ارنب چکروات۔ اسی سمے ایک پشچمی وکشوب بھی ایکٹیو ہے جس کی وجہ سے راجستھان اور پہاڑی راجیوں میں بارش ہو رہی ہے۔ چلیے سمجھتے ہیں کہ موسم کا یہ پیٹرن کیوں ہے اور اس کی وجہ سے سردی جلدی آئے گی یا اس کے آنے میں اور دیری ہوگی۔

0: पहाड़ों पर बर्फ की सफेद धूल, घाटियों में बरसता पानी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का असर। सितंबर का आखिरी हफ्ता है, लेकिन मौसम ने नवंबर वाली करवट ले ली है। कहीं आसमान से बरसती बूंदों ने गर्मी का असर धो दिया, तो कहीं हिमालयी चोटियों से उतरती सर्द हवा ने तापमान नीचे ला दिया। यानी देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है।
1: सितंबर का महीना है और ऐसे में मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। आमतौर पर सितंबर के आखिर में जो है दिल्ली एनसीआर में गर्मी जो है लोगों को परेशान करती है, लेकिन इस बार मौसम में बदलाव देखने को मिला है। लगातार जो है दो तीन दिनों से मौसम में अचानक से एक ठंडकपन का जो है महसूस जो है वो की जा रही है, ठंडक का एहसास हो रहा है और साथ ही साथ लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो बारिश देखी जा रही है। हालांकि अगर हम पूरे देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो इस समय जो है मौसम में बदलाव हर जगह जो है वो देखने को मिला है। हर तरफ जो है बारिश जो है वो इस वक्त देखी जा रही है, लेकिन इस बार जो है ये जो मौसम में बदलाव देखने को मिला है ये एक डीप प्रेशर की वजह से, जो कि बंगाल की खाड़ी से जो है उठकर जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया और उसके बाद जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में जो है बारिश देखी।
0: सबसे पहले रुख करते राजधानी दिल्ली का, जहां कुछ दिन पहले तक उमस परेशान कर रही थी, लेकिन अब सुबह की फुहार और बादलों ने फिजा बदल दी। शाहदरा, आनंद विहार, आईपी एक्सटेंशन, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद और वैशाली, कौशाम्बी और नोएडा तक आसमान में बादलों का डेरा रहा। ठंडी हवा के साथ हुई हल्की बारिश ने लोगों को समय से पहले गुलाबी ठंड का एहसास करा दिया। 27 सितंबर को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री कम रहा, जबकि अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
2: तो दिल्ली की बात है तो एक जो है डीप डिप्रेशन जिसने के जो हमारे ईस्ट कोस्ट से में क्रॉस किया था, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट मूव करके उत्तर प्रदेश में आकर के आज सुबह के समय जो है वो एक लेसमार्क हो गया, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से लेसमार्क हो गया है, जिसकी वजह से जो पूरा ये जो बेल्ट है इसमें काफी अच्छी वर्षा देखने को मिली। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि अति भारी वर्षा भी रिपोर्ट की गई थी, साथ साथ उत्तराखंड में काफी अच्छी वर्षा हुई। इसके साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है था वो भी उसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हुई और इसकी वजह से भी जो तापमान है में काफी गिरावट देखने को मिली। तो अभी दिल्ली की बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3-5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है नीचे चल रहे हैं।
1: आने वाले दिनों में भी ऐसे ही रहेगा मौसम?
2: देखिए आने वाले दिनों में मौसम ऐसा रहने की संभावना कम है, क्योंकि इसके बाद जो भी आज जनरली क्लाउडी स्काई कंडीशंस बनी हुई है इसमें इंप्रूवमेंट होगा। कल जो है पार्टली क्लाउडी स्काई कंडीशंस और उसके बाद में आसमान के जो है साफ होने की संभावना है, जिसकी वजह से जो अधिकतम तापमान है जो आज करीब 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, ये करीब करीब अपने नॉर्मल स्थिति में 3-4 दिन के बाद जो कि 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचने की संभावना है।
0: राजधानी में मौसम ने सिर्फ ठंडक ही नहीं बढ़ाई बल्कि कई साल पुराने आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। सितंबर में 21 डिग्री का न्यूनतम तापमान 2001 के बाद दूसरा सबसे कम दर्ज किया गया। इससे पहले 6 सितंबर 2008 को पारा 20.8 डिग्री तक पहुंच गया था। 19 सितंबर 2024 को न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। शनिवार की बारिश और उसके बाद चली हवाओं ने दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे ला दिया। बारिश थमी तो हवा साफ हुई और प्रदूषण के लिहाज से भी राजधानी को राहत मिली है।
1: एक डीप डिप्रेशन था जो बंगाल की खाड़ी में जो है वो लगातार बना हुआ था और वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, उसी की वजह से जो मौसम में बदलाव था वो देखने को मिला। हालांकि आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश जो है वो देखी जा रही है अलग अलग इलाकों में, लेकिन कल से मौसम वापस से जो है वो साफ रहने वाला है। बारिश की किसी तरीके से उम्मीद नहीं रहेगी, तापमान में भी जो है बढ़ोतरी जो है वो देखी जाएगी। और अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहां पर आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इस वक्त एक्टिव है, जिसकी वजह से वहां पर जो है बर्फबारी और बारिश दोनों ही देखी जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम मैदानी राज्यों की बात करें तो वहां पर भी जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन कल के बाद मौसम एक बार फिर से साफ रहने का अनुमान है।
0: बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन या कहें कि गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण जहां उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, वहीं राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। श्रीगंगानगर के पदमपुर के आसपास बवंडर देखने को मिला और दिन में ही अंधेरा छा गया। वहीं जयपुर में सोमवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली, बादल झमाझम बरसे और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे।
3: रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद आखिरकार राजस्थान में राहत की लहर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मौसम पूरा बदल चुका है। जहां एक तरफ दो दिन पहले 15 साल का रिकॉर्ड टूटा था और सितंबर के महीने में सबसे तेज गर्मी यहाँ पे दर्ज की गई थी। वहीं अगर अब मैं आसमान की तरफ आपको दिखाऊं तो जयपुर का आसमान ने काया पलट दी है, पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ है, तेज बारिश यहाँ पे देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से अलर्ट भी लगातार जारी किया जा रहा था कि बारिश आने वाली है और अब वो समय आ गया जब वापस से वो मौसम जो मॉनसून का जिसकी सब उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही आएगा या फिर जा चुका है, वो वापस आया है। और ये मॉनसून कहा जा रहा है कि मॉनसून की विदाई है, क्योंकि अब इस विदाई के साथ साथ धीरे धीरे शीत लहर महसूस की जाएगी।
0: हिमालय में भी मौसम ने एक और रंग दिखाया। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ, निचले क्षेत्रों में तेज बारिश ने मुश्किलें बढ़ाई। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए 26 सितंबर की दोपहर से अगले दिन तक चार धाम यात्रा रोकी गई। लेकिन मौसम सुधरते ही चमोली और आसपास के इलाकों में फिर से धूप खिली और श्रद्धालुओं के कदम बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ने लगे। मंदिर परिसर से मुख्य बाजार और ब्रह्म कपाल तक भक्तों की आवाजाही दिखाई दी। धूप भले ही खिली हो मगर ऊंचे इलाकों से आने वाली ठंडी हवाएं अब भी अपना असर दिखा रही हैं।
4: मौसम की राहत मिलने के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा सुचारू हो चुकी है और बद्रीनाथ धाम में लगातार तीर्थयात्रियों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज सुबह से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ है तो सड़कों पर भी लगातार गाड़ियों की जो कतार है वो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को बद्रीनाथ धाम, और कोई वापस लौट रहा है तो कोई बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात है अब तक 18,05,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को अब तक पहुंच चुके हैं, जो अब तक का एक नया आंकड़ा है।
0: यानी मानसून की विदाई से पहले मौसम ने अपना अलग ही रंग दिखाया। कहीं रिकॉर्ड बारिश, कहीं बर्फबारी और कहीं ठंडी हवाओं ने सितंबर में ही सर्दियों का एहसास करा दिया। लेकिन मौसम की ये ठंडक अभी स्थायी नहीं है। राजधानी के लिए आगे आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के बाद मौसम के धीरे धीरे साफ होने का अनुमान है। 28 सितंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 21 और अधिकतम 32 डिग्री के आसपास रह सकता है।
5: 30 तारीख से दिल्ली जो उत्तर भारत दिल्ली में एकदम बादल छट जाएंगे पूरे, तो तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी चालू हो जाएगी। ये चूंकि यहाँ पे वर्षा की स्थिति थी, ऊपर से WDT ठंडी हवाएं आ रही थी और यहाँ से नमी जा रही, तो दिल्ली का जो एरिया है आप देखिए सघन है, खासकर वृक्षारोपण भी काफी मात्रा में है, तो जो नमी जमा हो जाती है और दिन में हीट बढ़ने के कारण से कन्वर्ट होके वो तापमान में गिरावट आई और ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, करीब ये 30 तारीख से तापमान में बढ़ोतरी चालू हो जाएगी और पूरा

0: तरह से सर्दियों की तरफ नहीं मुड़ा।
1: जो हुआ यानी कि बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है एक लो प्रेशर एरिया बना, उससे बहुत तेजी के साथ में बारिश हो गई। सितंबर में मेरे ख्याल से पिछले 25 साल में पहला या दूसरा एक ऐसा टाइम था कल रात को उत्तरी भारत के अंदर जो सबसे ठंडा दिन था, वरना के ना तो पश्चिमी विक्षोभ ऑलमोस्ट लुप्त रहते हैं सितंबर के महीने में और इतनी टेम्परेचर तो पड़ता ही नहीं है, बल्कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में जाते जाते सर्दी अपने दस्तक देती है। तो दोनों विरोधाभास ली हुई चीजें हुई हैं। जहां तक सवाल है, ये हार्डली मेरे ख्याल से 2-3 दिन का सवाल है, उसके बाद में जो मौसम दस्तक लेगा तो उसमें ऐसा लगेगा कि मानसून रिट्रीट हो रहा है, पश्चिम विक्षोभ एकदम से कम आ गए हैं और सर्दी मेरे ख्याल से काफी डिले होगी।
0: पहाड़ों से उतरी ठंडी हवा ने फिलहाल गर्मी को जरूर पीछे धकेला है। अब देखना ये होगा कि अक्टूबर की दस्तक के साथ मौसम कौन सा नया रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो देखिए, मौसम में आए इस बदलाव से बिहार जैसे राज्यों में चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। असल में नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार में गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकि नगर बराज से 5 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज हुआ और बिहार के ऊपरी इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया। हालांकि एनडीआरएफ की टीम मोर्चे पर तैनात है और लोगों की मदद की जा रही है। लगातार रिपोर्ट देखिए।
3: पिछले 4-5 दिनों में जो बारिश हुई है नेपाल के अंदर, भारी बारिश, उसका असर सीधे गंडक के ग्रहण जल अधिग्रहण क्षेत्र में पड़ा है। और देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को भी। ये गंडक बराज है वाल्मीकि नगर का और यहाँ इस वक्त जो पानी का उफान है, धार है, जो नारायणी नदी नेपाल से बहकर के बिहार में गंडक के रूप में पहुंचती है, वो आज सुबह 4 बजे 5,43,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज रिकॉर्ड हुआ है और अभी भी लगभग 5 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज बना हुआ है। और ये पानी जो पश्चिम चंपारण के जिले में आ रहा है इस वक्त, वाल्मीकि नगर, बगहा और पूरा इलाका, गोपालगंज तक चले जाइए, वहां तक ये गंडक का पानी पहुंचता है। तो हर जगह जो पानी की मार है वो देखने को मिलेगी आगे आने वाले दिनों में। जो बाढ़ की स्थिति संभल गई थी बिहार में, एक बार फिर से गंडक मानसून के अंतिम पड़ाव में उफान पे है और नेपाल में हुई भारी बारिश जो है वो उसकी वजह बना है। यही वजह है कि प्रशासन अलर्ट पे है, निचले स्तर से लोगों को निकाल करके ऊंची जगहों पे पहुंचाना जा रहा है। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट है जहां हम मौजूद हैं, लेकिन एयरपोर्ट जैसी कोई तस्वीर यहां दिखती नहीं है, क्योंकि हमारे सहयोगी नदी में अगर दिखाएं तो हम आपको दिखाते हैं जो पूरा का पूरा रनवे है। हालांकि ये बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटे चौपर यहाँ पे उतरते हैं, चार्टर प्लेन उतरते हैं, 22 सीटर, सरकार के और मुख्यमंत्री भी जब आते हैं बिहार के तो यहीं पर चौपर लैंड होता है। लेकिन ये सब कुछ डूबा हुआ है इस वक्त, हर जगह लगभग 4 फीट तक पानी है। ये पानी और बढ़ने की उम्मीद भी है और जहां तक नजर जाती है हमारी, हर तरफ जो पानी है वो दिखता है और यही गंडक नदी का प्रभाव है। पहले कभी पानी इतना आया था यहाँ?
4: नहीं नहीं, उसी के कारण हम लोग अपने जिस क्षेत्र में पानी नहीं है उसी क्षेत्र से आए हैं इन लोगों को लेके जाने के लिए। अच्छा। जो अपने क्षेत्र ऊंचे क्षेत्र में ले जाके खाना
3: लोग ले जाएंगे।
4: हाँ, हम लोग यहाँ के लोकल है,
3: मदद करने हैं। नाम हुआ आपका?
4: मेरा नाम अभय कुमार सिंह हुआ।
3: गंडक नदी में आए उफान के बाद जो हालात बिगड़े हैं पश्चिम चंपारण में, उसके बाद अब देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों जो टीमें हैं वो यहां पे कैंप कर रही हैं और अब जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसमें जाने की तैयारी है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये एनडीआरएफ 9 बटालियन के लोग हैं जो इस वक्त पहुंच चुके हैं और वाल्मीकि नगर इलाके में ये कैंप कर रहे हैं और यहां से अब इन लोगों का मूवमेंट होगा। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां जाएंगे, एसडीआरएफ के भी लोग जाएंगे और कोशिश यही है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सके। जो तमाम लाइफ सेविंग जैकेट्स आप देख सकते हैं, जो अन्य इक्विपमेंट्स हैं और जो बोट जिसको तैयार कर दिया जाता है तुरंत में, उसको भी यहां रखा गया है। और जो तमाम बटालियन के लोग हैं, आप लोग किस बटालियन से हैं, कहां से हैं?
5: मैं एसएसबी आरआरटी से हूं।
3: एसएसबी से हैं, तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसबी सभी लोग लग रहे हैं, मतलब इसमें राहत।
5: हाँ सर,
3: अभी क्या स्थिति है? हम लोगों
5: को बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ तक संभव है वहां मदद पहुंचा रहे हैं। हम लोग खाने पीने से लेकर सब कुछ व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही है गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौत

0: करोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: राजधानी दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही है रफ्तार। कल गृह मंत्री अमित शाह जनता को समर्पित करेंगे बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी। 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज होगा डबल। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, 1 अक्टूबर से खुलेंगे सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा सहित तमाम टाइगर रिजर्व। सैलानियों को मिलेगा टाइगर देखने का मौका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदल गया मौसम का मिजाज। ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा तापमान। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: एशियन गेम्स में उत्तर प्रदेश की बेटी का कमाल, महिलाओं की 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज। भारतीय धावक कुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों की 1500 मीटर रेस में जीता सिल्वर। दाविका विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पीटी ऊषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेमेंस 25 मीटर पिस्टल में भी भारत के नाम एक पदक, ईशा सिंह ने सिल्वर जीता। भारत का बॉक्सिंग में 4th मेडल पक्का, लवलीना ने सेमीफाइनल्स में जगह बनाई। एशियन गेम्स में कुराश खेल में कांस्य पदक जीतने वाली स्टार खिलाड़ी पिंकी के घर मना जश्न। परिवार की महिलाओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई, पिंकी की उपलब्धि पर जताई खुशी। एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल लाने वाली बेटी विदर्शा के विनोद का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। परिवार के साथ अन्य रिश्तेदार भी खिलाड़ी का जबरदस्त स्वागत हुआ। विदर्शा के विनोद ने कहा कि वो एशियाई खेलों में शूटिंग में पदक जीतने वाली केरलम की पहली महिला खिलाड़ी है। एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड जीतने वाली गोल्डन गर्ल पुष्पा राणा का धर्मशाला में भव्य स्वागत। पुष्पा राणा को बनाई गई फूल वाली मालाएं, साथियों ने फूलों की वर्षा की। अपने दोस्तों और साथियों के साथ खुशी से नाचती झूमती नजर आई खिलाड़ी पुष्पा। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सुरुचि सिंह का झज्जर में हुआ भव्य स्वागत। देश के लिए एशियन गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली खिलाड़ी पारुल चौधरी ने किया खुशी का इजहार। नेपाल में हिमलुंगा हिमालय बेस कैंप में हिमस्खलन, 14 लापता मजदूरों की तलाश जारी। ये मजदूर विदेशी पर्वतारोहियों के लिए टेंट लगा रहे थे जो हिमस्खलन के समय वहां मौजूद नहीं थे। भारी बर्फ के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से लापता मजदूरों की तलाश जारी। फुटेज में बचावकर्मी गहरी बर्फ में खुदाई करते हुए नजर आए, हर ओर लापता पर्वतारोहियों और मजदूरों की तलाश जारी। नेपाल अभियान संचालक संघ के महासचिव और पर्यटन विभाग के महानिदेशक ने भी कहा कि लापता लोगों को तलाशने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में खराब मौसम और बर्फबारी के बीच फंसे कई पर्वतारोही, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी के कालिंदी पास में करीब 5 से 7 फीट हुई बर्फबारी। उत्तरकाशी रेस्क्यू मिशन को लेकर हेलीकॉप्टर भी तैनात। प्रशासन ने सभी पर्वतारोहियों को सुरक्षित होने की कही बात, टीमों से लगातार बनाए हुए हैं संपर्क। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की पूरे हालात पर नजर, प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार तक यूं ही खुशगवार रहेगा मौसम, इसके बाद फिर बढ़ेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी से उठे डीप प्रेशर के चलते अचानक आया मौसम में बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में हुई बर्फबारी के कारण भी मैदानों में मौसम हुआ ठंडा। फिलहाल अब पहाड़ों में कोई और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होगा सक्रिय। देश के कुछ हिस्सों में अभी भी मॉनसून सक्रिय है, जिसके चलते कई राज्यों में अभी भी बारिश दौर। राजस्थान और दिल्ली एनसीआर से मॉनसून की हो चुकी है विदाई, कुछ दिनों में मौसम में फिर देखने को मिलेगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदल गया मौसम, के मिजाज ऊंची है, पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश। तेज हवाओं के साथ गिरा तापमान, न बड़ी ठंड, मौसम भी हुआ सुहाना, सैलानियों को लुभा रहा है मौसम। हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी, 30 सितंबर से मौसम खुलने की संभावना। शिमला में बदले मौसम का मजा ले रहे हैं सैलानी, मॉल रोड पर सैलानियों की आमद। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में चिरबासा में लगातार गिर रहे हैं बोल्डर। मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जमावड़ा। मंदिर परिसर से लेकर ब्रह्म कपाल तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़, अब तक 18 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे बद्रीनाथ। चारधाम श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, होटल्स में यात्रियों ने नाच गाकर केक काटकर बताया समय। बारिश बीच होटल कारोबारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को रखा पूरा ख्याल, होटल्स में ही खाने पीने की व्यवस्था। स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षित और खुश नजर आए श्रद्धालु, होटल कारोबारियों के व्यवहार से प्रसन्न नजर आए। प्रयागराज में ई पिंडदान का क्रेज बढ़ा, वीडियो कॉल से हो रहा है पिंडदान। पितृपक्ष के दौरान प्रयागराज में दूर दराज से पहुंच रहे श्रद्धालु, विधि विधान के साथ किया जा रहा है पितरों का तर्पण। मंत्रों की गूंज के बीच श्रद्धालु अपने पितरों को कर रहे हैं याद, उनसे परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। गया जी में 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेले में पितरों का पिंडदान करने वालों का तांता। झांसी में लावारिस आत्माओं और 878 परिवारों के पूर्वजों के लिए अनुष्ठान। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज मंगलवार से होगा शुरू, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर, दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही है रफ्तार। 1 अक्टूबर से खुलेगा सरिस्का रणथंभौर, मुकुंदरा सहित सभी टाइगर रिजर्व। श्रीनगर में म्यूजिकल इवेंट में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। फिल्म स्टार गोविंदा पहुंचे मां बगलामुखी के दरबार, पूजन दर्शन करके आशीर्वाद लिया। भारतीय तट रक्षक दल बने देवदूत, 23 लोगों की बचाई गई जान, समुद्र में संकट में फंसे बैलीस के झंडे वाले एमटी सीगल 9 टैंकर को स्थिर किया गया। मुख्य इंजन में खराबी और टैंक में पानी भरने के कारण ये झुक गया था जहाज। दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंपों पर नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। बिना वैलिड पीयूसी के गाड़ी चलाने पर 10,000 तक का जुर्माना। अयोध्या में दीपोत्सव पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने लॉन्च किया 2 रात और 3 दिन का विशेष टूर पैकेज। दिल्ली के एक युवक ने उठाया मुनाक नहर की सफाई का जिम्मा, साथ में जुटे करीब 1600 से ज्यादा वॉलंटियर्स। युवाओं की टीम ने अब तक नहर से साफ किया करीब 50 टन कचरा। 2 दिन के कोलकाता दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कोलकाता में लिया मशहूर झालमुड़ी का लुत्फ। सुकमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, हालात का जायजा लिया। बेंगलुरु में हाथी के हमले के पीड़ित परिवार को वन विभाग की ओर से 20 लाख का मुआवजा। डोडा में पर्यटन को बढ़ावा देने में जुटे कारोबारी और लोग, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। फरीदाबाद में नशा मुक्त हरियाणा अभियान में मैराथन का आयोजन। जोनाई का अमृतपुर गांव बना बैट किंगडम, 20 बीघा जमीन पर बसाया गया जंगल। तूतुकुड़ी में बढ़ा नमक का उत्पादन, सूखे मौसम से मिला फायदा। कन्याकुमारी से करगिल पहुंचा भारतीय वायुसेना का साइकिल अभियान। तमिलनाडु में जन्म होते ही बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी, मुख्यमंत्री विजय ने कर दी योजना की शुभारंभ। सरकारी अस्पताल में पहुंचकर माताओं से मिले मुख्यमंत्री विजय, बच्चों को दुलार किया। विजयवाड़ा में 72 फीट ऊंची मिट्टी की गणेश प्रतिमा को इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन किया जाएगा। झांसी में लावारिस आत्माओं और 878 परिवारों के पूर्वजों के लिए अनुष्ठान। पवित्र पिंडों को किया गया गया जी में विधि विधान के साथ अर्पित करने के लिए रवाना किया गया। हवाई का किलाऊरा ज्वालामुखी सक्रिय, बह निकली गर्म लावा की धाराएं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों का कहना है कि ज्वालामुखी में 23 सितंबर 2024 से रुक रुक कर विस्फोट लगातार जारी है। किलाऊरा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी रूप से देखा जाए तो सबसे सक्रिय है। डाकार गोरी क्रॉसिंग प्रतियोगिता के तहत चिलचिलाती धूप में अटलांटिक महासागर में उतरे 900 से ज्यादा तैराक। हर साल होता है इस प्रतियोगिता का आयोजन। जॉर्जिया अरमानी ने लॉन्च किया महिलाओं के परिधान का नया कलेक्शन, कंपनी के सिग्नेचर स्टाइल का जलवा। कंपनी के इस नए कलेक्शन का शीर्षक है एवोल्यूशन। कलेक्शन में 80 के दशक से प्रेरित शार्प शोल्डर जैकेट्स मौजूद। इटली का यह फैशन हाउस बाहरी निवेशकों की शुरुआती 15% हिस्सेदारी बेचने की योजना पर कर रहा है काम। अरमानी ने पहली बार परिवार से बाहर किसी शख्स विटाले को एम्पोरियल अरमानी और जॉर्जियो अरमानी एक्सेसरीज का क्रिएटिव डायरेक्टर नियुक्त किया। शंघाई में 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का समापन। दुनिया की बदलती मांगों के साथ तालमेल बैठाने के लिए पारंपरिक कौशल के मूल्यांकन। चीन ने खोली 4 नई हाई स्पीड रेलवे लाइंस। उत्तर पश्चिम चीन के शांक्षी प्रांत से राजधानी शियान और उसी प्रांत के एक अन्य शहर आनकांग को जोड़ती है रेलवे लाइन। दोनों शहरों के बीच का सफर अब महज 45 मिनटों में सफर होगा पूरा। यरूशलम में सुकोट पर्व के दौरान आयोजित विशेष प्रार्थना में शामिल हुए हजारों यहूदी। अपने सिर और हाथों पर प्रार्थना की चादर ओढ़े हुए विशेष पुरोहित कोहनिन ने भक्तों को ईश्वर से दिलाया आशीर्वाद। चीन के समुद्र में देखा अद्भुत नजारा, शिप के बगल में लहरों से अटके लिया करती हुई नजर आई दुर्लभ चीनी सफेद डॉल्फिन्स। पोपलियो के 4 दिन के फ्रांस दौरे के अंतिम दिन उन्हें टेनिस रैकेट और एक सजावटी अंडा भेंट किया गया। पोपलियो खुद भी एक शौकिया टेनिस खिलाड़ी है। स्पेसएक्स का अगली पीढ़ी का स्टारशिप रॉकेट इंजन की समस्या के बावजूद कक्षा में पहुंचा। मानव रहित 40 मंजिला ऊंचा यह रॉकेट मेक्सिको की खाड़ी के किनारे स्थित स्पेसएक्स के स्टार बेस क्रॉम प्लस में लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ। यह कंपनी के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन में से एक। इस रॉकेट में एक सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट और उसके ऊपर मुख्य ऊपरी चरण का स्टारशिप रॉकेट है। मिशन की लाइव स्ट्रीम पर शुरुआत में घोषणा की गई थी लेकिन एक इंजन के समय से पहले बंद होने के कारण स्टारशिप कक्षा में नहीं पहुंच पाएगा। मुंबई में फिल्म रामायण के प्रमोशनल इवेंट से पहले रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट भी इवेंट में शामिल हुए। पब्लिक की डिमांड पर रणबीर ने कहा जय श्री राम। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द वीवा ने ओपनिंग वीकेंड पर शानदार कमाई की। वीकेंड फिल्म की कुल कमाई 34.63 करोड़ के पार। बिहार समेत मास सर्किट में फिल्म का प्रदर्शन मजबूत रहा। शहरी इलाकों और मल्टीप्लेक्स में भी शनिवार और रविवार को अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। एक्ट्रेस मीनाक्षी ने तिरुमाला मंदिर में पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन पूजन किया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: अब बात करेंगे सोना यानी गोल्ड की। पहले उतार चढ़ाव का दौर और अब बड़ी गिरावट। नए हफ्ते के पहले दिन सोने का भाव 1.5 लाख से नीचे जा पहुंचा है। इसकी कीमत में 4,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भाव चांदी का भी गिरा है। आखिर इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है और क्या गिरावट का ये दौर अभी जारी रहेगा या सोना एक बार फिर से अपनी तेज चमक बिखेरेगा, इन सब को लेकर जानकारों का क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए।

0: सोना भारतीयों के लिए धातु ही नहीं बल्कि भरोसे, परंपरा और समृद्धि का प्रतीक है। शादी ब्याह हो या त्योहार, सब में सोने की चमक खूब दिखती है। सोने को निवेश के सुरक्षित विकल्पों में गिना जाता है। भारत में सोना खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि शुभता से भी जुड़ा हुआ है। धनतेरस हो या पर अक्षय तृतीया हो या शादी का कोई मौका, सोना खरीदने की परंपरा हमेशा रही है। अब त्योहारी सीजन से पहले सोने की कीमतों में आई गिरावट खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सोमवार यानी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में सोने का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 4,000 रुपए से ज्यादा गिरा है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन की आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,48,910 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 1,36,501 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर की बात की जाए तो दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,52,830 रुपए था, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,40,100 रुपए थी। बुलियन मार्केट में आज सोने का दाम 4,140 रुपए सस्ता हो गया। इसके अलावा सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यही नहीं, घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत में करीब 2% की गिरावट आई है। सवाल यह है कि आखिर सोने का भाव गिर क्यों रहा है। जानकारों के मुताबिक इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बढ़ता तनाव है।
1: जैसे जैसे वॉर की टेंशन एस्केलेशन बढ़ रही है, इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है विच इज़ फेडरल बैंक, वो ब्याज दर बढ़ाता है। वो ब्याज दर इसलिए बढ़ाता है कि बिकॉज उसको इन्फ्लेशन कम करना होता है। तो जब वो ब्याज दर बढ़ाता है तो उस वजह से क्या होता है, जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स या जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं गोल्ड को, गोल्ड से कंपैरिजन में। तो लोग क्या करते हैं, लोग गोल्ड से पैसा निकाल के उसके अंदर लगाते हैं। दैट इज़ द प्राइम रीजन व्हाई गोल्ड फॉल्स व्हेन वॉर गोज अप। जनरली वॉर से गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाना चाहिए, बट जब वॉर होती है, जैसे मिडिल ईस्ट की वॉर है, बहुत टेंशन हो रही है ऑल अराउंड वर्ल्ड, यूरोप और रशिया के बीच में।
0: पिछले साल सोने में 1989 के बाद सबसे तेजी देखी गई थी और अब तक इसमें 75% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हाल के महीनों में सोने के दाम काफी बढ़े हैं, लेकिन इस साल जुलाई और अगस्त में 11% की बढ़त के बाद इस महीने अब तक सोने में 6% की गिरावट आ चुकी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के डेटा के मुताबिक 25 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सितंबर महीने में सोने की खुदरा बिक्री में पिछले साल यानी कि 2025 की तुलना में 8-10% की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों की माने तो अमेरिका बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल दोनों में गिरावट की वजह से सोने पर दबाव बना हुआ है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये स्थिति अभी बनी रहेगी या फिर इसमें जल्दी ही सुधार की गुंजाइश आएगी। आम लोगों के लिहाज से देखा जाए तो दाम में गिरावट राहत है, लेकिन निवेशकों को इसको लेकर क्या ध्यान देना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है।
1: यही रीज़न है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये जो भी यूएस मार्केट जो कंट्रोल है या जो लंदन बुलियन एक्सचेंज है उसकी वजह से दाम में तेज़ी और वो आती है। बट हाँ, जब जब मार्केट इकोनॉमी के अंदर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तब या तो दाम नीचे जाएंगे डिपेंडिंग किस टाइप की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, या दाम ऊपर जाएंगे। तो इसकी वजह से है, जब हमें जैसे वॉर अगर अभी थम जाएगी तो फिर वापस सोने के दाम ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी।
2: तो लोगों को लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि लगातार दाम घट रहे हैं, आगे भी शायद घटते हुए नजर आए, जिनसे उनका जो वेडिंग सीजन है, जो फेस्टिव सीजन है, वो अच्छे से मना सके बिना सेकंड थॉट के।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल फेस्टिव अच्छे से मना पाए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड में निवेश हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है और मेरा ये मानना है कि हर प्राइस हर लेवल रीजनेबल रहता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर उसको आप उसको इन कैश कर सकते हो या फ्यूचर के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये वो मार्केट है जब सोना खरीदना चाहिए।
0: सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 1 किलो चांदी के दाम 9,000 रुपए से ज्यादा गिरे हैं। बीते सप्ताह भी सोने चांदी के दाम में तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, जो कि इस हफ्ते की शुरुआत में भी जारी है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
4: क्या आपको बार बार जीवन में धोखा मिलता है? प्रेम, विवाह, रिश्ते, दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: एवरेस्ट दिखा ला, सही तीखा सही लाल।
11: राजधानी दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही है रफ्तार। कल गृह मंत्री अमित शाह जनता को समर्पित करेंगे 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी। 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, 1 अक्टूबर से खुलेंगे सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंद्रा सहित तमाम टाइगर रिजर्व। सैलानियों को मिलेगा टाइगर देखने का मौका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदल गया मौसम का मिजाज, ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा तापमान। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटब�ल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच 3 अक्टूबर को मुकाबला।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में बन रहे धोखे के योग के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हमें धोखा मिलता है, चाहे वो शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे पैसे रुपए का लेन देन हो। तो धोखे के योग और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बराबर उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा ज्यादा, कभी पैसा कम, कभी बिल्कुल नहीं, तो एक स्टील का छल्ला बनवा लीजिए। स्टील का छल्ला दाहिने हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि कब हमें मिलता है धोखा और क्या कहता है ज्योतिष।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है। आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं। उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का साथ पकड़ते हैं, तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए चार ग्रहों की विशेष भूमिका होती है, चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक, लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं।
0: और अब बात कर लेंगे राशिफलों के बारे में। तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जानते हैं कब मिलता है कारोबार के मामले में धोखा और कैसे इससे बचा जाए।
1: धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में, कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे।
0: और अब बारी है कर्क सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने की।
1: कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी वक्त हो गया है आपके पहले सवाल का, लेकिन सवाल लेने के पहले आपको बता दूं कि जब भी आप हमें मेल करते हैं अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये तीनों साफ तौर पर लिखें और फिर अपना प्रश्न लिखें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते, टाइम नहीं लिखते, या कई बार सीधा सवाल लिख देते हैं, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान नहीं लिखते हैं तो हम आपके प्रश्न नहीं ले पाते हैं। इसलिए जब भी मेल करें सावधानी से करें ताकि आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। आज का पहला प्रश्न टीशा ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। 1 नवंबर 1983 का जन्म है, 4:51 शाम को बोरीवली मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब है और मेरे पति ने हमेशा मुझे धोखा दिया है, हमेशा मेरे साथ छल किया है। क्या ये विवाह चल पाएगा? क्या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगी? टीशा, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और सिंह राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है। कुंडली में ज्यादातर जो ग्रह हैं वो निचले पृथ्वी तत्व के इलाके में हैं। 6ठे और 8ठवें भाव में ज्यादातर ग्रह हैं जो कि वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, विवाह आप आगे दूसरा करें या ना करें, लेकिन इस विवाह से निकलिए वरना आप फंस जाएंगी किसी बड़े धोखे में। कोई लीगल कानूनी कार्रवाई के चक्कर में आप आ सकती हैं, इसलिए बुद्धिमानी कहती है कि इस विवाह से बाहर निकलिए, आगे दूसरा विवाह करिए या ना करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिएगा और जितना संभव हो हनुमान जी की पूजा करें, उनका दर्शन करें, आपको लाभ होगा।
0: हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
1: जी अगला प्रश्न इंदु गोयल जी ने हमें लिखा है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 दिसंबर 1995, दोपहर में 12:02 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इंदु जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। जब भी इनका विवाह करें कुंडली एक बार मिलाइएगा ताकि तालमेल थोड़ा बेहतर रह सके। एक इनको ओपल बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और इनको कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें तो इनको लाभ होगा।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं धोखे के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं प्रेम और विवाह के मामलों में कब धोखा हमें मिलता है।
1: देखिए, सबसे ज्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है। शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। सातवें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं, या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोंकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में, देखिए, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा, इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हो तो हीरा धारण ना करें।
0: और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल।
1: तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती फिलहाल दिखाई दे रही हैं। काम की बाधाएं समाप्त होंगी, व्यर्थ की चिंता ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो लगातार हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं हमें मिलने वाले धोखे के बारे में, कभी शादी में धोखा तो कभी दोस्ती में धोखा।

0: आपके दोस्त ने फोन बंद कर दिया, मुंह फेर लिया। तो दोस्ती में धोखा बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को मिलता है। कारण क्या है? चंद्रमा या शुक्र अगर कुंडली में खराब हैं आपके, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपकी दोस्ती ही गलत लोगों से होगी, जो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। शुक्र खराब होगा तो अपोजिट जेंडर के साथ आपकी मित्रता होगी। पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, और वो मौका पड़ने पे धोखा देंगे। तो चंद्र या शुक्र खराब हो तो धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में। अगर किसी का बुध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में, वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं। तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। सूर्य का एक रत्न आता है, उसे कहते हैं गार्नेट। एक गार्नेट का लॉकेट बनवा लें और इसको तांबे या सोने के लॉकेट में बनवा कर अपने गले में पेंडेंट की तरह धारण करें। इससे भी आप धोखा खाने से बचेंगे। धोखा मिलने के पहले आप सतर्क हो जाएंगे।
1: और अब वक्त हो गया है आज की अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधा समाप्त होगी, जल्दबाजी में काम ना करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, एक सवाल था, अगर समानता कुंडली में हमें धोखा मिल रहा है, मतलब दिख रहा है कि हमें लगातार धोखा मिलेगा, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं?
0: जी देखिए, बहुत सारे लोगों की कुंडली में मल्टीपल जगहों से, लगभग हर जगह से धोखा मिलने के योग होते हैं। विवाह में भी, प्रेम में भी, परिवार से भी, व्यापार में भी। और कारण होता है कुंडली का खराब राहु या बहुत बुरी तरह से खराब चंद्रमा। तो अगर आपकी कुंडली में जीवन के हर जगह पर, हर स्थिति में आपको धोखा मिलता है अपने लोगों से, अपने परिवार से, तो आपको मुख्यतः हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में जगह जगह से धोखे के योग हैं और धोखा मिलता भी है, तो आप निरंतर सुबह के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और हर मंगलवार और हर शनिवार को शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के ठीक सामने खड़े हो जाइए और प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे जीवन में किसी भी तरह के धोखे और अपयश से बचाओ। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी धोखे से सुरक्षा होगी।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न भावना जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। 13 मई 1982 का जन्म है, 1:05 AM मध्यरात्रि, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, मेरा वैवाहिक जीवन कब तक बेहतर होगा और मैं अपना काम करना चाहती हूँ, कौन सा व्यापार करना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। भावना, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन एवरेज ही रहेगा, उसके बहुत बेहतर होने की संभावना नहीं लगती है। हाँ, जितना निगेटिव अभी है उतना निगेटिव आगे नहीं होगा, आगे कुछ हद तक सुधार होना चाहिए, लेकिन कुल मिला के वैवाहिक जीवन देखिए एवरेज दिखाई दे रहा है। जहां तक व्यापार की बात है, आप कोशिश कर सकती हैं इस साल के आखिरी से व्यापार शुरू करने के लिए कला, सौंदर्य, शिक्षा या कपड़ों से संबंधित आर्ट, क्रिएटिविटी, कॉस्मेटिक्स, कपड़ा या पढ़ाना लिखाना, टीचिंग ट्रेनिंग देना, ऐसा काम करना आपके लिए सूटेबल होगा और अक्टूबर 2026 के बाद आप ऐसा जरूर कर सकती हैं। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न पल्लवी ने हमें लिखा है और पल्लवी हमें पश्चिम बंगाल से मेल लिखती हैं। 5 जून 1986 का जन्म है, 5:35 शाम को दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मैं अभी एडहॉक पे एक विद्यालय में, एक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ जहाँ पैसे बहुत कम मिलते हैं। मैं नेट एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रही हूँ ताकि नेट क्वालिफाई करके मुझे बढ़िया नौकरी मिल सके। तो आगे मेरे करियर के लिए मैं क्या करूँ, क्या स्थितियाँ बन रही हैं। दूसरा ये पूछ रही हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई, लगभग 39 साल, मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, तो मेरी कुंडली में विवाह के योग कैसे हैं। पल्लवी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मेष राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब या परमानेंट कॉलेज में नौकरी साल 2027 के आरंभ में दिखाई दे रही है। देखो, विवाह होने के योग इस कुंडली में बड़े कमजोर हैं और अगर विवाह होता है तो हो सकता है किसी डिवोर्सी से या किसी विडोवर से आपकी शादी हो या ऐसे व्यक्ति से शादी हो जो थोड़ा उम्र में बड़ा हो। तो इसके लिए आप अगले साल प्रयास करके फरवरी के बाद देखिए, थोड़ी बहुत संभावना साल 2027 में आपकी विवाह की बन सकती है। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन इस साल में स्वास्थ्य के मामलों में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें, कम से कम हनुमान चालीसा ही पूरे साल पढ़ें, तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि रविवार के दिन कौन सा काम करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। देखिए, रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है और रविवार के दिन सरकारी काम करना, राजनीति के काम करना, गवर्नमेंट से संबंधित काम करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इसमें भी अगर रविवार को आप किसी मंदिर चले जाएं, धर्म स्थान पर जाकर दर्शन करें, तो और भी ज्यादा अच्छा होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को बृहस्पति कैसा परिणाम देता है। आज की गुडलक राशि है कर्क, कैंसर। बृहस्पति इनको आम तौर पर भाग्यशाली तो बनाता है, हालांकि कभी कभी यही बृहस्पति इनको बीमार भी कर देता है।
1: गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है और अशुभ बृहस्पति की दशा चल रही है तो क्या करें? बृहस्पति की अशुभ दशा में अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। और बृहस्पति की अगर अशुभ दशा चल रही है तो पीला रंग और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करें। बृहस्पति की कितनी भी अशुभता है, अगर आप निरंतर शिव जी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता दूर हो जाएगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: अब बात करेंगे सोना यानी गोल्ड की। पहले उतार चढ़ाव का दौर और अब बड़ी गिरावट। नए हफ्ते के पहले दिन सोने का भाव 1.5 लाख से नीचे जा पहुंचा है। इसकी कीमत में 4,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भाव चांदी का भी गिरा है। आखिर इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है और क्या गिरावट का ये दौर अभी जारी रहेगा या सोना एक बार फिर से अपनी तेज चमक बिखेरेगा, इन सब को लेकर जानकारों का क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए।

0: सोना भारतीयों के लिए धातु ही नहीं बल्कि भरोसे, परंपरा और समृद्धि का प्रतीक है। शादी ब्याह हो या त्योहार, सब में सोने की चमक खूब दिखती है। सोने को निवेश के सुरक्षित विकल्पों में गिना जाता है। भारत में सोना खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि शुभता से भी जुड़ा हुआ है। धनतेरस हो या अक्षय तृतीया हो या शादी का कोई मौका, सोना खरीदने की परंपरा हमेशा रही है। अब त्योहारी सीजन से पहले सोने की कीमतों में आई गिरावट खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सोमवार यानी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में सोने का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 4000 रुपए से ज्यादा गिरा है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,48,910 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 1,36,501 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर की बात की जाए तो दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,52,830 रुपए था, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,40,100 रुपए थी। बुलियन मार्केट में आज सोने का दाम 4,140 रुपए सस्ता हो गया। इसके अलावा सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यही नहीं, घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत में करीब 2% की गिरावट आई है। सवाल यह है कि आखिर सोने का भाव गिर क्यों रहा है। जानकारों के मुताबिक इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बढ़ता तनाव है।
1: जैसे जैसे वॉर की टेंशन एस्केलेशन बढ़ रही है, इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है विच इज़ फेडरल बैंक, वो ब्याज दर बढ़ाता है। वो ब्याज दर इसलिए बढ़ाता है कि बिकॉज उसको इन्फ्लेशन कम करना होता है। तो जब वो ब्याज दर बढ़ाता है तो उस वजह से क्या होता है, जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स या जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं गोल्ड को, गोल्ड से कंपैरिजन में। तो लोग क्या करते हैं, लोग गोल्ड से पैसा निकाल के उसके अंदर लगाते हैं। दैट इज़ द प्राइम रीजन व्हाई गोल्ड फॉल्स व्हेन वॉर गोज़ अप। जनरली वॉर से गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाना चाहिए, बट जब वॉर होती है, जैसे मिडिल ईस्ट की वॉर है, बहुत टेंशन हो रही है ऑल अराउंड वर्ल्ड, यूरोप और रशिया के बीच में।
0: पिछले साल सोने में 1989 के बाद सबसे तेजी देखी गई थी और अब तक इसमें 75% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हाल के महीनों में सोने के दाम काफी बढ़े हैं, लेकिन इस साल जुलाई और अगस्त में 11% की बढ़त के बाद इस महीने अब तक सोने में 6% की गिरावट आ चुकी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के डेटा के मुताबिक 25 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सितंबर महीने में सोने की खुदरा बिक्री में पिछले साल यानी कि 2025 की तुलना में 8-10% की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों की माने तो अमेरिका बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल दोनों में गिरावट की वजह से सोने पर दबाव बना हुआ है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये स्थिति अभी बनी रहेगी या फिर इसमें जल्दी ही सुधार की गुंजाइश आएगी। आम लोगों के लिहाज से देखा जाए तो दाम में गिरावट राहत है, लेकिन निवेशकों को इसको लेकर क्या ध्यान देना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है।
1: यही रीज़न है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये जो भी US मार्केट जो कंट्रोल है या जो लंदन बुलियन एक्सचेंज है उसकी वजह से दाम में तेज़ी और वो आती है। बट हाँ, जब जब मार्केट इकोनॉमी के अंदर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तब या तो दाम नीचे जाएंगे डिपेंडिंग कि किस टाइप की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, या दाम ऊपर जाएंगे। तो इसकी वजह से है, जब हमें जैसे वॉर अगर अभी थम जाएगी तो फिर वापस सोने के दाम ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी।
2: तो लोगों को ले ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि लगातार दाम घट रहे हैं, आगे भी शायद घटते हुए नजर आए, जिनसे उनका जो वेडिंग सीजन है, जो फेस्टिव सीजन है, वो अच्छे से मना सके बिना सेकंड थॉट के।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल फेस्टिव अच्छे से मना पाए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड में निवेश हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है, और मेरा ये मानना है कि हर प्राइस हर लेवल रीजनेबल रहता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर उसको आप उसको इनकैश कर सकते हो या फ्यूचर के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये वो मार्केट है जब सोना खरीदना चाहिए।
0: सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। एक किलो चांदी के दाम 9000 रुपए से ज्यादा गिरे हैं। बीते सप्ताह भी सोने चांदी के दाम में तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, जो कि इस हफ्ते की शुरुआत में भी जारी है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात करते हैं पितृपक्ष की, जो पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने का एक बड़ा अवसर है। मान्यताओं के अनुसार तर्पण और पिंडदान से पूर्वजों की आत्मा को शांति और तृप्त प्रदान करने का ये 15 दिनों का विशेष अवसर है। देश भर में इसके लिए 3 तीर्थ बहुत महत्व रखते हैं। आखिर क्यों इन जगहों पर बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, इसके पीछे मान्यता क्या है, जानिए इन सब के बारे में।

0: चुकाने का प्रयास जारी है। जिंदगी में सफलता और सुख समृद्धि पाने के लिए अपने पूर्वजों को आशीर्वाद पाने का जतन कर रहे हैं। पितृपक्ष की पवित्र अवधि में पितरों यानी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। लोग श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को याद करते हुए तर्पण और पिंड दान कर रहे हैं। यूपी में प्रयागराज हो या वाराणसी या फिर बिहार का गया जी, तीनों ही जगह लोगों की भीड़ नजर आ रही है, जो पूरे विधि विधान के साथ अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां इन दिनों लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और फिर संगम की रेती पर तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। इसके जरिए वो अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं।
1: जो पुण्य आत्माएं हैं वो तृप्त हो जाए, और जो यहाँ का जो महत्व सुना है उस महत्व के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए।
2: मैं आया हूँ पिंडदान के लिए, आगे मुझे गया भी जाना है, और हम ये सोचते कि यहाँ से सुरत प्रयागराज जी के महाराज के अनुरोध करके आगे का प्रस्थान करेंगे।
3: काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। साथ ही अब एक नई व्यवस्था पिछले 2-3 वर्षों से लागू हो गई है कि जो लोग आ नहीं पाते हैं, जिनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है, अपने पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पितरों को मोक्ष मिले, मगर उनके पास समस्या है, आने में दिक्कत है, कोई व्यवस्थाएं में दिक्कत है, तो इसकी जो है पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन व्यवस्था भी जो है प्रारंभ हो गई है। जो लोग नहीं आते तो हम लोग ऑनलाइन जो भी पिंडदान कराते हैं।
0: अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच ही रहे हैं, और जो नहीं आ पा रहे उनके लिए यहां ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था भी जारी है। दरअसल प्रयागराज को पितृमुक्ति का पहला और मुख्य द्वार माना जाता है। गया जाने से पहले यही सबसे पहला पिंडदान करने का विधान है। पौराणिक और धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अपने पिता राजा दशरथ का सबसे पहला पिंडदान त्रिवेणी संगम तट पर ही किया था। मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्नान और तर्पण करने से पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है।
4: जैसा कि पितृपक्ष की मान्यता है, श्री विष्णु श्री हरि नारायण के मुख प्रयागराज निवास करता है, और विष्णु का नाभि काशी कहलाता है, और विष्णु का चरण गया जी, और इसी प्रकार लोग सर्वप्रथम प्रयागराज आते हैं, तत्पश्चात काशी जाते हैं और तत्पश्चात गया जी में। यह पितृपक्ष का विशेष अवसर जिसमें पितृ स्वयं धरती पर अपने बच्चों को आशीर्वाद, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से इस 15 दिवसीय पितृपक्ष में पितरों का आगमन होता है।
0: पितृपक्ष में पिंडदान और श्राद्ध के लिए प्रमुख स्थलों में दूसरा स्थान बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी यानी वाराणसी का माना जाता है। इसके चलते यहाँ भी पितृपक्ष में बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और कर्मकांडों में लीन दिख रहे हैं। यहाँ के पिशाच मोचन कुंड को लेकर मान्यता है कि यहाँ विधि विधान से श्राद्ध करने पर आत्मा प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में प्रवेश करती है, और उसके बाद गया जी का पिंडदान पूर्ण फलदायी होता है।
5: श्राद्ध करने का मतलब अपने पितरों को हम भोजन दे रहे हैं और उनको पिंड दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनको आवाहन कर रहे हैं कि आज 15 दिन हमारे परिवार में आप रहिए और हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में धन पुत्र लक्ष्मी की कमी न हो, बारी फुरबारी हमारा सब भरा रहे।
0: गया जी को पिंडदान और श्राद्ध का सबसे उच्च और अंतिम केंद्र माना जाता है। यहाँ फल्गु नदी के तट पर और विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के प्रारंभ होने के बाद से ही यहाँ आस्थावानों की भीड़ पहुँच रही है और अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं।
6: हम अपने सास ससुर का पिंडदान करने आए हैं।
7: क्या महत्व है
6: यहाँ का? महत्व है कि यहाँ पिंडदान करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है, वो परम धाम को प्रस्थान करते हैं।
8: यह मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
0: गया जी में पिंडदान के महत्व को लेकर यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग पहुँचते हैं। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान करने से पूर्वजों की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और उन्हें सीधे मोक्ष ही मिलता है। गया जी में पिंडदान के लिए पहुँचने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं।
9: यहाँ पे कुल 5 QRT और लगभग 40 बल
7: DIU टेक्निकल टीम सब लगी पड़ी है कि लोगों को किसी तरीके से किसी भी प्रकार का चोरी या चेन स्नैचिंग या किसी तरीके की घटना या ना हो। इसके अलावा भी 6000 बल पितृपक्ष के मेला में भीड़ संधारण विधि व्यवस्था इसके लिए हर जगह अलग अलग जगह पे मुस्तैद है। पुलिस की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है, लोगों को जितना बढ़िया हम लोग सेवा दे सके उसके लिए। हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हमारा कंट्रोल रूम भी यहीं पे है। कुल 554 कैमरा हम लोग लगाए हैं और इस बार एक बेटर चीज़ ये है कि हम लोग AI सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं जिसकी मदद से भी कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है।
0: गया जी में 26 सितंबर से लोग पूरे विधि विधान के साथ अपने पूर्वजों का पिंडदान करते नजर आ रहे हैं। पिंडदान को लेकर यूपी के झांसी में एक अच्छी पहल की गई। यहां पहुंच नदी के तट पर अज्ञात अनाथ और उन आत्माओं के लिए भी सामूहिक तर्पण पिंड पूजन किया जाता है जिनका दुनिया में कोई नहीं बचा है।
9: महासमिति झांसी रानी फाउंडेशन के तत्वाधान में जिनका कोई नहीं उनके लिए हम लोग यहाँ तर्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये कार्य हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं। कई वर्षों से निरंतर ये कार्य चला आ रहा है लेकिन आज इस कार्य का ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया।
10: तीर्थराज गया जी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अज्ञात अनाथ लावारिस लोगों के लिए उनकी आत्मा को मोक्ष की गति प्राप्त हो उसके लिए हम सब लोग इन पवित्र पिंडों को लेकर तीर्थराज गया जी प्रस्थान कर रहे हैं।
0: सामूहिक तर्पण और पिंड पूजन के बाद समाज सेवी जितेंद्र तिवारी की अगुवाई में झांसी रेलवे स्टेशन से 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चंबल एक्सप्रेस ट्रेन से पिंडों को लेकर गया जी के लिए रवाना हुआ। ये प्रतिनिधि मंडल गया जी पहुँच कर 878 परिवारों के पूर्वजों के लिए वहाँ पूरे विधि विधान से पिंडदान करेगा। शास्त्रों के अनुसार पितरों को देवताओं से भी उच्च कोटि का स्थान दिया है और पितरों की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। लोग अपने घर के पास की नदियों और सरोवरों में स्नान कर भी पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में बड़ी संख्या में लोग मुचकुंड घाट पर स्नान करते हुए मंत्रोच्चारों के बीच पितरों को तर्पण अर्पित करते दिखे। तीर्थराज मुचकुंड घाटों पर आचार्य मंत्रोच्चार के साथ अन्न तिल चावल जौ सबसे तर्पण करा रहे और लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद कर परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल, गया जी से पंकज कुमार, झांसी से अजय झा और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ रिपोर्ट न्यूज़ टुडे।
11: जंगली जानवरों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव अक्सर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। ऐसे में ओडिशा का एक खास ट्रेनिंग सेंटर हाथियों को प्रशिक्षित करके ऐसे टकराव को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं ओडिशा के चंदका में मौजूद इस सेंटर की कहानी, जहां पर तैयार किए जा रहे हाथी वाइल्ड लाइफ और इंसान के बीच अहम कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
12: जंगल में खेल कूद करते इन हाथियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसानों के साथ ही हैं। और लोगों के बीच रहने के लिए इन्होंने काफी प्रैक्टिस की है। हकीकत यही है कि इन हाथियों को इंसानों का साथी बनने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीरें ओडिशा के चंदका वाइल्ड लाइफ डिवीजन में कुमार खूंटी के इलाके की हैं। घने जंगल का ये इलाका महज एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, जहां पर आप तरह तरह के जंगली जीव जंतुओं का दीदार कर सकते हैं और कुदरत की खूबसूरती को निहार सकते हैं, बल्कि ये जगह इस मायने में खास है कि यहां पर हाथियों का स्पेशल कुमकी ट्रेनिंग सेंटर है। यहां हाथियों की देखभाल की जाती है और उन्हें वन विभाग की ओर से विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है।
13: Mainly the rescue center. Two elephants who are discarded by this herd or injured at somewhere, they are rescued and they are treated and trained. This type of training is no doubt it is a training center.
12: चंदका वाइल्डलाइफ सेंचुरी करीब 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इस जंगली इलाके में फिलहाल 46 जंगली हाथी मौजूद हैं, जबकि 9 भटके हुए हाथियों को यहां पर बने खास ट्रेनिंग सेंटर में लाकर रखा गया है, जिन्हें जंगल में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा हो। यहां पर इन हाथियों के रहने के लिए इंतजाम है और खानपान का खास ख्याल रखा जाता है। हाथियों की सेहत, आराम, नहाने, खेलकूद का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाता है। साथ ही हाथियों को यहाँ पर हर दिन 2 से 3 घंटे प्रशिक्षित भी किया जाता है। हाथियों की मौजूदगी इन इलाकों के लिए काफी खास है, जहां इंसानों और जंगली हाथियों के बीच टकराव का खतरा बना रहता है।
13: आवर एम टू अचीव दिस मैन एलिफेंट टू मिनिमाइज द मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, सो वेयर ट्रेनिंग वेयर इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग टू द एलिफेंट्स इन फ्यूचर दे विल हेल्प।
12: ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित हाथी और उनके साथ काम करने के लिए टीम जंगली हाथियों को नियंत्रित तरीके से आबादी से दूर करने में मदद करती है। यहां पर तैयार हो रहे हाथी जंगल और आबादी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश में वन विभाग के अहम साथी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश फिल्म ने ऐसा कमाल किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं। फिल्म हनुमान अंश ने कामयाबी का एक नया शिखर छू लिया है। 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने 400 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। जरा सोचिए, बजट 2 करोड़ रुपए से भी कम, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं, रिलीज से पहले कोई खास बज नहीं और शुरुआत में महज कुछ चुनिंदा शोज, लेकिन दर्शकों ने फिल्म देखी, पसंद की और फिर शुरू हुआ असली खेल, वर्ड ऑफ माउथ का। देश के एक संत के जीवन से जुड़ी ये कहानी दर्शकों को इस कदर पसंद आई कि हनुमान अंश हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बनाती चली गई और अब ये फिल्म 500 करोड़ के माइलस्टोन की ओर निकल चुकी है।

0: वक्त पे जो मेरा लुक था वो कहीं ना कहीं सर को, हमारे डायरेक्टर सर को, प्रोड्यूसर्स को, सारे लोगों को, कहीं ना कहीं टीम के भी लोगों को लगता था कि मैं बाबा जी जैसा दिखता हूँ, उनके यंग एज जैसा दिखता हूँ। तो ये संजोग था कि उस तरीके का लुक था। अगर मेरे दाढ़ी बड़ी होती, बाल बड़े होते तो शायद किसी के माइंड में वो इमेज नहीं आती। तो ये एक तरीके का संजोग था जो एक चमत्कार बन गया मेरे लिए।
1: ये कहानी है उस संजोग की, उसी आस्था की, उसी चमत्कार की। एक ऐसा चमत्कार जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर हुआ, ऐसा चमत्कार जिसका हिसाब लगाते लगाते पंडितों के कैलकुलेटर भी हार मानने लगे हैं। और कोई कैसे न माने हार जब चमत्कार ऐसा हो। जब 2 करोड़ के बजट में तैयार हुई एक फिल्म कमाई के मामले में 400 करोड़ के बम्पर आंकड़े को पार कर जाए। सिर्फ 52 दिनों में फिल्म हनुमान अंश का कलेक्शन 400 करोड़ के पार पहुंच गया। बता दें कि हनुमान अंश ने अभी तक देश भर में 307 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड ग्राफ कलेक्शन 401 करोड़ के पार हो चुका है। जरा सोचिए, एक गुमनाम फिल्म, न जिसके बारे में किसी को मालूम था, न जिसके हीरो को कोई जानता था, और तो और डायरेक्टर भी अनजाने। फिल्म का न तो भव्य प्रमोशन हुआ और न ही इसके फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर की कोई खबर थी। फिल्म चुपचाप रिलीज हुई और चुपचाप ही शायद पर्दे से उतर भी जाती। लेकिन इस कहानी का अंत नहीं था। 2 हफ्तों तक फिल्म की टिकट खिड़की खाली जैसी ही रही। लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्तों बाद अचानक प्लॉट ट्विस्ट आया।
2: लेकिन एक फिनोमेनन था जो हम नोटिस कर रहे थे कि पहले वीक में जितने लोग फिल्म देखने गए थे पर थिएटर वर्सेस नेक्स्ट जो वीक था, विच इज सेकंड वीक, वाज वीकेस्ट वीक, जिसमें बोलते हैं कि 46 लाख की का कलेक्शन था, लेकिन 46 लाख का कलेक्शन 27 थिएटर में था, जबकि 86 लाख का कलेक्शन 350 थिएटर में था, 350 शोज में था। तो जो रेशियो है वो 500% बढ़ गया था, मतलब इन टर्म्स ऑफ कितना फिल हो रहे थे हमारे थिएटर। तो उसका साइन तो दिखाई दे गया था हमको, लेकिन वही होता कि थिएटर जो बिजनेस है, सिनेमा जो बिजनेस है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि डिपेंड करता है अगली फिल्म कौन सी आ रही है, उस वक्त जनता का मूड कैसा है।
1: सिनेमा घरों में दर्शकों की नई सुनामी का नतीजा आज सबके सामने है। हनुमान अंश फिल्म की शानदार कामयाबी ने मेकर्स के चेहरों पर बड़ी मुस्कान ला दी है।
3: हम लोग के लिए भी मिरेकली है, बट इतना जरूर था कि विश्वास बहुत था इस फिल्म पे, और ये पूरी फिल्म बनी ही सिर्फ उसी विश्वास पे, उसी श्रद्धा पे और उसी भाव से। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसमें जुड़ते चले गए थे, वो सारे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे बाबा से, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे अध्यात्म से और हनुमान जी से।
1: हनुमान अंश 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। 2026 की टॉप ग्राफ फिल्मों में लगभग 1852 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ धुरंधर द रिवेंज पहले नंबर पर है। वहीं 464 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 का दूसरा नंबर है, और 401 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ हनुमान अंश इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हनुमान अंश की कमाई अब भी जारी है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव, सकारात्मक मौखिक प्रचार और इसकी कहानी को बताया जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिससे भारत के आम दर्शकों ने रिलेट किया, एक ऐसी कहानी जिसमें एक देसी भारतीय के सामने वो किरदार था जिसे वो असल जिंदगी में भी लार्जर देन लाइफ नायक की तरह ही देखता है। उसी नायक की कहानी को इस फिल्म में सादगी से दिखाया गया है।
4: मुझे याद नहीं थी, जो मेरा पहला और पहला दिन था शूटिंग का, तो वो जो हनुमान 40 वाला सीन वही था। तो फिर सर ने बताया मुझे जो मतलब जो पार्ट है, तो फिर मैंने वो लर्न किया। पर अभी मैं हर रोज हनुमान 40 पढ़ता हूँ और अभी मैं लर्न कर रहा हूँ हनुमान 40।
1: अब ये कृपा बाबा नीम करौली की है या भक्तों की आस्था, लेकिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने सिनेमा घरों में कदम भले ही धीमे से रखा, लेकिन अब ये अपनी रफ्तार से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को रौंदती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हम बार बार लगातार बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 400 करोड़ की कमाई के सफर में हनुमान अंश ने कई और रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। गुजरा वीकेंड हनुमान अंश के लिए रिलीज के बाद का 8वां वीकेंड था। 27 सितंबर रविवार यानी कल का दिन फिल्म की रिलीज का 52वां दिन था और हनुमान अंश ने 52वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया। अब रिलीज के 52वें दिन फिल्म ने रिकॉर्ड 9 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। लेकिन एक रिकॉर्ड हनुमान अंश ने ऐसा भी बना दिया जो अभूतपूर्व है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी मूल निवेश पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं।
5: जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती, पार्वती।
6: आस्था की डोर जब इतने विश्वास के साथ थमाई जाती है तो उम्र और ओहदे के पार जाकर वो दिलों को बांधती है, जोड़ती है। हनुमान अंश ने इसी विश्वास को सिनेमा के पर्दे पर पूरी भव्यता के साथ साकार किया है। शायद यही वजह है कि लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। खासतौर पर फिल्म के गाने पिछले कई हफ्तों से हर उम्र के लोगों के दिलों में उतरे हैं, जुबां पर चढ़े हैं।
0: जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो मतलब वो बहुत छोटे बच्चे भी जैसे हैं और उनका जो सोचने का तरीका है वो हर किसी वर्ग के बारे में सोच सकते हैं। तो और उनका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा है, वो खुद भी एक सिंगर है, उन्होंने गाना भी गाया हुआ है। तो उन्होंने इतना अच्छा अट्रैक्शन मूवी में डाला हुआ है, उन्होंने 11 सॉन्ग्स डाले हुए हैं गाने में, फिल्म में गाने डाले हुए हैं। और वो जो भी है वो ऐसा है कि वो जेंजीज को पसंद ही आने वाला था, ऐसा उनका भी मानना था और हमने भी जब सुना तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक था।
6: इस जादू का ही नतीजा है कि हनुमान अंश बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मुनाफे के प्रतिशत के लिहाज से ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बात जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की आती है तो सिर्फ कुल कमाई मायने नहीं रखती बल्कि ये देखा जाता है कि फिल्म ने अपनी मूल लागत के मुकाबले कितना गुना मुनाफा कमाया है। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला सीधा है, फिल्म के शुद्ध लाभ का कुल निवेश से भाग देकर 100 से गुणा करने पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है। चलिए अब इसी फॉर्मूला से हनुमान अंश का अब तक का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। हनुमान अंश का कुल बजट यानी निवेश है 2 करोड़ रुपए और अब तक कुल कमाई है लगभग 401 करोड़ रुपए। शुद्ध लाभ निकालने के लिए कुल कमाई से कुल निवेश को घटाया जाता है। इस आधार पर हनुमान अंश का शुद्ध लाभ हुआ लगभग 399 करोड़ रुपए। अब ROI का फॉर्मूला लगाते हुए 399 को 2 से भाग करके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस हिसाब से हनुमान अंश का अब तक का ROI प्रतिशत हुआ 19,960 यानी लगभग 200 गुना का रिटर्न, 200 गुना का विशुद्ध मुनाफा। ये अद्भुत है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि ROI के आधार पर हनुमान अंश बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मीलों पीछे छोड़ चुकी है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा ROI देने वाली फिल्मों की लिस्ट में 19,960 प्रतिशत के मुनाफे के साथ हनुमान अंश अब पहले नंबर पर है। तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार। लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार और हनुमान अंश के ROI में कई गुना का अंतर है और हनुमान अंश की कमाई अभी जारी है। इसी तरह सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इन फिल्मों की लिस्ट में 2007 में रिलीज हुई भेजा फ्राई तीसरे नंबर पर है। तो वहीं आमिर खान की दंगल भले ही हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन टॉप प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में वो चौथे नंबर पर है। इसी तरह 2022 में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि इतने छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा कमाल करके दिखाया है।
0: बाबा की कहानी जो है ना वो बहुत ही मिरेकुलस भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो बाबा की कहानी है, उनका जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। तो जब उनकी कहानी हम पर्दे पे देख रहे हैं तो क्या जेंजी, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी को वो पसंद ही आने वाली थी। और लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम किसी संत के बारे में कुछ दिखा रहे होते हैं तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होता है, प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं। तो उनकी कृपा रही कि इतना अच्छा प्रोडक्ट निखर के आया कि वो सिर्फ जेंजीज ही नहीं हर वर्ग को पसंद आ रहा है।
6: हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर जिस तरह छोटे बजट का खेल दिखाया है उसके बाद इसकी तुलना 51 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ से हो रही है। 1975 में कम बजट में बनी जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया था कि उस दौर की ब्लॉकबस्टर शोले को भी कड़ी टक्कर मिली थी। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ ने अपनी लागत के मुकाबले करीब 1650% तक का मुनाफा कमाया था और अब 51 साल बाद कम बजट की हनुमान अंश ने भी कुछ ऐसा ही करिश्मा करके दिखा दिया है।
3: मैं समझती कि जो विश्वास विशाल का था कि एक छोटे बजट की फिल्म बनाएंगे रागनी जी, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू दैट इस तरीके की जो फिल्में हैं उनके बहुत नीश ऑडियंस होते हैं, तो वो हम लोग के पैसे को ऐसा नहीं समझ रहे थे कि हम रिस्क करें। और विशाल ने हम लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से इसकी रिकवरी हो सकती है। आई विल जस्ट गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस फिल्म एंड he was the one who was telling us that listen, I mean we can yahan se itna aa sakta hai, yahan se itna aa sakta hai, language mein itna aa sakta hai, so hum log aisa lagta tha ki bahut kuch hoga to kya hoga, thoda bahut nuksan bhi agar hoga to koi farak nahi padta, kyunki I think jo bhav aur shraddha se ye film start kari gayi hai aur jis dhang se hum log ek ek karke jaise lag raha tha ki baba pick and choose kar rahe the hum logon ko aur mila rahe the hum logon ko, to hum logon ko pata nahi kyun chinta nahi hui kabhi।
6: किसे मालूम था कि ये फिल्म हर उम्मीद से आगे निकल जाएगी और अभी तो फिल्म की कमाई जारी है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में फिल्म का कलेक्शन किस मुकाम पर पहुंचता है। क्या कमाई की मौजूदा धुआंधार रफ्तार इस फिल्म को 500 करोड़ के पार ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: बरसों के बाद एक धार्मिक फिल्म कमाई के मामले में शानदार मुकाम पर पहुंची और नया इतिहास रच रही है। फिल्म को कैसे मिली है ये कामयाबी, क्या ये महज संयोग है या फिर बाबा नीम करौली का करिश्मा है? फिल्म के निर्देशक, इसके निर्माता और बाल कलाकार से हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी ने खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है इसकी सफलता की कहानी। आप भी देखिए।
8: आमतौर से फिल्में जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे वो नीचे की ओर चलती हैं, लेकिन हनुमान अंश ऐसी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। जिमी अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले वो हनुमाना। तो हम फिल्म की निर्माता भी हमारे साथ हैं, अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो इन त्रिदेव से हम बात कर रहे हैं इसमें। ये फिल्म कई लोग पूछ चुके होंगे कि शुरू में उम्मीद थी क्या, लेकिन अब शुरू में अगर फिल्म चलती तो उसको लोग अलग ढंग से लेते, लेकिन इसने जब देर से रफ्तार पकड़ी है तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने पत्थर में पहाड़ पर पांव जमाया और सीधा उड़ चले।
9: हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा तो है ही, मतलब आप अगर देखिए तो कोई लॉजिकल तो है नहीं कि सेकंड वीक में उठी है और फिर जब उठी है तो फिर जब जहां जा रही है वहां जा रही है, उसकी अपनी जर्नी है। आप हनुमान जी कह रहे हैं, मैं महाराज जी कह रही हूँ, सेम है। हम सभी उनके अंश हैं। आई थिंक विशाल और मैं जब बैठते थे तो हम लोग को क्लियरली मालूम था कि डिवोटीज के लिए हमने पिक्चर बनाई है। 50 मिलियन डिवोटीज है महाराज जी के इंडिया में, उसमें हमें लगता था कि एक नंबर जो होनी होता कि लोग बात कब करना शुरू करते हैं जब कुछ लोग साथ में मिलते हैं, तो हम चाहते थे कि डिवोटीज एटलीस्ट 50,000 लोग देख पाए, क्योंकि जो भी पिक्चर उससे पहले देख रहा था उनको पसंद आ रही थी, तो हमें थिएटर के एक्सपीरियंस के बारे में पता था कि वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस है, पर वो नंबर नहीं हम हिट कर पा रहे थे। 2 हफ्ते तक 35,000 लोगों ने ही देखी थी, तो जब तक लेकिन जब वो उठा तो उसके बाद तो आई थिंक हमारे हाथ में सिर्फ आई थिंक श्रोता का प्यार है, सिर्फ तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है,
8: आपके हाथ से भी निकल गया।
9: हाँ बिल्कुल, बता हमारे तो हाथ में है ही।
4: हाँ, तो पहले 2 हफ्ते में तो फिल्म थोड़ी टफ गई थी, पर जो जनता ने पब्लिश किया है तो और लोगों को इंटरेस्ट आ गया हनुमान अंश देखने के लिए, तो जनता के प्यार से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, नीम करौली बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी फिल्म इतनी हिट हो गई है। और मेन तो छोटे बच्चों ने भी शुरू कर दिया देखने के लिए, उनके पेरेंट वो छोटे बच्चे वो भी उनके पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि चलो हम मूवी देखते, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैं थोड़ा नर्वस था कि लोगों को मेरा रोल कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे तो नीम करोली बाबू जी के बारे में पहले पता नहीं था, पर जैसे मुझे पता चला वैसे वैसे मैंने रोल किया, पर बहुत लोगों को मेरा रोल अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए मुझे।
2: बहुत लोगों को नहीं सबको बहुत अच्छा लगा।
9: विहान हैज सर्टन कामनेस अबाउट हिम, उसके अंदर बहुत स्थिरता है, एंड फॉर अ चाइल्ड राइट, एंड वो हमेशा ऑब्जर्व कर रहा था, उसका सीन नहीं भी होता था वो बैठा रहता था हमेशा सेट पे और सबको नोटिस कर रहा था। ही हैज एबिलिटी टू, बिकॉज स्पॉन्ज की तरह लगता है वो, और बहुत ही शांत स्पॉन्ज है मतलब हमारे सेट में बहुत कुछ हो रहा था पर उस सेट में ये हमेशा शांत दिखता था, सो ही लुक लाइक अ आइलैंड कंपेयर्ड टू ऑल ऑफ अस, तो वो एक उसमें इक्वालिटी है।
10: फिर करने के पहले तुम्हें बाबा नीम करोली जी के बारे में कितना पता था और स्पिरिचुअलिटी क्या पहले से की या फिल्म करते करते?
4: तो रोल करने से पहले तो मुझे पता नहीं था कि नीम करोली बाबा जी कौन है, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में बहुत कम लोगों को पता है नीम करोली बाबा जी के बारे में। पर जैसे ही मुझे रोल मिला तो फिर मैंने रिसर्च की, विशाल सर ने भी मुझे समझाया कि वो 12 साल की उम्र में उनकी मतलब जो छोटे थे तब उनकी माँ गुजर गई, और वो जब वो 12 साल के थे तब वो घर से भाग गए और उनका ये एक ही सपना था, यस, और उनका एक ही सपना था राम जी के पास पहुंचना। तो विशाल सर ने मुझे सब समझा, इसलिए मुझे इजी गया रोल करने को। और जैसे जैसे शूटिंग होती चली गई, सिर्फ मैं मेरे रोल पे नहीं ध्यान देता था, जैसे शूटिंग होती थी तो फिर मुझे स्टोरी भी पता चली कि ये चमत्कार किए बाबा ने, जैसे वो ट्रेन वाला इंसिडेंट, तो मुझे भी थोड़ा एक्साइटेड लगा उनकी स्टोरी। और मेरा भी मतलब यही है मानना कि हनुमान अंश 2 भी आना चाहिए, पर मुझे टेंशन भी है कि अगर मेरा रोल है कि नहीं उस फिल्म में, तो ये
10: उसमें फ्लैशबैक लगाएंगे।
4: यस हाँ,
10: तुम्हारा रोल है। मुझे लगता है कि ये फिल्म से आगे बढ़ के बहुत कुछ है
2: जी,
10: क्योंकि लोग थिएटर में फिल्म चलने के दौरान फिल्म से पहले हनुमान चालीसा का कोई कल्चर नहीं था, इस फिल्म ने पूरे कल्चर को एक मोड़ दिया।
2: मुझे लगता है एक तो पार्ट ये कि हम जो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो शब्दों में उसका बयान उसको नहीं किया सकता, तो जब फिल्म बनाते वक्त जो मैं भावनाओं से लिख रहा था शायद वो भावनाएं ट्रांसपायर हो गई और लोगों ने उन भावनाओं को पता नहीं कैसे पकड़ा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली इतना लोग भावनात्मक रूप से कैसे जुड़े इसके साथ में और उन्होंने कितना ये हनुमान चालीसा पढ़ना, जूते उतारना, आपको बताऊं पहले 2 वीक में लोग जूते नहीं उतारते थे, या हमारी जितनी स्क्रीन हुई यही इस यहां पे भी, अब ये हो रहा है कि अब कीर्तन भी वो थिएटर वाले करने दे रहे हैं, अब जो है वो हनुमान चालीसाएं भी लोग पढ़ रहे हैं, जूते उतार रहे हैं, ऑल्टर बन रहा है, तो ये सब हमारे सोच के समझ से बाहर है, परे है। कहीं ना कहीं एक हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पे एक स्पिरिचुअल प्लेन भी है जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप सुन सकते हो, आप उसको सिर्फ समझ सकते हो अगर आपके अंदर वो आप उसको समझ सकते हो, यदि आपके अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके अंदर अगर उसको दृष्टिकोण है तो ही आप उसको देख सकते हो।
10: हनुमान जी के मूर्तियां स्थापित करने का सुंदरकांड के पाप पे बहुत
2: जी,
10: सुंदरकांड आपके इस फिल्म में कितना रोल पड़ा?
2: सुंदरकांड की वो कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुई था तुम पाई, ये लाइन हमने सुंदरकांड की फिल्म के एंड करने के समय इसका प्रयोग किया है, और ये सुंदरकांड भी बहुत सारे महामंत्रों से भरा हुआ एक जिसे बोलते हैं कि वो पोर्शन है रामचरितमानस का, और इसके अलावा हनुमान चालीसा का हमने बहुत आयत उसमें मात्रा में प्रयोग किया है, जब वो अपने जब महान जी से बात करता है तो हनुमान चालीसा के रेफरेंसेस देता है कि तुम मेरे भजन राम जी को पावे, है ना, हनुमान चालीसा वो हनुमान चालीसा का अष्ट सिद्धि नवनिधिदाता से जब वो पानी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो 30 चौपाइयां पड़ चुका है पानी के अंदर इसलिए वो 31वीं से पढ़ते पढ़ते बाहर निकलता है, ऐसे हमने उसको एस्टेब्लिश किया कि बच्चे ढूंढ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा फिल्म के एंड में लास्ट जो फाइनल सिक्वेंस है वो पूरा हनुमान चालीसा के अराउंड ही है, हनुमान चालीसा कैसे पढ़े जानी चाहिए, क्यों पढ़े जानी चाहिए।
10: मैंने एक रील देखी जिसमें विदेशी एक तारे पे
2: औगा
10: भरोसे वो अपने भाव से गा
2: मैंने तेरे ही भरोसे अच्छा था, ब्यूटीफुल, इट वाज गुड, या धन्यवाद।
10: इन सारे लोगों से बातचीत करके सुंदरकांड की यही चौपाई जहन में आती है, जिस विनम्रता से इन सारे लोगों ने
8: सफलता को आत्मसात किया है और महाराज जी के नाम किया, हनुमान जी के नाम किया है, कि उसमें यही समझ में आता है कि सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा।
7: और देखिए, अगर आपसे भी गलती से फिल्म देखने में आप मिस हो गए हैं, लेकिन थिएटर्स में अभी भी जा सकते हैं क्योंकि ये फिल्म आप सबका इंतजार कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
2: अब बात करेंगे सोना यानी गोल्ड की। पहले उतार चढ़ाव का दौर और अब बड़ी गिरावट। नए हफ्ते के पहले दिन सोने का भाव 1.5 लाख से नीचे जा पहुंचा है। इसकी कीमत में 4,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भाव चांदी का भी गिरा है। आखिर इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है और क्या गिरावट का ये दौर अभी जारी रहेगा या सोना एक बार फिर से अपनी तेज चमक बिखेरेगा, इन सबको लेकर जानकारों का क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए।

सोना भारतीयों के लिए धातु ही नहीं बल्कि भरोसे, परंपरा और समृद्धि का प्रतीक है। शादी ब्याह हो या त्योहार, सब में सोने की चमक खूब दिखती है। सोने को निवेश के सुरक्षित विकल्पों में गिना जाता है। भारत में सोना खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि शुभता से भी जुड़ा हुआ है। धनतेरस हो या अक्षय तृतीया हो या शादी का कोई मौका, सोना

0: ज्यादा गिरा है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन की आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,48,910 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 1,36,501 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर की बात की जाए तो दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,52,830 रुपए था, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,40,100 रुपए थी। बुलियन मार्केट में आज सोने का दाम 4,140 रुपए सस्ता हो गया। इसके अलावा सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यही नहीं, घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत में करीब 2% की गिरावट आई है। सवाल यह है कि आखिर सोने का भाव गिर क्यों रहा है। जानकारों के मुताबिक इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बढ़ता तनाव है।
1: जैसे जैसे वॉर की टेंशन एस्केलेशन बढ़ रही है, इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं। तो जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है विच इज़ फेडरल बैंक, वो ब्याज दर बढ़ाता है। वो ब्याज दर इसलिए बढ़ाता है कि बिकॉज उसको इन्फ्लेशन कम करना होता है। तो जब वो ब्याज दर बढ़ाता है तो उस वजह से क्या होता है, जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स या जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं गोल्ड को, गोल्ड से कंपैरिजन में। तो लोग क्या करते हैं, लोग गोल्ड से पैसा निकाल के उसके अंदर लगाते हैं। दैट इज़ द प्राइम रीजन व्हाई गोल्ड फॉल्स व्हेन वॉर गोज अप। जनरली वॉर से गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाना चाहिए, बट जब वॉर होती है, जैसे मिडिल ईस्ट की वॉर है, बहुत टेंशन हो रही है ऑल अराउंड वर्ल्ड, यूरोप और रशिया के बीच में।
0: पिछले साल सोने में 1989 के बाद सबसे तेजी देखी गई थी और अब तक इसमें 75% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हाल के महीनों में सोने के दाम काफी बढ़े हैं, लेकिन इस साल जुलाई और अगस्त में 11% की बढ़त के बाद इस महीने अब तक सोने में 6% की गिरावट आ चुकी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के डेटा के मुताबिक 25 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सितंबर महीने में सोने की खुदरा बिक्री में पिछले साल यानी कि 2025 की तुलना में 8-10% की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों की माने तो अमेरिका बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल दोनों में गिरावट की वजह से सोने पर दबाव बना हुआ है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये स्थिति अभी बनी रहेगी या फिर इसमें जल्दी ही सुधार की गुंजाइश आएगी। आम लोगों के लिहाज से देखा जाए तो दाम में गिरावट राहत है, लेकिन निवेशकों को इसको लेकर क्या ध्यान देना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है।
1: यही रीज़न है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये जो भी यूएस मार्केट जो कंट्रोल है या जो लंदन बुलियन एक्सचेंज है उसकी वजह से दाम में तेज़ी और वो आती है। बट हाँ, जब जब मार्केट इकोनॉमी के अंदर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तब या तो दाम नीचे जाएंगे डिपेंडिंग किस टाइप की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, या दाम ऊपर जाएंगे। तो इसकी वजह से है, जब हमें जैसे वॉर अगर अभी थम जाएगी तो फिर वापस सोने के दाम ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी।
2: तो लोगों को ले ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि लगातार दाम घट रहे हैं, आगे भी शायद घटते हुए नजर आए, जिनसे उनका जो वेडिंग सीजन है, जो फेस्टिव सीजन है, वो अच्छे से मना सके बिना सेकंड थॉट के।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल फेस्टिव अच्छे से मना पाए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड में निवेश हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है, और मेरा ये मानना है कि हर प्राइस हर लेवल रीजनेबल रहता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर उसको आप उसको इनकैश कर सकते हो या फ्यूचर के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये वो मार्केट है जब सोना खरीदना चाहिए।
0: सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 1 किलो चांदी के दाम 9,000 रुपए से ज्यादा गिरे हैं। बीते सप्ताह भी सोने चांदी के दाम में तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, जो कि इस हफ्ते की शुरुआत में भी जारी है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: राजधानी दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही है रफ्तार। आज गृह मंत्री अमित शाह जनता को समर्पित करेंगे। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक।

0: كصفر. दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, 1 अक्टूबर से खुलेंगे सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा सहित तमाम टाइगर रिजर्व, सैलानियों को मिलेगा टाइगर देखने का मौका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदल गया मौसम का मिजाज, ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा तापमान। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे परखे, बिना जांचे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि जमुई कांड पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने असंवेदनशील बयान देते हुए कहा कि वो खुद एक लड़की हैं और बिहार में बहुत सुरक्षित हैं। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में विसर्जन के दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। इस खबर की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: क्या सत्ता मिलते ही नेता संवेदनहीन हो जाते हैं? क्या जनता से जुड़े मुद्दे उनके लिए मायने नहीं रखते? ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने जमुई की घटना पर बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। बिहार के जमुई में 19 सितंबर को एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और इस केस में मुख्य आरोपी नंदन यादव सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस पर लगातार सियासत हो रही है और इसी बीच मैथिली ठाकुर का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि मैथिली ठाकुर ने बयान दिया है कि वो खुद एक लड़की हैं और बिहार में बहुत सुरक्षित हैं। इस बयान पर मैथिली ठाकुर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। इसीलिए इसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी हो गया था। क्या सच में मैथिली ने ऐसा बयान दिया है? देखिए रिपोर्ट।
3: हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज।
4: बिहार के जमुई कांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी नंदन के पैर में गोली लग गई थी। इस घटना पर बिहार समेत पूरे देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इन सब के बीच जमुई मामले पर बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। इस बयान को लेकर मैथिली ठाकुर की जमकर आलोचना हो रही है।
3: खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं।
4: पहले ये सुनिए आखिर इस बयान में मैथिली ठाकुर आखिर क्या कह रही हैं, जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग उन पर निशाना साध रहे हैं।
3: हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज।
4: दरअसल वायरल हो रही इस वीडियो में मैथिली ठाकुर कह रही हैं कि हम खुद बिहार से आए हैं, मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। मैं खुद लड़की हूँ और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबके बीच खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ।
3: हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज।
4: कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड के बाद ये बयान दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। एक फेसबुक पेज से वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया कि बिहार के मारपीट की घटना पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बयान मचा बवाल। घटना को लेकर दिए गए बयान पर अब सवाल उठ रहे हैं। विधायक मैथिली ठाकुर की टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
5: तो आपने सुना मैथिली ठाकुर ने क्या कहा। दरअसल मैथिली दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। जैसे ही उनका यह बयान सामने आया सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। मैथिली ट्रोल होने लगी, पूरी पार्टी को लोग घेरने लगे। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि बीजेपी का महिला सुरक्षा का दावा एक दिखावा है, उनके लिए महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक है। ये बातें अलग हैं कि अलग तरह से फैल रही थी, इसीलिए हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। पूरा सच समझने के लिए हमने मैथिली ठाकुर के वायरल हो रहे बयान को बार बार सुना। ध्यान देने पर ऐसा लग रहा था कि यह बयान आधा अधूरा है, जैसे इसमें मैथिली ने जो पिछली लाइन कही है वो है हम खुद बिहार से आए हैं। अब सोचिए कि मैथिली बिहार में ऐसा क्यों कहेंगी कि हम खुद बिहार से आए हैं। इससे हमें शक हुआ कि हो सकता है कि मैथिली ठाकुर ने बिहार के बाहर किसी कार्यक्रम में ये बात कही हो सकता है कि वो जनरल लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ही ये बात कह रही हूँ। शक की एक और बड़ी वजह थी जमुई कांड पर मैथिली ठाकुर का ऐसा कोई बयान किसी ऑथेंटिक सोर्स पर नहीं दिखा। यह बयान सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहा था। अब हम सोच में पड़ गए कि अगर वाकई मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड को लेकर ऐसा कोई बयान दिया होता तो फिर ये चर्चा में होती बात, और फिर सभी विपक्षी पार्टियां इस बयान को लेकर मैथिली ठाकुर और बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। इसलिए हमारा पहला सवाल यही था कि अगर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड को लेकर यह बयान दिया है तो फिर यह खबर मुख्य धारा की मीडिया में क्यों नहीं आई। फैक्ट चेक टीम ने मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, जहां हमें 22 सितंबर का एक पोस्ट भी मिला जिसमें वो जमुई कांड की निंदा करते हुए तुरंत एक्शन के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का धन्यवाद कर रही है। ऐसे में मैथिली ठाकुर तुरंत इस तरह का बयान देकर अपनी किरकिरी क्यों करवाएंगी। इसलिए हमारे सामने दूसरा सवाल यही था कि क्या मैथिली ठाकुर के पुराने बयान को इस केस से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
3: और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और मैं खुद लड़की हूँ।
4: इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग एक खास नैरेटिव फैलाने लगे। ऐसे लोग जो झूठ सच का फर्क किए बगैर राय बनाने में देर नहीं करते, वो इस खबर पर कूद पड़े। कहने लगे कांग्रेस का दलित प्रेम एक दिखावा है। ऐसे में सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन एक न्यूज एजेंसी के यूट्यूब चैनल पे मिला। यहाँ इसे 22 अप्रैल 2026 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो पुराना है और जमुई मामले से संबंधित नहीं हो सकता। इस दौरान इस वीडियो को हमने पूरा सुना। ये साफ हुआ कि मैथिली ठाकुर ने ममता बैनर्जी के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। पहले आप ये सुनिए आखिर उस वक्त मैथिली ठाकुर ने क्या कहा था।
3: दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा, हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था कि चुनाव के दौरान जब हम देख रहे थे कि अपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पथरावबाजी कर रहे हैं, वसूलीबाजी कर रहे हैं, दलालबाजी कर रहे हैं, तो शायद मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ तो मैं अब सोना भी पहन के घूमती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ।
4: दरअसल मैथिली ठाकुर ने यह बयान बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। बता दें, मैथिली ने जमुई की घटना को बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि दिल को झकझोर देने वाली घटना है। साथ ही उन्होंने इस मामले में एक्शन के लिए प्रशासन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद कहा है।
3: और मैं खुद लड़की हूं।
4: साफ है, जमुई में हुई छेड़छाड़ की घटना पर बयान देने के नाम पर वायरल हो रहा मैथिली ठाकुर का ये वीडियो पुराना है। अप्रैल 2026 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया था। इसी दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया था, जिसे गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: और अब हम एक और वायरल वीडियो की पड़ताल करेंगे, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई है, लेकिन लोग नहीं माने और नदी के किनारे लगी जालियों को तोड़कर गणपति विसर्जन करने लगे। इस वीडियो के
6: नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए दिल्ली समेत कुछ राज्यों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगी हुई है। इससे जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कई लोगों को जलाशय के किनारे लगी जालियों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई, लेकिन लोगों ने जालियां तोड़ दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कर्नाटक सरकार ने नदी में विसर्जन प्रतिबंधित किया था, जाली लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की थी। लोगों ने इकट्ठा होकर कहा, हम तो नदी में ही विसर्जित करेंगे, प्रदूषण फैलता है तो फैलने दो, अब बताओ सरकार क्या करे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
5: दावा किया जा रहा है कि विरोध की ये तस्वीरें कर्नाटक में नदी में विसर्जन पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर हैं। अब वीडियो में कुछ लोग नदी किनारे लगी जाली को हटाते हुए दिख रहे हैं। इस घटना पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर विसर्जन से प्रदूषण फैलता है तो फिर प्रदूषण रोकने के उपाय किए जाए, न कि विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। इस वीडियो को तरह तरह के धार्मिक कमेंट्स के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है, इसीलिए हमने इसकी जांच शुरू की। वीडियो में ये तो दिख रहा है कि लोग पुल पर लगी जाली को तोड़कर वहां से हटा रहे हैं। आसपास सुरक्षा बल के जवान भी हैं और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद ही असहाय से दिख रहे हैं। फिर हमने ये पता करने की कोशिश की कि नदी में विसर्जन रोकने के लिए क्या कर्नाटक में किसी नदी पर ऐसी जाली लगाई गई है। हमने तमाम खबरें वेबसाइट ढूंढ ली, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी खबर हमें नहीं मिली। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इस पर भाषा एक्सपर्ट से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि वीडियो में मौजूद लोग तेलुगु बोल रहे हैं, कन्नड़ नहीं। अब ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो कर्नाटक है तो फिर यहां पर तेलुगु में लोग बातें क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हमारा दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को कर्नाटक का बताकर सोशल मीडिया पर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। इस वीडियो में एक और गौर करने वाली बात थी कि ये पूरा प्रदर्शन गणपति विसर्जन को लेकर था, पर वीडियो में कहीं भी एक भी गणपति की मूर्ति नहीं दिखी, यानी यहां कोई विसर्जन करने नहीं आया। इसीलिए हमारा तीसरा सवाल यह था कि अगर हंगामा नदी में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ है तो फिर विसर्जन के लिए लाए गए लोग कहां हैं?
6: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 21 सितंबर को अपलोड किए गए एक न्यूज वीडियो में वायरल क्लिप में मौजूद जाली तोड़ने वाले एक हिस्से को साफ साफ देखा जा सकता है। खबर के मुताबिक ये मामला हैदराबाद के टैंक बंड एरिया का है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें 21 सितंबर को छपी एक रिपोर्ट मिली। जिसमें वायरल घटना से संबंधित तस्वीर भी देखने को मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश विसर्जन पर रोक के खिलाफ टैंक बंड में हो रहा विरोध प्रदर्शन तब तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस ने भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। समिति ने विसर्जन पर रोक वाले बैनर पर एतराज जताया। सर्च के दौरान ही हमें 21 सितंबर को छपी एक और रिपोर्ट मिली। इसके जरिए ये जानकारी सामने आई कि जलाशयों में पीओपी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए हुसैन नगर के किनारों पर अस्थायी बैरिकेड लगाए गए थे। हालांकि टैंक बंद पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने अस्थायी बैरिकेड हटा दिए थे और मंडप आयोजकों से मूर्तियों को हमेशा की तरह विसर्जन के लिए झील पर लाने को कहा था। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो तेलंगाना का है, जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जलाशयों में पीओपी मूर्तियों का विसर्जन रोकने के लिए जालियां लगाई गई थी। लेकिन हैदराबाद में टैंक बंड पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने जालियों को तोड़ दिया। इस वीडियो का कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
5: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: बच्चे मासूम होते हैं, बेफिक्र बेपरवाह, उन्हें बस प्यार करना आता है। देखिए इस छोटी बच्ची को कैसे बछड़े को रोटी खिलाकर खुश है। बछड़ा भी उससे रोटी झपट नहीं रहा बल्कि सावधानी से रोटी ले रहा है ताकि बच्ची डरे नहीं और उसे नन्हे हाथों से आहार मिलता रहे। रोटी लेते हुए जब बछड़े की जीभ बच्ची के हाथों को छू जाती है तो बच्ची की खिलखिलाहट देखने लायक है। दो मासूमों का ये अनकहा जुड़ाव देख कर लोग मुस्कुरा रहे हैं। एक बच्चे को जब पिता ने गिफ्ट दिया तो उसने पैकेट खोलने के बजाय पहले उन्हें गले लगा लिया। मासूम बेटे का यह अंदाज बताता है कि उसके लिए गिफ्ट से कहीं ज्यादा कीमती पिता का प्यार, मेहनत और साथ है। बच्चे के लिए गिफ्ट सिर्फ कागज में लिपटी कोई चीज नहीं थी, उसके पीछे पिता की मेहनत थी, उनका प्यार था और वे तमाम छोटी बड़ी कुर्बानियां थी जो अक्सर बच्चे देख तो लेते हैं लेकिन शब्दों में कह नहीं पाते। पिता के लिए शायद यह एक सामान्य सा तोहफा रहा हो लेकिन बच्चे ने उसके पीछे छिपी भावनाओं को समझ लिया था। इस बच्चे का अपने पिता को गले लगाना भी यही बात याद दिलाता है। उसने शायद बिना कुछ कहे अपने पापा को बता दिया कि वह उनकी मेहनत को समझता है और उनके प्यार की कद्र करता है। अदाएं ऐसी कि नजर न हटे, आत्मविश्वास ऐसा कि दुनिया जीत ले जाए। आपने रैंप पर वॉक करती सुंदरियों को खूब देखा होगा मगर जो बात इनमें है किसी और में कहां। अंदाज देखिए जरा, क्या बलखा के चली हैं और विक्ट्री का साइन भी आंखों में आंखें डालकर दिखा रही है, मानो कह रही हो है कोई मुझसा तो सामने आए। बच्ची का अंदाज और उसका आत्मविश्वास लोगों का दिल छू रहा है।

0: संगीत से कुछ ज्यादा ही लगाव है इन्हें। माइक हाथ में आते ही सुर लगने लगे हैं। क्या गा रही है? मालूम नहीं, पर जिस अंदाज में गा रही है वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। मानो आज तो स्टेज पर आग ही लगा देंगी। बच्चे जिस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस की नकल कर रही है वो देखना दिलचस्प है। लोग उसकी क्यूटनेस पर दिल हार रहे हैं। कमाल है, इनको देखकर आपके मुंह से यही निकलने वाला है। इनकी फिटनेस, कॉन्फिडेंस और तालमेल सब गजब का है। सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये कोई स्टंट कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो ये तो इनके खेलकूद का हिस्सा है। इनको देखना दिलचस्प है। इन बच्चों के इस वीडियो पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं।
1: और फोन तो करते ही रहना। हम
2: नहीं, फोन भी कर दूंगा।
1: मेरे पोटर, तेरे बिना दिल नहीं लगता ना।
0: यूं तो इस दुनिया में कई रिश्ते मिलते हैं, लेकिन दादा पोते का रिश्ता अपने आप में बेहद अनोखा और प्यारा होता है। कहा जाता है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, और यह बात इस रिश्ते पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जनरेशन गैप के बावजूद दोनों के बीच का अपना एक अलग ही मैजिक होता है। पोते ने अपने दादाजी को बताया कि वह किसी काम से उनसे दूर जा रहे हैं, तो बुजुर्ग दादाजी का दिल भर आया। पोते के जाने की बात सुनकर दादा धनराज जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने प्यार से अपने पोते के गाल सहलाए और भावुक होते हुए कहा,
1: कोई देर मत लगाना, आजकल का सीजन अच्छा नहीं है।
2: ठीक है,
0: तेरे बिना दिल नहीं लगेगा, लेकिन फोन पर बात कर लेगा तो तसल्ली रहेगी। दादाजी ने बड़े ही अपने पन के साथ पोते को अपना ख्याल रखने और समय पर दवाइयाँ खाने की सलाह दी।
1: बात कर लेगा तो भी हो जाएगा, दवा कोई देर मत लगाना, आजकल का सीजन अच्छा नहीं।
0: साथ ही यह भी कहा कि अगर जाने का सोच लिया है तो फिर ज्यादा देर मत लगाओ। दादाजी की यह मासूमियत और बेइंतहा प्यार देखने वालों का दिल पिघला रहा है। खचाखच भरी मेट्रो में सीट न मिलने पर एक बुजुर्ग अंकल ने ऐसा देसी जुगाड़ लगाया कि आसपास के लोग देखते रह गए। उन्होंने अपने बैग से फोल्डिंग स्टूल निकाला और मेट्रो के फर्श पर रखकर आराम से बैठ गए। इसके बाद हेडफोन लगाकर बड़े सुकून से सफर का आनंद लेने लगे। उनका अंदाज देखकर ऐसा लगा जैसे भीड़भाड़ वाली मेट्रो में सीट न मिलने की चिंता उन्होंने काफी पहले ही खत्म कर ली हो। वीडियो में उनका आत्मविश्वास और बेफिक्री लोगों का ध्यान खींच रही है।

फिल्म हनुमान अंश का लोकप्रिय गाना मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को इस विदेशी शख्स ने अपने अंदाज में गाकर लोगों का दिल जीत लिया है। आवाज में भक्ति का भाव साफ महसूस किया जा सकता है। लोग विदेशी शख्स की आवाज और उसके अंदाज की तारीफ कर रहे हैं।

इस दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लय में ढोल ताशा बजा रहे हैं, लेकिन असली महफिल तो तब सजती है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड में आ जाता है। ढोल की हर बीट के साथ वे अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहां मौजूद लोग टकटकी लगाए देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं हिला रहा, बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वह अपने हाथों से भांगड़ा स्टाइल मूव्स करता है तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का यह एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहां से गुजरने वाले हर शख्स के कदम थम गए। बच्चे हों या बड़े, हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। पुडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कॉपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पेनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कॉपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कॉपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े चाव से खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
1: जंगली जानवरों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव अक्सर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। ऐसे में ओडिशा का एक खास ट्रेनिंग सेंटर हाथियों को प्रशिक्षित करके ऐसे टकराव को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं ओडिशा के चंदका में मौजूद इस सेंटर की कहानी, जहां पर तैयार किए जा रहे हाथी वाइल्ड लाइफ और इंसान के बीच अहम कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
2: जंगल में खेल कूद करते इन हाथियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसानों के साथ ही हैं। और लोगों के बीच रहने के लिए इन्होंने काफी प्रैक्टिस की है। हकीकत यही है कि इन हाथियों को इंसानों का साथी बनने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीरें ओडिशा के चंदका वाइल्ड लाइफ डिवीजन में कुमार खूंटी के इलाके की हैं। घने जंगल का ये इलाका महज एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, जहां पर आप तरह तरह के जंगली जीव जंतुओं का दीदार कर सकते हैं और कुदरत की खूबसूरती को निहार सकते हैं। बल्कि ये जगह इस मायने में खास है कि यहां पर हाथियों का स्पेशल कुमकी ट्रेनिंग सेंटर है। यहां हाथियों की देखभाल की जाती है और उन्हें वन विभाग की ओर से विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है।
3: Mainly the rescue center. Two elephants who are discarded by this horde or injured at somewhere, they are rescued and they are treated and trained. This type of training is, no doubt it is a training center.
2: चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करीब 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इस जंगली इलाके में फिलहाल 46 जंगली हाथी मौजूद हैं, जबकि 9 भटके हुए हाथियों को यहां पर बने खास ट्रेनिंग सेंटर में लाकर रखा गया है, जिन्हें जंगल में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा हो। यहां पर इन हाथियों के रहने के लिए इंतजाम है और खान पान का खास ख्याल रखा जाता है। हाथियों की सेहत, आराम, नहाने, खेलकूद का पूरा ख्याल यहां पर रखा जाता है। साथ ही हाथियों को यहां पर हर दिन 2-3 घंटे प्रशिक्षित भी किया जाता है। इन हाथियों की मौजूदगी इन इलाकों के लिए काफी खास है, जहां इंसानों और जंगली हाथियों के बीच टकराव का खतरा बना रहता है।
3: Man elephant to minimize the man and animal conflict. So we are imparted training to the elephants. In future they will help.
2: कुमकी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित हाथी और उनके साथ काम करने के लिए टीम जंगली हाथियों को नियंत्रित तरीके से आबादी से दूर करने में मदद करती है। यहाँ पर तैयार हो रहे हाथी जंगल और आबादी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश में वन विभाग के अहम साथी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
1: राजधानी दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही है रफ्तार। आज गृह मंत्री अमित शाह जनता को समर्पित करेंगे 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, 1 अक्टूबर से खुलेंगे सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा सहित तमाम टाइगर रिजर्व। सैलानियों को मिलेगा टाइगर देखने का मौका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदल गया मौसम का मिजाज, ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा तापमान। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का भूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश फिल्म ने ऐसा कमाल किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं। फिल्म हनुमान अंश ने कामयाबी का एक नया शिखर छू लिया है। 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने 400 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। जरा सोचिए, बजट 2 करोड़ रुपए से भी कम, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं, रिलीज से पहले कोई खास बज नहीं और शुरुआत में महज कुछ चुनिंदा शोज, लेकिन दर्शकों ने फिल्म देखी, पसंद की और फिर शुरू हुआ असली खेल, वर्ड ऑफ माउथ का। देश के एक संत के जीवन से जुड़ी ये कहानी दर्शकों को इस कदर पसंद आई कि हनुमान अंश हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बनाती चली गई और अब ये फिल्म 500 करोड़ के माइलस्टोन की ओर निकल चुकी है।

0: वक्त पे जो मेरा लुक था वो कहीं ना कहीं सर को, हमारे डायरेक्टर सर को, प्रोड्यूसर को, सारे लोगों को, कहीं ना कहीं टीम के भी लोगों को लगता था कि मैं बाबा जी जैसा दिखता हूँ, उनके यंग एज जैसा दिखता हूँ। तो ये संजोग था कि उस तरीके का लुक था। अगर मेरे दाढ़ी बड़ी होती, बाल बड़े होते तो शायद किसी के माइंड में वो इमेज नहीं आती। तो ये एक तरीके का संजोग था जो एक चमत्कार बन गया मेरे लिए।
1: ये कहानी है उस संजोग की, उसी आस्था की, उसी चमत्कार की। एक ऐसा चमत्कार जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर हुआ, ऐसा चमत्कार जिसका हिसाब लगाते लगाते पंडितों के कैलकुलेटर भी हार मानने लगे हैं। और कोई कैसे न माने हार जब चमत्कार ऐसा हो। जब 2 करोड़ के बजट में तैयार हुई एक फिल्म कमाई के मामले में 400 करोड़ के बम्पर आंकड़े को पार कर जाए। सिर्फ 52 दिनों में फिल्म हनुमान अंश का कलेक्शन 400 करोड़ के पार पहुंच गया। बता दें कि हनुमान अंश ने अभी तक देश भर में 307 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड ग्राफ कलेक्शन 401 करोड़ के पार हो चुका है। जरा सोचिए, एक गुमनाम फिल्म, न जिसके बारे में किसी को मालूम था, न जिसके हीरो को कोई जानता था, और तो और डायरेक्टर भी अनजाने। फिल्म का न तो भव्य प्रमोशन हुआ और न ही इसके फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर की कोई खबर थी। फिल्म चुपचाप रिलीज हुई और चुपचाप ही शायद पर्दे से उतर भी जाती। लेकिन इस कहानी का अंत नहीं था। 2 हफ्तों तक फिल्म की टिकट खिड़की खाली जैसी ही रही। लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्तों बाद अचानक प्लॉट ट्विस्ट आया।
2: लेकिन एक फिनोमेनन था जो हम नोटिस कर रहे थे कि पहले वीक में जितने लोग फिल्म देखने गए थे पर थिएटर वर्सेस नेक्स्ट जो वीक था, विच इज सेकंड वीक, वाज वीकेस्ट वीक, जिसमें बोलते हैं कि 46 लाख की का कलेक्शन था, लेकिन 46 लाख का कलेक्शन 27 थिएटर में था, जबकि 86 लाख का कलेक्शन 350 थिएटर में था, 350 शोज में था। तो जो रेशियो है वो 500% बढ़ गया था, मतलब इन टर्म्स ऑफ कितना फिल हो रहे थे हमारे थिएटर। तो उसका साइन तो दिखाई दे गया था हमको, लेकिन वही होता है कि थिएटर जो बिजनेस है, सिनेमा जो बिजनेस है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि डिपेंड करता है अगली फिल्म कौन सी आ रही है, उस वक्त जनता का मूड कैसा है।
1: सिनेमा घरों में दर्शकों की नई सुनामी का नतीजा आज सबके सामने है। हनुमान अंश फिल्म की शानदार कामयाबी ने मेकर्स के चेहरों पर बड़ी मुस्कान ला दी है।
3: हम लोग के लिए भी मिरेकली है, बट इतना जरूर था कि विश्वास बहुत था इस फिल्म पे, और ये पूरी फिल्म बनी ही सिर्फ उसी विश्वास पे, उसी श्रद्धा पे और उसी भाव से। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसमें जुड़ते चले गए थे वो सारे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे बाबा से, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे अध्यात्म से और हनुमान जी से।
1: हनुमान अंश 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। 2026 की टॉप ग्राफ फिल्मों में लगभग 1852 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ धुरंधर द रिवेंज पहले नंबर पर है। वहीं 464 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 का दूसरा नंबर है, और 401 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ हनुमान अंश इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हनुमान अंश की कमाई अब भी जारी है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव, सकारात्मक मौखिक प्रचार और इसकी कहानी को बताया जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिससे भारत के आम दर्शकों ने रिलेट किया, एक ऐसी कहानी जिसमें एक देसी भारतीय के सामने वो किरदार था जिसे वो असल जिंदगी में भी लार्जर देन लाइफ नायक की तरह ही देखता है। उसी नायक की कहानी को इस फिल्म में सादगी से दिखाया गया है।
4: मुझे याद नहीं थी, जो मेरा पहला दिन था शूटिंग का, तो वो जो हनुमान 40 वाला सीन वही था। तो फिर सर ने बताया मुझे जो मतलब जो पार्ट है, तो फिर मैंने वो लर्न किया। पर अभी मैं हर रोज हनुमान 40 पढ़ता हूँ और अभी मैं लर्न कर रहा हूँ हनुमान 40।
1: अब ये कृपा बाबा नीम करौली की है या भक्तों की आस्था, लेकिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने सिनेमा घरों में कदम भले ही धीमे से रखा, लेकिन अब ये अपनी रफ्तार से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को रौंदती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हम बार बार लगातार बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 400 करोड़ की कमाई के सफर में हनुमान अंश ने कई और रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। गुजरा वीकेंड हनुमान अंश के लिए रिलीज के बाद का 8वां वीकेंड था। 27 सितंबर रविवार यानी कल का दिन फिल्म की रिलीज का 52वां दिन था और हनुमान अंश ने 52वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया। अब रिलीज के 52वें दिन फिल्म ने रिकॉर्ड 9 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। लेकिन एक रिकॉर्ड हनुमान अंश ने ऐसा भी बना दिया जो अभूतपूर्व है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी मूल निवेश पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं।
5: जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती, पार्वती।
6: आस्था की डोर जब इतने विश्वास के साथ थमाई जाती है तो उम्र और ओहदे के पार जाकर वो दिलों को बांधती है, जोड़ती है। हनुमान अंश ने इसी विश्वास को सिनेमा के पर्दे पर पूरी भव्यता के साथ साकार किया है। शायद यही वजह है कि लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। खासतौर पर फिल्म के गाने पिछले कई हफ्तों से हर उम्र के लोगों के दिलों में उतरे हैं, जुबां पर चढ़े हैं।
0: जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो मतलब वो बहुत छोटे बच्चे भी जैसे हैं और उनका जो सोचने का तरीका है वो हर किसी वर्ग के बारे में सोच सकते हैं। तो और उनका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा है, वो खुद भी एक सिंगर हैं, उन्होंने गाना भी गाया हुआ है। तो उन्होंने इतना अच्छा अट्रैक्शन मूवी में डाला हुआ है, उन्होंने 11 सॉन्ग्स डाले हुए हैं गाने में, फिल्म में गाने डाले हुए हैं। और वो जो भी है वो ऐसा है कि वो जेन ज़ी को पसंद ही आने वाला था, ऐसा उनका भी मानना था और हमने भी जब सुना तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक था।
6: इस जादू का ही नतीजा है कि हनुमान अंश बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मुनाफे के प्रतिशत के लिहाज से ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बात जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की आती है तो सिर्फ कुल कमाई मायने नहीं रखती बल्कि ये देखा जाता है कि फिल्म ने अपनी मूल लागत के मुकाबले कितना गुना मुनाफा कमाया है। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला सीधा है, फिल्म के शुद्ध लाभ का कुल निवेश से भाग देकर 100 से गुणा करने पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है। चलिए अब इसी फॉर्मूला से हनुमान अंश का अब तक का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। हनुमान अंश का कुल बजट यानी निवेश है 2 करोड़ रुपए और अब तक कुल कमाई है लगभग 401 करोड़ रुपए। शुद्ध लाभ निकालने के लिए कुल कमाई से कुल निवेश को घटाया जाता है। इस आधार पर हनुमान अंश का शुद्ध लाभ हुआ लगभग 399 करोड़ रुपए। अब ROI का फॉर्मूला लगाते हुए 399 को 2 से भाग करके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उस हिसाब से हनुमान अंश का अब तक का ROI प्रतिशत हुआ 19,960 यानी लगभग 200 गुना का रिटर्न, 200 गुना का विशुद्ध मुनाफा। ये अद्भुत है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि ROI के आधार पर हनुमान अंश बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मीलों पीछे छोड़ चुकी है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा ROI देने वाली फिल्मों की लिस्ट में 19,960% के मुनाफे के साथ हनुमान अंश अब पहले नंबर पर है। तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार। लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार और हनुमान अंश के ROI में कई गुना का अंतर है और हनुमान अंश की कमाई अभी जारी है। इसी तरह सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इन फिल्मों की लिस्ट में 2007 में रिलीज हुई भेजा फ्राई तीसरे नंबर पर है। तो वहीं आमिर खान की दंगल भले ही हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन टॉप प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में वो चौथे नंबर पर है। इसी तरह 2022 में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि इतने छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा कमाल करके दिखाया है।
0: बाबा की कहानी जो है ना वो बहुत ही मिरेकुलस भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो बाबा की कहानी है, उनका जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। तो जब उनकी कहानी हम पर्दे पे देख रहे हैं तो क्या जेंजी, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी को वो पसंद ही आने वाली थी। और लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम किसी संत के बारे में कुछ दिखा रहे होते हैं, तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होता है, प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं। तो उनकी कृपा रही कि इतना अच्छा प्रोडक्ट निखर के आया कि वो सिर्फ जेंजीज ही नहीं, हर वर्ग को पसंद आ रहा है।
6: हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर जिस तरह छोटे बजट का खेल दिखाया है, उसके बाद इसकी तुलना 51 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ से हो रही है। 1975 में कम बजट में बनी जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया था कि उस दौर की ब्लॉकबस्टर शोले को भी कड़ी टक्कर मिली थी। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ ने अपनी लागत के मुकाबले करीब 1650% तक का मुनाफा कमाया था। और अब 51 साल बाद कम बजट की हनुमान अंश ने भी कुछ ऐसा ही करिश्मा करके दिखा दिया है।
3: मैं समझती कि जो विश्वास विशाल का था कि एक छोटे बजट की फिल्म बनाएंगे रागनी जी, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू दैट इस तरीके की जो फिल्में हैं उनके बहुत नीश ऑडियंस होते हैं, तो वो हम लोग के पैसे को ऐसा नहीं समझ रहे थे कि हम रिस्क करें। और विशाल ने हम लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से इसकी रिकवरी हो सकती है। आई विल जस्ट गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस फिल्म एंड he was the one who was telling us that listen, I mean we can yahan se itna aa sakta hai, yahan se itna aa sakta hai, language mein itna aa sakta hai. So hum log aisa lagta tha ki bahut kuch hoga to kya hoga, thoda bahut nuksan bhi agar hoga to koi fark nahi padta, kyunki I think jo bhav aur shraddha se ye film start kari gayi hai aur jis dhang se hum log ek ek karke jaise lag raha tha ki baba pick and choose kar rahe the hum logon ko aur mila rahe the hum logon ko, to hum logon ko pata nahi kyun chinta nahi hui kabhi.
6: किसे मालूम था कि ये फिल्म हर उम्मीद से आगे निकल जाएगी, और अभी तो फिल्म की कमाई जारी है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में फिल्म का कलेक्शन किस मुकाम पर पहुंचता है। क्या कमाई की मौजूदा धुआंधार रफ्तार इस फिल्म को 500 करोड़ के पार ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: बरसों के बाद एक धार्मिक फिल्म कमाई के मामले में शानदार मुकाम पर पहुंची और नया इतिहास रच रही है। फिल्म को कैसे मिली है ये कामयाबी, क्या ये महज संयोग है या फिर बाबा नीम करौली का करिश्मा है? फिल्म के निर्देशक, इसके निर्माता और बाल कलाकार से हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी ने खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है इसकी सफलता की कहानी। आप भी देखिए।
2: आमतौर से फिल्में जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे वो नीचे की ओर चलती हैं, लेकिन हनुमान अंश ऐसी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। जिम अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले वो हनुमाना। तो हम फिल्म की निर्माता भी हमारे साथ हैं, अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो इन त्रिदेव से हम बात कर रहे हैं इसमें। ये फिल्म कई लोग पूछ चुके होंगे कि शुरू में उम्मीद थी क्या, लेकिन अब शुरू में अगर फिल्म चलती तो उसको लोग अलग ढंग से लेते, लेकिन इसने जब देर से रफ्तार पकड़ी है तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने पत्थर में पहाड़ पर पांव जमाया और सीधा उड़ चले।
8: हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा तो है ही। मतलब आप अगर देखिए तो कोई लॉजिकल तो है नहीं कि सेकंड वीक में उठी है और फिर जब उठी है तो फिर जब जहां जा रहे हैं वहां जा रही है, उसकी अपनी जर्नी है। आप हनुमान जी कह रहे हैं, मैं महाराज जी कह रही हूँ, सेम है। हम सभी उनके अंश हैं। आई थिंक विशाल और मैं जब बैठते थे तो हम लोगों को क्लियरली मालूम था कि डिवोटीज के लिए हमने पिक्चर बनाई है। 50 मिलियन डिवोटीज हैं महाराज जी के इंडिया में। उसमें हमें लगता था कि एक नंबर जो होनी होता कि लोग बात कब करना शुरू करते हैं जब कुछ लोग साथ में मिलते हैं, तो हम चाहते थे कि डिवोटीज एटलीस्ट 50,000 लोग देख पाए, क्योंकि जो भी पिक्चर उससे पहले देख रहा था उनको पसंद आ रही थी। तो हमें थिएटर के एक्सपीरियंस के बारे में पता था कि वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस है, पर वो नंबर नहीं हम हिट कर पा रहे थे। 2 हफ्ते तक 35,000 लोगों ने ही देखी थी, तो जब तक लेकिन जब वो उठा तो उसके बाद तो आई थिंक हमारे हाथ में सिर्फ आई थिंक श्रोता का प्यार है, सिर्फ तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है।
2: आपके हाथ से भी निकल गया।
8: हाँ बिल्कुल, बता हमारे तो हाथ में है ही।
4: हाँ, तो पहले 2 हफ्ते में तो फिल्म थोड़ी टफ गई थी, पर जो जनता ने पब्लिश किया है तो और लोगों को इंटरेस्ट आ गया हनुमान अंश देखने के लिए। तो जनता के प्यार से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, नीम करौली बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी फिल्म इतनी हिट हो गई है। और मेन तो छोटे बच्चों ने भी शुरू कर दिया देखने के लिए, उनके पेरेंट्स, वो छोटे बच्चे वो भी उनके पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि चलो हम मूवी देखते, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैं थोड़ा नर्वस था कि लोगों को मेरा रोल कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे तो नीम करोली बाबू जी के बारे में पहले पता नहीं था, पर जैसे मुझे पता चला वैसे वैसे मैंने रोल किया, पर बहुत लोगों को मेरा रोल अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए मुझे।
2: बहुत लोगों को नहीं, बहुत लोगों को नहीं, सबको बहुत अच्छा लगा।
8: विहान हैज सर्टन कामनेस अबाउट हिम, उसके अंदर बहुत स्थिरता है, एंड फॉर अ चाइल्ड राइट, एंड वो हमेशा ऑब्जर्व कर रहा था, उसका सीन नहीं भी होता तो वो बैठा रहता था हमेशा सेट पे और सबको नोटिस कर रहा था। ही हैज एबिलिटी टू, बिकॉज स्पॉन्ज की तरह लगता है वो, और बहुत ही शांत स्पॉन्ज है मतलब हमारे सेट में बहुत कुछ हो रहा था पर उस सेट में ये हमेशा शांत दिखता था, सो ही लुक लाइक अ आइलैंड कंपेयर टू ऑल ऑफ अस, तो वो एक उसमें इक्वालिटी है।
9: फिर करने के पहले तुम्हें बाबा नीम करोली जी के बारे में कितना पता था, और स्पिरिचुअलिटी क्या पहले से थी या फिल्म करते करते?
4: तो रोल करने से पहले तो मुझे पता नहीं था कि नीम करोली बाबा जी कौन है, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में बहुत कम लोगों को पता है नीम करोली बाबा जी के बारे में। पर जैसे ही मुझे रोल मिला तो फिर मैंने रिसर्च की, विशाल सर ने भी मुझे समझाया कि वो 12 साल की उम्र में उनकी, मतलब जो छोटे थे तब उनकी माँ गुजर गई, और वो जब वो 12 साल के थे तब वो घर से भाग गए और उनका ये एक ही सपना था, यस, और उनका एक ही सपना था राम जी के पास पहुंचना। तो विशाल सर ने मुझे सब समझा, इसलिए मुझे इजी गया रोल करने को। और जैसे जैसे शूटिंग होती चली गई, सिर्फ मैं मेरे रोल पे नहीं ध्यान देता था, जैसे शूटिंग होती थी तो फिर मुझे स्टोरी भी पता चली कि ये चमत्कार किए बाबा ने, जैसे वो ट्रेन वाला इंसिडेंट, तो मुझे भी थोड़ा एक्साइटेड लगा उनकी स्टोरी। और मेरा भी मतलब यही है मानना कि हनुमान अंश 2 भी आना चाहिए, पर मुझे टेंशन भी है कि अगर मेरा रोल है कि नहीं उस फिल्म में, तो ये
9: उसमें फ्लैशबैक लगाएंगे।
4: यस हाँ,
9: तुम्हारा रोल है। मुझे लगता है कि ये फिल्म फिल्म से आगे बढ़ के बहुत कुछ है
2: जी,
9: क्योंकि लोग थिएटर में फिल्म चलने के दौरान, फिल्म से पहले हनुमान चालीसा का कोई कल्चर नहीं था, इस फिल्म ने पूरे कल्चर को एक मोड़ दिया।
2: मुझे लगता है एक तो पार्ट ये कि हम जो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो शब्दों में उसका बयान उसको नहीं किया सकता, तो जब फिल्म बनाते वक्त जो मैं जिन भावनाओं से लिख रहा था शायद वो भावनाएं ट्रांसपायर हो गई और लोगों ने उन भावनाओं को पता नहीं कैसे पकड़ा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली इतना लोग भावनात्मक रूप से कैसे जुड़े इसके साथ में, और उन्होंने कितना ये हनुमान चालीसा पढ़ना, जूते उतारना, आपको बताऊं पहले 2 वीक में लोग जूते नहीं उतारते थे, या हमारी जितनी स्क्रीन हुई यही इस यहां पर भी, अब ये हो रहा है कि अब कीर्तन भी वो थिएटर वाले करने दे रहे हैं, अब जो है वो हनुमान चालीसाएं भी लोग पढ़ रहे हैं, जूते उतार रहे हैं, ऑल्टर बन रहा है, तो ये सब हमारे सोच के समझ से बाहर है, परे है कहीं ना कहीं। एक हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पे एक स्पिरिचुअल प्लेन भी है जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप सुन सकते हो, आप उसको सिर्फ समझ सकते हो अगर आपके अंदर वो आप उसको समझ सकते हो, यदि आपके अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू, आपके अंदर अगर वो दृष्टिकोण है तो ही आप उसको देख सकते हैं।
9: हनुमान जी के मूर्तियां स्थापित करने का सुंदर कांड के पाप पे बहुत
2: जी,
9: सुंदर कांड आपके इस फिल्म में कितना रोल पड़ा?
2: सुंदर कांड की वो कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाई, ये लाइन हमने सुंदर कांड की फिल्म के एंड करने के समय इसका प्रयोग किया है, और ये सुंदर कांड भी बहुत सारे महामंत्रों से भरा हुआ एक जिसे बोलते हैं कि वो पोर्शन है रामचरितमानस का, और इसके अलावा हनुमान चालीसा का हमने बहुत आयत उसमें मात्रा में प्रयोग किया है, जब वो अपने जब महान जी से बात करता है तो हनुमान चालीसा के रेफरेंस देता है कि तुम मेरे भजन राम जी को पावे, है ना, हनुमान चालीसा, वो हनुमान चालीसा का अष्ट सिद्धि नवनीति दाता से जब वो पानी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो 30 चौपाइयां पढ़ चुका है पानी के अंदर, इसलिए वो 31वीं से पढ़ते पढ़ते बाहर निकलता है, ऐसे हमने उसको एस्टेब्लिश किया कि बच्चे ढूंढ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा फिल्म के एंड में लास्ट जो फाइनल सिक्वेंस है वो पूरा हनुमान चालीसा के अराउंड ही है, हनुमान चालीसा कैसे पढ़े जाने चाहिए, क्यों पढ़े जाने चाहिए।
9: मैंने एक रील देखी जिसने विदेशी एक तारे पे गा रहे हैं जी, तेरे ही भरोसे, वो अपने भाव से गा,
2: मैंने तेरे ही भरोसे, अच्छा था, ब्यूटीफुल, इट वाज गुड, या धन्यवाद।
9: इन सारे लोगों से बातचीत करके सुंदरकांड की यही चौपाई जहन में आती है, जिस विनम्रता से इन सारे लोगों ने
2: सफलता को आत्मसात किया है और महाराज जी का नाम किया, हनुमान जी का नाम किया है, कि उसमें यही समझ में आता है कि सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा।
7: और देखिए, अगर आपसे भी गलती से फिल्म देखने में आप मिस हो गए हैं, लेकिन थिएटर्स में अभी भी जा सकते हैं क्योंकि ये फिल्म आप सबका इंतजार कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छी खबरें लगातार जा रही है, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अब बात करेंगे सोना यानी गोल्ड की। पहले उतार चढ़ाव का दौर और अब बड़ी गिरावट। नए हफ्ते के पहले दिन सोने का भाव 1.5 लाख से नीचे जा पहुंचा है। इसकी कीमत में 4,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भाव चांदी का भी गिरा है। आखिर इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है और क्या गिरावट का ये दौर अभी जारी रहेगा या सोना एक बार फिर से अपनी तेज चमक बिखेरेगा? इन सब को लेकर जानकारों का क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए।

सोना भारतीयों के लिए धातु ही नहीं बल्कि भरोसे, परंपरा और समृद्धि का प्रतीक है। शादी ब्याह हो या त्योहार, सब में सोने की चमक खूब दिखती है। सोने को निवेश के सुरक्षित विकल्पों में गिना जाता है। भारत में सोना खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि शुभता से भी जुड़ा हुआ है। धनतेरस हो या पर अक्षय तृतीया हो या शादी का कोई मौका, सोना खरीदने की परंपरा हमेशा रही है। अब त्योहारी सीजन से पहले सोने की कीमतों में आई गिरावट खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सोमवार यानी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में सोने का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 4000 रुपए से ज्यादा गिरा है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन की आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,48,910 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 1,36,501 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर की बात की जाए तो दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,52,830 रुपए था, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,40,100 रुपए थी। बुलियन मार्केट में आज सोने का दाम 4,140 रुपए सस्ता हो गया। इसके अलावा सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया।

0: और ईरान के बीच एक बार फिर से बढ़ता तनाव है।
1: जैसे जैसे वॉर की टेंशन एस्केलेशन बढ़ रही है, इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है विच इज़ फेडरल बैंक, वो ब्याज दर बढ़ाता है। वो ब्याज दर इसलिए बढ़ाता है कि बिकॉज उसको इन्फ्लेशन कम करना होता है। तो जब वो ब्याज दर बढ़ाता है तो उस वजह से क्या होता है, जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स या जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं गोल्ड को, गोल्ड से कंपैरिजन में। तो लोग क्या करते हैं, लोग गोल्ड से पैसा निकाल के उसके अंदर लगाते हैं। दैट इज़ द प्राइम रीजन व्हाई गोल्ड फॉल्स व्हेन वॉर गोज़ अप। जनरली वॉर से गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाना चाहिए, बट जब वॉर होती है, जैसे मिडिल ईस्ट की वॉर है, बहुत टेंशन हो रही है ऑल अराउंड वर्ल्ड, यूरोप और रशिया के बीच में।
0: पिछले साल सोने में 1989 के बाद सबसे तेजी देखी गई थी और अब तक इसमें 75% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हाल के महीनों में सोने के दाम काफी बढ़े हैं, लेकिन इस साल जुलाई और अगस्त में 11% की बढ़त के बाद इस महीने अब तक सोने में 6% की गिरावट आ चुकी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के डेटा के मुताबिक 25 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 159,578 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सितंबर महीने में सोने की खुदरा बिक्री में पिछले साल यानी कि 2025 की तुलना में 8-10% की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों की माने तो अमेरिका बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल दोनों में गिरावट की वजह से सोने पर दबाव बना हुआ है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये स्थिति अभी बनी रहेगी या फिर इसमें जल्दी ही सुधार की गुंजाइश आएगी। आम लोगों के लिहाज से देखा जाए तो दाम में गिरावट राहत है, लेकिन निवेशकों को इसको लेकर क्या ध्यान देना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है।
1: यही रीज़न है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये जो भी US मार्केट जो कंट्रोल है या जो लंदन बुलियन एक्सचेंज है, उसकी वजह से दाम में तेज़ी और वो आती है। बट हाँ, जब जब मार्केट इकोनॉमी के अंदर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी, तब या तो दाम नीचे जाएंगे डिपेंडिंग किस टाइप की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, या दाम ऊपर जाएंगे। तो इसकी वजह से है, जब हमें जैसे वॉर अगर अभी थम जाएगी तो फिर वापस सोने के दाम ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी।
2: तो लोगों को ले ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि लगातार दाम घट रहे हैं, आगे भी शायद घटते हुए नजर आए, जिनसे उनका जो वेडिंग सीजन है, जो फेस्टिव सीजन है, वो अच्छे से मना सके बिना सेकंड थॉट के।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल फेस्टिव अच्छे से मना पाए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड में निवेश हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है, और मेरा ये मानना है कि हर प्राइस हर लेवल रीजनेबल रहता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर उसको आप उसको इनकैश कर सकते हो या फ्यूचर के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये वो मार्केट है जब सोना खरीदना चाहिए।
0: सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 1 किलो चांदी के दाम 9,000 रुपए से ज्यादा गिरे हैं। बीते सप्ताह भी सोने चांदी के दाम में तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, जो कि इस हफ्ते की शुरुआत में भी जारी है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: राजधानी दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही है रफ्तार, आज गृह मंत्री अमित शाह जनता को समर्पित करेंगे। 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम, वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, 1 अक्टूबर से खुलेंगे सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा सहित तमाम टाइगर रिजर्व, सैलानियों को मिलेगा टाइगर देखने का मौका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदल गया मौसम का मिजाज, ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा तापमान। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर

0: اکتوبر کو مقابلہ۔
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے، اس کے اندر نا وہ اس خبروں کی موڑ دھوڑ اور چلا چلی نہیں ہے۔
2: میں ہوں نوجوت سندھاوا۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں اب صرف خبریں نہیں بلکہ آدھی ادھوری سچائیاں، جھوٹے دعوے بجلی کی رفتار کی طرح پھیلتے ہیں۔ کبھی کسی ویڈیو کے پیچھے کی کہانی بدل دی جاتی ہے، کبھی پرانی تصویر کو نئی سازش کا رنگ دے کر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ بنا جانچے پرکھے نے سچ مان لیتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اس دور میں خبریں اب اخبار کے پنوں یا ٹی وی سکرین تک سیمت نہیں ہیں۔ یہاں ہر کسی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، ہر گھٹنا، ہر تصویر، ہر ویڈیو کچھ ہی سیکنڈز میں پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی تیزی کئی بار سچ اور جھوٹ کی ریکھا کو دھندلا کر دیتی ہے۔ کوئی پرانی گھٹنا نہیں بتا کر پروسی جاتی ہے، کوئی ویڈیو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تصویروں میں ایسی کہانی گڑھ دی جاتی ہے جو اصلیت سے کوسوں دور ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ کہ لوگ بنا سوچے پرکھے، بنا جانچے انہیں سچ مان کر شیئر کر دیتے ہیں، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے افواہوں کی آندھی۔ ایسے میں ہم سچ اور جھوٹ کے بیچ کی دھند کو صاف کرتے ہیں، جہاں وائرل دعووں کی ہوتی ہے سٹیک جانچ، افواہوں کی ہوتی ہے پڑتال، اور جھوٹ کے ہر نقاب کو ہم اتارتے ہیں تتھیوں کی روشنی میں۔ آج ایسی دو خبروں کی پڑتال ہم کریں گے، جس میں بات سب سے پہلے سوشل میڈیا پر چھائے اس وائرل ویڈیو کی ہوگی، جس کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جموئی کانڈ پر بی جے پی ودھائک میتھلی ٹھاکر نے اسمویدنشیل بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود ایک لڑکی ہیں اور بہار میں بہت سرکشت ہیں۔ کیا ہے وائرل ویڈیو اور دعوے کی سچائی، آگے بتائیں گے۔ ہماری اگلی خبر ہوگی اس وائرل ویڈیو سے جڑی، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کرناٹک میں وسرجن کے دوران لوگوں نے ہنگامہ کر دیا۔ اس خبر کی سچائی آگے بتائیں گے۔ شروعات کرتے ہیں فیکٹ چیک کی۔
1: گڈ نیوز ٹوڈے اس لیے اچھا لگتا ہے، اس کے اندر نا وہ خبروں کی موڑ دھوڑ اور چلا چلا۔
2: کیا ستہ ملتے ہی نیتا سمویدنہین ہو جاتے ہیں؟ کیا جنتا سے جڑے مدے ان کے لیے معنی نہیں رکھتے؟ یہ سوال سوشل میڈیا پر اٹھ رہا ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ بی جے پی ودھائک میتھلی ٹھاکر نے جموئی کی گھٹنا پر بےحد غیر ذمہ دارانہ بیان دیا۔ بہار کے جموئی میں 19 ستمبر کو ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی ہوئی تھی، اور اس کیس میں مکھیہ آروپی نندن یادو سہت 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس پر لگاتار سیاست ہو رہی ہے، اور اسی بیچ میتھلی ٹھاکر کا ایک بیان تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ میتھلی ٹھاکر نے بیان دیا ہے کہ وہ خود ایک لڑکی ہیں اور بہار میں بہت سرکشت ہیں۔ اس بیان پر میتھلی ٹھاکر لگاتار سوشل میڈیا پر ٹرول ہو رہی ہیں، اسی لیے اس کی سچائی جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ کیا سچ میں میتھلی نے ایسا بیان دیا ہے؟ دیکھیے رپورٹ۔
3: ہم خود بہار سے آئے ہیں، اور میں خود بہار کی بیٹی ہوں، اور ہم لوگ بہت سرکشت ہیں، اور میں خود لڑکی ہوں، اور میں اس بات کی سنشچت کرنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کے بیچ میں بھی کھڑی ہوں کہ میں بالکل محفوظ۔
4: بہار کے جموئی کانڈ کے معاملے میں پولیس نے مکھیہ آروپی نندن یادو سمیت 7 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس انکاؤنٹر میں آروپی نندن کے پیر میں گولی لگ گئی تھی۔ اس گھٹنا پر بہار سمیت پورے دیش میں سیاسی ماحول گرمایا ہوا ہے۔ ان سب کے بیچ جموئی معاملے پر بی جے پی ودھائک اور لوک گائیکا میتھلی ٹھاکر کا یہ بیان خوب وائرل ہو رہا ہے۔ اس بیان کو لے کر میتھلی ٹھاکر کی جم کر آلوچنا ہو رہی ہے۔
3: خود بہار سے آئے ہیں، اور میں خود بہار کی بیٹی ہوں، اور ہم لوگ بہت سرکشت ہیں۔
4: پہلے یہ سنیے آخر اس بیان میں میتھلی ٹھاکر آخر کیا کہہ رہی ہیں، جسے سن کر سوشل میڈیا پر لوگ ان پر نشانہ سادھ رہے ہیں۔
3: ہم خود بہار سے آئے ہیں، اور میں خود بہار کی بیٹی ہوں، اور ہم لوگ بہت سرکشت ہیں، اور میں خود لڑکی ہوں، اور میں اس بات کی سنشچت کرنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کے بیچ میں بھی کھڑی ہوں کہ میں بالکل محفوظ۔
4: دراصل وائرل ہو رہی اس ویڈیو میں میتھلی ٹھاکر کہہ رہی ہیں کہ ہم خود بہار سے آئے ہیں، میں خود بہار کی بیٹی ہوں، اور ہم لوگ بہت سرکشت ہیں، میں خود لڑکی ہوں، اور اس بات کو سنشچت کرنے کے لیے آپ سب کے بیچ کھڑی ہوں کہ میں بالکل محفوظ ہوں۔
3: ہم خود بہار سے آئے ہیں، اور میں خود بہار کی بیٹی ہوں، اور ہم لوگ بہت سرکشت ہیں، اور میں خود لڑکی ہوں، اور میں اس بات کی سنشچت کرنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کے بیچ میں بھی کھڑی ہوں کہ میں بالکل محفوظ۔
4: کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میتھلی ٹھاکر نے جموئی کانڈ کے بعد یہ بیان دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارم پر اسے دھڑلے سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ ایک فیس بک پیج سے وائرل ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کیپشن لکھا گیا کہ بہار کے مار پیٹ کی گھٹنا پر بی جے پی ودھائک میتھلی ٹھاکر کا بیان مچا بوال۔ گھٹنا کو لے کر دیے گئے بیان پر اب سوال اٹھ رہے ہیں۔ ودھائک میتھلی ٹھاکر کی ٹپنی کو لے کر سوشل میڈیا پر بھی پرتیکریائیں سامنے آ رہی ہیں۔
2: تو آپ نے سنا میتھلی ٹھاکر نے کیا کہا۔ دراصل میتھلی دربھنگا کی अलीनगर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। जैसे ही उनका यह बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया, मैथिली ट्रोल होने लगी, पूरी पार्टी को लोग घेरने लगे। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि बीजेपी का महिला सुरक्षा का दावा एक दिखावा है, उनके लिए महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक है। ये बातें अलग हैं कि अलग तरह से फैल रही थी, इसीलिए हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। पूरा सच समझने के लिए हमने मैथिली ठाकुर के वायरल हो रहे बयान को बार बार सुना। ध्यान देने पर ऐसा लग रहा था कि यह बयान आधा अधूरा है, जैसे इसमें मैथिली ने जो पिछली लाइन कही है वो है, हम खुद बिहार से आए हैं। अब सोचिए कि मैथिली बिहार में ऐसा क्यों कहेंगी कि हम खुद बिहार से आए हैं। इससे हमें शक हुआ कि हो सकता है कि मैथिली ठाकुर ने बिहार के बाहर किसी कार्यक्रम में ये बात कही हो, हो सकता है कि वो जनरल लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ही ये बात कह रही हूं। शक की एक और बड़ी वजह थी, जमुई कांड पर मैथिली ठाकुर का ऐसा कोई बयान किसी ऑथेंटिक सोर्स पर नहीं दिखा, ये बयान सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहा था। अब हम सोच में पड़ गए कि अगर वाकई मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड को लेकर ऐसा कोई बयान दिया होता तो फिर ये चर्चा में होती बात, और फिर सभी विपक्षी पार्टियां इस बयान को लेकर मैथिली ठाकुर और बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। इसलिए हमारा पहला सवाल यही था कि अगर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड को लेकर यह बयान दिया है तो फिर यह खबर मुख्य धारा की मीडिया में क्यों नहीं आई। फैक्ट चेक टीम ने मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, जहां हमें 22 सितंबर का एक पोस्ट भी मिला जिसमें वो जमुई कांड की निंदा करते हुए तुरंत एक्शन के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का धन्यवाद कर रही है। ऐसे में मैथिली ठाकुर तुरंत इस तरह का बयान देकर अपनी किरकिरी क्यों करवाएंगी। इसलिए हमारे सामने दूसरा सवाल यही था कि क्या मैथिली ठाकुर के पुराने बयान को इस केस से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
3: और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और मैं खुद लड़की हूँ।
4: इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग एक खास नैरेटिव फैलाने लगे। ऐसे लोग जो झूठ सच का फर्क किए बगैर राय बनाने में देर नहीं करते, वो इस खबर पर कूद पड़े, कहने लगे कांग्रेस का दलित प्रेम एक दिखावा है। ऐसे में सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन एक न्यूज एजेंसी के यूट्यूब चैनल पे मिला। यहाँ इसे 22 अप्रैल 2026 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो पुराना है और जमुई मामले से संबंधित नहीं हो सकता। इस दौरान इस वीडियो को हमने पूरा सुना। ये साफ हुआ कि मैथिली ठाकुर ने ममता बैनर्जी के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। पहले आप ये सुनिए आखिर उस वक्त मैथिली ठाकुर ने क्या कहा था।
3: दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा, हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं, और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था कि चुनाव के दौरान जब हम देख रहे थे कि अपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पथरावबाजी कर रहे हैं, वसूलीबाजी कर रहे हैं, दलालबाजी कर रहे हैं, तो शायद मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ तो मैं अब सोना भी पहन के घूमती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ।
4: दरअसल मैथिली ठाकुर ने यह बयान बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। बता दें मैथिली ने जमुई की घटना को बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि दिल को झकझोर देने वाली घटना है। साथ ही उन्होंने इस मामले में एक्शन के लिए प्रशासन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद कहा है।
3: और मैं खुद लड़की हूं।
4: साफ है जमुई में हुई छेड़छाड़ की घटना पर बयान देने के नाम पर वायरल हो रहा मैथिली ठाकुर का ये वीडियो पुराना है। अप्रैल 2026 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया था। इसी दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया था जिसे गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब हम एक और वायरल वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई है, लेकिन लोग नहीं माने और नदी के किनारे लगी जालियों को तोड़कर गणपति विसर्जन करने लगे। इस वीडियो की
0: नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए दिल्ली समेत कुछ राज्यों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगी हुई है। इससे जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कई लोगों को जलाशय के किनारे लगी जालियों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई, लेकिन लोगों ने जालियां तोड़ दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कर्नाटक सरकार ने नदी में विसर्जन प्रतिबंधित किया था, जाली लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की थी। लोगों ने इकट्ठा होकर कहा, हम तो नदी में ही विसर्जित करेंगे, प्रदूषण फैलता है तो फैलने दो, अब बताओ सरकार क्या करे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दावा किया जा रहा है कि विरोध की ये तस्वीरें कर्नाटक में नदी में विसर्जन पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर हैं। अब वीडियो में कुछ लोग नदी किनारे लगी जाली को हटाते हुए दिख रहे हैं। इस घटना पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर विसर्जन से प्रदूषण फैलता है तो फिर प्रदूषण रोकने के उपाय किए जाए, न कि विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। इस वीडियो को तरह तरह के धार्मिक कमेंट्स के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है, इसीलिए हमने इसकी जांच शुरू की। वीडियो में यह तो दिख रहा है कि लोग पुल पर लगी जाली को तोड़कर उसको वहां से हटा रहे हैं। आसपास सुरक्षा बल के जवान भी हैं और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद ही असहाय से दिख रहे हैं। फिर हमने ये पता करने की कोशिश की कि नदी में विसर्जन रोकने के लिए क्या कर्नाटक में किसी नदी पर ऐसी जाली लगाई गई है। हमने तमाम खबरें वेबसाइट ढूंढ ली, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी खबर हमें नहीं मिली। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इस पर भाषा एक्सपर्ट से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि वीडियो में मौजूद लोग तेलुगु बोल रहे हैं, कन्नड़ नहीं। अब ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो कर्नाटक है तो फिर यहां पर तेलुगु में लोग बातें क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हमारा दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को कर्नाटक का बताकर सोशल मीडिया पर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। इस वीडियो में एक और गौर करने वाली बात थी कि ये पूरा प्रदर्शन गणपति विसर्जन को लेकर था, पर वीडियो में कहीं भी एक भी गणपति की मूर्ति नहीं दिखी, यानी यहां कोई विसर्जन करने नहीं आया। इसीलिए हमारा तीसरा सवाल यह था कि अगर हंगामा नदी में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ है तो फिर विसर्जन के लिए लाए गए लोग कहां हैं।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 21 सितंबर को अपलोड किए गए एक न्यूज वीडियो में वायरल क्लिप में मौजूद जाली तोड़ने वाले एक हिस्से को साफ साफ देखा जा सकता है। खबर के मुताबिक ये मामला हैदराबाद के टैंक बंड एरिया का है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें 21 सितंबर को छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल घटना से संबंधित तस्वीर भी देखने को मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश विसर्जन पर रोक के खिलाफ टैंक बंड में हो रहा विरोध प्रदर्शन तब तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस ने भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। समिति ने विसर्जन पर रोक वाले बैनर पर एतराज जताया। सर्च के दौरान ही हमें 21 सितंबर को छपी एक और रिपोर्ट मिली। इसके जरिए ये जानकारी सामने आई कि जलाशयों में पीओपी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए हुसैन नगर के किनारों पर अस्थायी बैरिकेड लगाए गए थे। हालांकि टैंक बंड पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने अस्थायी बैरिकेड हटा दिए थे और मंडप आयोजकों से मूर्तियों को हमेशा की तरह विसर्जन के लिए झील पर लाने को कहा था। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो तेलंगाना का है, जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जलाशयों में पीओपी मूर्तियों का विसर्जन रोकने के लिए जालियां लगाई गई थी। लेकिन हैदराबाद में टैंक बंड पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने जालियों को तोड़ दिया। इस वीडियो का कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: बच्चे मासूम होते हैं, बेफिक्र बेपरवाह, उन्हें बस प्यार करना आता है। देखिए इस छोटी बच्ची को, कैसे बछड़े को रोटी खिलाकर खुश है। बछड़ा भी उससे रोटी झपट नहीं रहा, बल्कि सावधानी से रोटी ले रहा है ताकि बच्ची डरे नहीं और उसे नन्हे हाथों से आहार मिलता रहे। रोटी लेते हुए जब बछड़े की जीभ बच्ची के हाथों को छू जाती है तो बच्ची की खिलखिलाहट देखने लायक है। दो मासूमों का ये अनकहा जुड़ाव देख कर लोग मुस्कुरा रहे हैं। एक बच्चे को जब पिता ने गिफ्ट दिया तो उसने पैकेट खोलने के बजाय पहले उन्हें गले लगा लिया। मासूम बेटे का यह अंदाज बताता है कि उसके लिए गिफ्ट से कहीं ज्यादा कीमती पिता का प्यार, मेहनत और साथ है। बच्चे के लिए गिफ्ट सिर्फ कागज में लिपटी कोई चीज नहीं थी, उसके पीछे पिता की मेहनत थी, उनका प्यार था और वे तमाम छोटी बड़ी कुर्बानियां थी जो अक्सर बच्चे देख तो लेते हैं लेकिन शब्दों में कह नहीं पाते। पिता के लिए शायद यह एक सामान्य सा तोहफा रहा हो लेकिन बच्चे ने उसके पीछे छिपी भावनाओं को समझ लिया था। इस बच्चे का अपने पिता को गले लगाना भी यही बात याद दिलाता है। उसने शायद बिना कुछ कहे अपने पापा को बता दिया कि वह उनकी मेहनत को समझता है और उनके प्यार की कद्र करता है। अदाएं ऐसी कि नजर न हटे, आत्मविश्वास ऐसा कि दुनिया जीत ले जाए। आपने रैंप पर वॉक करती सुंदरियों को खूब देखा होगा, मगर जो बात इनमें है किसी और में कहां। अंदाज देखिए जरा, क्या बलखा के चली है और विक्ट्री का साइन भी आंखों में आंखें डालकर दिखा रही है। मानो कह रही हो है कोई मुझसा तो सामने आए। बच्ची का अंदाज और उसका आत्मविश्वास लोगों का दिल छू रहा है।

0: संगीत से कुछ ज्यादा ही लगाव है इन्हें। माइक हाथ में आते ही सुर लगने लगे हैं। क्या गा रही हैं? मालूम नहीं, पर जिस अंदाज में गा रही हैं, वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। मानो आज तो स्टेज पर आग ही लगा देंगी। बच्चे जिस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस की नकल कर रही है, वो देखना दिलचस्प है। लोग उसकी क्यूटनेस पर दिल हार रहे हैं। कमाल है, इनको देखकर आपके मुंह से यही निकलने वाला है। इनकी फिटनेस, कॉन्फिडेंस और तालमेल सब गजब का है। सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये कोई स्टंट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये तो इनके खेलकूद का हिस्सा है। इनको देखना दिलचस्प है। इन बच्चों के इस वीडियो पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं।
1: और फोन तो करते ही रहना। हम
2: नहीं, फोन भी कर दूंगा।
1: मेरे पोर्टर, तेरे बिना दिल नहीं लगता ना।
0: यूं तो इस दुनिया में कई रिश्ते मिलते हैं, लेकिन दादा पोते का रिश्ता अपने आप में बेहद अनोखा और प्यारा होता है। कहा जाता है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, और यह बात इस रिश्ते पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जनरेशन गैप के बावजूद दोनों के बीच का अपना एक अलग ही मैजिक होता है। पोते ने अपने दादाजी को बताया कि वह किसी काम से उनसे दूर जा रहे हैं, तो बुजुर्ग दादाजी का दिल भर आया। पोते के जाने की बात सुनकर दादा धनराज जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने प्यार से अपने पोते के गाल सहलाए और भावुक होते हुए कहा,
1: कोई देर मत लगाना, आजकल का सीजन अच्छा नहीं है।
2: ठीक है,
0: तेरे बिना दिल नहीं लगेगा, लेकिन फोन पर बात कर लेगा तो तसल्ली रहेगी। दादाजी ने बड़े ही अपने पन के साथ पोते को अपना ख्याल रखने और समय पर दवाइयाँ खाने की सलाह दी।
1: बात कर लेगा तो भी हो जाएगा, दवा कोई देर मत लगाना, आजकल का सीजन अच्छा नहीं।
0: साथ ही यह भी कहा कि अगर जाने का सोच लिया है तो फिर ज्यादा देर मत लगाओ। दादाजी की यह मासूमियत और बेइंतहा प्यार देखने वालों का दिल पिघला रहा है। खचाखच भरी मेट्रो में सीट न मिलने पर एक बुजुर्ग अंकल ने ऐसा देसी जुगाड़ लगाया कि आसपास के लोग देखते रह गए। उन्होंने अपने बैग से फोल्डिंग स्टूल निकाला और मेट्रो के फर्श पर रखकर आराम से बैठ गए। इसके बाद हेडफोन लगाकर बड़े सुकून से सफर का आनंद लेने लगे। उनका अंदाज देखकर ऐसा लगा जैसे भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में सीट न मिलने की चिंता उन्होंने काफी पहले ही खत्म कर ली हो। वीडियो में उनका आत्मविश्वास और बेफिक्री लोगों का ध्यान खींच रही है।

फिल्म हनुमान अंश का लोकप्रिय गाना मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को इस विदेशी शख्स ने अपने अंदाज में गाकर लोगों का दिल जीत लिया है। आवाज में भक्ति का भाव साफ महसूस किया जा सकता है। लोग विदेशी शख्स की आवाज और उसके अंदाज की तारीफ

इस दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लय में ढोल ताशा बजा रहे हैं, लेकिन असली महफिल तो तब सजती है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड में आ जाता है। ढोल की हर बीट के साथ वे अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहां मौजूद लोग टकटकी लगाए देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं हिला रहा, बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वह अपने हाथों से भांगड़ा स्टाइल मूव्स करता है, तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का यह एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहां से गुजरने वाले हर शख्स के कदम थम गए। बच्चे हों या बड़े, हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। पुडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कॉपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पेनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कॉपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कॉपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े चाव से खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: जंगली जानवरों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव अक्सर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। ऐसे में ओडिशा का एक खास ट्रेनिंग सेंटर हाथियों को प्रशिक्षित करके ऐसे टकराव को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं ओडिशा के चंदका में मौजूद इस सेंटर की कहानी, जहां पर तैयार किए जा रहे हाथी वाइल्ड लाइफ और इंसान के बीच अहम कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
3: जंगल में खेल कूद करते इन हाथियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसानों के साथ ही हैं। और लोगों के बीच रहने के लिए इन्होंने काफी प्रैक्टिस की है। हकीकत यही है कि इन हाथियों को इंसानों का साथी बनने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीरें ओडिशा के चंदका वाइल्ड लाइफ डिवीजन में कुमार खूंटी के इलाके की है। घने जंगल का ये इलाका महज एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, जहां पर आप तरह तरह के जंगली जीव जंतुओं का दीदार कर सकते हैं और कुदरत की खूबसूरती को निहार सकते हैं, बल्कि ये जगह इस मायने में खास है कि यहां पर हाथियों का स्पेशल कुमकी ट्रेनिंग सेंटर है। यहां हाथियों की देखभाल की जाती है और उन्हें वन विभाग की ओर से विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है।
4: Mainly the rescue center. Two elephants who are discarded by this herd or injured at somewhere, they are rescued and they are treated and trained. This type of training is, no doubt it is a training center.
3: चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करीब 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इस जंगली इलाके में फिलहाल 46 जंगली हाथी मौजूद हैं, जबकि 9 भटके हुए हाथियों को यहां पर बने खास ट्रेनिंग सेंटर में लाकर रखा गया है, जिन्हें जंगल में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा हो। यहां पर इन हाथियों के रहने के लिए इंतजाम है और खानपान का खास ख्याल रखा जाता है। हाथियों की सेहत, आराम, नहाने, खेलकूद का हाथियों के बीच टकराव का खतरा बना रहता है।
4: This is the our aim to achieve this man elephant, to minimize the man and animal conflict. So we're imparted training to the elephants. In future they will help.
3: कुमकी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित हाथी और उनके साथ काम करने के लिए टीम जंगली हाथियों को नियंत्रित तरीके से आबादी से दूर करने में मदद करती है। यहां पर तैयार हो रहे हाथी जंगल और आबादी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश में वन विभाग के अहम साथी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
2: राजधानी दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही है रफ्तार। आज गृह मंत्री अमित शाह जनता को समर्पित करेंगे 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, 1 अक्टूबर से खुलेंगे सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा सहित तमाम टाइगर रिजर्व, सैलानियों को मिलेगा टाइगर देखने का मौका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदल गया मौसम का मिजाज, ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा तापमान। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का भूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश फिल्म ने ऐसा कमाल किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं। फिल्म हनुमान अंश ने कामयाबी का एक नया शिखर छू लिया है। 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने 400 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। जरा सोचिए, बजट 2 करोड़ रुपए से भी कम, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं, रिलीज से पहले कोई खास बज नहीं और शुरुआत में महज कुछ चुनिंदा शोज, लेकिन दर्शकों ने फिल्म देखी, पसंद की और फिर शुरू हुआ असली खेल, वर्ड ऑफ माउथ का। देश के एक संत के जीवन से जुड़ी ये कहानी दर्शकों को इस कदर पसंद आई कि हनुमान अंश हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बनाती चली गई और अब ये फिल्म 500 करोड़ के माइलस्टोन की ओर निकल चुकी है।

0: वक्त पे जो मेरा लुक था वो कहीं ना कहीं सर को, हमारे डायरेक्टर सर को, प्रोड्यूसर को, सारे लोगों को, कहीं ना कहीं टीम के भी लोगों को लगता था कि मैं बाबा जी जैसा दिखता हूँ, उनके यंग एज जैसा दिखता हूँ। तो ये संजोग था कि उस तरीके का लुक था। अगर मेरे दाढ़ी बड़ी होती, बाल बड़े होते, तो शायद किसी के माइंड में वो इमेज नहीं आती। तो ये एक तरीके का संजोग था जो एक चमत्कार बन गया मेरे लिए।
1: ये कहानी है उस संजोग की, उसी आस्था की, उसी चमत्कार की। एक ऐसा चमत्कार जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर हुआ, ऐसा चमत्कार जिसका हिसाब लगाते लगाते पंडितों के कैलकुलेटर भी हार मानने लगे हैं। और कोई कैसे न माने हार जब चमत्कार ऐसा हो। जब 2 करोड़ के बजट में तैयार हुई एक फिल्म कमाई के मामले में 400 करोड़ के बम्पर आंकड़े को पार कर जाए। सिर्फ 52 दिनों में फिल्म हनुमान अंश का कलेक्शन 400 करोड़ के पार पहुंच गया। बता दें कि हनुमान अंश ने अभी तक देश भर में 307 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड ग्राफ कलेक्शन 401 करोड़ के पार हो चुका है। जरा सोचिए, एक गुमनाम फिल्म, न जिसके बारे में किसी को मालूम था, न जिसके हीरो को कोई जानता था, और तो और डायरेक्टर भी अनजाने। फिल्म का न तो भव्य प्रमोशन हुआ और न ही इसके फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर की कोई खबर थी। फिल्म चुपचाप रिलीज हुई और चुपचाप ही शायद पर्दे से उतर भी जाती। लेकिन इस कहानी का अंत नहीं था। 2 हफ्तों तक फिल्म की टिकट खिड़की खाली जैसी ही रही। लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्तों बाद अचानक प्लॉट ट्विस्ट आया।
2: लेकिन एक फिनोमेनन था जो हम नोटिस कर रहे थे कि पहले वीक में जितने लोग फिल्म देखने गए थे पर थिएटर वर्सेस नेक्स्ट जो वीक था, विच इज सेकंड वीक, वाज वीकेस्ट वीक, जिसमें बोलते हैं कि 46 लाख का कलेक्शन था, लेकिन 46 लाख का कलेक्शन 27 थिएटर में था, जबकि 86 लाख का कलेक्शन 350 थिएटर में था, 350 शोज में था। तो जो रेशियो है वो 500% बढ़ गया था, मतलब इन टर्म्स ऑफ कितना फिल हो रहे थे हमारे थिएटर। तो उसका साइन तो दिखाई दे गया था हमको, लेकिन वही होता कि थिएटर जो बिजनेस है, सिनेमा जो बिजनेस है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि डिपेंड करता है अगली फिल्म कौन सी आ रही है, उस वक्त जनता का मूड कैसा है।
1: सिनेमा घरों में दर्शकों की नई सुनामी का नतीजा आज सबके सामने है। हनुमान अंश फिल्म की शानदार कामयाबी ने मेकर्स के चेहरों पर बड़ी मुस्कान ला दी है।
3: हम लोग के लिए भी मिरेकली है, बट इतना जरूर था कि विश्वास बहुत था इस फिल्म पे, और ये पूरी फिल्म बनी ही सिर्फ उसी विश्वास पे, उसी श्रद्धा पे और उसी भाव से। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसमें जुड़ते चले गए थे वो सारे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे बाबा से, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे अध्यात्म से और हनुमान जी से।
1: हनुमान अंश 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। 2026 की टॉप ग्राफ फिल्मों में लगभग 1852 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ धुरंधर द रिवेंज पहले नंबर पर है। वहीं 464 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 का दूसरा नंबर है, और 401 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ हनुमान अंश इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हनुमान अंश की कमाई अब भी जारी है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव, सकारात्मक मौखिक प्रचार और इसकी कहानी को बताया जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिससे भारत के आम दर्शकों ने रिलेट किया, एक ऐसी कहानी जिसमें एक देसी भारतीय के सामने वो किरदार था जिसे वो असल जिंदगी में भी लार्जर देन लाइफ नायक की तरह ही देखता है। उसी नायक की कहानी को इस फिल्म में सादगी से दिखाया गया है।
4: मुझे याद नहीं थी जो मेरा पहला और पहला दिन था शूटिंग का, तो वो जो हनुमान 40 वाला सीन वही था। तो फिर सर ने बताया मुझे जो मतलब जो पार्ट है, तो फिर मैंने वो लर्न किया। पर अभी मैं हर रोज हनुमान 40 पढ़ता हूँ और अभी मैं लर्न कर रहा हूँ हनुमान 40।
1: अब ये कृपा बाबा नीम करौली की है या भक्तों की आस्था, लेकिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने सिनेमा घरों में कदम भले ही धीमे से रखा, लेकिन अब ये अपनी रफ्तार से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को रौंदती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हम बार बार लगातार बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 400 करोड़ की कमाई के सफर में हनुमान अंश ने कई और रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। गुजरा वीकेंड हनुमान अंश के लिए रिलीज के बाद का 8वां वीकेंड था। 27 सितंबर रविवार यानी कल का दिन फिल्म की रिलीज का 52वां दिन था और हनुमान अंश ने 52वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया। अब रिलीज के 52वें दिन फिल्म ने रिकॉर्ड 9 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। लेकिन एक रिकॉर्ड हनुमान अंश ने ऐसा भी बना दिया जो अभूतपूर्व है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी मूल निवेश पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं।
5: जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती, पार्वती, पार्वती।
6: आस्था की डोर जब इतने विश्वास के साथ थमाई जाती है तो उम्र और ओहदे के पार जाकर वो दिलों को बांधती है, जोड़ती है। हनुमान अंश ने इसी विश्वास को सिनेमा के पर्दे पर पूरी भव्यता के साथ साकार किया है। शायद यही वजह है कि लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। खासतौर पर फिल्म के गाने पिछले कई हफ्तों से हर उम्र के लोगों के दिलों में उतरे हैं, जुबां पर चढ़े हैं।
0: जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो मतलब वो बहुत छोटे बच्चे भी जैसे हैं और उनका जो सोचने का तरीका है वो हर किसी वर्ग के बारे में सोच सकते हैं। तो और उनका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा है, वो खुद भी एक सिंगर हैं, उन्होंने गाना भी गाया हुआ है। तो उन्होंने इतना अच्छा अट्रैक्शन मूवी में डाला हुआ है, उन्होंने 11 सॉन्ग्स डाले हुए हैं गाने में, फिल्म में गाने डाले हुए हैं। और वो जो भी है वो ऐसा है कि वो जेंजीज को पसंद ही आने वाला था, ऐसा उनका भी मानना था और हमने भी जब सुना तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक था।
6: इस जादू का ही नतीजा है कि हनुमान अंश बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मुनाफे के प्रतिशत के लिहाज से ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बात जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की आती है तो सिर्फ कुल कमाई मायने नहीं रखती बल्कि ये देखा जाता है कि फिल्म ने अपनी मूल लागत के मुकाबले कितना गुना मुनाफा कमाया है। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला सीधा है, फिल्म के शुद्ध लाभ का कुल निवेश से भाग देकर 100 से गुणा करने पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है। चलिए अब इसी फॉर्मूला से हनुमान अंश का अब तक का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। हनुमान अंश का कुल बजट यानी निवेश है 2 करोड़ रुपए और अब तक कुल कमाई है लगभग 401 करोड़ रुपए। शुद्ध लाभ निकालने के लिए कुल कमाई से कुल निवेश को घटाया जाता है। इस आधार पर हनुमान अंश का शुद्ध लाभ हुआ लगभग 399 करोड़ रुपए। अब ROI का फॉर्मूला लगाते हुए 399 को 2 से भाग करके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस हिसाब से हनुमान अंश का अब तक का ROI प्रतिशत हुआ 19,960 यानी लगभग 200 गुना का रिटर्न, 200 गुना का विशुद्ध मुनाफा। ये अद्भुत है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि ROI के आधार पर हनुमान अंश बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मीलों पीछे छोड़ चुकी है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा ROI देने वाली फिल्मों की लिस्ट में 19,960 प्रतिशत के मुनाफे के साथ हनुमान अंश अब पहले नंबर पर है। तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार। लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार और हनुमान अंश के ROI में कई गुना का अंतर है और हनुमान अंश की कमाई अभी जारी है। इसी तरह सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इन फिल्मों की लिस्ट में 2007 में रिलीज हुई भेजा फ्राई तीसरे नंबर पर है। तो वहीं आमिर खान की दंगल भले ही हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन टॉप प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में वो चौथे नंबर पर है। इसी तरह 2022 में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि इतने छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा कमाल करके दिखाया है।
0: बाबा की कहानी जो है ना वो बहुत ही मिरेकुलस भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो बाबा की कहानी है, उनका जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। तो जब उनकी कहानी हम पर्दे पे देख रहे हैं तो क्या जेंजी, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी को वो पसंद ही आने वाली थी। और लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम किसी संत के बारे में कुछ दिखा रहे होते हैं, तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होता है, प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं। तो उनकी कृपा रही कि इतना अच्छा प्रोडक्ट निखर के आया कि वो सिर्फ जेंजीज ही नहीं, हर वर्ग को पसंद आ रहा है।
6: हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर जिस तरह छोटे बजट का खेल दिखाया है, उसके बाद इसकी तुलना 51 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ से हो रही है। 1975 में कम बजट में बनी जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया था कि उस दौर की ब्लॉकबस्टर शोले को भी कड़ी टक्कर मिली थी। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ ने अपनी लागत के मुकाबले करीब 1650% तक का मुनाफा कमाया था। और अब 51 साल बाद कम बजट की हनुमान अंश ने भी कुछ ऐसा ही करिश्मा करके दिखा दिया है।
3: मैं समझती हूँ कि जो विश्वास विशाल का था कि एक छोटे बजट की फिल्म बनाएंगे रागनी जी, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू दैट इस तरीके की जो फिल्में हैं उनके बहुत नीश ऑडियंस होते हैं, तो वो हम लोग के पैसे को ऐसा नहीं समझ रहे थे कि हम रिस्क करें। और विशाल ने हम लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से इसकी रिकवरी हो सकती है। आई विल जस्ट गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम, बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस फिल्म एंड he was the one who was telling us that listen, I mean we can yahan se itna aa sakta hai, yahan se itna aa sakta hai, language mein itna aa sakta hai. So hum log aisa lagta tha ki bahut kuch hoga to kya hoga, thoda bahut nuksan bhi agar hoga to koi farak nahi padta, kyunki I think jo bhav aur shraddha se ye film start kari gayi hai aur jis dhang se hum log ek ek karke jaise lag raha tha ki baba pick and choose kar rahe the hum logon ko aur mila rahe the hum logon ko, to hum logon ko pata nahi kyun chinta nahi hui kabhi.
6: किसे मालूम था कि ये फिल्म हर उम्मीद से आगे निकल जाएगी, और अभी तो फिल्म की कमाई जारी है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में फिल्म का कलेक्शन किस मुकाम पर पहुंचता है। क्या कमाई की मौजूदा धुआंधार रफ्तार इस फिल्म को 500 करोड़ के पार ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: बरसों के बाद एक धार्मिक फिल्म कमाई के मामले में शानदार मुकाम पर पहुंची और नया इतिहास रच रही है। फिल्म को कैसे मिली है ये कामयाबी, क्या ये महज संयोग है या फिर बाबा नीम करौली का करिश्मा है? फिल्म के निर्देशक, इसके निर्माता और बाल कलाकार से हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी ने खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है इसकी सफलता की कहानी। आप भी देखिए।
8: आमतौर से फिल्में जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे वो नीचे की ओर चलती हैं, लेकिन हनुमान अंश ऐसी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। जिम अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले वो हनुमाना। तो हम फिल्म की निर्माता भी हमारे साथ हैं, अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो इन त्रिदेव से हम बात कर रहे हैं इसमें। ये फिल्म कई लोग पूछ चुके होंगे कि शुरू में उम्मीद थी क्या, लेकिन अब शुरू में अगर फिल्म चलती तो उसको लोग अलग ढंग से लेते, लेकिन इसने जब देर से रफ्तार पकड़ी है तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने पत्थर में पहाड़ पर पांव जमाया और सीधा उड़ चले।
9: हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा तो है ही, मतलब आप अगर देखिए तो कोई लॉजिकल तो है नहीं कि सेकंड वीक में उठी है और फिर जब उठी है तो फिर जब जहां जा रही है वहां जा रही है, उसकी अपनी जर्नी है। आप हनुमान जी कह रहे हैं, मैं महाराज जी कह रही हूँ, सेम है, हम सभी उनके अंश हैं। आई थिंक विशाल और मैं जब बैठते थे तो हम लोग को क्लियरली मालूम था कि डिवोटीज के लिए हमने पिक्चर बनाई है। 50 मिलियन डिवोटीज है महाराज जी के इंडिया में, उसमें हमें लगता था कि एक नंबर जो होनी होता कि लोग बात कब करना शुरू करते हैं जब कुछ लोग साथ में मिलते हैं, तो हम चाहते थे कि डिवोटीज एटलीस्ट 50,000 लोग देख पाए, क्योंकि जो भी पिक्चर उससे पहले देख रहा था उनको पसंद आ रही थी, तो हमें थिएटर के एक्सपीरियंस के बारे में पता था कि वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस है, पर वो नंबर नहीं हम हिट कर पा रहे थे। 2 हफ्ते तक 35,000 लोगों ने ही देखी थी, तो जब तक लेकिन जब वो उठा तो उसके बाद तो आई थिंक हमारे हाथ में सिर्फ, आई थिंक श्रोता का प्यार है सिर्फ, तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है,
8: आपके हाथ से भी निकल
9: गया। हाँ बिल्कुल, बता, हमारे तो हाथ में है ही।
4: हाँ, तो पहले 2 हफ्ते में तो फिल्म थोड़ी टफ गई थी, पर जो जनता ने पब्लिश किया है तो और लोगों को इंटरेस्ट आ गया हनुमान अंश देखने के लिए, तो जनता के प्यार से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, नीम करौली बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी फिल्म इतनी हिट हो गई है। और मेन तो छोटे बच्चों ने भी शुरू कर दिया देखने के लिए, उनके पेरेंट्स वो छोटे बच्चे वो भी उनके पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि चलो हम मूवी देखते, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैं थोड़ा नर्वस था कि लोगों को मेरा रोल कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे तो नीम करोली बाबा जी के बारे में पहले पता नहीं था, पर जैसे मुझे पता चला वैसे वैसे मैंने रोल किया। पर बहुत लोगों को मेरा रोल अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए मुझे।
2: बहुत लोगों ने सबको बहुत अच्छा लगा।
9: विहान हैज सर्टन कामनेस अबाउट हिम, उसमें अंधभाव स्थिरता है, एंड फॉर अ चाइल्ड राइट, एंड वो हमेशा ऑब्जर्व कर रहा था, उसका सीन नहीं भी होता तो वो बैठा रहता था हमेशा सेट पे और सबको नोटिस कर रहा था। ही हैज एबिलिटी टू, बिकॉज स्पॉन्ज की तरह लगता है वो, और बहुत ही शांत स्पॉन्ज है मतलब हमारे सेट पे बहुत कुछ हो रहा था पर उस सेट में ये हमेशा शांत दिखता था, सो ही लुक लाइक अ आइलैंड कंपेयर टू ऑल ऑफ अस, तो वो एक उसमें इक्वालिटी है।
10: फिर करने के पहले तुम्हें बाबा नीम करोली जी के बारे में कितना पता था, और स्पिरिचुअलिटी क्या पहले से थी या फिल्म करते करते?
4: तो रोल करने से पहले तो मुझे पता नहीं था कि नीम करोली बाबा जी कौन है, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में बहुत कम लोगों को पता है नीम करोली बाबा जी के बारे में। पर जैसे ही मुझे रोल मिला तो फिर मैंने रिसर्च की, विशाल सर ने भी मुझे समझाया कि वो 12 साल की उम्र में उनकी, मतलब जो छोटे थे तब उनकी माँ गुजर गई, और वो जब वो 12 साल के थे तब वो घर से भाग गए और उनका ये एक ही सपना था, यस, और उनका एक ही सपना था राम जी के पास पहुंचना। तो विशाल सर ने मुझे सब समझा, इसलिए मुझे इजी गया रोल करने को। और जैसे जैसे शूटिंग होती चली गई, सिर्फ मैं मेरे रोल पे नहीं ध्यान देता था, जैसे शूटिंग होती थी तो फिर मुझे स्टोरी भी पता चली कि ये चमत्कार किए बाबा ने, जैसे वो ट्रेन वाला इंसिडेंट, तो मुझे भी थोड़ा एक्साइटेड लगा उनकी स्टोरी। और मेरा भी मतलब यही है मानना कि हनुमान अंश 2 भी आना चाहिए, पर मुझे टेंशन भी है कि अगर मेरा रोल है कि नहीं उस फिल्म में, तो ये
10: उसमें फ्लैशबैक लगाएंगे।
4: यस हाँ,
10: तुम्हारा रोल है। मुझे लगता है कि ये फिल्म से आगे बढ़ के बहुत कुछ है
2: जी,
10: क्योंकि लोग थिएटर में फिल्म चलने के दौरान, फिल्म से पहले हनुमान चालीसा का कोई कल्चर नहीं था, इस फिल्म ने पूरे कल्चर को एक मोड़ दिया।
2: मुझे लगता है एक तो पार्ट ये कि हम जो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो शब्दों में उसका बयान उसको नहीं किया सकता, तो जब फिल्म बनाते वक्त जो मैं जिन भावनाओं से लिख रहा था शायद वो भावनाएं ट्रांसपायर हो गई और लोगों ने उन भावनाओं को पता नहीं कैसे पकड़ा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली इतना लोग भावनात्मक रूप से कैसे जुड़े इसके साथ में और उन्होंने कितना ये हनुमान चालीसा पढ़ना, जूते उतारना, आपको बताऊं पहले 2 वीक में लोग जूते नहीं उतारते थे, या हमारी जितनी स्क्रीन हुई यही इस यहां पर भी, अब ये हो रहा है कि अब कीर्तन भी वो थिएटर वाले करने दे रहे हैं, अब जो है वो हनुमान चालीसाएं भी लोग पढ़ रहे हैं, जूते उतार रहे हैं, ऑल्टर बन रहा है, तो ये सब हमारे सोच के समझ से बाहर है, परे है, कहीं ना कहीं एक हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पे एक स्पिरिचुअल प्लेन भी है जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप सुन सकते हो, आप उसको सिर्फ समझ सकते हो अगर आपके अंदर वो आप उसको समझ सकते हो, यदि आपके अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू, आपके अंदर अगर उसको दृष्टिकोण है तो ही आप उसको देख सकते हो।
10: हनुमान जी के मूर्तियां स्थापित करने का सुंदर कांड के पाप पे बहुत
2: जी,
10: सुंदर कांड आपके इस फिल्म में कितना रोल पड़ा?
2: सुंदर कांड की वो कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाई, ये लाइन हमने सुंदर कांड की फिल्म के एंड करने के समय इसका प्रयोग किया है, और ये सुंदर कांड भी बहुत सारे महामंत्रों से भरा हुआ एक जिसे बोलते हैं कि वो पोर्शन है रामचरित मानस का, और इसके अलावा हनुमान चालीसा का हमने बहुत आयत उसमें मात्रा में प्रयोग किया है, जब वो अपने जब महान जी से बात करता है तो हनुमान चालीसा के रेफरेंसेस देता है कि तुम मेरे भजन राम जी को पावे, है ना, हनुमान चालीसा, वो हनुमान चालीसा का अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता से जब वो पानी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो 30 चौपाइयां पढ़ चुका है पानी के अंदर, इसलिए वो 31वीं से पढ़ते पढ़ते बाहर निकलता है, ऐसे हमने उसको एस्टेब्लिश किया कि बच्चे ढूंढ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा फिल्म के एंड में लास्ट जो फाइनल सिक्वेंस है वो पूरा हनुमान चालीसा के अराउंड ही है, हनुमान चालीसा कैसे पढ़े जाने चाहिए, क्यों पढ़े जाने चाहिए।
10: मैंने एक रील देखी जिसमें विदेशी एक तारे थे और गा रहे हैं रे भरोसे, वो अपने भाव से गा
2: मैंने तेरे ही भरोसे, अच्छा था, ब्यूटीफुल, इट वाज गुड, या धन्यवाद।
10: इन सारे लोगों से बातचीत करके सुंदरकांड की यही चौपाई जहन में आती है, जिस विनम्रता से इन सारे लोगों ने
8: सफलता को आत्मसात किया है और महाराज जी के नाम किया, हनुमान जी के नाम किया है, कि उसमें यही समझ में आता है कि सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा।
7: और देखिए, अगर आपसे भी गलती से फिल्म देखने में आप मिस हो गए हैं, लेकिन थिएटर्स में अभी भी जा सकते हैं क्योंकि ये फिल्म आप सबका इंतजार कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छी खबरें लगातार जा रही हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: अब बात करेंगे सोना यानी गोल्ड की। पहले उतार चढ़ाव का दौर और अब बड़ी गिरावट। नए हफ्ते के पहले दिन सोने का भाव 1.5 लाख से नीचे जा पहुंचा है। इसकी कीमत में 4,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भाव चांदी का भी गिरा है। आखिर इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है और क्या गिरावट का ये दौर अभी जारी रहेगा या सोना एक बार फिर से अपनी तेज चमक बिखेरेगा, इन सब को लेकर जानकारों का क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए।

0: सोना भारतीयों के लिए धातु ही नहीं बल्कि भरोसे, परंपरा और समृद्धि का प्रतीक है। शादी ब्याह हो या त्योहार, सब में सोने की चमक खूब दिखती है। सोने को निवेश के सुरक्षित विकल्पों में गिना जाता है। भारत में सोना खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि शुभता से भी जुड़ा हुआ है। धनतेरस हो या अक्षय तृतीया हो या शादी का कोई मौका, सोना खरीदने की परंपरा हमेशा रही है। अब त्योहारी सीजन से पहले सोने की कीमतों में आई गिरावट खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सोमवार यानी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में सोने का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 4,000 रुपए से ज्यादा गिरा है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन की आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,48,910 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 1,36,501 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर की बात की जाए तो दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,52,830 रुपए था जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,40,100 रुपए थी। बुलियन मार्केट में आज सोने का दाम 4,140 रुपए सस्ता हो गया। इसके अलावा सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यही नहीं, घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत में करीब 2% की गिरावट आई है। सवाल यह है कि आखिर सोने का भाव गिर क्यों रहा है। जानकारों के मुताबिक इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बढ़ता तनाव है।
1: जैसे जैसे वॉर की टेंशन एस्केलेशन बढ़ रही है, इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं। तो जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है विच इज़ फेडरल बैंक, वो ब्याज दर बढ़ाता है। वो ब्याज दर इसलिए बढ़ाता है कि बिकॉज उसको इन्फ्लेशन कम करना होता है। तो जब वो ब्याज दर बढ़ाता है तो उस वजह से क्या होता है, जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स या जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं गोल्ड को, गोल्ड से कंपैरिजन में। तो लोग क्या करते हैं, लोग गोल्ड से पैसा निकाल के उसके अंदर लगाते हैं। दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई गोल्ड

0: और रशिया के बीच में।
1: पिछले साल सोने में 1989 के बाद सबसे तेजी देखी गई थी और अब तक इसमें 75% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हाल के महीनों में सोने के दाम काफी बढ़े हैं, लेकिन इस साल जुलाई और अगस्त में 11% की बढ़त के बाद इस महीने अब तक सोने में 6% की गिरावट आ चुकी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के डेटा के मुताबिक 25 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सितंबर महीने में सोने की खुदरा बिक्री में पिछले साल यानी कि 2025 की तुलना में 8-10% की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों की माने तो अमेरिका बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल दोनों में गिरावट की वजह से सोने पर दबाव बना हुआ है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये स्थिति अभी बनी रहेगी या फिर इसमें जल्दी ही सुधार की गुंजाइश आएगी। आम लोगों के लिहाज से देखा जाए तो दाम में गिरावट राहत है, लेकिन निवेशकों को इसको लेकर क्या ध्यान देना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है।
0: यही रीज़न है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये जो भी US मार्केट जो कंट्रोल है या जो लंदन बुलियन एक्सचेंज है उसकी वजह से दाम में तेज़ी और वो आती है। बट हाँ, जब जब मार्केट इकोनॉमी के अंदर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तब या तो दाम नीचे जाएंगे डिपेंडिंग किस टाइप की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, या दाम ऊपर जाएंगे। तो इसकी वजह से है, जब हमें जैसे वॉर अगर अभी थम जाएगी तो फिर वापस सोने के दाम ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी।
2: तो लोगों को ले ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि लगातार दाम घट रहे हैं, आगे भी शायद घटते हुए नजर आए, जिनसे उनका जो वेडिंग सीजन है, जो फेस्टिव सीजन है, वो अच्छे से मना सके बिना सेकंड थॉट के।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छे से मना पाए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड में निवेश हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है और मेरा ये मानना है कि हर प्राइस हर लेवल रीजनेबल रहता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर उसको आप उसको इनकैश कर सकते हो या फ्यूचर के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये वो मार्केट है जब सोना खरीदना चाहिए।
1: सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 1 किलो चांदी के दाम 9,000 रुपए से ज्यादा गिरे हैं। बीते सप्ताह भी सोने चांदी के दाम में तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, जो कि इस हफ्ते की शुरुआत में भी जारी है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: राजधानी दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही है रफ्तार, आज गृह मंत्री अमित शाह जनता को समर्पित करेंगे 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज, 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम, वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, 1 अक्टूबर से खुलेंगे सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा सहित तमाम टाइगर रिजर्व, सैलानियों को मिलेगा टाइगर देखने का मौका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदल गया मौसम का मिजाज, ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा तापमान। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
5: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित।

0: सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे परखे, बिना जांचे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि जमुई कांड पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने असंवेदनशील बयान देते हुए कहा कि वो खुद एक लड़की हैं और बिहार में बहुत सुरक्षित हैं। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में विसर्जन के दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। इस खबर की सच्चाई आगे बताएंगे, शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और
0: क्या सत्ता मिलते ही नेता संवेदनहीन हो जाते हैं, क्या जनता से जुड़े मुद्दे उनके लिए मायने नहीं रखते, ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है। और दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने जमुई की घटना पर बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। बिहार के जमुई में 19 सितंबर को एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, और इस केस में मुख्य आरोपी नंदन यादव सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस पर लगातार सियासत हो रही है, और इसी बीच मैथिली ठाकुर का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि मैथिली ठाकुर ने बयान दिया है कि वो खुद एक लड़की हैं और बिहार में बहुत सुरक्षित हैं। इस बयान पर मैथिली ठाकुर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं, इसीलिए इसकी सच्चाई जानना बहुत जरूरी हो गया था। क्या सच में मैथिली ने ऐसा बयान दिया है, देखिए रिपोर्ट।
2: हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, और मैं खुद लड़की हूँ, और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज।
3: बिहार के जमुई कांड के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी नंदन के पैर में गोली लग गई थी। इस घटना पर बिहार समेत पूरे देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इन सब के बीच जमुई मामले पर बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। इस बयान को लेकर मैथिली ठाकुर की जमकर आलोचना हो रही है।
2: हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं।
3: पहले ये सुनिए आखिर इस बयान में मैथिली ठाकुर आखिर क्या कह रही हैं, जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग उन पर निशाना साध रहे हैं।
2: हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, और मैं खुद लड़की हूँ, और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज।
3: दरअसल वायरल हो रही इस वीडियो में मैथिली ठाकुर कह रही हैं कि हम खुद बिहार से आए हैं, मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, मैं खुद लड़की हूँ, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबके बीच खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ।
2: हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ, और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, और मैं खुद लड़की हूँ, और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज।
3: कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड के बाद ये बयान दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। एक फेसबुक पेज से वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया कि बिहार के मारपीट की घटना पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बयान मचा बवाल। घटना को लेकर दिए गए बयान पर अब सवाल उठ रहे हैं। विधायक मैथिली ठाकुर की टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
0: तो आपने सुना मैथिली ठाकुर ने क्या कहा। दरअसल मैथिली दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। जैसे ही उनका ये बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया, मैथिली ट्रोल होने लगी, पूरी पार्टी को लोग घेरने लगे। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि बीजेपी का महिला सुरक्षा का दावा एक दिखावा है, उनके लिए महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक है। ये बातें अलग हैं कि अलग तरह से फैल रही थी, इसीलिए हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। पूरा सच समझने के लिए हमने मैथिली ठाकुर के वायरल हो रहे बयान को बार बार सुना। ध्यान देने पर ऐसा लग रहा था कि ये बयान आधा अधूरा है, जैसे इसमें मैथिली ने जो पिछली लाइन कही है वो है हम खुद बिहार से आए हैं। अब सोचिए कि मैथिली बिहार में ऐसा क्यों कहेंगी कि हम खुद बिहार से आए हैं। इससे हमें शक हुआ कि हो सकता है कि मैथिली ठाकुर ने बिहार के बाहर किसी कार्यक्रम में ये बात कही हो, हो सकता है कि वो जनरल लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ही ये बात कह रही हूं। शक की एक और बड़ी वजह थी, जमुई कांड पर मैथिली ठाकुर का ऐसा कोई बयान किसी ऑथेंटिक सोर्स पर नहीं दिखा, यह बयान सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहा था। अब हम सोच में पड़ गए कि अगर वाकई मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड को लेकर ऐसा कोई बयान दिया होता तो फिर ये चर्चा में होती बात, और फिर सभी विपक्षी पार्टियां इस बयान को लेकर मैथिली ठाकुर और बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। इसलिए हमारा पहला सवाल यही था कि अगर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड को लेकर यह बयान दिया है तो फिर यह खबर मुख्य धारा की मीडिया में क्यों नहीं आई। फैक्ट चेक टीम ने मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, जहां हमें 22 सितंबर का एक पोस्ट भी मिला जिसमें वो जमुई कांड की निंदा करते हुए तुरंत एक्शन के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का धन्यवाद कर रही है। ऐसे में मैथिली ठाकुर तुरंत इस तरह का बयान देकर अपनी किरकिरी क्यों करवाएंगी। इसलिए हमारे सामने दूसरा सवाल यही था कि क्या मैथिली ठाकुर के पुराने बयान को इस केस से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए। और अब हम एक और वायरल वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई है, लेकिन लोग नहीं माने और नदी के किनारे लगी जालियों को तोड़कर गणपति विसर्जन करने लगे। इस वीडियो के सच
4: नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए दिल्ली समेत कुछ राज्यों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगी हुई है। इससे जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कई लोगों को जलाशय के किनारे लगी जालियों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई, लेकिन लोगों ने जालियां तोड़ दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कर्नाटक सरकार ने नदी में विसर्जन प्रतिबंधित किया था, जाली लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की थी। लोगों ने इकट्ठा होकर कहा, हम तो नदी में ही विसर्जित करेंगे, प्रदूषण फैलता है तो फैलने दो, अब बताओ सरकार क्या करे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दावा किया जा रहा है कि विरोध की ये तस्वीरें कर्नाटक में नदी में विसर्जन पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर हैं। अब वीडियो में कुछ लोग नदी किनारे लगी जाली को हटाते हुए दिख रहे हैं। इस घटना पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर विसर्जन से प्रदूषण फैलता है तो फिर प्रदूषण रोकने के उपाय किए जाए, न कि विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। इस वीडियो को तरह तरह के धार्मिक कमेंट्स के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है, इसीलिए हमने इसकी जांच शुरू की। वीडियो में ये तो दिख रहा है कि लोग पुल पर लगी जाली को तोड़कर वहां उसको वहां से हटा रहे हैं। आसपास सुरक्षा बल के जवान भी हैं और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद ही असहाय से दिख रहे हैं। फिर हमने ये पता करने की कोशिश की कि नदी में विसर्जन रोकने के लिए क्या कर्नाटक में किसी नदी पर ऐसी जाली लगाई गई है। हमने तमाम खबरें वेबसाइट ढूंढ ली, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी खबर हमें नहीं मिली। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इस पर भाषा एक्सपर्ट से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि वीडियो में मौजूद लोग तेलुगु बोल रहे हैं, कन्नड़ नहीं। अब ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो कर्नाटक है तो फिर यहां पर तेलुगु में लोग बातें क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हमारा दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को कर्नाटक का बताकर सोशल मीडिया पर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। इस वीडियो में एक और गौर करने वाली बात थी कि ये पूरा प्रदर्शन गणपति विसर्जन को लेकर था, पर वीडियो में कहीं भी एक भी गणपति की मूर्ति नहीं दिखी। यानी यहां कोई विसर्जन करने नहीं आया। इसीलिए हमारा तीसरा सवाल यह था कि अगर हंगामा नदी में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ है तो फिर विसर्जन के लिए लाए गए लोग कहां हैं?
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 21 सितंबर को अपलोड किए गए एक न्यूज वीडियो में वायरल क्लिप में मौजूद जाली तोड़ने वाले एक हिस्से को साफ साफ देखा जा सकता है। खबर के मुताबिक ये मामला हैदराबाद के टैंक बंड एरिया का है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें 21 सितंबर को छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल घटना से संबंधित तस्वीर भी देखने को मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश विसर्जन पर रोक के खिलाफ टैंक बंड में हो रहा विरोध प्रदर्शन तब तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस ने भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। समिति ने विसर्जन पर रोक वाले बैनर पर एतराज जताया। सर्च के दौरान ही हमें 21 सितंबर को छपी एक और रिपोर्ट मिली। इसके जरिए ये जानकारी सामने आई कि जलाशयों में पीओपी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए हुसैन नगर के किनारों पर अस्थायी बैरिकेड लगाए गए थे। हालांकि टैंक बंड पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने अस्थायी बैरिकेड हटा दिए थे और मंडप आयोजकों से मूर्तियों को हमेशा की तरह विसर्जन के लिए झील पर लाने को कहा था। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो तेलंगाना का है जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जलाशयों में पीओपी मूर्तियों का विसर्जन रोकने के लिए जालियां लगाई गई थी। लेकिन हैदराबाद में टैंक बंड पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने जालियों को तोड़ दिया। इस वीडियो का कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक गुड न्यूज टुडे।
0: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
5: बच्चे मासूम होते हैं, बेफिक्र बेपरवाह, उन्हें बस प्यार करना आता है। देखिए इस छोटी बच्ची को कैसे बछड़े को रोटी खिलाकर खुश है। बछड़ा भी उससे रोटी झपट नहीं रहा बल्कि सावधानी से रोटी ले रहा है ताकि बच्ची डरे नहीं और उसे नन्हे हाथों से आहार मिलता रहे। रोटी लेते हुए जब बछड़े की जीभ बच्ची के हाथों को छू जाती है तो बच्ची की खिलखिलाहट देखने लायक है। दो मासूमों का ये अनकहा जुड़ाव देख कर लोग मुस्कुरा रहे हैं। एक बच्चे को जब पिता ने गिफ्ट दिया तो उसने पैकेट खोलने के बजाय पहले उन्हें गले लगा लिया। मासूम बेटे का यह अंदाज बताता है कि उसके लिए गिफ्ट से कहीं ज्यादा कीमती पिता का प्यार, मेहनत और साथ है। बच्चे के लिए गिफ्ट सिर्फ कागज में लिपटी कोई चीज नहीं थी, उसके पीछे पिता की मेहनत थी, उनका प्यार था और वे तमाम छोटी बड़ी कुर्बानियां थी जो अक्सर बच्चे देख तो लेते हैं लेकिन शब्दों में कह नहीं पाते। पिता के लिए शायद यह एक सामान्य सा तोहफा रहा हो लेकिन बच्चे ने उसके पीछे छिपी भावनाओं को समझ लिया था। इस बच्चे का अपने पिता को गले लगाना भी यही बात याद दिलाता है। उसने शायद बिना कुछ कहे अपने पापा को बता दिया कि वह उनकी मेहनत को समझता है और उनके प्यार की कद्र करता है। अदाएं ऐसी कि नजर न हटे, आत्मविश्वास ऐसा कि दुनिया जीत ले जाए। आपने रैंप पर वॉक करती सुंदरियों को खूब देखा होगा मगर जो बात इनमें है किसी और में कहां। अंदाज देखिए जरा, क्या बलखा के चली हैं और विक्ट्री का साइन भी आंखों में आंखें डालकर दिखा रही है। मानो कह रही हो है कोई मुझसा तो सामने आए। बच्ची का अंदाज और उसका आत्मविश्वास लोगों का दिल छू रहा है।

0: संगीत से कुछ ज्यादा ही लगाव है इन्हें। माइक हाथ में आते ही सुर लगने लगे हैं। क्या गा रही हैं? मालूम नहीं, पर जिस अंदाज में गा रही हैं, वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। मानो आज तो स्टेज पर आग ही लगा देंगी। बच्चे जिस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस की नकल कर रही है, वो देखना दिलचस्प है। लोग उसकी क्यूटनेस पर दिल हार रहे हैं। कमाल है, इनको देखकर आपके मुंह से यही निकलने वाला है। इनकी फिटनेस, कॉन्फिडेंस और तालमेल सब गजब का है। सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये कोई स्टंट कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो ये तो इनके खेलकूद का हिस्सा है। इनको देखना दिलचस्प है। इन बच्चों के इस वीडियो पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं।
1: और फोन तो करते ही रहना। हम
2: नहीं, फोन भी कर दूंगा।
1: मेरे पोटर, तेरे बिना दिल नहीं लगता ना।
0: यूं तो इस दुनिया में कई रिश्ते मिलते हैं, लेकिन दादा पोते का रिश्ता अपने आप में बेहद अनोखा और प्यारा होता है। कहा जाता है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, और यह बात इस रिश्ते पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जनरेशन गैप के बावजूद दोनों के बीच का अपना एक अलग ही मैजिक होता है। पोते ने अपने दादाजी को बताया कि वह किसी काम से उनसे दूर जा रहे हैं, तो बुजुर्ग दादाजी का दिल भर आया। पोते के जाने की बात सुनकर दादा धनराज जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने प्यार से अपने पोते के गाल सहलाए और भावुक होते हुए कहा,
1: कोई देर मत लगाना, आजकल का सीजन अच्छा नहीं है।
2: ठीक है,
0: तेरे बिना दिल नहीं लगेगा, लेकिन फोन पर बात कर लेगा तो तसल्ली रहेगी। दादाजी ने बड़े ही अपने पन के साथ पोते को अपना ख्याल रखने और समय पर दवाइयाँ खाने की सलाह दी।
1: बात कर लेगा तो भी हो जाएगा। कोई देर मत लगाना, आजकल का सीजन अच्छा नहीं।
0: साथ ही यह भी कहा कि अगर जाने का सोच लिया है तो फिर ज्यादा देर मत लगाओ। दादाजी की यह मासूमियत और बेइंतहा प्यार देखने वालों का दिल पिघला रहा है। खचाखच भरी मेट्रो में सीट न मिलने पर एक बुजुर्ग अंकल ने ऐसा देसी जुगाड़ लगाया कि आसपास के लोग देखते रह गए। उन्होंने अपने बैग से फोल्डिंग स्टूल निकाला और मेट्रो के फर्श पर रखकर आराम से बैठ गए। इसके बाद हेडफोन लगाकर बड़े सुकून से सफर का आनंद लेने लगे। उनका अंदाज देखकर ऐसा लगा जैसे भीड़भाड़ वाली मेट्रो में सीट न मिलने की चिंता उन्होंने काफी पहले ही खत्म कर ली हो। वीडियो में उनका आत्मविश्वास और बेफिक्री लोगों का ध्यान खींच रही है।

फिल्म हनुमान अंश का लोकप्रिय गाना मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को इस विदेशी शख्स ने अपने अंदाज में गाकर लोगों का दिल जीत लिया है। आवाज में भक्ति का भाव साफ महसूस किया जा सकता है। लोग विदेशी शख्स की आवाज और उसके अंदाज की तारीफ कर

इस दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लय में ढोल ताशा बजा रहे हैं, लेकिन असली महफिल तो तब सजती है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड में आ जाता है। ढोल की हर बीट के साथ वह अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहां मौजूद लोग टकटकी लगाए देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं हिला रहा, बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वह अपने हाथों से भांगड़ा स्टाइल मूव्स करता है, तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का यह एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहां से गुजरने वाले हर शख्स के कदम थम गए। बच्चे हों या बड़े, हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। पुडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कॉपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पेनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कॉपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कॉपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े चाव से खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे,
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
6: जंगली जानवरों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव अक्सर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। ऐसे में ओडिशा का एक खास ट्रेनिंग सेंटर हाथियों को प्रशिक्षित करके ऐसे टकराव को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं ओडिशा के चंदका में मौजूद इस सेंटर की कहानी, जहां पर तैयार किए जा रहे हाथी वाइल्ड लाइफ और इंसान के बीच अहम कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
7: जंगल में खेल कूद करते इन हाथियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसानों के साथ ही हैं। और लोगों के बीच रहने के लिए इन्होंने काफी प्रैक्टिस की है। हकीकत यही है कि इन हाथियों को इंसानों का साथी बनने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीरें ओडिशा के चंदका वाइल्ड लाइफ डिवीजन में कुमार खूंटी के इलाके की हैं। घने जंगल का ये इलाका महज एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, जहां पर आप तरह तरह के जंगली जीव जंतुओं का दीदार कर सकते हैं और कुदरत की खूबसूरती को निहार सकते हैं, बल्कि ये जगह इस मायने में खास है कि यहां पर हाथियों का स्पेशल कुमकी ट्रेनिंग सेंटर है। यहां हाथियों की देखभाल की जाती है और उन्हें वन विभाग की ओर से विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है।
8: मेनली द रेस्क्यू सेंटर, दो एलिफेंट हुए आर डिस्कार्डेड बाय दिस हॉर्ड और इंजर्ड एट समवेयर, दे आर रेस्क्यूड एंड दे आर ट्रीटेड एंड ट्रेंड। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज नो डाउट इट इज अ ट्रेनिंग सेंटर।
7: चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करीब 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इस जंगली इलाके में फिलहाल 46 जंगली हाथी मौजूद हैं, जबकि 9 भटके हुए हाथियों को यहां पर बने खास ट्रेनिंग सेंटर में लाकर रखा गया है, जिन्हें जंगल में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा हो। यहां पर इन हाथियों के रहने के लिए इंतजाम है और खान पान का खास ख्याल रखा जाता है। हाथियों की सेहत, आराम, नहाने, खेलकूद का पूरा ख्याल यहां पर रखा जाता है। साथ ही हाथियों को यहां पर हर दिन 2 से 3 घंटे प्रशिक्षित भी किया जाता है। इन हाथियों की मौजूदगी इन इलाकों के लिए काफी खास है, जहां इंसानों और जंगली हाथियों के बीच टकराव का खतरा बना रहता है।
8: Man elephant to minimize the man and animal conflict. So we are training, we are imparted training to the elephants. In future they will help.
7: कुमकी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित हाथी और उनके साथ काम करने के लिए टीम जंगली हाथियों को नियंत्रित तरीके से आबादी से दूर करने में मदद करती है। यहाँ पर तैयार हो रहे हाथी जंगल और आबादी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश में वन विभाग के अहम साथी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: राजधानी दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही है रफ्तार। आज गृह मंत्री अमित शाह जनता को समर्पित करेंगे 12 पुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, 1 अक्टूबर से खुलेंगे सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा सहित तमाम टाइगर रिजर्व, सैलानियों को मिलेगा टाइगर देखने का मौका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदल गया मौसम का मिजाज। ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा तापमान। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना दिया। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश फिल्म ने ऐसा कमाल किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं। फिल्म हनुमान अंश ने कामयाबी का एक नया शिखर छू लिया है। 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने 400 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया। जरा सोचिए, बजट 2 करोड़ रुपए से भी कम, प्रमोशन के लिए पैसा नहीं, रिलीज से पहले कोई खास बज नहीं और शुरुआत में महज कुछ चुनिंदा शोज, लेकिन दर्शकों ने फिल्म देखी, पसंद की और फिर शुरू हुआ असली खेल, वर्ड ऑफ माउथ का। देश के एक संत के जीवन से जुड़ी ये कहानी दर्शकों को इस कदर पसंद आई कि हनुमान अंश हर गुजरते दिन के साथ कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बनाती चली गई और अब ये फिल्म 500 करोड़ के माइलस्टोन की ओर निकल चुकी है।

0: उस वक्त पे जो मेरा लुक था वो कहीं ना कहीं सर को, हमारे डायरेक्टर सर को, प्रोड्यूसर को, सारे लोगों को, कहीं ना कहीं टीम के भी लोगों को लगता था कि मैं बाबा जी जैसा दिखता हूँ, उनके यंग एज जैसा दिखता हूँ। तो ये संजोग था कि उस तरीके का लुक था। अगर मेरे दाढ़ी बड़ी होती, बाल बड़े होते तो शायद किसी के माइंड में वो इमेज नहीं आती। तो ये एक तरीके का संजोग था जो एक चमत्कार बन गया मेरे लिए।
1: ये कहानी है उस संजोग की, उसी आस्था की, उसी चमत्कार की। एक ऐसा चमत्कार जो भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर हुआ, ऐसा चमत्कार जिसका हिसाब लगाते लगाते पंडितों के कैलकुलेटर भी हार मानने लगे हैं। और कोई कैसे न माने हार जब चमत्कार ऐसा हो। जब 2 करोड़ के बजट में तैयार हुई एक फिल्म कमाई के मामले में 400 करोड़ के बम्पर आंकड़े को पार कर जाए। सिर्फ 52 दिनों में फिल्म हनुमान अंश का कलेक्शन 400 करोड़ के पार पहुंच गया। बता दें कि हनुमान अंश ने अभी तक देश भर में 307 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड ग्राफ कलेक्शन 401 करोड़ के पार हो चुका है। जरा सोचिए, एक गुमनाम फिल्म, न जिसके बारे में किसी को मालूम था, न जिसके हीरो को कोई जानता था, और तो और डायरेक्टर भी अनजाने। फिल्म का न तो भव्य प्रमोशन हुआ और न ही इसके फर्स्ट लुक, टीजर और ट्रेलर की कोई खबर थी। फिल्म चुपचाप रिलीज हुई और चुपचाप ही शायद पर्दे से उतर भी जाती। लेकिन इस कहानी का अंत नहीं था। 2 हफ्तों तक फिल्म की टिकट खिड़की खाली जैसी ही रही। लेकिन फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्तों बाद अचानक प्लॉट ट्विस्ट आया।
2: लेकिन एक फिनोमेनन था जो हम नोटिस कर रहे थे कि पहले वीक में जितने लोग फिल्म देखने गए थे पर थिएटर वर्सेस नेक्स्ट जो वीक था, विच इज सेकंड वीक, वीकेस्ट वीक, जिसमें बोलते हैं कि 46 लाख का कलेक्शन था, लेकिन 46 लाख का कलेक्शन 27 थिएटर में था, जबकि 86 लाख का कलेक्शन 350 थिएटर में था, 350 शोज में था। तो जो रेशियो है वो 500% बढ़ गया था, मतलब इन टर्म्स ऑफ कितना फिल हो रहे थे हमारे थिएटर। तो उसका साइन तो दिखाई दे गया था हमको, लेकिन वही होता कि थिएटर जो बिजनेस है, सिनेमा जो बिजनेस है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि डिपेंड करता है अगली फिल्म कौन सी आ रही है, उस वक्त जनता का मूड कैसा है।
1: सिनेमा घरों में दर्शकों की नई सुनामी का नतीजा आज सबके सामने है। हनुमान अंश फिल्म की शानदार कामयाबी ने मेकर्स के चेहरों पर बड़ी मुस्कान ला दी है।
3: हम लोग के लिए भी मिरेकली है, बट इतना जरूर था कि विश्वास बहुत था इस फिल्म पे, और ये पूरी फिल्म बनी ही सिर्फ उसी विश्वास पे, उसी श्रद्धा पे और उसी भाव से। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग इसमें जुड़ते चले गए थे वो सारे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड थे बाबा से, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे अध्यात्म से और हनुमान जी से।
1: हनुमान अंश 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टॉप 3 में जगह बना चुकी है। 2026 की टॉप ग्राफ फिल्मों में लगभग 1852 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ धुरंधर द रिवेंज पहले नंबर पर है। वहीं 464 रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ बॉर्डर 2 का दूसरा नंबर है, और 401 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ हनुमान अंश इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हनुमान अंश की कमाई अब भी जारी है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव, सकारात्मक मौखिक प्रचार और इसकी कहानी को बताया जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिससे भारत के आम दर्शकों ने रिलेट किया, एक ऐसी कहानी जिसमें एक देसी भारतीय के सामने वो किरदार था जिसे वो असल जिंदगी में भी लार्जर देन लाइफ नायक की तरह ही देखता है। उसी नायक की कहानी को इस फिल्म में सादगी से दिखाया गया है।
4: मुझे याद नहीं थी जो मेरा पहला दिन था शूटिंग का, तो वो जो हनुमान 40 वाला सीन है वही था। तो फिर सर ने बताया मुझे जो मतलब जो पार्ट है, तो फिर मैंने वो लर्न किया। पर अभी मैं हर रोज हनुमान 40 पढ़ता हूँ और अभी मैं ये लर्न कर रहा हूँ हनुमान 40।
1: अब ये कृपा बाबा नीम करौली की है या भक्तों की आस्था, लेकिन कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश ने सिनेमा घरों में कदम भले ही धीमे से रखा, लेकिन अब ये अपनी रफ्तार से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को रौंदती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हम बार बार लगातार बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 400 करोड़ की कमाई के सफर में हनुमान अंश ने कई और रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। गुजरा वीकेंड हनुमान अंश के लिए रिलीज के बाद का 8वां वीकेंड था। 27 सितंबर रविवार यानी कल का दिन फिल्म की रिलीज का 52वां दिन था और हनुमान अंश ने 52वें दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया। अब रिलीज के 52वें दिन फिल्म ने रिकॉर्ड 9 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। लेकिन एक रिकॉर्ड हनुमान अंश ने ऐसा भी बना दिया जो अभूतपूर्व है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी मूल निवेश पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं।
5: जब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती, पार्वती।
6: आस्था की डोर जब इतने विश्वास के साथ थमाई जाती है तो उम्र और ओहदे के पार जाकर वो दिलों को बांधती है, जोड़ती है। हनुमान अंश ने इसी विश्वास को सिनेमा के पर्दे पर पूरी भव्यता के साथ साकार किया है। शायद यही वजह है कि लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। खास तौर पर फिल्म के गाने पिछले कई हफ्तों से हर उम्र के लोगों के दिलों में उतरे हैं, जुबां पर चढ़े हैं।
0: जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो मतलब वो बहुत छोटे बच्चे भी जैसे हैं और उनका जो सोचने का तरीका है वो हर किसी वर्ग के बारे में सोच सकते हैं। तो और उनका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा है, वो खुद भी एक सिंगर है, उन्होंने गाना भी गाया हुआ है। तो उन्होंने इतना अच्छा अट्रैक्शन मूवी में डाला हुआ है, उन्होंने 11 सॉन्ग्स डाले हुए हैं गाने में, फिल्म में गाने डाले हुए हैं। और वो जो भी है वो ऐसा है कि वो जेंजीज को पसंद ही आने वाला था, ऐसा उनका भी मानना था और हमने भी जब सुना तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक था।
6: इस जादू का ही नतीजा है कि हनुमान अंश बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म बन गई है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मुनाफे के प्रतिशत के लिहाज से ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। बात जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज की आती है तो सिर्फ कुल कमाई मायने नहीं रखती बल्कि ये देखा जाता है कि फिल्म ने अपनी मूल लागत के मुकाबले कितना गुना मुनाफा कमाया है। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला सीधा है, फिल्म के शुद्ध लाभ का कुल निवेश से भाग देकर 100 से गुणा करने पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जा सकता है। चलिए अब इसी फॉर्मूला से हनुमान अंश का अब तक का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। हनुमान अंश का कुल बजट यानी निवेश है 2 करोड़ रुपए और अब तक कुल कमाई है लगभग 401 करोड़ रुपए। शुद्ध लाभ निकालने के लिए कुल कमाई से कुल निवेश को घटाया जाता है। इस आधार पर हनुमान अंश का शुद्ध लाभ हुआ लगभग 399 करोड़ रुपए। अब ROI का फॉर्मूला लगाते हुए 399 को 2 से भाग करके आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उस हिसाब से हनुमान अंश का अब तक का ROI प्रतिशत हुआ 19,960 यानी लगभग 200 गुना का रिटर्न, 200 गुना का विशुद्ध मुनाफा। ये अद्भुत है, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभूतपूर्व है। आपको बता दें कि ROI के आधार पर हनुमान अंश बॉलीवुड की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को मीलों पीछे छोड़ चुकी है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा ROI देने वाली फिल्मों की लिस्ट में 19,960 प्रतिशत के मुनाफे के साथ हनुमान अंश अब पहले नंबर पर है। तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है साल 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार। लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार और हनुमान अंश के ROI में कई गुना का अंतर है और हनुमान अंश की कमाई अभी जारी है। इसी तरह सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली इन फिल्मों की लिस्ट में 2007 में रिलीज हुई भेजा फ्राई तीसरे नंबर पर है। तो वहीं आमिर खान की दंगल भले ही हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कमाई करने वाली फिल्म है लेकिन टॉप प्रॉफिटेबल फिल्मों की लिस्ट में वो चौथे नंबर पर है। इसी तरह 2022 में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। ये आंकड़े साबित करने के लिए काफी हैं कि इतने छोटे बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा कमाल करके दिखाया है।
0: बाबा की कहानी जो है ना वो बहुत ही मिरेकुलस भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो बाबा की कहानी है, उनका जीवन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। तो जब उनकी कहानी हम पर्दे पे देख रहे हैं तो क्या जेंजी, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी को वो पसंद ही आने वाली थी। और लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं हम किसी संत के बारे में कुछ दिखा रहे होते हैं तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं होता है, प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं। तो उनकी कृपा रही कि इतना अच्छा प्रोडक्ट निखर के आया कि वो सिर्फ जेंजीज ही नहीं हर वर्ग को पसंद आ रहा है।
6: हनुमान अंश ने बड़े पर्दे पर जिस तरह छोटे बजट का खेल दिखाया है उसके बाद इसकी तुलना 51 साल पहले आई फिल्म जय संतोषी माँ से हो रही है। 1975 में कम बजट में बनी जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा किया था कि उस दौर की ब्लॉकबस्टर शोले को भी कड़ी टक्कर मिली थी। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ ने अपनी लागत के मुकाबले करीब 1650% तक का मुनाफा कमाया था और अब 51 साल बाद कम बजट की हनुमान अंश ने भी कुछ ऐसा ही करिश्मा करके दिखा दिया है।
3: मैं समझती कि जो विश्वास विशाल का था कि एक छोटे बजट की फिल्म बनाएंगे रागनी जी, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू दैट इस तरीके की जो फिल्में हैं उनके बहुत नीश ऑडियंस होते हैं, तो वो हम लोग के पैसे को ऐसा नहीं समझ रहे थे कि हम रिस्क करें। और विशाल ने हम लोगों को ये भी बताया था कि किस तरीके से इसकी रिकवरी हो सकती है। आई विल जस्ट गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम बिकॉज व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस फिल्म एंड he was the one who was telling us that listen, I mean we can yahan se itna aa sakta hai, yahan se itna aa sakta hai, language mein itna aa sakta hai. So hum log ko aisa lagta tha ki bahut kuch hoga to kya hoga, thoda bahut nuksan bhi agar hoga to koi farak nahi padta, kyunki I think jo bhav aur shraddha se ye film start kari gayi hai aur jis dhang se hum log ek ek karke jaise lag raha tha ki baba pick and choose kar rahe the hum logon ko aur mila rahe the hum logon ko, to hum logon ko pata nahi kyun chinta nahi hui kabhi.
6: किसे मालूम था कि ये फिल्म हर उम्मीद से आगे निकल जाएगी और अभी तो फिल्म की कमाई जारी है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में फिल्म का कलेक्शन किस मुकाम पर पहुंचता है। क्या कमाई की मौजूदा धुआंधार रफ्तार इस फिल्म को 500 करोड़ के पार ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: बरसों के बाद एक धार्मिक फिल्म कमाई के मामले में शानदार मुकाम पर पहुंची और नया इतिहास रच रही है। फिल्म को कैसे मिली है ये कामयाबी, क्या ये महज संयोग है या फिर बाबा नीम करौली का करिश्मा है? फिल्म के निर्देशक, इसके निर्माता और बाल कलाकार से हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी ने खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है इसकी सफलता की कहानी। आप भी देखिए।
2: आमतौर से फिल्में जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं वैसे वैसे वो नीचे की ओर चलती हैं, लेकिन हनुमान अंश ऐसी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। जिम अमोघ रघुपति कर वाना यही भांति चले वो हनुमाना। तो हम फिल्म की निर्माता भी हमारे साथ हैं, अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो इन त्रिदेव से हम बात कर रहे हैं इसमें। ये फिल्म कई लोग पूछ चुके होंगे कि शुरू में उम्मीद थी क्या, लेकिन अब शुरू में अगर फिल्म चलती तो उसको लोग अलग ढंग से लेते, लेकिन इसने जब देर से रफ्तार पकड़ी है तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने पत्थर में पहाड़ पर पांव जमाया और सीधा उड़ चले।
8: हाँ, मतलब बिल्कुल ऐसा तो है ही, मतलब आप अगर देखिए तो कोई लॉजिकल तो है नहीं कि सेकंड वीक में उठी है और फिर जब उठी है तो फिर अब जहां जा रही है वहां जा रही है, उसकी अपनी जर्नी है। आप हनुमान जी कह रहे हैं, मैं महाराज जी कह रही हूँ, सेम है, हम सभी उनके अंश हैं। आई थिंक विशाल और मैं जब बैठते थे तो हम लोग को क्लियरली मालूम था कि डिवोटीज के हमने पिक्चर बनाई है। 50 मिलियन डिवोटीज है महाराज जी के इंडिया में, उसमें हमें लगता था कि एक नंबर जो होनी होता कि लोग बात कब करना शुरू करते हैं जब कुछ लोग साथ में मिलते हैं, तो हम चाहते थे कि डिवोटीज एटलीस्ट 50,000 लोग देख पाए, क्योंकि जो भी पिक्चर उससे पहले देख रहा था उनको पसंद आ रही थी, तो हमें थिएटर के एक्सपीरियंस के बारे में पता था कि वहां पे अच्छा एक्सपीरियंस है, पर वो नंबर नहीं हम हिट कर पा रहे थे। 2 हफ्ते तक 35,000 लोगों ने ही देखी थी, तो जब तक लेकिन जब वो उठा तो उसके बाद तो आई थिंक हमारे हाथ में सिर्फ आई थिंक श्रोता का प्यार है, सिर्फ तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है,
2: आपके हाथ से भी निकल
8: गया। हाँ बिल्कुल, बता हमारे तो हाथ में है ही।
4: हाँ, तो पहले 2 हफ्ते में तो फिल्म थोड़ी टफ गई थी, पर जो जनता ने पब्लिश किया है तो और लोगों को इंटरेस्ट आ गया हनुमान अंश देखने के लिए। तो जनता के प्यार से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, नीम करौली बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी फिल्म इतनी हिट हो गई है। और मेन तो छोटे बच्चों ने भी शुरू कर दिया देखने के लिए, उनके वो छोटे बच्चे वो भी उनके पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि चलो हम मूवी देखते, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैं थोड़ा नर्वस था कि लोगों को मेरा रोल कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे तो नीम करोली बाबू जी के बारे में पहले पता नहीं था, पर जैसे मुझे पता चला वैसे वैसे मैंने रोल किया। पर बहुत लोगों को मेरा रोल अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए मुझे।
2: बहुत लोगों को नहीं सबको बहुत अच्छा लगा।
8: विहान हैज सर्टन कामनेस अबाउट हिम, उसमें अंदर बहुत स्थिरता है, एंड फॉर अ चाइल्ड राइट, एंड वो हमेशा ऑब्जर्व कर रहा था, उसका सीन नहीं भी होता था वो बैठा रहता था हमेशा सेट पे और सबको नोटिस कर रहा था। ही हैज एबिलिटी टू, देखो स्पॉन्ज की तरह लगता है वो, और बहुत ही शांत स्पॉन्ज है मतलब हमारे सेट में बहुत कुछ हो रहा था पर उस सेट में ये हमेशा शांत दिखता था, सो ही लुक लाइक अ आइलैंड कंपेयर टू ऑल ऑफ अस, तो वो एक उसमें इक्वालिटी है।
9: फिर करने के पहले तुम्हें बाबा नीम करोली जी के बारे में कितना पता था, और स्पिरिचुअलिटी क्या पहले से की या फिल्म करते करते?
4: तो रोल करने से पहले तो मुझे पता नहीं था कि नीम करोली बाबा जी कौन है, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे में बहुत कम लोगों को पता है नीम करोली बाबा जी के बारे में। पर जैसे ही मुझे रोल मिला तो फिर मैंने रिसर्च की, विशाल सर ने भी मुझे समझाया कि वो 12 साल की उम्र में उनकी, मतलब जो छोटे थे तब उनकी माँ गुजर गई, और वो जब वो 12 साल के थे तब वो घर से भाग गए और उनका ये एक ही सपना था, यस, और उनका एक ही सपना था राम जी के पास पहुंचना। तो विशाल सर ने मुझे सब समझा, इसलिए मुझे इजी गया रोल करने को। और जैसे जैसे शूटिंग होती चली गई, सिर्फ मैं मेरे रोल पे नहीं ध्यान देता था, जैसे शूटिंग होती थी तो फिर मुझे स्टोरी भी पता चली कि ये चमत्कार किए बाबा ने, जैसे वो ट्रेन वाला इंसिडेंट, तो मुझे भी थोड़ा एक्साइटेड लगा उनकी स्टोरी। और मेरा भी मतलब यही है मानना कि हनुमान अंश 2 भी आना चाहिए, पर मुझे टेंशन भी है कि अगर मेरा रोल है कि नहीं उस फिल्म में, तो ये
9: उसमें फ्लैशबैक लगाएंगे।
4: यस हाँ,
9: तुम्हारा रोल है। मुझे लगता है कि ये फिल्म से आगे बढ़ के बहुत कुछ है
2: जी,
9: क्योंकि लोग थिएटर में फिल्म चलने के दौरान, फिल्म से पहले हनुमान चालीसा का कोई कल्चर नहीं था, इस फिल्म ने पूरे कल्चर पे मोड़ दिया।
2: मुझे लगता है एक तो पार्ट ये कि हम जो जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो शब्दों में उसका बयान उसको नहीं किया सकता, तो जब फिल्म बनाते वक्त जो मैं जिन भावनाओं से लिख रहा था शायद वो भावनाएं ट्रांसपायर हो गई और लोगों ने उन भावनाओं को पता नहीं कैसे पकड़ा है, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली इतना लोग भावनात्मक रूप से कैसे जुड़े इसके साथ में, और उन्होंने कितना ये हनुमान चालीसा पढ़ना, जूते उतारना, आपको बताऊं पहले 2 वीक में लोग जूते नहीं उतारते थे, या हमारी जितनी स्क्रीन्स हुई यही इस यहां पे भी, अब ये हो रहा है कि अब कीर्तन भी वो थिएटर वाले करने दे रहे हैं, अब जो है वो हनुमान चालीसाएं भी लोग पढ़ रहे हैं, जूते उतार रहे हैं, ऑल्टर बन रहा है, तो ये सब हमारे सोच के समझ से बाहर है, परे है, कहीं ना कहीं एक हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पे एक स्पिरिचुअल प्लेन भी है जिसको ना तो आप देख सकते हो ना ही आप सुन सकते हो, आप उसको सिर्फ समझ सकते हो अगर आपके अंदर वो आप उसको समझ सकते हो, यदि आपके अंदर वो पॉइंट ऑफ व्यू, आपके अंदर अगर वो दृष्टिकोण है तो ही आप उसको देख सकते हो।
9: हनुमान जी के मूर्तियां स्थापित करने का सुंदर कांड के पाप पे बहुत
2: जी,
9: सुंदर कांड आपके इस फिल्म में कितना रोल पड़ा?
2: सुंदर कांड की वो कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाई, ये लाइन हमने सुंदरकांड की फिल्म के एंड करने के समय इसका प्रयोग किया है, और ये सुंदरकांड भी बहुत सारे महामंत्रों से भरा हुआ एक जिसे बोलते हैं कि वो पोर्शन रामचरितमानस का, और इसके अलावा हनुमान चालीसा का हमने बहुत आयत उसमें मात्रा में प्रयोग किया है, जब वो अपने जब महान जी से बात करता है तो हनुमान चालीसा के रेफरेंसेस देता है कि तुम मेरे भजन राम जी को पावे, है ना, हनुमान चालीसा वो हनुमान चालीसा का अष्ट सिद्धि नवनीति दाता से जब वो पानी से बाहर निकलता है, क्योंकि वो 30 चौपाइयां पढ़ चुका है पानी के अंदर इसलिए वो 31वीं से पढ़ते पढ़ते बाहर निकलता है, ऐसे हमने उसको एस्टेब्लिश किया कि बच्चे ढूंढ रहे हैं, तो हनुमान चालीसा फिल्म के एंड में लास्ट जो फाइनल सिक्वेंस है वो पूरा हनुमान चालीसा के अराउंड ही है, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ी जानी चाहिए, क्यों पढ़ी जानी चाहिए।
9: मैंने एक रील देखी जिसमें विदेशी एक तारे पे
2: गा रहे हैं जी,
9: रे भरोसे, वो अपने भाव से गा,
2: मैंने तेरे ही भरोसे, अच्छा था, ब्यूटीफुल इट वाज गुड, या धन्यवाद।
9: इन सारे लोगों से बातचीत करके सुंदरकांड की यही चौपाई जहन में आती है, जिस विनम्रता से इन सारे लोगों ने
2: सफलता को आत्मसात किया है और महाराज जी का नाम किया, हनुमान जी का नाम किया है, कि उसमें यही समझ में आता है कि सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कैमरामैन इमैनुअल के साथ संजय शर्मा।
7: और देखिए, अगर आपसे भी गलती से फिल्म देखने में आप मिस हो गए हैं, लेकिन थिएटर्स में अभी भी जा सकते हैं क्योंकि ये फिल्म आप सबका इंतजार कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, अच्छी खबरें लगातार जा रही है, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अब बात करेंगे सोना यानी गोल्ड की। पहले उतार चढ़ाव का दौर और अब बड़ी गिरावट। नए हफ्ते के पहले दिन सोने का भाव 1.5 लाख से नीचे जा पहुंचा है। इसकी कीमत में 4,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। भाव चांदी का भी गिरा है। आखिर इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है और क्या गिरावट का ये दौर अभी जारी रहेगा या सोना एक बार फिर से अपनी तेज चमक बिखेरेगा, इन सबको लेकर जानकारों का क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए।

0: सोना भारतीयों के लिए धातु ही नहीं बल्कि भरोसे, परंपरा और समृद्धि का प्रतीक है। शादी ब्याह हो या त्योहार, सब में सोने की चमक खूब दिखती है। सोने को निवेश के सुरक्षित विकल्पों में गिना जाता है। भारत में सोना खरीदना सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि शुभता से भी जुड़ा हुआ है। धनतेरस हो या पर अक्षय तृतीया हो या शादी का कोई मौका, सोना खरीदने की परंपरा हमेशा रही है। अब त्योहारी सीजन से पहले सोने की कीमतों में आई गिरावट खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सोमवार यानी कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में सोने का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया। 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 4000 रुपए से ज्यादा गिरा है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को देश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,48,910 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का भाव 1,36,501 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। एक दिन पहले यानी 27 सितंबर की बात की जाए तो दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,52,830 रुपए था, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1,40,100 रुपए थी। बुलियन मार्केट में आज सोने का दाम 4,140 रुपए सस्ता हो गया। इसके अलावा सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। यही नहीं, घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत में करीब 2% की गिरावट आई है। सवाल यह है कि आखिर सोने का भाव गिर क्यों रहा है। जानकारों के मुताबिक इस गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बढ़ता तनाव है।
1: जैसे जैसे वॉर की टेंशन एस्केलेशन बढ़ रही है, इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस की जो सेंट्रल बैंक है विच इज़ फेडरल बैंक, वो ब्याज दर बढ़ाता है। वो ब्याज दर इसलिए बढ़ाता है कि बिकॉज उसको इन्फ्लेशन कम करना होता है। तो जब वो ब्याज दर बढ़ाता है तो उस वजह से क्या होता है, जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स या जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं गोल्ड से कंपैरिजन में। तो लोग क्या करते हैं, लोग गोल्ड से पैसा निकाल के उसके अंदर लगाते हैं। दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई गोल्ड फॉल्स व्हेन वॉर गोज अप। जनरली वॉर से गोल्ड का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, बट जब वॉर होती है जैसे मिडिल ईस्ट की वॉर है, बहुत टेंशन हो रही है ऑल अराउंड वर्ल्ड, यूरोप और रशिया के बीच में।
0: पिछले साल सोने में 1989 के बाद सबसे तेजी देखी गई थी और अब तक इसमें 75% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हाल के महीनों में सोने के दाम काफी बढ़े हैं, लेकिन इस साल जुलाई और अगस्त में 11% की बढ़त के बाद इस महीने अब तक सोने में 6% की गिरावट आ चुकी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के डेटा के मुताबिक 25 अगस्त को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,59,578 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सितंबर महीने में सोने की खुदरा बिक्री में पिछले साल यानी कि 2025 की तुलना में 8-10% की गिरावट दर्ज की गई है। जानकारों की माने तो अमेरिका बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल दोनों में गिरावट की वजह से सोने पर दबाव बना हुआ है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये स्थिति अभी बनी रहेगी या फिर इसमें जल्दी ही सुधार की गुंजाइश आएगी। आम लोगों के लिहाज से देखा जाए तो दाम में गिरावट राहत है, लेकिन निवेशकों को इसको लेकर क्या ध्यान देना चाहिए, ये सवाल बहुत अहम है।
1: यही रीज़न है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये जो भी US मार्केट जो कंट्रोल है या जो लंदन बुलियन एक्सचेंज है उसकी वजह से दाम में तेज़ी और वो आती है। बट हाँ, जब मार्केट इकोनॉमी के अंदर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी तब या तो दाम नीचे जाएंगे डिपेंडिंग कि किस टाइप की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, या दाम ऊपर जाएंगे। तो इसकी वजह से है, जब हमें जैसे वॉर अगर अभी थम जाएगी तो फिर वापस सोने के दाम ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी।
2: तो लोगों को ले ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि लगातार दाम घट रहे हैं, आगे भी शायद घटते हुए नजर आए, जिनसे उनका जो वेडिंग सीजन है, जो फेस्टिव सीजन है, वो अच्छे से मना सके बिना सेकंड थॉट के।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छे से मना पाए। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड में निवेश हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है, और मेरा ये मानना है कि हर प्राइस हर लेवल रीजनेबल रहता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर उसको आप उसको इनकैश कर सकते हो या फ्यूचर के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये वो मार्केट है जब सोना खरीदना चाहिए।
0: सोना ही नहीं बल्कि चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। 1 किलो चांदी के दाम 9,000 रुपए से ज्यादा गिरे हैं। बीते सप्ताह भी सोने चांदी के दाम में तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, जो कि इस हफ्ते की शुरुआत में भी जारी है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: तीसरा फेज। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने की तैयारी, 1 नवंबर से राजधानी में कंस्ट्रक्शन पर लगेगी लगाम। वर्क फ्रॉम होम लागू करने के साथ पार्किंग चार्ज भी होगा डबल। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए शानदार खबर, 1 अक्टूबर से खुलेंगे सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा सहित तमाम टाइगर रिजर्व, सैलानियों को मिलेगा टाइगर देखने का मौका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदल गया मौसम का मिजाज, ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश, तेज हवाओं के साथ गिरा तापमान। कोलकाता पहुंची इंडियन फुटबॉल टीम, 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से खेलेगी फीफा फ्रेंडली मैच, 3 अक्टूबर को मुकाबला।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
2: मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे परखे, बिना जांचे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि जमुई कांड पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने असंवेदनशील बयान देते हुए कहा कि वो खुद एक लड़की हैं और बिहार में बहुत सुरक्षित हैं। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसमें दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में विसर्जन के दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। इस खबर ने असंवेदनशील बयान देते हुए कहा कि वो खुद एक लड़की हैं और बिहार में बहुत सुरक्षित हैं। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसमें दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में विसर्जन के दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। इस खबर की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़
2: खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसमें दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में विसर्जन के दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। इस खबर ने असंवेदनशील बयान देते हुए कहा कि वो खुद एक लड़की हैं और बिहार में बहुत सुरक्षित हैं। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसमें दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में विसर्जन के दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। इस खबर की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़
2: खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसमें दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में विसर्जन के दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। इस खबर की सच्चाई आगे बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़
3: रही। इस वीडियो में मैथिली ठाकुर कह रही हैं कि हम खुद बिहार से आए हैं, मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। मैं खुद लड़की हूँ और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप सबके बीच खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ।
4: हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित

0: करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल
1: मैं कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड के बाद ये बयान दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसे धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। एक फेसबुक पेज से वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा गया कि बिहार के मारपीट की घटना पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बयान मचा बवाल। घटना को लेकर दिए गए बयान पर अब सवाल उठ रहे हैं। विधायक मैथिली ठाकुर की टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
2: तो आपने सुना मैथिली ठाकुर ने क्या कहा। दरअसल मैथिली दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। जैसे ही उनका यह बयान सामने आया सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। मैथिली ट्रोल होने लगी, पूरी पार्टी को लोग घेरने लगे। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि बीजेपी का महिला सुरक्षा का दावा एक दिखावा है, उनके लिए महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक है। ये बातें अलग हैं कि अलग तरह से फैल रही थी, इसीलिए हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। पूरा सच समझने के लिए हमने मैथिली ठाकुर के वायरल हो रहे बयान को बार बार सुना। ध्यान देने पर ऐसा लग रहा था कि यह बयान आधा अधूरा है, जैसे इसमें मैथिली ने जो पिछली लाइन कही है वो है हम खुद बिहार से आए हैं। अब सोचिए कि मैथिली बिहार में ऐसा क्यों कहेंगी कि हम खुद बिहार से आए हैं। इससे हमें शक हुआ कि हो सकता है कि मैथिली ठाकुर ने बिहार के बाहर किसी कार्यक्रम में ये बात कही हो सकता है कि वो जनरल लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ही ये बात कह रही हूँ। शक की एक और बड़ी वजह थी जमुई कांड पर मैथिली ठाकुर का ऐसा कोई बयान किसी ऑथेंटिक सोर्स पर नहीं दिखा। ये बयान सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहा था। अब हम सोच में पड़ गए कि अगर वाकई मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड को लेकर ऐसा कोई बयान दिया होता तो फिर ये चर्चा में होती बात, और फिर सभी विपक्षी पार्टियां इस बयान को लेकर मैथिली ठाकुर और बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। इसलिए हमारा पहला सवाल यही था कि अगर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने जमुई कांड को लेकर यह बयान दिया है तो फिर यह खबर मुख्य धारा की मीडिया में क्यों नहीं आई। फैक्ट चेक टीम ने मैथिली ठाकुर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाला, जहां हमें 22 सितंबर का एक पोस्ट भी मिला जिसमें वो जमुई कांड की निंदा करते हुए तुरंत एक्शन के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का धन्यवाद कर रही है। ऐसे में मैथिली ठाकुर तुरंत इस तरह का बयान देकर अपनी किरकिरी क्यों करवाएंगी। इसलिए हमारे सामने दूसरा सवाल यही था कि क्या मैथिली ठाकुर के पुराने बयान को इस केस से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
0: और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और मैं खुद लड़की हूँ।
1: इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग एक खास नैरेटिव फैलाने लगे। ऐसे लोग जो झूठ सच का फर्क किए बगैर राय बनाने में देर नहीं करते वो इस खबर पर कूद पड़े, कहने लगे कांग्रेस का दलित प्रेम एक दिखावा है। ऐसे में सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें इस वीडियो का लंबा वर्जन एक न्यूज एजेंसी के यूट्यूब चैनल पे मिला। यहाँ इसे 22 अप्रैल 2026 को अपलोड किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि यह वीडियो पुराना है और जमुई मामले से संबंधित नहीं हो सकता। इस दौरान इस वीडियो को हमने पूरा सुना। ये साफ हुआ कि मैथिली ठाकुर ने ममता बैनर्जी के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। पहले आप ये सुनिए आखिर उस वक्त मैथिली ठाकुर ने क्या कहा था।
3: दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा, हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं, और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था कि चुनाव के दौरान जब हम देख रहे थे कि अपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पथराओबाजी कर रहे हैं, वसूलीबाजी कर रहे हैं, दलालबाजी कर रहे हैं, तो शायद मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी। लेकिन जब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ तो मैं अब सोना भी पहन के घूमती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ।
1: दरअसल मैथिली ठाकुर ने यह बयान बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। बता दें मैथिली ने जमुई की घटना को बेहद निंदनीय और शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि दिल को झकझोर देने वाली घटना है। साथ ही उन्होंने इस मामले में एक्शन के लिए प्रशासन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद कहा है।
3: और मैं खुद लड़की हूं।
1: साफ है जमुई में हुई छेड़छाड़ की घटना पर बयान देने के नाम पर वायरल हो रहा मैथिली ठाकुर का ये वीडियो पुराना है। अप्रैल 2026 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया था। इसी दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया था, जिसे गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब हम एक और वायरल वीडियो की पड़ताल करेंगे, जिसके जरिए दावा ये किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई है, लेकिन लोग नहीं माने और नदी के किनारे लगी जालियों को तोड़कर गणपति विसर्जन करने लगे। इस वीडियो की
4: नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए दिल्ली समेत कुछ राज्यों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगी हुई है। इससे जोड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कई लोगों को जलाशय के किनारे लगी जालियों को तोड़ते हुए देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई, लेकिन लोगों ने जालियां तोड़ दी। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, कर्नाटक सरकार ने नदी में विसर्जन प्रतिबंधित किया था, जाली लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश की थी। लोगों ने इकट्ठा होकर कहा, हम तो नदी में ही विसर्जित करेंगे, प्रदूषण फैलता है तो फैलने दो, अब बताओ सरकार क्या करे। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दावा किया जा रहा है कि विरोध की ये तस्वीरें कर्नाटक में नदी में विसर्जन पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर हैं। अब वीडियो में कुछ लोग नदी किनारे लगी जाली को हटाते हुए दिख रहे हैं। इस घटना पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर विसर्जन से प्रदूषण फैलता है तो फिर प्रदूषण रोकने के उपाय किए जाए, न कि विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। इस वीडियो को तरह तरह के धार्मिक कमेंट्स के साथ तेजी से वायरल किया जा रहा है, इसीलिए हमने इसकी जांच शुरू की। वीडियो में यह तो दिख रहा है कि लोग पुल पर लगी जाली को तोड़कर वहां से हटा रहे हैं। आसपास सुरक्षा बल के जवान भी हैं और वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद ही असहाय से दिख रहे हैं। फिर हमने ये पता करने की कोशिश की कि नदी में विसर्जन रोकने के लिए क्या कर्नाटक में किसी नदी पर ऐसी जाली लगाई गई है। हमने तमाम खबरें वेबसाइट ढूंढ ली, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी खबर हमें नहीं मिली। इसके बाद हमारा ध्यान वीडियो में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इस पर भाषा एक्सपर्ट से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि वीडियो में मौजूद लोग तेलुगु बोल रहे हैं, कन्नड़ नहीं। अब ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था कि अगर वीडियो कर्नाटक है तो फिर यहां पर तेलुगु में लोग बातें क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हमारा दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को कर्नाटक का बताकर सोशल मीडिया पर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। इस वीडियो में एक और गौर करने वाली बात थी कि ये पूरा प्रदर्शन गणपति विसर्जन को लेकर था, पर वीडियो में कहीं भी एक भी गणपति की मूर्ति नहीं दिखी, यानी यहां कोई विसर्जन करने नहीं आया। इसीलिए हमारा तीसरा सवाल यह था कि अगर हंगामा नदी में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ है तो फिर विसर्जन के लिए लाए गए लोग कहां हैं।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 21 सितंबर को अपलोड किए गए एक न्यूज वीडियो में वायरल क्लिप में मौजूद जाली तोड़ने वाले एक हिस्से को साफ साफ देखा जा सकता है। खबर के मुताबिक ये मामला हैदराबाद के टैंक बंड एरिया का है। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें 21 सितंबर को छपी एक रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल घटना से संबंधित तस्वीर भी देखने को मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश विसर्जन पर रोक के खिलाफ टैंक बंड में हो रहा विरोध प्रदर्शन तब तनावपूर्ण

0: हो गया जब पुलिस ने भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। समिति ने विसर्जन पर रोक वाले बैनर पर एतराज जताया। सर्च के दौरान ही हमें 21 सितंबर को छपी एक और रिपोर्ट मिली। इसके जरिए ये जानकारी सामने आई कि जलाशयों में पीओपी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए हुसैन नगर के किनारों पर अस्थायी बैरिकेड लगाए गए थे। हालांकि टैंक बंड पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने अस्थायी बैरिकेड हटा दिए थे और मंडप आयोजकों से मूर्तियों को हमेशा की तरह विसर्जन के लिए झील पर लाने को कहा था। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ दिया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो तेलंगाना का है, जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जलाशयों में पीओपी मूर्तियों का विसर्जन रोकने के लिए जालियां लगाई गई थी। लेकिन हैदराबाद में टैंक बंड पर भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने जालियों को तोड़ दिया। इस वीडियो का कर्नाटक से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
7: बच्चे मासूम होते हैं, बेफिक्र बेपरवाह, उन्हें बस प्यार करना आता है। देखिए इस छोटी बच्ची को, कैसे बछड़े को रोटी खिलाकर खुश है। बछड़ा भी उससे रोटी झपट नहीं रहा, बल्कि सावधानी से रोटी ले रहा है ताकि बच्ची डरे नहीं और उसे नन्हे हाथों से आहार मिलता रहे। रोटी लेते हुए जब बछड़े की जीभ बच्ची के हाथों को छू जाती है तो बच्ची की खिलखिलाहट देखने लायक है। दो मासूमों का ये अनकहा जुड़ाव देख कर लोग मुस्कुरा रहे हैं। एक बच्चे को जब पिता ने गिफ्ट दिया तो उसने पैकेट खोलने के बजाय पहले उन्हें गले लगा लिया। मासूम बेटे का यह अंदाज बताता है कि उसके लिए गिफ्ट से कहीं ज्यादा कीमती पिता का प्यार, मेहनत और साथ है। बच्चे के लिए गिफ्ट सिर्फ कागज में लिपटी कोई चीज नहीं थी, उसके पीछे पिता की मेहनत थी, उनका प्यार था और वे तमाम छोटी बड़ी कुर्बानियां थी जो अक्सर बच्चे देख तो लेते हैं लेकिन शब्दों में कह नहीं पाते। पिता के लिए शायद यह एक सामान्य सा तोहफा रहा हो लेकिन बच्चे ने उसके पीछे छिपी भावनाओं को समझ लिया था। इस बच्चे का अपने पिता को गले लगाना भी यही बात याद दिलाता है। उसने शायद बिना कुछ कहे अपने पापा को बता दिया कि वह उनकी मेहनत को समझता है और उनके प्यार की कद्र करता है। अदाएं ऐसी कि नजर न हटे, आत्मविश्वास ऐसा कि दुनिया जीत ले जाए। आपने रैंप पर वॉक करती सुंदरियों को खूब देखा होगा, मगर जो बात इनमें है किसी और में कहां। अंदाज देखिए जरा, क्या बलखा के चली है और विक्ट्री का साइन भी आंखों में आंखें डालकर दिखा रही है। मानो कह रही हो है कोई मुझसा तो सामने आए। बच्ची का अंदाज और उसका आत्मविश्वास लोगों का दिल छू रहा है।

0: संगीत से कुछ ज्यादा ही लगाव है इन्हें। माइक हाथ में आते ही सुर लगने लगे हैं। क्या गा रही हैं? मालूम नहीं, पर जिस अंदाज में गा रही हैं, वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। मानो आज तो स्टेज पर आग ही लगा देंगी। बच्चे जिस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस की नकल कर रही है, वो देखना दिलचस्प है। लोग उसकी क्यूटनेस पर दिल हार रहे हैं। कमाल है, इनको देखकर आपके मुंह से यही निकलने वाला है। इनकी फिटनेस, कॉन्फिडेंस और तालमेल सब गजब का है। सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये कोई स्टंट कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो ये तो इनके खेलकूद का हिस्सा है। इनको देखना दिलचस्प है। इन बच्चों के इस वीडियो पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं।
1: और फोन तो करते ही रहना। हम
2: नहीं, फोन भी कर दूंगा।
1: मेरे पोटर, तेरे बिना दिल नहीं लगता ना।
0: यूं तो इस दुनिया में कई रिश्ते मिलते हैं, लेकिन दादा पोते का रिश्ता अपने आप में बेहद अनोखा और प्यारा होता है। कहा जाता है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, और यह बात इस रिश्ते पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जनरेशन गैप के बावजूद दोनों के बीच का अपना एक अलग ही मैजिक होता है। पोते ने अपने दादाजी को बताया कि वह किसी काम से उनसे दूर जा रहे हैं, तो बुजुर्ग दादाजी का दिल भर आया। पोते के जाने की बात सुनकर दादा धनराज जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने प्यार से अपने पोते के गाल सहलाए और भावुक होते हुए कहा,
1: कोई देर मत लगाना, आजकल का सीजन अच्छा नहीं है।
2: ठीक है,
0: तेरे बिना दिल नहीं लगेगा, लेकिन फोन पर बात कर लेगा तो तसल्ली रहेगी। दादाजी ने बड़े ही अपने पन के साथ पोते को अपना ख्याल रखने और समय पर दवाइयाँ खाने की सलाह दी।
1: बात कर लेगा तो भी हो जाएगा। कोई देर मत लगाना, आजकल का सीजन अच्छा नहीं।
0: साथ ही यह भी कहा कि अगर जाने का सोच लिया है तो फिर ज्यादा देर मत लगाओ। दादाजी की यह मासूमियत और बेइंतहा प्यार देखने वालों का दिल पिघला रहा है। खचाखच भरी मेट्रो में सीट न मिलने पर एक बुजुर्ग अंकल ने ऐसा देसी जुगाड़ लगाया कि आसपास के लोग देखते रह गए। उन्होंने अपने बैग से फोल्डिंग स्टूल निकाला और मेट्रो के फर्श पर रखकर आराम से बैठ गए। इसके बाद हेडफोन लगाकर बड़े सुकून से सफर का आनंद लेने लगे। उनका अंदाज देखकर ऐसा लगा जैसे भीड़भाड़ वाली मेट्रो में सीट न मिलने की चिंता उन्होंने काफी पहले ही खत्म कर ली हो। वीडियो में उनका आत्मविश्वास और बेफिक्री लोगों का ध्यान खींच रही है।

फिल्म हनुमान अंश का लोकप्रिय गाना मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को इस विदेशी शख्स ने अपने अंदाज में गाकर लोगों का दिल जीत लिया है। आवाज में भक्ति का भाव साफ महसूस किया जा सकता है। लोग विदेशी शख्स की आवाज और उसके अंदाज की तारीफ कर रहे हैं।

इस दृश्य को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। एक शोरूम के बाहर लाल कालीन बिछा है और रंग बिरंगे गुब्बारों से शानदार सजावट की गई है। वहीं पास में ढोल बजाने वाले अपनी पूरी लय में ढोल ताशा बजा रहे हैं, लेकिन असली महफिल तो तब सजती है जब उनके ठीक सामने एक रोबोट उतरता है। ब्लू और ऑरेंज कलर की स्पोर्टी टी शर्ट, ब्लैक शॉर्ट्स और सिर पर हेलमेट पहने ये रोबोट जैसे ही ढोल की आवाज सुनता है एकदम एक्शन मोड में आ जाता है। ढोल की हर बीट के साथ वह अपने हाथ पैर और कमर को इस तरह मटकाता है कि वहां मौजूद लोग टकटकी लगाए देखते ही रह जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि रोबोट सिर्फ बेतरतीब तरीके से हाथ पैर नहीं हिला रहा, बल्कि ढोल की बदलती धुन और बीट्स के साथ अपने स्टेप्स और टाइमिंग को परफेक्टली मैच कर रहा है। कभी वह अपने हाथों से भांगड़ा स्टाइल मूव्स करता है तो कभी झुककर और घूम घूम कर डांस का जलवा दिखाता है। रोबोट का यह एनर्जेटिक और मजेदार डांस देखकर वहां से गुजरने वाले हर शख्स के कदम थम गए। बच्चे हों या बड़े, हर कोई अपने मोबाइल का कैमरा निकालकर इस अनोखे नजारे को कैद करने में जुट गया।

बर्थडे हो तो खुश होना भी लाजमी है। बर्थडे सेलिब्रेशन देखकर इतनी खुशी से झूम उठा कि इंसानों की तरह ताली बजाने लगा। पुडल नस्ल के इस कुत्ते का नाम कॉपिटो है। जब परिवार के सदस्य उसके लिए स्पेनिश में हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करते हैं, कॉपिटो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है और अपने छोटे छोटे पंजों से तालियां बजाने लगता है। उसका ये अंदाज लोगों को

उभर रहा है। इस बर्थडे सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए पॉपिटो को कुत्तों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया एक हैमबर्गर केक दिया गया, जिसे उसने बड़े चाव से खाया। इतना ही नहीं, उसने अपने 5वें जन्मदिन की मोमबत्ती को बुझाने में भी परिवार की पूरी मदद की। ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
1: जंगली जानवरों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव अक्सर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। ऐसे में ओडिशा का एक खास ट्रेनिंग सेंटर हाथियों को प्रशिक्षित करके ऐसे टकराव को कम करने में अहम भूमिका निभा रहा है। आपको दिखाने जा रहे हैं ओडिशा के चंदका में मौजूद इस सेंटर की कहानी, जहां पर तैयार किए जा रहे हाथी वाइल्ड लाइफ और इंसान के बीच अहम कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
2: जंगल में खेल कूद करते इन हाथियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इंसानों के साथ ही हैं। और लोगों के बीच रहने के लिए इन्होंने काफी प्रैक्टिस की है। हकीकत यही है कि इन हाथियों को इंसानों का साथी बनने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीरें ओडिशा के चंदका वाइल्ड लाइफ डिवीजन में कुमार खूंटी के इलाके की है। घने जंगल का ये इलाका महज एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, जहां पर आप तरह तरह के जंगली जीव जंतुओं का दीदार कर सकते हैं और कुदरत की खूबसूरती को निहार सकते हैं। बल्कि ये जगह इस मायने में खास है कि यहां पर हाथियों का स्पेशल कुमकी ट्रेनिंग सेंटर है। यहां हाथियों की देखभाल की जाती है और उन्हें वन विभाग की ओर से विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है।
3: Mainly the rescue center. Two elephants who were discarded by this herd or injured at somewhere. They are rescued and they are treated and trained. This type of training is no doubt it is a training center.
2: Chandka Wildlife Sanctuary करीब 200 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इस जंगली इलाके में फिलहाल 46 जंगली हाथी मौजूद हैं, जबकि 9 भटके हुए हाथियों को यहां पर बने खास ट्रेनिंग सेंटर में लाकर रखा गया है, जिन्हें जंगल में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा हो। यहां पर इन हाथियों के रहने के लिए इंतजाम है और खान पान का खास ख्याल रखा जाता है। हाथियों की सेहत, आराम, नहाने, खेलकूद का पूरा ख्याल यहां पर रखा जाता है। साथ ही हाथियों को यहां पर हर दिन 2 से 3 घंटे प्रशिक्षित भी किया जाता है। इन हाथियों की मौजूदगी इन इलाकों के लिए काफी खास है, जहां इंसानों और जंगली हाथियों के बीच टकराव का खतरा बना रहता है।
3: दिस इज द आवर एम टू अचीव दिस मैन एलिफेंट टू मिनिमाइज द मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। So we are training, we are imparted training to the elephants. In future they will help.
2: कुमकी ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित हाथी और उनके साथ काम करने के लिए टीम जंगली हाथियों को नियंत्रित तरीके से आबादी से दूर करने में मदद करती है। यहां पर तैयार हो रहे हाथी जंगल और आबादी के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश में वन विभाग के अहम साथी बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की